0: लगा है, लेकिन सवाल यही है कि क्या सिर्फ होटल मालिक लवकेश बजाज की गिरफ्तारी काफी है? अगर वक्त रहते लवकेश बजाज के होटल पर सरकारी महकमों ने शिकंजा कसा होता तो 21 लोगों की मौत नहीं हुई होती। इसका सबसे बड़ा सबूत आज तक के कैमरे में कैद है। अग्निकांड के चंद घंटों के बाद दिल्ली के तमाम इलाकों में अवैध तरीके से चल रहे होटलों पर अब ताला लटक रहा है, यानी कार्रवाई के डर से अवैध होटलों के मालिकों ने खुद ब खुद ताला लगा दिया।
1: ग्रीन रेसिडेंसी है, होटल है, जहां आग लगा वहां से बमुश्किल 300 मीटर की दूरी पर, और तस्वीर आपको बदली हुई ये दिखाई देगी कि अब यहां शटर डाउन दिखाई देगा, शटर लगा दिया गया है, जो लोग यहां रुके हुए थे उनको जाने के लिए कह दिया गया है। हाँ भैया, कोई है? स्टाफ आपको दिखाई नहीं देगा, अंदर सीसीटीवी कैमरा चल रहा है, एसी चल रहा है, जो लोग रह रहे थे वो एक एक करके उन्हें कहा गया कि आप होटल खाली कर दीजिए। और ये तस्वीर इस वजह से है क्योंकि अब डर है होटल मालिकों को कि एक्शन होने वाला है सरकार का, क्या इस होटल में कोई फायर एग्जिट है, ये सवाल बना हुआ है। फायर एग्जिट हमें कोई दिख नहीं रहा है, यहाँ नीचे बेसमेंट का रास्ता है, बेसमेंट पे ताला लगा हुआ है। ये वीनस इन देखिए, ठीक जो जिस होटल में आग लगा है वैसा ही स्ट्रक्चर ये है, सामने इस तरह की फैब्रिकेशन आपको दिखाई देगी, और वेंटिलेशन होगा नहीं होगा ये सवाल बना रहेगा। दूसरी तरफ आपको एक लाइन से सारे जो एसी के यूनिट्स हैं वो दिखाई देंगे, और ये समझना है अब हमें कि क्या वीनस इन पे मालिकों ने खुद से ताला जड़ दिया है या इंतजार कर रहे हैं अथॉरिटीज का आने का। ये दरवाजा है, दरवाजे पे आपको ताला दिखाई देगा, होटल की एंट्री बंद और होटल के ऊपर से बोर्ड गायब। डर यह है कि संभवतः अब जब एमसीडी का एक्शन होना है तो उस एक्शन में होटल सील ना हो जाए। एक सीसीटीवी का शायद ये तार था जिसको कोई केबल था, उस केबल को भी डिस्कनेक्ट करके रखा गया है। यहां से आप देख सकते हैं टेपिंग की गई है, इस पे ताला लगाया गया है, होटल के ऊपर ताला बंद है, तो अथॉरिटीज आए ताला सील करें, उससे पहले इन्होंने अपना ताला इस पे जड़ दिया है।
0: सवाल यही है कि ताला पहले क्यों नहीं लगा, क्यों कानून को ठेंगा दिखाने वाले लवकेश बजाज पर समय रहते कार्रवाई नहीं की गई? क्योंकि लवकेश बजाज को बेड एंड ब्रेकफास्ट पॉलिसी के तहत सिर्फ 6 कमरों का लाइसेंस मिला हुआ था, लेकिन फ्लरिश स्टे में 25 कमरे चल रहे थे, मतलब परमिशन से 4 गुना ज्यादा। यही नहीं, बेड एंड ब्रेकफास्ट पॉलिसी के लाइसेंस धारी को अपनी प्रॉपर्टी में रहना होता है, लेकिन लवकेश ने इस नियम का भी खुला उल्लंघन किया। वो अपनी इस आलिशान कोठी में रहता था।
2: जो होटल जिसमें आग लगी 21 लोगों की मौत हुई उसके मालिक का नाम लोकेश बजाज है, आलिशान कोठी है, ये देखिए बजाज लिखा हुआ है D140। और जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि इसी आलिशान कोठी में करोड़पति जो लोकेश बजाज है वो रहता है, उसके कई होटल हैं। और आज तक की टीम सबसे पहले यहां पर पहुंची है, जो जानकारी मिली है दिल्ली पुलिस की टीम भी यहां पर पहुंची है, जो लोकल इलाके की पुलिस है वो यहां पर पहुंची है वेरिफिकेशन करने के लिए। सुबह भी यहां पर टीम आई थी, क्या दिल्ली पुलिस की टीम सुबह यहां पर आई थी?
3: हाँ आई थी सुबह।
2: लोकेश बजाज ही रहता है
3: सुनने में आया, हम तो वैसे जानते नहीं है उसको पहले से, तो लेकिन अभी बताया कि यहाँ रहता है।
2: यहाँ रहता है, तो ये लोकेश बजाज की कोठी है जो जानकारी मिली है, जो लोकल पुलिस है वो भी वेरीफाई कर रही थी।
0: शुरुआती जांच में पता चला है कि जब मालवीय नगर में लोग आग की लपटों के बीच अपनी जान की भीख मांग रहे थे तब लवकेश बजाज मौके पर मौजूद था, लेकिन लोगों को बचाने के बजाय लवकेश मौके से गायब हो गया। गिरफ्तारी से बचने के लिए लवकेश ने कई लोकेशन बदली, अपना मोबाइल स्विच ऑफ रखा, लेकिन कई घंटों की मशक्कत के बाद दिल्ली पुलिस ने लवकेश बजाज को गिरफ्तार कर लिया। आज लवकेश बजाज को पुलिस ने साकेत कोर्ट में पेश किया। अदालत ने पूछताछ के लिए लवकेश को 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया है।
2: लवकेश से पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए हैं। जानकारी मिली है कि लवकेश बजाज के कई होटल हैं, ज्यादातर होटल नियम और कानून को ताक पर रखकर चलाए जा रहे थे। इतना ही नहीं, लवकेश बजाज इतना शातिर है कि साल 2022 में उसने होटल लाइसेंस के लिए दिल्ली पुलिस की लाइसेंसिंग विभाग में अप्लाई किया था,
4: दिल्ली पुलिस की लाइसेंसिंग विभाग ने होटल का लाइसेंस देने से मना कर दिया। उसके बाद उसने बेड एंड ब्रेकफास्ट के तहत लाइसेंस लिया और 6 कमरों की जगह 25 कमरे बनाकर पूरा का पूरा होटल चला रहा था।
0: दरअसल बेड एंड ब्रेकफास्ट पॉलिसी के तहत लाइसेंस दिल्ली पर्यटन विभाग जारी करता है, लेकिन इस पॉलिसी के तहत रजिस्ट्रेशन और निरीक्षण MCD के जरिए होता है। MCD के संबंधित विभागों की जिम्मेदारी ये चेक करना है कि लाइसेंस के मानकों का पालन हो रहा है या नहीं, लाइसेंसधारी बिल्डिंग में रह रहा है या नहीं, लेकिन MCD ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। ठीक ऐसे ही दिल्ली जल बोर्ड को पता था कि 6 कमरों की जगह 25 कमरों का होटल चल रहा है, पानी की खपत ज्यादा है, लेकिन दिल्ली जल बोर्ड के अफसर आंखें मूंद कर बैठे रहे। यही नहीं, BSES को भी पता था कि घरेलू मीटर पर कमर्शियल एक्टिविटी चल रही है। बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी ने भी चुप्पी साधे रखी, यानी तीनों एजेंसियां जिनके पास जानकारी थी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया।
5: अग्निकांड के एक गुनहगार को हिसाब जरूरी है कि उसका किया जाए, क्योंकि कई परिवार आज पूरी तरह से उजड़ चुके हैं। गुरुग्राम में रहने वाली विवेक अग्रवाल आज इस दुनिया में नहीं है। हादसे में सिर्फ विवेक अग्रवाल की मौत नहीं हुई है, बल्कि परिवार के 8 लोग, जी हाँ 8 लोग मारे गए। आज एक घर से एक साथ 8 अर्थियां उठी हैं। अग्रवाल परिवार ने दिल्ली सरकार से अपील की है और कहा है कि इंसाफ तभी मिलेगा जब एक एक दोषी को पकड़ा जाए।
0: एक नहीं बल्कि शमशान घाट में एक परिवार के 5 लोगों का अंतिम संस्कार किया गया। ये गुरुग्राम में रहने वाले विवेक अग्रवाल का परिवार है। फ्लरिस्टे में हुए हादसे में गुरुग्राम के अग्रवाल परिवार के 8 सदस्यों की मौत हो गई। परिवार के 5 सदस्यों का अंतिम संस्कार आज गुरुग्राम में किया गया, जबकि परिवार के 3 लोगों का राजस्थान में।
6: एक ही परिवार था, 8 लोगों की मौत हुई, जिनमें से 5 को अभी यहाँ मुखाग्नि दी गई है। ये मोक्ष धाम है गुरुग्राम का, जहाँ पे एक एक करके पार्थिव शरीर को लाया गया। यहाँ आप पिंडदान के टूटे हुए घड़े भी देख सकते हैं। यहाँ एक एक करके सबकी जो आखिरी क्रियाएं जो भी हो सकती थी वो की गई। आप समझ सकते हैं परिवार की क्या स्थिति रही होगी, जिसके 8 लोगों की मौत हो गई। 5 यहाँ लाए गए हैं, क्योंकि बाकी जो परिवार के लोग हैं वो राजस्थान के रहने वाले थे, तो उनके पार्थिव शरीर को राजस्थान ही भेज दिया गया। लेकिन विवेक, उनकी पत्नी, उनकी 2 छोटी बेटियां और उनकी माताजी, उनके शरीर को यहीं लाया गया और यहीं पे उन्हें अग्नि दी गई है। अब सवाल ये बड़ा बनता है कि एक परिवार की जो इतनी क्षति हुई है, उसके बाद कोई ना कोई इंसाफ तो मिलना चाहिए। अगर ये हुआ है तो जो शख्स इसके लिए जिम्मेदार है और जो महकमे के लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए।
0: हादसे में विवेक अग्रवाल, उनकी पत्नी तर्जनी और माँ हेमलता की जान चली गई। उनकी बेटियां जिविशा और वाद्या भी इस अग्निकांड की भेंट चढ़ गईं। मौसा जबरी लाल, मौसी कमला और मामा अशोक पंसारी की भी मौत हो गई। मौसा मौसी राजस्थान के अजमेर से आए थे, जबकि मामा किशनगंज से दिल्ली पहुंचे थे। किसे पता था जिस होटल में ठहरे थे वही होटल उन्हें बेमौत मार देगा। दरअसल विवेक के पिता राधेश्याम मैक्स अस्पताल में भर्ती थे। इलाज के चलते परिवार ने रोज गुरुग्राम से आने जाने के बजाय अस्पताल के करीब होटल में ठहरने का फैसला किया, लेकिन किसे पता था कि एक हादसा पूरे परिवार को उजाड़ देगा।
7: वो गाड़ी उसी हौजरानी में बीचों बीच सड़क पे खड़ी, ये वही मर्सिडीज कार है, UP नंबर की कार, जिसका इस्तेमाल परिवार, विवेक का परिवार करता था। आज उनकी अंतिम क्रिया को गुरुग्राम में पूरा किया गया परिवार द्वारा, जो परिवार में लोग बचे हुए हैं। और आपको दिखाई देगा शीशा टूटा हुआ है, इस गाड़ी का कांच टूटा हुआ है, क्योंकि जब होटल में आग लगी तो उस वक्त संभवतः गाड़ी में आग ना लग जाए, इसके लिए इसके कांच को तोड़कर आगे ले जाया गया। आगे एक हुक भी दिखाई देगा आपको, जिस हुक का इस्तेमाल करके गाड़ी को संभवतः आगे खींचा गया होगा। बीचों बीच फ्लरिशन से बमुश्किल 100-150 मीटर दूर ये गाड़ी इस वक्त इंतजार में है कि संभवतः कोई परिवार से आए और यहाँ से ले जाए।
0: अग्रवाल परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। एक हादसे ने सब कुछ छीन लिया। अब अग्रवाल परिवार की यही मांग है कि इन्हें दिल्ली सरकार से इंसाफ मिलना चाहिए।
8: हम ये चाहते हैं कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए कि गलती किसकी थी, किस वजह से हुआ, क्योंकि इस कारण तीन परिवार पूरे उजड़ गए। मेरे मौसा जी का पूरा परिवार लगभग खत्म हो चुका है। हम ये चाहते हैं इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इस तरह के जो अवैध होटल चल रहे हैं वो सारे होटल बंद होने चाहिए।
6: बिल्कुल, सरकार की तरफ से अब कहा जा रहा है दिल्ली सरकार की कि वो एक्शन लेंगे, एक जांच भी बिठा दी गई है एलजी की तरफ से भी। क्या इससे संतुष्ट हैं या आप लोग चाहेंगे कि इसमें कोई हायर अथॉरिटीज और आगे भी इन्वॉल्व हों?
8: नहीं, हम ये चाहेंगे कि इसकी और उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए।
0: अग्रवाल परिवार की एक गुहार दिल्ली की रेखा सरकार से है। अपनों को खो चुका परिवार यही चाहता है कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में किसी और परिवार को ऐसा दर्द ना सहना पड़े। आज तक ब्यूरो।
5: और अब बात करेंगे भारत के चर्चित शिक्षक और यूट्यूब एजुकेटर फैजल खान उर्फ खान सर के बारे में। जी हां, खान सर की कोचिंग में फायरिंग का ऐसा चैप्टर शुरू हुआ जिसमें वो बुरी तरह से उलझते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बिहार की राजधानी पटना में खान सर और ज्ञान बिंदु कोचिंग के विवाद में अब नया ट्विस्ट सामने आया है।
9: अंदर एक भूख रहना चाहिए, ललक होना चाहिए, फिर आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती।

0: ये है फैजल खान, लेकिन पूरा भारत इन्हें खान सर के नाम से जानता है। खान सर को भारत के एक बेहद लोकप्रिय और प्रसिद्ध शिक्षक, यूट्यूबर और सोशल मीडिया स्टार माना जाता है।
1: बहुत दूर तक जाना पड़ता है ये जानने के लिए कि पासपोर्ट।
0: खान सर मुख्य रूप से बिहार के पटना में अपना कोचिंग सेंटर चलाते हैं और दावा करते हैं कि देश भर में अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी करने वाले करोड़ों छात्र उनसे ऑनलाइन और ऑफलाइन जुड़े हुए हैं। कठिन और जटिल विषयों को बहुत ही सरल, देसी और मजाकिया अंदाज में समझाना इनका स्टाइल है।
1: ना बाबू सोना, ना रोना धोना, सिंगल रहना।
0: क्योंकि पढ़ाने में खान सर रोजमर्रा की जिंदगी और स्थानीय भाषा का इस्तेमाल करते हैं।
1: फोन उठाने का टाइम टेबल बना दो।
0: खान सर का दावा ये भी है कि उन्होंने शिक्षा को व्यापार न मानकर एक हथियार बनाया है।
1: कि जिन लोगों ने पूरा जीवन बच्चों का शोषण कर करके फीस लिया,
0: उनके कोचिंग संस्थान खान ग्लोबल स्टडीज और खान सर ऑफिशियल ऐप पर बहुत ही न्यूनतम फीस में कोर्सेज उपलब्ध कराए जाते हैं। विज्ञान, भूगोल, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और राजनीति जैसे कठिन विषयों को सरल भाषा में समझाने वाले खान सर एक ऐसे मुश्किल चैप्टर में उलझ गए हैं जिसमें उनकी मुश्किलें अब बढ़ती जा रही हैं।
1: आपको ध्यान ये नहीं रखना कि पढ़ना कितना है, डिसाइड ये करिए पढ़ना क्या है।
0: खान सर के कोचिंग सेंटर पर गोलीकांड, अब क्या होगा अंजाम? दो कोचिंग सेंटर की लड़ाई, गोलीकांड की खुल गई सच्चाई। खान सर के दो गार्ड्स गिरफ्तार, कबूल ली गोली चलाने की बात। अब खान सर का क्या होगा? फायरिंग वाला चैप्टर भारी पड़ गया। क्या कोचिंग की लड़ाई में खान सर गोलीकांड पर फंस गए? यकीनन इस वक्त खान का भेजा घुमा हुआ होगा। कहां तो दो कोचिंग सेंटर में हुई क्रेडिट की लड़ाई में बड़े दावे के साथ खान सर ने चिल्ला चिल्ला कर दुनिया जहां को बता दिया कि उनके कोचिंग सेंटर में 10 राउंड गोलियां चली हैं। और ये गोलियां किसी और ने नहीं बल्कि उनके बगल वाली कोचिंग ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रोशन आनंद ने चलवाई है।
1: किसको गोली चलने पे मजा आता है? चारों ओर से गोली चल रहा था उस समय, कहाँ थे आप लोग? आते तब पूछते कि आपको कैसा लग रहा है यहाँ?
2: सुरक्षा के लिए कहीं आवेदन दीजिए।
1: अब देंगे, यहाँ पे पुलिस तो आई है, यहाँ पे अब देखते हैं पुलिस का क्या इन्वेस्टिगेशन।
3: कौन हो सकता है इसके पीछे?
1: बगल की कोचिंग वाला है, सबको पता है कौन हो सकता है। यहाँ पर वो बयान भी दिया है, कहा कि खान सर का कोचिंग दो दिन में उड़ा देंगे।
3: इतनी क्या ऐसी है कि मतलब गोली चला जाए?
1: बात बस एक चीज है कि इतना रिजल्ट इतने कम फीस में क्यों हो रहा है।
0: खान सर चिल्ला चिल्लाकर मीडिया के कैमरों पर बोलते रहे कि कम फीस में बढ़िया रिजल्ट देने के चलते उन्हें टारगेट किया जा रहा है, गोलियां चलाकर उन्हें डराने की कोशिश की जा रही है।
1: अभी इन लोग का बस यही है कि इतने कम फीस में नहीं पढ़ाया जाए और इतने हजारों संख्या में जो रिजल्ट आता है पूरी तरह से इतनी गोली चलाने लगे। 10 मिनट में ऐसा लगा कि जैसे अफरा तफरी होके रख गया। यहाँ पर 8-10 राउंड तो हम देखे हैं, यहाँ पे 8-10 राउंड हम देखे हैं। हमें क्या पता है, अभी पीएमसीएच में एडमिट है, उसका पूरा सर फाड़ दिया गया है यहाँ पर।
4: क्या लगता है कौन क्या होगा?
1: बगल की कोचिंग वाले।
3: सर आप खुद मौजूद थे यहाँ जब फायरिंग हो रही थी?
1: बिल्कुल, ये देखिए मेरा गार्ड है ये।
3: अच्छा,
1: इसका ये पूरी तरह से खून से इसको लहूलुहान कर दिया गया यहाँ पे।
3: तो गार्ड से क्या दुश्मनी थी?
1: बस कि तुम ही खान सर को सब गार्ड है हमारा मार के रखते हैं।
0: खान सर को लगा कि कोचिंग के फायरिंग चैप्टर में उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी रोशन आनंद को उलझा दिया और पुलिस ने रोशन आनंद को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि कोचिंग सेंटर पर गोलीबारी के बयान से खान सर थोड़ी देर में ही पलट गए और तो और उन्होंने पुलिस को दी गई शिकायत में भी फायरिंग की बात नहीं कही।
1: देखिए उस समय इतना घटना हुआ, अभी जो घायल है जो मेन, हम लोग तो अंदर से भी अपने चैम्बर में थे, टीचर लोग क्लास ले रहे थे, जो गार्ड है उससे पूछा गया तो उसका कहना है कि सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, इतना मार के फोड़ दिया गया उसे।
0: लेकिन खान सर को नहीं पता था फायरिंग के चैप्टर में अब वो ही फंस गए हैं और उनके कोचिंग सेंटर में जो गोलियां चली उनका वीडियो बन चुका है। और जैसे ही सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल होता है खान सर की मुसीबत भी शुरू हो जाती है। खान सर के बॉडीगार्ड्स ने ही कोचिंग सेंटर में चलाई गोलियां। वायरल वीडियो में गोली चलाते हुए दिखे खान सर के बॉडीगार्ड। पुलिस ने खान सर के दो गार्ड्स को किया गिरफ्तार, अब पूछताछ जारी है। सोशल मीडिया पर फायरिंग वाला वीडियो वायरल होने पर पुलिस खान सर के कोचिंग सेंटर खान ग्लोबल स्टडीज पहुंचती है और उनके गार्ड को उठाकर ले जाती है और गोलीकांड के वायरल वीडियो से खान सर की पूरी पोल पट्टी खुल जाती है।
2: सबसे दिलचस्प मोड़ इस कहानी में बीती रात आया जब एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस वीडियो में खान सर के ही दो गार्ड्स ताबड़तोड़ फायरिंग करते नजर आए, जिसके बाद पटना पुलिस एक्शन में आई है। अब खान ग्लोबल स्टडीज के दो गार्ड्स को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे जो कार्रवाई की तलवार है वो फैसल खान पर लटकी हुई है।
5: अब सवाल यह है कि क्या खान सर को पता था कि उनके कोचिंग सेंटर में गोलियां उनके गार्ड्स ने ही चलवाई हैं? अब तक मुसीबत में ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद थे, अब खान सर भी फंसते हुए नजर आा रहे हैं।
0: 27 मई 2026 खान सर और रोशन आनंद के बीच यानी दो कोचिंग संचालकों के बीच वर्चस्व की लड़ाई 27 मई से शुरू होती है जब बिहार पुलिस भर्ती का रिजल्ट आता है। बिहार पुलिस में सिपाही के 19,838 पदों पर बहाली हुई और इसके बाद खान सर की कोचिंग की तरफ से उनके स्टूडेंट्स को ज्यादा सफलता मिलने का दावा किया गया। वहीं रोशन आनंद की कोचिंग ज्ञान बिंदु ने भी दावा किया कि उनके स्टूडेंट्स को ज्यादा कामयाबी मिली है। खान सर और रोशन आनंद ने अपने अपने अभ्यर्थियों के सम्मान समारोह का आयोजन किया। इस दौरान दोनों ने बढ़ चढ़कर पोस्टर भी लगाए, लेकिन खान सर के कोचिंग सेंटर के स्टाफ ने ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के बोर्ड पर अपना बैनर लगा दिया और यहीं से विवाद भड़क गया। 2 और 3 जून की रात को दोनों कोचिंग संचालकों के बीच में बवाल हो गया और तोड़फोड़ पत्थरबाजी से लेकर गोलियां चल गईं।
2: पटना के मुसल्लपुर इलाके में कोचिंग संस्थान चलाने वाले फैसल खान और रोशन आनंद की प्रतिद्वंदिता पुरानी है, लेकिन 27 मई को बिहार पुलिस सिपाही बहाली के जब नतीजे आए तो दोनों ने अपने कोचिंग संस्थान के ज्यादा छात्रों के सफल होने के दावे शुरू किए। 30 मई को पटना में दोनों ही कोचिंग संस्थानों और संचालकों की तरफ से अपने अभ्यर्थियों की सफलता का जश्न भी मनाया गया, लेकिन बात जब बिगड़ गई जब 3 जून की रात अपने अपने बैनर पोस्टर को लेकर के दोनों खेमे आमने सामने आ गए और नतीजा वर्चस्व की लड़ाई में बदल गया।
0: खुद खान सर ने कोचिंग सेंटर पर रोशन आनंद के खिलाफ गोलियां चलवाने के आरोप लगाए, हालांकि बाद में फायरिंग की बात से पलट जाते हैं, लेकिन दो कोचिंग संचालकों के बीच एक गैंग वॉर जैसी तस्वीर सामने आती है और पुलिस रोशन को गिरफ्तार कर लेती है।
6: बिहार पुलिस में जो शानदार रिजल्ट हुआ है उसी का साजिश है, हमको फंसाया जा रहा है। किसान कोल्ड स्टोर के मालिक और खान सर जो है दोनों मिल करके जो है ज्ञान बिंदु को बर्बाद करने का पूरा प्रयास कर रहा है, लेकिन सत्यमेव जयते, हमेशा सत्य की जीत है।
0: 3 जून की सुबह खान सर के कोचिंग सेंटर पर काफी स्टूडेंट्स जुट जाते हैं, जाम की स्थिति बन जाती है, पुलिस पहुंचती है। उसके बाद खान सर ने स्टूडेंट से सड़क खाली करने की अपील की, लेकिन अगले दिन खान सर की कोचिंग पर गोलीकांड में नया ट्विस्ट आता है और गोलीकांड में खान सर के ही दो गार्ड को गिरफ्तार कर लिया जाता है।
7: ये देखिए, विवाद बहुत लंबे समय से चल रहा है और जब तक ये लोग अपना नौटंकी नहीं छोड़ेगा तब तक ये विवाद चलता रहेगा और ये इनका नौटंकी का परिणाम ये विवाद चल रहा है। कोई 12,000 बोल रहा है, कोई 10,000 बोल रहा है। खान और रोशन आनंद दोनों शिक्षक नहीं है, शिक्षक का नाम कलंक है। आप एक समय झूठ बोलते हैं आप कि 8 राउंड गोली मेरे आग के सामने चली, सुबह सुबह पलट जाते हैं कि नहीं वो गेट खटखटा रहा था। कैसी नौटंकी है मिस्टर खान? रोशन आनंद की गिरफ्तारी हुई है तो इसकी भी गिरफ्तारी हो, खान की भी।
0: अब पुलिस इस मामले में कई एंगल से जांच कर रही है और कोचिंग संचालकों के वर्चस्व की लड़ाई में खान सर बुरे फंस चुके हैं। पटना से शशि भूषण के साथ आज तक ब्यूरो।
5: और अब आपको दहशत की तस्वीर दिखाते हैं जो हरियाणा के पंचकुला से सामने आई है। यहां गोल्डी बराड और रोहित गोदारा गैंग के दो शूटर्स ने एक शख्स पर धुआंधार फायरिंग की है।
8: ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही है। दो बदमाश रात में करीब 1:15 बजे बाइक से आते हैं और पंचकुला के सेक्टर 5 में स्विस लाउंज के बाहर इस आदमी पर गोलियां बरसाते हैं। गोलियों की गूंज सुनकर आसपास के लोग जान बचाकर गिरते पड़ते भागते हैं, लेकिन इन दोनों बदमाशों के निशाने पर पार्षद के रिश्तेदार रतन लुबाना है। रतन लुबाना पर ये 8 राउंड गोलियां बरसाते हैं, जिनमें से एक गोली रतन को लगती है। रतन पर हमला करके ये बदमाश भागने लगते हैं, लेकिन तभी पेट्रोलिंग कर रही पुलिस की एक टीम इनका पीछा करती है। आगे के रास्ते पर नाकेबंदी कर दी गई और बेला विस्टा चौक के पास पुलिस बदमाशों को घेर लेती है। ये पुलिस पर भी फायरिंग करते हैं और जवाबी फायरिंग में इन दोनों के पैर में गोली लगी।
9: दोनों तरफ से फायरिंग हुई है, जिसमें पुलिस की तरफ से 4 राउंड फायर हुए हैं और उनकी तरफ से भी 4 राउंड फायर हुए थे। वहां पे फिर मौके पे जो शूटर्स थे, दे सस्टेन्ड बुलेट इंजरीज। फिर इमीडिएटली जो है इनको उपचार हेतु जिला जो अस्पताल है सेक्टर 6 का, वहां पहुंचाया गया।
8: अब दोनों आरोपी भी लुधियाना का रहने वाला जसविंदर और होशियारपुर का रहने वाला हरप्रीत अस्पताल में है। रतन का भी इलाज चल रहा है। दोनों शूटर गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा के गैंग के हैं। इस हमले के बाद रतन लुबाना के परिजनों को पुर्तगाल के नंबर से एक धमकी भरा फोन आया। फोन करने वाले ने खुद को रोहित गोदारा बताया।
10: भाई वो तो हॉस्पिटल में है।
11: कितनी गोलियां लगी है इसके?
10: भाई कुछ नहीं पता अभी तो।
8: अब पुलिस तफ्तीश कर रही है कि आखिर ये रतन लुबाना को क्यों मारना चाहते थे। कमलजीत संधू के साथ असीम बस्सी, पंचकुला, आज तक।
5: केंद्र की सियासत के साथ ही यूपी में 27 के चुनावों की सुगबुगाहट भी तेज हो चुकी है। जयंत चौधरी ने मुरादाबाद में रैली करके अपने चुनावी समर का आगाज कर दिया है। उधर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के साथ नगीना के सांसद भी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं।
12: समाजवादी पार्टी के गढ़ में ये आरएलडी की हुंकार है। ये समाजवादी पार्टी का वो किला है जिसे ध्वस्त करने की तैयारी कर रहे हैं जयंत चौधरी। 27 के समर की शुरुआत है ये। इधर जयंत तैयार हैं, तो उधर बहुजन समाज पार्टी में सेंध लगाने के लिए नगीना से सांसद चंद्रशेखर परिवर्तन रैली पर निकल पड़े हैं।
13: यात्रा पूरे उत्तर प्रदेश में चलेगी। दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी लगातार अब अपनी यात्रा के परे कैंडिडेट पर सीधा फोकस कर रही है और जल्द ही नए कैंडिडेट विधानसभा चुनाव के लिए उतारना शुरू कर देगी।
12: समाजवादी पार्टी पहले ही बैठकें कर रही है और मुद्दों को धार दे रही है। बीजेपी भी एक कदम आगे है, खुद मुख्यमंत्री मोर्चा संभाले हुए हैं। वो लॉ एंड ऑर्डर को लगातार मुद्दा बना रहे हैं।
14: हमने माफिया को भी समाप्त किया और मच्छर को भी समाप्त किया। ये मच्छर बीमारी लाता था, माफिया बेरोजगारी लाता था।
12: बीजेपी की ओर से भी साफ कहा जा रहा है कि यूपी में 27 का चुनाव बीजेपी सीएम योगी की अगुवाई में ही लड़ेगी।
15: मुख्यमंत्री जी हैं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आपको भी बताया है, आप तो सब जानते हैं, अखबार में छप चुका है।
16: तो उनके नेतृत्व में ही चुनाव में
15: आप जानते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष तो सर्वोच्च पद पर हमारी पार्टी के नेता है। वो
17: नेतृत्व मुख्यमंत्री का ही है।
12: मतलब यह है कि हर बीतते दिन के साथ यूपी में सभी दल अपने कील कांटे दुरुस्त करने में लग गए हैं। मुरादाबाद से समर श्रीवास्तव के साथ आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
5: और इसी के साथ हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
18: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

दिल्ली अग्निकांड पर सीएम रेखा गुप्ता ने बुलाई मंत्रियों के साथ हाई लेवल बैठक। पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी तलब, जांच अभियान तेज। 4 दिन की पुलिस रिमांड में मुख्य आरोपी लवकेश। दिल्ली में यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर की हत्या। घर में मिला शव, सिर में गहरी चोट के निशान, कलाई की नस काटी गई, गहने कैश सब सुरक्षित। बंगाल में सत्ता गंवाने के बाद मुश्किल में ममता बनर्जी। विधायकों के बाद अब सांसदों में फूट का दावा। टीएमसी सांसद सुखेंदु शेखर रॉय ने कहा, विधानसभा की तरह लोकसभा में भी लग सकता है झटका। राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 6 राज्यों के लिए 11 उम्मीदवारों का किया ऐलान। एमपी से तरुण चुग और राजस्थान से सतीश पुनिया का नाम। कांग्रेस की लिस्ट में खड़गे पवन खेड़ा और मीनाक्षी नटराजन। अमेरिका को पुतिन की सीधी चेतावनी। कहा, रूस के साथ संबंधों को लेकर भारत पर दबाव, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए खतरनाक। पीएम मोदी की तारीफ करते हुए भारत को बताया भरोसेमंद साझेदार।

नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं आशुतोष मिश्रा। सुबह के 6 बज चुके हैं। देश और दुनिया की हर खबर के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से के वसुंधरा एनक्लेव इलाके में दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक असिस्टेंट प्रोफेसर की हत्या से हड़कंप मच गया है। मृतक का नाम देवस्मिता पॉल है। शिवाजी कॉलेज में वो सहायक प्रोफेसर थी और वसुंधरा एनक्लेव के फ्लैट में अकेली रहती थी। प्राथमिक जांच के मुताबिक सिर पर गहरी चोट के निशान मिली है। डीयू के असिस्टेंट प्रोफेसर के हाथ की नस भी कटी हुई है। पुलिस कह रही है कि सिर पर किसी भारी चीज से वार किया गया है, लेकिन घर में गहने कैश सब कुछ सुरक्षित है। यानी यह हत्या चोरी या लूटपाट के बाद नहीं हुई है, ना ही चोरी या लूटपाट का कोई सुराग मिला है। पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही है, आरोपियों की तलाश की जा रही है और इस बात की भी जांच की जा रही है कि आखिर इसकी वजह क्या है। सर पर गहरी चोट है, यानी ये चोट पहुंचाई गई है। हाथ की नस कटी है, क्या ये खुदकुशी की कोशिश थी या फिर किसी ने इसे खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर जिनकी हत्या हुई है वसुंधरा एनक्लेव में, और पुलिस अब आगे इस मामले की जांच कर रही है। तो करते हैं अगली खबर का। दिल्ली अग्निकांड के मुख्य आरोपी लवकेश की तो गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन बाकी गुनहगार कहां हैं? क्या लवकेश की गिरफ्तारी से अग्निकांड का शिकार बने लोगों के परिजनों को इंसाफ मिल जाएगा? हादसे के कई घंटे गुजर चुके हैं। दिल्ली सरकार की तरफ से कड़े एक्शन के दावे किए गए हैं, लेकिन सवाल यह है कि अब तक सरकारी महकमों में बैठे जिम्मेदारों पर गाज क्यों नहीं गिरी? वो पुलिसकर्मी जिनके नाक के नीचे एक होटल चल रहा था, वो नगर निगम के लोग जिन्होंने ये जिम्मेदारी नहीं देखी कि आसपास ऐसे अवैध काम हो रहे हैं, वो तमाम सारे सरकारी ओहदों के लोग जिन पर अभी तक गाज नहीं गिरी। और नहीं गिरी तो आखिर क्यों?

0: हादसा हुआ तो जागी सरकार। सवाल नंबर एक, लवकेश पर पहले शिकंजा क्यों नहीं। 21 लोगों की दर्दनाक मौत के बाद दिल्ली सरकार की नींद टूटी। होटल का मालिक लवकेश बजाज सलाखों के पीछे पहुंच गया। हादसा हुआ तो जागी सरकार। सवाल नंबर दो, पहले खामियों को दूर क्यों नहीं किया। दिल्ली सरकार ने बेड एंड ब्रेकफास्ट पॉलिसी को रद्द करते हुए नई पॉलिसी बनाने का ऐलान किया है। हादसा हुआ तो जागी सरकार। सवाल नंबर तीन, पहले चेकिंग ड्राइव क्यों नहीं चलाई। दिल्ली में फिर ऐसा हादसा ना हो, इसके लिए राजधानी के सभी होटल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज की चेकिंग शुरू करने के आदेश दिए गए हैं। अगर होटल मालिकों के हिसाब से नहीं पाए गए तो उन्हें सीज करने की कार्रवाई की जाएगी। हादसा हुआ तो जागी सरकार। सवाल नंबर चार, अवैध होटलों पर अब ताला क्यों। दिल्ली सरकार के एक्शन का नतीजा ये हुआ कि तमाम अवैध होटलों पर ताला लटकने लगा है। लेकिन सवाल यही है कि क्या सिर्फ होटल मालिक लवकेश बजाज की गिरफ्तारी काफी है। अगर वक्त रहते लवकेश बजाज के होटल पर सरकारी महकमों ने शिकंजा कसा होता तो 21 लोगों की मौत नहीं हुई होती। इसका सबसे बड़ा सबूत आज तक के कैमरे में कैद है। अग्निकांड के चंद घंटों के बाद दिल्ली के तमाम इलाकों में अवैध तरीके से चल रहे होटलों पर अब ताला लटक रहा है। यानी कार्रवाई के डर से अवैध होटलों के मालिकों ने खुद ब खुद ताला लगा दिया।
1: ग्रीन रेसिडेंसी है, होटल है, जहां आग लगा वहां से बमुश्किल 300 मीटर की दूरी पर, और तस्वीर आपको बदली हुई ये दिखाई देगी कि अब यहां शटर डाउन दिखाई देगा। शटर लगा दिया गया है, जो लोग यहां रुके हुए थे उनको जाने के लिए कह दिया गया है। हाँ भैया, कोई है? स्टाफ आपको दिखाई नहीं देगा, अंदर सीसीटीवी कैमरा चल रहा है, एसी चल रहा है। जो लोग रह रहे थे वो एक एक करके उन्हें कहा गया कि आप होटल खाली कर दीजिए। और ये तस्वीर इस वजह से है क्योंकि अब डर है होटल मालिकों को कि एक्शन होने वाला है सरकार का। क्या इस होटल में कोई फायर एग्जिट है, ये सवाल बना हुआ है। फायर एग्जिट हमें कोई दिख नहीं रहा है। यहाँ नीचे बेसमेंट का रास्ता है, बेसमेंट पे ताला लगा हुआ है। ये वीनस इन देखिए, ठीक जो जिस होटल में आग लगा है वैसा ही स्ट्रक्चर ये है। सामने इस तरह की फैब्रिकेशन आपको दिखाई देगी और वेंटिलेशन होगा नहीं होगा ये सवाल बना रहेगा। दूसरी तरफ आपको एक लाइन से सारे जो एसी के यूनिट्स हैं वो दिखाई देंगे और ये समझना है अब हमें कि क्या वीनस इन पे मालिकों ने खुद से ताला जड़ दिया है या इंतजार कर रहे हैं अथॉरिटीज का आने का। ये दरवाजा है, दरवाजे पे आपको ताला दिखाई देगा। होटल की एंट्री बंद और होटल के ऊपर से बोर्ड गायब। डर ये है कि संभवतः अब जब एमसीडी का एक्शन होना है तो उस एक्शन में होटल सील ना हो जाए। एक सीसीटीवी का शायद ये तार था जिसको कोई केबल था, उस केबल को भी डिस्कनेक्ट करके रखा गया है। यहाँ से आप देख सकते हैं टेपिंग की गई है, इस पे ताला लगाया गया है, होटल के ऊपर ताला बंद है। तो अथॉरिटीज आए ताला सील करें, उससे पहले इन्होंने अपना ताला इस पे जड़ दिया है।
0: सवाल यही है कि ताला पहले क्यों नहीं लगा, क्यों कानून को ठेंगा दिखाने वाले लवकेश बजाज पर समय रहते कार्रवाई नहीं की गई। क्योंकि लवकेश बजाज को बेड एंड ब्रेकफास्ट पॉलिसी के तहत सिर्फ 6 कमरों का लाइसेंस मिला हुआ था, लेकिन फ्लरिश स्टे में 25 कमरे चल रहे थे, मतलब परमिशन से 4 गुना ज्यादा। यही नहीं, बेड एंड ब्रेकफास्ट पॉलिसी के लाइसेंस धारी को अपनी प्रॉपर्टी में रहना होता है, लेकिन लवकेश ने इस नियम का भी खुला उल्लंघन किया। वो अपनी इस आलिशान कोठी में रहता था।
2: जो होटल जिसमें आग लगी, 21 लोगों की मौत हुई, उसके मालिक का नाम लोकेश बजाज है, आलिशान कोठी है। ये देखिए बजाज लिखा हुआ है D140। और जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि इसी आलिशान कोठी में करोड़पति जो लोकेश बजाज है वो रहता है, उसके कई होटल हैं। और आज तक की टीम सबसे पहले यहां पर पहुंची है, जो जानकारी मिली है। दिल्ली पुलिस की टीम भी यहां पर पहुंची है, जो लोकल इलाके की पुलिस है वो यहां पर पहुंची है वेरिफिकेशन करने के लिए। सुबह भी यहां पर टीम आई थी। क्या दिल्ली पुलिस की टीम सुबह यहां पर आई थी?
3: हां आई थी सुबह।
2: लोकेश बजाज ही रहता है?
3: सुनने में आया, हम तो वैसे जानते नहीं है उसको पहले से तो, लेकिन अभी बताया कि यहाँ रहता है।
2: यहाँ रहता है। तो ये लोकेश बजाज की कोठी है जो जानकारी मिली है, जो लोकल पुलिस है वो भी वेरीफाई कर रही थी।
0: शुरुआती जांच में पता चला है कि जब मालवीय नगर में लोग आग की लपटों के बीच अपनी जान की भीख मांग रहे थे, तब लवकेश बजाज मौके पर मौजूद था, लेकिन लोगों को बचाने के बजाय लवकेश मौके से गायब हो गया। गिरफ्तारी से बचने के लिए लवकेश ने कई लोकेशन बदली, अपना मोबाइल स्विच ऑफ रखा, लेकिन कई घंटों की मशक्कत के बाद दिल्ली पुलिस ने लवकेश बजाज को गिरफ्तार कर लिया। आज लवकेश बजाज को पुलिस ने साकेत कोर्ट में पेश किया। अदालत ने पूछताछ के लिए लवकेश को 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया है।
2: लोकेश से पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए हैं। जानकारी मिली है कि लोकेश बजाज के कई होटल हैं, ज्यादातर होटल नियम और कानून को ताक पर रखकर चलाए जा रहे थे। इतना ही नहीं, लोकेश बजाज इतना शातिर है कि साल 2022 में उसने होटल लाइसेंस के लिए दिल्ली पुलिस की लाइसेंसिंग विभाग में अप्लाई किया था। दिल्ली पुलिस की लाइसेंसिंग विभाग ने होटल का लाइसेंस देने से मना कर दिया। उसके बाद उसने बेड एंड ब्रेकफास्ट के तहत लाइसेंस लिया और 6 कमरों की जगह 25 कमरे बनाकर पूरा का पूरा होटल चला रहा था।
0: दरअसल बेड एंड ब्रेकफास्ट पॉलिसी के तहत लाइसेंस दिल्ली पर्यटन विभाग जारी करता है, लेकिन इस पॉलिसी के तहत रजिस्ट्रेशन और निरीक्षण MCD के जरिए होता है। MCD के संबंधित विभागों की जिम्मेदारी ये चेक करना है कि लाइसेंस के मानकों का पालन हो रहा है या नहीं, लाइसेंसधारी बिल्डिंग में रह रहा है या नहीं, लेकिन MCD ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। ठीक ऐसे ही दिल्ली जल बोर्ड को पता था कि 6 कमरों की जगह 25 कमरों का होटल चल रहा है, पानी की खपत ज्यादा है, लेकिन दिल्ली जल बोर्ड के अफसर आंखें मूंद कर बैठे रहे। यही नहीं, BSES को भी पता था कि घरेलू मीटर पर कमर्शियल एक्टिविटी चल रही है। बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी ने भी चुप्पी साधे रखी, यानी तीनों एजेंसियां जिनके पास जानकारी थी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया।
4: वो कहते हैं ना कि ईज ऑफ डूइंग करप्ट बिजनेस के लिए भागीदारी जरूरी है, और भागीदारी जिनकी है उन गुनहगारों का कोई हिसाब हो ही नहीं रहा है। अब कहा यह जा रहा है कि अग्निकांड के एक एक गुनहगारों का हिसाब होगा, क्योंकि वो हिसाब जरूरी है। कई परिवार उजड़ चुके हैं। गुरुग्राम में रहने वाले विवेक अग्रवाल आज इस दुनिया में नहीं है। हादसे में सिर्फ विवेक अग्रवाल की मौत नहीं हुई बल्कि परिवार के 8 लोग मारे गए। आज एक घर से एक साथ 8 अर्थियां उठी। अग्रवाल परिवार ने दिल्ली सरकार से अपील की है और कहा है कि इंसाफ तभी मिलेगा जब एक एक दोषी पकड़ा जाएगा, लेकिन इतिहास गवाह है, बीते दिनों जितनी घटनाएं हुई हैं कमेटियां बनाई गई हैं, और जब जब कमेटियां बनती है ना, सिर्फ पर्दा डाला जाता है।
0: एक नहीं बल्कि शमशान घाट में एक परिवार के 5 लोगों का अंतिम संस्कार किया गया। ये गुरुग्राम में रहने वाले विवेक अग्रवाल का परिवार है। फ्लरिश स्टे में हुए हादसे में गुरुग्राम के अग्रवाल परिवार के 8 सदस्यों की मौत हो गई। परिवार के 5 सदस्यों का अंतिम संस्कार आज गुरुग्राम में किया गया, जबकि परिवार के 3 लोगों का राजस्थान में।
5: एक ही परिवार था, 8 लोगों की मौत हुई जिनमें से 5 को अभी अभी यहाँ मुखाग्नि दी गई है। ये मोक्ष धाम है गुरुग्राम का, जहाँ पे एक एक करके पार्थिव शरीर को लाया गया। यहाँ आप पिंडदान के टूटे हुए घड़े भी देख सकते हैं। यहाँ एक एक करके सबकी जो आखिरी क्रियाएं जो भी हो सकती थी वो की गई। आप समझ सकते हैं परिवार की क्या स्थिति रही होगी, जिसके 8 लोगों की मौत हो गई, 5 यहां लाए गए हैं क्योंकि बाकी जो परिवार के लोग हैं वो राजस्थान के रहने वाले थे, तो उनके पार्थिव शरीर को राजस्थान ही भेज दिया गया। लेकिन विवेक, उनकी पत्नी, उनकी 2 छोटी बेटियां और उनकी माताजी, उनके शरीर को यहीं लाया गया और यहीं पे उन्हें अग्नि दी गई है। अब सवाल ये बड़ा बनता है कि एक परिवार की जो इतनी क्षति हुई है उसके बाद कोई ना कोई इंसाफ तो मिलना चाहिए। अगर ये हुआ है तो जो शख्स इसके लिए जिम्मेदार है और जो महकमे के लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए।
0: हादसे में विवेक अग्रवाल, उनकी पत्नी तर्जनी और माँ हेमलता की जान चली गई। उनकी बेटियां जिविशा और वाद्या भी इस अग्निकांड की भेंट चढ़ गईं। मौसा जबरी लाल, मौसी कमला और मामा अशोक पंसारी की भी मौत हो गई। मौसा मौसी राजस्थान के अजमेर से आए थे, जबकि मामा किशनगंज से दिल्ली पहुंचे थे। किसे पता था जिस होटल में ठहरे थे वही होटल उन्हें बेमौत मार देगा। दरअसल विवेक के पिता राधेश्याम मैक्स अस्पताल में भर्ती थे। इलाज के चलते परिवार ने रोज गुरुग्राम से आने जाने के बजाय अस्पताल के करीब होटल में ठहरने का फैसला किया, लेकिन किसे पता था कि एक हादसा पूरे परिवार को उजाड़ देगा।
1: वो गाड़ी उसी हौजरानी में बीचों बीच सड़क पे खड़ी, ये वही मर्सिडीज कार है, यूपी नंबर की कार जिसका इस्तेमाल परिवार, विवेक का परिवार करता था। आज उनकी अंतिम क्रिया को गुरुग्राम में पूरा किया गया परिवार द्वारा, जो परिवार में लोग बचे हुए हैं, और आपको दिखाई देगा शीशा टूटा हुआ है, इस गाड़ी का कांच टूटा हुआ है, क्योंकि जब होटल में आग लगी तो उस वक्त संभवतः गाड़ी में आग ना लग जाए इसके लिए इसके कांच को तोड़कर आगे ले जाया गया। आगे एक हुक भी दिखाई देगा आपको, जिस हुक का इस्तेमाल करके गाड़ी को संभवतः आगे खींचा गया होगा। बीचों बीच फ्लरिशन से बमुश्किल 100-150 मीटर दूर ये गाड़ी इस वक्त इंतजार में है कि संभवतः कोई परिवार से आए और यहाँ से ले जाए।
0: अग्रवाल परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। एक हादसे ने सब कुछ छीन लिया। अब अग्रवाल परिवार की यही मांग है कि इन्हें दिल्ली सरकार से इंसाफ मिलना चाहिए।
6: हम ये चाहते हैं कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए कि गलती किसकी थी, किस वजह से हुआ, क्योंकि इस कारण तीन परिवार पूरे उजड़ गए। मेरे मौसा जी का पूरा परिवार लगभग खत्म हो चुका है। हम ये चाहते हैं इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और इस तरह के जो अवैध होटल चल रहे हैं वो सारे होटल बंद होने चाहिए।
5: बिल्कुल, सरकार की तरफ से अब कहा जा रहा है दिल्ली सरकार की कि वो एक्शन लेंगे। एक जांच भी बिठा दी गई है एलजी की तरफ से भी। क्या इससे संतुष्ट हैं या आप लोग चाहेंगे कि इसमें कोई हायर अथॉरिटीज और आगे भी इन्वॉल्व हों?
6: नहीं, हम ये चाहेंगे कि इसकी और उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए।
0: अग्रवाल परिवार की एक गुहार दिल्ली की रेखा सरकार से है। अपनों को खो चुका परिवार यही चाहता है कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में किसी और परिवार को ऐसा दर्द ना सहना पड़े। आज तक ब्यूरो।
4: मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई और मई से लेकर के जून, इन तीन महीनों में दिल्ली में तीन आग की बड़ी घटनाएं हुई। पहले पालम, फिर विवेक विहार और उसके बाद मालवीय नगर। तो ये सवाल उठता है कि आखिर ऐसे कितने लाक्षाग्रह देश की राजधानी में हैं, लेकिन क्या सिर्फ दिल्ली में ऐसी स्थिति है? जिस तरह दिल्ली के एक होटल में अग्निकांड में 21 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, उसके बाद से आज तक की टीम देश के अलग अलग शहरों में जाकर के होटलों का रियलिटी चेक कर रही है। हमने ये जानने की कोशिश की कि क्या सुरक्षा इंतजामों का पालन हो रहा है, क्योंकि अगर नहीं हो रहा है तो न जाने ऐसे कितने मालवीय नगर एक हादसे का इंतजार कर रहे। हमारी टीम ने मुंबई के होटलों में जाकर के देखा कि अगर कोई हादसा हुआ तो क्या वहां उससे निपटने के इंतजाम जरूरी हैं। देखिए रिपोर्ट।
7: दिल्ली में सिस्टम और नाकामी की लापरवाही से 21 लोगों की मौत से पूरे देश में आक्रोश है। राजधानी में दिल्ली में आग लगने से 21 लोगों की मौत हुई है, उसमें 13 लोग विदेशी नागरिक भी हैं। आगे ऐसे हादसे ना हो, इसलिए आज तक की टीम अलग अलग शहरों में होटलों में जाकर रियलिटी चेक कर रही है। हमारे संवाददाता दिव्येश सिंह दक्षिण मुंबई के बेलार्ड स्टेट के पास डॉल्फिन नाम के होटल में पहुंचे। इस 4 मंजिला इमारत में पर्यटकों के लिए रुकने की व्यवस्था है, साथ ही इसी बिल्डिंग में लड़कों का एक हॉस्टल भी है। जब कैमरे के बिना उनसे बात की गई तो होटल के मैनेजर या रिसेप्शन काउंटर पर मौजूद व्यक्ति ने पूछा कि हमें कितने कमरों की जरूरत है, लेकिन जब उन्हें बताया कि हम रियलिटी चेक कर रहे हैं तो उन्होंने बहाने बनाने शुरू कर दिए और हमें होटल से बाहर जाने को कह दिया।
1: इस वक्त हम मौजूद हैं बलार्ड स्ट्रीट दक्षिण मुंबई में। आप देख सकते हैं ये डॉल्फिन नामक एक होटल है, यहाँ पर हम रियलिटी चेक करने आए हैं कि क्या इनके पास परमिशंस है, किस तरीके से कोई वॉयलेशन यहाँ पे हो रहा है या नहीं। अंदर चलेंगे, आइए बातचीत करने की कोशिश करेंगे। एक आपके होटल के बारे में ये जानना है कि
8: अंदर अलाउड नहीं है? नहीं
1: नहीं, ये तो बताइए एंट्री और एग्जिट है, वो तो बताइए। कितने कमरों की परमिशन है आपके? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये डॉल्फिन नामक एक होटल है, बलार्ड स्टेट के पास है, और यहाँ पर हमने बातचीत करने की कोशिश की तो पहले कमरे देने की बात हुई, बट बाद में जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि अभी वो अलाउ नहीं कर रहे हैं बातचीत करने के लिए, और यहाँ से चले गए।
7: लेकिन होटल में आने जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था और रिसेप्शन एरिया में आग से सुरक्षा के कोई भी इंतजाम नहीं थे।
1: आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर मुझे एक ही एंट्री और एग्जिट भी दिखाई दे रही है, एक ही एंट्री है और एक ही एग्जिट है। पुराना होटल है और यहाँ पर हमें जब हमने विदाउट कैमरा बात करने की कोशिश की थी, उन्होंने बताया कि यहाँ पे बॉयज हॉस्टल भी चलता है, आपको कितने कमरे चाहिए उसके बारे में बात हुई। बाद में उन्होंने कहा कि कुछ काम चल रहा है और फिर जब हमने ऑन कैमरा बात करने की कोशिश की तो जो स्टाफ है उसने यहाँ पर मना कर दिया।
7: इसके बाद हमारी टीम दक्षिण मुंबई के ही पीडी मेलू रोड पर बने पेवेलियन डॉर्मेट्री पहुंची। सीएसएमटी टर्मिनस और इंदिरा डॉक्स के पास के इलाके में ऐसी कई डॉर्मेट्री हैं जो काम के सिलसिले में या थोड़े समय के लिए रुकने वाले लोगों को बेड देती है। ये डॉर्मेट्री ऐसी इमारत में बनी है जो 80 साल से भी ज्यादा पुरानी है। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट और बीएमसी से मिली मंजूरी के अनुसार इस डॉर्मेट्री में लगभग 20 बेड है। देखिए यहाँ रियलिटी चेक में क्या निकला।
1: हम इस वक्त है पेविलियन डॉर्मेट्री रूम्स जो कि पी डेमेलो रोड पर स्थित है और वहां के जो मैनेजर हैं, स्टाफ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर ये बताइए, दिल्ली में आग लगी होटल में, उनको 6 कमरे की परमिशन थी, उन्हें ज्यादा कमरे बना के रखे थे, फायर एनओसी नहीं था, फायर के रूल्स भी फॉलो नहीं कर रहे थे, आपके डॉर्मेट्री में क्या सब रूल्स फॉलो हो रहे?
9: जी हमारे पास सब सेफ्टी है
1: और फायर सेफ्टी पूरा प्रिकॉशन है।
9: जी फायर सेफ्टी हमारे पास है
1: और एंट्री और एग्जिट
9: जी सब सेफ्टी हमारे पास है।
1: एंट्री और एग्जिट के दो गेट है?
9: जी जो दो गेट है
1: और जितना आपको अलाउ है बेड रखने का उतना ही रखते हैं।
9: उतने हमारे पास उतना ही बेड है।
1: कितना अलाउड है आपको?
9: 20
1: 20 ही रखते हैं।
9: जी 20 ही रखते हैं।
1: पीएमसी और फायर चेकिंग के लिए आती है?
9: आती है।
1: और आपका नाम?
9: फिरतू चौरसिया, PHIRTOO,
1: फिरतू चौरस।
9: जी
1: तो ये थे फिरतू चौरसिया जो कि पेविलियन डॉर्मेट्री संभालते हैं। आप देख सकते हैं ये है पेविलियन डॉर्मेट्री, पी डी मेलो रोड पर स्थित है। फायर बॉक्स और फायर कंटेनमेंट सिस्टम, इसके अलावा एंट्री और एग्जिट, मतलब ये एक एंट्री है और पीछे की तरफ है एग्जिट, तो पीछे की तरफ एक एग्जिट है ऐसा ये बोल रहे हैं। और फायर सेफ्टी सिस्टम आप लोग चेक करवाते रहते हैं? फायर सेफ्टी सिस्टम
9: हर महीने चेक होता है
1: ऐसा इनका कहना है।
7: इस डॉर्मेट्री के स्टाफ ने दावा किया कि यहाँ बीएमसी और फायर डिपार्टमेंट की टीम नियमित समय पर आकर सुरक्षा इंतजामों को जांचती है। हमने अंदर जाकर ये जानने की कोशिश की कि अगर यहाँ आग लग जाए तो स्टाफ कैसे यहाँ रुके लोगों को सुरक्षित बाहर निकालेगा। देखिए आगे क्या हुआ।
1: तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फायर सेफ्टी का प्रिकॉशन रखा हुआ है, फायर
10: एमरजेंसी
1: गेट, इमरजेंसी गेट है ये, बट इसको लॉक करके रखा है आपने?
10: नहीं सर, लॉक इसलिए है, एसी चालू है ना।
1: अच्छा
10: जी सर,
1: नहीं मत ये खुला रखना पड़ता है।
10: जी, जी, जी।
1: तो इसको खुला रखना है, तो ये इमरजेंसी गेट तो इनके पास है, इन्होंने लॉक रखा हुआ है, बोल रहे हैं एसी है इसीलिए, बट इमरजेंसी गेट पीछे का दिखाई दे रहा है। पीछे एक गेट है, आगे एक गेट है और ये रहा फायर सेफ्टी सिस्टम।
7: सच तो ये है कि दिल्ली हो या मुंबई, अभी भी हजारों ऐसे होटल नियमों को ताक पर रखकर चल रहे हैं जिसमें ना तो फायर के एनओसी है और ना ही इमरजेंसी एग्जिट के इंतजाम। कई जगह तो बेसमेंट में ही कमरे बना दिए जाते हैं। सवाल है कि आखिर सरकार या प्रशासन समय रहते ऐसे अवैध तरीके से बनाए गए होटलों पर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? हमारा सिस्टम ऐसा क्यों है कि हम हादसों के बाद ही अलर्ट मोड पर आते हैं? दिव्येश सिंह, मुंबई आज तक।
4: अब खबरें सियासत से जुड़ी हुई। केंद्र की सियासत के साथ ही यूपी में 27 के चुनाव की सुगबुगाहट भी तेज हो रही है। जयंत चौधरी ने मुरादाबाद में रैली करके अपने चुनावी समर का आगाज कर दिया। उधर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के साथ नगीना के सांसद भी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं।
0: समाजवादी पार्टी के गढ़ में ये आरएलडी की हुंकार है। ये समाजवादी पार्टी का वो किला है जिसे ध्वस्त करने की तैयारी कर रहे हैं जयंत चौधरी। 27 के समर की शुरुआत है ये। इधर जयंत तैयार हैं, तो उधर बहुजन समाज पार्टी में सेंध लगाने के लिए नगीना से सांसद चंद्रशेखर परिवर्तन रैली पर निकल पड़े हैं।
11: यात्रा पूरे उत्तर प्रदेश में चलेगी। दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी लगातार अब अपनी यात्रा के परे कैंडिडेट पर सीधा फोकस कर रही है और जल्द ही नए कैंडिडेट विधानसभा चुनाव के लिए उतारना शुरू कर देगी।
0: समाजवादी पार्टी पहले ही बैठकें कर रही है और मुद्दों को धार दे रही है। बीजेपी भी एक कदम आगे है, खुद मुख्यमंत्री मोर्चा संभाले हुए हैं, वो लॉ एंड ऑर्डर को लगातार मुद्दा बना रहे हैं।
12: हमने माफिया को भी समाप्त किया और मच्छर को भी समाप्त किया। ये मच्छर बीमारी लाता था, माफिया बेरोजगारी लाता था।
0: बीजेपी की ओर से भी साफ कहा जा रहा है कि यूपी में 27 का चुनाव बीजेपी सीएम योगी की अगुवाई में ही लड़ेगी।
13: मुख्यमंत्री जी हैं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आपको भी बताया है, आप तो सब जानते हैं, अखबार में छप चुका है।
14: तो उनके नेतृत्व में ही चुनाव में
13: आप जानते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष तो सर्वोच्च पद पर हमारी पार्टी के नेता है, वो
15: नेतृत्व मुख्यमंत्री का ही है।

0: श्रीवास्तव लखनऊ आज तक।
1: वक्त एक छोटे से ब्रेक का, खबरें जा रही हैं, आप देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से।
3: हीरा धारण करने से वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आ सकती हैं? क्या हीरा धारण करने से आदमी का ग्लैमर बढ़ जाता है? शुक्र का चमत्कारी रत्न है हीरा, क्या है हीरे का प्रभाव और कैसे करें इसका प्रयोग, जानिए मेरे साथ सिर्फ।
4: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
2: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।

0: दिल्ली अग्निकांड पर सीएम रेखा गुप्ता ने बुलाई मंत्रियों के साथ हाई लेवल बैठक। पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी तलब, जांच अभियान तेज। 4 दिन की पुलिस रिमांड में मुख्य आरोपी लवकेश। दिल्ली में यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर की हत्या। घर में मिला शव, सिर में गहरी चोट के निशान, कलाई की नस काटी गई, गहने कैश सब सुरक्षित। बंगाल में सत्ता गंवाने के बाद मुश्किल में ममता बनर्जी। विधायकों के बाद अब सांसदों में फूट का दावा। टीएमसी सांसद सुखेंदु शेखर रॉय ने कहा, विधानसभा की तरह लोकसभा में भी लग सकता है झटका। राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 6 राज्यों के लिए 11 उम्मीदवारों का किया ऐलान। एमपी से तरुण चुग, राजस्थान से सतीश पुनिया का नाम। कांग्रेस की लिस्ट में खड़गे पवन खेड़ा और मीनाक्षी नटराजन। अमेरिका को पुतिन की सीधी चेतावनी। कहा, रूस के साथ संबंधों को लेकर भारत पर दबाव अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को के लिए खतरनाक। पीएम मोदी की तारीफ करते हुए भारत को बताया भरोसेमंद साझेदार। नमस्कार, ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं आशुतोष मिश्रा। एक बड़ी खबर यह गाजीपुर से। गाजीपुर में बुधवार की रात होटल कारोबारी विनीत राय की हत्या के आरोपी कमलेश बिंद को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। जब पुलिस पोस्टमार्टम के बाद शव लेकर गौसाबाद गांव पहुंची तो हालात तनावपूर्ण हो गए। 1 लाख के इनामी बदमाश कमलेश बिंद के एनकाउंटर को लेकर जमकर हंगामा हुआ है। परिजन उग्र हो गए हैं। पहले विरोध प्रदर्शन हुआ, महिलाओं ने नारेबाजी की और फिर देखते ही देखते भीड़ ने पुलिस पर हमला कर दिया। पत्थरबाजी शुरू हो गई। हमले में 5 पुलिस वाले घायल हुए हैं। पुलिस ने इस मामले में करीब 70 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। हालात नियंत्रित करने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल और आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। काफी मशक्कत के बाद भीड़ को शांत किया गया, अंतिम संस्कार करवाया गया। फिलहाल गांव में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं, जिसे देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। अगली खबर मोहाली से, जहां बेहद दिल दहलाने वाला वीडियो एक सामने आया है। एक निजी कंपनी में काम करने वाली 30 साल की युवती की उसके पूर्व साथी ने चाकू मारकर हत्या कर दी। दफ्तर में ही आरोपी ने युवती पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए। ये तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। आरोपी के हाथ में चाकू भी दिखाई दे रहा है। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने खुद पर भी चाकू से हमला किया। देखिए, ये उसकी साथी है, महिला साथी, और अचानक वो वहां पहुंचता है और उसके बाद ताबड़तोड़ हमले करता है। दफ्तर में काम करने वाले दूसरे सहयोगी ने उसे रोकने भी कोशिश की, लेकिन उसके बाद इस आरोपी ने खुद पर भी हमला कर दिया, आत्महत्या करने की कोशिश की। दोनों को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया है। डॉक्टरों ने युवती को मृत घोषित कर दिया। आरोपी की हालत नाजुक बनी हुई है। जांच में सामने आया है कि दोनों के बीच पहले प्रेम संबंध थे। सूत्रों के अनुसार करीब 6 माह पहले दोनों का ब्रेकअप हो गया था और इसके बाद से आरोपी हरविंदर मानसिक रूप से परेशान चल रहा था। बताया जा रहा है कि वो डिंपल से दोबारा संबंध बनाने का प्रयास भी कर रहा था, लेकिन युवती ने उससे दूरी बना ली थी और इसी से नाराज होकर खींच कर परमिंदर आता है अपनी ही उस महिला साथी जिससे वो कभी प्रेम करता था, उस पर चाकुओं से हमला कर दिया। बीच बचाव के लोग कोशिश करते हैं और उसके बाद परमिंदर खुद को आत्महत्या करने की कोशिश करता है। इस महिला की मौत हो गई। और अब आपको दहशत की वो तस्वीर दिखाते हैं जो हरियाणा के पंचकुला से आई है। यहां गोल्डी बराड़ और रोहित गुदारा गैंग के 2 शूटर्स ने एक शख्स पर धुआंधार फायरिंग कर दी।
1: ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही है। दो बदमाश रात में करीब 1:15 बजे बाइक से आते हैं और पंचकुला के सेक्टर 5 में स्विस लाउंज के बाहर इस आदमी पर गोलियां बरसाते हैं। गोलियों की गूंज सुनकर आसपास के लोग जान बचाकर गिरते पड़ते भागते हैं, लेकिन इन दोनों बदमाशों के निशाने पर पार्षद के रिश्तेदार रतन लुबाना है। रतन लुबाना पर ये 8 राउंड गोलियां बरसाते हैं, जिनमें से एक गोली रतन को लगती है। रतन पर हमला करके ये बदमाश भागने लगते हैं, लेकिन तभी पेट्रोलिंग कर रही पुलिस की एक टीम इनका पीछा करती है। आगे के रास्ते पर नाकेबंदी कर दी गई और बेला विस्टा चौक के पास पुलिस बदमाशों को घेर लेती है। ये पुलिस पर भी फायरिंग करते हैं और जवाबी फायरिंग में इन दोनों के पैर में गोली लगती है।
2: दोनों तरफ से फायरिंग हुई है, जिसमें पुलिस की तरफ से 4 राउंड फायर हुए हैं और उनकी तरफ से भी 4 राउंड फायर हुए थे। वहां पे फिर मौके पे जो शूटर्स थे दे सस्टेन्ड बुलेट इंजरीज, फिर इमीडिएटली जो है इनको उपचार हेतु जिला जो अस्पताल है सेक्टर 6 का वहां पहुंचाया गया।
1: अब दोनों आरोपी भी लुधियाना का रहने वाला जसविंदर और होशियारपुर का रहने वाला हरप्रीत अस्पताल में है। रतन का भी इलाज चल रहा है। दोनों शूटर गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा के गैंग के हैं। इस हमले के बाद रतन लुबाना के परिजनों को पुर्तगाल के नंबर से एक धमकी भरा फोन आया। फोन करने वाले ने खुद को रोहित गोदारा बताया।
3: भाई वो तो हॉस्पिटल में है।
4: कितनी गोलियां लगी है इसके?
3: भाई कुछ नहीं पता अभी तो।
1: अब पुलिस तफ्तीश कर रही है कि आखिर ये रतन लुबाना को क्यों मारना चाहते थे। कमलजीत संधू के साथ असीम बस्सी, पंचकुला, आज तक।
0: फरीदाबाद में जेवर एयरपोर्ट से जुड़े फ्लाईओवर निर्माण कार्य के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। तेज आंधी के कारण हाईवे निर्माण में लगी 2 बड़ी क्रेनें आपस में टकरा गईं। इस टक्कर के बाद दोनों मशीनें असंतुलित होकर नीचे गिर गईं। बताया जा रहा है कि इन मशीनों पर पूरे निर्माण कार्य का भार था, जिसके नीचे करीब 8 मजदूर दब गए। इस हादसे में अभी तक मरने वाले 3 लोगों की पुष्टि हुई है। एक युवक घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार दोपहर के समय क्षेत्र में तेज बारिश हुई थी, जिससे निर्माण स्थल पर काफी कीचड़ और फिसलन हो गई थी। बारिश रुकने के बाद मजदूर दोबारा निर्माण कार्य में जुटे और इसी दौरान गार्डर उठाने का काम किया जा रहा था। अचानक भारी क्रेन का संतुलन बिगड़ गया और कंटेनर पलट गया। दिल्ली अग्निकांड, जिसके मुख्य आरोपी लवकेश की गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन क्या यह सवाल नहीं उठता है कि बाकी के गुनहगार कहां हैं, जिनके नाक के नीचे अवैध होटल चल रहा था? क्या लवकेश की गिरफ्तारी से ही अग्निकांड का शिकार बने लोगों के परिजनों को इंसाफ मिल जाएगा? हादसे के कई घंटे गुजर चुके हैं। दिल्ली सरकार की तरफ से बड़े कड़े एक्शन के दावे भी किए गए हैं। सवाल ये है कि सरकारी महकमों में बैठे जिम्मेदारों पर गाज क्यों नहीं गिरी? दिल्ली पुलिस, DDA, नगर निगम, जल बोर्ड, ऐसी तमाम सारी वो एजेंसियां हैं जो कुल मिलाकर के दिल्ली की व्यवस्था देखती हैं। दिल्ली के वो दोषी कौन है, देखिए।

0: हादसा हुआ तो जागी सरकार। सवाल नंबर एक, लवकेश पर पहले शिकंजा क्यों नहीं। 21 लोगों की दर्दनाक मौत के बाद दिल्ली सरकार की नींद टूटी। होटल का मालिक लवकेश बजाज सलाखों के पीछे पहुंच गया। हादसा हुआ तो जागी सरकार। सवाल नंबर दो, पहले खामियों को दूर क्यों नहीं किया। दिल्ली सरकार ने बेड एंड ब्रेकफास्ट पॉलिसी को रद्द करते हुए नई पॉलिसी बनाने का ऐलान किया है। हादसा हुआ तो जागी सरकार। सवाल नंबर तीन, पहले चेकिंग ड्राइव क्यों नहीं चलाई। दिल्ली में फिर ऐसा हादसा ना हो इसके लिए राजधानी के सभी होटल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज की चेकिंग शुरू करने के आदेश दिए गए हैं। अगर होटल मालिकों के हिसाब से नहीं पाए गए तो उन्हें सीज करने की कार्रवाई की जाएगी। हादसा हुआ तो जागी सरकार। सवाल नंबर चार, अवैध होटलों पर अब ताला क्यों। दिल्ली सरकार के एक्शन का नतीजा ये हुआ कि तमाम अवैध होटलों पर ताला लटकने लगा है। लेकिन सवाल यही है कि क्या सिर्फ होटल मालिक लवकेश बजाज की गिरफ्तारी काफी है। अगर वक्त रहते लवकेश बजाज के होटल पर सरकारी महकमों ने शिकंजा कसा होता तो 21 लोगों की मौत नहीं हुई होती। इसका सबसे बड़ा सबूत आज तक के कैमरे में कैद है। अग्निकांड के चंद घंटों के बाद दिल्ली के तमाम इलाकों में अवैध तरीके से चल रहे होटलों पर अब ताला लटक रहा है। यानी कार्रवाई के डर से अवैध होटलों के मालिकों ने खुद ब खुद ताला लगा दिया।
1: ग्रीन रेसिडेंसी है, होटल है, जहां आग लगा वहां से बमुश्किल 300 मीटर की दूरी पर, और तस्वीर आपको बदली हुई ये दिखाई देगी कि अब यहां शटर डाउन दिखाई देगा। शटर लगा दिया गया है, जो लोग यहां रुके हुए थे उनको जाने के लिए कह दिया गया है। आ भैया कोई है? स्टाफ आपको दिखाई नहीं देगा, अंदर सीसीटीवी कैमरा चल रहा है, एसी चल रहा है। जो लोग रह रहे थे वो एक एक करके उन्हें कहा गया कि आप होटल खाली कर दीजिए। और ये तस्वीर इस वजह से है क्योंकि अब डर है होटल मालिकों को कि एक्शन होने वाला है सरकार का। क्या इस होटल में कोई फायर एग्जिट है, ये सवाल बना हुआ है। फायर एग्जिट हमें कोई दिख नहीं रहा है। यहाँ नीचे बेसमेंट का रास्ता है, बेसमेंट पे ताला लगा हुआ है। ये वीनस इन देखिए, ठीक जो जिस होटल में आग लगा है वैसा ही स्ट्रक्चर ये है। सामने इस तरह की फैब्रिकेशन आपको दिखाई देगी और वेंटिलेशन होगा नहीं होगा ये सवाल बना रहेगा। दूसरी तरफ आपको एक लाइन से सारे जो एसी के यूनिट्स हैं वो दिखाई देंगे। और ये समझना है अब हमें कि क्या वीनस इन पे मालिकों ने खुद से ताला जड़ दिया है या इंतजार कर रहे हैं अथॉरिटीज का आने का। ये दरवाजा है, दरवाजे पे आपको ताला दिखाई देगा। होटल की एंट्री बंद और होटल के ऊपर से बोर्ड गायब। डर ये है कि संभवतः अब जब एमसीडी का एक्शन होना है तो उस एक्शन में होटल सील ना हो जाए। एक सीसीटीवी का शायद ये तार था जिसको कोई केबल था, उस केबल को भी डिस्कनेक्ट करके रखा गया है। यहाँ से आप देख सकते हैं टेपिंग की गई है, इस पे ताला लगाया गया है, होटल के ऊपर ताला बंद है। तो अथॉरिटीज आए ताला सील करें, उससे पहले इन्होंने अपना ताला इस पे जड़ दिया है।
0: सवाल यही है कि ताला पहले क्यों नहीं लगा, क्यों कानून को ठेंगा दिखाने वाले लवकेश बजाज पर समय रहते कार्रवाई नहीं की गई। क्योंकि लवकेश बजाज को बेड एंड ब्रेकफास्ट पॉलिसी के तहत सिर्फ 6 कमरों का लाइसेंस मिला हुआ था, लेकिन फ्लरिश स्टे में 25 कमरे चल रहे थे, मतलब परमिशन से 4 गुना ज्यादा। यही नहीं, बेड एंड ब्रेकफास्ट पॉलिसी के लाइसेंस धारी को अपनी प्रॉपर्टी में रहना होता है, लेकिन लवकेश ने इस नियम का भी खुला उल्लंघन किया। वो अपनी इस आलिशान कोठी में रहता था।
2: जो होटल जिसमें आग लगी, 21 लोगों की मौत हुई, उसके मालिक का नाम लोकेश बजाज है, आलिशान कोठी है। ये देखिए बजाज लिखा हुआ है D-140। और जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि इसी आलिशान कोठी में करोड़पति जो लोकेश बजाज है वो रहता है, उसके कई होटल हैं। और आज तक की टीम सबसे पहले यहां पर पहुंची है, जो जानकारी मिली है। दिल्ली पुलिस की टीम भी यहां पर पहुंची है, जो लोकल इलाके की पुलिस है वो यहां पर पहुंची है वेरिफिकेशन करने के लिए। सुबह भी यहां पर टीम आई थी। क्या दिल्ली पुलिस की टीम सुबह यहां पर आई थी?
3: हाँ आई थी सुबह।
2: लोकेश बजाज ही रहता है?
3: सुनने में आया, हम तो वैसे जानते नहीं है उसको पहले से तो, लेकिन अभी बताया कि यहाँ रहता है वो।
2: तो ये लोकेश बजाज की कोठी है जो जानकारी मिली है, जो लोकल पुलिस है वो भी वेरीफाई कर रही थी।
0: शुरुआती जांच में पता चला है कि जब मालवीय नगर में लोग आग की लपटों के बीच अपनी जान की भीख मांग रहे थे, तब लवकेश बजाज मौके पर मौजूद था, लेकिन लोगों को बचाने के बजाय लवकेश मौके से गायब हो गया। गिरफ्तारी से बचने के लिए लवकेश ने कई लोकेशन बदली, अपना मोबाइल स्विच ऑफ रखा, लेकिन कई घंटों की मशक्कत के बाद दिल्ली पुलिस ने लवकेश बजाज को गिरफ्तार कर लिया। आज लवकेश बजाज को पुलिस ने साकेत कोर्ट में पेश किया। अदालत ने पूछताछ के लिए लवकेश को 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया है।
2: लोकेश से पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए हैं। जानकारी मिली है कि लोकेश बजाज के कई होटल हैं, ज्यादातर होटल नियम और कानून को ताक पर रखकर चलाए जा रहे थे। इतना ही नहीं, लोकेश बजाज इतना शातिर है कि साल 2022 में उसने होटल लाइसेंस के लिए दिल्ली पुलिस की लाइसेंसिंग विभाग में अप्लाई किया था। दिल्ली पुलिस की लाइसेंसिंग विभाग ने होटल का लाइसेंस देने से मना कर दिया। उसके बाद उसने बेड एंड ब्रेकफास्ट के तहत लाइसेंस लिया और 6 कमरों की जगह 25 कमरे बनाकर पूरा का पूरा होटल चला रहा था।
0: दरअसल बेड एंड ब्रेकफास्ट पॉलिसी के तहत लाइसेंस दिल्ली पर्यटन विभाग जारी करता है, लेकिन इस पॉलिसी के तहत रजिस्ट्रेशन और निरीक्षण MCD के जरिए होता है। MCD के संबंधित विभागों की जिम्मेदारी ये चेक करना है कि लाइसेंस के मानकों का पालन हो रहा है या नहीं, लाइसेंसधारी बिल्डिंग में रह रहा है या नहीं, लेकिन MCD ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। ठीक ऐसे ही दिल्ली जल बोर्ड को पता था कि 6 कमरों की जगह 25 कमरों का होटल चल रहा है, पानी की खपत ज्यादा है, लेकिन दिल्ली जल बोर्ड के अफसर आंखें मूंद कर बैठे रहे। यही नहीं, BSES को भी पता था कि घरेलू मीटर पर कमर्शियल एक्टिविटी चल रही है, बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी ने भी चुप्पी साधे रखी। यानी तीनों एजेंसियां जिनके पास जानकारी थी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया।
4: और अब बात भारत के चर्चित शिक्षक और YouTube एजुकेटर फैजल खान उर्फ खान सर की। खान सर की कोचिंग में फायरिंग का ऐसा अध्याय शुरू हुआ जिसमें अब वो बुरी तरह से उलझते नजर आ रहे हैं। बिहार की राजधानी पटना में खान सर और ज्ञान बिंदु कोचिंग विवाद में एक नया ट्विस्ट आ गया है।
5: अंदर एक भूख रहना चाहिए, ललक होना चाहिए, फिर आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती।

0: ये है फैजल खान, लेकिन पूरा भारत इन्हें खान सर के नाम से जानता है। खान सर को भारत के एक बेहद लोकप्रिय और प्रसिद्ध शिक्षक, यूट्यूबर और सोशल मीडिया स्टार माना जाता है।
1: बहुत दूर तक जाना पड़ता है ये जानने के लिए कि पासपोर्ट।
0: खान सर मुख्य रूप से बिहार के पटना में अपना कोचिंग सेंटर चलाते हैं और दावा करते हैं कि देश भर में अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी करने वाले करोड़ों छात्र उनसे ऑनलाइन और ऑफलाइन जुड़े हुए हैं। कठिन और जटिल विषयों को बहुत ही सरल, देसी और मजाकिया अंदाज में समझाना इनका स्टाइल है।
1: ना बाबू सोना, ना रोना धोना, सिंगल रहना।
0: क्योंकि पढ़ाने में खान सर रोजमर्रा की जिंदगी और स्थानीय भाषा का इस्तेमाल करते हैं।
1: फोन उठाने का टाइम टेबल बना दो।
0: खान सर का दावा ये भी है कि उन्होंने शिक्षा को व्यापार न मानकर एक हथियार बनाया है।
1: कि जिन लोगों ने पूरा जीवन बच्चों का शोषण कर करके फीस लिया,
0: उनके कोचिंग संस्थान खान ग्लोबल स्टडीज और खान सर ऑफिशियल ऐप पर बहुत ही न्यूनतम फीस में कोर्सेज उपलब्ध कराए जाते हैं। विज्ञान, भूगोल, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और राजनीति जैसे कठिन विषयों को सरल भाषा में समझाने वाले खान सर एक ऐसे मुश्किल चैप्टर में उलझ गए हैं जिसमें उनकी मुश्किलें अब बढ़ती जा रही हैं।
1: आपको ध्यान ये नहीं रखना कि पढ़ना कितना है, डिसाइड ये करिए पढ़ना क्या है।
0: खान सर के कोचिंग सेंटर पर गोलीकांड, अब क्या होगा अंजाम? दो कोचिंग सेंटर की लड़ाई, गोलीकांड की खुल गई सच्चाई। खान सर के दो गार्ड्स गिरफ्तार, कबूल ली गोली चलाने की बात। अब खान सर का क्या होगा? फायरिंग वाला चैप्टर भारी पड़ गया। क्या कोचिंग की लड़ाई में खान सर गोलीकांड पर फंस गए? यकीनन इस वक्त खान का भेजा घुमा हुआ होगा। कहां तो दो कोचिंग सेंटर में हुई क्रेडिट की लड़ाई में बड़े दावे के साथ खान सर ने चिल्ला चिल्ला कर दुनिया जहां को बता दिया कि उनके कोचिंग सेंटर में 10 राउंड गोलियां चली हैं। और ये गोलियां किसी और ने नहीं बल्कि उनके बगल वाली कोचिंग ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रोशन आनंद ने चलवाई है।
1: इसको गोली चलने पे मजा आता है, चारों ओर से गोली चल रहा था। उस समय कहाँ थे आप लोग? आते तब पूछते कि आपको कैसा लग रहा है।
2: सुरक्षा के लिए कहीं आवेदन दीजिए।
1: हम देंगे, यहाँ पे पुलिस तो आई है, यहाँ पे अब देखते हैं पुलिस का क्या इन्वेस्टिगेशन।
3: कौन हो सकता है इसके पीछे?
1: बगल की कोचिंग वाला है, सबको पता है कौन हो सकता है। यहाँ पे वो बयान भी दिया है, कहा कि खान सर का कोचिंग दो दिन में उड़ा देंगे।
3: इतनी क्या ऐसी है कि मतलब गोली चला जाए?
1: बात बस एक चीज है कि इतना रिजल्ट इतने कम फीस में क्यों हो रहा है।
0: खान सर चिल्ला चिल्ला कर मीडिया के कैमरों पर बोलते रहे कि कम फीस में बढ़िया रिजल्ट देने के चलते उन्हें टारगेट किया जा रहा है, गोलियां चलाकर उन्हें डराने की कोशिश की जा रही है।
1: अभी इन लोग का बस यही है कि इतने कम फीस में नहीं पढ़ाया जाए और इतने हजारों संख्या में जो रिजल्ट आता है पूरी तरह से इतनी गोली चलाने लगे। 10 मिनट में ऐसा लगा कि जैसे अफरा तफरी होके रख गया। यहाँ पर 8-10 राउंड तो हम देखे हैं, यहाँ पे 8-10 राउंड हम देखे हैं। हमें क्या पता है, अभी PMCH में एडमिट है, उसका पूरा सर फाड़ दिया गया है। यहाँ पर
4: क्या लगता है कौन क्या होगा?
1: बगल की कोचिंग वाले
3: सर, आप खुद मौजूद थे यहाँ जब फायरिंग हो रही थी?
1: बिल्कुल, ये देखिए मेरा गार्ड है ये।
3: अच्छा,
1: इसका ये पूरी तरह से खून से इसको लहूलुहान कर दिया गया। यहाँ पे
3: तो गार्ड से क्या दुश्मनी थी?
1: बस कि तुम ही खान सर को सब गार्ड है हमारा मार के रखता है।
0: खान सर को लगा कि कोचिंग के फायरिंग चैप्टर में उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी रोशन आनंद को उलझा दिया और पुलिस ने रोशन आनंद को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि कोचिंग सेंटर पर गोलीबारी के बयान से खान सर थोड़ी देर में ही पलट गए और तो और उन्होंने पुलिस को दी गई शिकायत में भी फायरिंग की बात नहीं कही।
1: देखिए उस समय इतना घटना हुआ, अभी जो घायल है जो मेन, हम लोग तो अंदर से भी अपने चैम्बर में थे, टीचर लोग क्लास ले रहे थे, जो गार्ड है उससे पूछा गया तो उसका कहना है कि सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, इतना मार के फोड़ दिया गया उसे।
0: लेकिन खान सर को नहीं पता था फायरिंग के चैप्टर में अब वही फंस गए हैं और उनके कोचिंग सेंटर में जो गोलियां चली उनका वीडियो बन चुका है। और जैसे ही सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल होता है खान सर की मुसीबत भी शुरू हो जाती है। खान सर के बॉडीगार्ड्स ने ही कोचिंग सेंटर में चलाई गोलियां। वायरल वीडियो में गोली चलाते हुए दिखे खान सर के बॉडीगार्ड। पुलिस ने खान सर के दो गार्ड्स को किया गिरफ्तार, अब पूछताछ जारी है। सोशल मीडिया पर फायरिंग वाला वीडियो वायरल होने पर पुलिस खान सर के कोचिंग सेंटर खान ग्लोबल स्टडीज पहुंचती है और उनके गार्ड्स को उठाकर ले जाती है और गोलीकांड के वायरल वीडियो से खान सर की पूरी पोल पट्टी खुल जाती है।
5: सबसे दिलचस्प मोड़ इस कहानी में बीती रात आया जब एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस वीडियो में खान सर के ही दो गार्ड्स ताबड़तोड़ फायरिंग करते नजर आए, जिसके बाद पटना पुलिस एक्शन में आई है। अब खान ग्लोबल स्टडीज के दो गार्ड्स को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे जो कार्रवाई की तलवार है वो फैसल खान पर लटकी हुई है।
6: खबर अब खाड़ी देशों से फैले तनाव की, जहां ईरान और अमेरिका के बीच लगातार बयानबाजी जारी है। इस बीच हमलों की नई तस्वीरें शांति की कोशिशों को झटका दे रही हैं।
7: ईरान के अमेरिकी युद्धपोत पर हमले के दावे करने वाली इन तस्वीरों ने एक बार फिर युद्ध विराम की कोशिशों को बड़ा झटका दिया है। ईरान का दावा है कि उसने समंदर में अमेरिकी कमांड और कंट्रोल सेंटर को निशाना बनाया है, जो एक युद्धपोत पर है, और वो ईरानी जल क्षेत्र के पास आ रहा था, जिसे अमेरिका ने पूरी तरह से खारिज कर दिया। इस बीच अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने चौंकाने वाला दावा किया है। अखबार ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के साथ चला आ रहा युद्ध विराम तोड़ सकते हैं। ट्रंप ने अपने सहयोगियों से निजी तौर पर कहा है कि अगर तेहरान अमेरिकी सैनिकों को मारता है तो वो ईरान के साथ संघर्ष विराम खत्म करने पर सोच सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जब सीज फायर को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने हास्यास्पद बयान दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया के उस हिस्से में जब गोलाबारी संभल कर की जाए तो उसे सीज फायर कहते हैं।
8: How do you define ceasefire?
9: Pretty much the way it is. It's a different part of the world. You know, I'd say in that part of the world, ceasefire is when you're shooting in a more moderate manner.
7: अब सवाल ये है कि आखिर इस तरह के तनाव के बीच युद्ध विराम कैसे होगा, जिसकी संभावना कम ही नजर आ रही है। आज तक ब्यूरो।
6: वक्त एक ब्रेक का है, खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए आज तक।
10: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
11: हीरा धारण करने से वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आ सकती हैं? क्या हीरा धारण करने से आदमी का ग्लैमर बढ़ जाता है? शुक्र का चमत्कारी रत्न है हीरा, क्या है हीरे का प्रभाव और कैसे करें इसका प्रयोग, जानिए मेरे साथ सिर्फ।
12: This is the sound of Claire cooking dinner at home, and that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge, and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
13: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
10: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.

दिल्ली अग्निकांड पर सीएम रेखा गुप्ता ने बुलाई मंत्रियों के साथ हाई लेवल बैठक। पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी तलब, जांच अभियान तेज। 4 दिन की पुलिस रिमांड में मुख्य आरोपी लवकेश। दिल्ली में यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर की हत्या। घर में मिला शव, सिर में गहरी चोट के निशान, कलाई की नस काटी गई, गहने कैश सब सुरक्षित। बंगाल में सत्ता गंवाने के बाद मुश्किल में ममता बनर्जी। विधायकों के बाद अब सांसदों में फूट का दावा। टीएमसी सांसद सुखेंदु शेखर रॉय ने कहा, विधानसभा की तरह लोकसभा में भी लग सकता है झटका। राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 6 राज्यों के लिए 11 उम्मीदवारों का किया ऐलान। एमपी से तरुण चुग और राजस्थान से सतीश पुनिया का नाम। कांग्रेस की लिस्ट में खड़गे, पवन खेड़ा और मीनाक्षी नटराजन। अमेरिका को पुतिन की सीधी चेतावनी। कहा, रूस के साथ संबंधों को लेकर भारत पर दबाव अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए खतरनाक। पीएम मोदी की तारीफ करते हुए भारत को बताया भरोसेमंद साझेदार।

देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हीरा हर व्यक्ति को आकर्षित करता है और हीरा पहनना लोग अपनी शान समझते हैं और सौंदर्य के लिए इसको धारण करते हैं। ज्योतिष क्या कहता है हीरे के बारे में, किनको हीरा पहनना चाहिए और किनको हीरा नहीं पहनना चाहिए, आज इस विषय पर बात करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग।

2026 दिन शुक्रवार, तिथि है अधिक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि, नक्षत्र है श्रवण नक्षत्र, चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय प्रातः 10:30 से दोपहर 12 बजे तक, पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आज बात कर रहे हैं डायमंड की, यानी हीरे की। हीरा किसी परिचय का मोहताज नहीं है और दुनिया भर में तमाम लोग हीरे के बारे में जानते हैं। ज्योतिष हीरे के बारे में क्या कहता है और ज्योतिष का हीरे से क्या संबंध है, पहले वो जानते हैं। देखिए, हीरा नवरत्नों में सबसे मूल्यवान और सबसे कठोर माना जाता है। कार्बन कंपाउंड है। आम व्यक्ति इसको सौंदर्य की वजह से, इसकी कीमत की वजह से, दिखावे की वजह से बहुत प्रयोग करते हैं। ज्योतिष में हीरे को शुक्र का रत्न माना जाता है और ज्योतिष में हीरे को वज्र मणि भी कहते हैं। इसको धारण करने से अगर ये सूट करे तो जीवन में सुख, सौंदर्य और संपन्नता की प्राप्ति होती है। जब आप हीरा पहनते हैं तो ये आपके वैवाहिक जीवन पर और आपके ब्लड सर्कुलेशन पर, आपके रक्त पर सीधा असर डालता है। जीवन में शुक्र से लाभ लेने के लिए और जीवन में ग्लैमर बढ़ाने के लिए हीरा पहनना बहुत अच्छा होता है, लेकिन बिना जानकारी के या बिना किसी ज्योतिषी के सलाह के हीरा धारण नहीं करना चाहिए, अन्यथा ये जीवन में समस्या बढ़ा सकता है, जीवन में विध्वंस मचा सकता है। हीरा एक ऐसा रत्न है जो आपके मन, भावना, रिश्ते, ब्लड सर्कुलेशन, यूरिनरी ऑर्गन, इन सब चीजों पर तुरंत असर डाल देता है। इसलिए अगर नुकसान करेगा तो आपको भावनाओं में, रिश्तों में समस्या होनी शुरू हो जाएगी। हीरे पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ रहेगा।

राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन का लाभ हो सकता है, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धार्मिक कार्य में व्यस्त रहेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज

पर परेशान ना हूं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। मिथुन राशि, पारिवारिक समस्या हो सकती है, वाहन सावधानी से चलाएं, लिखा पढ़ी में सावधानी बनाए रखें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। देखिए, ऐसा नहीं है कि आपका मन किया आप उठे और बाजार जाके हीरा ले आए और पहन लिया। हीरा धारण करने में कुछ सावधानियों का पालन करना चाहिए। क्या सावधानियां हैं? बिना परामर्श के केवल फैशन और दिखावे के लिए हीरा धारण मत करिए। अगर आपको डायबिटीज रहती है अनकंट्रोल्ड, या रक्त की समस्या है, थैलीसीमिया जैसी प्रॉब्लम है, तो भी बहुत सोच समझकर, बहुत सलाह लेकर तभी हीरा पहनिएगा। उम्र के 21 वर्ष के बाद और 50 साल के पहले अगर आप हीरा पहने तो ज्यादा अच्छा है। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में समस्याएं हैं और शुक्र आपकी कुंडली में जरा भी निगेटिव है तो हीरा धारण करने से वैवाहिक जीवन की दिक्कतें बढ़ सकती हैं। इसीलिए हीरा तभी पहनिए जब इसका बुरा प्रभाव आपके वैवाहिक जीवन पर ना पड़े। हीरा जितना ज्यादा सफेद हो उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। दाग वाला हीरा या टूटा हुआ हीरा जीवन में अपयश दे सकता है, बदनामी दे सकता है, दुर्घटना का या शरीर में ब्लॉकेज का कारण बन सकता है। जब भी आप हीरा धारण करें उसके साथ मूंगा या गोमेद ना पहने। अगर आप हीरे के साथ मूंगा या गोमेद पहनेंगे तो आपका चरित्र पतन हो सकता है, आप बदनामी के शिकार हो सकते हैं। इसीलिए भूल कर भी हीरे के साथ मूंगा या गोमेद नहीं पहनना चाहिए। हीरे पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, करियर में नए अवसर मिलेंगे,
किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। सिंह राशि करियर

उत्तम रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन की स्थिति में सुधार होगा, परिवार में विवादों से बचाव करें, माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर ज्योतिष के माध्यम से आप किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं भाग्यचक्र@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न विक्रम जी ने हमें लिखा है और विक्रम जी हमें मेल लिखते हैं गाजियाबाद से। इनकी जन्म की तारीख है 11 जुलाई 1978। जन्म का समय शाम के 7:42। जन्म स्थान है कानपुर। विक्रम जी कह रहे हैं कि काफी समय से मैं बेहतर नौकरी की तलाश कर रहा हूं लेकिन मुझे बेहतर नौकरी नहीं मिल पा रही है, एवरेज नौकरी चल रही है, आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है। विक्रम जी, सबसे पहले बता दूं कि आप नौकरी बदलने का प्रयास इस साल के अक्टूबर के बाद करिएगा। साल 2026

बेहतर नौकरी में जा सकेंगे। हालांकि उसके साथ आपका स्थान परिवर्तन भी होता हुआ दिख रहा है। कुल मिला जुला के अगर हम देखें तो अप्रैल 2027 के बाद जो आपकी स्थिति है वो काफी बेहतर दिखाई दे रही है। वहां से जीवन में सुधार होता हुआ दिख रहा है। एक ओपल बनवा करके पहन लें, 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहने, सुबह और शाम दोनों समय एक एक बार संकट मोचन हनुमानाष्टक का अगर पाठ करें तो आपको लाभ होगा। अब ये जानते हैं कि अगर हीरा आपको सूट करे, आपको फायदा पहुंचाए, तो किन किन मामलों में हीरा बहुत लाभकारी होता है। देखिए, हीरा अगर सूट करे तो ग्लैमर देने में, सौंदर्य बढ़ाने में और नाम यश देने के मामले में हीरा लाभकारी होता है। प्रेम के मामले में और दाम्पत्य जीवन के मामले में भी हीरा धारण करने से लाभ होता है। अगर सूट करे तो प्रेम का मामला, दाम्पत्य जीवन का मामला बेहतर हो जाता है। अगर आपको हीरा लाभ पहुंचाए तो डायबिटीज के मामले में आपको अच्छा फायदा पहुंचा सकता है, लेकिन बहुत सोच समझकर पहनिएगा। हीरे को अगर आप अंगूठे में पहने, थंब में पहने या तर्जनी उंगली में, इंडेक्स फिंगर में पहने तो शुक्र हर प्रकार से लाभकारी होता है। अगर आप हीरा अनामिका अंगुली में पहनते हैं तो इस तरह हीरा पहनने से प्रेम के मामलों में और रिश्तों के मामलों में लाभ ज्यादा होता है। हीरे पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में अंत में हम आपको बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाएगा और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और इसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी, धन के खर्चे बढ़े रहेंगे, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। वृश्चिक राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, छोटी यात्रा हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। धनु राशि, स्थान परिवर्तन हो सकता है, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, परिवार में शांति बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं
वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। अब आपको बताते हैं कि किन लोगों के लिए हीरा धारण करना शुभ होता है और किनके लिए हीरा धारण करना अशुभ होता है। मेष लग्न, सिंह लग्न, वृश्चिक लग्न, धनु लग्न और मीन लग्न में हीरा धारण करना शुभ नहीं होता। वृषभ लग्न, मिथुन लग्न, कन्या लग्न, तुला, मकर और कुंभ लग्न में हीरा धारण करना सामान्यतः शुभ होता है लग्न के हिसाब से। कर्क लग्न में विशेष दशाओं में आप हीरा धारण कर सकते हैं। देखिए, लग्न के अलावा अगर किसी ग्रह को काउंटर करना है, जैसे अगर बृहस्पति को काउंटर करना है, तो आप हीरा पहन सकते हैं, या विशेष दशाओं में स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए, किडनी की समस्याओं को कंट्रोल करने के लिए, ग्लैमर फील्ड में सफलता पाने के लिए सलाह लेकर आप हीरा पहन सकते हैं। जो लोग आध्यात्म के क्षेत्र में उन्नति चाहते हैं, उनको हीरा नहीं पहनना चाहिए। जो लोग ग्लैमर के क्षेत्र में हैं, फिल्म या मीडिया के क्षेत्र में हैं, उनको हीरे से फायदा हो सकता है, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि हीरा पहनने के पहले ज्योतिषी से सलाह ले लें, और अगर आपकी कुंडली के लिए सुटेबल हो तभी हीरा पहनना आपके लिए बेहतर होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज के दिन कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा, महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। कुंभ राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, वाद विवाद से बचाव करें, करियर में कोई जोखिम ना लें, सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। मीन राशि, करियर में सफलता मिलेगी, धन की स्थिति में सुधार होगा, परिवार में शुभ कार्य होंगे, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं।
लोगों का ऐसा मानना है कि अगर जीवन में धन की समस्या हो तो माता वैभव लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। क्या ऐसा है? देखिए, पहले आपको बता दूं कि माता वैभव लक्ष्मी कोई शास्त्रगत देवी नहीं है, लोक मान्यताओं की देवी हैं। शास्त्र में इनका उल्लेख नहीं है। शास्त्रों में माता लक्ष्मी के अलग 8 स्वरूपों का उल्लेख है जिनको अष्ट लक्ष्मी कहा जाता है।

ने का नंबर एक से लेके नंबर नौ तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर एक, करियर में कुछ परिवर्तन होगा। नंबर दो, स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें। नंबर तीन, धन खर्च परेशान कर सकता है। नंबर चार, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। नंबर पांच, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर छह, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर सात, करियर में लाभ के योग हैं। नंबर आठ, कोई शुभ सूचना मिल सकती है। नंबर नौ, चोट चपेट से सावधान रहें। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है रात के 9 बजे से 10:30 तक। इस समय में माता लक्ष्मी के मंत्र का जप करें, ओम श्रीं श्रियै नमः। अगर इस मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें तो ऐसा करने से धन संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें भाग्यचक्र@aajtak.com पर। अगला प्रश्न सुमन लता जी ने हमें लिखा है और सुमन लता जी हमें मेल लिखती हैं रांची झारखंड से। इनकी जन्म की तारीख है 26 मार्च 1982। जन्म का समय शाम के 5:10। जन्म का स्थान है धनबाद झारखंड। में लिखती हैं रांची से। सुमन कह रही हैं कि मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा नहीं रहता है, बार बार मेरे साथ दुर्घटनाएं भी होती हैं और मुझे तनाव की आदत भी बहुत है, तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरा स्वास्थ्य और मेरा जीवन बेहतर हो जाए। सुमन लता जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी ज्यादातर समस्या देखिए मानसिक है। स्वास्थ्य में केवल एक ही दिक्कत है, वो है आपका डाइजेशन। तो आपको खान पान पर थोड़ा ध्यान देना होगा, अपनी चिंताएं थोड़ी कम करनी होंगी। अगर तनाव कम पालें, चिंता कम करें तो स्थितियां आपकी बेहतर होती चली जाएंगी। एक पन्ना बनवा करके पहन लें, 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा करके धारण करें। सुबह और शाम दोनों समय राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें और महीने में 2 एकादशी आती है, दोनों एकादशियों का अगर आप उपवास रखें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें? परीक्षा है, इंटरव्यू है, कोई मीटिंग है, ऐसा क्या करके घर से निकलें कि सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है, दही खाकर घर से जाइए, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है, मिश्री खाकर घर से जाइए, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो अपने साथ एक गुलाब का फूल रख करके जाइएगा, काम बन जाएगा। अगर

के पास या हॉस्पिटल जाना है इलाज के लिए तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर आज कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन, भूमि, भवन, आभूषण, तो गुलाबी रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का, तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान।

राशि वालों के लिए हर कार्य में सफलता मिलेगी, धन का लाभ होगा। आज का दिन मंगलमय होगा। मेष राशि वालों के लिए रुके हुए काम पूरे होंगे, चिंताएं समाप्त होंगी। और आज सावधान रहना होगा। तुला राशि वालों को तनाव बढ़ सकता है, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। अब जान लेते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन क्या करें क्या ना करें। इस समय अधिक मास चल रहा है, इसलिए आज भी किसी नए कार्य का आरंभ ना करें। आज किसी निर्धन व्यक्ति को जल का और सफेद मिठाई का अगर दान करें तो आपके लिए बेहतर होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

0: मालवीय नगर अग्निकांड पर सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा एक्शन, आज बुलाई हाई लेवल मीटिंग, अधिकारियों की तय होगी जवाबदेही। बैठक में दिल्ली पुलिस, राजस्व विभाग, नगर निगम, अग्निशमन विभाग और दिल्ली जल बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। दिल्ली सरकार ने अवैध होटलों, गेस्ट हाउसों, अनाधिकृत निर्माणों और अग्नि सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के खिलाफ एक सख्त अभियान चलाने की घोषणा की है। अग्निकांड में हादसे के पास होटल के पास एनसीडी का सिर्फ टी एंड स्नैक्स का लाइसेंस था, 31 मार्च को उसकी वैधता भी खत्म हो चुकी थी। 4 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा गया मुख्य आरोपी और होटल के मालिक लवकेश को, होटल के मैनेजर और अकाउंटेंट की तलाश अभी भी जारी है। आज सूरत और केंद्र शासित प्रदेश दमन के दौरे पर होंगे प्रधानमंत्री मोदी। इस दौरान यात्रा में पीएम मोदी 22,600 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे की शुरुआत दोपहर में हीरा नगरी सूरत से होगी। करीब 2:30 बजे हजीरा में महत्वपूर्ण औद्योगिक बुनियादी ढांचे और परिचालन की समीक्षा करेंगे। स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूती देते हुए सूरत में 24 घंटे ट्रामा केयर और केंद्रीय प्रयोगशालाओं से लैस 200 बिस्तरों वाले आधुनिक अस्पताल का उद्घाटन होगा। दमन को मिलेगी नई हवाई अड्डे की सौगात, शाम 6 बजे हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। नए हवाई अड्डे से दमन में पर्यटन को फायदा होगा। दमन के कार्यक्रम से पीएम मोदी वर्चुअली लक्षद्वीप के लिए 885 करोड़ की बंदरगाह परियोजना की नींव रखेंगे। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को झटके पे झटका, टीएमसी से बागी नेता ऋतव्रत के निलंबन को स्पीकर ने गलत बताया। ऋतव्रत ने अपने गुट को असली तृणमूल कांग्रेस कहा है। ममता और टीएमसी पर बंगाल के कैबिनेट मंत्री दिलीप घोष का तंज, कहा भ्रष्टाचार पर बनी पार्टी का तय था टूटना, हमारे लिए अब सभी दरवाजे बंद हैं। ममता बनर्जी के खिलाफ कोलकाता में अखिल भारतीय हिंदू महासभा की ओर से पुलिस में शिकायत की गई है, राजद्रोह का मामला दर्ज करने की अपील की गई है। ममता बनर्जी पर आरोप है कि बांग्लादेशी विद्रोही छात्र नेता उस्मान हादी की हत्या के आरोपी के भारत भागने की बात कही। ममता और टीएमसी पर बंगाल के कैबिनेट मंत्री दिलीप घोष ने तंज कसते हुए कहा कि भ्रष्टाचार पर बनी पार्टी का तय था टूटना, हमारे सभी दरवाजे अब तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के लिए बंद हैं। एजेयूपी के संस्थापक हुमायूं कबीर ने पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को विधानसभा में वापसी का खुला प्रस्ताव दिया है। कबीर ने ममता के लिए रेजीनगर सीट खाली करने की पेशकश की है। हुमायूं कबीर ने कहा कि नंदीग्राम से ममता बनर्जी की जीत अब मुश्किल हो सकती है, लेकिन रेजीनगर से वो आसानी से विधानसभा पहुंच सकती है। हुमायूं कबीर का बड़ा बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि पार्टी की दयनीय स्थिति के लिए अभिषेक बनर्जी मुख्य वजह है। बंगाल नतीजों के बाद अब मानसून सत्र में फिर से परिसीमन विधेयक पेश कर सकती है सरकार। सहमति बनाने के लिए डीएमके और तृणमूल कांग्रेस से बातचीत की खबर है। बिल के लिए नए मसौदे का इंतजार किया जा रहा है। आज असम में कैबिनेट का एक्सपेंशन होना है। असम में 12 नए मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे मुख्यमंत्री। हेमंत बिश्व शर्मा ने सभी के नाम जारी कर दिए। बीजेपी ने राज्यसभा के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी ने अरुणाचल प्रदेश से ताई तागा को उम्मीदवार बनाया है। गुजरात से 4 कैंडिडेट को टिकट दिया है। इसके अलावा पार्टी ने एमपी से तरुण चुग, रजनीश अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया है। मणिपुर से शारदा देवी को, राजस्थान से डॉक्टर अलका गुर्जर और सतीश पुनिया को जिम्मेदारी सौंपी गई है। कांग्रेस ने भी राज्यसभा चुनाव के लिए 5 राज्यों से 7 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। कर्नाटक से खड़गे, पवन खेड़ा और मंसूर अली खान मैदान में होंगे। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश से वरिष्ठ नेता मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार बनाया है। राजस्थान से नीरज डांगी को एक बार फिर राज्यसभा के लिए मैदान में उतारा गया है। इंडिया गठबंधन में अब दरार खुलकर सामने आ रही है। 8 जून को होने वाली बैठक में डीएमके शामिल नहीं होगी। कांग्रेस की मौजूदगी से नाराज पार्टी ने फैसला लिया। कांग्रेस पर भड़के डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन ने धोखेबाज कहा, विधानसभा चुनाव के बाद हम उनकी करनी नहीं भूल सकते। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में 17 सीटों में से 5 सीटों पर महायुति के निर्विरोध जीत तय। विपक्षी उम्मीदवारों ने गुरुवार को अपना नामांकन वापस ले लिया। दिल्ली पुलिस में बड़ा फेरबदल किया गया है। 34 IPS और डायनिप्स अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है। दिल्ली मेयर कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। धमकी भरे संदेश में दिल्ली और हरियाणा के कई स्थानों पर हमले की चेतावनी दी गई। ईमेल में दावा किया गया है कि 5 और 6 जून को दिल्ली चंडीगढ़ अंबाला रेलवे ट्रैक पर आईडी विस्फोट किए जाएंगे। साथ ही लोगों को यात्रा न करने की चेतावनी भी दी गई है। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद और अलर्ट है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत की आर्थिक प्रगति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की खुलकर प्रशंसा करते हुए कहा कि भारत आज दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। व्लादिमीर पुतिन ने भारत की तारीफ करते हुए सबसे तेज आर्थिक विकास दर दर्ज करने वाले देशों में से एक बताया। भारत को रूस का एक भरोसेमंद और विश्वसनीय साझेदार बताया। अमेरिका पर निशाना साधते हुए पुतिन ने कहा कि अमेरिका का प्रधानमंत्री मोदी पर दबाव डालना बेकार है। अमेरिका से उसके बढ़ते संबंधों से भारत रूस की पार्टनरशिप पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना अच्छा दोस्त बताया और उनकी तारीफ की। कहा कि वाशिंगटन और नई दिल्ली के बीच जल्दी ही एक व्यापारिक समझौता हो जाएगा। ट्रंप ने कहा कि पहले व्यापार में पिछड़े असंतुलन के बावजूद उन्हें पूरा विश्वास है कि अमेरिका और भारत के बीच आखिरकार कोई समझौता होगा। व्यापार में अमेरिका को खूब मुनाफा हो रहा है। पीएम मोदी ने अहमदाबाद में आयोजित प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप का उद्घाटन करते हुए कहा कि अहमदाबाद की धरती से विश्व की खेल विरासत में अब एक नया अध्याय जुड़ा है। पीएम ने दुनिया में योग की बढ़ती लोकप्रियता को सराहते हुए कहा कि योग मानवता के लिए सबसे बड़ा तोहफा है। गुजरात में हुई इस प्रतियोगिता में 60 से ज्यादा देशों के 500 से ज्यादा एथलीट हिस्सा लेंगे। 7 कैटेगरी में अपनी कला और एथलीटिज्म का प्रदर्शन करेंगे। उत्तराखंड के चमोली में 5,807 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गुप्तखाल ट्रैकिंग कर जोशीमठ लौटा इस साल का पहला ट्रैकिंग दल। खराब मौसम की चुनौती को पार किया। कमशाली से 26 मई को गुप्तखाल के लिए रवाना हुआ था यह दल। इसमें 60 ट्रैकर शामिल थे। 10 दिन का यह ट्रैकिंग अभियान था। नागपुर में आरएसएस कार्यकर्ता विकास वर्ग का समापन समारोह। संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला भी शामिल हुए। संघ के कार्यक्रम में बोले कुमार मंगलम बिरला, 83,000 शाखाओं और 60 लाख स्वयंसेवकों का संगठित होकर एक दिशा में काम करना अपने आप में बेहद अभूतपूर्व है। उत्तरकाशी के नौगांव विकासखंड में महिलाओं को संगठित कर स्वरोजगार, हस्तशिल्प, स्थानीय उत्पाद आधारित उद्यमों से जोड़ने का अभियान चलाया गया है। उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से बढ़ावा दिया जा रहा है। पुलिस एनकाउंटर में मारे गए 1 लाख के इनामी कमलेश बिंद का शव पहुंचते ही गाजीपुर में बवाल मचा। शव देखकर के परिजन और महिलाएं ग्रामीण आक्रोशित हो गए। पुलिस से झड़प हुई। भारत के T20 टीम के कप्तान बनाए गए श्रेयस अय्यर सूर्य कुमार यादव की जगह लेंगे। आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज होनी है। इसी गुरुवार को राजधानी दिल्ली में मौसम का मिजाज अचानक बदल गया। झमाझम बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली। तेज आंधी और बारिश के बीच दिन में ही अंधेरा छाया। बारिश और ठंडी हवाओं के कारण दिन के तापमान में भी भारी कमी हुई। नोएडा में भी तेज आंधी के साथ झमाझम बारिश हुई। लोगों को जल्दी गर्मी से राहत मिली लेकिन जल भराव के कारण यातायात धीमा हुआ। जाम की स्थिति बनी हुई। तेज आंधी पानी के कारण कई इलाकों में पेड़, यूनिपोल, स्ट्रीट लाइट गिरने की घटनाएं सामने आई जबकि सड़कों और अंडरपास में भारी जल भराव से लोगों को काफी दिक्कत हुई। तेज आंधी पानी के कारण नोएडा में करीब 400 पेड़ गिरे। नोएडा प्राधिकरण ने इस बात की जानकारी दी। हरियाणा के सोनीपत में तेज हवा और बारिश से तापमान गिरा। गर्मी से जूझ रहे लोगों को इस बदलाव से काफी राहत मिली। जयपुर में सूरज की तपिश से लोगों को राहत मिली। आसमान से बादल जब बरसे तो मौसम बेहद सुहाना हो गया। देहरादून में भी बारिश। उत्तराखंड में पहाड़ों के साथ मैदानों में हल्की ठंडक का भी एहसास होने लगा। मौसम का बदलाव भोपाल में भी देखने को मिला। बढ़ती गर्मी के बीच लोगों ने राहत की सांस ली। पहाड़ों पर भी राहत की फुहार देखने को मिली। शिमला में झूम के बरसे बादल। मौसम सुहाना हुआ। पारंपरिक उत्सवों के बीच द्रास समर कार्निवल 2026 का भव्य शुभारंभ। समारोह शुरू होने के साथ ही केंद्र शासित प्रदेशों में उत्सवों का दौर शुरू। करगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में सेना की ओर से आयोजित कार्निवल 7 जून तक चलेगा। स्थानीय खेल, संस्कृति और परंपरा का संगम दिखेगा। द्रास समर कार्निवल में हॉर्स पोलो, टेंट पेगिंग और तीरंदाजी की प्रतियोगिताएं होती हैं। खेलों को बढ़ावा देने की पहल की। दिल्ली में बवाना इंफ्रा डेवलपमेंट का सामाजिक सरोकार अभियान। 115 मेधावी छात्रों को बांटी गई साइकिलें। मंत्री सिरसा और रविंद्र इंद्रराज सिंह मौजूद। जम्मू कश्मीर में बेहतर मौकों की तलाश में कारोबार का रुख करे पढ़े लिखे युवा। रोजगार का माध्यम बन रहा प्रदेश का स्टार्टअप इकोसिस्टम। मोहाली से बेहद दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई। साथ काम करने वाली कर्मचारी ने महिला कर्मचारी को बेरहमी से चाकू मारकर हत्या की, खुद भी आत्महत्या का प्रयास किया। प्रारंभिक जांच में प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया। ब्रेकअप के बाद डिप्रेशन में था आरोपी। गाजीपुर में पुलिस टीम पर पथराव हुआ। एनकाउंटर मारे गए कमलेश का शव देखकर बौखला गए ग्रामीण। हमले में 5 पुलिस वाले घायल हुए। पुलिस ने इस मामले में 70 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मध्य प्रदेश के खरगोन में मामूली विवाद को लेकर के कार चालक ने कार चढ़ा दी। पुलिस ने कार की जब्त कर की कार चालक की तलाश अब जारी है। मध्य प्रदेश के सिवनी में बाल बाल बचे कांग्रेस विधायक योगेंद्र सिंह, बाउंड्री वॉल से टकराने के बाद कार में भीषण आग लग गई। मुरैना में युवती से दुष्कर्म के मामले में डिप्टी कलेक्टर को गिरफ्तार किया गया है। शादी का झांसा देकर शोषण करने का आरोप। मोगा में पुलिस ने कत्ल की गुत्थी सुलझाई। डेयरी के संचालक समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। 29 मई को हुई थी हत्या। ग्वालियर में होटल कर्मचारी के साथ मारपीट, खाने का ऑर्डर लेने में देरी को लेकर के बवाल, कई राउंड फायरिंग। अलवर में अवैध तरीके से शराब सप्लाई का खुलासा। 220 पेटी से शराब से गाड़ी जब्त की गई। 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली के मालवीय नगर में संगठित कोबरा गैंग के ठिकाने पर देहरादून पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मास्टरमाइंड जॉन जोसेफ और मॉरिस को एंडी ब्रदर को गिरफ्तार किया गया। देहरादून एसएसपी परमेंद्र डोभाल के नेतृत्व में नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस का विशेष अभियान चलाया गया। ऑपरेशन प्रहार। शहर की बड़ी पार्टियों और शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले छात्र कोबरा गैंग के टारगेट थे। दिल्ली के वसुंधरा एनक्लेव इलाके में डीयू के एक असिस्टेंट प्रोफेसर की हत्या से हड़कंप मच गया। देवस्मिता के सर पर गहरी चोट के निशान मिले। हाथ की नस कटी हुई। ग्वालियर में जवान पर लगा पत्नी को प्रताड़ित करने का आरोप। पत्नी को बांधा, पीटा और फिर गर्म प्रेस से 7 बार जलाया। मुजफ्फरपुर में होमगार्ड भर्ती के नाम पर ठगी का खेल बेनकाब किया गया। सीआरपीएफ जवान समेत 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई। इंदौर में विवाद के बाद पति ने पत्नी की हत्या की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। नूह के सीएससी में फिर मारपीट की घटना सामने हुई। कर्मचारियों पर हमला किया गया। वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई। लखनऊ पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया। नाबालिग लड़कियों को बहला फुसलाकर राजस्थान बेचने का काला धंधा कर रहे थे। मथुरा में 8 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को हिरासत में ले लिया। जमशेदपुर में ट्रैफिक पुलिस से परेशान युवक ने जमकर हंगामा किया। बाइक जब्त होने के बाद वो गुस्से में था। यूपी बोर्ड के छात्रों के पास सुधार का एक और मौका दिया गया है। इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए 27 जून तक आवेदन किए जा सकते हैं। कांवड़ यात्रा के लिए दिल्ली सरकार बढ़ा सकती है आयोजन समिति को दी जाने वाली धनराशि। यात्रा के सुचारू संचालन के लिए फैसला लिया गया। श्री अमरनाथ जी यात्रा के दौरान पर्यटकों और तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। अनंतनाग पुलिस ने पहचान ऐप लॉन्च किया है। सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म पेडी। फिल्म में रामचरण, जानवी कपूर, शिवा राजकुमार, जगपति बाबू, दिव्येंदु बोमन ईरानी और रवि किशन हेम रोल में। आज सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म बंदर। बॉबी देओल ने फिल्म में समर का किरदार निभाया है। पर एक बार फिर से पर्दे पर छाने वाला डेविड धवन का 90 का जादू। आज सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म जवानी है तो इश्क होना है। एक बार फिर से दर्शकों का मनोरंजन करने आ रही है सबकी चहेती मिश्रा फैमिली। आज सोनीली पर रिलीज होगा वेब सीरीज गुल्लक का नया सीजन। एक्ट्रेस करिश्मा कपूर एक पुलिस अफसर के कोल में नजर आएंगी। आज Z5 पर रिलीज होगी ब्राउन फिल्म। दृश्यम 3 के बाद एक्टर मोहनलाल अब OTT पर दिखाएंगे जादू। आज Z5 पर रिलीज हो रही है उनकी फिल्म पेट्रियट। आज Amazon प्राइम पर स्ट्रीम होगी वेब सीरीज द पिरामिड स्कीम। इसमें मुख्य भूमिका में परमवीर सिंह चीमा, रणवीर शौरी और शेखर सुमन। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पत्रकारों से बातचीत में युद्ध विराम को लेकर के पेशकश की है। अपनी परिभाषा में कहा कि दुनिया के उस हिस्से में अब युद्ध विराम का मतलब होता है जब आप अधिक संयमित तरीके से गोलीबारी कर रहे होते हैं। मध्यपूर्व में छिड़े युद्ध पर अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का चौंकाने वाला दावा। राष्ट्रपति ट्रंप तोड़ सकते हैं ईरान के साथ युद्ध विराम। IRGC नेवी ने ओमान सागर में अमेरिकी युद्धपोत पर हमले का वीडियो जारी किया। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई ने ईरानी लोगों से अपील करते हुए कहा कि हमें दुश्मन की साजिश को एकता से नाकाम करना होगा। हिजबुल्ला ने इसराइल और लेबनान के बीच युद्ध विराम के समझौते को सहमति नहीं दी है। और इसी के साथ जोसेफ ऑन ने स्थायी शांति के लिए आखिरी मौका बताया। रूसी सरकार ने यूरोप और नाटो देशों पर बड़ा आरोप लगाते कहा नाटो सर्बिया के चारों ओर अपना शिकंजा कस रहा है। अमेरिका की नाटो संगठन से निकलने के सवाल पर विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बड़ा बयान। कहा ट्रंप प्रशासन का नाटो से हटने का कोई इरादा नहीं है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने पूर्वी यूक्रेन के इलाके पर कब्जे का बड़ा दावा किया। कहा रूसी सेना ने बड़ी संख्या में यूक्रेनी ड्रोन गिराए। रूसी विदेश मंत्रालय ने आर्मेनिया के साथ रिश्तों में आई दरार पर कहा कि पश्चिमी देशों के समर्थक माने जाने वाले आर्मेनियाई PM दोबारा चुनाव लड़ने के दौरान तनावपूर्ण हुए हैं। बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स में शिक्षा सुधार और भारी बढ़ोतरी के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।
4: Akaje, the number one Korean skincare brand.
5: Tune in How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
6: Tune In has got your favorite podcast, from sports to special interests. Did you know that you can listen to all your favorites offline? It's simple. Just head to any podcast page, tap the three little dots next to the episode title, and hit download. Whether it's true crime, lifestyle, health, and science, or anything else, stream your favorite podcasts and listen to them anytime, anywhere.
7: Now in India.
8: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
9: कुछ भी खा नहीं पा रहा हूँ, बहुत अपसेट हूँ।
10: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
11: लायन डेट नट बाइट्स।
12: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
13: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
14: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: in association with
1: cool stylish fans. Enhance home decor with beautiful fans. Punjab National Bank, bharose ka prateek. Samakool Cooler, hawa aisi chhode, puri family ko thandak se jode. Samakool Cooler, life banaye wonderful.
0: Hint, bade aaram se. Vimal, bolo zubaan kesri.
1: Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
2: 25 saalon se, jahan tiki hai desh ki nazar. Mere saath फिर से शुरू हो रहा है वही सफर. ये है खबरें सात तक, देखते रहिए आज तक.
3: रोने के जिज्ञासा को छू लेंगे.
4: जनरल इज नॉट बीइंग रिलीज्ड फॉर द एनसीसी.
5: पश्चिम बंगाल क्रांति की जमीन है और ममता क्रांति के 28 साल बाद अब बंगाल में नई सियासी क्रांति हुई है, जहां पार्टी तो एक है टीएमसी, अध्यक्ष एक है ममता बनर्जी, लेकिन नेता विपक्ष दो हैं. ममता के नेता विपक्ष शोभन देव चटर्जी, बागी गुट के ऋतव्रत. चीफ व्हिप दो हैं, ममता के चीफ व्हिप फिरहाद हाकिम, बागी गुट के चीफ व्हिप अकरुज्जमा. उपनेता विपक्ष छह हैं. ममता के उपनेता विपक्ष हैं आशिमा पात्रा, नैना बनर्जी. बागी गुट के उपनेता विपक्ष जावेद अहमद खान, सबीना यास्मीन, शिवली साहा और संदीपन साहा. मतलब साफ हो गया, ममता की पार्टी टूट चुकी है, क्योंकि स्पीकर ने ममता की पार्टी की ओर से भेजे गए नेता विपक्ष, उपनेता विपक्ष और चीफ व्हिप के बजाय बागी गुट के नेता विपक्ष, उपनेता विपक्ष और चीफ व्हिप के नामों को मान्यता देकर कमरे की चाबी थमा दी. दरअसल मामला ये कि 4 मई के नतीजों के बाद 6 मई को टीएमसी की बैठक हुई, विधानसभा सचिवालय को चिट्ठी भेजी गई कि शोभन देव चट्टोपाध्याय को नेता प्रतिपक्ष और फिराद हकीम को मुख्य सचेतक बनाया जाएगा. स्पीकर ने पार्टी की आधिकारिक स्वीकृति मांगी. 13 मई को सांसद और पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने अपने दस्तखत वाली चिट्ठी भेज दी. सचिवालय ने फिर विधायकों की सहमति पूछी. 19 मई को 70 विधायकों के दस्तखत वाली चिट्ठी भेज दी गई. आरोप है किसी चिट्ठी में वो फर्जी दस्तखत कर दिए गए, जिसकी सीआईडी जांच चल रही है. अब सवाल है कि 2/3 बहुमत के साथ 80 में 60 विधायकों ने अलग गुट तो बना लिया, लेकिन अभी लोकसभा में 28 और राज्यसभा में 13 सांसद हैं. अलग गुट को दलबदल कानून से बचने के लिए 19 लोकसभा और 8 राज्यसभा सांसदों के गुट की जरूरत है. बीजेपी के नेता सौमित्र खान कह चुके हैं कि 20 सांसद उनके संपर्क में हैं. ये भी पता चलता है कि ममता धरना भी देती हैं, तो सिर्फ 6 सांसद पहुंचते हैं. और अफवाह ये भी कि आम आदमी पार्टी की तरह एक साथ 8 राज्यसभा सांसद भी इस्तीफा दे सकते हैं. ऐसे में बंगाल में बीजेपी के असली कैडर को फिक्र होने लगी है. कांग्रेस कह रही है कि टीएमसी के दागी सब जांच और कार्रवाई के डर से बीजेपी में चले गए, बाकी बचे खुचे नेताओं ने अलग गुट बना लिया. अब आम कार्यकर्ता चाहे तो कांग्रेस में आ जाए. कहानी महाराष्ट्र में शिवसेना की टूट के रास्ते पर आगे बढ़ती दिख रही है. महाराष्ट्र में भी शिंदे ने अलग गुट बनाकर विधायकों के समर्थन का दावा किया. बंगाल में भी वही हुआ. महाराष्ट्र में भी स्पीकर ने बागी गुट को मान्यता दी. बंगाल में भी स्पीकर ने वही किया. महाराष्ट्र में भी शिंदे ने ठाकरे की तस्वीरें लगाकर रखी थी. बंगाल में भी बागी गुट ममता का नेतृत्व स्वीकार करने को तैयार है. बस फर्क ये कि बंगाल में अलग पार्टी का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन अब जब विधायक अभिषेक का नेतृत्व कबूल करने को तैयार नहीं और ममता अभिषेक को छोड़ने के लिए तैयार नहीं, ऐसे में टीएमसी पर कब्जे की लड़ाई अदालत से चुनाव आयोग तक जाने वाली है. वैसे शिवसेना वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई 2023 को दिया आदेश में साफ कहा था कि पार्टी के व्हिप और सदन में पार्टी के नेता की नियुक्ति राजनीतिक दल की ओर से की जाती है, न कि विधायी दल की ओर से. इसके अलावा किसी विशेष तरीके से मतदान करने या मतदान से दूर रहने का निर्देश भी राजनीतिक दल की तरफ से जारी किया जाता है, न कि विधायी दल की तरफ से. इस आदेश के नजरिए से कानूनी लड़ाई में ममता के लिए विकल्प खुले दिखते हैं. हालांकि टीएमसी ने अब तक अदालत का रुख नहीं किया. ममता बनर्जी ने सभी संगठन इकाइयों को भंग करके पार्टी का नेतृत्व अपने हाथ में ले लिया है. अनुपम मिश्रा, कोलकाता आज तक.
6: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर. पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक. एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: Hey, this is Freddie Coleman from Freddie and Harry. Stay on top of the Major League Baseball season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
1: To right field, and it will leave.
0: From the first pitch of the season to the stretch run.
1: And that's the ballgame.
0: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch select live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
2: लोग मुझे पूछ रहे थे कि अब अभिषेक का बहुत करीब है, तो मैं बोला कभी देखे हैं कि अभिषेक बैनर्जी का जन्मदिन में केक लेकर 7 घंटा 8 घंटा डितोब्रत कभी खड़ा हुआ? ये पॉलिटिक्स का पार्ट नहीं है, और खास करके यू आर द ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी, तो वह जब अटैक हो रहा है 26 दिन अब घर से निकल नहीं रहे हो। मैं तो उलुवेरिया पूर्व का विधायक, सामान्य विधायक, मैं तो अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी में जा रहा हूँ, मुझे तो चोट चोट कोई बोल नहीं रहा है। तो जो लोगों को लोग बोल रहे हैं ये लोग गद्दार है, तो जनवाद में, जामुरियत में हर कोई को बोलने का राइट है, मगर जामुरियत का एक जो सबसे बड़ा चीज है कि हर लोग जो बोले वो बोलना चाहिए। तो गद्दार लोग बोल सकते हैं, बोलेंगे भी, मगर कोई चोट चोट नहीं बोल रहा है और पिट भी नहीं रहा है।
3: आज आप लोगों ने मिलकर ये जो 80 लोगों का एक टीम जो आगे जाकर तृणमूल को रिप्रेजेंट करेंगे, तृणमूल सुप्रीमो या फिर अभिषेक बनर्जी के काम करने पे क्या आपत्ति रहा है?
4: जिस दल में गणतंत्र नहीं रहे, जिसमें डेमोक्रेसी नहीं रहे, तो उस दल में रहना नहीं रहना एक ही बात है। इसीलिए हम लोग, जहां हम लोग को बोलने का मौका नहीं दिया जाता, जहां हमें बात नहीं सुनी जाती है, जहां हमारे लोगों को मारा जाता है, तृणमूल के कर्मियों को पिटाई किया जाता है और नेतृत्व चुप से बैठा रहता है, उस दल के साथ नहीं रहना।
3: टीएमसी का क्या भविष्य लगता है आपको?
4: वो बताएंगे वो जो लोग वहाँ पर हैं अभी, वो लोग बताएंगे।
3: हमने अभिषेक बनर्जी का जो रोल रहा है उसे आप कैसे देखते हैं? आप तो
4: हम सुनिए ना, हम अभिषेक बनर्जी को नहीं पहचानते, हम ममता बनर्जी के साथ दल किया है। ममता बनर्जी आज भी हमारी नेत्री है, हम उनको, हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि आप एडवाइजर होके हम लोगों चीफ एडवाइजर के साथ बात कीजिए।

0: नौकरी पेशा लोगों के लिए अप्रेजल यानी इंक्रीमेंट का वक्त किसी त्योहार से कम नहीं होता। साल भर की मेहनत के बाद जब सैलरी बढ़ती है तो चेहरे पर मुस्कान आना लाजमी है, लेकिन इस बार कहानी थोड़ी अलग है क्योंकि हाथ में लेटर आने के बावजूद भी लोग उतने खुश नहीं हैं। दरअसल दफ्तरों में चर्चा है कि कागजों पर तो 10% तक का इजाफा दिख रहा है, लेकिन जब सैलरी बैंक अकाउंट में आई तो उम्मीद से कम निकली। इस मायूसी के पीछे की वजह कोई मंदी या कंपनी की कंजूसी नहीं है, ये तो देश के नए लेबर कोड सिस्टम का असर है। नए नियमों के गणित को अगर समझें तो न्यू लेबर कोड के तहत अब कुल CTC का 50% हिस्सा बेसिक सैलरी होना जरूरी है, यानी अगर किसी की मंथली सैलरी 50,000 रूपए है तो उसकी बेसिक सैलरी सीधे 25,000 रूपए तय हो जाएगी, जबकि पहले कंपनीज बेसिक सैलरी कम रखकर मोबाइल बिल या हाउस अलाउंस जैसे भत्तों में ज्यादा पैसा देती थी और पुराने सिस्टम में कर्मचारियों को घर ले जाने के लिए टेक होम सैलरी ज्यादा मिल जाती थी। अब कंपनीज के इस नए सैलरी स्ट्रक्चर की वजह से टेक होम अमाउंट भले ही कम हुआ हो, लेकिन इसके पीछे कर्मचारियों का एक बड़ा फायदा भी छुपा हुआ है। दरअसल कर्मचारियों के PF और ग्रेच्युटी का पैसा हमेशा उनकी बेसिक सैलरी के आधार पर ही तय किया जाता है। नियमों के अनुसार बेसिक सैलरी का 12% हिस्सा हर महीने PF अकाउंट में जमा कर दिया जाता है, यानी बेसिक सैलरी का ग्राफ ऊपर जाने से कर्मचारी के साथ साथ कंपनी का PF योगदान भी बढ़ जाएगा, जिसका सीधा फायदा रिटायरमेंट के समय दिखेगा जब कर्मचारियों के हाथ में एक बहुत बड़ा सेविंग फंड आएगा। इसके साथ ही जो लोग किसी एक कंपनी में लंबा समय बिताते हैं उन्हें मिलने वाली ग्रेच्युटी की रकम भी पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़कर मिलेगी। आसान शब्दों में कहें तो सरकार के इस कदम का मकसद नौकरी पेशा लोगों के भविष्य को सुरक्षित बनाना है। फिलहाल जेब में आने वाले पैसे में थोड़ी कटौती जरूर खल रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिहाज से ये बेहद फायदेमंद सौदा है। कागजों पर सैलरी का बढ़ना और अकाउंट में कम आना आने वाले दिनों में एक बड़ी बचत के तौर पर सामने आने वाला है। आज तक ब्यूरो।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

और राजस्थान से सतीश पुनिया। अमेरिका से चल रहे व्यापार समझौते के बीच यूएस को पुतिन की सीधी चेतावनी, कहा रूस की वजह से भारत पर प्रेशर बनाने का होगा खतरनाक असर। ट्रंप ने कहा पीएम मोदी अच्छे दोस्त।

0: बुलेटिन सुपर रात का। बुलेटिन में बात करेंगे दिल्ली अग्निकांड की, जिसकी जांच के बीच हाई लेवल पर लापरवाही सामने आ रही है। इसके साथ ही बात राजधानी दिल्ली की भी करेंगे। एक और सनसनीखेज खबर की बात करेंगे, ड्यू के असिस्टेंट प्रोफेसर का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। साथ ही बात सियासत की भी होगी, बताएंगे कि ममता बनर्जी की मुश्किलें कैसे और ज्यादा बढ़ गई है। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि असम सरकार के कैबिनेट विस्तार में किसे मौका मिलेगा। साथ ही चर्चा राज्यसभा चुनाव के प्रत्याशियों पर भी करेंगे। इसके साथ बताएंगे कि आखिर लालू राबड़ी सुरक्षा क्यों घटाई गई है। वही बात यूपी के गाजीपुर में हुई बवाल की भी करेंगे, जहां एक आरोपी के एनकाउंटर के बाद भारी हंगामा हुआ। साथ ही आपको बताएंगे कि पुतिन ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए तारीफ में क्या कुछ कहा है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पंजाब के मोहाली से आई एक दिल दहला देने वाले एक वीडियो की, जहां पर एक निजी कंपनी में काम करने वाली 30 साल की युवती की उसके ही पूर्व प्रेमी ने चाकू मारकर हत्या कर दी। दफ्तर में ही आरोपी ने युवती पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने खुद पर भी चाकू से हमला कर आत्महत्या का प्रयास किया। दोनों को गंभीर हालत में एक निजी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने युवती को मृत घोषित कर दिया, जबकि आरोपी की हालत नाजुक बनी हुई है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि दोनों के बीच पहले प्रेम संबंध थे। सूत्रों के अनुसार करीब 6 महीने पहले दोनों का ब्रेकअप हो गया था और अब आरोपी ने इस दिल दहला देने वाली वारदात को अंजाम दिया। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। पंजाब के मोहाली में दिल दहला देने वाली ये वारदात की तस्वीरें आप देखिए। फिलहाल जब उस युवती को अस्पताल में भर्ती कराया गया तो उसको डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। वही युवक की हालत भी काफी नाजुक है। पूर्व बॉयफ्रेंड ने युवती का कत्ल किया है। पंजाब के मोहाली से ये तस्वीर आप देख रहे हैं। पहले प्रेम संबंध इनका था, लगभग 6 महीने पहले इनका ब्रेकअप हो गया था और इसी वजह से इस युवक ने इस युवती पर हमला किया। हमारे साथ कमलजीत संधू जुड़ गए ज्यादा जानकारी के लिए। पूरा मामला बताइएगा कि क्या है ये पूरा मामला।
1: देखिए, जिल्टेड लवर है क्योंकि ये दोनों ही रिलेशनशिप में थे, हरविंदर और डिंपल। 3 साल तक ये रिलेशनशिप चला, लेकिन उसके बाद जब ब्रेकअप हुआ तकरीबन 6 महीने पहले, तो ऐसा बताया जाता है हरविंदर एलियस हैरी काफी परेशान था। वो इसके साथ रिकनसाइल करना चाहता था, संबंध दोबारा बनाना चाहता था, लेकिन डिंपल ने इसको नकार दिया था और उसी वजह से गुस्से में आके उसने अचानक से चाकू लेकर, आपको बता दें हम इस वक्त खड़े हैं एसआरपी यूएस लॉजिस्टिक्स, जो कि एक पैकर्स एंड मूवर्स की कंपनी है, यूएस के साथ एसोसिएटेड है। 5:30 बजे शाम को ये खुलता है और उसके बाद देर रात तक काम होता है। तो एक नॉर्मल शिफ्ट थी डिंपल की और आपको बता दें कहीं अंधेरे में अकेली नहीं थी, वो अपने सेफ स्पेस में थी, ऑफिस में थी, एक आम दिन हो सकता था। लेकिन कल रात को 7:30 बजे अचानक से हैरी ने उसके ऊपर ताबड़तोड़ चाकू से वार कर दिया और उसके बाद आपको बता दें वहां पर जहां पर लोग मौजूद थे, एम्प्लॉयज मौजूद थे, उन्होंने उसको बचाने की भी कोशिश की, लेकिन वो लगातार चाकू से लड़की को गोदता रहा और डिंपल लहूलुहान हो गई। उसी के बीच में आपको ये भी बता दें वहां पर जो एम्प्लॉयज थे उन्होंने उसको धक्का मारने की कोशिश की, लेकिन उसने लड़की को मारने के बाद अपने ऊपर भी चाकू से वार किया, अपने आप को सुसाइड कमिट करने की
0: कोशिश किया युवती को बचाने का, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कमल जी जानकारी के लिए। वही बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से, जहां पर दिल्ली के वसुंधरा एनक्लेव इलाके में दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक असिस्टेंट प्रोफेसर की हत्या से सनसनी मच गई है। मृतक प्रोफेसर का नाम देवस्मिता पॉल है, जो कि शिवाजी कॉलेज में सहायक प्रोफेसर थी और वसुंधरा एनक्लेव के एक फ्लैट में अकेली रहती थी। दिवस्मिता के सिर पर गहरी चोट के निशान भी मिले हैं, हाथ की नस भी कटी हुई है। पुलिस के मुताबिक सिर पर किसी भारी चीज से वार किया गया। गहने, कैश सब कुछ सुरक्षित है, यानी चोरी या लूटपाट का कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से जांच में जुटी हुई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की असिस्टेंट प्रोफेसर की हत्या कर दी गई है। वसुंधरा एनक्लेव में उनका फ्लैट है, जहां पर उनका शव मिला, उनके हाथ की नस भी कटी हुई थी। लेकिन सवाल यही है कि सर पर किसी ने वार किया है, किसी भारी चीज से वार किया गया, क्योंकि सर पर काफी चोट भी आई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की असिस्टेंट प्रोफेसर की हत्या की गई। अभी फिलहाल पूरी जांच पड़ताल की जा रही है। पुलिस जो सीसीटीवी फुटेज वहां पर लगे हुए थे उनके जरिए जांच कर रही है। सिर पर गहरी चोट के निशान मिले हैं, कलाई की नस भी कटी है। वसुंधरा एनक्लेव जगह पर शव मिला है। दिल्ली से वसुंधरा एनक्लेव के फ्लैट में यह शव मिला। अंशुल सिंह जुड़ गए ज्यादा जानकारी के लिए। अंशुल, अभी तक सीसीटीवी फुटेज की मदद से कुछ जानकारी सामने आई है, ये पूरा मामला क्या है, अभी तक कुछ पता लग पाया?
2: जी, अभी तक दिल्ली पुलिस के हाथ पूरी तरह से खाली हैं। बताया जा रहा है कि करीब कल 2:30 बजे एक पीसीआर कॉल की जाती है, जिसमें ये बताया जाता है कि एक महिला का शव उसके फ्लैट के अंदर ही मिलता है, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी मच जाती है। ये जो इलाका है ये वसुंधरा इनक्लेव में सत्यम अपार्टमेंट से एक बहुत पॉश इलाका है ईस्ट दिल्ली में, जहां पर डीयू की प्रोफेसर जो है वो अपने फ्लैट में अकेले रहती थी। उसके बाद जब कल उनकी बहन ने उनसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की तो उन्होंने फोन नहीं उठाया, और जब उनकी बहन को शंका हुई तो वो उनके घर पहुंचती है, घर का ताला तोड़ती है और अंदर देखती है कि उनकी बहन की लाश पड़ी हुई है। तो एक ये बहुत बड़ा सनसनीखेज मामला जो है ये सामने आया है। हालांकि अभी तक दिल्ली पुलिस को ये नहीं पता लग पाया है कि मरने की कि किसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया, क्योंकि प्रत्यक्षदर्शियों का ये कहना है कि जो मृतक है उनके शरीर पर कई सारे निशान थे, चोट के निशान भी थे, लेकिन ये घटना कब हुई, कैसे हुई, किसने की, इसको लेकर के अभी तक तफ्तीश चल रही है और दिल्ली पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। तो आज देखना होगा कि क्या दिल्ली पुलिस ये पता लगा पाती है कि किस तरीके से ये मौत हुई और कौन लोग जिम्मेवार हैं जिन्होंने ये इस पूरे मर्डर को जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि एक ये मर्डर है, तो इस मर्डर को किसने अंजाम दिया, इसकी तफ्तीश अब पूरे जोर शोर से चल रही है।
0: ठीक है अंशुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। अब बात कर लेते हैं दिल्ली के होटल में लगी भीषण आग से जुड़े अपडेट की। दिल्ली अग्निकांड में एक बड़ा खुलासा हुआ है। बीएनबी फ्लोरिस्ट स्टे के पास सिर्फ टी एंड स्नैक्स का लाइसेंस था, जो कि 31 मार्च को खत्म हो चुका था। लाइसेंस की मियाद खत्म होने के बाद भी नियमों की अनदेखी कर पूरा होटल चलाया जा रहा था। होटल के पास सिर्फ टी एंड स्नैक्स का लाइसेंस था, लेकिन उसके बाद भी, और जो कि 31 मार्च को ही खत्म हो गया था, उसके बाद भी इस होटल को चलाया गया। तो देखिए, बीएनबी फ्लोरिस्ट स्टे के पास सिर्फ टी एंड स्नैक्स का लाइसेंस था, जो कि 31 मार्च को खत्म हो चुका था। 6 कमरे बनाने की इजाजत दी गई थी, लेकिन 20 से ज्यादा कमरे वहां पर बनाए गए, और ऐसे में अब जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है।
3: दिल्ली के होटल में लगी आग में 21 लोगों की मौत के बाद सरकारी अमला जागा, तो ऐसे खुलासे होने लगे जो पूरी व्यवस्था पर गंभीर सवाल है। पता चला है कि होटल चलाने में न केवल हर नियम को ताक में रखा गया, बल्कि इसका लाइसेंस भी 31 मार्च को खत्म हो चुका था, लेकिन बिना लाइसेंस के ही ये होटल बेधड़ल्ले से चलाया जा रहा था। इससे पहले आरोपी लवकेश ने पूछताछ में जो कुछ कबूल किया है वो पूरे सिस्टम की नाकामी की ओर साफ इशारा करता है। लवकेश बजाज ने कबूल किया कि दिल्ली सरकार से 6 कमरों का बेड एंड ब्रेकफास्ट का लाइसेंस लिया था, लेकिन अवैध रूप से 28 कमरों का पूरा होटल खोल दिया। इस पूरी बिल्डिंग के लिए फायर डिपार्टमेंट से कभी कोई एनओसी ली ही नहीं थी, यानी लवकेश बजाज ने बिना किसी सुरक्षा इंतजाम के इस इमारत को मौत के कुएं में तब्दील कर दिया। कानून की आंखों में धूल झोंकने के लिए इस मास्टरमाइंड ने एक बेनामी मोहरा तैयार किया था। जय मिश्रा, जो इस होटल का अकाउंटेंट है,
4: पूछताछ में लोकेश बजाज ने खुलासा किया कि इस होटल की देख रेख उसका अकाउंटेंट जय मिश्रा ही करता है, लाइसेंस भी जय मिश्रा के नाम पर ही है।
3: अब दिल्ली में हुए इस दर्दनाक हादसे की वजह की पड़ताल जारी है, सरकारी अमला अब एक्शन ले रहा है, लेकिन ये सब कुछ पूरी व्यवस्था की नाकामी की गवाही दे रहा है। आज तक ब्यूरो।
0: और नोएडा से इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें कि नोएडा की एक सोसाइटी में भीषण आग लग गई है। नोएडा के सेक्टर 74 की एक सोसाइटी है जिसके फ्लैट में भीषण आग लगी है। आग की लपटें धू धू कर उठ रही है। ये तस्वीरें आप देखिए, नोएडा के एक अपार्टमेंट में भयंकर आग लगी है और सोसाइटी के एक फ्लैट में ये आग की तस्वीरें आप देख रहे हैं। काले धुएं का गुबार साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। अभी आग किस कारण की वजह से लगी इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। नोएडा के सेक्टर 74 में एक सोसाइटी है जिसमें आग लगी। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के लिए। हिमांशु, आग किन कारणों की वजह से लगी है, सोसाइटी का नाम क्या है, क्या अपडेट है, बताइएगा।
5: देखिए, आग किन कारणों से लगी इसकी जांच हो रही है, लेकिन जो शुरुआती आशंका है कि शॉर्ट सर्किट वजह थी जिसकी वजह से आग लगी, लेकिन अधिकारियों का कहना है जिस चीज को जब फोरेंसिक जांच जब आग पर काबू पा लिया जाएगा के बाद क्लियर होगी, लेकिन फिलहाल की स्थिति ये है पूजा कि जो लपटें हैं वो जो फ्लैट है उससे बाहर निकल रहे हैं। आसपास के तमाम जो फ्लैट्स हैं ऊपर करीब 11वां 12वां फ्लोर जो है वो इंपैक्ट जहां पर हुआ है, इसलिए आसपास के तमाम जो फ्लोर है टावर है उनको पूरी तरीके से खाली करा लिया गया है। फायर की गाड़ियों को कॉल कर दिया गया था। जैसे ही सुबह लोगों ने चिंगारी देखी, नीचे से एक शख्स जा रहा था जिसने सबसे पहले धुआं निकलते देखा था। इसके बाद गार्ड को, सोसाइटी के लोगों को पता चला, पुलिस को, फायर को फौरन इन्फॉर्म कर दिया गया है। तमाम जो आग बुझाने के जो उपकरण है उसका इस्तेमाल शुरू कर दिया गया है। सबसे पहली जो कोशिश है वो ये है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जाए।
0: लगभग कितने लोग फ्लैट में मौजूद थे, क्या सभी सुरक्षित हैं, और ये भी बताइएगा कि अभी तक क्या आग पर काबू पाया जा सका है?
5: नहीं देखिए, अभी आग को सबसे पहले जो काम है वो ये है कि उसको फैलने से रोकना है, यानी वो आग आगे न बढ़ने पाए, उस आग की चपेट में दूसरे फ्लैट ना आए, जो पहली प्राथमिकता है वो ये है। उसके बाद आग बुझाने का काम शुरू किया गया है। चूंकि आप अगर आप देखें तो ये फ्लैट 10वें माले के ऊपर है, तो ऐसे में जो बिल्डिंग की जो अपनी सोसाइटी की जो फायर फाइटिंग सिस्टम है सबसे पहले का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसको इस्तेमाल करके आग पे काबू पाने की कोशिश किया जा रहा है। मीनवाइल फायर की गाड़ियां मौके पे पहुंच गई हैं और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक जो अधिकारियों का कहना है कि आग की चपेट में किसी के फंसे होने की कोई जानकारी नहीं है।
0: चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु तमाम जानकारी के। तो जिस तरह दिल्ली के होटल में आग लगी, 21 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, उसके बाद से आज तक संवाददाता अलग अलग शहरों में जाकर होटल्स का रियलिटी चेक कर रहे हैं, उनमें सुरक्षा इंतजामों का जायजा ले रहे हैं। हमारी टीम ने मुंबई के कई होटल में जाकर देखा कि अगर हादसा होता है तो क्या वहां पर उससे निपटने के जरूरी इंतजाम है। देखिए,
3: दिल्ली होटल अग्निकांड ने पूरे देश को दहला कर रख दिया है, लेकिन क्या मौत के ऐसे होटल मुंबई में भी है, ये जानने के लिए हमारी टीम पहुंची दक्षिणी मुंबई में बलान एस्टेट के पास स्थित डॉल्फिन होटल में। कैमरा देखते ही स्टाफ बौखला गया।
6: आपके होटल के बारे में ये जानना है कि
7: अंदर अलाउड नहीं है? नहीं सर,
6: नहीं ये तो बताइए कि आपने एंट्री और एग्जिट है वो तो बताइए। कितने कमरों की परमिशन है आपके?
3: मुंबई के होटलों का हाल दिल्ली से कुछ खास अलग नहीं है। इस होटल में भी एंट्री एग्जिट के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है। रिसेप्शन एरिया में आग से बचाव का कोई इंतजाम नहीं है। इसके बाद हमारी टीम दक्षिणी मुंबई के ही पीडी मेलो रोड पर बने पवेलियन डॉर्मेट्री पहुंची। ये डॉर्मेट्री ऐसी इमारत में बनी है जो 80 साल से भी ज्यादा पुरानी है।
6: इमरजेंसी गेट है ये जी, बट इसको लॉक करके रखा है आपने?
8: नहीं सर, लॉक इसलिए है, एसी चालू है ना।
6: अच्छा
8: जी सर,
6: ऐसा ये खुला रखना पड़ता है
8: जी,
6: तो इसको खुला रखना है। तो ये इमरजेंसी गेट तो इनके पास है, इन्होंने लॉक रखा हुआ है, बोल रहे हैं एसी है इसीलिए, बट इमरजेंसी गेट पीछे का दिखाई दे रहा है। पीछे एक गेट है, आगे एक गेट है, और ये रहा फायर सेफ्टी सिस्टम।
3: सच तो ये है कि दिल्ली हो या मुंबई, अभी भी हजारों ऐसे होटल नियमों को ताक पर रख कर चल रहे हैं। सवाल ये कि दिल्ली अग्निकांड जैसे हादसों के बाद भी सरकार और प्रशासन ऐसे होटलों पर एक्शन क्यों नहीं लेते। दिव्येश सिंह, मुंबई आज तक।
0: चलिए अब बात कर लेते हैं सियासत की। पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन को अभी एक महीना भी नहीं गुजरा है कि ममता बनर्जी पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। सिलीगुड़ी और कोलकाता में ममता के खिलाफ देशद्रोह की शिकायत दर्ज करवाई गई। वहीं पूर्व मंत्री अरूप विश्वास के भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही विधायकों के बाद अब सांसदों की टूट का दावा भी हो रहा है। सिलीगुड़ी में ममता बनर्जी के खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई है, साथ ही विधायकों के बाद अब सांसदों की टूट का दावा भी तेजी से बढ़ रहा है। गिरफ्तारी भी हो चुकी है, अरूप विश्वास के भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो देखिए, चुनाव खत्म हो गए हैं लेकिन बंगाल में सियासत अभी भी चल रही है। सिलीगुड़ी और कोलकाता में ममता के खिलाफ देशद्रोह की शिकायत दर्ज करवाई गई। वहीं पूर्व मंत्री अरूप विश्वास के भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही विधायकों के बाद अब सांसदों की टूट का दावा भी लगातार तेजी से बढ़ रहा है। और करते एक और बड़ी खबर का, नोएडा की खबर आपको बता दें। नोएडा में जिस तरीके से भीषण आग लगी है एक सोसाइटी में, सेक्टर 74 की सोसाइटी में भीषण आग लगी और आग पर काबू पाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। जैसा कि हमारे सहयोगी मानशु ने हमें बताया था, अभी तक किसी के हताहत होने की जानकारी सामने नहीं आई है और जो वजह इस आग की सामने आई वो शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। नोएडा की एक सोसाइटी में भीषण आग की तस्वीरें आप देख रहे हैं। सेक्टर 74 की IVY काउंटी सोसाइटी में ये आग की तस्वीरें। आग की लपटें काफी तेजी से बढ़ रही हैं। अभी फिलहाल कोशिश की जा रही है आग पर काबू पाने की। काले धुएं का गुबार उठता दिखाई दे रहा है। हालांकि जो लोग वहां पर मौजूद थे, उस फ्लैट में मौजूद थे, उनको तुरंत वहां से खाली करवा दिया गया है। सेक्टर 74 की IVY काउंटी सोसाइटी में ये आग की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। एक शख्स सोसाइटी के नीचे से जा रहा था और उसी ने ये जानकारी दी कि सोसाइटी में आग लग गई है, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया गया। सेक्टर 74 की IVY सोसाइटी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये टावर के 12वें फ्लोर पर ये आग की तस्वीरें सामने आई। हिमांशु हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए। हिमांशु, अब ताजा अपडेट क्या आ रहा है?
5: अपडेट पूजा की, जो आसपास के तमाम फ्लैट्स हैं, जो टावर है, ये पूरा टावर, एक तो जो इम्पैक्टेड है ये IVY काउंटी का, इस पूरे टावर को सबसे पहले इवैक्यूएट कराया गया। तमाम जो रेजिडेंट्स हैं उनको बाहर निकाला गया। इसके बाद अगल और जो टावर है, जो सटा हुआ टावर है, उस टावर के लोगों को भी, जो बगल के फ्लैट्स हैं उनको पूरी तरीके से खाली कराया गया। और अब जो सोसाइटी का जो फायर फाइटिंग सिस्टम था, उसकी मदद से सबसे पहले जो सोसाइटी में लोग मौजूद थे, जो गार्ड थे उनके, उन्होंने उस पर जो अपनी तरफ से कोशिश शुरू की थी। फायर की गाड़ी पहुंची है और अब सबसे पहला जो कोशिश है, क्योंकि हमने देखा था कि इंदिरापुरम में किस तरीके से जो एक फ्लैट में आग लगी थी, वो धीरे धीरे कम से कम चार फ्लैटों को अब काबू में अपने चपेट में लिया था और धीरे धीरे 8 फ्लैट चपेट में आए थे। तो ये कोशिश है कि इस आग में जो आगे अगल और बगल के फ्लैट है वो इसकी चपेट में ना आए। तो सबसे पहले इस आग को आगे फैलने से रोकने की कोशिश है पूजा, ताकि ज्यादा नुकसान ना हो, और दूसरी तरफ साथ ही साथ उसको काबू पाने की कोशिश है ताकि ये आग।
0: जी हिमांशु, ये बताइएगा, ये जो 12वें फ्लोर के फ्लैट में आग लगी, क्या उस फ्लैट में कोई रह रहा था उस वक्त, कोई परिवार रह रहा था?
5: जी बिल्कुल, वहां पर जो लोग रह रहे थे उन सभी लोगों को इवैक्यूएट करा लिया गया है। अब तक की जानकारी के मुताबिक जो हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि किसी के फंसे होने की जानकारी नहीं है, लेकिन आधिकारिक रूप से जब पूरी तरीके से छानबीन हो जाएगी तब इस बारे में कोई आधिकारिक बयान आएगा। लेकिन फिलहाल की जानकारी में किसी के फंसे होने की नहीं है। पर जो तमाम अधिकारी हैं जो मौके पे पहुंच रहे हैं, हमारी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि एक बार इसको वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करने के बाद ही क्लियर होगा कि कोई फंसा है या नहीं फंसा है। हाँ, जो आसपास के लोग हैं, जो आसपास के फ्लैट में जो लोग रह रहे थे, उन लोगों को इवैक्यूएट कराया गया, उन लोगों से बातचीत की जा रही है। और जो तमाम जो फायर को जो फायर के अधिकारी हैं, चूंकि 12वें फ्लोर पे आग लगी है, इसलिए जो हाइड्रोलिक सिस्टम वाली गाड़ियां हैं उनको मौके पे बुलाया गया है, ताकि जल्द से जल्द उस आग तक पहुंच बनाई जा सके और उसको बुझाया जा सके। और गाड़ी जितनी भी ज्यादा इस टावर के नजदीक पहुंचेगी पूजा, उतनी आसानी होगी, क्योंकि कई सारी चीजें जो आप पीछे से सबक लेते हैं, जब इंदिरापुरम की सोसाइटी में आग लगी थी तो हमने देखा था कि पार की दीवार थी, जिसकी वजह से जो हाइड्रोलिक गाड़ी है वो करीब जा ही नहीं पा रही थी सोसाइटी के, और इस वजह से जो पानी का प्रेशर था वो उस बिल्डिंग तक पहुंच नहीं रहा था। ऐसे में जो सोसाइटी का अपना फायर फाइटिंग सिस्टम था उसने काफी मदद की थी। तो इन दोनों तरीकों से आग पर जल्द से जल्द काबू पाने की कोशिश, फिलहाल जो तमाम लोग मौके पे मौजूद हैं, जो लोग मौके पे पहुंच रहे हैं, उनकी तरफ से यही कोशिश है कि जल्द से जल्द आग को बुझाया जा सके और नुकसान को कम रोका जा सके। क्योंकि जिस तरीके से लोगों की पूरी गृहस्थी एक फ्लैट में जब आग लगती है, जब सब कुछ जल के राख होता है, तो किस तरीके से पूरी गृहस्थी बर्बाद होती है, हमने देखा है कि जिस लोगों के घर जले थे उनके पास जो स्लीपर था उसके अलावा कुछ भी नहीं बचा था। अपनी तमाम आपकी जो तमाम यादें हैं, सारी चीजें, सब कुछ जल के राख हो जाता है। तो ऐसे में एक पैनिक का सिचुएशन भी रहता है उन लोगों के बीच, जिनके फ्लैट जो इम्पैक्टेड फ्लैट है, जिसमें आग लगी, उसके अगल बगल जो फ्लैट होते हैं उनके बीच, उनके रेजिडेंट्स के बीच एक घबराहट भी देखी जाती है। और यही वजह है कि आग को फैलने से रोकना जो फर्स्ट प्रायोरिटी है इस वक्त है। जी पूजा,
0: हिमांशु अभी तक क्या अड़चन सामने आ रही है अभी इस आग को बुझाने में फायर ब्रिगेड की टीम को?
5: जी जी बिल्कुल, देखिए जो तमाम लोग हैं वो मौके पे पहुंचे हैं और सबसे पहले स्थिति को एनालाइज किया गया, क्योंकि जब कॉल था कॉल के साथ ही जो पूरी इंफॉर्मेशन थी वो पहुंचाई गई थी और एक ही कॉल जो पुलिस को थी वही फायर तक भी फॉरवर्ड हुई थी, तो उससे ये क्लियर हो गया था कि जो आग है वो 10वें फ्लोर से ज्यादा पे है, यानी कि 12वें फ्लोर पर ये आग लगी है, ये बात लगभग क्लियर हो गई थी। तो अब ये इसमें जो पहली जो प्रायोरिटी है आग पे काबू पाना, दूसरा इस चीज को सुनिश्चित करना पूजा कि कहीं कोई फंसा नहीं है, ये सुनिश्चित करना भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। तो तीन तरीके से काम किया जा रहा है, नंबर एक आसपास के तमाम फ्लैटों को खाली कराया गया, नंबर दो जो सोसाइटी का फायर फाइटिंग सिस्टम है और जो फायर की गाड़ियां हैं उनके जरिए आग को फैलने से रोकना और जल्द से जल्द उसको बुझाना और ये सुनिश्चित कर लेना कि कोई भी इसमें फंसा नहीं है। तो इस तरीके से जो तमाम लोग मौके पे मौजूद है, जो लोकल थाने की पुलिस पहुंची है, जो फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची है, जो RWS के लोग हैं, उनके जरिए यही कोशिश लगातार जारी है। जी पूजा,
0: मानशु अभी तक ये एक फ्लैट में आग लगी है और तस्वीरें में देख पा रही हूँ काफी भयंकर आग है, काले धुएं का गुबार साफ तौर पर उठता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम कोशिश तो कर रही है आग बुझाने में, लेकिन क्या अभी तक इस आग की चपेट में कोई और फ्लैट भी आया है?
5: नहीं, देखिए सबसे ज्यादा जो इम्पेक्टेड डर रहता है आग फैलने का वो एक तो ठीक टॉप वाला उसके ठीक ऊपर वाला फ्लैट रहता है, लेकिन अभी तक जो है वो पूरी तरीके से ऊपर का फ्लैट या अगर हम कहें कि दोनों तरफ के जो अगल बगल के फ्लैट हैं वो पूरी तरीके से चपेट में नहीं आया, लेकिन जिस तरीके की लपटें इस फ्लोर से निकल रही है, 12वें फ्लोर से निकल रही है, उसको देखते हुए आशंका जरूर जाहिर की जा रही है और यही कोशिश है कि इस आग को फैलने से रोकी जाए, क्योंकि लगातार लपटें निकल रही है और जो फायर फाइटिंग सिस्टम है जो आप देखिए दो तरीके

0: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 meg internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included. So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
1: Whatever you're in the mood for, TuneIn has the music to match. From today's hits to timeless favorites and new discoveries, it's all streaming in one place. Discover stations that fit your vibe and keep the music going all day long. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
2: Sokudo. जिंदगी में हम सबका एक सपना होता है, सपना अपनी दुनिया बसाने का, अपना एक घर बनाने का। और जब इस सफर में कोई अपना साथ दे तो सपने साकार हो ही जाते हैं।
3: भरोसे से ही बनता है आपके अपने सपनों का आशियाना। ऐसा ही आपका अपना साथी पंजाब नेशनल बैंक, जो बरसों से जीत रहा है देश का भरोसा। PNB, मेरा अपना बैंक।
4: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुमा केसरी।
2: ओह नो, बहुत बोर लग रहा है।
3: Take a date, not bites.
4: No added sugar, preservative के बिना डेट्स, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
3: लायन डेट नट बाइट्स।
5: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
6: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
7: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
8: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
9: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
10: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
11: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
12: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, NTO को पता नहीं।
10: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
13: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
11: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, NTA जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
10: जहां खबर वहां खबरदार।
14: इन एसोसिएशन विद मोंटी कार्लो, इट्स द वे यू मेक मी फील। E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
15: गिरिबाला सिंह की जो बीच में बैठी हुई है और इन तस्वीरों के जरिए आप देखिए, वो CBI ने 5 घंटे तक पूछताछ की और अब गिरिबाला सिंह को लेके CBI रवाना हो गई है। यहाँ से कहाँ ले जाएंगे ये साफ नहीं है, लेकिन हमने आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई। कहाँ गई है ये भी साफ नहीं हो पाएगा, थोड़ी देर में तस्वीरें साफ हो जाएंगी। लेकिन तकरीबन 5 घंटे तक चली पूछताछ के बाद पूर्व जज त्रिशा की सास समर्थ की माँ गिरिबाला सिंह को फिलहाल CBI अपने साथ लेकर के अब फरार हो चुकी है। रविश पाल सिंह, भोपाल आज तक।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
3: के बाद स्वागत है, सीधा रुख करते इस वक्त की एक बड़ी खबर का। नोएडा की एक सोसाइटी में भीषण आग की तस्वीरें सामने आई है। सेक्टर 75 की एक आईवी सोसाइटी के फ्लैट में आग लगी। सोसाइटी के एक टावर के 12वें फ्लोर पर भीषण आग लगी है। आग की चपेट में एक और फ्लैट भी आ गया है। आग पर काबू पाने की लगातार कोशिशें की जा रही है और अभी तक किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। टावर के 12वें फ्लोर के एक फ्लैट में यह आग की तस्वीरें सामने आई। सेक्टर 75 की एक सोसाइटी आईवी काउंटी सोसाइटी जिसमें आग लगी है, 12वां फ्लोर है, जिसके एक फ्लैट की चपेट में एक और फ्लैट आ गया है। अभी प्रयास किया जा रहा है, लगातार कोशिश की जा रही है आग पर काबू पाने की, लेकिन अभी तक किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, सोसाइटी में आग की तस्वीरें, 12वें फ्लोर के फ्लैट में आग लगी है। आग की लपटें धू धू कर कर उठ रही है, काले धुएं का गुबार साफ तौर पर उठता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे ये अंदाजा साफ लगाया जा सकता है कि आग काफी ज्यादा भयंकर लगी है और इसकी चपेट में एक और फ्लैट भी आ चुका है। हिमांशु हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। हिमांशु, लगभग कितना समय और लगेगा इस आग पर काबू पाने के लिए?
4: जी, स्पष्ट रूप से बता पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन लगातार कोशिशें जारी हैं और अलग अलग तरीके से। आप देखिए, एक तो जो फायर फाइटिंग सिस्टम पहुंचे हैं जो तमाम, वो कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो बिल्डिंग का अपना सोसाइटी का फायर फाइटिंग सिस्टम है, उसके जरिए आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। जो फायर फाइटिंग सिस्टम बिल्डिंग का है, वो सोसाइटी के अंदर जो लिफ्ट का रास्ता, जो सीढ़ियों का है, उसके पास में है, यानी अंदर की तरफ से आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो फायर की गाड़ियां पहुंची हैं, वो दूसरी तरफ से फायर पर काबू पाने की कोशिश कर रही है, जो बाहर से लगातार कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द इस आग पर काबू पाया जाए। लेकिन अब तक की जानकारी के मुताबिक इस आग पर काबू नहीं पाया गया, नंबर एक। नंबर दो, साथ साथ ये गनीमत की बात जरूर आई है यहाँ पर पूजा की, किसी के फंसे होने की कोई जानकारी अब तक नहीं मिली है। जो हमारी अभी ऑफिशियल से बात हुई है, उनका कहना है कि अंदर किसी के फंसे होने की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन आग को अभी फिलहाल रोका नहीं जा सका है। उसको पहली जो प्रायोरिटी है कि किसी तरीके से उसको बढ़ने से रोका जाए, उसमें लगातार कोशिशें जारी हैं। एहतियातन तमाम जो फ्लैट हैं वो खाली करा लिए गए हैं आसपास के। सुबह का वक्त था जब सबसे पहले वहां से गुजर रहे एक शख्स ने जब उसकी नजर पड़ी थी, उसने शोर मचाया था और उसके बाद 112 पे कॉल किया गया था, जिसके बाद पुलिस, लोकल पुलिस भी मौके पे पहुंची हुई है और साथ साथ फायर की गाड़ियां भी पहुंची हुई हैं। आग की हाइट को देखते हुए जो तमाम हाइड्रोलिक गाड़ियां हैं वो मौके पे मंगाई गई हैं, ताकि उस पर सही तरीके से और वक्त रहते वो बुझाया जा सके। तो अपनी तरफ से तमाम कोशिशें जारी हैं और स्टेप बाई स्टेप यहाँ पर फायर के अधिकारी चल रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है कि जब भी इस तरीके के आग सोसाइटीज में फ्लैट में लगते हैं और खास तौर से अगर ऊपर के फ्लैट में लगे हैं, तो सबसे ज्यादा जो इस आग में फंस जाने की, जो दूसरे फ्लैटों के चपेट में आने की संभावना रहती है, वो ठीक ऊपर वाले फ्लैट रहते हैं, उनमें बेहद जल्दी आग पकड़ने की संभावना रहती है। क्योंकि ठीक नीचे वाला जो फ्लोर है वो जल रहा है, ऊपर से जो बालकनी की तरफ से आप देखिए जो तमाम जो आग की लपटें निकल रही हैं, उसकी वजह से आग जो है वो ऊपर के फ्लोर को अपने चपेट में लेता है। तो इसलिए ऊपर के तो सारे फ्लोर खाली कराई लिए गए हैं और जो कोशिश है वो यही है कि ऊपर की तरफ से पानी उस पर जरूर डाला जाए, ताकि ऊपर के फ्लैटों में अगर पानी उधर से नीचे की तरफ आता है तो एक तो आग को ऊपर बढ़ने से रोका जा सकता है, दूसरा जो ऊपर के फ्लैटों में खतरा रहता है आग फैल जाने का, उसको भी कम किया जा सकता है। तो ये कोशिश लगातार जारी है, लेकिन फिलहाल जो है वो स्थिति अभी यही है कि आग की लपटें वहां से निकल रही हैं, उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है और जो तमाम लोग, जिन लोगों के जो फ्लैट है, उनसे वो समझने की कोशिश की जा रही है कि फ्लैटों में किस तरीके का सामान है, कितना वुडन वर्क है, जिससे एक अंदाजा लगाया जा सके कि आग अगर फ्लैट तक ऊपर पहुंचती है तो उसको कंट्रोल करने में कितनी मशक्कत करनी पड़ सकती है। दूसरा, पूरे फ्लैट का डिजाइन लेकर के कि किस तरीके से कहां पर कमरे हैं, कहां पर पीएनजी की लाइन है, क्योंकि पीएनजी की लाइन साथ साथ जो बिजली की लाइन है ये तुरंत जो है काट दिया गया, क्योंकि आग लगने के साथ जो प्रोटोकॉल है, जब फायर को गई तो साथ साथ जो तमाम जो इलेक्ट्रिसिटी है, पीएनजी है, उन सबको भी इन्फॉर्म किया गया, ताकि ये जो तमाम सुविधाएं हैं जिनसे आग फैलने का खतरा और बढ़ सकता है, तो सबसे पहले उन्हें इन्फॉर्म किया गया ताकि मौके पे पहुंच के ये सारी चीजें जो है वो बंद की जाए।
3: ठीक है मानसू, आप नजर बनाए रखेगा इसी खबर पर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और जैसा कि हमारे सहयोगी मानसू ने बताया, आग पर काबू पाने का पूरा पूरा प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द इस आग को बुझाया जा सके, लेकिन अभी तक एक फ्लैट में आग लगी थी और इसकी चपेट में एक और फ्लैट आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, वक्त हो गया है नॉन स्टॉप 100 का।

75 की आईवी काउंटर सोसाइटी में 12वीं मंजिल पर फ्लैट में लगी थी शरण। फ्लैट में आग लगने की सूचना पर फायर विभाग की टीम मौके पर पहुंची, आग पर पाया गया काबू। आग लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं, जांच में जुटा प्रशासन। नोएडा की हाईराइज सोसाइटी में आग से हड़कंप, लोगों में दहशत का माहौल। आईवी काउंटी के 12वें फ्लोर पर फ्लैट में लगी आग, दमकल विभाग ने शुरू किया कूलिंग ऑपरेशन। मालवीय नगर अग्निकांड पर सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा एक्शन, आज बुलाई हाई लेवल मीटिंग, अधिकारियों की तय होगी जवाबदेही। बैठक में दिल्ली पुलिस, राजस्व विभाग, नगर निगम, अग्निशमन विभाग और साथ ही दिल्ली जल बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी रहेंगे मौजूद। दिल्ली सरकार ने अवैध होटल, गेस्ट हाउस, अनाधिकृत निर्माणों और अग्नि सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के खिलाफ एक सख्त अभियान चलाने की घोषणा की। दिल्ली अग्निकांड में हादसे वाले होटल के पास एमसीडी का सिर्फ टीएन स्नैक्स का लाइसेंस था, 31 मार्च को वो भी खत्म हो चुका था। चार दिन की पुलिस रिमांड में है मुख्य आरोपी और होटल मालिक लवकेश, होटल के मैनेजर और अकाउंटेंट की तलाश जारी। आज सूरत और केंद्र शासित प्रदेश दमन दौरे पर पीएम मोदी, इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी 22,600 करोड़ से अधिक की विकास परियोजना की सौगात देश को सौंपेंगे। पीएम मोदी दौरे की शुरुआत दोपहर में हीरा नगरी सूरत से करेंगे, करीब 2:30 बजे वो हजीरा में महत्वपूर्ण औद्योगिक बुनियादी ढांचे और परिचालन की समीक्षा करेंगे। स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूती देते हुए सूरत में 24 घंटे ट्रॉमा केयर और केंद्रीय प्रयोगशालाओं से लैस 200 बिस्तर वाले आधुनिक अस्पताल का उद्घाटन भी करेंगे पीएम मोदी। दमन को मिलेगी नई हवाई अड्डे की सौगात, शाम 6 बजे हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। नए हवाई अड्डे से दमन में पर्यटन को मिलेगी नई उड़ान। दमन के कार्यक्रम से ही पीएम मोदी वर्चुअली लक्षद्वीप के लिए 885 करोड़ की बंदरगाह परियोजना की नींव रखेंगे। पश्चिम बंगाल में ममता को झटके पर झटका, टीएमसी से बागी नेता ऋतव्रत के निलंबन को स्पीकर ने बताया गलत और अपने गुट को बताया असल तृणमूल। ममता और टीएमसी पर बंगाल के कैबिनेट मंत्री दिलीप घोष का तंज, कहा भ्रष्टाचार पर बनी पार्टी का तय था टूटना, हमारे लिए सभी दरवाजे बंद। ममता बनर्जी के खिलाफ कोलकाता में अखिल भारतीय हिंदू महासभा की ओर से पुलिस में शिकायत, राजद्रोह का मामला दर्ज। ममता बनर्जी पर आरोप है कि बांग्लादेशी विद्रोही छात्र नेता उस्मान हादी की हत्या के आरोपी के भारत भागने की कही गई थी बात। ममता और टीएमसी पर बंगाल के कैबिनेट मंत्री दिलीप घोष का तंज, कहा भ्रष्टाचार पर बनी पार्टी का तय था टूटना, हमारे सभी दरवाजे टीएमसी नेताओं के लिए बंद। एजेयूपी के संस्थापक हुमायूं कबीर ने पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को विधानसभा में वापसी का खुला प्रस्ताव दिया। कबीर ने ममता के लिए रेजीनगर सीट खाली करने की पेशकश की। हुमायूं कबीर ने कहा कि नंदीग्राम से ममता बनर्जी की जीत मुश्किल हो सकती है, लेकिन रेजीनगर से वो आसानी से विधानसभा पहुंच सकती है। हुमायूं कबीर का बड़ा बयान, कहा पार्टी की दयनीय स्थिति के लिए अभिषेक ही मुख्य वजह। मानसून सत्र में फिर से परिसीमन विधेयक पेश कर सकती है सरकार, सहमति बनाने के लिए डीएमके और टीएमसी से बातचीत की खबर, बिल के नए मसौदे का इंतजार। आज असम में 12 नए मंत्री लेंगे पद और गोपनीयता की शपथ, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने जारी किए सभी नाम। बीजेपी ने राज्यसभा के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, पार्टी ने अरुणाचल प्रदेश से ताई तगाक को उम्मीदवार बनाया, वहीं गुजरात से 4 कैंडिडेट को टिकट दिया। इसके अलावा पार्टी ने एमपी से तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया, मणिपुर से शारदी देवी को, राजस्थान से डॉक्टर अलका गुर्जर और साथ ही सतीश पुनिया को सौंपी जिम्मेदारी। कांग्रेस ने भी राज्यसभा चुनाव के लिए 5 राज्यों से 7 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी, कर्नाटक से खड़गे पवन खेड़ा और मंसूर अली खान मैदान। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश से वरिष्ठ नेता मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार बनाया, वहीं राजस्थान से नीरज डांगी को एक बार फिर से राज्यसभा के लिए मैदान में उतारा। इंडिया गठबंधन में दरार आई सामने, 8 जून को होने वाली बैठक में शामिल नहीं होगी डीएमके, कांग्रेस की मौजूदगी से नाराज पार्टी का फैसला। कांग्रेस पर भड़के डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन, बताया धोखेबाज पार्टी, कहा विधानसभा चुनाव के बाद हम नहीं भूल सकते उनकी कर्मी। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनावों में 17 सीटों में से 5 सीटों पर महायुति की निर्विरोध जीत तय, विपक्षी उम्मीदवारों ने गुरुवार को अपना नामांकन वापस लिया। दिल्ली पुलिस में बड़ा फेरबदल, 34 आईपीएस और अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया। दिल्ली मेयर कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली, धमकी भरे संदेश में दिल्ली और हरियाणा के कई स्थानों पर हमले की चेतावनी दी गई। ईमेल में दावा किया गया है कि 5 और 6 जून को दिल्ली, चंडीगढ़, अंबाला और रेलवे ट्रैक पर आईईडी विस्फोट किए जाएंगे, साथ ही लोगों को यात्रा न करने की चेतावनी भी दी गई। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भारत की आर्थिक प्रगति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की खुलकर प्रशंसा की, बोले भारत आज दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल। पुतिन ने भारत की तारीफ करते हुए सबसे तेज आर्थिक विकास दर दर्ज करने वाले देशों में से बताया एक भारत को रूस का एक भरोसेमंद और विश्वसनीय साझेदार बताया।
अमेरिका पर निशाना साधते हुए पुतिन ने कहा कि अमेरिका का पीएम मोदी पर दबाव डालना बेकार, अमेरिका से उसके बढ़ते संबंधों से भारत रूस की पार्टनरशिप पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना अच्छा दोस्त बताया और उनकी तारीफ की, कहा कि वॉशिंगटन और नई दिल्ली के बीच जल्द ही एक व्यापार समझौता हो जाएगा। ट्रंप ने कहा कि पहले व्यापार में पिछले असंतुलन के बावजूद उन्हें पूरा विश्वास है कि अमेरिका और भारत के बीच आखिरकार कोई समझौता होगा, व्यापार में अमेरिका को खूब मुनाफा हो रहा है। पीएम मोदी ने अहमदाबाद में आयोजित प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप का उद्घाटन किया, कहा अहमदाबाद की धरती से विश्व की खेल विरासत में एक नया अध्याय जुड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया में योग की बढ़ती लोकप्रियता को सराहा, अपने संबोधन में बोले योग मानवता के लिए सबसे बड़ा तोहफा। इस ऐतिहासिक प्रतियोगिता में 60 से ज्यादा देशों के 500 से ज्यादा एथलीट लेंगे हिस्सा, 7 कैटेगरी में अपनी कला एथलेटिज्म का करेंगे प्रदर्शन। उत्तराखंड के चमोली में 5,807 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गुप्तखाल ट्रैकिंग कर जोशीमठ लौटा इस साल का पहला ट्रैकिंग दल, खराब मौसम की चुनौती को किया पार। गमशाली से 26 मई को गुप्तखाल के लिए रवाना हुआ था यह दल और इसमें 7 ट्रैकर शामिल, 10 दिन का था ट्रैकिंग अभियान। नागपुर में आरएसएस कार्यकर्ता विकास वर्ग का समापन समारोह, संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला भी हुए शामिल। संघ के कार्यक्रम में बोले कुमार मंगलम बिरला, 83,000 शाखाओं और 60,00,000 स्वयंसेवकों का संगठित होकर एक दिशा में काम करना अभूतपूर्व है। उत्तरकाशी के नौगांव विकास खंड में महिलाओं को संगठित कर स्वरोजगार, हस्तशिल्प और स्थानीय उत्पाद आधारित उद्यमों से जोड़ने का अभियान उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से दिया जा रहा है बढ़ावा। एनकाउंटर में मारे गए 1,00,000 के इनामी कमलेश बिंद का शव पहुंचते ही गाजीपुर में बवाल, शव देकर परिजन, महिलाएं और ग्रामीण आक्रोशित, पुलिस पर झड़प। भारत के T20 टीम के कप्तान बनाए गए श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव की जगह मिला मौका, आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ है सीरीज। बीते गुरुवार को राजधानी दिल्ली में बदला मौसम, झमाझम बारिश से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली। तेज आंधी और बारिश के बीच दिन में ही छाया अंधेरा, बारिश और ठंडी हवाओं के कारण दिन के तापमान में भारी कमी। नोएडा में भी तेज आंधी के साथ हुई झमाझम बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत, लेकिन जलभराव की स्थिति भी देखने को मिली। तेज आंधी पानी के कारण लोगों को कई इलाकों में पेड़, यूनिपोल और स्ट्रीट लाइट गिरने से घटनाएं सामने आई, जबकि सड़कों और अंडरपास में भारी जलभराव से लोगों को काफी दिक्कत। तेज आंधी पानी के कारण नोएडा में करीब 400 पेड़ गिरे, नोएडा प्राधिकरण ने दी जानकारी। हरियाणा के सोनीपत में तेज हवाओं और बारिश से गिरा तापमान, गर्मी से जूझ रहे लोगों को इस बदलाव से मिली राहत। जयपुर के सूरज की तपिश से लोगों को मिली राहत, आसमान से बरसे बादल, मौसम सुहाना।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की। ये जानेंगे कि आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है और आज के दिन को बेहतर बनाने के उपाय क्या हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 5 जून 2026, दिन शुक्रवार, तिथि है अधिक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि, नक्षत्र है श्रवण नक्षत्र, चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय प्रातः 10:30 से दोपहर 12 बजे तक पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। मेष राशि, धन का लाभ हो सकता है, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धार्मिक कार्य में व्यस्त रहेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला।

पर परेशान ना हूं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। मिथुन राशि, पारिवारिक समस्या हो सकती है, वाहन सावधानी से चलाएं, लिखा पढ़ी में सावधानी बनाए रखें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। कर्क राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, करियर में नए अवसर मिलेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल।

रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज

कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन की स्थिति में सुधार होगा, परिवार में विवादों से बचाव करें, माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। तुला राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी, धन के खर्चे बढ़े रहेंगे, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। वृश्चिक राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, छोटी यात्रा हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल।

पूरे होंगे, परिवार में शांति बनाए रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। मकर राशि, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा, महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। कुंभ राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, वाद विवाद से बचाव करें, करियर में कोई जोखिम ना लें, सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। मीन राशि, करियर में सफलता मिलेगी, धन की स्थिति में सुधार होगा, परिवार में शुभ कार्य होंगे, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
2: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस
3: एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
2: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
3: आर्थिक सुनामी आ रही है, भयंकर आर्थिक सुनामी अब आ रही है।
4: पहले ही भारत में आर्थिक तूफान की चेतावनी दे चुके राहुल गांधी का दावा अब और बड़ा हो गया है। अब की बार राहुल गांधी ने आर्थिक सुनामी की चेतावनी दी तो साथ ही इमरजेंसी लगने की आशंकाओं के बीच अगले एक साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ता जाने का दावा कर बैठे।
3: मैं आपको ये बता दूंगी, मेरे पास इन्फॉर्मेशन आ रही है, सिस्टम मुझे इन्फॉर्मेशन दे रहा है मोदी जी के बारे में, शाह जी के बारे में, उनके बेटों के बारे में, मिनिस्टर्स के बारे में, अजीत डोवल के बारे में, पूरा इन्फॉर्मेशन आया, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़ हमारे सिस्टम से ही आ रहा है। अब ये हो सकता है कि जनता के प्रेशर को ये सप्रेस करने की कोशिश करें, इमरजेंसी जैसी चीज कर दे, हो सकता है। मैं मोदी जी के पास जाता हूं, जब मीटिंग में जाता हूं, मैं आपको बताऊं, मेरे पास मोदी जी के पर इतना इन्फॉर्मेशन है, मोदी जी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, जब मैं उनसे मिलता हूं, वो जानते हैं कि जिस सिस्टम को मैंने कंट्रोल किया था वो सिस्टम कोलैप्स कर रहा है और पूरा इन्फॉर्मेशन इसको दे रहा है। तो ये डायनेमिक चल रही है और आप देखना, मेरे अंदाजे से मेरा असेसमेंट है, एक साल के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे।
4: प्रधानमंत्री मोदी की सरकार पर राहुल गांधी अक्सर हमले करते हैं, लेकिन ये पहली बार है जब ऐसे दावों के साथ राहुल गांधी मानो सरकार की एक्सपायरी बता रहे हो। उधर अब तक राहुल गांधी सीईसी ज्ञानेश कुमार और अन्य अधिकारियों और एजेंसियों पर सरकार का नियंत्रण बताते रहे हैं, लेकिन अब की बार उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त से खुद को मैसेज मिलने का दावा कर सबको चौंका दिया। ऐसे बयान के बाद एनडीए ने राहुल गांधी को अलोकतांत्रिक बताने में देर नहीं की।
5: अरे गांव की कहावत है, कसाई के सरापने कभी गाय नहीं मरी है, राहुल गांधी उसी भूमिका में है। ये देश के ऐसे एलओपी हैं, ये मनाते हैं कि देश में इंटरनल लड़ाई हो जाए, ये मनाते हैं कि देश आर्थिक कठिनाइयों में चला जाए।
6: बहुत लोग संविधान का किताब लेके घूमते रहते हैं, करना है धरना कुछ नहीं है। इन लोगों को लोकतंत्र क्या मालूम है, इन लोगों को लोकतंत्र की परिभाषा भी नहीं पता है, लोकतंत्र क्या होता है। मोदी जी एक लोकतांत्रिक व्यक्ति है।
4: राहुल गांधी ने अब की बार सिस्टम के विद्रोह की बात की है, तो ये वही राहुल गांधी हैं जिनका 18 सितंबर 2025 का एक्सपोस्ट अब तक ताजा है। नेपाल में जेएनजी विद्रोह के कुछ दिनों बाद आए इस पोस्ट में राहुल गांधी ने लिखा था, देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स, देश की जेएनजी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। इस बीच कांग्रेस आर्थिक सुनामी आने के राहुल गांधी के दावे का जोरदार बचाव कर रही है।
7: चारों तरफ बर्बादी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। मोदी जी अपील कर रहे हैं कि कम खर्ची की जाए, ये अलग बात है कि पांच पांच जगहों पे देशों की यात्रा खुद 8,500 के विमान से करते हैं। तो सुधार की कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है, गिरावट ही होती जा रही है। तो नेता प्रतिपक्ष ने सही आकलन किया है कि आर्थिक रूप से सुनामी आएगी, देश के लिए गंभीर खतरा।
4: कांग्रेस को मौजूदा वक्त में देश डूबता दिख रहा है, सरकार लड़खड़ाती दिख रही है। 2024 के चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन डगमगाने के बाद भी राहुल गांधी कमोबेश ऐसा ही दावा करते थे।
8: जो पहले 56 इंच की छाती थी, अब नंबर तो नहीं दे सकता हूं, बट 30-32 हो गई है, राइट? तो अब पूरा जो ढांचा था, इतना बड़ा गुब्बारा था, वो इतना बड़ा हो गया।
4: वैसे राहुल ने पिछली बार जब मोदी को कमजोर बताया था तो उसके बाद बीजेपी को कई राज्यों में चुनावी सफलताएं मिली हैं। इधर 10 जून को प्रधानमंत्री मोदी सबसे लंबे समय तक चुने हुए प्रधानमंत्री बने रहने का पीएम नेहरू का रिकॉर्ड भी तोड़ देंगे। आज तक ब्यूरो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस

की एक इमारत में भी आग से तबाही। दिल्ली होटल अग्निकांड के बाद एक्शन में सरकार, सीएम रेखा गुप्ता ने बुलाई हाई लेवल बैठक, पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी तलब, अवैध संचालन और निर्माण पर सख्त कार्रवाई के निर्देश। दिल्ली में दिल्ली यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर की हत्या की आशंका, घर में मिला शव, सिर में गहरी चोट के निशान, कलाई की नस काटी गई, गहने कैश सब सुरक्षित। बंगाल जीत से बदले सियासी समीकरणों के बाद परिसीमन विधेयक को दोबारा संसद में लाने की तैयारी, मानसून सत्र में आ सकता है बिल, टीएमसी में टूट और इंडिया अलायंस में फूट का मिल सकता है फायदा। अमेरिका से चल रहे व्यापार समझौते के बीच यूएस को पुतिन की सीधी चेतावनी, कहा रूस की वजह से भारत पर प्रेशर बनाने का होगा खतरनाक असर, ट्रंप ने कहा पीएम मोदी अच्छे दोस्त।

0: स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ पूजा पराशर। बिना ब्रेक के आपके पसंदीदा ब्रेकफास्ट न्यूज शो में देश और दुनिया की बड़ी और जरूरी खबरों के साथ हम हाजिर हैं। खबरें रफ्तार से होंगी और विस्तार से, लेकिन खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले हमेशा की तरह बुलेटिन की झलकियों पर नजर। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड के बाद अब प्रशासन जाग गया है। शहर शहर होटल और बहुमंजिला इमारतों की चेकिंग, पूरी रिपोर्ट थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे। वहीं बात करेंगे यूपी के गाजीपुर की भी, जहां पर 1 लाख के इनामी बदमाश के एनकाउंटर के बाद बवाल हो गया, कई पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं और पूरी खबर विस्तार से आगे आपको बताएंगे। साथ ही पटना के कोचिंग वाले खान सर का नया चैप्टर, फायरिंग वाले मामले में खुद कैसे फंसते नजर आ रहे हैं फैजल खान, इस पर भी होगी आगे बात। और आधे घंटे बाद यानी सुबह 9:30 बजे आप देखिए 100 शहर 100 खबर। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर का सीधा रुख करते हैं। राजस्थान के भिवाड़ी के औद्योगिक क्षेत्र के एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। जानकारी के मुताबिक ट्रांसफार्मर में आग लगी है और 2 फैक्ट्रियों को अपनी चपेट में ले लिया गया इस आग ने, जिसमें फैक्ट्री के 5 कर्मचारी भी झुलस गए हैं। राजस्थान के भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में भीषण आग की तस्वीरें सामने आई है। 2 फैक्ट्रियों में आग लगी है और इसकी चपेट में 5 कर्मचारी झुलस भी गए हैं। कई लोग वहां पर मौजूद थे, ऐसे में वहां पर अफरा तफरी मच गई। राजस्थान के भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में भीषण तबाही की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। 2 फैक्ट्रियों में आग लगी, ट्रांसफार्मर में आग लगने का कारण बताया जा रहा है, जिसके बाद ट्रांसफार्मर में आग लगी और 2 फैक्ट्रियों को इस आग ने अपनी चपेट में ले लिया। शरद हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। शरद, क्या अपडेट है, कितने कर्मचारी वहां पर मौजूद थे? अभी तक जो खबर सामने आई है उसमें 5 कर्मचारी घायल भी हुए हैं।
1: हाँ पूजा, सुबह का वक्त था, ज्यादा कर्मचारी नहीं थे, ऑयल फैक्ट्री थी जिसकी वजह से ये आग तेजी से पकड़ी। ट्रांसफार्मर में ब्लास्ट हुआ था सुबह और ट्रांसफार्मर में ब्लास्ट की वजह से ऑयल फैक्ट्री दोनों पास में थी भिवाड़ी में, दोनों फैक्ट्री में ऑयल की फैक्ट्री होने से तेजी से आग पकड़ी। मगर कर्मचारी 5 जो झुलसे थे उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है और वो भिवाड़ी के अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि हमने आग पर काबू पा लिया है, जान की हानि इसलिए नहीं हुई कि सुबह का वक्त था और ट्रांसफार्मर में जो ब्लास्ट हुआ वो बाहरी ब्लास्ट हुआ था, मगर फैक्ट्री चूंकि ऑयल की थी इसलिए आग काफी तेजी से पकड़ी। वहां पर प्रशासन ने पहुंच के तेजी के साथ आग पर काबू पा लिया है फिलहाल।
0: चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शरद तमाम जानकारी के लिए। आग की खबर दिल्ली से सटे नोएडा से भी सामने आ रही है, उस पर भी बात करेंगे। नोएडा से एक बड़ी खबर आपको बता दें, सुबह सुबह नोएडा में 2 जगह पर आग लगने की खबर आई है। पहली नोएडा के सेक्टर 75 की एक सोसाइटी के फ्लैट में आग लगी, उसकी खबर। वो आग शांत हुई ही थी कि नोएडा सेक्टर 52 में एक पीजी में आग लगने की खबर है। जिस पीजी में आग लगी उस बिल्डिंग में नीचे रेस्टोरेंट है और ऊपर पीजी है, पीजी में भी आग लगी। ये तस्वीरें आप नोएडा सेक्टर 75 की एक सोसाइटी की देख रहे हैं, आईवी काउंटी सोसाइटी की, जिसमें टावर के 12वें फ्लोर पर आग लगी है, जिसकी एक फ्लैट में आग लगी थी जिसकी चपेट में एक दूसरा फ्लैट भी आ गया है। ये आप सोसाइटी सेक्टर 75 की तस्वीरें देख रहे हैं। और इतना ही नहीं, इसके बाद ये आग को बुझाने का प्रयास किया ही जा रहा था कि नोएडा के सेक्टर 52 में भी आग की तस्वीरें सामने आई है, एक पीजी में आग लगी है। ये तस्वीरें आप सोसाइटी की देख रहे हैं, सेक्टर 75 नोएडा की सोसाइटी, जिसके 12वें फ्लोर पर एक फ्लैट में आग लग गई जिसकी चपेट में दूसरा फ्लैट आ गया। गनीमत ये रही कि कोई भी हताहत नहीं हुआ है। ये तस्वीरें काफी भयावह है, डराने वाली है। इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भयंकर ये आग लगी थी। ऐसे में माहौल काफी ज्यादा गर्म सोसाइटी में हो गया और अफरा तफरी मच गई। लोगों को तुरंत वहां से सुरक्षित बाहर निकाला गया। जिस फ्लैट में आग लगी, एक फ्लैट में आग लगी थी जिसकी चपेट में दूसरा फ्लैट भी आ गया, लेकिन समय रहते हुए इस आग पर काबू पा लिया गया, वरना यह आग और भी भयंकर तरीके से फैलती। ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, पहली सेक्टर 75 की सोसाइटी में आग की तस्वीरें, दूसरी जिस पर काबू पाया गया और उसके बाद नोएडा सेक्टर 52 की बिल्डिंग में भी आग लग गई। दीपेंद्र हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी, भूपेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। जिस सोसाइटी में आग लगी है सीधा वहीं से तस्वीरें दिखाइएगा, अभी वहां पर कैसा माहौल है, क्या पूरी तरीके से आग पर काबू पा लिया गया?
2: जी पूजा, फिलहाल जो है आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन यहाँ पे जो है काफी भयंकर माहौल था, क्योंकि जो फ्लैट में जब आग लगी, आग इतनी भयंकर थी कि आसपास में जो फ्लैट में लोग रह रहे थे वो भी अपना घर छोड़ के तुरंत भागने को मजबूर हो गए, क्योंकि आग ने पूरे फ्लैट को अपने कब्जे में ले लिया था और आग सुबह सुबह लगी थी, लोग सो रहे थे तो उन्हें ये नहीं पता एकदम से आग लग गई। फायर विभाग की टीम जब तक यहाँ पे पहुंची थी तब तक पूरा फ्लैट जल कर राख हो चुका था, और जो उससे ऊपर वाला फ्लैट है उसे भी अपने आग ने अपनी चपेट में ले लिया। लेकिन फायर विभाग की आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियां मौके पे आई और फिलहाल उस आग को पूरी तरीके से काबू पा लिया गया। राहत की बात यह है कि किसी की जनहानि की कोई सूचना नहीं है, कोई अंदर वहां पे मौजूद नहीं था। बताया जा रहा है कि जब फ्लैट में आग लगी थी तो उस वक्त एसी जरूर चल रहा था, तो फायर अधिकारियों की माने तो उनका कहना यह है कि शायद एसी की वजह से, हीट होने की वजह से फ्लैट में आग लगी है, क्योंकि जब तक सूचना मिली थी तब तक पूरी तरीके से फ्लैट में आग लग चुकी थी। जी
0: चलिए ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आपके पास लौटेंगे। एक बार ये तस्वीरें दिखा देते हैं, सेक्टर 75 की सोसाइटी में आग लगी जिस पर अब काबू पा लिया गया है। शॉर्ट सर्किट वजह बताई जा रही थी और ये आग काफी तेजी से फैली जिसकी चपेट में एक और फ्लैट आ गया, लेकिन समय रहते हुए फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचती है, इस आग पर काबू पाया गया। और काफी मशक्कत करनी पड़ी है इस आग को बुझाने में, क्योंकि लगभग 12वां फ्लोर ये था फ्लैट का, और आप इससे समझिए कितनी हाइट पर ये फ्लोर था, तो काफी समय जरूर लगा इस आग को बुझाने में। लेकिन किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है, क्योंकि तुरंत लोगों को वहां से फ्लैट से खाली करा दिया गया। तो सोसाइटी में ये भीषण आग की तस्वीरें देख रहे हैं आप, जब ये आग लगी, और दूसरी तस्वीर आप देखें, इस आग पर काबू पूरी तरीके से पा लिया गया है। हालांकि थोड़ा अफरा तफरी का माहौल वहां पर हो गया, शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी है नोएडा सेक्टर 75 की आईवी काउंटी सोसाइटी जिसमें परिवार वाले रह रहे थे, वहां से तुरंत परिवार वालों को बचा लिया गया। तो सेक्टर 75 में जहां पर आग लगी है वहां पर हमारे सहयोगी मौके पर मौजूद है अंशुल सिंह। अंशुल, तस्वीरें दिखाइएगा अभी वहां पर कैसा माहौल है, क्योंकि जानकारी सामने आई है पूरी तरीके से आग पर काबू पा लिया गया है, लोगों का क्या कहना है?
3: जी बिल्कुल, नोएडा में आज सुबह दो जगह आग की खबर आई, एक सेक्टर 75 में और दूसरी सेक्टर 52 में। सेक्टर 75 वाली आग जो थी वो आईवी काउंटी सोसाइटी में थी, जहां पे आग को पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है और किसी भी जान माल के नुकसान की कोई भी खबर नहीं आई है। लेकिन अगर आप यहां तस्वीरों में देखें तो इस वक्त मैं सेक्टर 52 में मौजूद हूं, जहां एक पीजी के नीचे आग की ये घटना सामने आई है। और अगर आप ये तस्वीरों में देखें तो ये घटना करीब सुबह 8 बजे हुई थी, और उसके बाद काफी अफरा तफरी का माहौल मच गया था यहाँ पे। काफी लोग, काफी लड़के लड़की यहाँ रहते हैं ऊपर के मंजिलों में जो पीजीज में रहते हैं, और जब उनकी आग खुली तो उन्हें ये पता लगा कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी आग की घटना हो गई है। आग नीचे रेस्टोरेंट में थी बट आग बढ़ते बढ़ते ऊपर के मंजिलों पर पहुंची और कहीं ना कहीं काफी जानों को खतरा हो गया था। लेकिन गनीमत की बात यह रही कि नोएडा की जो फायर डिपार्टमेंट है और जो नोएडा की पुलिस है वो यहाँ पहुंच करके उन्होंने इस पूरे आग पर इस वक्त काबू पा लिया है, और जो भी लोग यहाँ मौजूद थे उनको अभी बचा लिया गया है। यहाँ पे कुछ लोग हैं, इनसे बात करने की कोशिश करूंगा मैं। मैम, आप यहीं रहते हैं पीजी में, क्या हुआ, कितने बजे ये आग लगी और क्या आप लोग सब ठीक हैं यहाँ पर?
4: टाइमिंग एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, बट जैसे धुआं आ रहा था मैं तुरंत दौड़ के नीचे आ गई थी, बाकी लोग ऊपर चले गए थे क्योंकि आग बढ़ गई थी उस टाइम पे, सो दे वेंट अप।
3: तो आप कौन से फ्लोर पे रहती थी यहाँ पे पीजी है?
4: सेकंड फ्लोर पर।
3: कैसे बचाया आपने, प्रशासन यहाँ पर पहुंच गई थी सही समय?
4: हाँ, आ गई थी। बाकी पीजी में जो टेक केयर करते हैं अंकल, वो चिल्ला रहे थे, उनके साउंड की वजह से मैं नीचे आ गई थी दौड़ के।
3: तो आप ठीक हैं, किसी तरह की मदद की जरूरत?
4: जी, ऑल ओके।
0: समय रहते सबको सुरक्षित बचा लिया गया अंशुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो नोएडा में दो दो जगहों पर आग लगने की खबर ऐसे समय में आई है जब नोएडा में कल से फायर डिपार्टमेंट ने 7 दिनों का चेकिंग और जागरूकता अभियान शुरू किया। नोएडा की तरह पूरे यूपी में होटल और बहुमंजिला इमारतें फायर सेफ्टी की जांच की जा रही है।
5: दिल्ली में होटल अग्निकांड के बाद किस तरह नींद से जागा है सरकारी महकमा, ये उसकी एक तस्वीर है। लखनऊ का अग्निशमन विभाग एक्शन में है। सीएम योगी के निर्देश पर होटलों और बहुमंजिला इमारतों में फायर सेफ्टी के इंतजामों की जांच शुरू हो चुकी है।
6: डीजी फायर खुद यहां पर सुजीत पांडे जी यहां पर पहुंचे हैं इस होटल में जो गोमती नगर स्थित है, यहां पर वो होटल में पहुंचे हैं चेकिंग करने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से फायर एक्सटिंग्विश या फायर से जुड़े हुए उपकरण काम कर रहे हैं कि नहीं, इन सभी को लेकर ये एक चेकिंग की जा रही, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक तरह से निर्देश दिए।
7: अभी हम देख रहे थे कि स्टेयरकेस की विड्थ ठीक है या नहीं, अगर एस्केप के लिए लोगों को उतरना पड़े। पार्ट टू ऑफ द सेम इज जब हम यह चेक करते हैं कि जो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स हैं, जैसे हाइड्रेंट्स हैं, जैसे होस पाइप है, जैसे स्प्रिंकलर्स हैं, यह ठीक लगे हैं या नहीं, जितने लगने हैं या लगे वो लगे हैं या नहीं, और वो काम कर रहे हैं।
5: नोएडा में अग्निशमन विभाग ने होटलों में 7 दिनों का विशेष जांच अभियान छेड़ दिया है। अफसर जब नोएडा के एक होटल में पहुंचे तो आग बुझाने का साजो सामान तो था, लेकिन उसे चलाने वाला प्रशिक्षित स्टाफ नहीं था।
8: आप कभी इलेक्ट्रिशियन बुला रहे हो, कभी ये बुला रहे हो, इलेक्ट्रिशियन का काम थोड़ी है, सारे स्टाफ को आना चाहिए चलाने।
5: गाजियाबाद में भी फायर विभाग एक्शन में है। जिले भर के होटल, हाई राइज सोसाइटी, रेस्टोरेंट और बहुमंजिला व्यावसायिक भवनों में विशेष फायर सेफ्टी जांच अभियान चलाया जा रहा है। ये सुनिश्चित करने की कोशिश हो रही है कि अग्निशमन उपकरण ठीक ठाक हों और स्टाफ भी प्रशिक्षित हों।
9: ये लिस्ट लाया ना, जिन होटलों में कमियां पाई जा रही हैं उनको लिखित रूप में नोटिस से अवगत कराया जा रहा है, साथ ही जो व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए और जो होटल स्टाफ है उनको उसके संचालन के बारे में विशेष रूप से अवेयर किया जा रहा है।
5: गाजियाबाद का फायर विभाग अब तक करीब 150 प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी कर चुका है। अब आगरा की तस्वीर देखिए, यहाँ भी आग बुझाने के उपकरणों की जांच जोरों पर है। आगरा की कई 3 और 5 सितारा होटलों में जाकर फायर विभाग की टीम ने जांच अभियान चलाया। गोरखपुर की तस्वीर भी देखिए, होटल के तमाम स्टाफ फायर डिपार्टमेंट के साथ मॉक ड्रिल में शामिल नजर आ रहे हैं। बाकायदा आग बुझाने का डेमो दिया गया और आग लगने की स्थिति में बचाव के हर तरीकों के बारे में बारीकी से बताया गया। ये भगवान राम की नगरी अयोध्या है, बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं की यहाँ आवाजाही होती है, ऐसे में दिल्ली जैसी कोई अनहोनी ना हो, लिहाजा फायर डिपार्टमेंट यहाँ भी मुस्तैद नजर आ रहा है। अग्निशमन विभाग ने शहर के होटल और होमस्टे संचालकों के लिए विशेष अग्नि सुरक्षा जागरूकता अभियान शुरू किया है। होटल कर्मचारियों को आग लगने की स्थिति में त्वरित बचाव, सुरक्षित निकासी और प्राथमिक राहत कार्यों का प्रशिक्षण दिया गया। जब भी कोई हादसा होता है इस तरह के उपाय शुरू हो जाते हैं, बेहतर हो ये रूटीन में शुमार हो, तभी दिल्ली अग्निकांड जैसे हादसे रोके जा सकते हैं। आज तक ब्यूरो।
0: चलिए अब बात कर लेते हैं दिल्ली के होटल अग्निकांड की, जहां पर भीषण आग लगी उससे जुड़ी अपडेट आपको दे दें कि दिल्ली अग्निकांड में एक बड़ा खुलासा हुआ है। बीएनबी फ्लोरिश स्टे के पास से टीएन स्नैक्स का लाइसेंस था जो कि 31 मार्च को खत्म हो चुका था। लाइसेंस की मियाद खत्म होने के बाद भी नियमों की अनदेखी कर पूरा होटल चलाया जा रहा था। इससे पहले आरोपी लवकेश ने पूछताछ में जो कुछ कबूल किया वो पूरे सिस्टम की नाकामी की ओर इशारा कर रहा है। लवकेश बजाज ने कबूल किया कि दिल्ली सरकार से 6 कमरों का बेड एंड ब्रेकफास्ट का लाइसेंस लिया था, लेकिन अवैध रूप से 28 कमरों का पूरा होटल खोल दिया। इस पूरी बिल्डिंग के लिए फायर डिपार्टमेंट से कभी कोई एनओसी ली ही नहीं गई थी, यानी कि लवकेश बजाज ने बिना किसी सुरक्षा इंतजाम के इस इमारत को मौत के कुएं में तब्दील कर दिया। हिमांशु मिश्रा जुड़ गए हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए। हिमांशु, ये जो बड़ा अपडेट इसमें सामने आया है, इस पूरे मामले में जो लापरवाही बरती गई है इस आरोपी द्वारा, अब क्या एक्शन इस पर लिया जाएगा और गिरफ्तारी हो चुकी है, इसके बाद अब क्या अपडेट है?
10: देखिए, 4 दिन की पुलिस रिमांड पर है इस वक्त लवकेश और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। कई सारी चीजें जो जब इस आप देखिए जो सामने आप देख रही हैं होटल, जब यहां पर डॉक्यूमेंट चेक किए गए तो उसके अकाउंटेंट जय मिश्रा के नाम पे मिले, तो इसके बाद से पुलिस ने जय मिश्रा की तलाश शुरू कर दी है, लेकिन फिलहाल जय मिश्रा के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक पुलिस को नहीं मिली है। तकरीबन 10 टीमें लोकल पुलिस की जय मिश्रा की तलाश में रेड्स कर रही हैं। अब आप सिलसिलेवार तरीके से समझिए कि किस तरीके से यहाँ पर नियमों की धज्जी उड़ाई गई। सबसे पहले तो आप देखिए मेन रोड पर कुछ ऐसे काम किए गए, क्योंकि कोई अंदर नहीं है, कोई छिप करके ये होटल नहीं बना था, ये मेन रोड पर बना था। और जो भी अधिकारी यहाँ आते होंगे उन्हें अच्छे से पता होगा कि इसके लिए सिर्फ 6 कमरों की परमिशन है, और सिर्फ इसी में नहीं, जो आगे चल रहे हैं दूसरे उनके लिए भी, ठीक बगल वाले के लिए भी, क्योंकि बेड एंड ब्रेकफास्ट स्कीम के तहत सिर्फ 6 कमरों की परमिशन थी। और ये आमतौर पे जो आप हाइट देख रहे हैं सिर्फ 2 फ्लोर की ही हाइट की अनुमति थी, लेकिन यहाँ पर आप देखिए कितनी ऊंची, आप देखिए ग्राउंड तो है ही है, ग्राउंड के नीचे बेसमेंट बनाया गया, फिर ग्राउंड और ऊपर 5 फ्लोर, और जहां पर 6 कमरे होने चाहिए थे वहां पर तकरीबन 25, 28 इस तरीके से कमरे बनाए गए। और डेथ ट्रैप एकदम आप कहिए कि एक ऐसा बनाया गया कि जब आग लगे, अब फ्रंट पे अब देखिए चूंकि एंट्री बहुत ज्यादा नहीं है, अगर आप देखेंगे तो फ्रंट की एंट्री कम है, अब वहीं पर मीटर भी लगे हुए हैं। आग लगी, तमाम जो साजो सामान के हैं, जो डिजाइन वर्क है, जो पूरा वो लकड़ी का और प्लास्टिक का, वो आप देखिए फ्रंट पर है, अब उनमें से आग की लपटें निकलने लगी। अब ऐसे में जो लोग बिल्डिंग के अंदर थे वो बिल्डिंग के अंदर फंस गए, उन्हें बाहर निकलने का वक्त नहीं मिला,
0: फायर की जिंदगी तबाह हो गई। हिमांशु चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तस्वीरें दिखाने के लिए, जानकारी के लिए। वहीं दिल्ली के होटल में हुए हादसे को लेकर एमसीडी सहित कई विभाग सवालों के घेरे में है। इस बीच मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अग्निकांड पर आज एक बार फिर से उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है, जिसमें दिल्ली पुलिस, राजस्व विभाग, नगर निगम, अग्निशमन विभाग और दिल्ली जल बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। रेखा गुप्ता ने कल भी मंत्रियों और अफसरों की मीटिंग ली थी, जिसमें अनधिकृत निर्माण और होटल के अवैध संचालन पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। सुशांत हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के लिए। सुशांत, आज भी एक बैठक बुलाई गई है, बैठक में क्या कुछ चर्चा की जाएगी और आगे अब जो दिल्ली में होटल्स है उन पर किस तरीके से जांच पड़ताल की जाएगी?
11: देखिए पूजा, जिस दिन ये हादसा हुआ था उसी रात को दिल्ली की मुख्यमंत्री की तरफ से एक बैठक जो है बुलाई गई थी, ज्वाइंट कमेटी का गठन किया गया था और टीमें जो है वो पूरी दिल्ली भर के अंदर लाई गई थी कि ताकि दिल्ली के अंदर तमाम जो होटल्स इस तरीके से चल रहे हैं इनलीगल तरीके से, उन पर कार्रवाई हो, उन पर एक्शन जो है वो किया जाए। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ है, क्योंकि दिल्ली में अगर देखा जाए एक ही दिन के अंदर एक होटल की एक लापरवाही के चलते 21 लोगों की जान चली गई, उसको लेकर के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता एक कहीं ना कहीं अगर कहा जाए तो उस पूरे मामले को लेकर के काफी चिंतित है। और इसी को लेकर के आज भी एक बड़ी बैठक जिसमें एमसीडी, जल बोर्ड, फायर, इसके अलावा जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, डीडीए है, और इसके अलावा एनडीएमसी है, फायर विभाग के अधिकारी और दिल्ली पुलिस, इन तमाम अधिकारियों की आज उच्च स्तरीय बैठक जो है वो दिल्ली सचिवालय में लगभग 12 बजे के आसपास जो है वो बुलाई गई है, जिसमें कई बड़े फैसले और कई सारे एक्शन जो है वो देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि पिछले 1-1.5 साल में अगर बात की जाए तो कई सारे हादसे जो है वो हुए हैं। अगर बात की जाए तो पिछले 2 या 3 महीनों के अंदर ही मार्च में जिस तरीके से हादसा हुआ विवेक विहार के अंदर, पालम के अंदर, जिसमें कई लोगों की जान गई, बैक टू बैक इस तरीके के जो हादसे हो रहे हैं और उसमें कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही, प्रशासन की लापरवाही, एमसीडी की लापरवाही, दिल्ली पुलिस की लापरवाही जो है वो सामने नजर आती है। और उसी को देखते हुए मुख्यमंत्री की तरफ से आज एक अहम बैठक जो है वो बुलाई गई है, जिसमें कई सारे कड़े फैसले जो है वो सरकार की तरफ से
0: लगातार दूसरे दिन ये हाई लेवल मीटिंग होने वाली है। हिमांशु बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। अब बात यूपी के गाजीपुर में कल हुए बवाल की कर लेते हैं। कारोबारी विदिन राय की हत्या के आरोपी 1 लाख के इनामी कमलेश बिंद के एनकाउंटर के विरोध में कल गाजीपुर में एक बड़ा बवाल हुआ है। दरअसल पुलिस जैसे ही कमलेश बिंद का शव लेकर गांव पहुंची, लोगों ने पुलिस पर पथराव करना शुरू कर दिया।

0: पथराव की ये तस्वीर गाजीपुर के फुल्लरपुर क्रॉसिंग की है। गुस्साई भीड़ के निशाने पर है गाजीपुर की पुलिस। अब ये दूसरी तस्वीर भी देखिए, लोगों का भारी हुजूम नजर आ रहा है। महिलाएं महिला पुलिस कर्मियों को आगे बढ़ने से रोक रही हैं, उनसे तीखी बहस कर रही हैं। ग्रामीणों की भीड़ पिकअप वैन के सामने दीवार बनी हुई थी, पुलिस वाले रास्ता खाली कराने के लिए मशक्कत करते नजर आ रहे थे। जिस पिकअप वैन के सामने ये बवाल चल रहा था, उस पर एनकाउंटर में मारे गए कमलेश बिंद का शव रखा था। हालात बेकाबू नजर आ रहे थे। हालात को संभालने के लिए भारी संख्या में अतिरिक्त पुलिस बल और वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर बुलाया गया। काफी मशक्कत के बाद हालात सामान्य हुए। बड़ी मुश्किल से पुलिस गाड़ी को कमलेश बिंद के गांव गौसाबाद से आगे ले जा पाई, लेकिन धक्का मुक्की और पथराव में सीओ सिटी शेखर सेंगर, नंदगंज थाना प्रभारी और महिला पुलिस कर्मियों समेत कुल 5 पुलिस कर्मी घायल हो गए। बहरहाल पुलिस सुरक्षा के बीच किसी तरह कमलेश बिंद के शव का अंतिम संस्कार कराया गया। गाँव में किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। अब पूरा मामला समझिए। 29 मई की रात होटल कारोबारी विनीत राय उर्फ हनी राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस केस में 3 जून को पुलिस ने 1,00,000 के इनामी बदमाश कमलेश बिंद को एनकाउंटर में मार गिराने का दावा किया। कमलेश बिंद के एनकाउंटर के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए। कल पोस्टमार्टम के बाद जैसे ही कमलेश बिंद का शव गौसाबाद गांव पहुंचा, परिजन और ग्रामीण आक्रोशित हो गए। देखते ही देखते विरोध प्रदर्शन ने उग्र रूप ले लिया और पुलिस पर पथराव शुरू हो गया। विनय कुमार सिंह, गाजीपुर, आज तक।
1: तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, जब पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां पर इतना पथराव, धक्का मुक्की की गई, क्या किसी ने उकसाया जिसके बाद वहां पर हबड़ा तबड़ी मच गई?
2: देखिए, 2 दिन पहले जब कमलेश बिंद का एनकाउंटर हुआ, 1,00,000 का इनाम था होटल व्यापारी विनीत राय की हत्याकांड में, उसके बाद से ही माहौल वहां पर तनावपूर्ण था। एक बात और ध्यान रखनी होगी कि एक रणनीतिक तौर पर एक प्लानिंग के तहत ये पुलिस पर हमला हुआ, क्योंकि आगे महिलाएं थीं।

0: किस तरीके से एंट्री हुई और उसके बाद किस तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, इसकी तफ्तीश में अभी दिल्ली पुलिस लगी है, लेकिन करीब 12 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, अभी तक दिल्ली पुलिस के हाथ जो है बताए जा रहे हैं बिल्कुल खाली हैं, और अभी तक ये पता ही नहीं लगा पाया गया है कि किस वक्त ये मर्डर हुआ, कितने लोग आए थे, कितने लोग इन्वॉल्व थे और क्या वजह थी, इस बारे में अभी तक किसी भी तरह का खुलासा नहीं
1: हुआ, इस बात की पुष्टि भी नहीं हुई है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अंशुल। वही सबसे पहले अब बात कर लेते हैं पंजाब के मोहाली से आए दिल दहला देने वाले एक वीडियो की, जहां पर एक निजी कंपनी में काम करने वाली 30 साल की युवती की उसके ही पूर्व प्रेमी ने चाकू मारकर हत्या कर दी। दफ्तर में ही आरोपी ने युवती पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने खुद पर भी चाकू से हमला कर आत्महत्या का प्रयास किया। दोनों को गंभीर हालत में एक निजी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने युवती को मृत घोषित कर दिया, जबकि आरोपी की हालत नाजुक बनी हुई है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि दोनों के बीच पहले प्रेम संबंध थे। सूत्रों के अनुसार करीब 6 महीने पहले दोनों का ब्रेकअप हो गया था और अब आरोपी ने इस दिल दहला देने वाली वारदात को अंजाम दिया। दफ्तर में घुसकर युवती की हत्या कर दी गई। हालांकि दफ्तर में जो लोग मौजूद थे उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन वो कोशिश नाकाम रही। कमलजीत हमारे साथ जुड़ गई है ज्यादा जानकारी के लिए। कमलजीत, पूर्व बॉयफ्रेंड बताया जा रहा है युवती का, जिसने युवती का कत्ल किया, वहां पर कितने लोग मौजूद थे, क्या कोशिश नहीं की गई उस युवती को बचाने की?
2: देखिए, सनसनीखेज मामला है, दिल दहलाने वाला मामला है। और आपको बता दें, यहाँ की दूसरी मंजिल है जो आपको SRP US लॉजिस्टिक्स है, US बेस्ड कंपनी है और यहाँ पे पैकर्स एंड मूवर्स का काम करते हैं। तो दूसरी मंजिल पे, और ऐसा बताया जाता है कि तकरीबन 200 एम्प्लॉयज हैं जो कि काम करते हैं यहाँ पर, और उस समय भी भीड़ भाड़ जरूर थी, लेकिन लड़की डेस्कटॉप पे अकेले काम कर रही थी। पीछे से हमला करता है हैरी, और उसके बाद ये सामने आता है कि दोनों का प्रेम संबंध रहा, 3 साल रहा, और ऐसा कहा जाता है एक साथ ही काम करते थे। और जब जैसे ही वो भागती है अपने डेस्क से, तो बचाव के लिए बाकी इम्प्लॉयज भी भाग कर आते हैं, इंटरवीन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्योंकि उसके हाथ में चाकू है, वो लगातार लड़की को गोदता रहता है और काफ़ी खून बह जाता है। उसी बीच में हमलावर ने कोशिश की कि अपने आप को भी चाकू से मारे, लेकिन एक फेल्ड सुसाइड अटेम्प्ट बताया जा रहा है। दोनों को तुरंत ही अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, एक निजी अस्पताल में, लेकिन वहां पे लड़की को मृत घोषित कर दिया जाता है। तो यहाँ पे एक क्लियर कट एंगल है कि जिल्टेड लवर वाला एंगल जो है वो अब सामने आया है। और खास तौर पे अब जो बात सामने आ रही है वो यही है कि इस तरह का जो सेफ एनवायरनमेंट होना चाहिए महिलाओं के लिए, जहां पे
1: ऑफिस में सेफ एनवायरनमेंट नहीं था। बहुत बहुत शुक्रिया कमलजीत संधू जानकारी के लिए। और चलिए अब सीधा रुख करते हैं इस वक्त की सुर्खियों का।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार, इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। एकजे द नंबर 1 कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

0: कॉर्नर, नोएडा की आईवी काउंटी सोसाइटी में भयानक लपटों से हड़कंप, एक और इमारत खाक, भिवाड़ी इंडस्ट्रियल एरिया की दो फैक्ट्रियों जली, 5 झुलसे। दिल्ली होटल अग्निकांड के बाद एक्शन में दिल्ली सरकार, सीएम रेखा गुप्ता ने बुलाई हाई लेवल बैठक, पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी तलब अवैध संचालन और निर्माण पर सख्त कार्रवाई के निर्देश। मोहाली की कंपनी में काम करने वाली लड़की की पूर्व बॉयफ्रेंड ने चाकू गोद कर की हत्या, जालंधर की रहने वाली थी डिंपल, दिल्ली यूनिवर्सिटी की असिस्टेंट प्रोफेसर की हत्या से हड़कंप, सिर पर गहरी चोट। बंगाल जीत से बदले सियासी समीकरणों के बाद परिसीमन विधेयक को दोबारा संसद में लाने की तैयारी, मानसून सत्र में आ सकता है बिल, टीएमसी में टूट और इंडिया अलायंस में फूट का मिल सकता है फायदा। अमेरिका से चल रहे व्यापार समझौते के बीच यूएस को पुतिन की सीधी चेतावनी, कहा रूस की वजह से भारत पर प्रेशर बनाने का होगा खतरनाक असर, ट्रंप ने कहा पीएम मोदी अच्छे दोस्त।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का।

0: नोएडा सेक्टर 75 की आईवी काउंटी सोसाइटी में 12वीं मंजिल पर फ्लैट में लगी भीषण आग। फ्लैट में आग लगने की सूचना पर फायर विभाग की टीम मौके पर पहुंची, आग पर पाया गया काबू। आग लगने का कारण अभी तक साफ नहीं हो पाया है, जांच में जुटा प्रशासन। नोएडा की हाई राइज सोसाइटी में आग से हड़कंप, लोगों में दहशत का माहौल। आईवी काउंटी के 12वें फ्लोर पर फ्लैट में लगी आग, दमकल विभाग ने शुरू किया कूलिंग ऑपरेशन। मालवीय नगर अग्निकांड पर सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा एक्शन, आज बुलाई हाई लेवल मीटिंग, अधिकारियों की तय होगी जवाबदेही। बैठक में दिल्ली पुलिस, राजस्व विभाग, नगर निगम, अग्निशमन विभाग और साथ ही दिल्ली जल बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी रहेंगे मौजूद। दिल्ली सरकार ने अवैध होटल, गेस्ट हाउस, अनाधिकृत निर्माणों और अग्नि सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के खिलाफ एक सख्त अभियान चलाने की घोषणा की। दिल्ली अग्निकांड में हादसे वाले होटल के पास एमसीडी का सिर्फ टी एंड स्नैक्स का लाइसेंस था, 31 मार्च को वो भी खत्म हो चुका था। 4 दिन की पुलिस रिमांड में है मुख्य आरोपी और होटल मालिक लवकेश, होटल के मैनेजर और अकाउंटेंट की तलाश जारी। आज सूरत और केंद्र शासित प्रदेश दमन दौरे पर पीएम मोदी, इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी 22,600 करोड़ से अधिक की विकास परियोजना की सौगात देश को सौंपेंगे। पीएम मोदी दौरे की शुरुआत दोपहर में हीरा नगरी सूरत से करेंगे। करीब 2:30 बजे वो हजीरा में महत्वपूर्ण औद्योगिक बुनियादी ढांचे और परिचालन की समीक्षा करेंगे। स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूती देते हुए सूरत में 24 घंटे ट्रॉमा केयर और केंद्रीय प्रयोगशालाओं से लैस 200 बिस्तर वाले आधुनिक अस्पताल का उद्घाटन भी करेंगे पीएम। दमन को मिलेगी नए हवाई अड्डे की सौगात, शाम 6 बजे हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। नए हवाई अड्डे से दमन में पर्यटन को मिलेगी नई उड़ान। दमन के कार्यक्रम से ही पीएम मोदी वर्चुअली लक्षद्वीप के लिए 885 करोड़ की बंदरगाह परियोजना की नींव रखेंगे। पश्चिम बंगाल में ममता को झटके पे झटका, टीएमसी से बागी नेता ऋतव्रत के निलंबन को स्पीकर ने बताया गलत, ऋतव्रत ने अपने गुट को बताया असल तृणमूल। ममता और टीएमसी पर बंगाल के कैबिनेट मंत्री दिलीप घोष का तंज, कहा भ्रष्टाचार पर बनी पार्टी का तय था टूटना, हमारे लिए सभी दरवाजे बंद। ममता बनर्जी के खिलाफ कोलकाता में अखिल भारतीय हिंदू महासभा की ओर से पुलिस में शिकायत, राजद्रोह का मामला दर्ज। ममता बनर्जी पर आरोप है कि बांग्लादेशी विद्रोही छात्र नेता उस्मान अहादी की हत्या के आरोपी के भारत भागने की कही थी बात। ममता और टीएमसी पर बंगाल के कैबिनेट मंत्री दिलीप घोष का तंज, कहा भ्रष्टाचार पर बनी पार्टी का तय था टूटना, हमारे सभी दरवाजे टीएमसी नेताओं के लिए बंद। एजेयूपी के संस्थापक हुमायूं कबीर ने पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को विधानसभा में वापसी का खुला प्रस्ताव दिया। कबीर ने ममता के लिए रेजीनगर सीट खाली करने की पेशकश की। हुमायूं कबीर ने कहा कि नंदीग्राम से ममता बनर्जी की जीत मुश्किल हो सकती है, लेकिन रेजीनगर से वो आसानी से विधानसभा पहुंच सकती है। हुमायूं कबीर का बड़ा बयान, कहा पार्टी की दयनीय स्थिति के लिए अभिषेक ही मुख्य वजह। मॉनसून सत्र में फिर से परिसीमन विधेयक पेश कर सकती है सरकार, सहमति बनाने के लिए डीएमके और टीएमसी से बातचीत की खबर, बिल के नए मसौदे पर इंतजार। आज असम में 12 नए मंत्री पद लेंगे गोपनीयता की शपथ, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व सरमा ने जारी किए सभी नाम। बीजेपी में ने राज्यसभा के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, पार्टी ने अरुणाचल प्रदेश से ताई तगाक को उम्मीदवार बनाया, वहीं गुजरात से 4 कैंडिडेट को टिकट दिया गया। इसके अलावा पार्टी ने एमपी से तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया। कांग्रेस ने भी राज्यसभा चुनाव के लिए 5 राज्यों से 7 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। कर्नाटक से खड़गे पवन खेड़ा और मंसूर अली खान मैदान। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश से वरिष्ठ नेता मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार बनाया, वहीं राजस्थान से नीरज डांगी को एक बार फिर से राज्यसभा के लिए मैदान में उतारा। इंडिया गठबंधन में दरार आई सामने, 8 जून को होने वाली बैठक में शामिल नहीं होंगे डीएमके, कांग्रेस की मौजूदगी से नाराज पार्टी का फैसला। कांग्रेस पर भड़के डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन, बताया धोखेबाज पार्टी, कहा विधानसभा चुनाव के बाद हम नहीं भूल सकते उनकी करनी। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनावों में 17 सीटों में से 5 सीटों पर महायुति की निर्विरोध जीत तय, विपक्षी उम्मीदवारों ने गुजरात को अपना नामांकन वापस लिया। दिल्ली पुलिस में बड़ा फेरबदल, 34 आईपीएस और अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया। दिल्ली मेयर कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली, धमकी भरे संदेश में दिल्ली और हरियाणा के कई स्थानों पर हमले की चेतावनी दी गई। ईमेल में दावा किया गया है कि 5 और 6 जून को दिल्ली चंडीगढ़ अंबाला और रेलवे ट्रैक और उस पर आईडी विस्फोट किए जाएंगे, साथ ही लोगों को यात्रा न करने की चेतावनी दी गई। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भारत की आर्थिक प्रगति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की खुलकर प्रशंसा की, बोले भारत आज दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल। पुतिन ने भारत की तारीफ करते हुए सबसे तेज आर्थिक विकास दर दर्ज करने वाले देशों में से एक बताया, भारत को रूस का एक भरोसेमंद और विश्वसनीय साझेदार बताया। अमेरिका पर निशाना साधते हुए पुतिन ने कहा, अमेरिका का पीएम मोदी पर दबाव डालना बेकार, अमेरिका से उसके बढ़ते संबंधों से भारत और रूस की पार्टनरशिप पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना अच्छा दोस्त बताया और उनकी तारीफ की, कहा कि वॉशिंगटन और नई दिल्ली के बीच जल्द ही एक व्यापार समझौता हो जाएगा। ट्रंप ने कहा कि पहले व्यापार में पिछले असंतुलन से के बावजूद उन्हें पूरा विश्वास है कि अमेरिका और भारत के बीच आखिरकार कोई समझौता होगा, व्यापार में अमेरिका को खूब मुनाफा हो रहा है। बीते गुरुवार को राजधानी दिल्ली में बदला मौसम, झमाझम बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत। तेज आंधी और बारिश के बीच दिन में ही छाया अंधेरा, बारिश और ठंडी हवाओं के कारण दिन के तापमान में भारी कमी। नोएडा में भी तेज आंधी के साथ झमाझम बारिश हुई, लोगों को गर्मी से राहत मिली लेकिन जलभराव के कारण यातायात हुआ धीमा, जाम की स्थिति। तेज आंधी पानी के कारण कई इलाकों में पेड़, यूनिपोल और स्ट्रीट लाइट गिरने की घटनाएं सामने आई, जबकि सड़कों और अंडरपास में भारी जलभराव से लोगों को काफी दिक्कत हुई। तेज आंधी के कारण नोएडा में करीब 400 पेड़ गिरे, नोएडा प्राधिकरण ने दी जानकारी। हरियाणा के सोनीपत में तेज हवाओं और बारिश से गिरा तापमान, गर्मी से जूझ रहे लोगों को इस बदलाव से मिली राहत। जयपुर में सूरज की तपिश से लोगों को मिली राहत, आसमान से बरसे बादल, मौसम सुहाना। देहरादून में भी हुई बारिश, उत्तराखंड के पहाड़ों के साथ मैदानों में भी हल्की ठंडक का एहसास। भोपाल में भी बरसे बादल, बढ़ती गर्मी के बीच लोगों ने ली राहत की सांस। पहाड़ों पर भी राहत की फुहार, शिमला में झूम के बरसे बादल और मौसम हुआ सुहाना। लद्दाख के पारंपरिक उत्सवों के बीच द्रास समर कार्निवल 2026 का भव्य शुभारंभ, समारोह शुरू होने के साथ ही केंद्र शासित प्रदेश में उत्सवों का दौर शुरू। कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में सेना की ओर से आयोजित ये कार्निवल 7 जून तक चलेगा, स्थानीय खेल संस्कृति और परंपरा का दिखेगा संगम। द्रास समर कार्निवल में हॉर्स पोलो, टेंट पेगिंग और तीरंदाजी की होती है प्रतियोगिताएं, खेलों को बढ़ावा देने की पहल। दिल्ली में बवाना इंफ्रा डेवलपमेंट का सामाजिक सरोकार अभियान, 115 मेधावी छात्राओं को बांटी साइकिल, मंत्री सिरसा और रविंद्र इंद्रराज सिंह मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर में बेहतर मौकों की तलाश में कारोबार का रुख कर रहे पढ़े लिखे युवा, रोजगार का नया माध्यम बन रहा है प्रदेश का स्टार्टअप इकोसिस्टम। यूपी बोर्ड के छात्रों के पास उधार का और मौका, इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए 27 जून तक आवेदन। कावड़ यात्रा के लिए दिल्ली सरकार बढ़ा सकती है आयोजन समिति की दी जाने वाली धनराशि, यात्रा के सुचारू संचालन के लिए फैसला। श्री अमरनाथ जी यात्रा के दौरान पर्यटकों और तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम, अनंतनाग पुलिस ने लॉन्च किया पहचान ऐप। वर्ल्ड नो टोबैको डे पर ब्रेकअप विद सुट्टा अभियान से 23,000 लोग जुड़े, डॉक्टर तरंग कृष्णा ने बताया अहम पहल। आज सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म बंदर, बॉबी देओल ने फिल्म में समर का किरदार निभाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 54वें जन्मदिन पर समर्थक जोरदार जश्न मना रहे हैं, कार्यकर्ताओं ने मंदिर में पूजा अर्चना करके कटा और योगी के पोस्टर की आरती उतारी। गुजरात के सूरत में दिन दहाड़े हुई लूट की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, फुटेज में एक शख्स फोन पर बात करता नजर आया और बाइक के पीछे की सीट पर रखी रुपयों से भरी थैली उठाकर फरार हो जाता। ग्रेटर नोएडा में रफ्तार का कहर देखने को मिला, सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि गाड़ियों में भीषण टक्कर हुई जिसके बाद कार नियंत्रण खो बैठी और सड़क किनारे बैठे लोगों को अपनी चपेट में ले लेती है, घटना डराने वाली। राजस्थान के जयपुर में बुजुर्ग महिला के साथ दिन दहाड़े लूट की सनसनीखेज वारदात सीसीटीवी में कैद, फुटेज में एक बदमाश महिला को सड़क पर धक्का देकर गिराता है और उसके सोने के गहने छीनकर फरार हो जाता है। यूपी के प्रयागराज में सीसीटीवी फुटेज में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराती दिखाई दी, इस कार हादसे में समाजवादी पार्टी के लोहिया वाहिनी के प्रदेश सचिव की मौत हो गई। मोहाली से बेहद दिल दहला देने वाली वारदात आई सामने, साथ काम करने वाले कर्मचारी ने महिला कर्मचारी की बेरहमी से चाकू मारकर की हत्या, खुद भी सुसाइड का किया प्रयास। प्रारंभिक जांच में प्रेम प्रसंग का मामला आया सामने, ब्रेकअप के बाद डिप्रेशन में था आरोपी। गाजीपुर में पुलिस टीम पर पथराव, एनकाउंटर में मारे गए कमलेश का शव देखकर बौखलाए ग्रामीण। हमले में 5 पुलिस वाले घायल हुए, पुलिस ने इस मामले में करीब 70 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। मध्य प्रदेश के खरगोन में मामूली विवाद को लेकर कार चालक ने चढ़ाई कार, पुलिस ने कार की जब्त, कार चालक की तलाश जारी। सहारनपुर में होटल की फायरपोल खुली, सुरक्षा इंतजाम फेल, एनओसी पर तलवार। पटना के फुलवारी शरीफ में निगरानी विभाग की छापेमारी, राजस्व कर्मचारी और दलाल 45,000 रुपए घूस लेते गिरफ्तार। अलीगढ़ में होटल की जांच में बड़ा खुलासा, संकरी गलियों में चल रहे कई होटल बिना फायर एनओसी के संचालित। सूरत में फायर ब्रिगेड की विशेष जांच, 57 होटल रेस्टोरेंट में फायर सेफ्टी का अभाव, कनेक्शन बंद करने के निर्देश। गोपालगंज में पुल की दरार का वीडियो बनाते समय युवक का मोबाइल गिरा, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आरा में पुलिस का नशे के सौदागरों पर बड़ा प्रहार, 1.5 किलो ब्राउन शुगर बरामद। राजस्थान के बाड़मेर में पानी के टैंक से शव बरामद, पत्नी और उसके साथियों पर हत्या का शक, पुलिस जांच में जुटी। सफदरजंग एनक्लेव के हुमायूंपुर बेसमेंट में फर्नीचर गोदाम में आग लगी, दमकल की 5 गाड़ियों ने पाया आग पर काबू, कोई हताहत नहीं। मुंडियाखेड़ा हत्याकांड में बड़ा फैसला, एडीजी कोर्ट ने 3 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। गोरखपुर में दर्दनाक हादसा, डिवाइडर पर सो रहे मजदूर पर मिट्टी से लदा डंपर पलटा, मौके पर मौत। एक बार फिर से पर्दे पर छाने वाला है डेविड धवन का 90 का जादू, आज सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म है जवानी तो इश्क होना है। एक बार फिर से दर्शकों का मनोरंजन करने आ रही है सबकी चहेती मिश्रा फैमिली, आज सोनी लिव पर रिलीज होगी वेब सीरीज गुल्लक का नया सीजन। एक्ट्रेस करिश्मा कपूर अब एक बार फिर से पुलिस अफसर के रोल में नजर आएंगी, आज Z5 पर रिलीज होगी ब्राउन। दृश्यम 3 के बाद एक्टर मोहनलाल अब OTT पर दिखाएंगे जादू, आज Z5 पर रिलीज हो रही है उनकी पहली पेट्रियट। आज अमेजन प्राइम पर स्ट्रीम होगी वेब सीरीज द पिरामिड स्कीम, जिसमें मुख्य भूमिका में है परमवीर सिंह चीमा, रणवीर शौरी और शेखर सोन। ट्रंप ने पत्रकारों से बातचीत में युद्धविराम को लेकर पेश की अपनी परिभाषा, कहा दुनिया के उस हिस्से में युद्धविराम का मतलब तब होता है जब आप अधिक संयमित तरीके से गोलीबारी कर रहे होते हैं। मध्य पूर्व में छिड़े युद्ध पर अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का चौंकाने वाला दावा, राष्ट्रपति ट्रंप तोड़ सकते हैं ईरान के साथ चला रहा युद्धविराम। IRGC नेवी ने ओमान सागर में अमेरिकी युद्धपोत पर किया हमले का दावा, वीडियो जारी कर कहा अमेरिकी युद्धपोत पर मौजूद अमेरिकी कमांड और कंट्रोल सेंटर को बनाया निशान। ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई ने ईरानी लोगों से अपील की, कहा हमें दुश्मन की साजिश को एकता और आपसी भरोसे से करना होगा नाकाम, मार्च में पद संभालने के बाद से मुस्तफा खामेनेई सार्वजनिक रूप से नहीं आए सामने। हिजबुल्ला ने इसराइल और लेबनान के बीच हुए युद्धविराम समझौते को नहीं दी सहमति, अमेरिका की मध्यस्थता वाले इस युद्धविराम समझौते को लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ फोन ने बताया था स्थायी शांति के लिए आखिरी मौका। रूसी सरकार ने यूरोप और नाटो देशों पर लगाया बड़ा आरोप, कहा नाटो सर्बिया के चारों ओर कस रहा है अपना शिकंजा, बाल्कन देशों पर पकड़ मजबूत करना चाहता है नाटो। अमेरिका के नाटो संगठन से निकलने के सवाल पर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बड़ा बयान, कहा ट्रंप प्रशासन का नाटो से हटने का कोई भी इरादा नहीं है, नाटो देशों से रक्षा बजट को बढ़ाने की अपील की। रूसी रक्षा मंत्रालय ने पूर्वी यूक्रेन के एक इलाके पर कब्जे करने का बड़ा दावा किया, कहा रूसी सेना ने बड़ी संख्या में मार गिराए यूक्रेनी ड्रोन। रूसी विदेश मंत्रालय ने आर्मेनिया के साथ रिश्तों में आई दरार पर बड़ी बात कही, पश्चिमी देशों के समर्थक माने जाने वाले आर्मेनियाई प्रधानमंत्री निकोल के दोबारा चुनाव लड़ने के दौरान संबंध हुए तनाव को। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में शिक्षा सुधार और ट्यूशन फीस में भारी बढ़ोतरी के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों ने जमकर तोड़फोड़ की, प्रदर्शन के कारण शहर के मुख्य रेलवे स्टेशन के आसपास यातायात हुआ बाधित। बात कर लेते हैं पटना के 2 कोचिंग संचालकों के बीच वर्चस्व की जंग की, फैजल खान उर्फ खान सर के कोचिंग सेंटर पर कथित फायरिंग के मामले में नया मोड़ सामने आया है। एक नया वीडियो सामने आने के बाद फैजल खान उर्फ खान सर के 2 गार्ड को गिरफ्तार कर लिया गया।
1: ज्ञानबिंदु कोचिंग के निदेशक रोशन आनंद की रिहाई की मांग को लेकर ज्ञानबिंदु कोचिंग के अलग अलग सेंटर के छात्र सड़कों पर उतर गए हैं। पोस्टर बैनर के साथ छात्रों ने प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। ये छात्र रोशन आनंद की रिहाई की मांग कर रहे हैं। दरअसल रोशन आनंद को फैजल खान उर्फ खान सर के कोचिंग सेंटर पर हमले के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन एक नया वीडियो वायरल होने के बाद इस केस में ट्विस्ट आ गया है और रोशन आनंद पर आरोप लगाने वाले फैजल खान खुद आरोपों से घिर गए हैं। नए वीडियो में फैजल खान का गार्ड गोली चलाता नजर आ रहा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस ने फैजल खान के दो गार्ड को गिरफ्तार कर लिया। फायरिंग वाली शाम का वो बयान देखिए जिसमें फैजल खान अपनी कोचिंग पर फायरिंग का आरोप लगा रहे थे।
2: अभी इन लोग का बस यही है कि इतने कम फीस में नहीं पढ़ाया जाए और इतने हजारों संख्या में जो रिजल्ट आता है पूरी तरह से इतनी गोली चलाने लगे। 10 मिनट में ऐसा लगा कि जैसे अफरा तफरी होके रख गया। यहाँ पर 8-10 राउंड तो हम देखे हैं, यहाँ पे 8-10 राउंड हम देखे हैं। हमें क्या पता है, अभी PMCH में एडमिट है, उसका पूरा सर फाड़ दिया गया है। यहाँ पर
3: क्या लगता है कौन क्या होगा?
2: बगल की कोचिंग वाले।
1: दरअसल कोचिंग संचालक फैजल खान और रोशन आनंद के बीच वर्चस्व की लड़ाई 27 मई से शुरू हुई थी जब बिहार पुलिस भर्ती का रिजल्ट आया था। दोनों कोचिंग संचालकों ने अपने ज्यादा स्टूडेंट की कामयाबी के दावे किए। दोनों तरफ से अपने अपने अभ्यर्थियों के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान दोनों ने बढ़ चढ़ कर पोस्टर भी लगाए।
4: 30 मई को पटना में दोनों ही कोचिंग संस्थानों और संचालकों की तरफ से अपने अभ्यर्थियों की सफलता का जश्न भी मनाया गया। लेकिन बात जब बिगड़ गई जब 3 जून की रात अपने अपने बैनर पोस्टर को लेकर के दोनों खेमे आमने सामने आ गए और नतीजा वर्चस्व की लड़ाई में बदल गया।
1: आरोप है कि फैजल खान के स्टाफ ने ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के बोर्ड पर अपना बैनर लगा दिया और यहीं से विवाद भड़क गया। 2-3 जून की रात को दोनों कोचिंग संचालकों के बीच में बवाल हो गया और तोड़फोड़ पत्थरबाजी से लेकर गोलियां चल गईं।
5: बिहार पुलिस में जो शानदार रिजल्ट हुआ है उसी का साजिश से हमको फंसाया जा रहा है। किसान कोल्ड स्टोर के मालिक और खान सर जो है दोनों मिल करके जो है ज्ञान बिंदु को बर्बाद करने का पूरा प्रयास कर रहा है, लेकिन सत्यमेव जयते, हमेशा सत्य की जीत।
1: दोनों कोचिंग संचालकों के बीच की जंग अब गोलीबारी तक पहुंच चुकी है। बच्चों का भविष्य बनाने का दावा करने वाले गुरु आपस में झगड़ रहे हैं और इस झगड़े में नए खुलासे के बाद खुद कोचिंग वाले खान सर बुरे फंसे हैं। क्या रोशन आनंद की तरह उन्हें भी गिरफ्तार करेगी पुलिस? पटना से शशि भूषण के साथ आज तक ब्यूरो।
0: यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आज तक।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
8: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included. Oh yeah! So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
9: Diehard music fan? Qello Concerts brings you thousands of full-length concert films and behind-the-scenes music documentaries. From today's icons to yesterday's legends, we have it all. Qello Concerts by Stingray. Now available for free on Pluto TV. Stream now, pay never.
10: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
4: अर्जुन कुछ भी पढ़े मेमोरी में नहीं रहता।
5: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स बादाम पिस्ता काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
6: लायन डेट नट बाइट्स।
7: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
8: AU सोच बदलो और बैंक भी।
9: In association with
10: cool stylish fans, enhance home decor with beautiful fans.
11: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
12: समर कूल कूलर हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। समर कूल कूलर लाइफ बनाए वंडरफुल।
9: हिंट बड़े आराम से। विमल बोलो जुबां केसरी।
0: शारदा यूनिवर्सिटी द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी। वेयर आर यू?
13: मैं इस वक्त उसी बिल्डिंग के बाहर हूँ जहाँ पर ये आग लगी।
14: मैं आपको टॉप एंगल से तस्वीर दिखाता हूँ और ये तस्वीर जो पूरा मंजर है उसको बयान करने के लिए काफी है।
15: यहाँ पर दूसरा एग्जिट गेट नहीं है तो किस तरीके से सेफ्टी नॉर्म्स का पालन किया गया था?
16: ये तस्वीरें बताती हैं कि किस तरीके से लापरवाही जो है वो पूरे इस इलाके में जो है वो चल रही है।
14: 20 लोगों की जान चली गई। और देखिए जब तस्वीर दिखाई जाती है एक एक करके तो इस तरह से दिल्ली पुलिस की टीम आती है और कहती है कि आप यहां से नहीं दिखाएंगे।
17: लोग मुझे पूछ रहे थे कि आप अभिषेक का बहुत करीब है तो मैं बोला कभी देखे हैं कि अभिषेक बैनर्जी का जन्मदिन में केक लेकर 7 घंटा 8 घंटा डितोब्रत कभी खड़ा हुआ? ये पॉलिटिक्स का पार्ट नहीं है। और खास करके यू आर द ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी तो वह जब अटैक हो रहा है 26 दिन आप घर से निकल नहीं रहे हो। मैं तो उलुवेरिया पूर्व का विधायक सामान्य विधायक मैं तो अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी में जा रहा हूँ मुझे तो चोट चोट कोई बोल नहीं रहा है। तो जो लोगों को लोग बोल रहे हैं ये लोग गद्दार है तो जनवाद में जामुरियत में हर कोई को बोलने का राइट है मगर जामुरियत का एक जो सबसे बड़ा चीज है कि हर लोग जो बोले वो बोलना चाहिए। तो गद्दार लोग बोल सकते हैं बोलेंगे भी मगर कोई चोट चोट नहीं बोल रहा है और पिट भी नहीं रहा है।
18: आज आप लोगों ने मिलकर ये जो 80 लोगों का एक टीम जो आगे जाकर तृणमूल को रिप्रेजेंट करेंगे तृणमूल सुप्रीमो या फिर अभिषेक बनर्जी के काम करने पे क्या आपत्ति रहा है?
19: जिस दल में गणतंत्र नहीं रहे जिसमें डेमोक्रेसी नहीं रहे तो उस दल में रहना नहीं रहना एक ही बात है। इसीलिए हम लोग जहां हम लोगों को बोलने का मौका नहीं दिया जाता जहां हमें बात नहीं सुनी जाती है जहां हमारे लोगों को मारा जाता है तृणमूल के कर्मियों को पिटाई किया जाता है और नेतृत्व चुप से बैठा रहता है उस दल के साथ नहीं रहना।
18: टीएमसी का क्या भविष्य लगता है आपको?
19: वो बताएंगे वो जो लोग वहाँ पर हैं अभी वो लोग बताएंगे।
18: हमने अभिषेक बनर्जी का जो रोल रहा है उसे आप कैसे देखते हैं? आप तो
19: हम सुनिए ना हम अभिषेक बनर्जी को नहीं पहचानते हम ममता बनर्जी के साथ दल किया है। ममता बनर्जी आज भी हमारी नेत्री है हम उनको हम लोग ने रिक्वेस्ट किया है कि आप एडवाइजर होके हम लोग चीफ एडवाइजर के साथ बात कीजिए।
20: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
21: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
9: इन एसोसिएशन विद
22: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
21: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।
22: एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।
23: Starting a business? Put it in the right hands with LegalZoom. Because the last thing you'd want to do is let it fall into the wrong hands. With easy-to-use tech and 25 years of experience, LegalZoom offers personalized support to help ensure your business is formed accurately and complies with state regulations. So if you need a legal hand, visit LegalZoom. LegalZoom provides access to independent attorneys and self-service tools. LegalZoom is not a law firm and does not provide legal advice.
1: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included. Oh, yeah. So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
2: Hey, this is Freddie Coleman from Freddie and Harry. Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
3: Third period comes to an end. Game two headed to overtime.
2: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and nonstop sports talk so you don't miss a section of action.
3: They score!
2: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
4: पश्चिम बंगाल क्रांति की जमीन है और ममता क्रांति के 28 साल बाद अब बंगाल में नई सियासी क्रांति हुई है, जहां पार्टी तो एक है टीएमसी, अध्यक्ष एक है ममता बनर्जी, लेकिन नेता विपक्ष दो हैं। ममता के नेता विपक्ष शोभन देव चटर्जी, बागी गुट के ऋतव्रत, चीफ विप दो हैं। ममता के चीफ विप फिरहाद हाकिम, बागी गुट के चीफ विप अकरुजमा, उपनेता विपक्ष छह हैं। ममता के उपनेता विपक्ष हैं आशिमा पात्रा, नैना बनर्जी, बागी गुट के उपनेता विपक्ष जावेद अहमद खान, सबीना यास्मीन, शिवली साहा और संदीपन साहा। मतलब साफ हो गया, ममता की पार्टी टूट चुकी है, क्योंकि स्पीकर ने ममता की पार्टी की ओर से भेजे गए नेता विपक्ष, उपनेता विपक्ष और चीफ विप के बजाय बागी गुट के नेता विपक्ष, उपनेता विपक्ष और चीफ विप के नामों को मान्यता देकर कमरे की चाबी थमा दी। दरअसल मामला ये कि 4 मई के नतीजों के बाद 6 मई को टीएमसी की बैठक हुई, विधानसभा सचिवालय को चिट्ठी भेजी गई कि शोभन देव चट्टोपाध्याय को नेता प्रतिपक्ष और फिराद हकीम को मुख्य सचेतक बनाया जाएगा। स्पीकर ने पार्टी की आधिकारिक स्वीकृति मांगी। 13 मई को सांसद और पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने अपने दस्तखत वाली चिट्ठी भेज दी। सचिवालय ने फिर विधायकों की सहमति पूछी। 19 मई को 70 विधायकों के दस्तखत वाली चिट्ठी भेज दी गई। आरोप है किसी चिट्ठी में वो फर्जी दस्तखत कर दिए गए, जिसकी सीआईडी जांच चल रही है। अब सवाल है कि 2/3 बहुमत के साथ 80 में 60 विधायकों ने अलग गुट तो बना लिया, लेकिन अभी लोकसभा में 28 और राज्यसभा में 13 सांसद हैं। अलग गुट को दलबदल कानून से बचने के लिए 19 लोकसभा और 8 राज्यसभा सांसदों के गुट की जरूरत है। बीजेपी के नेता सौमित्र खान कह चुके हैं कि 20 सांसद उनके संपर्क में हैं। ये भी पता चलता है कि ममता धरना भी देती हैं, तो सिर्फ 6 सांसद पहुंचते हैं। और अफवाह ये भी कि आम आदमी पार्टी की तरह एक साथ 8 राज्यसभा सांसद भी इस्तीफा दे सकते हैं। ऐसे में बंगाल में बीजेपी के असली कैडर को फिक्र होने लगी है। कांग्रेस कह रही है कि टीएमसी के दागी सब जांच और कार्रवाई के डर से बीजेपी में चले गए, बाकी बचे खुचे नेताओं ने अलग गुट बना लिया, अब आम कार्यकर्ता चाहे तो कांग्रेस में आ जाए। कहानी महाराष्ट्र में शिवसेना की टूट के रास्ते पर आगे बढ़ती दिख रही है। महाराष्ट्र में भी शिंदे ने अलग गुट बनाकर विधायकों के समर्थन का दावा किया। बंगाल में भी वही हुआ। महाराष्ट्र में भी स्पीकर ने बागी गुट को मान्यता दी। बंगाल में भी स्पीकर ने वही किया। महाराष्ट्र में भी शिंदे ने ठाकरे की तस्वीरें लगाकर रखी थी। बंगाल में भी बागी गुट ममता का नेतृत्व स्वीकार करने को तैयार है। बस फर्क ये कि बंगाल में अलग पार्टी का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन अब जब विधायक अभिषेक का नेतृत्व कबूल करने को तैयार नहीं और ममता अभिषेक को छोड़ने के लिए तैयार नहीं, ऐसे में टीएमसी पर कब्जे की लड़ाई अदालत से चुनाव आयोग तक जाने वाली है। वैसे शिवसेना वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई 2023 को दिया आदेश में साफ कहा था कि पार्टी के व्हिप और सदन में पार्टी के नेता की नियुक्ति राजनीतिक दल की ओर से की जाती है, न कि विधायी दल की ओर से। इसके अलावा किसी विशेष तरीके से मतदान करने या मतदान से दूर रहने का निर्देश भी राजनीतिक दल की तरफ से जारी किया जाता है, न कि विधायी दल की तरफ से। इस आदेश के नजरिए से कानूनी लड़ाई में ममता के लिए विकल्प खुले दिखते हैं। हालांकि टीएमसी ने अब तक अदालत का रुख नहीं किया। ममता बनर्जी ने सभी संगठन इकाइयों को भंग करके पार्टी का नेतृत्व अपने हाथ में ले लिया है। अनुपम मिश्रा, कोलकाता आज तक।
5: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

देश के कई इलाकों में आग ने मचाया तांडव। नोएडा की आईवी काउंटी सोसाइटी में भयानक लपटों से हड़कंप। एक और इमारत हुई खाक। भिवाड़ी इंडस्ट्रियल एरिया की दो फैक्ट्रियां जली, पांच झुलसे। दिल्ली होटल अग्निकांड के बाद एक्शन में है सरकार। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज बुलाई हाई लेवल बैठक। पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी तलब। अवैध संचालन और निर्माण पर सख्त कार्रवाई के निर्देश। मोहाली की कंपनी में काम करने वाली लड़की की पूर्व बॉयफ्रेंड ने चाकू गोदकर की हत्या। जलंधर की रहने वाली थी डिंपल। दिल्ली यूनिवर्सिटी की असिस्टेंट प्रोफेसर की हत्या से भी हड़कंप। सिर पर गहरी चोट। बंगाल जीत से बदले सियासी समीकरणों के बाद परिसीमन विधेयक को दोबारा संसद में लाने की है तैयारी। मॉनसून सत्र में आ सकता है बिल। टीएमसी में टूट और इंडिया अलायंस में फूट का मिल सकता है फायदा। अमेरिका से चल रहे व्यापार समझौते के बीच अमेरिका को पुतिन की सीधी चेतावनी। कहा, रूस की वजह से भारत पर प्रेशर बनाने का होगा खतरनाक असर। ट्रंप ने कहा, पीएम मोदी अच्छे दोस्त।

0: नमस्कार, सुबह के 10 बज गए हैं। मैं हूं अंजलि इस्टवाल, स्वागत है आपका आज सुबह में। यह हमारा कार्यक्रम है और सबसे पहले देखिए बुलेटिन की झलकियां। इस बुलेटिन में आखिर क्या है खास? गाजीपुर में कमलेश बिंद का एनकाउंटर और अब बवाल हो गया है। मोहाली में लव ब्रेकअप और मर्डर की सनसनीखेज वारदात हुई है, इसकी भी पूरी खबर बताएंगे। बात राज्यसभा चुनाव में बांटे गए टिकटों और उनके समीकरणों की भी करेंगे। और ठीक 10:30 बजे दिल्ली अग्निकांड का चैप्टर खुलेगा कि वो कौन लोग थे जिनकी शह पर लोकेश का होटल बिना किसी रोक टोक के चल रहा था। तो शुरुआत आग की घटनाओं से करेंगे। नोएडा और भिवाड़ी में आग लगी है। नोएडा में दो जगहों पर आग से अफरा तफरी मच गई। सेक्टर 75 की सोसाइटी और सेक्टर 52 का एक पीजी, इन दोनों में आग लगी। जो वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो राजस्थान के भिवाड़ी में भी आग लगी है। ये इंडस्ट्रियल एरिया है जहां घटना हुई है। तो ये तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो आग की लपटों की नजर आ रही है। अलग अलग इलाके, दो नोएडा के और एक राजस्थान का भिवाड़ी का इंडस्ट्रियल एरिया। तो पहले चलते हैं नोएडा के सेक्टर 75 जहां एक बहुमंजिला इमारत में आग लग गई। बिल्डिंग के 12वें फ्लोर पर आग लगी है। बड़ी खबर यह है कि इस आग को आप देख सकते हैं तस्वीरों में, भीषण आग। और दूसरी आग जो लगी वो सेक्टर 52 में लगी है नोएडा के, वो एक पीजी है यानी कि पेइंग गेस्ट, जिसमें आग लगी है। तस्वीर जो इस वक्त आप देख रहे हैं वो हम आपको नोएडा के दोनों इलाकों की लेकर आ रहे हैं, सेक्टर 75 और सेक्टर 52। सेक्टर 52 के शताब्दी विहार में पीजी है जहां आग लगी है। नीचे रेस्टोरेंट चल रहा था, ऊपर पीजी की फैसिलिटी थी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां दोनों जगह पर मौके पर पहुंची। आग की वजह से जो पीजी था सेक्टर 52 का, उसमें रहने वाले लोगों में हड़कंप मच गया। समय रहते सभी लोग बाहर आ गए, कोई हताहत नहीं हुआ है। और जो सेक्टर 75 की बहुमंजिला इमारत है, सोसाइटी, उसमें भी किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। तस्वीर आपके सामने नोएडा के सेक्टर 75 की उस सोसाइटी की जहां पर 12वीं मंजिल पर आग लगी।
1: आ गया, पानी चला दिया ना।
0: एक फ्लैट में भीषण आग की खबर आई और धीरे धीरे आग आप देख सकते हैं किस तरीके से फैल गई। लेकिन गनीमत यह रही कि सब वक्त रहते नीचे आ गए। बिजली का कनेक्शन, पीएनजी का कनेक्शन, सोसाइटी का कार्ड दिया गया ताकि किसी तरह का हादसा ना हो। दमकल के कर्मचारी वहां वक्त रहते पहुंच गए। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी अंशुल, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। अंशुल, दो नोएडा के हिस्से, एक सेक्टर 75 और एक सेक्टर 52, दोनों जगह आग लगी। स्थिति कैसी है इस वक्त? क्या दोनों जगह आग अब ठंडी हो चुकी है?
2: जी बिल्कुल, आज सुबह नोएडा में जब सूरज निकला तो काफी अफरा तफरी का माहौल था। दो जगह आग की खबर आई। सुबह 7 बजे के करीब आईवी काउंटी सेक्टर 75 में आग लगने की खबर आई जहां दो फ्लैट पूरी तरह से जल गए हैं। लेकिन गनीमत की बात यह रही कि उस पूरे हादसे में किसी भी तरह की जान के नुकसान की खबर अभी तक सामने नहीं आई है। वहीं दूसरी जो आग लगी ये बड़ी आग थी और ये यहां नोएडा सेक्टर 52 में लगी थी। अगर मैं आपको अपने पीछे तस्वीरों में दिखाऊं तो यही वो कॉम्प्लेक्स है जिसमें आग लगी। यहाँ नीचे ग्राउंड फ्लोर पे एक रेस्टोरेंट चलाया जा रहा था। बताया ये जा रहा है कि इस रेस्टोरेंट से ही आग शुरू हुई और अभी तक जो तफ्तीश हुई है उसमें ये समझ में आया है कि यहाँ एक फ्रीजर था, फ्रीजर से आग शुरू हुई और फिर आग के लपटे जो है ऊपर की तरफ बढ़ने लगी। ऊपर के फ्लोर पर एक बैंक है और बैंक के ऊपर जो है ये काफी सारे पीजी और कमरे हैं जहां काफी सारे छात्र छात्राएं रहते हैं। यहां पर भी गनीमत की बात ये रही कि किसी भी तरह की जान माल की हानि नहीं हुई है, कोई भी हताहत नहीं हुआ है। जो लोग यहां ऊपर फंसे हुए थे उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए ऊपर छत पर वो लोग समय रहते छत पर पहुंच गए और फिर अग्निशमन यहां पहुंचती है। अग्निशमन आग पर काबू पाती है और जो लोग ऊपर फंसे हुए थे उनको सफलतापूर्वक नीचे उतार लिया गया है। तो कहीं ना कहीं दो बड़ी आग की घटनाएं आज सुबह नोएडा में हुई। लेकिन गनीमत की बात यह रही कि दोनों घटनाओं में किसी भी तरह की जान का नुकसान नहीं हुआ। अब जो अग्निशमन विभाग है और नोएडा पुलिस है अब इस बात की तफ्तीश कर रही है कि क्या यहाँ पर जो लाइसेंसेस चाहिए, जो एनओसी चाहिए एक पीजी चलाने के लिए, क्या इस बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स में वो लाइसेंसेस और लाइसेंसेस थे या नहीं थे, अब इसकी तफ्तीश चल रही है और उसके बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बड़ी खबर ये है कि दो जगह आग की खबर आज सुबह सामने आई और दोनों जगह किस तरह की जान के नुकसान।
0: शुक्रिया अंशुल इस पूरी जानकारी के लिए। तो नोएडा में तो कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन अब रुक करते हैं भिवाड़ी का, जहां से दुखद खबर है। राजस्थान के भिवाड़ी के औद्योगिक क्षेत्र में आग लगी और भिवाड़ी में एक फैक्ट्री में ये भीषण आग लगी, जिसकी वजह से हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक ट्रांसफॉर्मर में लगी आग ने दो फैक्ट्रियों को अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें फैक्ट्री के 5 कर्मचारी झुलस गए हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर हैं और आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी है। 5 लोगों के झुलसने की खबर आ रही है। चिंताजनक बात है, आग ट्रांसफॉर्मर से लगी लेकिन दो फैक्ट्रियों तक फैल गई। इंडस्ट्रियल इलाका है भिवाड़ी का ये, जिसमें आप देख सकते हैं कितनी बड़ी आग लगी है। वक्त रहते इसको दो फैक्ट्रियों तक सीमित किया गया, लेकिन फिर भी नुकसान काफी हुआ है। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी शरद कुमार, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। शरद, भीषण आग है ये, देख सकते हैं काला धुआं निकल रहा है, आग बड़ी थी। अभी आपको क्या पता चल रहा है आग के बारे में और उन 5 लोगों के बारे में जिनके झुलसने की खबर आई थी?
3: अंजलि, जो मजदूर झुलसे हुए थे 5, उन्हें अस्पताल में शिफ्ट करा दिया गया है, जिनका इलाज जारी है। अभी फिलहाल स्थिति उनकी स्टेबल है। ये जो दो ऑयल फैक्ट्रियां हैं उनके बाहर ट्रांसफार्मर लगा हुआ था, उसमें ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट की वजह से, क्योंकि ऑयल फैक्ट्री थी वहां पर ज्वलनशील पदार्थ था, इसकी वजह से आग काफी तेजी से वहां पर पकड़ा। लेकिन अच्छी बात ये है कि सुबह का वक्त था, मजदूर कम थे, जिसकी वजह से बड़ी दुर्घटना टल गई है। मगर प्रशासन का कहना है कि हमने समय रहते हुए आग पर काबू पा लिया है और फिलहाल जो वहां पर राहत के काम है वो खत्म हो गए हैं। हालांकि फैक्ट्री बहुत बड़ी नहीं थी, मगर फिर भी बड़ा नुकसान हुआ है। जान का कोई अभी तक नुकसान नहीं हुआ है, जो घायल है उनका इलाज अभी जारी है।
0: जी शरद, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के। और अब रुक करते हैं दूसरी बड़ी खबर का, बात यूपी के गाजीपुर की करेंगे, जहां एनकाउंटर में मारे गए आरोपी की शव यात्रा में बवाल हो गया। गाजीपुर के कोतवाली इलाके का ये मामला है, जहां पर ये बवाल हुआ है। कमलेश बिंद नाम के शख्स का पुलिस ने एनकाउंटर किया था, उस पर 1,00,000 का इनाम भी था। कल जब उसके शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था, उसी वक्त ये बवाल हो गया। भारी पथराव हुआ है, कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। इलाके में तनावपूर्ण स्थिति लगातार बनी हुई है। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं उस वक्त की, जब ये पूरा बवाल हुआ। देखिए किस तरीके से शव यात्रा के दौरान वहां पर सामने महिलाएं आ गई, लोगों ने धक्का मुक्की की और बाद में पथराव की खबर भी आई है। ये सब हुआ इसलिए कि एक शख्स जिसे इनकाउंटर में मार गिराया गया था, उसकी शव यात्रा उस वक्त जा रही थी, उसका अंतिम संस्कार के लिए उसे ले जाया जा रहा था, जब ये पूरा तनाव हुआ है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए आइए सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी संतोष शर्मा का। संतोष, पुलिस के लिए ये काफी तनावपूर्ण स्थिति हो गई थी, किस तरीके से इसे काबू में लाया गया और अब क्या इलाके में तनाव है या सब कुछ सही है?
4: देखिए, 2 दिन पहले 1,00,000 के इनामी बदमाश का एनकाउंटर किया होटल व्यवसायी विनीत राय के हत्याकांड में। इसमें टोटल 4 लोग नामजद किए गए थे, उसमें एक जो मुख्य आरोपी था बिंद, उसको 1,00,000 का इनामी घोषित करने के बाद पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। एनकाउंटर के बाद शव का पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम के बाद जब शव उसके गांव पहुंचा तो वहां पर पुलिस बल मौजूद था, लेकिन उतनी संख्या में भी नहीं था। और दूसरा, शायद पुलिस का इंटेलिजेंस को भी इतनी जानकारी नहीं थी कि वहां किसी तरीके की ऐसी प्लानिंग है। यही वजह थी कि वहां पर महिलाओं को आगे करके पुलिस पर हमला किया गया, पुलिस पर पथराव किया गया, जिसकी वजह से थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी मची, पुलिस बैकफुट पर आई। लेकिन जब बैकअप पहुंचा तो रात में देर रात स्थिति को नियंत्रित किया गया, कई लोगों को हिरासत में लिया गया है और FIR दर्ज की गई है। करीब 2 दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जिस युवक का बिंद का एनकाउंटर हुआ, 1,00,000 का इनामी बदमाश, बदमाश था उसके ऊपर 1 लाख का इनाम जरूर था, लेकिन उसकी जो भाभी है वो वहां पे ग्राम प्रधान है। तो ऐसे में प्रधान भाभी थी तो उसकी अगुवाई में ही कहा जा रहा है, जो जानकारी पुलिस के द्वारा मिल पा रही है जो स्थानीय लोगों से, कि उसकी अगुवाई में ही ये विरोध प्रदर्शन किया गया। परिजनों का आरोप है कि ये फेक एनकाउंटर है, पुलिस ने पकड़ करके मार दिया। ये अलग बात है कि जो पीड़ित होटल व्यापारी का लड़का जिसका की हत्या हुई है विनीत राय की, वो 2 साल से ये परिवार इनकी रंगदारी से परेशान था, इनके गुंडा टैक्स से परेशान था, और उसके बाद जब लगातार गुंडा टैक्स देने के लिए दबाव बन रहा था और नहीं दिया तो हत्या कर दी गई। उसके बाद 1 लाख का इनामी होने के बाद एनकाउंटर कर दिया गया। अभी इसका एक और साथी है, 1 लाख का इनामी बदमाश, उसकी भी तलाश की जा रही है। 2 अन्य हैं 50,000 के नामी, उनकी भी तलाश की जा रही है। लेकिन अगर देर रात की बात करें तो देर रात गाजीपुर के शहर कोतवाली में हुई इस घटना के बाद पुलिस बल तैनात है और स्थिति नियंत्रण में है।
0: जी, स्थिति नियंत्रण में है, ये अच्छी बात है। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। लेकिन इस मामले पर ही बड़ी खबर आ रही है, गाजीपुर में एनकाउंटर और बवाल पर अब राजनीति गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि बीजेपी राज में महाभ्रष्ट शासन प्रशासन ने जनता का विश्वास खो दिया है। हत्याओं और एनकाउंटर ने उत्तर प्रदेश की छवि को पूरी तरह नकारात्मक बना दिया है। अखिलेश ने लिखा है कि बीजेपी खुद अपराधी है। तो चलिए जानते हैं कि गाजीपुर में हुआ क्या था, वजह क्या थी इस एनकाउंटर की, और ये बवाल यूं ही हुआ या इसके पीछे कोई और वजह है। देखिए ये रिपोर्ट।

0: पथराव की ये तस्वीर गाजीपुर के फुल्लरपुर क्रॉसिंग की है। गुस्साई भीड़ के निशाने पर है गाजीपुर की पुलिस। अब ये दूसरी तस्वीर भी देखिए, लोगों का भारी हुजूम नजर आ रहा है। महिलाएं महिला पुलिसकर्मियों को आगे बढ़ने से रोक रही हैं, उनसे तीखी बहस कर रही हैं। ग्रामीणों की भीड़ पिकअप वैन के सामने दीवार बनी हुई थी। पुलिस वाले रास्ता खाली कराने के लिए मशक्कत करते नजर आ रहे थे। जिस पिकअप वैन के सामने ये बवाल चल रहा था, उस पर एनकाउंटर में मारे गए कमलेश बिंद का शव रखा था। हालात बेकाबू नजर आ रहे थे। हालात को संभालने के लिए भारी संख्या में अतिरिक्त पुलिस बल और वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर बुलाया गया। काफी मशक्कत के बाद हालात सामान्य हुए। बड़ी मुश्किल से पुलिस गाड़ी को कमलेश बिंद के गांव गौसाबाद से आगे ले जा पाई, लेकिन धक्का मुक्की और पथराव में सीओ सिटी शेखर सेंगर, नंदगंज थाना प्रभारी और महिला पुलिस कर्मियों समेत कुल 5 पुलिस कर्मी घायल हो गए। बहरहाल पुलिस सुरक्षा के बीच किसी तरह कमलेश बिंद के शव का अंतिम संस्कार कराया गया। गाँव में किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। अब पूरा मामला समझिए। 29 मई की रात होटल कारोबारी विनीत राय और हनी राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस केस में 3 जून को पुलिस ने 1,00,000 के इनामी बदमाश कमलेश बिंद को एनकाउंटर में मार गिराने का दावा किया। कमलेश बिंद के एनकाउंटर के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए। कल पोस्टमार्टम के बाद जैसे ही कमलेश बिंद का शव गौसाबाद गांव पहुंचा, परिजन और ग्रामीण आक्रोशित हो गए। देखते ही देखते विरोध प्रदर्शन ने उग्र रूप ले लिया और पुलिस पर पथराव शुरू हो गया। विनय कुमार सिंह, गाजीपुर आज तक।
1: और अब खबर बिहार से। बिहार के छपरा से बड़ी खबर है, जहां अमोनिया गैस लीक हुई है। छपरा में एक कोल्ड स्टोरेज में अमोनिया रिसाव की खबर आ रही है। कोल्ड स्टोरेज में अमोनिया रिसाव के से इलाके में अब हड़कंप मच गया है। रात में अचानक अमोनिया गैस का रिसाव शुरू हो गया, जिसके बाद पुलिस प्रशासन के लोग मौके पर पहुंचे। प्लांट की जांच भी की गई। इलाके में जल छिड़काव किया गया ताकि गैस के प्रभाव को थोड़ा कम किया जा सके। तो अमोनिया गैस का रिसाव हुआ, जिसकी वजह से वहां पर लोगों में हड़कंप मच गया।
2: जो मेन सप्लाई थी पाइपलाइंस की वगैरह सब क्लोज हो गया है, जो स्टोरेज है। बाकी पाइप में कुछ है जो लीक हुआ सूचना मिलने से पूर्व, जो भी 10-15 मिनट में, उसी का प्रभाव है। अभी हम लोग फायर ब्रिगेड की गाड़ी से पानियों का छिड़काव वगैरह करा के थोड़ा देखते हैं, एयर प्यूरिफायर टाइप का यूज करके पानी का, कि थोड़ा वातावरण का में जो अमोनिया है वो थोड़ा सेटल डाउन हो और फिल्टर आउट हो।
3: किसी प्रकार का गैस का लीकेज है तो तत्काल हम लोग की गाड़ी आई और यहाँ आने के बाद पता चला कि एक कोल्ड स्टोरेज है जिसमें अमोनिया गैस का रिसाव हो रहा है। अभी तो हम लोग देखे हैं तो स्थिति अभी ज्यादा कुछ बिगड़ी नहीं है, सामान्य स्थिति है। थोड़ी थोड़ी अभी गैस लीक हो रही है। इनके द्वारा बताया गया कि इनके जो इंजीनियर है वो जल्द ही यहाँ पहुंचेंगे और पूरी तरह जो भी गैस लीक हो रहा है वो उसको बंद कर दिया जाएगा। अभी स्थिति सामान्य है, कोई ज्यादा की नहीं है। थोड़ा थोड़ा अभी भी गैस लीक हो रहा है और अगल बगल के लोग थोड़े से सफोकेट फील कर रहे हैं, तो उनको एम्बुलेंस के जरिए भेज दिया गया।
1: और इस मामले पर हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी शशि भूषण पटना से। शशि, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो रिसाव हुआ, ये कोल्ड स्टोरेज किसका था, कुछ पता चल पाया, और तफ्तीश इस मामले में चल रही है, किसी की लापरवाही तो नहीं है ये?
4: देखिए, लापरवाही की बात तो अब तक सामने नहीं आई अंजलि, लेकिन ये एक प्राइवेट कोल्ड स्टोरेज था और चूंकि कोल्ड स्टोरेज की जो बनावट होती है उसमें बहुत सारे गैस जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं प्रोडक्ट को कोल्ड रखने के लिए, तो अमोनिया गैस का रिसाव हुआ ये कंफर्म किया प्रशासन ने। और जैसे ही इस इलाके में ये गैस का रिसाव हुआ तो लोग जो है घबरा गए, क्योंकि सांस लेने में बहुत परेशानी हो रही थी लोगों को और यही वजह रही कि अफरा तफरी का माहौल काफी देर तक देखा गया। रात की बात यह रही कि प्रशासन तुरंत एक्टिव हुआ, जो एसडीएम है और जो फायर फाइटिंग टीम है और पुलिस के लोग, तमाम लोग मौके पर तुरंत पहुंच गए। और उसके बाद जो एक प्रक्रिया होती है अमोनिया गैस के रिसाव के उपरांत, जो पानी का छिड़काव है वो किया गया और वाटर फॉगिंग जो है उससे ही नियंत्रण पाया गया है। और बाद में जो इंजीनियर्स की टीम है वो लगी हुई है, जो गैस का रिसाव है उस पर काबू पा लिया गया है। और सबसे बड़ी राहत की बात अगर कहें तो वो ये कि कोई भी व्यक्ति इसमें कोई बहुत गंभीर तौर पे घायल नहीं हुआ है या बहुत उसकी स्थिति नहीं बिगड़ी है, तो ये एक अच्छी बात रही है, लेकिन समय रहते उस पर कंट्रोल कर लिया गया है।
1: जी, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे पंजाब की, जहां मोहाली में एक निजी कंपनी में काम करने वाली 30 साल की युवती की उसके ही पूर्व प्रेमी ने चाकू मारकर हत्या कर दी। बड़ी खबर आ रही है कि दफ्तर में ही आरोपी ने युवती पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने खुद पर भी चाकू से हमला कर आत्महत्या का प्रयास भी किया। दोनों को गंभीर हालत में एक निजी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने युवती को मृत घोषित कर दिया है, जबकि आरोपी की हालत नाजुक बनी हुई है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि दोनों के बीच पहले प्रेम संबंध थे। सूत्रों के अनुसार करीब 6 महीने पहले दोनों का ब्रेकअप हो गया था और अब आरोपी ने इस दिल दहला देने वाली वारदात को अंजाम दिया है। तो आइए इस पूरे मामले में सीधा रुख करते हैं हमारी सहयोगी कमलजीत संधु का। कमलजीत, जो तस्वीरें हैं वो वाकई चौंकाने वाली हैं। कैसे एक प्राइवेट ऑफिस में बैठे हुए काम कर रही एक लड़की, उस पर उसी के साथ काम कर रहे शायद एक शख्स ने इस तरह खुले आम चाकू चलाया है।
5: पूर्व प्रेमी का खूनी खेल और ये सब खेला गया है सीआरपीएस के यूएस लॉजिस्टिक दूसरी मंजिल पे। अब आपको सन्नाटा पसरा नजर आया है, ऐसे जो अभी थोड़ी देर पहले ही आए हैं। और आपको बता दें कि सभी इम्प्लॉयज के सामने, और आपको बता दें क्योंकि यूएस बेस्ड कंपनीज है, इनके 7:30 बजे ये घटनाक्रम हुआ है, जहां पे लड़की अपने डेस्कटॉप पे बैठी हुई थी। और उसी बीच में आपको ये भी बता दें कि लड़का पीछे से आता है और एक दूसरे को ये 3 साल से जानते थे और रिश्ते में भी थे, और ऐसा बताया जाता है कि 6 महीने पहले ही ब्रेकअप हुआ है। ब्रेकअप के बाद ये कोशिश कर रहा था हैरी के डिम्पल से दोबारा संबंध बनाए, लेकिन उसने उसे मना कर दिया। तो एक जिल्टेड लवर वाली इन्वेस्टिगेशन की थ्योरी तो पे काम कर रही है, और साथ ही साथ वहां पे जब लड़की भागती है तो वो उसके पीछे भागता है, चाकू से गोंदता है उसे, और उसी के बीच में बाकी इंप्लॉयज अफड़ा तफड़ी का माहौल देखते हुए बीच में आने की कोशिश करते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं, धक्का मुक्की करने की कोशिश करते हैं, तो वो नहीं रुकता है, वो लगातार चाकू से उसे गोदता रहता है और लहू लुहान कर देता है। उसी बाद में अगर आप बात करें घटनाक्रम की, अपने आप पर वो छुरी चलाता है और मारने की कोशिश करता है। दोनों को घायल अवस्था में ले जाता है एक निजी अस्पताल पर, लड़की वहां पे दम तोड़ देती है। तो एक स्ट्रेट एंगल तो जिल्टेड लवर वाला है कि प्रपोजल दिया लेकिन उसने मना कर दिया, लेकिन बात आती है वर्क सेफ्टी की, जहां पे महिला,
1: और ये सवाल उठाना भी लाजमी है क्योंकि दफ्तर के अंदर हुआ है। चलिए बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। बात राज्यसभा चुनाव में टिकट बंटवारे की करेंगे। बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों ने अपने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। 5 राज्यों में राज्यसभा चुनाव होना है। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने कुल 11 उम्मीदवारों के नाम जारी किए हैं, जिसमें तरुण चुग सतीश पुनिया को मध्य प्रदेश और राजस्थान से उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि राजू भाई शुक्ला, मुकेश भाई राठवा, मान सिंह परमार, जितेंद्र मेघजी भाई कंजरिया गुजरात से राज्यसभा का टिकट मिला है। और बीजेपी की राष्ट्रीय सचिव और दिल्ली की सह प्रभारी अलका गुर्जर, राजस्थान से टिकट उन्हें मिला है। अरुणाचल प्रदेश से ताई तगाक और मणिपुर से ए शोरदा देवी को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं अब बात अगर कांग्रेस की करते हैं तो कर्नाटक से खड़गे पवन खेड़ा, मंसूर अली खान, मध्य प्रदेश से मीनाक्षी नटराजन, राजस्थान से नीरज दांगी, तमिलनाडु से प्रवीण चक्रवर्ती, झारखंड से प्रणव झा को उतारा गया है।

0: बंगाल से पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन होने के एक महीना भी नहीं गुजरा, लेकिन बड़ी खबर वहां से आ रही है। फिलहाल हम एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद लौटेंगे, देंगे आपको सारी खबर।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
3: दिस इज द साउंड ऑफ क्लेयर कुकिंग डिनर एट होम, एंड दैट्स द साउंड ऑफ अ फ्रॉड अलर्ट फ्रॉम वेल्स फार्गो फ्लैगिंग अ चार्ज फॉर अ प्राइसी रेस्टोरेंट इन पेरिस। कंसीडरिंग क्लेयर इजंट इन पेरिस राइट नाउ, दैट सीम्ड ऑड टू द बैंक एंड टू क्लेयर। Two taps later, Claire says nope to the charge, and Wells Fargo is on the case.

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवार।
3: गोरखपुर से एक बेहद दर्दनाक और हैरान करने वाली खबर सामने आई है, जहां सिस्टम और ठेकेदार की बड़ी लापरवाही ने एक मजदूर की जान ले ली। गुलरिया इलाके में फोर लेन के बीच निर्माणाधीन डिवाइडर पर सो रहे एक मजदूर के ऊपर डंपर चालक रात के अंधेरे में मिट्टी उड़ेलकर चला गया। सुबह जब डिवाइडर समतल करने का काम शुरू हुआ, तब मिट्टी से बाहर हाथ देकर लोगों के होश उड़ गए। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी, सो कुडो। एकजे, द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

0: into the huddle with TuneIn. TuneIn brings you nonstop sports talk, live games, and expert analysis all in one place, from kickoff to final whistle. Follow your favorite teams all season long with ESPN Radio, Talk Sport, Big 12 Radio, and more. Plus, listen to your favorite sports broadcasts on over 200 devices, so you never miss a moment of sports action with TuneIn. Stay in the game with TuneIn and start listening now.
1: AU Savings Account में मिलते हैं amazing benefits, paperless banking and higher interest. वो भी हर महीने.
2: Money, money, money, money, every month.
3: सोच बदलो और बैंक भी.
4: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
5: गिरिबाला सिंह की जो बीच में बैठी हुई हैं और इन तस्वीरों के जरिए आप देखिए, वो सीबीआई ने 5 घंटे तक पूछताछ की और अब गिरिबाला सिंह को लेके सीबीआई रवाना हो गई है। यहाँ से कहाँ ले जाएंगे ये साफ नहीं है, लेकिन हमने आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई। कहाँ गई है ये भी साफ नहीं हो पाएगा, थोड़ी देर में तस्वीरें साफ हो जाएंगी। लेकिन तकरीबन 5 घंटे तक चली पूछताछ के बाद पूर्व जज त्रिशा की सास समर्थ की माँ गिरिबाला सिंह को फिलहाल सीबीआई अपने साथ लेकर के अब फरार हो चुकी है। रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक।

0: बहुत चुल मच रहा है कसम से, आज घर जाकर दही है पूरा कपड़ा उतार के खुजाएंगे हम।
1: क्योंकि मैं आपकी खुजली को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा, आपका जो दर्द है सही है, तकलीफ सही है, जो आप इतने दिनों से अपने छोटे से दिल में लेके इतना बड़ा पहाड़ घूम रहे हो,
0: अधूरा प्यार ही
1: तुम्हें दुनिया के सिम यार ठीक है मत दोहराओ
2: बिजुरी आई गए।
1: हाँ थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा राइट, ओ थोड़ा राइट, हाँ हाँ हाँ
2: यह अब ही नसिया पाया भैया
3: यही अरे थोड़ा सा और ऊपर,
2: अरे लेफ्ट बोल रहा हूँ,
3: हाँ यही यही यही यही खुजा जोर से।
4: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा।
1: अब समय यूपी एक्सप्रेसवे का। पहली खबर, अयोध्या से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 54वें जन्मदिन पर समर्थक जोरदार जश्न मना रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने मंदिर में पूजा अर्चना कर केक काटा और योगी के पोस्टर की आरती उतारी। वहीं झांसी में मुख्यमंत्री के जन्मदिन पर महिलाओं ने बुलडोजर वाला केक काटकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन मनाया। महिलाओं ने उनके फिर से मुख्यमंत्री बनने की कामना की। उत्तर प्रदेश में बीएसपी प्रमुख मायावती ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उनके जन्मदिन पर सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए शुभकामनाएं दी। स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन की कामना भी की है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। उनके नेतृत्व के में यूपी की प्रगति और सुशासन की सराहना की। संभल में 1978 के दंगों के पीड़ित रस्तोगी परिवार को 48 साल बाद जमीन का पट्टा आवंटित किया गया। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों और राज्य मंत्री की मौजूदगी में प्रक्रिया पूरी की गई। प्रयागराज में फायर विभाग ने होटलों का इंस्पेक्शन अभियान चलाया। सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर कई होटलों को नोटिस जारी करने की तैयारी है। वहीं सहारनपुर में होटलों की फायर सेफ्टी जांच के दौरान गंभीर लापरवाही सामने आई। कई होटल्स में फायर अलार्म बंद और सुरक्षा उपकरण एक्सपायर्ड पाए गए, जिससे एनओसी पर कार्रवाई की तलवार लटक गई है। अलीगढ़ में होटलों की फायर सेफ्टी जांच के दौरान गंभीर लापरवाही सामने आई। कई होटल्स में फायर अलार्म बंद और सुरक्षा उपकरण एक्सपायर्ड पाए गए, जिससे एनओसी पर कार्रवाई की तलवार लटक गई है। अलीगढ़ में होटल जांच के दौरान बड़ा खुलासा हुआ है। संकरी गलियों में कई होटल बिना फायर एनओसी के अवैध रूप से चलते हुए पाए गए। नोएडा के सेक्टर 75 स्थित आईवी काउंटी सोसाइटी में आग लगने से हड़कंप मच गया। मौके पर दमकल की कई गाड़ियां पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस घटना का मुख्यमंत्री योगी ने फौरन संज्ञान लिया। वहीं नोएडा के सेक्टर 52 स्थित शताब्दी विहार के एक पीजी में आग लगने से हड़कंप मच गया। नीचे रेस्टोरेंट और ऊपर पीजी होने की वजह से आग तेजी से फैल गई। ग्रेटर नोएडा के यमुना एक्सप्रेसवे पर चलती जैगुआर कार में अचानक आग लग गई, जिससे पूरी गाड़ी जलकर खाक हो गई। गनीमत रही कि चालक ने समय रहते कूदकर अपनी जान बचा ली। लखनऊ में दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया है। मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुरादाबाद में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर के बेटे पर गोली चलाने के आरोपी को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी, अस्पताल में भर्ती। गाजीपुर में एनकाउंटर, मारे गए 1 लाख के इनामी कमलेश बिंद का शव पहुंचते ही इलाके में बवाल। शव देखकर परिजन, महिलाएं और ग्रामीण आक्रोशित, पुलिस से झड़प। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने गाजीपुर एनकाउंटर को लेकर बीजेपी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हत्याओं और एनकाउंटर से यूपी की छवि नकारात्मक बनी है। कानपुर में ब्राह्मण समाज ने राजनीतिक भागीदारी और प्रतिनिधित्व को लेकर नाराजगी जताई है। लोगों ने कहा कि अब वे अपने हितों को देखते हुए नया राजनीतिक विकल्प तलाशेंगे। यूपी बोर्ड के छात्रों के पास सुधार का एक और मौका। इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए 27 जून तक कर सकते हैं आवेदन। बिजनौर में चंद्रशेखर की सत्ता परिवर्तन यात्रा की सभा के दौरान एक चोर ने भीड़ में घुसकर कई लोगों की जेब काट ली। कार्यकर्ताओं ने मौके पर ही चोर को पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी। मथुरा में पति पत्नी के बीच हुए विवाद में पति ने पत्नी को गोली मार दी और फिर खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। गोरखपुर में 4 लेन बन रहे उसके डिवाइडर पर दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां मिट्टी के नीचे दबने से एक मजदूर की मौत हो गई। आशंका है कि डिवाइडर पर सो रहे मजदूर पर रात में डंपर ने मिट्टी गिरा दी, जिससे वो दब गया।

0: और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के रीवा की, जहां से आकांक्षा की खबर आई थी, नीट की छात्रा जिसने पेपर लीक से परेशान होकर आत्महत्या कर ली थी और कहा था पापा मैं दोबारा नीट नहीं दे सकती। अब बड़ी खबर ये आ रही है कि उसके परिजनों को राहुल गांधी ने फोन किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आकांक्षा के पिता और उनकी माता को फोन किया और उनसे बात की है। राहुल गांधी ने परिजनों को सांत्वना दी है। राहुल गांधी ने आकांक्षा के परिवार को 3 लाख रुपए की आर्थिक मदद भी की है। ये जानकारी इस वक्त आ रही है। आकांक्षा चतुर्वेदी वो छात्रा जिसने नीट की परीक्षा दी थी, लेकिन नीट का पेपर लीक होने के बाद और दोबारा एग्जाम होने की बात के बाद उसने ये पत्र लिखा और आत्महत्या कर ली, जिसमें उसने कहा कि पापा मैं दोबारा नीट की परीक्षा नहीं दे सकती। आइए सुनते हैं इस बातचीत को।
1: नमस्कार सर,
2: आज मैं सुबह गाड़ी में एयरपोर्ट जा रहा था और मैंने आपकी बेटी के बारे में पढ़ा
1: जी सर,
2: और वो जो उसने चिट्ठी लिखी थी वो मैंने देखी
1: जी सर,
2: तो मुझे काफी दुख हुआ
1: जी सर,
2: और मैं आपको बस अपना प्यार देना चाहता हूँ
1: सर। परिवार बहुत अच्छा परिश्रम आपने प्यार दिया हमारे दुख में, अपने सभी कर्मचारियों को भेज करके हमारे इसलिए धन्यवाद है। इस बात के लिए बहुत बहुत आपके लिए, हम तो बड़े आपत्त में है सर।
2: बेचारी उसका उसकी इसमें कोई गलती नहीं थी, उसने कुछ कुछ गलत नहीं किया, बस पढ़ाई की थी, आपने कर्ज लिया, मतलब बिल्कुल
3: सबसे बड़ी बात दुख की हमको ये है कि उसने इतना मेहनत करी है, शायद ऐसा ना होता तो ये ना होता, हमारा तो कोई दूसरा है भी नहीं, एक ही तो थी मेरी, इसी के भरोसे पिताजी भी उसके टिके थे, इसी के भरोसे मैं भी टिकी थी।
2: और उसने मेरे चिट्ठी में लिखा कि उसको लगा कि उसने आपको बर्बाद कर दिया।
3: नहीं
2: कि उसने आपने कर्जा लिया था और उसने आपको बर्बाद कर दिया, मतलब क्या बेचारी कितना दर्द हुआ, दुख हुआ होगा उसको।
0: सोचिए उस माता पिता का दुख जिन्होंने अपनी बेटी को खो दिया क्योंकि एक पेपर लीक हो गया। हर माता पिता का सपना होता है कि बेटा बेटी पढ़ लिख कर डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईएएस पीसीएस या बड़ा अफसर बन जाए। ऐसा ही एक ख्वाब मध्य प्रदेश के इन माता पिता ने भी देखा था। आकांक्षा के पापा उसे डॉक्टर बनाना चाहते थे, वो चाहते थे कि बेटी नीट क्वालिफाई कर ले, लेकिन यह सपना टूट गया, बेटी की सांसें टूट गई। पेपर लीक ने न सिर्फ उसके सपनों को मार डाला बल्कि एक बेटी की जान भी ले ली। देखिए आकांक्षा के उस आखिरी खत को जो देश के परीक्षा के सिस्टम के मुंह पर कालिख पोत रहा है।
4: मम्मी पापा, आपका मुझ पर भरोसा था कि मेरी बेटी पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाएगी, पर दोबारा नीट देने की हिम्मत नहीं है मेरे अंदर। पहले नीट के पेपर में मेरे अच्छे मार्क्स आ रहे थे, पर दोबारा पेपर अच्छा जाए इसकी क्या गारंटी है। सॉरी मम्मी पापा, मैंने सब बर्बाद कर दिया आप दोनों का।
5: लोग कह रहे हैं कि ये सुसाइड नोट है, हम कहते हैं कि ये नीट पेपर लीक की वजह से हुई एक छात्रा की हत्या की चार्जशीट है। नीट पेपर लीक में चार्जशीट जो कहती है कि केवल पेपर नहीं लीक हुआ बल्कि आकांक्षा और उसके मम्मी पापा का भरोसा तोड़ा गया। आकांक्षा जैसे लाखों छात्रों को दोबारा इम्तिहान के प्रेशर में धकेला गया। पहले परीक्षा में अच्छा नंबर आने की उम्मीद लगाए छात्रों के दिल दिमाग में फिर से उतना ही अच्छा एग्जाम करने के लिए डराया गया, एक बेटी को सुसाइड के लिए उकसाया गया। किसको? आकांक्षा चतुर्वेदी को। 19 साल की आकांक्षा, 3 मई को जब नीट की परीक्षा हुई नागपुर के सेंटर पर, आकांक्षा कृष्ण कुमार चतुर्वेदी रोल नंबर 3111105245 बहुत मन से अपने डॉक्टर बनने के सपने को पूरा करने पहुंची। बहुत अच्छा पेपर दिया। इस तस्वीर में जिस तरह मुस्कुराती आकांक्षा दिखती है उसी तरह घर आकर हंसती खिलखिलाती दिखी, लेकिन किसी को पता नहीं था कि कुछ ही दिन के भीतर जिस कॉपी में वो अपने डॉक्टर बनने के सपनों की तैयारी करती थी उसी में नीट पेपर लीक के बाद टूट गई आकांक्षा अपनी, अपने मम्मी पापा की हर आकांक्षा को मार देने का ये दहला देने वाला सुसाइड नोट लिख देगी।
6: बच्ची जब पेपर दी तो उसका मतलब जब पेपर दे के घर आई तो वो बहुत खुशहाल थी, उसका पेपर बहुत अच्छा गया था। मानो बोली कि हम 650 से नीचे मेरा मार्क नहीं आएगा। और जब पेपर लीक हो गया तो बच्ची काफी सदमे में आ गई, काफी दुख में आ गई, खाना पीना सब बंद कर दी थी और किसी से बात वात करने में भी ज्यादा उत्सुक नहीं रहती थी।
7: बहुत बड़ा नाम होगा
8: ऐसा बोलती।
7: कितने सारे सपने दिखा के चली गई थी तो उसके नाम के आगे डॉक्टर लग जाए।
5: मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले में रहने वाला चतुर्वेदी परिवार, जिनके बेटे बहू कृष्ण कुमार और नीलम चतुर्वेदी ने पढ़ने में होशियार बेटी के लिए वो सब कुछ किया जो हमारे देश में एक आम माँ बाप अपने बच्चों के लिए करते हैं। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी तो कोचिंग और दूसरे खर्च के लिए किसान क्रेडिट कार्ड से 3 लाख रुपए और बाकी जमीन गिरवी रखकर कर्ज लिया।
8: जो उसका एग्जाम हुआ था, जैसे उसने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, डॉक्टर बनने का पूरा मन था।
9: अपने मर्जी से उसने पढ़ाई कर रही थी कि मैं डॉक्टर बनूंगी, क्योंकि उसके पिताजी का भी 2 ऑपरेशन हो गया, 3rd पैरोलाइस मार दिया और हम कर्ज ले लेके पढ़ा रहे थे। हम किसी से मांग मांग के उसकी फीस भर रहे थे, कैसे भी हम अपने दिन निकाल रहे थे बच्चों के। इसमें
7: ढाई तक अपने खेत गिरवी कर दिया तो मेरी बेटी आ जाएगी ना, जितना जिसको पैसे चाहिए तो क्या मालूम।
5: छोटे शहर में बेटी की बड़ी उम्मीदें दब ना जाए इसलिए नागपुर की निजी कोचिंग में जाकर परिवार बेटी को तैयारी कराने लगा। किसान पिता बेटी को पढ़ाने के लिए नागपुर में रसोइये की नौकरी करने लगे ताकि बेटी को वहां रहकर साथ दे सके। लेकिन नीट पेपर लीक के बाद आकांक्षा टूटने लगी। कहां तो उसे परीक्षा देने के बाद लगा था कि 650 नंबर आ जाएंगे, बढ़िया कॉलेज मिलेगा। आम आदमी मेहनती जितना भी होता है अपनी किस्मत से बस डरता है।
9: हमारी लड़की पढ़ने में अच्छी थी, उसका ये था कि हमको डॉक्टर बनना है और उसने पढ़ाई करी, उसकी अच्छी मार्क्स भी आए थे, 650 के ऊपर भी कम नहीं थी। पेपर देने के बाद लीक होने का सुनी तो बहुत टेंशन में आ गई। लोन लेके पढ़ाया था, लोगों से कर्ज ले लेके हमने उसको इतनी दूर पहुँचाई। हमने अपनी लड़की को बहुत मुश्किल से इस चीज के लिए तैयार किए थे और उसका भी सपना था कि मैं डॉक्टर बनूंगी और
10: बहुत होनहार थी।
9: हम लोग का भी था और उसने अच्छे नंबर भी हमेशा लाती थी। सिर्फ यही दुख है कि ना ये डॉक्टरी करना, ये डिसीजन उसका होता शायद।
5: इस हाल पर लाकर छोड़ दिया है कि एक माँ को लगने लगा कि काश बेटी ने डॉक्टर बनने का सपना ही ना देखा होता। भले सरकार कहे कि उसने सख्त एक्शन लिया, पेपर लीक वालों को छोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन चतुर्वेदी परिवार आकांक्षा की मौत का जिम्मेदार केवल सरकार को मानता है।
8: इसमें मुख्य रूप से जिम्मेदार आप लोग किसको मानते हैं?
9: हम जिम्मेदार सरकार को मानते हैं। अगर हम अपने बच्चों को कुछ बोले होते, कुछ प्रेशर दिए होते तो उसका जिम्मेदार हम थे, लेकिन लीक हुआ तो सरकार ही हुआ जिम्मेदार।
5: आकांक्षा ने खुदकुशी 20 मई को नागपुर में की थी। अब उसका ये सुसाइड नोट सामने आया, वो सुसाइड नोट जिसमें भारत के हर आम परिवार की उभरती आकांक्षाओं के सरकारी आपराधिक लापरवाहियों से दम तोड़ देने की गवाही है। राहुल गांधी ने अब सोशल मीडिया पर पोस्ट में प्रधानमंत्री से लेकर शिक्षा मंत्री तक पर सवाल उठाए हैं। लिखा है कि एक पिता जो कर सकते थे सब किया, फिर नीट पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द हुई, उस अनिश्चितता में आकांक्षा छोड़कर चली गई। आकांक्षा की खुदकुशी पर अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया में पोस्ट पर लिखा है कि जब बीजेपी के राज में विकसित भारत के झूठ का इतिहास लिखा जाएगा तब क्या एक बेबस बेटी का यह आखिरी खत भी लगाया जाएगा।
11: नेट की घटना दुर्भाग्यपूर्ण रहा, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बच्चों के भविष्य खिलवाड़ करने वालों के प्रति सख्त कार्रवाई की और सीबीआई को जांच दिया और नए एग्जामिनेशन के लिए किया। दुख है हमें, लेकिन कार्रवाई में कभी कमी नहीं रखा।
5: राहुल गांधी की पार्टी के एनएसयूआई के अध्यक्ष विनोद जाखड़ दूसरे नेताओं के साथ आकांक्षा के परिवार से मिले, 2.5 लाख रुपए की आर्थिक मदद की है, लेकिन क्या सरकार से कोई मदद देने ढांढस बंधाने आया?
8: सरकार से कोई मदद आप लोग?
10: सरकार से हमको अभी तक कोई पूछने भी नहीं आया।
11: सरकार या प्रशासन कोई भी आप?
6: नहीं, कोई आज तक नहीं आया, न कोई शासन का आदमी आया, न प्रशासन का आदमी आया।
11: किसी ने कोई मदद?
6: कोई मदद नहीं की।
5: आकांक्षा को कोई वापस नहीं ला सकता, लेकिन कम से कम बीजेपी की सरकार, बीजेपी के प्रतिनिधि इनके घर पहुंचकर सांत्वना के दो शब्द तो बोल सकते थे, या फिर उसके लिए भी किसी जांच का इंतजार करेंगे नेता? बाकी हर तरह की आर्थिक मदद इस परिवार को और देश में नीट पेपर लीक से जांच गंवाने वाले हर परिवार को मिलनी चाहिए, और ये भरोसा तो पुख्ता तौर पर कि फिर किसी आम परिवार की आकांक्षा किसी पेपर लीक की वजह से मरने नहीं दी जाएगी।
0: दर्द की एक दास्तान गुरुग्राम से भी है, जहां रहने वाले एक पूरे परिवार को दिल्ली के अग्निकांड ने निगल लिया। पिता अस्पताल में अपना इलाज करा रहे थे और बेटा, बहू और उनकी दो बेटियां होटल में लगी आग में जिंदा जल गए। मैंने खुद कल पूरे परिवार की चिताएं साथ जलते हुए देखी और सबके चेहरों पर दुख की लकीरें भी। वो मंजर देखकर मुझे भी बेहद दुख हुआ, और एक दिन पहले तक जो घर खुशियों से भरा हुआ था, आज वहां मरघट जैसा सन्नाटा है।

0: खुशहाल परिवार जिसे सिस्टम ने चला दिया। हंसते खेलते पति पत्नी, प्यारी सी बेटियां, माँ और दो मासूम बच्चे, सब कुछ एक रात में खत्म हो गया। दिल्ली के मैक्स अस्पताल में एडमिट एक पिता ने कभी सोचा नहीं था कि जो परिवार उनके स्वास्थ्य का हाल जानने के लिए पास के एक होटल में रुका हुआ है, वो परिवार उनसे कभी नहीं मिल सकेगा। गुरुग्राम के चार्टर अकाउंटेंट विवेक अग्रवाल के पिता गंभीर फेफड़ों के संक्रमण से जूझ रहे हैं और साकेत के मैक्स अस्पताल में भर्ती है। विवेक अग्रवाल अपनी पत्नी, दो बेटियों और बुजुर्ग माँ के साथ दिल्ली आए थे। इसी दौरान विवेक अग्रवाल के मौसा मौसी और एक अन्य परिजन भी बीमार पिता का हालचाल लेने दिल्ली पहुंचे। उन्होंने भी उसी होटल में ठहरने का फैसला किया। किसी ने नहीं सोचा था कि यह फैसला उनकी जिंदगी का आखिरी पड़ाव बन जाएगा। रात सामान्य थी, परिवार अगले दिन अस्पताल जाने की तैयारी में था, लेकिन अचानक होटल में आग भड़क उठी। कुछ ही मिनटों में पूरा परिवार धुएं और लपटों से भर गया। जो इमारत यात्रियों के लिए ठहरने की जगह थी, वो देखते ही देखते चिता बन गई। 70 साल की प्रेमलता अग्रवाल, 45 साल के विवेक अग्रवाल, 42 साल की तारिणी, 20 साल की जीविशा, 17 की वारिया, 68 साल के अशोक पंसारी, 70 साल के जावरीलाल और 68 साल की कमला, सबकी मौत हो गई।
1: एक मेरी बेटी है तरजनी अग्रवाल, एज 42 इयर्स। एक उसकी बेटी है एंजल, उसकी एज है अपना कली वो बेंगलोर जाए, उसकी एज है 20 इयर्स। एक उसकी छोटी बेटी है एज है 17 इयर्स, वरिया।
0: परिवार को उम्मीद थी कि बीमारी से लड़ रहे पिता को अपनों का साथ मिलेगा, उनका मनोबल बढ़ेगा और शायद स्वास्थ्य में सुधार भी होगा, लेकिन किस्मत ने कुछ और ही लिख रखा था। जिस परिवार ने अस्पताल के कमरे में अपने बुजुर्ग पिता का हाथ थामने की योजना बनाई थी, वो कुछ ही घंटों बाद आग की लपटों और धुएं के बीच जिंदगी की सबसे भयावह लड़ाई हार गया। होटल फ्लोरिश में विवेक अग्रवाल, उनकी पत्नी तर्जनी अग्रवाल, विवेक की बुजुर्ग माँ प्रेमलता अग्रवाल, विवेक की दो बेटियां जीविशा अग्रवाल और वारिया अग्रवाल ठहरे हुए थे। बड़ी बेटी जीविशा बेंगलुरु में पढ़ाई करती थी, दादा बीमार थे इसलिए वापस आ गई थी। इसके अलावा विवेक के मामा अशोक पंसारी, मौसा जावरीलाल और मौसी कमला भी विवेक के पिता को देखने के लिए आए थे। ये सब होटल फ्लोरिश में ही ठहरे थे। होटल में आग लगी तो इलेक्ट्रॉनिक गेट लॉक हो गया, परिवार का धुएं से दम घुटने लगा। विवेक ने आखिरी कॉल अपने एक रिश्तेदार को किया और सिर्फ इतना कहा कि बेटियों को बचा लो। ये पिता की बेबसी थी, जिसकी आंखों के सामने सब कुछ चल रहा था। पत्नी, माँ, बेटियां, मौसा मौसी, मामा, सब इस आग की चपेट में थे। कमरे में धुआं भर गया था, सांसें साथ छोड़ रही थी और विवेक की भी मौत इस अग्निकांड में हो गई।
1: वो भी गुजर गए दोनों, छह के छह हमारे, उनमें से दो मिसाइल बाकी भी गुजर गए। अच्छा, हमारे आठ आदमी।
2: अच्छा, आठ आदमी।
1: हाँ जी।
2: कौन लोग थे, क्या क्या?
1: मेरी बेटी है, मेरा दामाद है।
3: वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
6: नीड बेटर इंटरनेट? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan, price lock guarantee, plus equipment included. So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
7: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
8: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
4: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. In association with
5: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.
3: और अब रुक करते हैं इस वक्त आ रही बड़ी खबर का, तमिलनाडु की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर। अन्नामलाई ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। बेहद लोकप्रिय नेता हैं तमिलनाडु के, बीजेपी के थे। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने अन्नामलाई का ये इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया है। तमिलनाडु के पूर्व बीजेपी अध्यक्ष रहे अन्नामलाई, लेकिन पिछले कुछ सालों में उनको और उनके समर्थकों को लग रहा था कि वो अलग थलग पड़ते जा रहे हैं। ऐसे में उन्होंने अपना इस्तीफा देने की बात पहले ही बता दी थी। और अब जो ताजी खबर है वो यह है कि बीजेपी के अध्यक्ष ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। हालांकि अन्नामलाई दिल्ली आए थे, मुलाकात उन्होंने की थी बीजेपी के ऑर्गेनाइजेशनल नेताओं से। नितिन नवीन ने अब उनका इस्तीफा उसको एक्सेप्ट कर लिया है, स्वीकार कर लिया है। और जो बड़ी खबर यह है कि अन्नामलाई ने पहले भी ये साफ किया था कि वो पार्टी के से अलग तो हो रहे हैं, लेकिन वो धन्यवाद पार्टी का कर रहे थे। वो कह रहे थे कि उनकी अब तक की जो राजनीति रही वो बीजेपी के साथ रही, और उन्होंने कहा कि वो हाथ जोड़ करके इसके लिए बीजेपी का धन्यवाद करते हैं। खबर ये कि अन्नामलाई का इस्तीफा जो उन्होंने दिया था वो स्वीकार कर लिया, यानी कि अब पार्टी इस बात से सहमत है कि अन्नामलाई चाहे तो अपनी अलग राजनीति कर लें। तो अन्नामलाई जो पहले अध्यक्ष के पद पर ले, लेकिन बाद में उन्हें लगा कि वो अलग थलग पड़ते जा रहे हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
9: What's going on, everyone? It's Bluff here, and you know what's more American than America's 250th birthday? Supporting American-owned companies like SpinQuest, America's number one social casino with over 1,000 games like Live Dealer Blackjack and Craps. They're offering new users a $30 coin package for just $10. Go to SpinQuest.com and sign up today.
10: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
7: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
8: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
11: Less interruption, more listening. With TuneIn Premium, get less ads on all music, news, and sports so you can get back to what really matters. Listen to all your favorite stations on over 200 devices so you never miss a second of airtime. Plus, enjoy commercial-free news, ESPN Radio, and more with Premium Upgrade to TuneIn Premium and start listening now.
12: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: बहुत चुल मच रहा है कसम से, आज घर जाकर दहिया पूरा कपड़ा उतार के पुजाएंगे।
1: क्योंकि मैं आपकी खुजली को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा, आपका जो दर्द है सही है, तकलीफ सही है, जो आप इतने दिनों से अपने छोटे से दिल में लेके इतना बड़ा पहाड़ घूम रहे हो,
0: अधूरा प्यार ही
1: तुम्हें दुनिया की सिम यार ठीक है मत दुराओ।
2: बिजुरी आई गए,
1: हाँ हाँ थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा राइट, ओ थोड़ा राइट, हाँ हाँ
2: हाँ हाँ, यह अब एक नसिया पाया भैया।
3: अरे थोड़ा सा और ऊपर,
2: अरे लेफ्ट बोल रहा हूँ,
3: हाँ यही यही यही, यही खुजा जोर से।
4: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
6: इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
8: Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.
9: Akaje, the number one Korean skincare brand, now in India.
10: This is the sound of Jack buzz cutting his way to a small fortune. To Jack, every time he cuts his own hair, that's $50 right in his pocket. If Jack sees DIY buzz cuts as a saving strategy, Wells Fargo is right behind him. And with their mobile app, tracking his savings is easy. However you make money work, we can work with that.
11: Mobile carriers, message and data rates may apply. Wells Fargo Bank, NA, member FDIC.
12: You're listening Uninterrupted. With TuneIn Premium, enjoy commercial-free news and music, plus ad-free ESPN Radio, and fewer ads across other stations. Whether you're listening for the latest news or the next big game, never miss a beat. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices at home, in the car, or on the go. So you can hear more. Ready to upgrade your listening? Upgrade to TuneIn Premium now.
8: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
6: In association with
7: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.

0: इस्तीफा नितिन नवीन ने स्वीकार किया। चुनाव से पहले एआईएडीएमके से गठबंधन के बाद से अलग थलग थे अन्नामलाई।
1: बंगाल जीत से बदले सियासी समीकरणों के बाद परिसीमन विधेयक को दोबारा संसद में लाने की है तैयारी। मॉनसून सत्र में आ सकता है बिल। टीएमसी में टूट और इंडिया अलायंस में फूट का मिल सकता है फायदा।
0: देश के कई इलाकों में आग ने मचाया तांडव। नोएडा की आईवी काउंटी सोसाइटी में भयानक लपटों से हड़कंप। एक और इमारत खाक। भिवंडी इंडस्ट्रियल एरिया में दो फैक्ट्रियां जली, 5 झुलसे।
1: दिल्ली होटल अग्निकांड के बाद एक्शन में सरकार। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज बुलाई हाई लेवल बैठक। पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी तलब। अवैध संचालन और निर्माण पर सख्त कार्रवाई के निर्देश।
0: मोहाली की कंपनी में काम करने वाली लड़की के पूर्व बॉयफ्रेंड ने चाकू गोद कर की हत्या। जालंधर की रहने वाली थी डिंपल। दिल्ली यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर की हत्या से हड़कंप। सिर पर गहरी चोट।

0: खबरों के डबल डोज एक और 11 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राजीव ढोंडियाल।
1: नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्तवाल। शुरुआत करते हैं तमिलनाडु से आ रही बड़ी खबर के साथ। खबर आ रही है कि अन्नामलाई ने जो इस्तीफा बीजेपी को सौंपा था वो अब बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने स्वीकार कर लिया है। तो अन्नामलाई जो कि बेहद लोकप्रिय नेता है तमिलनाडु के, उनका इस्तीफा बीजेपी ने स्वीकार कर लिया है। वो पूर्व बीजेपी अध्यक्ष रहे हैं लेकिन पिछले कुछ सालों में उनके अंदर नाराजगी भी पनपती रही है और अब ये खबर मिल रही है कि उनका दिया हुआ इस्तीफा अब नितिन नवीन ने स्वीकार कर लिया है।
0: हिमांशु मिश्रा हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए। हिमांशु, एक तो इतना बड़ा फेस, इतना पॉपुलर फेस, आमतौर पर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं चाहेगी कि ऐसा व्यक्ति उनकी पार्टी को छोड़कर जाए क्योंकि पार्टी के लिए नुकसान है, लेकिन ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा मनाने का प्रयास भी नहीं हुआ।
2: देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है राजीव कि अन्नामलाई जो है एक बड़ा फेस तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी के थे। 2024 के जो लोकसभा चुनाव हुए उनके लीडरशिप में गए और उसमें पार्टी को नुकसान भी हुआ क्योंकि AIDMK के साथ जो अलायंस था वो अन्नामलाई ने जो स्टेटमेंट दिया था करप्शन को लेकर और वहां अन्नादुराई के खिलाफ, उस के बाद जो है AIDMK ने अपना जो है गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ तोड़ दिया था। उसका नुकसान 2024 के लोकसभा चुनाव में हुआ। लगातार अन्नामलाई जो है वो पार्टी के अंदर जो है ये अकेले चलना चाहते थे, वो पार्टी को साथ लेकर नहीं चलते थे। दूसरी चीज ये है कि अन्नामलाई क्योंकि IPS रहे हैं, कर्नाटक का कैडर था, उनको भारतीय जनता पार्टी के अंदर वो शामिल हुए और उसके बाद उनको बड़ी जिम्मेदारी के रूप में जो है वो तमिलनाडु का प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया गया और उसके साथ साथ जो है उनको कर्नाटक में सह प्रभारी बनाया गया था 2023 के विधानसभा चुनाव के अंदर। बड़ी जिम्मेदारियां थी लेकिन पिछले कुछ दिनों के अंदर जिस तरीके से अन्नामलाई का एक रुख था, पार्टी से अलग दिखना चाहते थे, पार्टी आला कमान ने उनको वो पार्टी आला कमान से मुलाकात भी की, BL संतोष से मुलाकात की, नितिन नवीन से और गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की, लेकिन शायद उन्होंने अपनी राह अलग कर ली पार्टी से और इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया। और आज वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए जो है लोगों को इंटरेक्ट करके ये भी बताएंगे कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा क्यों दिया।
1: जी, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और बात करते हैं शतक आज तक की।

0: बीजेपी ने स्वीकार किया कि अन्नामलाई का इस्तीफा नितिन नवीन ने दी मंजूरी। तमिलनाडु बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई के द्वारा पार्टी छोड़ी गई, प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया गया। रामलिंगा रेड्डी के इस्तीफे पर डीके शिव कुमार का बयान, कहा कि मामला बातचीत से सुलझाया जाएगा। डीके शिव कुमार बोले कि चिंता की बात ही नहीं, कैबिनेट में हम करीबी दोस्त हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले पर राहुल गांधी ने वीडियो कॉल पर माता पिता के साथ की बातचीत, जल्द से जल्द न्याय का आश्वासन। बंगाल जीत के बाद से बदले सियासी समीकरण, परिसीमन विधेयक को फिर संसद में लाने की तैयारियां। मॉनसून सत्र में आ सकता है परिसीमन बिल, टीएमसी में टूट और गठबंधन इंडिया में फूट का फायदा मिलने की उम्मीद। पश्चिम बंगाल में ममता को झटके पर झटका, टीएमसी से बागी नेता ऋतव्रत के निलंबन को स्पीकर ने बताया गलत, ऋतव्रत ने अपने गुट को बताया असली तृणमूल कांग्रेस। ममता और टीएमसी पर बंगाल के कैबिनेट मंत्री दिलीप घोष का भी तंज, कहा कि भ्रष्टाचार पर बनी पार्टी का टूटना तय, हमारे लिए उनके लिए सभी दरवाजे बंद है। ममता बनर्जी के खिलाफ कोलकाता में अखिल भारतीय हिंदू महासभा की ओर से पुलिस में शिकायत, राजद्रोह का मामला दर्ज।
1: यूपी के संस्थापक हुमायूं कबीर ने पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को विधानसभा में वापसी का खुला प्रस्ताव दिया। हुमायूं कबीर ने ममता के लिए रेजीनगर सीट खाली करने की पेशकश की। हुमायूं कबीर ने कहा कि नंदीग्राम से ममता बनर्जी की जीत मुश्किल हो सकती है, लेकिन रेजीनगर से वो आसानी से विधानसभा पहुंच सकती है। हुमायूं कबीर का बड़ा बयान, कहा पार्टी की दयनीय स्थिति के लिए अभिषेक ही मुख्य वजह है। मॉनसून सत्र में फिर से परिसीमन विधेयक पेश कर सकती है सरकार, सहमति बनाने के लिए डीएमके और टीएमसी से बातचीत की खबरें, बिल के नए मसौदे का इंतजार। आज असम में 12 नए मंत्री लेंगे पद और गोपनीयता की शपथ, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने जारी किए सभी नाम। आज सूरत और केंद्र शासित प्रदेश दमन दौरे पर पीएम मोदी, इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी 22,600 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात देश को सौंपेंगे। प्रधानमंत्री मोदी दौरे की शुरुआत दोपहर में हीरा नगरी सूरत से करेंगे, करीब 2:30 बजे से वे हजीरा में महत्वपूर्ण औद्योगिक बुनियादी ढांचे और परिचालन की समीक्षा करेंगे। स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूती देते हुए सूरत में 24 घंटे ट्रॉमा केयर और केंद्रीय प्रयोगशालाओं से लैस 200 बिस्तरों वाले आधुनिक अस्पताल का उद्घाटन भी किया जाएगा। दमन को मिलेगी नए हवाई अड्डे की सौगात, शाम 6 बजे हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। नए हवाई अड्डे से दमन में पर्यटन को मिलेगी नई उड़ान। दमन के कार्यक्रम से ही पीएम मोदी वर्चुअली लक्षद्वीप के लिए 885 करोड़ की बंदरगाह परियोजनाओं की नींव रखेंगे।
0: बीजेपी ने राज्यसभा के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी की, पार्टी ने अरुणाचल प्रदेश से ताई तगाक को अपना कैंडिडेट बनाया, तो वहीं गुजरात से 4 कैंडिडेट्स को टिकट दिया गया। इसके अलावा पार्टी ने एमपी से तरुण चुग, रजनीश अग्रवाल को भी कैंडिडेट बनाया, मणिपुर से यशार्थी देवी को, तो राजस्थान से डॉक्टर अलका गुर्जर और सतीश पुनिया कैंडिडेट। कांग्रेस ने भी राज्यसभा चुनावों के लिए 5 राज्यों से 7 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। कर्नाटक से खड़गे, पवन खेड़ा और मंसूर अली खान मैदान में। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता मीनाक्षी नटराजन को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो राजस्थान से नीरज डांगे एक बार फिर से राज्यसभा के मैदान में। गठबंधन इंडिया में दरार आई, सामने 8 जून को होने वाली बैठक में शामिल नहीं होगी डीएमके, कांग्रेस की मौजूदगी से पार्टी है नाराज। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत की आर्थिक प्रगति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर खुलकर की प्रशंसा, बोले कि भारत आज दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल। पुतिन ने भारत की तारीफ करते हुए सबसे तेज आर्थिक विकास दर दर्ज करने वाले देशों में बताया एक भारत को रूस का सबसे भरोसेमंद विश्वसनीय साझेदार बताया। अमेरिका पर निशाना साधते हुए पुतिन ने कहा कि अमेरिका का पीएम मोदी पर दबाव डालना बेकार है, अमेरिका से उसके बढ़ते संबंधों से भारत रूस की पार्टनरशिप पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी को अपना अच्छा दोस्त जरूर बताया और उनकी तारीफ की, कहा कि वॉशिंगटन और नई दिल्ली के बीच में जल्द ही व्यापार समझौता होगा। ट्रंप ने कहा कि पहले व्यापार में पिछले असंतुलन के बावजूद भी पूरा विश्वास है कि अमेरिका और भारत के बीच में आखिरकार कोई समझौता होगा।
1: राजस्थान के भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में भीषण अग्निकांड, ट्रांसफॉर्मर ब्लास्ट से ऑयल में लगी आग ने लिया विकराल रूप। ऑयल में लगी आग से पास की 2 फैक्ट्रियां भी चपेट में आई, इलाके में मचा हड़कंप। भीषण आग में 5 कर्मचारी झुलसे, राहत व बचाव कार्य में जुटी टीमें। कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू, बड़ा नुकसान आशंका है। नोएडा सेक्टर 75 की आईवी काउंटी सोसाइटी में 12वीं मंजिल पर फ्लैट में भीषण आग। फ्लैट में आग लगने की सूचना पर फायर विभाग की टीम मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया गया। नोएडा सेक्टर 75 हाई राइज में आग पर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने लिया संज्ञान, राहत व बचाव कार्य तेज करने के दिए निर्देश। नोएडा सेक्टर 52 में पीजी में आग लगने से हड़कंप, फायर विभाग मौके पर। बिल्डिंग में नीचे रेस्टोरेंट और ऊपर पीजी, आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बना।
0: मालवीय नगर अग्निकांड पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का एक्शन, आज बुलाई गई हाई लेवल मीटिंग, अधिकारियों की जवाबदेही होगी तय। बैठक में दिल्ली पुलिस, राजस्व विभाग, नगर निगम, अग्निशमन विभाग और दिल्ली जल बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। दिल्ली सरकार ने अवैध होटल, गेस्ट हाउस, अनधिकृत निर्माण और अग्नि सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के खिलाफ एक अभियान चलाने की घोषणा की है। दिल्ली अग्निकांड में हादसे वाले होटल के पास एमसीडी का सिर्फ टी एंड स्नैक्स का एक लाइसेंस था और 31 मार्च को भी खत्म हो चुका था। 4 दिन की पुलिस रिमांड में मुख्य आरोपी और होटल का मालिक लवकेश, होटल के मैनेजर और अकाउंटेंट की तलाश जारी है। बीते गुरुवार को राजधानी दिल्ली में बदला मौसम का मिजाज, झमाझम बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत। तेज आंधी और बारिश के बीच में अंधेरा बिछाया, बारिश और ठंडी हवाओं के चलते टेम्परेचर में कमी। नोएडा में भी तेज आंधी के चलते झमाझम बारिश भी और लोगों को गर्मी से राहत मिली। तेज आंधी पानी के चलते कई इलाकों में पेड़ गिर गए और यूनिपोल और स्ट्रीट लाइट्स गिरने से कई जगहों पर लोगों को परेशानी भी हुई। अंडरपास में भी जल भरा हुआ जिसके चलते लोग परेशान हुए। आंधी पानी के चलते नोएडा में लगभग 400 पेड़ गिरे हैं, नोएडा प्राधिकरण ने इसकी जानकारी दी है।
1: हरियाणा में सोनीपत में तेज हवाओं और बारिश से गिरा तापमान, गर्मी से जूझ रहे लोगों को इस बदलाव से मिली कुछ राहत। जयपुर में सूरज की तपिश से लोगों को मिली राहत, आसमान से बरसे बादल और मौसम हुआ सुहाना। देहरादून में भी हुई बारिश, उत्तराखंड के पहाड़ों के साथ मैदानों में भी हल्की ठंडक का एहसास। भोपाल में भी बरसे बादल, बढ़ती गर्मी के बीच लोगों ने ली राहत की सांस, पहाड़ों पर भी राहत की फुहार। शिमला में झूम के बरसे बादल, मौसम हुआ सुहाना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 54वें जन्मदिन पर समर्थक जोरदार जश्न मना रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने मंदिर में पूजा अर्चना कर केक काटा और योगी के पोस्टर की आरती उतारी। गुजरात के सूरत में दिन दहाड़े हुई लूट की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फुटेज में एक शख्स फोन पर बात करता हुआ आता है और बाइक की पीछे की सीट पर रखी रुपयों से भरी थैली उठाकर फरार हो जाता है। ग्रेटर नोएडा में रफ्तार का कहर देखने को मिला। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि गाड़ियों में भीषण टक्कर हुई जिसके बाद कार नियंत्रण खो बैठी और सड़क किनारे बैठे लोगों को अपनी चपेट में ले लेती है। घटना डराने वाली है। राजस्थान के जयपुर में बुजुर्ग महिला के साथ दिन दहाड़े लूट की सनसनीखेज वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। फुटेज में एक बदमाश महिला को सड़क पर धक्का देकर गिराता है और उसके सोने के गहने छीन कर फरार हो जाता है। यूपी के प्रयागराज में सीसीटीवी फुटेज में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराती दिखाई दी। इस कार हादसे में समाजवादी पार्टी के लोहिया वाहिनी के प्रदेश सचिव की मौत हो गई।

0: बहुत
1: मोहाली में बेहद दिन दहला देने वाली वारदात आई सामने। साथ काम करने वाले कर्मचारी ने महिला कर्मचारी की बेरहमी से चाकू मारकर की हत्या, खुद भी सुसाइड का किया प्रयास।

0: प्रारंभिक जांच में प्रेम प्रसंग का मामला आया सामने। ब्रेकअप के बाद डिप्रेशन में था आरोपी। गाजीपुर में पुलिस टीम पर पथराव, एनकाउंटर में मारे गए कमलेश का शव देखकर बौखलाए ग्रामीण। हमले में 5 पुलिस वाले भी घायल, पुलिस ने इस मामले में लगभग 70 लोगों के खिलाफ केस किया दर्ज। एमपी के खरगोन में मामूली विवाद को लेकर कार चालक ने चढ़ाई कार, पुलिस ने कार जब्त की, कार चालक की तलाश जारी। सहारनपुर में होटल की पोल खुली है और यहां पर सुरक्षा के तमाम इंतजाम फेल, एनओसी पर भी तलवार। पटना के फुलवारी शरीफ में निगरानी विभाग की छापेमारी, राजस्व कर्मचारी और दलाल 45,000 रुपए घूस लेते गिरफ्तार। अलीगढ़ के होटल में जांच के बाद बड़ा खुलासा हुआ और संकरी गलियों में चल रहे कई होटल बिना फायर एनओसी के संचालित हो रहे हैं। सूरत में फायर ब्रिगेड की विशेष जांच, 57 होटल रेस्टोरेंट में फायर सेफ्टी का अभाव है, कनेक्शन बंद करने के निर्देश हैं। गोपालगंज में पुल की दरार का वीडियो बनाते समय युवक का मोबाइल फोन गिरा, घटना का वीडियो भी वायरल।
1: आरा में पुलिस का नशे के सौदागरों पर बड़ा प्रहार, 1.5 किलो ब्राउन शुगर बरामद। राजस्थान के बाड़मेर में पानी के टैंक से शव बरामद, पत्नी और उसके साथी पर हत्या का शक, पुलिस जांच में जुटी। सफदरजंग एनक्लेव के हुमायूंपुर बेसमेंट में फर्नीचर गोदाम में आग, दमकल की 5 गाड़ियों ने पाया काबू, कोई हताहत नहीं। मुंडिया खेड़ा हत्याकांड में बड़ा फैसला है, एडीजे कोर्ट ने 3 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। गोरखपुर में दर्दनाक हादसा, डिवाइडर पर सो रहे मजदूर पर मिट्टी से लदा डंपर पलटा, मौके पर मौत। कल से शुरू होगा भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच, न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादवेंद्र सिंह स्टेडियम में इस सीजन भारत का यह पहला टेस्ट होगा। भारत और अफगानिस्तान का मुकाबला आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन का नहीं है हिस्सा, इस मैच में भारत से 2 खिलाड़ियों के डेब्यू की संभावना। भारत बल्लेबाजी क्रम में नंबर 3 के लिए साई सुदर्शन और देवत पडिकल के बीच मुकाबला, हालिया फॉर्म को देखते हुए पडिकल का खेलना लगभग तय। विदर्भ के हर्ष दुबे या राजस्थान के मानव सुथार को मिल सकता है टेस्ट डेब्यू का मौका, बुमराह को आराम, सिराज करेंगे पेस अटैक लीड। अफगानिस्तान की टीम की कमान हशमतुल्लाह शाहिदी संभालेंगे, टेस्ट के बाद 3 वनडे खेले जाएंगे।
0: एक बार फिर से पर्दे पर छाने वाला है डेविड धवन का 90 का जादू, आज सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म है जवानी तो इश्क होना है। एक बार फिर से दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए सबके चहेते मिश्रा फैमिली आने वाले हैं और सोने लिली पर रिलीज होगा वेब सीरीज गुल्लक का नया एपिसोड। एक्ट्रेस करिश्मा कपूर अब एक बार फिर से पुलिस कर्मी के रोल में नजर आएंगे, एक ऑफिसर की भूमिका निभाएंगे और Z5 पर रिलीज होंगे। दृश्यम 3 के बाद से एक्टर मोहन लाल का OTT पर दिखेगा जादू, आज Z5 पर रिलीज हो रही है उनकी फिल्म पेट्रियट। आज Amazon Prime पर स्ट्रीम होगी वेब सीरीज दी पिरामिड स्कीम, इसमें मुख्य भूमिका में है परमवीर सिंह चीमा, रणवीर शौर्य और शेखर सुमन। ट्रंप ने पत्रकारों से बातचीत में युद्ध विराम को लेकर पेश किया अपनी परिभाषा, कहा कि दुनिया के उस हिस्से में युद्ध विराम का मतलब तब होता है जब आप अधिक संयमित तरीके से गोलीबारी कर रहे हो। मध्यपूर्व में छिड़े युद्ध पर अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का चौंकाने वाला दावा, राष्ट्रपति तोड़ रहे हैं ईरान के साथ चला रहा युद्ध विराम। IRGC नेवी ने ओमान सागर में अमेरिकी युद्धपोत पर हमले का किया दावा, वीडियो जारी करके कहा कि अमेरिकी युद्धपोत पर मौजूद अमेरिकी कमांड और कंट्रोल सेंटर को निशाना बनाया। ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई ने ईरानी लोगों से की अपील, कहा कि हमें दुश्मन की साजिश को एकता आपसी भरोसे से परास्त करना होगा। हिजबुल्लाह ने इसराइल और लेबनान के बीच में युद्ध विराम समझौते को नहीं दी सहमति, अमेरिका के मध्यस्थ वाले युद्ध विराम समझौते को लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ने स्थायी शांति के लिए आखिरी मौका बताया था।
1: रूसी सरकार ने यूरोप और नेटो देशों पर लगाया बड़ा आरोप, कहा नेटो साइबेरिया के चारों ओर कस रहा है अपना शिकंजा, बाल्कन देशों पर पकड़ मजबूत करना चाहता है नेटो। अमेरिका के नेटो संगठन से निकलने के सवाल पर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बड़ा बयान, कहा ट्रंप प्रशासन का नेटो से हटने का कोई इरादा नहीं है, नेटो देशों से रक्षा बजट को बढ़ाने की भी अपील की। रूसी रक्षा मंत्रालय ने पूर्वी यूक्रेन के एक इलाके पर कब्जे करने का बड़ा दावा किया है, कहा रूसी सेना ने बड़ी संख्या में मार गिराई यूक्रेनी ड्रोन। रूसी विदेश मंत्रालय ने आर्मीनिया के साथ रिश्तों में आई दरार पर बड़ी बात कही। पश्चिमी देशों के समर्थक माने जाने वाले आर्मीनियाई प्रधानमंत्री निकोल पाशिनियान के दोबारा चुनाव लड़ने के दौरान संबंध हुए हैं तनाव। बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स में शिक्षा सुधार और ट्यूशन फीस में भारी बढ़ोतरी के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों ने जमकर तोड़फोड़ की। प्रदर्शन की वजह से शहर के मुख्य रेलवे स्टेशन के आसपास यातायात हुआ बाधित।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से इन एसोसिएशन।
0: तो श्रद्धा आस्था के बाद अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे नोएडा से लेकर भिवानी तक मचे आग से हाहाकार की। नोएडा में सुबह सुबह दो अलग अलग जगहों पर आग लगने से अफरा तफरी मच गई। सेक्टर 75 की सोसाइटी और सेक्टर 52 की एक पीजी में आग लगे। तो वहीं राजस्थान के भिवाड़ी से भी आग की तस्वीरें सामने आई। इंडस्ट्रियल एरिया में ये घटना हुई।
1: तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त तीन जगह पर लगी आग की। दो जगह नोएडा की सेक्टर 72 में एक बहुमंजिला इमारत जहां एक फ्लैट में आग लगी, और दूसरी तस्वीर सेक्टर 52 की जहां एक पीजी, नीचे रेस्तरां चल रहा था, ऊपर पीजी था, इस बिल्डिंग में भी आग लगी। दोनों में कोई हताहत नहीं हुआ। और तीसरी राजस्थान की जहां 5 मजदूर झुलसे हैं।
0: तो नोएडा के सेक्टर 75 में एक बहुमंजिल इमारत में आग लगी और बिल्डिंग के 12वें फ्लोर पर ही आग लगी। वहीं नोएडा के ही सेक्टर 52 की बात करें तो यहां पर एक पीजी पेइंग गेस्ट में आग लगी।
1: सेक्टर के शताब्दी विहार इलाके में ये पीजी था जहां आग लगी। पीजी के नीचे रेस्तरां चल रहा था और ऊपर पीजी की फैसिलिटी थी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग की वजह से पीजी में रहने वाले लोगों को में हड़कंप मच गया था, लेकिन उन्हें समय रहते बाहर निकाल लिया गया और सभी सुरक्षित हैं।
0: तो पहले ये तस्वीर आप देखिए, ये आईवी काउंटी सोसाइटी है, काफी प्रीमियम महंगी सोसाइटीज में से एक है। वहां पर ये 12वीं मंजिल पर आग लगी और आग की लपटें बता रहे हैं कि कितनी भीषण आग थी, क्या कारण रहा कब वो भी स्पष्ट नहीं, लेकिन विकराल रूप आग ने धारण किया।
1: और अब बात करते हैं भिवाड़ी की। ये इंडस्ट्रियल इलाका जहां राजस्थान के भिवाड़ी में आग लगी। भिवाड़ी में एक फैक्ट्री में भीषण आग से हड़कंप मच गए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं विकराल रूप आग का। जानकारी के मुताबिक ट्रांसफॉर्मर में आग लगी और उसने दो फैक्ट्रियों को अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें फैक्ट्री के पांच कर्मचारी झुलस गए। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर गई, आग बुझाने की पूरी कोशिश की गई।
0: तो दो फैक्ट्रियां जल गई, क्या ये बिजली महकमे की नाकामी नहीं, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर में आग लगी और आग ऐसी की दो फैक्ट्रीज को उसने अपनी चपेट में ले।
1: और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर की, जहां एनकाउंटर में मारे गए आरोपी की शव यात्रा में बवाल हो गया। बड़ी खबर यह है कि गाजीपुर के कोतवाली इलाके का यह मामला है जहां यह बवाल हुआ। कमलेश बिंद नाम का एक शख्स था जिसे पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया था और उस पर 1,00,000 का इनाम भी था। कल जब उसके शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था, उसी वक्त बवाल खड़ा हो गया, भारी पथराव हुआ है, महिलाएं सामने आ गई, पुलिस के साथ झड़प हुई और उसके बाद पथराव, कई पुलिसकर्मी भी घायल हो गए, इलाके में तनाव बन गया, पुलिस वालों को भी चोटें आई और ये पूरा मामला एक बदमाश के एनकाउंटर से जुड़ा हुआ है।
0: तो आप इस सहानुभूति को देखिए, एक अपराधी के प्रति ये सहानुभूति दिखाई कि पुलिस वालों वर्दी का भी लिहाज नहीं रखा, लोगों ने वर्दी पर भी पथराव किया, पुलिसकर्मी भी जख्मी है। अब गाजीपुर में एनकाउंटर और बवाल पर राजनीति गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा कि बीजेपी राज में महाभ्रष्ट शासन प्रशासन ने जनता का विश्वास खो दिया है।
1: वो कह रहे हैं कि हत्याओं और एनकाउंटर ने उत्तर प्रदेश की छवि को पूरी तरह नकारात्मक बना दिया है। अखिलेश ने लिखा है कि बीजेपी खुद अपराधी है।
0: तो एनकाउंटर से यूपी की नकारात्मक छवि जो है सामने आए हैं। अखिलेश यादव ने एक बार फिर से राज्य सरकार को कोसा है।
1: तो वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आज तक पर खबरों का सिलसिला जारी है।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
4: Tune in's how to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
5: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed, whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest. You can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
3: Sokudo.
6: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
3: AU सोच बदलो और बैंक भी।
4: In association with
5: cool stylish fans, enhance home decor with beautiful fans.
6: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
7: समर कूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। समर कूल कूलर, लाइफ बनाए वंडरफुल।
4: हिंट, बड़े आराम से। विमल बोलो जुबा केसरी।
8: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी। वेयर आर यू?
9: पत्रकारिता के गुर यहाँ नहीं सीखे तो क्या सीखे, नाम ही काफी है। इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.indiatodaymediainstitute.in या 9560065465 पर कॉल करें।
10: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक।

मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर अब भारत की रसोई तक पहुंच चुका है। हजारों किलोमीटर दूर चल रहा संघर्ष आम लोगों के बजट पर दबाव बढ़ा रहा है। सुबह की चाय से लेकर रात के खाने तक कई जरूरी सामान महंगे हो गए हैं। इसकी बड़ी वजह कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें हैं, जिन्होंने ट्रांसपोर्ट और यातायात की लागत बढ़ा दी है। पिछले कुछ महीनों में दूध की कीमतों में बढ़ोतरी हुई, पेट्रोल और डीजल महंगे हुए, खाने के तेल की कीमतों में उछाल आया, FMCG प्रोडक्ट्स की लागत बढ़ी है और कंस्ट्रक्शन से जुड़े कई सामान महंगे हो गए। इसका असर इसलिए ज्यादा दिखाई दे रहा है क्योंकि जिन सामानों की सप्लाई लंबी चेन के जरिए होती है उन पर सबसे पहले दबाव आता है। ऊपर से आयातित कच्चे माल की बढ़ी लागत और कमजोर रुपया महंगाई को और हवा दे रहा है। महंगाई का दबाव बढ़ने की आशंका के बीच बड़ी FMCG कंपनियां डैमेज कंट्रोल में जुट गई हैं। कोशिश ये है कि सप्लाई बाधित ना हो, क्योंकि सप्लाई अटकने का मतलब लागत में और बढ़ोतरी, जिसका बोझ आखिरकार ग्राहकों पर ही पड़ सकता है। इसी वजह से कंपनियां अपने पुराने सप्लाई मॉडल में बदलाव ला रही हैं। डाबर ने कुछ उत्पादन UAE से भारत, मिस्र और तुर्की में शिफ्ट किए हैं। साथ ही नए एक्सपोर्ट रूट तैयार किए जा रहे हैं। ब्रिटानिया ने ओमान की जगह गुजरात के मुंद्रा हब से सप्लाई शुरू की है। कंपनी ने हॉर्मुज रूट पर निर्भरता घटाने की रणनीति अपनाई है। कंपनियों को डर है कि अगर पश्चिम एशिया में हालात और बिगड़े तो सप्लाई चेन पर असर पड़ सकता है, और यही वजह है कि कई कंपनियां बैकअप प्लान तैयार कर रही हैं। टाटा कंज्यूमर ने अपने सप्लायर नेटवर्क का दायरा बढ़ाया है। पैकेजिंग और दूसरे कच्चे माल के लिए नए सोर्स जोड़े गए हैं। कुछ कंपनियों के विदेशी कारोबार पर असर दिखा है। कई बाजारों में उत्पादन और सप्लाई की रणनीति बदली गई है। मकसद साफ है, बाजार में सामान की उपलब्धता बनी रहे और कीमतों पर अतिरिक्त दबाव न हो। पश्चिम एशिया का संकट भारत में महंगाई की नई चुनौती बनकर उभरा है। पेट्रोल, डीजल, दूध और खाने के तेल जैसे रोजमर्रा के सामान की कीमतों पर इसका असर दिख रहा है। वहीं दूसरी तरफ कंपनियां सप्लाई चेन मजबूत करने, नए उत्पादन केंद्र बनाने और वैकल्पिक व्यापारिक रास्ते तैयार करने में जुटी हैं। इससे साफ है कि कारोबार जगत भी महंगाई के खतरे को समझ रहा है, उसे काबू में रखने की कोशिश भी हो रही है। आने वाले महीनों में हालात किस दिशा में जाते हैं इस पर ही तय होगा कि आम आदमी के बजट को कितना राहत मिलेगी। आज तक ब्यूरो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Akajay, the number one Korean skincare brand, now in India.

0: तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके के अन्नामलाई ने पार्टी से दिया इस्तीफा। नितिन नवीन ने स्वीकार किया। चुनाव से पहले एआईएडीएमके से गठबंधन के बाद से अलग थलग थे अन्नामलाई।
1: बंगाल जीत से बदले सियासी समीकरणों के बाद परिसीमन विधेयक को दोबारा संसद में लाने की है तैयारी। मॉनसून सत्र में आ सकता है बिल। टीएमसी में टूट और इंडी गठबंधन में फूट का मिल सकता है फायदा।

0: देश के कई इलाकों में आग ने मचाया तांडव। नोएडा की आईवी काउंटर सोसाइटी में भीषण लपटों से हड़कंप। एक और इमारत खाक। भिवंडी इंडस्ट्रियल एरिया में दो फैक्ट्रियां जली, पांच झुलसे।
1: दिल्ली होटल अग्निकांड के बाद एक्शन में सरकार। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज बुलाई हाई लेवल बैठक। पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी तलब। अवैध संचालन और निर्माण पर सख्त कार्रवाई के निर्देश।
0: मोहाली की कंपनी में काम करने वाली लड़की की पूर्व बॉयफ्रेंड ने चाकू गोद कर की हत्या। जलंधर की रहने वाली थी डिंपल। दिल्ली यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर की हत्या से हड़कंप। सिर पर गहरी चोट।

0: पांच राज्यों के चुनावी नतीजों का असर देश की राजनीति पर भी पड़ा है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की हार और तमिलनाडु में डीएमके की पराजय ने एनडीए के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोल दिए हैं।
1: अब मोदी सरकार ने भी बड़े बड़े निर्णय इस बीच में लिए हैं और आपको बता दें कि जब पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजे आए तो उसके बाद से अब परिसीमन विधेयक को दोबारा पेश करने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। अब उम्मीद की जा रही है कि टीएमसी के बागी सांसद और डीएमके इस बार बिल का समर्थन करेंगे और इसलिए दोनों से संपर्क साधा जा रहा है।

0: बंगाल से आती बगावत की इस आवाज को बड़े गौर से सुना जा रहा है। दिल्ली टकटकी लगाए बंगाल की ओर देख रही है। तृणमूल कांग्रेस की आपदा में उसे अवसर नजर आ रहा है। कैसे, ये समझ लीजिए। 17 अप्रैल को लोकसभा में 131वां संविधान संशोधन बिल गिर गया। ये बिल महिला आरक्षण कानून में संशोधन के लिए लाया गया था। एनडीए बिल के पक्ष में 2/3 वोट हासिल करने में नाकाम रहा। बिल के पक्ष में 298 वोट मिले जबकि इसके विरोध में 230। मोदी सरकार को उपस्थित 528 सांसदों में से 352 सांसदों का समर्थन चाहिए था। लेकिन ये तब की बात थी। विपक्ष एकजुट था। संख्या बल में सरकार पर भारी पड़ा था। विपक्षी एकता के सामने सरकार को हार का मुंह देखना पड़ा। हालांकि पीएम मोदी ने तब कहा था कि आज हम हारे जरूर हैं, लेकिन इरादा नहीं टाला है।
1: कल हमारे पास संख्या बल नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हार गए। हमारा आत्मबल अजय है। हमारा प्रयास रुकेगा नहीं, हमारा प्रयास थमेगा नहीं। हमारे पास आगे भी और मौके आएंगे।
0: जिस मौके की बात पीएम मोदी कर रहे थे वो बहुत जल्दी आ गया। अप्रैल में महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा में पारित नहीं हो सका। तब सरकार ने परिसीमन विधेयक 2026 भी वापस ले लिया था। लेकिन एक महीने के भीतर राजनीतिक हालात तेजी से बदल गए। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस बुरी तरह परास्त हो गई। तृणमूल कांग्रेस में बगावत शुरू हो गई। ममता कमजोर पड़ गई। उधर तमिलनाडु में डीएमके को करारी हार का सामना करना पड़ा। इस नतीजे का असर इंडिया गठबंधन की एकजुटता पर पड़ा। कांग्रेस ने विजय की पार्टी टीवीके से हाथ मिला लिया, सरकार में शामिल हो गई। नाराज डीएमके ने इंडिया गठबंधन से दूरी बना ली, यहाँ तक कि संसद में बैठने के लिए अलग जगह आवंटित करवा ली और 8 जून को होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक में ये कहकर शामिल होने से इनकार कर दिया कि कांग्रेस मौजूद रहेगी तो वो दूर ही रहेगी। तो बंगाल और तमिलनाडु के घटनाक्रम ने मोदी सरकार को नया हौसला दिया है। खबर है कि मोदी सरकार मॉनसून सत्र में परिसीमन विधेयक को दोबारा पेश कर सकती है। सरकार परिसीमन पर आम सहमति बनाने के लिए डीएमके और टीएमसी जैसी क्षेत्रीय पार्टियों से बात करने पर विचार कर रही है। सूत्रों ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के कई सांसद परिसीमन के पक्ष में हैं और उन्होंने सरकार के दृष्टिकोण पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। डीएमके ने भी कोई कड़ा रुख नहीं अपनाया है। वो सरकार की तरफ से तैयार किए जा रहे विधेयक के नए मसौदे का इंतजार कर रहे हैं। अगर 22 सांसदों वाली डीएमके बिल को समर्थन देने के लिए राजी हो जाती है और टीएमसी सांसदों का एक धड़ा भी साथ आ जाता है तो सरकार के लिए संख्या बल जुटाना आसान हो सकता है। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
2: और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी हिमांशु मिश्र। हिमांशु, टीएमसी के जो सांसद है उन पर इस वक्त सबकी निगाहें रहेंगी क्योंकि डीएमके का मन मुटाव जो कांग्रेस है वो तो जग जाहिर है, लेकिन टीएमसी के सांसदों के मन में क्या है, सूत्र क्या बता रहे हैं?
3: देखिए, बिल्कुल, टीएमसी के कई सांसद जो हैं वो सरकार के संपर्क में हैं। आप देखें तो काकोली घोष हैं, वो पार्टी के तमाम पदों से इस्तीफा दे चुकी हैं। सुदीप बंदोपाध्याय हैं जो लोकसभा के अंदर संसदीय दल के नेता हैं, वो हाशिए पे हैं। उनसे पार्टी आलाकमान बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करता। तो ऐसे कई सांसद हैं जो सरकार के संपर्क में हैं और इसीलिए सरकार की ये कोशिश है कि जो मानसून सत्र है उसके अंदर जो है डीलिमिटेशन के लिए और महिला आरक्षण बिल 2029 से लागू हो इसके लिए जो है ये बिल लाए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि डिलिमिटेशन कमीशन के लिए जो बिल ला रहे हैं जिसमें नंबर ऑफ सीट बढ़ाने का है, क्योंकि इसके लिए आपको सेंसस जो है वो 2011 के आधार पर जो है वो डिलिमिटेशन कमीशन होगा, ना कि 2026 के लिए। और अगर आपको महिला आरक्षण बिल लागू करना है तो सरकार की तरफ से एक फार्मूला जो है सभी दलों को दिया गया था कि जो मौजूदा सभी राज्यों के अंदर लोकसभा सीटें हैं उसका 50% जो है सीटें बढ़ा दी जाएं तो महिलाओं के लिए आरक्षण जो है वो भी हो जाएगा और मौजूदा स्थिति में जो सीटें हैं वो भी रहेंगी। यानी कि महिलाओं को 33% आरक्षण देने के लिए ये जो है बिल लाया जाएगा। पिछली बार सरकार
4: इस बिल्कुल आप इस पर निगाहें रहेंगे कि संसद में समर्थन किस किस का मिलता है। मानसू बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो बंगाल में अब क्या होगा, क्या ममता बनर्जी को अभी और भी झटके सहने होंगे? पहले विधायकों ने ममता बनर्जी का साथ छोड़ा और अब सांसदों की तरफ से भी असंतोष के सुर सुनाई दे रहे हैं।
0: टीएमसी में कहां तक बगावत, ममता के साथ सिर्फ 20 विधायक, विधायकों ने साथ छोड़ा मुंह मोड़ा, सांसद भी बगावत की राह पर जाएंगे।
5: मानसिक तौर पे आप पार्टी के साथ नहीं है?
6: मानसिक तौर पे मैं पार्टी के साथ नहीं हूं।
5: और ऐसे ही मानसिक तौर पे और कितने सांसद हैं तृणमूल में जो पार्टी के साथ नहीं है, आपको क्या पता है?
6: देखिए मैं तो किसी का मानसिक स्थिति को रीड नहीं कर पाता।
5: नहीं, बातचीत तो होती होगी।
6: बातचीत होती है, मेरे सुनने में जो है मैंने आपको बता दिया ना कि लोकसभा में ज्यादा मेंबर मैंने मेजोरिटी मेंबर थे।
0: टीएमसी के सीनियर नेताओं में से एक सुखेंदु शेखर रॉय ने जो कुछ कहा वो ममता बनर्जी के लिए गहराते संकट के संकेत हैं। तृणमूल के सांसदों में असंतोष और बेचैनी साफ साफ देखी जा सकती है और अगर ममता नाकाम रही तो ये संकट तृणमूल को तिनका तिनका कर सकता है।
5: लोकसभा में आपके 29 सांसद हैं, आपको क्या सुनाई दे रहा है, कितने सांसद होंगे फिर?
6: 29 नहीं, 28 है।
5: 28
6: बसीरहाट आपका पेंडिंग है कलकत्ता हाई कोर्ट में,
5: क्या होने वाला है, आपको क्या सुनाई दे रहा है? आपको पार्टी के अंदर अभी भी है
6: मेजोरिटी चल रही है?
5: ये एक बड़ा बयान है आप दे रहे हैं कि मेजॉरिटी ही चला जाएगा,
0: तृणमूल के सांसदों पर एनडीए की नजर है। संसद के मॉनसून सत्र में सरकार परिसीमन बिल लाने की तैयारी में है और खबर है कि तृणमूल के सांसदों से संपर्क साधा गया है, यानी विधायकों के बाद ममता बनर्जी के सामने अपने सांसदों को टूटने से बचाने की बड़ी चुनौती है। क्या ममता बनर्जी इस सुनामी का सामना कर पाएंगी? उनके लिए एक अच्छी खबर ये है कि बागियों में से पहली आवाज उनके समर्थन में आई।
7: ममता बनर्जी हम लोग का सर्वोच्च नेतृत्व है, ये बात बोला एवं ममता बनर्जी का छवि घर में रहेगा, सबका घर में रहेगा। ममता बनर्जी के फोटो का लेके मीटिंग मीटिंग करेगा, ये सब बात हुआ, इसलिए हम सही किया।
8: आने वाले दिनों में कि ममता बनर्जी चीफ एडवाइजर ही रहे,
0: ममता के लिए ऐसी कई आवाजों की जरूरत होगी, तभी वो इस संकट से उबर पाएंगे। इंद्रजीत कुंडू के साथ अनुपम मिश्र, कोलकाता आज तक।
2: तो टीएमसी के अंदर उठापटक के बीच पश्चिम बंगाल की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। पार्टी में बगावत के बाद ममता बनर्जी ने टीएमसी के नेताओं की एक बैठक बुलाई है। ममता बनर्जी ने अपने टॉप नेताओं को अपने आवास पर शाम 4 बजे बैठक के लिए बुलाया है।
4: कालीघाट आवास पर टीएमसी नेताओं की बैठक भी होगी। हमारे साथ हमारे संवाददाता इंद्रजीत कुंडू भी जुड़ गए। इंद्रजीत, इससे पहले भी 2 बार एमएलए को बुला चुके हैं, तब तो एमएलए आए नहीं थे, क्या इस बार पार्टी के नेता ममता बनर्जी की सुनेंगे, क्या बैठक में आ रहे हैं?
5: देखिए आज का जो बैठक है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कल जैसे आपने दिखाया कुछ ऐसे रेबल एमएलएज हैं जिन्होंने अपना सुर बदलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को एडवाइजर के रूप में रखना ये उनको मंजूर नहीं है, वो चाहते हैं ममता बनर्जी पार्टी का लीडर है, सुप्रीमो है, वैसा ही रहे। तो जो एमएलएज के गुट बगावत करते हुए दिख रहे थे उनमें भी थोड़ा सा दरार पैदा होता हुआ दिख रहा है। अब इस वक्त जो रेबल एमएलएज है संदीपन शाह के घर में उनकी बैठक हो रही है और ममता बनर्जी ने अपने घर में आज 4 बजे एक बैठक बुलाया, जहां पे तृणमूल के जो आलाकमान है, जो टॉप ब्रास है, उनको बुलाया गया है। सब नेताओं को नहीं बुलाया गया है, लेकिन कुछ चुनिंदे नेता जो हैं जो डिसीशन मेकिंग में रहेंगे शामिल, उनको आज बुलाया गया है। तो रणनीति क्या होगी, किस दिशा में जा रही है, क्योंकि परसों भी ऐसा एक मीटिंग था जहां पे 5 घंटे तक ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, मदन मित्रा, कुणाल घोष, जो चंद्रमा भट्टाचार्य, इन जो टॉप लीडर्स हैं उनकी बैठक हुई। शोभनदेव चट्टोपाध्याय जिनको एलओपी का नॉमिनेट किया गया था तृणमूल की ओर से, वो भी वहां पे थे। तो कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस चाह रही है कि ये पूरा जो मसला भी फंसा हुआ है एलओपी को लेके बंगाल विधानसभा में, और ऋतुव्रत बनर्जी का जो नॉमिनेशन है वो एक्सेप्ट कर लिया है स्पीकर ने, उसको लीगली कैसे वो चुनौती दे सकते हैं, कोर्ट मूव कर सकते हैं, इसको लेके चर्चा जारी है। तृणमूल के अंदर।
2: जी जी, इस पूरी जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। इस सबके बीच हुमायूं कबीर ने ममता बनर्जी को अपनी सीट से लड़ने का ऑफर दे दिया है। बड़ी खबर यह आ रही है कि हुमायूं कबीर जो पहले टीएमसी छोड़कर चले गए थे, अब वो कह रहे हैं कि आप रेजीनगर सीट से चुनाव लड़ लीजिए, क्योंकि नंदीग्राम की सीट वो सेफ नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि ममता बनर्जी वहां से जीत नहीं पाएंगी, तो ऐसे में वो कह रहे हैं कि रेजीनगर सीट से ऑफर देता हूं।
9: मेरा लग रहा है जो 60 से 60, 80 से 60 एमएलए वो निकल चुका हुआ एक तृणमूल कांग्रेस को, अलग जो परिषदियों ब्लॉक कर लिया उन, तो तृणमूल कांग्रेस का जो असली जो लोगो है जुड़ा फूल घास फूल वो तो नहीं रहेगा, इनको पास चलाएगा। तो आज का दिन में ममता बनर्जी को विधानसभा में विपक्ष में नेत्री होके जरूरत है।
10: लेकिन कैसे, वो तो हार चुकी है।
9: हार चुकी है, इसीलिए में मौका है जो दोनों सीट में आज का मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी में दोनों सीट में जीता, भवानीपुर और नंदीग्राम, और मैं भी रेजीनगर और नौदा जीता। तो नौदा रख दिया, रेजीनगर में रिजाइन कर दिया। तो मैं रेजीनगर में मेरा बेटा को मैं उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिया, किंतु ममता बनर्जी को चाहिए, ममता बनर्जी को ही मेरे को खास बोलेगी, तो मैं ही ममता बनर्जी को ये सीट छोड़ने के लिए तैयार हूँ।
4: अब बात करते हैं बिहार के पटना के हॉस्पिटल में आईसीयू में आग लगने से जो मौतें हुई हैं, उसके बाद बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार का पहला बयान आ गया। कल निशांत कुमार मीडिया के सवालों से बचकर निकल गए थे, लेकिन आज उन्होंने कहा कि सरकार सभी अस्पतालों के फायर ऑडिट करवाएगी।
2: दरअसल कल जो आग लगी थी अस्पताल के अंदर मुजफ्फरनगर में, उसके बाद एक वीडियो आया था जिसमें वो छुपते हुए और बचते हुए निकलते आए।
11: मुजफ्फरपुर में घटना घटी है, काफी दुखद है। दिवंगत आत्माओं के लिए भगवान से शांति की प्रार्थना करता हूं, उनके परिजनों के लिए दुख का समय है, ईश्वर उन्हें दुख सहने की शक्ति दें। ये जिस रीजन से भी हो हम इसकी जांच कराएंगे, जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी।
2: तो बात करते हैं पटना के दो कोचिंग संचालकों के बीच वर्चस्व के जंग की। फैजल खान उर्फ खान सर के कोचिंग सेंटर पर कथित फायरिंग के मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है। एक नया वीडियो सामने आया है जिसके बाद फैजल खान उर्फ खान सर के दो गार्ड को गिरफ्तार कर लिया गया है।
12: ज्ञानबिंदु कोचिंग के निदेशक रोशन आनंद की रिहाई की मांग को लेकर ज्ञानबिंदु कोचिंग के अलग अलग सेंटर के छात्र सड़कों पर उतर गए हैं। पोस्टर बैनर के साथ छात्रों ने प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। ये छात्र रोशन आनंद की रिहाई की मांग कर रहे हैं। दरअसल रोशन आनंद को फैजल खान उर्फ खान सर के कोचिंग सेंटर पर हमले के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन एक नया वीडियो वायरल होने के बाद इस केस में ट्विस्ट आ गया है और रोशन आनंद पर आरोप लगाने वाले फैजल खान खुद आरोपों से घिर गए हैं। नए वीडियो में फैजल खान का गार्ड गोली चलाता नजर आ रहा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस ने फैजल खान के दो गार्ड को गिरफ्तार कर लिया। फायरिंग वाली शाम का वो बयान देखिए जिसमें फैजल खान अपनी कोचिंग पर फायरिंग का आरोप लगा रहे थे।
13: अभी इन लोग का बस यही है कि इतने कम फीस में नहीं पढ़ाया जाए और इतने हजारों संख्या में जो रिजल्ट आता है पूरी तरह से इतनी गोली चलाने लगे। 10 मिनट में ऐसा लगा कि जैसे अफरा तफरी होके रख गया यहाँ पर। 8-10 राउंड तो हम देखे हैं यहाँ पे, 8-10 राउंड हम देखे हैं, हमें क्या पता है। अभी पीएमसीएच में एडमिट है, उसका पूरा सर फाड़ दिया गया है यहाँ पर।
14: क्या लगता है
13: बगल की कोचिंग वाले?
12: दरअसल कोचिंग संचालक फैजल खान और रोशन आनंद के बीच वर्चस्व की लड़ाई 27 मई से शुरू हुई थी जब बिहार पुलिस भर्ती का रिजल्ट आया था। दोनों कोचिंग संचालकों ने अपने ज्यादा स्टूडेंट की कामयाबी के दावे किए, दोनों तरफ से अपने अपने अभ्यर्थियों के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान दोनों ने बढ़ चढ़ कर पोस्टर भी लगाए।
15: 30 मई को पटना में दोनों ही कोचिंग संस्थानों और संचालकों की तरफ से अपने अभ्यर्थियों की सफलता का जश्न भी मनाया गया। लेकिन बात जब बिगड़ गई जब 3 जून की रात अपने अपने बैनर पोस्टर को लेकर के दोनों खेमे आमने सामने आ गए और नतीजा वर्चस्व की लड़ाई में बदल गया।
12: आरोप है कि फैजल खान के स्टाफ ने ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के बोर्ड पर अपना बैनर लगा दिया और यहीं से विवाद भड़क गया। 2-3 जून की रात को दोनों कोचिंग संचालकों के बीच में बवाल हो गया और तोड़फोड़ पत्थरबाजी से लेकर गोलियां चल गईं।
16: बिहार पुलिस में जो शानदार रिजल्ट हुआ है उसी का साजिश है, हमको फंसाया जा रहा है। किसान कोल्ड स्टोर के मालिक और खान सर जो है दोनों मिल करके जो है ज्ञान बिंदु को बर्बाद करने का पूरा प्रयास कर रहा है, लेकिन सत्यमेव जयते, हमेशा सत्य की जीत है।
12: दोनों कोचिंग संचालकों के बीच की जंग अब गोलीबारी तक पहुंच चुकी है। बच्चों का भविष्य बनाने का दावा करने वाले गुरु आपस में झगड़ रहे हैं और इस झगड़े में नए खुलासे के बाद खुद कोचिंग वाले खान सर बुरे फंसे हैं। क्या रोशन आनंद की तरह उन्हें भी गिरफ्तार करेगी पुलिस? पटना से शशि भूषण के साथ आज तक ब्यूरो।
4: अब सवाल सबसे बड़ा यही पूछा जा रहा है कि आखिर फैसल खान उर्फ खान सर पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? उन्होंने आरोप लगाए तो दूसरे कोचिंग सेंटर पर तो कार्रवाई हो गई, उनको तो गिरफ्तार कर लिया गया। रोहित, यही सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर खान सर को क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे हैं पुलिस? उन पर भी तो बहुत गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं।
17: बिल्कुल, देखिए फैसल खान के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक तो रही है, इससे कोई दोराय इस बात में नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से कल से वो वीडियो वायरल हुआ था, उनके दो सुरक्षाकर्मी जो ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए नजर आ रहे थे और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई, जेल भेजा गया, उसके बाद कल जो है फैसल खान से भी पटना पुलिस की लंबी पूछताछ तो हुई है, लेकिन अभी ये केवल पूछताछ तक ही सीमित है और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और कल शाम हमने देखा कि जिस तरीके से रोशन आनंद के यहाँ पढ़ने वाले जो हजारों की संख्या में छात्र छात्राएं सड़कों पर उतरे थे अपने टीचर के समर्थन में, वहीं ये मांग कर रहे थे कि भाई रोशन
4: गिरफ्तार, पुलिस हिचकिचा क्यों रहे हैं? रोशन आनंद को गिरफ्तार करने में देर नहीं लगाई, लेकिन यहाँ वीडियोस आ चुके हैं, फायरिंग किस कौन कर रहा है वो सब दिख रहा है, उसके बाद भी एक्शन क्यों नहीं?
17: देखिए यहाँ बात बस ये है कि क्योंकि फैसल खान एक बहुत ज्यादा पॉपुलर एक चेहरा है, यूट्यूबर शिक्षक है, तो पुलिस भी जब फूंक फूंक के कदम रख रही है कि कहीं ऐसा न हो कि अगर कार्रवाई कर ले उनको गिरफ्तार तुरंत कर लिया जाए, तो ऐसा न हो कि हजारों की संख्या में पटना के इलाकों में जो छात्र छात्राएं पढ़ते हैं वो सड़कों पर आ जाएं और एक अलग ही बवाल जो है वो पैदा हो जाए। और इसी को लेकर पटना पुलिस फिलहाल फूंक फूंक कर जो है हर कदम आगे बढ़ा रही है, लेकिन एक बात तय है कि फैसल खान के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक तो जरूर रही है। जी
2: जी, शुक्रिया रोहित इस पूरी जानकारी के लिए। और अब रुख करते हैं एक बड़ी खबर का। मध्य प्रदेश के इंदौर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। इंदौर में एक शोरूम में आग लग गई है, ये भीषण आग इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के शोरूम में लगी है। ऊपरी मंजिल पर रहने वाले लोगों की जान बचाई गई, ऊपरी मंजिल पर रहने वाले लोग नीचे आग की वजह से बाहर नहीं आ पा रहे थे, लेकिन उन्हें सुरक्षित निकालने के लिए आसपास के लोगों ने मदद की, आग पर काबू पाया गया और शोरूम में रखे हुए वाहन जलकर खाक हो गए हैं।
4: तो ये बड़ी खबर आपको इंदौर से दे रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल का शोरूम है, वहां पर आग लगी है। आग कैसे लगे अभी ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये चिंताजनक बात जरूर सामने आ रही है। अलग अलग शहरों से इस तरह की घटनाएं बढ़ रहे हैं। अब इलेक्ट्रिक वाहन शोरूम में आग, ऊपर लोग फंस गए, वो निकल नहीं पा रहे थे, हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई और आग पर उन्होंने काबू पाने के फिर प्रयास शुरू किया गया। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, सब जला हुआ दिखाई दे रहा है।
2: वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
18: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
19: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
20: What's going on everyone? It's Bluff here, and you know what's more American than America's 250th birthday? Supporting American-owned companies like SpinQuest, America's number one social casino with over 1,000 games like Live Dealer Blackjack and Craps. They're offering new users a $30 coin package for just $10. Go to SpinQuest.com and sign up today.
1: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
21: This is the sound of Claire cooking dinner at home. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
22: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
23: Stay in the game with TuneIn. Hear nonstop sports talk, live games, and coverage that never slows down. Keep up with your favorite teams from every play to every post-game breakdown. Listen to sports stations like ESPN Radio, NBC Sports Radio, Big 12 Radio, Talk Sport, and more. Plus, catch live games all year round, so you never miss a moment of sports action. Start listening on TuneIn.
24: Sokudo.
25: लोग मुझे पूछ रहे थे कि आप अभिषेक का बहुत करीब है, तो मैं बोला कभी देखे हैं कि अभिषेक बनर्जी का जन्मदिन में केक लेकर 7 घंटा 8 घंटा डितोब्रत कभी खड़ा हुआ? ये पॉलिटिक्स का पार्ट नहीं है, और खास करके यू आर द ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी, तो वह जब अटैक हो रहा है 26 दिन आप घर से निकल नहीं रहे हो। मैं तो उलुवेरिया पूर्व का विधायक, सामान्य विधायक, मैं तो अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी में जा रहा हूँ, मुझे तो चोट चोर कोई बोल नहीं रहा है। तो जो लोगों को लोग बोल रहे हैं ये लोग गद्दार है, तो जनवाद में, जामुरियत में हर कोई को बोलने का राइट है, मगर जामुरियत का एक जो सबसे बड़ा चीज है कि हर लोग जो बोले वो बोलना चाहिए। तो गद्दार लोग बोल सकते हैं, बोलेंगे भी, मगर कोई चोट चोट नहीं बोल रहा है और पिट भी नहीं रहा है।
26: आज आप लोगों ने मिलकर ये जो 80 लोगों का एक टीम जो आगे जाकर तृणमूल को रिप्रेजेंट करेंगे, तृणमूल सुप्रीमो या फिर अभिषेक बनर्जी के काम करने पे क्या आपत्ति रहा है?
27: जिस दल में गणतंत्र नहीं रहे, जिसमें डेमोक्रेसी नहीं रहे, तो उस दल में रहना नहीं रहना एक ही बात है। इसीलिए हम लोग, जहां हम लोग को बोलने का मौका नहीं दिया जाता, जहां हमें बात नहीं सुनी जाती है, जहां हमारे लोगों को मारा जाता है, तृणमूल के कर्मियों को पिटाई किया जाता है और नेतृत्व चुप से बैठा रहता है, उस दल के साथ नहीं रहना।
26: टीएमसी का क्या भविष्य लगता है आपको?
27: वो बताएंगे वो जो लोग वहाँ पर हैं अभी, वो लोग बताएंगे।
26: हमने अभिषेक बनर्जी का जो रोल रहा है उसे आप कैसे देखते हैं? आप तो कद्दावर।
27: हम सुनिए ना, हम अभिषेक बनर्जी को नहीं पहचानते, हम ममता बनर्जी के साथ दल किया है। ममता बनर्जी आज भी हमारी नेत्री है, हम उनको, हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि आप एडवाइजर होके हम लोगों चीफ एडवाइजर के साथ बात कीजिए।

दो तिहाई से ज्यादा विधायकों के साथ छोड़ने के बाद टीएमसी सांसदों में भी टूट की अटकलें। चौतरफा मुसीबत के बाद आज ममता बनर्जी ने बुलाए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक। बंगाल नतीजों से बदले समीकरणों के बाद बारिश सिमन विधेयक को दोबारा संसद में लाने की तैयारी। मानसून सत्र में आ सकता है बिल। इंडिया अलायंस में फूट के बाद मिल सकता है फायदा। तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके अन्नामलाई ने दिया पार्टी से इस्तीफा। नितिन नवीन ने किया स्वीकार। चुनावों से पहले एआईएडीएमके से गठबंधन के बाद से अलग थलग थे अन्नामलाई। देश के कई इलाकों में आग ने मचाया तांडव। नोएडा की आईबी काउंटी सोसाइटी में भयानक लपटों से हाहाकार। एक और इमारत खाक। भिवाड़ी इंडस्ट्रियल एरिया में दो फैक्ट्रियां जली। 5 लोग झुलसे। मोहाली की कंपनी में काम करने वाली लड़की की पूर्व बॉयफ्रेंड ने चाकू गोद कर की हत्या। जालंधर की रहने वाली थी डिंपल। दिल्ली यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर की हत्या से भी अड़कन।

0: नमस्कार, 12 बजे 12 रिपोर्टर देख रहे हैं आप, मैं हूं राजीव ढोंडियाल। शुरुआत करते हैं सिलसिले की। आज सुबह सुबह नोएडा में हड़कंप मचा। दिल्ली के होटल अग्निकांड में किस लोगों की मौत के बाद सब में से लोग उभरे भी नहीं थे कि सुबह सुबह नोएडा में दो जगहों से आग लगने की खबरें सामने आई, जिससे हड़कंप मचा। पहले नोएडा के सेक्टर 74 के एक सोसाइटी में फ्लैट में आग लगने की खबर आई, जो वो आपको बता दें कि शांत हुई थी, कि नोएडा के सेक्टर 52 से भी एक पीजी में आग लगने की खबर आ गई। जिस पीजी में आग लगी उस ठीक बिल्डिंग के नीचे रेस्टोरेंट है और ऊपर पीजी। बहरहाल काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है।
1: शुक्रवार की सुबह एक घंटे के अंतराल पर नोएडा में आग लगने के दो हादसे सामने आए। पहली कॉल सुबह 7 बजे की है सेक्टर 75 से, जहां से ये जानकारी मिली कि 12वीं मंजिल के एक फ्लैट में आग लग गई है। जब तक आग पर पूरी तरीके से काबू पाया जाता, दो फ्लैट जलकर राख हो चुके थे, लेकिन गनीमत ये रही कि किसी के जान की कोई नुकसान नहीं हुआ। वहीं एक घंटे बाद 8 बजे दूसरी कॉल मिली कि एक पीजी में आग लग गई है। आग ग्राउंड फ्लोर के रेस्टोरेंट में लगी थी, पर गनीमत ये रही कि यहां भी तमाम छात्र समय रहते बाहर निकल गए थे। कैमरामैन जगन महंती के साथ हिमांशु मिश्रा, नोएडा आज तक।
0: मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रदीप कुमार ने आज तक से बातचीत में यह बताया कि दमकल कर्मियों ने बेहद तत्परता के साथ आग पर तुरंत काबू पा लिया था।
2: रिस्पांस टाइम बहुत ही अच्छा था, इसकी वजह से ही जो है हम लोग यहाँ पे इतने जो है लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल पाए हैं। हम लोग को गाड़ियों का आने के लिए ट्रैफिक ने एक रास्ता भी बनाया कि जो है गाड़ियां जल्दी पहुंचे। 8 बजे का टाइम जाम का रहता है, उसके बावजूद भी यहाँ पे लोगों ने अप्रिशिएशन भी किया है कि विदिन 5 मिनट हमारी गाड़ियां पहुंच गई हैं। और निश्चित तौर पर हमारे बहादुर कर्मचारी अंदर घुस के और उन्होंने जो आग बुझाया है उसकी मदद से ही जो है हम लोगों को बचाने में सक्षम रहे।
0: अधिकारी कह रहे हैं कि विदिन 5 मिनट यानी 5 मिनट के अंदर ही हम लोग पहुंच गए थे और हमने आग बुझा ली। लेकिन आग लगने की घटनाएं, उन घटनाओं का बढ़ना, ये लगातार प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहा है। हालांकि यहां पर फायर ब्रिगेड तत्पर जरूर दिखाई थी। 12 बजे 12 रिपोर्टर में अगली खबर एमपी के इंदौर से है, और इंदौर के एक शोरूम में अचानक भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। ये इलेक्ट्रॉनिक वाहन का शोरूम था जहां पर आग लगी और ऊपरी मंजिल पर रहने वाले लोगों की इसमें जान बचाए गए। इंदौर में पड़ोसियों ने छत से सीढ़ियां जोड़कर अपना रास्ता बनाया, रस्सी के सहारे सुरक्षित उनको निकाला गया। आग जब बुझाई गई तो उसके बाद सिर्फ राख राख आपको दिखाई देगी इन तस्वीरों में। लेकिन चिंताजनक बात यह थी कि यहां ऊपरी मंजिलों पर लोग थे, वो वहां पर फंसे हुए थे और किसी तरह से उनको फिर बचाया गया। और उन्होंने खुद को बचाने के लिए भी सीढ़ियां लगाकर नीचे आने का प्रयास किया और वो लपटों से खुद को बचा पाए। तो इंदौर में इलेक्ट्रिक वाहन का शोरूम, इस शोरूम में आग लगी और वहां की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए लोग एक बिल्डिंग से, जिस बिल्डिंग में आग लगी थी, अपने आप को बचाने के लिए दूसरी बिल्डिंग में गए वो, लेकिन गए कैसे, जान दांव पर लगाकर उन्होंने एक सीढ़ी लगाए और उस सीढ़ी के सहारे उस बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर अपने आप को बचाते हुए दिखाई दिए। ये तस्वीरें, ये इलेक्ट्रिक वाहनों का शोरूम था यानी बड़ा संवेदनशील, वहां पर आग किन कारणों से लगी है तो जांच का विषय है। लेकिन ऊपरी मंजिल पर लोग रह रहे थे और वो आप देखेंगे कि इसमें महिला भी है, इसमें बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं और वो दूसरी बिल्डिंग में फिर अपने आप को सीढ़ी के सहारे जाकर जान बचाते हैं। तो एक तस्वीर आपने देश की राजधानी दिल्ली में देखी थी, वहां पर छत से कूद कर लोग अपनी जान बचाने का प्रयास करते दिखे। उसी प्रयास में किसी का पैर टूट गया, किसी के हाथ टूटे। और एक तस्वीर आप ये देख रहे हैं, ये मध्य प्रदेश के इंदौर की तस्वीर है जहां शोरूम में आग लगी। हमारे संवाददाता रवीश पाल सिंह जुड़ गए। रवीश, क्या कोई इमरजेंसी गेट यहां भी नहीं था कि लोगों को एक छत से दूसरी छत पर जाना पड़ा जान दांव पर लगाकर?
3: देखिए इमरजेंसी एग्जिट था जरूर, लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये थी कि ये जो आग लगी थी वो नीचे के मंजिलों पर ही लगी थी और क्योंकि ये एक शोरूम था तो नीचे जो बाहर निकलने का रास्ता था जहां से, वो पूरी तरीके से आग की चपेट में आ गया था। और दिक्कत ये हुई थी कि इस इमारत में ऊपर की तरफ लोग रहते थे तो इन लोगों को निकालने के लिए ये जो सीढ़ी है उसका इस्तेमाल किया गया। करीब 20 लोगों को यहां से निकाला गया है फायर ब्रिगेड और पड़ोसियों की मदद से। राहत की बात यह है कि इसमें कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि कैसे नियमों को ताक पर रखकर, देखिए ये एक नीचे शोरूम था, ऊपर रिहायशी इलाका था और यहाँ पर करीब 6 परिवार रह रहे थे जिनको निकाला गया है। जो हमें जानकारी मिल रही है कि इन 6 परिवारों के करीब 20 लोग थे जिनको इस इमारत से निकाल के पास की इमारत से पहले भेजा गया, वहां से फिर वो निकल पाए। क्योंकि नीचे जो शोरूम था उसकी वजह से आग इतनी तेजी से फैली कि उसने एग्जिट गेट जो है उसको पूरी तरीके से अपनी चपेट में ले लिया था और इसलिए लोग वहां से निकल नहीं सकते थे और दूसरा रास्ता अपनाया गया। राहत की बात है कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, जान माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अगर ये आग थोड़ी और तेजी से ऊपर की तरफ फैलती तो फिर बताया जा रहा है, जो हमारी बात हुई है वहां के अग्निशमन विभाग के अधिकारियों से, अगर इसमें थोड़ी सी देरी और होती तो नुकसान बड़ा हो सकता था, जान माल का नुकसान किया हो सकता था।
0: बिल्कुल, ये चिंताजनक तस्वीर भी। रविश, क्या यहाँ पर एनओसी था, फायर एनओसी था इस बिल्डिंग के पास?
3: देखिए, अभी फिलहाल इसकी तरफ से, फायर विभाग की तरफ से इस पे अभी कोई जानकारी आई नहीं है। अभी पूरी कोशिश ये है कि आग को बुझा करके काबू में किया जाए। आग हालांकि काबू में है।
0: ठीक है रविश, नजर बनाए रखें, फिलहाल अपडेट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया। 12:12 रिपोर्ट में आप अगली जो रिपोर्ट है वो उत्तर प्रदेश के बाद यूपी के गाजीपुर की करेंगे, जहां पर बड़ा बवाल हुआ। एनकाउंटर में 1 लाख का इनामी कमलेश बिंद ढेर हुआ। अब उसका शव लेकर पुलिस जैसे ही गाजीपुर के गौसाबाद में पहुंची, भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया। काफी देर तक वहां पर हंगामे की स्थिति बनी रही। धक्का मुक्की और पथराव में 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। एनकाउंटर में मारे गए कमलेश बिंद पर कारोबारी विनीत राय की हत्या का इल्जाम था। एनकाउंटर में मारे गए कमलेश बिंद की पत्नी मनीषा कुमारी ने पुलिस की इस मुठभेड़ को फर्जी बताया और हत्या का आरोप लगाया।
4: गाजीपुर में बीती रात पुलिस पर उस समय हमला हो गया जब 2 दिन पूर्व 1 लाख के इनामी बदमाश कमलेश बिंद का शव पोस्टमार्टम के बाद उसके गांव पहुंचा। महिलाओं को आगे करके पुलिस टीम पर हमला किया गया, पथराव किया गया, और पथराव और हमला इतना तेज और भीषण था कि जिसमें स्थानीय डिप्टी एसपी समेत कई पुलिस वाले घायल हो गए। हालात बिगड़ते देख जिले से बैकअप भेजा गया, स्थिति को नियंत्रित किया गया। अब पुलिस ने 2 दर्जन से अधिक लोगों पर FIR दर्ज कर ली। होटल व्यापारी विनीत राय हत्याकांड में 1 लाख के इनामी बदमाश कमलेश बिंद का एनकाउंटर कर दिया गया था और उसके शव को गांव में पहुंचने के बाद हालात बिगड़ गए थे।
0: राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर, दिल्ली के वसुंधरा एनक्लेव इलाके में DU की एक असिस्टेंट प्रोफेसर की हत्या से सनसनी फैल गई है। मृतका प्रोफेसर का नाम देवस्मिता पॉल है, जो कि शिवाजी कॉलेज में सहायक प्रोफेसर थी और वसुंधरा एनक्लेव के एक फ्लैट में अकेली रहती थी। देवस्मिता के सर पर गहरी चोट के निशान मिले हैं, हाथ की नस कटी हुई है। पुलिस के मुताबिक सिर पर किसी भारी चीज से वार किया गया था। गहने, कैश सब कुछ सुरक्षित है, यानी कि चोरी या लूटपाट का सुराग नहीं मिला है। CCTV फुटेज पुलिस खंगाल रही है और जांच कर रही है।
5: अभी तक की तफ्तीश में यह सामने आया है कि पिछले 2 दिनों से जो महिला प्रोफेसर है वो अपने नौकरी पर नहीं गई थी, और कल सुबह जब उनका ड्राइवर यहां पहुंचता है और उन्हें कॉल करने की कोशिश करता है तब उनका फोन नहीं मिलता। इसको देखते हुए वो उनकी बहन को कॉल करता है और जब उनकी बहन यहां पहुंचती है सत्यम अपार्टमेंट में तो वो देखती है कि जो उनकी बहन का घर है वो बाहर से बंद है और बाहर से ताला लगा हुआ है। वो मेंटेनेंस के पास जाती है और मेंटेनेंस से कहती है कि उस ताले को खोला जाए। जैसे ही वो ताला खुलता है अंदर ड्राइंग रूम में ही महिला की लाश मिलती है। अभी ये सामने आया है कि ये एक मर्डर का केस हो सकता है, क्योंकि महिला के सर पर एक धारदार हथियार से हमला किया गया था। हत्या की वजह क्या थी, क्यों ये हत्या हुई, किसने ये हत्या की, ये अभी तक दिल्ली पुलिस पता नहीं लगा पाई है और इसके लिए टीमें बना दी गई हैं और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है।
0: 12:12 रिपोर्ट में खबरों का सिलसिला जारी है। अगली रिपोर्ट पटना से हमारे संवाददाता शशि भूषण की है। अपने कोचिंग सेंटर पर फायरिंग का आरोप लगाने वाले फैसल खान खुद अब मुश्किलों में फंसे दिख रहे हैं। फायरिंग का वीडियो सामने आने के बाद से कल पुलिस ने फैसल खान के 2 गार्ड को पकड़ा। वीडियो में कोचिंग वाले फैसल खान के गार्ड फायरिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि फैसल खान उर्फ खान सर ने बगल वाले कोचिंग सेंटर के मालिक पर फायरिंग करवाने का आरोप लगाया था।
6: पटना के 2 बड़े कोचिंग संचालकों की लड़ाई अब सड़क पर उतरती नजर आ रही है। दरअसल पटना के फैसल खान के खान ग्लोबल स्टडीज और रौसन आनंद के ज्ञान बिंदु एकेडमी के बीच जो वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, उस मामले में अब छात्र सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। पटना में ज्ञान बिंदु एकेडमी के डायरेक्टर रौसन आनंद की रिहाई को लेकर के उस एकेडमी से जुड़े छात्रों ने पटना के अंदर बड़ा प्रदर्शन किया। ये छात्र लगातार इस मांग पर अड़े हुए थे कि रौशन आनंद को रिहा किया जाए। आपको बता दें कि दोनों कोचिंग संचालकों के बीच वर्चस्व की लड़ाई में फायरिंग तक की घटना हुई थी, जिसके बाद फैसल खान के कोचिंग गार्ड्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
0: और बिहार पुलिस पर भी अब तक सवाल उठ रहे हैं कि कार्रवाई आखिर कब होगी। 12 बजे 12 रिपोर्टर में आप बात करते हैं पंजाब के मोहाली की। मोहाली से भी दिल्ली जो है जैसा ही एक दिल दहला देना वीडियो सामने आया है। एक निजी कंपनी में काम करने वाली 30 साल की युवती की उसके ही पूर्व प्रेमी ने चाकू गोद गोद कर हत्या कर दी। दबते में ही आरोपी ने युवती पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला किया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने खुद पर भी चाकू से हमला करके खुदकुशी का प्रयास किया।
7: मोहाली के फेज 11 में स्थित एसआरपी यूएस लॉजिस्टिक्स में एक खूनी खेल खेला गया। एक पूर्व प्रेमी ने अपनी प्रेमिका डिंपल पर चाकुओं से हमला कर दिया। ये 3 साल से रिश्ते में थे और 6 महीने पहले ही ब्रेकअप हुआ और ऐसा बताया जाता है हरी अपना रिश्ता कायम करना चाह रहा था। और आपको बता दें यहां पर डिंपल ने उसे मना कर दिया। उसके बाद जिस तरह से ये पूरा मामला सबके सामने आया, एम्प्लॉयज उसे बचाने के लिए आए, लेकिन उस पर इतना खूनी फितूर सवार था कि उसने लड़कियों को लगातार चाकू से गोदा। वो भागने की कोशिश करती रही, बाकी एम्प्लॉयज भी उसे बचाने के लिए आए, लेकिन वो लड़का नहीं रुका और उसे मारने के बाद उसने अपने आप को हाम पहचाने की कोशिश की और इसी बीच में दोनों को घायल अवस्था में निजी अस्पताल ले जाया गया। लेकिन आपको यह भी बता दें लड़की ने वहां पे दम तोड़ दिया।
0: और अब बात राज्यसभा चुनाव की। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति ने 5 राज्यों में राज्यसभा चुनाव के लिए कुल 11 उम्मीदवारों के नाम जारी किए हैं। पार्टी ने सीनियर नेता तरुण चुग और सतीश पुनिया को कैंडिडेट बनाया है। बीजेपी ने जिन उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है उनके नाम हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। इसमें राजू भाई शुक्ला, इसमें मुकेश भाई है, इसमें अलका गुर्जर है, इसमें सतीश पुनिया है। ये ऐसे बड़े नाम है बीजेपी के जो राज्यसभा के लिए प्रत्याशी बनाए गए हैं। इसमें ए शारदा देवी है, देवाशीष सामंत राय है, इसमें ताई तगाक अरुणाचल प्रदेश से कैंडिडेट है।
8: कल भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो राज्यसभा के 10 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। एक उड़ीसा के अंदर जो उपचुनाव होना है राज्यसभा के लिए उसके लिए भी उम्मीदवार के नाम की घोषणा की है। भारतीय जनता पार्टी ने अरुणाचल से एक उम्मीदवार के नाम की घोषणा की। गुजरात में 4 राज्यसभा उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की और यह पहला ऐसा चुनाव है राज्यसभा का जब कांग्रेस को वहां से एक भी सीट राज्यसभा की नहीं मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने सभी, अगर आप देखें तो सोशल इंजीनियरिंग को नापते हुए कार्यकर्ताओं को तरजीह दी है। तरुण चुग पार्टी के महासचिव हैं, अलका गुर्जर पार्टी की राष्ट्रीय सचिव हैं, सतीश पुनिया पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष हो चुके, तो ऐसे तमाम कार्यकर्ताओं को जो है तरजीह दी है जो जमीन पर पार्टी के लगातार काम करते हैं। और ये पार्टी आलाकमान की तरफ से संदेश दिया गया है कि पार्टी के लिए जो लगातार मेहनत करता है उसकी मेहनत को परखने का काम जो है पार्टी आलाकमान करती है और उसका पुरस्कार भी जो है समय समय पर इसी तरीके से जो है पार्टी देती रहती है।
0: जो नेता राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाए गए हैं उनका क्या कुछ कहना है आपको सुनाते हैं।
9: मैं समझता हूं कि कार्यकर्ता के रूप में पार्टी ने मुझे हमेशा तवज्जो दी और मैं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तक रहा, विधायक रहा, तो जब जब जो सम्मान मिला वो पार्टी ने दिया। कार्यकर्ताओं ने भरपूर आशीर्वाद दिया, साथ दिया, शुभकामनाएं दी। मैं ये मानता हूं कि ये मेरा नहीं कार्यकर्ताओं का सम्मान है, एक सामान्य परिवार के कार्यकर्ता का सम्मान है।
10: आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, पार्टी के पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, नितिन नवीन जी, इन सब ने जो मेरे पे विश्वास प्रकट किया है, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के इस विश्वास पर खरा उतर सकूं।
0: कांग्रेस ने भी राज्यसभा की 7 सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। कर्नाटक से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा पवन खेड़ा, मंसूर अली खान को उम्मीदवार बनाया गया है। मध्य प्रदेश से मीनाक्षी नटराजन, राजस्थान से नीरज डांगी, झारखंड से प्रणब झा और तमिलनाडु से प्रवीण चक्रवर्ती को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया।
11: कांग्रेस पार्टी ने आने वाले राज्यसभा चुनावों को लेकर 7 नाम घोषित कर दिए हैं जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर प्रवीण चक्रवर्ती का नाम शामिल है। हालांकि इसमें सबसे चौंकाने वाला नाम पवन खेड़ा का है जिनको पिछली बार जब राज्यसभा सीट नहीं मिली थी तब उन्होंने अपनी तपस्या पूरी नहीं होने को लेकर एक ट्वीट किया था। हालांकि इस बार उन्हें कर्नाटका से राज्यसभा उम्मीदवार बनाया गया है। प्रवीण चक्रवर्ती को पार्टी ने तमिलनाडु से उम्मीदवार बनाया है। वहीं राहुल गांधी की करीबी सबने जाने वाली मीनाक्षी नटराजन को पार्टी ने मध्य प्रदेश से उम्मीदवार बनाया है। हालांकि पार्टी के आलोचकों का ये कहना है कि तमाम जो नाम सार्वजनिक किए गए हैं यानी 7 उम्मीदवारों में से एक भी व्यक्ति ओबीसी समाज से नहीं आता, जिसके बारे में कांग्रेस पार्टी पिछले कुछ समय से लगातार बात करती रही है।
0: अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल के सियासत के। हुमायूं कबीर ने ममता बनर्जी को अपनी सीट से लड़ने का ऑफर दिया है। हुमायूं कबीर दो सीटों पर चुनाव जीते हैं और उन्होंने मुर्शिदाबाद के रेजनगर सीट पर ममता बनर्जी को ऑफर किया। कहा ये सीट उन्होंने अपने बेटे के लिए रखी थी, लेकिन वो ममता को देने के लिए तैयार है।
12: हुमायूं कबीर का ये बड़ा बयान सामने आ रहा है और वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को जो पार्लियामेंट है या फिर जो विधानसभा है उसमें रहना बहुत जरूरी है, डेमोक्रेसी के लिए ये बहुत जरूरी है और इसी वजह से वो रेजी नगर की सीट ममता बनर्जी को सौंपना चाहते हैं। और भी बड़ी बात वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को वो वहां से जिताकर भी ला सकते हैं, ये गारंटी भी वो दे रहे हैं। तो ये वही हुमायूं कबीर हैं जो टीएमसी से अलग हो गए, अपनी नई पार्टी बनाई और अब वो खुद ममता बनर्जी को सीट ऑफर कर रहे हैं। ये बड़ी बात फिलहाल जो बंगाल की राजनीति में है वो सामने आ रही है। नए नए मोड़ रोजाना यहाँ पर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा ट्विस्ट हो रहा है इस वक्त बंगाल की राजनीति में और ये नया ट्विस्ट है जहाँ वही हुमायूं कबीर जो अलग हो गए टीएमसी से अब ममता बनर्जी को रेजी नगर की सीट देने की बात कह रहे हैं।
0: हुमायूं कबीर ने आज तक से बातचीत में क्या कहा है आपको सुनाते हैं।
13: मेरा लग रहा है जो 60 से 60 MLA वो निकल चुका हुआ तृणमूल कांग्रेस को अलग जो परिषदियों ब्लॉक कर लिया, उन तो तृणमूल कांग्रेस का जो असली जो लोगो है जुड़ा फूल घास फूल वो तो नहीं रहेगा, इनको पास चला आएगा। तो आज का दिन में ममता बनर्जी को विधानसभा में विपक्ष में नेत्री होके जरूरत है।
14: लेकिन कैसे, वो तो हार चुकी है।
13: हार चुकी है, इसीलिए मैं मौका है जो दोनों सीट में आज का मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी में दोनों सीट में जीता, भवानीपुर और नंदीग्राम, और मैं भी रेजीनगर और नौदा जीता। तो नौदा रख दिया, रेजीनगर में रिजाइन कर दिया। तो मैं रेजीनगर में मेरा बेटा को मैं उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिया, किंतु ममता बनर्जी को चाहिए। ममता बनर्जी को ही मेरे को खास बोलेगी तो मैं ही ममता बनर्जी को ये सीट छोड़ने के लिए तैयार हूं।
0: 12:12 रिपोर्टर में अगली रिपोर्ट पटना से। लालू परिवार की सुरक्षा में कटौती की गई है। लालू यादव और राबड़ी देवी दोनों को सरकार की ओर से जेड प्लस सिक्योरिटी मिली थी, लेकिन नई समीक्षा के बाद सरकार अब सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव कर रही है। अब क्या बदल रहा है हमारे संवाददाता रोहित सिंह बता रहे हैं।
15: राबड़ी देवी के बंगले को लेकर जो विवाद चल रहा है उसी बीच अब बिहार सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की सुरक्षा में भारी कमी की है और उन्हें जो अब तक जेड प्लस की सुरक्षा मुहैया कराई जा रही थी उसे समाप्त कर दिया गया है। अब नई व्यवस्था के बीच दोनों को बिहार पुलिस की विशेष सुरक्षा प्रदान की गई है, जिसमें उन्हें 8 से 16 गार्ड, एक बुलेट प्रूफ कार और एक एस्कॉर्ट प्रदान किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव की भी वाई श्रेणी की जो सुरक्षा दी गई थी उसे भी समाप्त कर दिया गया है और अब तेज प्रताप को केवल एक अंगरक्षक की सुरक्षा प्रदान की गई है। साथ ही साथ तेजस्वी यादव और मीसा भारती की सुरक्षा में कोई बदलाव नहीं किया गया है और तेजस्वी को पहले की तरह वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा मिलती रहेगी।
0: तो दिल्ली के मालवीय नगर होटल अग्निकांड को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। लवकेश बजाज पर पुराना आपराधिक मामला भी सामने आया। लवकेश बजाज के खिलाफ दो पुराने आपराधिक मामले सामने आए। 2024 में गेस्ट हाउस में सुरक्षा मानदंडों की अनदेखी पर एफआईआर हुई थी। 2025 में फर्जी पासपोर्ट के केस में लवकेश बजाज जेल गया था। लवकेश बजाज को पिछले साल भी दिल्ली पुलिस ने एक फर्जी पासपोर्ट मामले में गिरफ्तार किया था। मामला बांग्लादेशी नागरिकों को फर्जी भारतीय दस्तावेज और पासपोर्ट उपलब्ध कराने से जुड़ा हुआ मामला बताया गया था। अब पुलिस सूत्रों के मुताबिक जनवरी 2025 में मामला दर्ज हुआ था। जांच के दौरान लवकेश बजाज की कथित इन्वॉल्वमेंट सामने आने पर उसे गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद बजाज लगभग 15 दिन तिहाड़ जेल में रहा। और जमानत पर रिहा हुआ था। साल 2024 में भी लवकेश बजाज पर अफायर हुई थी। होटल में सुरक्षा मापदंड को पूरा ना करने पर केस दर्ज हुआ था। सुरक्षा मापदंडों में सीसीटीवी कैमरे से जुड़े हुए कोई भी नियम फॉलो नहीं किए गए थे। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता हमारे साथ। अरविंद, इतने मामले सामने हैं, थोड़ा डिटेल जानकारी दें तो ऐसा लगता है कि बड़ा आपराधिक किस्म का व्यक्ति रहा है पहले भी।
3: बिल्कुल, देखिए ये आप जो लवकेश बजाज के दो पुराने जो आपराधिक मामले हैं वो अब सामने आ चुके हैं, जिसमें 2025 का मामला तो राजू काफी बड़ा है। इसमें लवकेश बजाज पर आरोप था कि इसने अवैध बांग्लादेशियों का फर्जी पासपोर्ट बनाने में उनकी मदद की थी और जानबूझकर अपना एड्रेस दिया था, जिससे जो बांग्लादेशी थे जो अवैध तरीके से दिल्ली में रह रहे थे उन्होंने पासपोर्ट बनवाया था। पहाड़गंज थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी, उसके बाद लवकेश बजाज को गिरफ्तार किया गया था और उसने कबूल किया था कि उसने फर्जी पासपोर्ट बनाने में मदद की थी, जिसके बाद उसको दिल्ली के तिहाड़ जेल भेजा गया था। ये 2025 का मामला है, ये बड़ा मामला है, जबकि 2024 में दिल्ली पुलिस ने एक सर्च ऑपरेशन चलाया था इसके गेस्ट हाउस में, जिस गेस्ट हाउस में आग लगी है वहां पर सुरक्षा के जो मानक
0: थे हैरान कर देने वाले। बिल्कुल, आप जानकारी दे रहे, फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। अब एक अंतर्राष्ट्रीय खबर, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका को सीधी चेतावनी दी है, भारत पर किसी भी तरह का दबाव नुकसानदेह हो सकता है। पुतिन प्रधानमंत्री मोदी की भी तारीफ करते हैं और कहा कि भारत पर किसी भी तरह के दबाव से रूस के साथ संबंधों पर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है।
16: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की है और साथ ही पुतिन ने अमेरिका को आगाह भी किया है कि भारत को और प्रधानमंत्री मोदी को दबाव में झुकाना नामुमकिन है। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत या प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की हो, लेकिन इसकी टाइमिंग को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। रूस को अपने तेल के निर्यात के लिए भारत जैसे बड़े खरीदार की जरूरत है और साथ ही वो भारत के बाजार में अपने सुखोई 57 लड़ाकू विमानों की खरीद की संभावना को भी बनाए रखना चाहता है। अब इसे संयोग कहिए या सोची समझी रणनीति, बीते 10 दिनों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को केवल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से ही तारीफ का तोहफा नहीं मिला है, बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी खुद को प्रधानमंत्री मोदी का सबसे बड़ा फैन करार दे चुके हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इन दोनों ही देशों और साझेदारों में से कौन है जो भारत की उन जरूरतों को पूरा करेगा जो इस समय भारत की अर्थव्यवस्था के सामने सबसे बड़े सवाल के तौर पर खड़ी है और जिनकी भारत को सबसे ज्यादा जरूरत है, यानी निवेश और साथ ही उन्नत तकनीक।
0: 12:12 रिपोर्टर में अब एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए आज तक।
17: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से, इन एसोसिएशन विद
18: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक
19: 50. Oh, hey, Watson. Just getting jacked up for the summer with my pull-up routine.
20: No, Buzz. We get jacked up because electric rates often go up during the hot summer months. Good thing people can lock in an affordable electric plan with APG&E.
21: Learn more at APGE.com.
22: Hey, it's Harry Douglas from Freddie and Harry. Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
23: Third period comes to an end. Game two headed to overtime.
22: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and nonstop sports talk so you don't miss a second of the action.
23: They score!
22: Search ESPN Radio or tear your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
24: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
25: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
26: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा, रुंगटा स्टील TMT से बना।
27: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं, रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
3: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
4: सोच बदलो और बैंक भी।
5: मैं इस वक्त उसी बिल्डिंग के बाहर हूँ जहाँ पर ये आग लगी।
6: मैं आपको टॉप एंगल से एक तस्वीर दिखाता हूँ और ये तस्वीर जो पूरा मंजर है उसको बयान करने के लिए काफी है।
7: यहाँ पर दूसरा एग्जिट गेट नहीं है तो किस तरीके से सेफ्टी नॉर्म्स का पालन किया गया था।
8: ये तस्वीरें बताती हैं कि किस तरीके से लापरवाही जो है वो पूरे इस इलाके में जो है वो चल रही है।
6: 20 लोगों की जान चली गई। और देखिए जब तस्वीर दिखाई जाती है एक एक करके तो इस तरह से दिल्ली पुलिस की टीम आती है और कहती है कि आप यहाँ से नहीं दिखाएंगे।

0: Planning for your family's future? Put it in the right hands with LegalZoom. It's too important to let it fall into the wrong hands. LegalZoom is the simple, affordable online solution for estate planning. If you need a will or trust, LegalZoom guides you through every step to ensure your loved ones and assets are protected. So if you need a legal hand, visit LegalZoom. LegalZoom provides access to independent attorneys and self-service tools. LegalZoom is not a law firm and does not provide legal advice.
1: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included. Oh, yeah. So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
2: You hear it once and remember everything.
3: Too sexy for your party. Too sexy for your party.
2: One Hit Wonders brings back the songs that hit fast but stay forever. They owned the moment, ruled the charts, and live forever in our hearts every time they play. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search One Hit Wonders to start listening now.
4: Presented by Patanjali Gaay Ka Ghee. Lagaye swaad aur sehat ka tadka, har maa ka bharosa, pyar se parosa.
5: Akajay, the number one Korean skincare brand, now in India.
6: अयोध्या से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 54वें जन्मदिन पर समर्थक जोरदार जश्न मना रहे। कार्यकर्ताओं ने मंदिर में पूजा अर्चना करके केक भी काटा, पोस्टर्स की आरती भी उतारी है। झांसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर महिलाओं ने बुलडोजर वाला केक काटकर सीएम योगी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और मुख्यमंत्री एक बार फिर से बनने की कामना की। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर देश शहर भर में पोस्टर्स लगाए गए और दारुल सफा विधायक निवास में सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ। वाराणसी में सीएम योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर समर्थकों ने विशेष आयोजन किया। 54 किलो के लड्डू और केक के साथ जश्न मनाया गया। 54 पौधे भी लगाए गए। संभल में 1978 के दंगों के पीड़ित रस्तोगी परिवार को 48 साल के बाद जमीन का पट्टा आवंटित किया गया। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों और राज्य मंत्री की मौजूदगी में प्रक्रिया पूरी की गई। प्रयागराज में फायर विभाग ने होटल का इंस्पेक्शन अभियान चलाया। सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर कई होटल को नोटिस जारी किया गया। सहारनपुर में होटल की फायर सेफ्टी जांच के दौरान गंभीर लापरवाही सामने आई और फायर अलार्म बंद थे, कुछ में सुरक्षा उपकरणों में खामियां और एक्सपायर्ड पाए गए। अलीगढ़ में होटल जांच के दौरान बड़ा खुलासा। संक्रमित गलियों में कई होटल बिना फायर एनओसी के अवैध रूप से चल रहे थे। नोएडा के सेक्टर 75 स्थित आईवी काउंटी सोसाइटी में आग लगने से हड़कंप। मौके पर दमकल विभाग की कई गाड़ियां पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग बुझाए गए। सीएम योगी ने संज्ञान लिया। नोएडा के सेक्टर 52 स्थित शताब्दी विहार में एक पीजी में लगी आग, मचा हड़कंप। नीचे रेस्टोरेंट और ऊपर पीजी होने के चलते आग तेजी से फैली। ग्रेटर नोएडा के यमुना एक्सप्रेस वे पर चलती जैगुआर कार में अचानक लगी आग, जिससे पूरी गाड़ी जलकर खाक। गनीमत रही चालक ने समय रहते कूद कर बचाया जान। लखनऊ में दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस मुठभेड़ के बाद किया गया गिरफ्तार। मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में लगी गोली, अस्पताल में भर्ती है। मुरादाबाद में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर के बेटे पर गोली चलाने के आरोपी को किया गिरफ्तार। मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में लगी गोली अब अस्पताल में भर्ती है। गाजीपुर में एनकाउंटर मारे गए 1 लाख के नामी कमलेश बिंद का शव पहुंचते इलाके में बवाल। शव देखकर परिजन, महिलाएं, ग्रामीण आक्रोशित, पुलिस के साथ झड़प। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने गाजीपुर एनकाउंटर को लेकर बीजेपी सरकार पर बोला हमला, कहा कि हत्याओं और एनकाउंटर से यूपी की छवि नकारात्मक बने। कानपुर में ब्राह्मण समाज ने राजनीतिक भागीदारी और प्रतिनिधित्व को लेकर नाराजगी जताई। लोगों ने कहा कि अब वो अपने हितों को देखते हुए नया राजनीतिक विकल्प तलाशेंगे। गाजियाबाद में एंटी करप्शन टीम ने एक्साइज विभाग के हेड कांस्टेबल को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी पर शराब का ठेका संचालक से पैसे वसूलने का आरोप है और इस कार्रवाई से प्रशासन के भ्रष्टाचार के खिलाफ योगी सरकार की सख्ती का संदेश दिया। गाजियाबाद के खोड़ा में जुमे की नमाज को देखते हुए पुलिस अलर्ट पर है। बड़ी पुलिस फोर्स तैनात। सूर्य चौहान की हत्या के बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। बिजनौर में चंद्रशेखर की सत्ता परिवर्तन यात्रा की सभा के दौरान एक चोर ने भीड़ में घुसकर कई लोगों के जेब भी काट ली। कार्यकर्ताओं ने मौके पर चोर को पकड़ा, पिटाई की। मथुरा में पति पत्नी के बीच में हुए विवाद में पति ने पत्नी को गोली मार दी, फिर खुद को भी गोली मार ली। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप।

0: आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 54वां जन्मदिन पूरे ही प्रदेश भर में मनाया जा रहा है। अपने जन्मदिन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक पेड़ मां के नाम खुद लगाया और कहा कि जन्मदिन पर सुंदर का पाठ भी कई जगहों पर हो रहा है। अब पिछड़े दलित समुदाय ने खुद मुख्यमंत्री योगी के नाम का मंदिर और उनकी मूर्ति भी कहीं पर बना रखी है, तो कहीं पर महिलाएं सीएम का जन्मदिन मना रहे हैं। लखनऊ से लेकर गोरखपुर और अयोध्या से लेकर कानपुर तक की हर तस्वीर हम आपको अब दिखाने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी को सबसे पहले जन्मदिन की बधाइयां देने वालों में मायावती आखिर क्यों शामिल है, हम इसकी भी इस बुलेटिन में चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले सूबे में हुए एक मर्डर केस पर चल रही सियासत की बात करेंगे। यह घटना यूपी के गाजीपुर की है जहां पर एक मर्डर और दूसरे एनकाउंटर को लेकर पार्टी से लेकर जाति तक के सियासी सवाल उठ रहे हैं।
1: गाजीपुर के गैसाबाद गांव में टकराव की हालात थी। पुलिस एक वैन में कमलेश बिन नाम के वांटेड का शव लेकर पहुंची थी। भड़की हुई भीड़ पुलिस पर ही हमलावर थी। पथराव में सीओ समेत 4-5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस किसी तरह शव वाले वाहन को सुरक्षित मृतक के घर तक पहुंचाना चाहती थी। बड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने हालात पर काबू पाया और शव का अंतिम संस्कार कराया। 29 मई रात की वार्ता। दरअसल ये पूरा किस्सा 29 मई की रात गौसाबाद इलाके से शुरू हुआ। बाइक सवार हमलावरों ने विनीत राय नाम के होटल कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद पीड़ित परिवार ने इलाके में दहशत का पर्याय बन चुके कटरा गैंग के लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट कराई, जिसमें कटरा गैंग के सरगना शंकर पांडे के अलावा जगदीश यादव, आलोक दुबे और कमलेश बिंद नामजद आरोपित थे। इस हत्याकांड में पुलिस आरोपियों तक पहुंचती उससे पहले समाजवादी पार्टी ने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। समाजवादी पार्टी लगातार सवाल उठा रही थी कि गाजियाबाद में एनकाउंटर हो गया और गाजीपुर में शंकर पांडे तक पुलिस पहुंच नहीं पा रही। उधर पुलिस ने हत्याकांड के 4 दिन बाद बताया कि विनीत राय की हत्या की आरोपित और 1,00,000 रुपए के इनामी कमलेश बिंद को एनकाउंटर में मार गिराया। पुलिस ने दावा किया कि कमलेश बिंद को कोतवाली क्षेत्र के कुर्था इलाके में घेरा गया तो उसने पुलिस पर गोली चला दी, जिसमें स्वाट टीम प्रमुख रोहित मिश्रा को गोली लगी। बचाव में पुलिस की फायरिंग में कमलेश बिंद मारा गया। पुलिस ने बताया कि विनीत राय हत्याकांड में नामजद आरोपित और 1,00,000 के इनामी जिस कमलेश चौधरी के एनकाउंटर में मौत हुई है वो हिस्ट्री शीटर था और उसके खिलाफ 2017 में आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा, 2022 में मारपीट, गाली गलौज और धमकी का केस, 2024 में धमकी का एक मुकदमा, 2024 में बलवा और हत्या के प्रयास का मुकदमा, 2024 में BNS की विभिन्न धाराओं में मुकदमा, 2025 में मारपीट और धमकी का मुकदमा था और 2026 में वो विनीत राय हत्याकांड में नामजद आरोपित था। लेकिन कमलेश जिस मर्डर केस में आरोपित था उसका मुख्य आरोपित शंकर पांडे है जो अभी तक पुलिस की पहुंच से दूर है। ऐसे में 4 में से 1 आरोपी के एनकाउंटर के बाद सियासत ने फिर से सिर उठाया, क्योंकि मारे गए आरोपी कमलेश बिंद का परिवार समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है। कमलेश के बड़े भाई संजय की पत्नी अनीता उस इलाके की प्रधान है। संजय कहते हैं कि चूंकि उनका भाई समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता था इसीलिए सिर्फ उसे अगवा करके मार डाला गया।
2: क्योंकि मेरा भाई समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता और सिपाही था, इसी के वजह से उसकी जान गई।
1: इसके बाद अखिलेश यादव ने भी एक यूट्यूबर को दिए गए आलोक राय के इंटरव्यू के हवाले से सवाल उठा दिया कि इस कांड में सिर्फ कमलेश बिंद को ही क्यों मारा गया जब मृतक के पिता खुद BJP की राज्यसभा सांसद और उनके पति पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगा रहे हैं। समाजवादी पार्टी अखबारों की कतरने पोस्ट कर रहे हैं कि गैंग को BJP सांसद का संरक्षण मिला हुआ है। हालांकि BJP सांसद संगीता बिंद कहती हैं कि योगी राज में किसी अपराधी को संरक्षण का सवाल ही नहीं उठता, आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई होनी ही चाहिए।
3: जब मामला संज्ञान में आया है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और कहीं कोई भी घटना घटे, चाहे जिले में या किसी अन्य जिले में, प्रदेश में या कहीं भी, इस तरह की जितनी घटनाएं हैं उसकी जितनी निंदा की जाए कम है और ऐसे लोगों पे ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि दूसरा फिर पनप न पाए।
1: उधर सीएम योगी के कानून व्यवस्था पर भरोसा जताते हुए होटल कारोबारी पीड़ित परिवार कह चुका है कि इन्हीं सांसद और इनके पति अवधेश बिंद का संरक्षण शंकर पांडे और उसके साथ जुड़े गैंग को मिला हुआ था, जिसकी वजह से इलाके के लोग त्रस्त हैं। गाजीपुर से विनय सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
0: गाजीपुर मर्डर को लेकर तमाम तरह के सियासी सवाल उठाए जाते रहे, इससे पहले भी अब एनकाउंटर पर संगीन सवाल खड़े हो गए हैं। समाजवादी पार्टी जैसे विपक्ष दल इस मामले में पीडीए के साथ हो रहे अत्याचार का सवाल उठाना उन्होंने शुरू कर दिया। उधर पीड़ित परिवार लगातार आरोप लगा रहे कि कमलेश चौधरी की हत्या एनकाउंटर नहीं बल्कि मर्डर है। कमलेश चौधरी की 5 हफ्ते पहले शादी हुई थी, उसे पुलिस ने अगवा करके मार डाला है और कमलेश की पत्नी और भाभी ने यह आरोप लगाया है कि पिछड़ा होने की वजह से उन्हें निशाने पर लिया गया। उनका आरोप है कि कमलेश आलोक राय के होटल में होने वाले गलत कामों का विरोध करता था, इसीलिए उसे मर्डर केस में झूठे तरीके से फंसाकर फर्जी एनकाउंटर करके मार दिया गया। कमलेश का परिवार इस एनकाउंटर की सीबीआई जांच तक की मांग कर रहा है।
4: यह घटना रामगढ़ में उठाया गया था, उन लोग दो लोग थे साथ में, इनको ले जाके जंगल में मारा गया था। हम लोग को इंसाफ, हम भी लोग को चाहिए, जैसे उन लोग मारे हैं हम लोग को भी इंसाफ चाहिए।
5: हम लोग बिंदु होटल में गलत काम होता है, दारू शराब बेचा जाता है, इसका विरोध किए, उसी में उनको लेकर वो ऐसी घटना किए। नहीं, कोई हत्या होटल पर चढ़ के नहीं कही गई है, वो लोग साजिश कर रहे हैं फंसाने के लिए, और वो लोग जो गलत धंधा करते हैं हम लोग इसका विरोध किए, उसी में वो लोग साजिश रच रहे हैं।
0: अब इस घटना को लेकर कांग्रेस पार्टी की ओर से जाति का सवाल उठाया गया है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने खासेपुर में पुलिस एनकाउंटर में मारे गए कमलेश चौधरी के मामले में जातिवादी राजनीति का आरोप लगाया है। अजय राय ने कहा कि यूपी में जाति देखकर एनकाउंटर किए जा रहे हैं। कांग्रेस अब हमलावर है, इस मामले में जाति को देखकर एनकाउंटर का बेहद गंभीर आरोप लगाया जा रहा है कि चूंकि वो पिछड़ी जाति से थे इसीलिए यह एनकाउंटर किया गया और गाजीपुर में आरोपी कमलेश चौधरी को एनकाउंटर में मारा गया। उसके बाद से सिर्फ गाजीपुर में ही तनाव नहीं बल्कि अब सियासी दल भी सवाल खड़े कर रहा है।
6: पूरे प्रदेश के अंदर जैसा अभी आंकड़े बताए कि 3 घंटे के अंदर किसी बहू बेटी के साथ बलात्कार हो रहे हैं संजू जी ने, ये क्या है? अभी आप देखिए पूरे प्रदेश के अंदर हत्याओं का सिलसिला, गाजीपुर में विनीत राय, वाराणसी में विक्रमपाल सिंह, पूर्व प्रधान मनीष सिंह वाराणसी का, हमारे क्षेत्र का आशीष यादव भदोही, जौनपुर आजाद बिंद, वाराणसी में सूर्य प्रताप सिंह छात्र, और आप देखिए ये रोहिताश पाल चंदौली जिसकी हत्या हुई, उसमें अभी तक शूटर नहीं पकड़े गए। जिसने हत्या की रोहितास पाल की, उसमें शूटर नहीं पकड़े गए। क्यों नहीं पकड़े गए? क्योंकि शूटरों को संरक्षण भारतीय जनता पार्टी के विधायक और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा खुलेआम दिया गया। किसी से आप पूछ सकते हैं, वो व्यवसायी गाजियाबाद में दो दो घटनाएं घटी, चिराग त्यागी की, चौहान की, एक पे हिंदू और मुसलमान का एंगल दिखाकर आप एनकाउंटर करते हो, दूसरे में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की उनके पिताजी को।
0: पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, परिवार आरोप लगा रहा है, पॉलिटिकल पार्टियां आरोप लगा रहे हैं। इसी पर आज तक संवाददाता ने डीजीपी से सवाल पूछा, आपको सुनाते हैं उनका जवाब क्या था।
7: देखिए ऐसा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस वर्ष भर में करीब 6 लाख अपराधियों को गिरफ्तार करती है, इसमें से अधिकतर लोग 99% लोग जो है वो जब पुलिस उनको गिरफ्तार करने जाती है तो उनको कानून के सामने वो एक तरह से अपना समर्पण करते हैं। पुलिस नॉर्मल वेमन को गिरफ्तार करती है। कुछ अपराधी ऐसे होते हैं जो आइदर बिकॉज दे आर डेस्परेट और उनका क्रिमिनल हिस्ट्री जो उनकी क्रिमिनल हिस्ट्री से भी शो होता है, इसके अलावा उनमें कानून का भय नहीं होता, उनमें पुलिस के प्रति कोई मतलब किसी भी जीवन का मूल्य उनके लिए नहीं है, तो ऐसे कुछ लोग जो हैं वो पुलिस को देख करके बचने के लिए भागने के लिए पुलिस के ऊपर भी फायर करने से नहीं हिचकिचाते हैं। ऐसी स्थिति में पुलिस भी प्रॉपर जवाब देती है, पुलिस का मनोबल भी हाई है। तो अपराधी जिस भाषा में बात करेगा उसी भाषा में पुलिस भी जवाब देगी।
0: पीड़ित परिवार खुलेआम कह रहा है कि हत्याकांड में मुख्य आरोपी शंकर पांडे है और उसके साथ गैंग में मोनू त्रिपाठी जैसे ब्राह्मण आरोपी हैं जिन्हें पुलिस ने अब तक छुआ तक नहीं है, जबकि पिछड़े परिवार के कमलेश का फर्जी एनकाउंटर कर दिया गया। हालांकि समाजवादी पार्टी इस मामले में ब्राह्मण वाला मुद्दा उठाने से बच रहे। दरअसल इस बार की ब्राह्मण वोट पॉलिटिक्स ऐसी है कि कोई भी दल उसके खिलाफ प्रचार, दुष्प्रचार और बयानबाजी से बच रहा है।
1: उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों का आशीर्वाद इस बार किसे मिलेगा, इसके जुगत बीजेपी से लेकर समाजवादी पार्टी तक के अंदर चल रही है। योगी राज में ब्राह्मणों की कथित नाराजगी की अफवाह पिछले बरस खूब उड़ी, लेकिन अब योगी की कैबिनेट में मौजूद ब्राह्मण चेहरों ने सीएम योगी को अगले कार्यकाल के लिए अभी से आशीर्वाद देने की घोषणा कर दी। पिछले दिनों इंडिया टुडे ग्रुप के कार्यक्रम के मंच पर योगी कैबिनेट के ब्राह्मण चेहरों ने कबूल किया कि आने वाले चुनाव में भी सीएम योगी ही उनका चेहरा होंगे।
8: नेतृत्व मुख्यमंत्री जी का, योगी जी का ही होगा, उनके नेतृत्व में जा रहे हैं।
9: मुख्यमंत्री जी हैं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आपको भी बताया है, आप तो सब जानते हैं, अखबार में छप चुका है,
8: तो उनके नेतृत्व में ही चुनाव में
9: आप जानते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष तो सर्वोच्च पद पर हमारी पार्टी के नेता है, वो जो निर्देश देते हैं उसको हम लोग मानते हैं कि हम सब उसको कार्यकर्ता के रूप में सहर्ष स्वीकार करते हैं।
8: 2027 का जो चुनाव होगा, योगी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने मैदान में जा रहे हैं आप लोग?
10: जाहिर है, उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने काम किया है, आज हमें खुशी है, इस बात की प्रसन्नता है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा खींची गई लकीर का अनुसरण आज देश के तमाम अन्य राज्य कर रहे हैं। इससे ज़्यादा हमारे लिए गर्व का कोई विषय नहीं हो सकता। हमारी तमाम योजनाओं को आज अन्य सरकारें उसका अनुसरण कर रही।
1: हालांकि मंत्रियों की ओर से सीएम योगी के नेतृत्व को दिए जा रहे समर्थन का असर जमीन पर उस तरह दिखाई नहीं देता। कानपुर में आम ब्राह्मणों की नाराजगी यूजीसी बिल जैसे मुद्दों को लेकर दिखाई देती है। यूपी में ब्राह्मण वोट को बीजेपी से अलग करने के लिए तमाम खबरें चलती रही हैं। कभी ब्राह्मण विधायकों के नाराज होने की खबर, तो कभी अलग से पिकनिक मीटिंग खबर, और ऐसी खबरों से समाजवादी पार्टी के अंदर ब्राह्मण वोटों को लेकर उम्मीद जगी। यही वजह है कि अखिलेश यादव ने भी अपनी रणनीति बदल दी। अखिलेश यादव ने माता प्रसाद पांडे को नेता विपक्ष बना रखा है, जो स्थानीय चुनावों में ब्राह्मणों का प्रतिनिधित्व बढ़ा रहे हैं। अखिलेश गोसाईगंज से भगवान परशुराम की मूर्ति लगाने से लेकर परशुराम जयंती पर सरकारी छुट्टी तक की मांग कर चुके हैं। और इतना ही नहीं, इन दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ रहे अखिलेश भी जरूरी काम पंडित जी के मुहूर्त वाली सलाह पर करने की बातें करते हैं। समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर ब्राह्मणों के समर्थन वाले पोस्टर लगते हैं, तो राजकुमार भाटी जैसे नेता के ब्राह्मण विरोधी बयान के बाद जोरदार फटकार भी लगाते हैं। ब्राह्मणों को रिझाने की ये सारी कवायद कितनी कामयाब होती है, ये 27 के चुनाव में पता चलेगा, क्योंकि 2012 में जिस बीजेपी को 40% भी ब्राह्मण वोट नहीं मिले थे, उसे पिछली बार 89% ब्राह्मण वोट मिले थे। कानपुर से समर चावला के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।
0: गाजियाबाद से एक बड़ी खबर आपको देते हैं, जहां पर एक होटल में हिंदू युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत बताई जा रही हुई है और एक मुस्लिम युवक को हिरासत में ले जाने की खबर है। होटल के कमरे में हिंदू युवती मृत अवस्था में मिली और अब साथ ठहरे युवक से पूछताछ की जा रहे हैं। होटल के कमरे में युवती की वो संदिग्ध अवस्था में कैसे मौत हो गई है, इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। युवक हिरासत में लिया गया है। ये विजयनगर के अंश होटल का मामला बताया जा रहा है, जहां पर वो फंदे से लटकी हुई मिली। फंदे से 18 वर्षीय युवती है और युवक से पूछताछ जारी है। गाजियाबाद के विजयनगर थाना इलाके के भूड़ रेलवे रोड स्थित अंश होटल में एक 18 साल की लड़की का ये जो शव है फंदे से लटकता हुआ मिला है, जिससे सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। इस मामले में एक युवक को हिरासत में लिया गया है। जानकारी के मुताबिक विजयनगर क्षेत्र की सुंदरपुरी निवासी ये लगभग 19 वर्षीय युवती है, 18 से 19 साल के बीच की, और दोपहर में एक युवक के साथ वो अंश होटल में ठहरने के लिए पहुंचते हैं। दोनों ने कमरा लिया। देर रात लगभग 10:30 बजे होटल कर्मचारियों ने कमरे में युवती के फंदे से लटके होने की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची, कमरे का दरवाजा भीतर से बंद था, फिर तोड़कर युवती को नीचे उतारा गया। जब तक उसे उतारा जाता उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। घटना की जानकारी भी पुलिस को दी है। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर चुके हैं, प्रारंभिक आत्महत्या मान रही है, लेकिन सभी पहलुओं से जांच भी चल रही है।
11: एक होटल के कर्मचारी द्वारा 4/6/2026 थाना युवती ने आत्महत्या कर ली है उसके कमरे में। तत्काल मौके पर थाना विजयनगर की पुलिस पहुंची और दरवाजा तोड़कर कमरे से शव को मौके पर थाना विजयनगर की पुलिस पहुंची और दरवाजा तोड़कर कमरे से शव को अपने कब्जे में ले लिया। प्रथम दृष्टया युवती द्वारा आत्महत्या करना प्रतीत हो रहा है। परिवारजनों को सूचित कर दिया गया है व शव के पोस्टमार्टम की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। प्रकरण में आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने हेतु एक युवक को भी हिरासत में लिया गया है। मौके पर शांति एवं कानून व्यवस्था कायम है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।
0: हमारे संवाददाता अरविंद इस खबर पर जुड़ गए हैं। अरविंद, पुलिस प्रथम दृष्टया आत्महत्या ही मान रहे, लेकिन क्या दूसरे एंगल से भी जांच हो रही है? क्या कुछ संदिग्ध मिला है?
12: देखिए, अभी जो शुरुआती जांच है उसके मुताबिक ये 18 साल की लड़की है जो हिंदू समुदाय से आती है, ऐसा दिलीप गाजियाबाद पुलिस का कहना है। इसकी लाश अंस होटल है, गाजियाबाद में विजयनगर इलाका है, वहां पर अंस होटल है, उसकी फंदे से लटकी हुई मिली है। कमरे में एक लड़का था जो मुस्लिम समुदाय का भी था। जब शुरुआती जांच हुई तो ये पता चला कि लड़की ने आत्महत्या की है अब तक की जानकारी के मुताबिक, और जो लड़का है उसने उकसाया था लड़की को आत्महत्या के लिए। इस वजह से जो युवक था उस कमरे में उसको हिरासत में लिया गया, उससे पूछताछ की जा रही है, जबकि लड़की की जो बॉडी है उसको मॉर्चरी में रखा गया है पोस्टमार्टम के लिए। जब पोस्टमार्टम होगी
0: जी अरविंद, ठीक है अरविंद, नजर बनाए रखें, फिलहाल शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। यूपी की सियासत जाति से लेकर धर्म मजहब तक के तारों में ऐसी उलझी है कि चुनावी यूपी में हर एक सरकारी प्रशासनिक काम पर ऐसी सियासत चल रही है, क्योंकि एक तरफ योगी सरकार गाजियाबाद में सूर्या चौहान की हत्या के बाद खोड़ा कॉलोनी में अपराध और अपराधियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई शुरू करती है कि जुम्मे की नमाज के दिन पुलिस को चौकन्ना रहना पड़ता है। दूसरी ओर संभल का ऐसा प्रकरण है जो खत्म नहीं होता। संभल में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की है और दोनों ही तरफ एक्शन दिख रहा है।
13: संभल में सरकारी जमीनों को कब्जा मुक्त कराने के लिए संभल प्रशासन का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है, जहां आज संभल के बबराला इलाके के बाघव गांव में सरकारी भूमि पर बनी हुई मजार को अब से कुछ ही देर में बुलडोजर के जरिए ध्वस्त किया जाएगा। और आप यहां पर देख सकते हैं, देखिए ये वो पूरा मजार का स्ट्रक्चर है जिसको यहाँ पर बीते कुछ दिन पहले प्रशासन के द्वारा नोटिस दिया गया था और उसके बाद इस पर यहाँ इस पूरी कार्रवाई को करने के लिए प्रशासन के द्वारा यहाँ चेताया गया था, जिसके बाद अब से कुछ ही देर के अंदर इस पूरे स्ट्रक्चर को ध्वस्त किया जाएगा। आप सामने जो देख सकते हैं, देखिए ये वो पूरी मजार का बना हुआ स्ट्रक्चर है जिसको हटाने के लिए फिलहाल यहाँ पर बुलडोजर पहुंचा है। और इसी के साथ यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, देखिए इस पूरी कार्रवाई से पहले यहाँ पर भारी पुलिस फोर्स को इस पूरे इलाके में तैनात किया गया है, जबकि यहाँ पर आपको बबराला थाना प्रभारी निशांत राठी के साथ ही जो तमाम पुलिसकर्मी है, भारी पुलिस फोर्स जो है वो यहाँ पर जो है तैनात नजर आएगा। कानून व्यवस्था के दृष्टिकोण से इस पूरे पुलिस फोर्स को जो है तैनात किया गया है, जिससे कि कोई भी लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पर डिस्टर्ब ना हो पाए। हालांकि आप बीते कुछ दिनों में अगर देखा जाए तो लगातार सरकारी जमीनों को कब्जा मुक्त कराने के लिए प्रशासन की कार्रवाई की जा रही है, जहां कभी।
0: और अब आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश में कैसे सीएम योगी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 54 साल के हो गए और इस मौके पर यूपी में कहीं पर आरती, कहीं पर भजन का आयोजन चल रहा है, तो कहीं पर लोग खुद बुलडोजर वाला केक काटकर जन्मदिन मना रहे हैं। अयोध्या में मौर्य समाज के लोगों ने योगी आदित्यनाथ का मंदिर ही बना दिया, उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। झांसी में महिलाओं ने सीएम के फोटो के साथ जन्मदिन सेलिब्रेट किया। लखनऊ में कैसे मनाया गया मुख्यमंत्री योगी का जन्मदिन, हमारे संवाददाता की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
14: के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन के मौके पर लखनऊ की सड़कों पर जहां पोस्टर लगाए गए हैं, वहीं तमाम मंदिरों में सुंदरकांड पूजन का पाठ किया जा रहा है। लखनऊ के दारुल शफा जिसे विधायक निवास कहते हैं, वहां पर भी इसी तरीके से आयोजन किया गया है। सुंदरकांड का पाठ किया जा रहा है, हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है। मौका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 54वें जन्मदिन के मौके का है। मुख्यमंत्री के लिए सभी लोग कामना कर रहे हैं, दीर्घायु हो, स्वस्थ रहे और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में शासन चल रहा है वो चलता रहे। हमारे साथ बात करने के लिए यशवंत जी हैं।
15: आज पूरे देश में नकल की जा रही है, हम सारे लोग उनके जन्मदिन के अवसर पर, भरोसा है हम लोगों को भगवान पर, देवी देवताओं पर, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि योगी जी की उम्र लंबी हो, उनको शक्ति मिले।
14: 2027 का विधानसभा चुनाव भी सामने है, ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे देश के एक स्टार प्रचारकों में शुमार किए जाते हैं, 2027 को कैसे देख रहे हैं?
15: देखिए, जब योगी जिस कुर्सी पर बैठे हैं, पूरी दुनिया जिस पर रिसर्च कर रही है, कि यह आदमी कैसे संत होकर के पूरी व्यवस्था को कानून के दायरे में रख दिया है, उसके रहते कोई संदेह नहीं है। योगी अनवरत रहेंगे, बड़े पैमाने पर रहेंगे और इस देश की जरूरत है, इस जरूरत को पूरा करेंगे।
0: अब लोग रहे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज।
16: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
17: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
18: What's going on, everyone? It's Bluff here, and you know what's more American than America's 250th birthday? Supporting American-owned companies like SpinQuest, America's number one social casino with over 1,000 games like Live Dealer Blackjack and Craps. They're offering new users a $30 coin package for just $10. Go to SpinQuest.com and sign up today.
19: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
20: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
21: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
22: TuneIn is bringing together your music, news, sports, and more all in one place. Whether you love music, want to stay in the know with top news,
23: continue to face political pressure to reach a peace deal,
22: or hear your favorite teams with live sports. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices, at home, in the car, or on the go. So you'll never miss a beat. Just sit back and listen.
16: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
24: Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.
25: Akajay, the number one Korean skincare brand, now in India.
26: What's up, everybody? It's Bretzky, and America is turning 250. And I can't think of a better way to celebrate that than playing on an American-owned social casino, SpinQuest.com. With all of your favorite games, live craps, bubble craps, live blackjack, there's no better place to play for free and win real cash prizes. SpinQuest.com.
19: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
27: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included. Oh yeah! So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
28: This is the sound of Claire cooking dinner at home. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
21: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
29: से खुद को
16: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति ट्रुथ।
18: What's going on, everyone? It's Bluff here, and you know what's more American than America's 250th birthday? Supporting American-owned companies like SpinQuest, America's number one social casino with over 1,000 games like Live Dealer Blackjack and Craps. They're offering new users a $30 coin package for just $10. Go to SpinQuest.com and sign up today.
19: SpinQuest is a free-to-play social casino.
16: Presented by Patanjali Dant Kanti Truth.
26: What's up, baby? It's Bretzky, and I'm here to tell you that SpinQuest.com is giving out free sweeps coins. All you gotta do is purchase a $10 coin pack, and guess what? They're gonna give you the coins from a $30 coin pack. That lets you play all your favorite games like Blackjack, Wanted, Dead or Wild, and we're talking real cash prizes, baby. SpinQuest.com.
1: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
27: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for.

0: बहुत चुल मच रहा है कसम से, आज घर जाकर दहिया पूरा कपड़ा उतार के खुजाएंगे।
1: क्योंकि मैं आपकी खुजली को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा, आपका जो दर्द है वो सही है, तकलीफ सही है, जो आप इतने दिनों से अपने छोटे से दिल में लेके इतना बड़ा पहाड़ घूम रहे हो,
0: अधूरा प्यार ही
1: तुम्हें दुनिया की यार ठीक है मत दुराओ
2: बिजुरी आई गए।
1: हाँ हाँ थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा राइट, ओ थोड़ा राइट, हाँ
2: हाँ हाँ, यह अब एक नसिया पाया भैया।
3: अरे थोड़ा सा और ऊपर,
2: अरे लेफ्ट बोल रहा हूँ तुमको,
3: हाँ यही यही यही यही खुजा जोर से।
4: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

दो तिहाई से ज्यादा विधायकों के साथ छोड़ने के बाद टीएमसी सांसदों में भी टूट की अटकलें। चौतरफा मुसीबत के बाद आज ममता बनर्जी ने बुलाई पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक। बंगाल नतीजों से बदले समीकरणों के बाद परिसीमन विधेयक को दोबारा संसद में लाने की तैयारी। मॉनसून सत्र में आ सकता है बिल। इंडिया लाइंस में फूट का मिल सकता है फायदा। तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके अन्नामलाई ने दिया पार्टी से इस्तीफा। नितिन नवीन ने स्वीकार किया। चुनाव से पहले AIADMK से गठबंधन के बाद से अलग थलग थे अन्नामलाई। देश के कई इलाकों में आग ने मचाया तांडव। इंदौर की इमारत में आग, छत से हुआ रेस्क्यू। नोएडा की सोसाइटी में लपटों से हाहाकार। भिवाड़ी इंडस्ट्रियल एरिया की दो फैक्ट्रियां जली। और मोहाली की कंपनी में काम करने वाली लड़के के पूर्व बॉयफ्रेंड ने चाकू गोद कर की हत्या। जालंधर की रहने वाली थी डिंपल। दिल्ली यूनिवर्सिटी की असिस्टेंट प्रोफेसर की हत्या से भी हड़कंप।

टीएमसी में टूट के अटकले तेज, दो तिहाई विधायकों के बाद सांसदों पर भी सस्पेंस। ममता बनर्जी ने बुलाई वरिष्ठ नेताओं की बैठक, पार्टी में बढ़ते संकट पर मंथन। बंगाल जीत के बाद बदले सियासी समीकरण, परिसीमन विधेयक को फिर संसद में लाने की तैयारी। मॉनसून सत्र में आ सकता है परिसीमन बिल, टीएमसी में टूट और इंडिया गठबंधन में फूट का फायदा मिलने की चर्चा। ममता बनर्जी के खिलाफ कोलकाता में अखिल भारतीय हिंदू महासभा की ओर से पुलिस में शिकायत, राजद्रोह का मामला दर्ज। बीजेपी ने स्वीकार किया कि अन्नामलाई का इस्तीफा, नितिन नवीन ने मंजूरी दी। तमिलनाडु बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई ने छोड़ी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता। रामलिंगा रेड्डी के इस्तीफे पर डीके शिवकुमार का बयान, कहा मामला बातचीत से सुलझाया जाएगा। डीके शिवकुमार बोले, चिंता की बात नहीं, कैबिनेट में हम करीबी दोस्त हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले पर राहुल गांधी ने वीडियो कॉल पर माता पिता से की बातचीत, जल्द से जल्द न्याय का आश्वासन दिया। आज सूरत और केंद्र शासित प्रदेश दमन दौरे पर पीएम मोदी, इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी 22,600 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। पीएम मोदी दौरे की शुरुआत दोपहर में हीरा नगरी सूरत से करेंगे, करीब 2:30 बजे वो हजीरा में महत्वपूर्ण औद्योगिक बुनियादी ढांचे और परिचालन की समीक्षा करेंगे। स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूती देते हुए सूरत में 24 घंटे ट्रॉमा केयर और केंद्रीय प्रयोगशालाओं से लैस 200 बिस्तरों वाले आधुनिक अस्पताल का उद्घाटन भी करेंगे पीएम। दमन को मिलेगी नए हवाई अड्डों की सौगात, शाम 6 बजे हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। नए हवाई अड्डे से दमन में पर्यटन को मिलेगी नई उड़ान। दमन के कार्यक्रम से ही पीएम मोदी वर्चुअली लक्षद्वीप के लिए 885 करोड़ की बंदरगाह परियोजनाओं की नींव रखेंगे। संबल में सरकारी जमीन पर बनी मजार पर चलेगा बुलडोजर, अवैध कब्जे की कार्रवाई शुरू। ऊसर भूमि पर मजार बनाकर कब्जे का आरोप, संबल के बाघौ गांव में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। सरकारी दस्तावेजों में दर्ज जमीन पर अवैध निर्माण, बबराला क्षेत्र की मजार पर बुलडोजर की तैयारी। उत्तर 24 परगना में रेस्टोरेंट पर हमला, कैशियर समेत 2 घायल, सीसीटीवी के आधार पर 2 गिरफ्तार। गाजियाबाद के कोड़ा में भारी पुलिस बल तैनात, संवेदनशील माहौल के बीच सुरक्षा बढ़ाई गई। जुमे के दिन कोड़ा में कड़ी निगरानी, युवक की हत्या के बाद इलाके में पुलिस का सख्त पहरा। सूर्य चौहान हत्याकांड के बाद कोड़ा में तनाव, जुमे की नमाज को लेकर पुलिस हाई अलर्ट पर। डीजीपी राजीव कृष्ण का बड़ा संदेश, धर्मांतरण और अपराध पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। आज तक से बोले डीजीपी राजीव कृष्ण, कहा कानून तोड़ने वालों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शेंगे। इंदौर के इलेक्ट्रॉनिक वाहन शोरूम में भीषण आग, कई वाहन जल गए। शोरूम में लगी आग में काफी नुकसान हो गया, अफरा तफरी मच गई, ऊपरी मंजिल पर फंसे लोगों को सुरक्षित निकाला गया। दमकल की टीम ने बहुत मेहनत के बाद आग पर काबू पाया, बहुत नुकसान हुआ। आणंद में चरोतर गैस की मुख्य पाइपलाइन में भीषण आग, दमकल की मुश्तैदी से बड़ा हादसा टल गया। आधी रात गैस पाइपलाइन में लगी आग से हड़कंप मच गया, सप्लाई बंद कर आग पर पाया गया काबू। राजस्थान के भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में भीषण अग्निकांड, ट्रांसफार्मर ब्लास्ट से ऑयल में लगी आग ने विकराल रूप लिया। ऑयल में लगी आग से पास की 2 फैक्ट्रियां भी चपेट में आ गई, इलाके में हड़कंप मच गया। भीषण आग में 5 कर्मचारी झुलसे, राहत और बचाव कार्य में टीमें जुटी हैं। कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू, बड़ा नुकसान। नोएडा सेक्टर 75 की IVY काउंटी सोसाइटी में 12वीं मंजिल पर फ्लैट में आग लग गई। फ्लैट में आग लगने की सूचना पर फायर विभाग की टीम मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया। नोएडा सेक्टर 75 हाई राइज में आग पर सीएम योगी ने संज्ञान लिया, राहत और बचाव कार्य तेज करने के निर्देश। नोएडा सेक्टर 52 में पीजी में आग लगने से हड़कंप, फायर विभाग मौके पर। बिल्डिंग में नीचे रेस्टोरेंट और ऊपर पीजी, आग लगने के बाद अफरा तफरी। मालवीय नगर अग्निकांड पर सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा एक्शन, आज बुलाई हाई लेवल मीटिंग, अधिकारियों की तय होगी जवाबदेही। बैठक में दिल्ली पुलिस, राजस्व विभाग, नगर निगम, अग्निशमन विभाग और दिल्ली जल बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। दिल्ली सरकार ने अवैध होटलों, गेस्ट हाउस, अनाधिकृत निर्माणों और अग्नि सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के खिलाफ एक सख्त अभियान चलाने की घोषणा की। दिल्ली अग्निकांड में हादसे वाले होटल के पास MCD का सिर्फ टी एंड स्नैक्स का लाइसेंस था, 31 मार्च को खत्म हो चुकी थी वैधता। 4 दिन की पुलिस रिमांड में है मुख्य आरोपित और होटल मालिक लवकेश, होटल के मैनेजर और अकाउंटेंट की तलाश।
बीते गुरुवार को राजधानी दिल्ली में मौसम बदला, झमाझम बारिश हुई, लोगों को गर्मी से राहत मिली। तेज आंधी और बारिश के बीच दिन में अंधेरा छा गया, बारिश और ठंडी हवाओं के कारण दिन में तापमान कम हो गया। नोएडा में भी बहुत तेज आंधी के साथ हुई झमाझम बारिश, लोगों को जलती गर्मी से राहत, लेकिन जल भराव के कारण ट्रैफिक जाम की स्थिति हुई। तेज आंधी पानी के कारण कई इलाकों में पेड़, यूनिपोल, स्ट्रीट लाइट गिरने की घटनाएं सामने आई, सड़कों और अंडरपास में भारी जलभराव। तेज आंधी पानी के कारण नोएडा में करीब 400 पेड़ गिरे, नोएडा प्राधिकरण ने जानकारी दी। हरियाणा के सोनीपत में तेज हवाओं और बारिश से गिरा तापमान, गर्मी से जूझ रहे लोगों को बदलाव से राहत मिली। जयपुर में सूरज की तपिश से लोगों को राहत मिली, आसमान से बरसे बादल, मौसम सुहावना हो गया। देहरादून में भी हुई बारिश, उत्तराखंड के पहाड़ों के साथ मैदानों में भी हल्की ठंडक का एहसास हुआ। भोपाल में भी जमकर बादल बरसे, बढ़ती गर्मी के बीच लोगों को राहत, पहाड़ों पर भी राहत की फुहार, शिमला में झूम के बरसे बादल, मौसम सुहाना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 54वें जन्मदिन पर समर्थक जोरदार जश्न मना रहे हैं, कार्यकर्ताओं ने मंदिर में पूजा की और योगी के पोस्टर की आरती भी की। गुजरात के सूरत में दिन दहाड़े हुई लूट की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, फुटेज में एक शख्स फोन पर बात करता हुआ आता है, बाइक के पीछे की सीट पर रखी रुपयों से भरी थैली उठाकर फरार हो जाता है। ग्रेटर नोएडा में रफ्तार का कहर देखने को मिला, सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि गाड़ियों में भीषण टक्कर हो गई, जिसके बाद कार नियंत्रण खो बैठी और सड़क किनारे बैठे लोगों को चपेट में ले लिया। राजस्थान के जयपुर में बुजुर्ग महिला के साथ दिन दहाड़े लूट की सनसनीखेज वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई, फुटेज में एक बदमाश महिला को सड़क पर धक्का देकर गिराता है और उसके सोने के गहने छीनकर भाग जाता है। यूपी के प्रयागराज में सीसीटीवी फुटेज में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराती दिखी, इस कार हादसे में समाजवादी पार्टी के लोहिया वाहिनी के प्रदेश सचिव की मौत। मोहाली से बेहद दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई, साथ काम करने वाले कर्मचारी ने महिला कर्मचारी की बेरहमी से चाकू गोद कर हत्या कर दी और खुद भी सुसाइड की कोशिश की। प्रारंभिक जांच में प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया, ब्रेकअप के बाद डिप्रेशन में था आरोप। गाजीपुर में पुलिस टीम पर पथराव, एनकाउंटर में मारे गए कमलेश का शव देखकर बौखलाए ग्रामीण, हमले में 5 पुलिस वाले घायल हुए, पुलिस ने इस मामले में करीब 70 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। मध्य प्रदेश के खरगोन में मामूली विवाद को लेकर कार चालक ने चढ़ाई कार, पुलिस ने कार जब्त की, कार चालक की तलाश। सहारनपुर में होटलों की फायर पोल खुल गई, सुरक्षा इंतजाम फेल हो गए, एनओसी पर तलवार है। पटना के फुलवारी शरीफ में निगरानी विभाग की छापेमारी, राजस्व कर्मचारी दलाल 45,000 रुपए घूस लेते गिरफ्तार। अलीगढ़ में होटलों की जांच में बड़ा खुलासा, सकरी गलियों में चल रहे कई होटल बिना फायर एनओसी के संचालित। सूरत में फायर ब्रिगेड की विशेष जांच, 57 होटल रेस्टोरेंट में फायर सेफ्टी का अभाव, कनेक्शन बंद करने के निर्देश। गोपालगंज में पुल की दरार का वीडियो बनाते समय युवक का मोबाइल गिरा, घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। आरा में पुलिस का नशे के सौदागरों पर बड़ा प्रहार, 1.5 किलो ब्राउन शुगर बरामद। राजस्थान के बाड़मेर में पानी के टैंक में शव बरामद, पत्नी और उसके साथियों पर हत्या का शक, पुलिस जांच जारी। सफदरजंग एनक्लेव के हुमायूंपुर बेसमेंट में फर्नीचर गोदाम में आग, 5 गाड़ियों ने काबू पाया, कोई हताहत नहीं। मुंडिया खेड़ा हत्याकांड में बड़ा फैसला, एडीजे कोर्ट ने 3 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। गोरखपुर में दर्दनाक हादसा, डिवाइडर पर सो रहे मजदूर पर मिट्टी से लदा डंपर पलटा, मौके पर मौत। कल से शुरू होगा भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच, न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादवेंद्र सिंह स्टेडियम में इस सीजन भारत का यह पहला टेस्ट। भारत और अफगानिस्तान का मुकाबला आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का नहीं है हिस्सा, इस मैच में भारत से 2 खिलाड़ियों के डेब्यू की संभावना। भारतीय बल्लेबाजी क्रम में नंबर 3 के लिए साई सुदर्शन और देवदत्त पाडिकल के बीच मुकाबला, हालिया फॉर्म को देखते हुए पाडिकल का खेलना लगभग तय है। विदर्भ के हर्ष दुबे या राजस्थान के मानव सुधार को मिल सकता है टेस्ट डेब्यू का मौका, बुमराह को आराम से रात करेंगे पेस अटैक लीड। अफगानिस्तान की टीम के कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी संभालेंगे, टेस्ट के बाद 3 वनडे खेले जाएंगे। और एक बार फिर से छाने वाला है पर्दे पर डेविड धवन का 90 का जादू, आज सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म है जवानी तो इश्क होना है। एक बार फिर से दर्शकों का मनोरंजन करने आ रही है सबकी चहेते मिश्रा फैमिली, आज सोनीले पर रिलीज होगी वेब सीरीज गुल्लक का नया सीजन।
एक्ट्रेस करिश्मा कपूर अब एक पुलिस अफसर के रोल में नजर आएंगी। आज Z5 पर रिलीज होगी ब्राउन। दृश्यम 3 के बाद एक्टर मोहनलाल अब OTT पर दिखाएंगे जादू। आज Z5 पर रिलीज हो रही है उनकी फिल्म पैट्रियट। आज अमेजन प्राइम पर स्ट्रीम होगी वेब सीरीज द पिरामिड स्कीम, जिसमें मुख्य भूमिका में है परमवीर सिंह चीमा, रणवीर शौरी, शिखर सुमन। ईरान पर अमेरिका इसराइल हमले के करीब 100 दिन पूरे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा ईरान से संवर्धित यूरेनियम लेने के लिए नहीं है समझौते की जरूरत। गुरुवार को दक्षिणी लेबनान पर इसराइली हवाई हमलों के बाद उठता दिखा धुआं। ट्रंप के लेबनान मामले पर बात आगे बढ़ने के दावे के बावजूद हमला। लेबनान और ईरान के इसराइल से हमले रोकने की मांग का लेबनान से इसराइली सेना की ओर पूर्ण वापसी। अरब लीग की यूएन सुरक्षा परिषद से अपील, फिलिस्तीनी क्षेत्र के इसराइल में विलय अभियान पर रोक की मांग। पुतिन बोले यूक्रेन से बातचीत के लिए तैयार, अमेरिकी सैन्य ठिकानों में चर्चा संभव, ट्रंप से हुई बैठक की योजना के तहत समझौते की बात। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यूक्रेनी और रूसी नेताओं के बीच बैठक की योजना को बताया बड़ी पहल, कहा मैंने समझौता करने की दी थी सलाह। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में यूक्रेन को मदद जारी रखने और रूस पर नए प्रतिबंध के पक्ष में प्रस्ताव पारित। ट्रंप ने भारत अमेरिका के बीच जल्द कारोबार समझौते की जताई उम्मीद, भारत के पीएम मोदी को बताया अच्छा दोस्त। उत्तर कोरिया में नए परमाणु केंद्र की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई, किम जोंग उन ने हथियारों का जखीरा बढ़ाने का आह्वान किया। मैक्सिको के गैस प्लांट में धमाके के बाद पास के 2000 लोगों को निकाला गया, 4 LPG टैंकर्स के धमाके से भड़की बड़ी आग।

0: नासिक का चर्चित टीसीएस यौन उत्पीड़न और कथित धर्मांतरण केस आपको याद है। अब इस मामले में दाखिल चार्जशीट से कई बड़े खुलासे हुए हैं। चार्जशीट के मुताबिक शिकायतकर्ता महिला ने पुलिस को बताया कि उसे इस्लाम के बारे में समझाने के लिए पाकिस्तानी इस्लामिक उपदेशक तारिक जमील और विवादित उपदेशक जाकिर नाइक के वीडियो दिखाए गए थे। पीड़िता का यह भी आरोप है कि यह विश्वास दिलाने की कोशिश की गई कि इस्लाम अपनाने से उसका मानसिक तनाव कम हो जाएगा। और पीड़िता के बयान के मुताबिक मुख्य आरोपी दानिश शेख ने उससे कहा कि मंदिर जाना और भगवान के भजन सुनना छोड़ दो, इससे तनाव कम होगा। इबादत करोगे, मस्जिद जाओगे तो कम होगा। पीड़िता ने कहा कि धीरे धीरे वो इन बातों पर विश्वास करने लगी थी। पीड़िता ने दानिश शेख पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण का आरोप भी लगाया और यह भी आरोप है कि अन्य आरोपी तौसीफ अत्तार और निदा खान भी उसे लगातार इस्लाम के बारे में जानकारी देते थे। जन्नत जहन्नुम कुर्बानी जमजम पानी और अन्य धार्मिक अवधारणाओं के बारे में भी बताया गया था। दिव्येश सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ गए हैं। दिव्येश, चार्जशीट में और क्या खुलासे हुए और ये बेहद चौंकाने वाले हैं।
1: माजी, आपको बता दें कि जो चार्जशीट है ये इस बात का ब्यौरा दे रही है कि इस वक्त जो पीड़िता थी उसके साथ टीसीएस नासिक में क्या क्या घड़ा था और ये जो पूरा आरोपियों का गुट था जिसमें दानिश शेख, निदा खान और तौसीफ अख्तर और अन्य लोग शामिल थे, किस तरीके से जो पीड़िता थी उसे कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे थे, उसका धर्मांतरण करने की कोशिश कर रहे थे, उसे डरा धमका रहे थे धर्म के नाम पर कि तुम्हें कलमा पढ़ना सीखना होगा, तुम्हें नमाज पढ़ना सीखना होगा। तारिक जमील जो कि पाकिस्तानी वक्ता है, इस्लामिक वक्ता है, उनके वीडियो जिसे भेजे जाते थे, इसरार अहमद पाकिस्तानी वक्ता है, उनके वीडियो भेजे जाते थे और विवादित इस्लामिक टीचर जाकिर नाइक के वीडियो भेजे जाते थे कि आप ये वीडियो सुने और मंदिर में पूजा करना छोड़ दें, भजन करना छोड़ दें, मूर्ति पूजा करना छोड़ दें, इससे आपका स्ट्रेस और बढ़ेगा, अगर आप अल्लाह का नाम लेंगे तो आपका स्ट्रेस कम होगा, ये कहा जा रहा था पीड़िता से। और ये कहा जा रहा था कि अगर अब वो इस्लाम नहीं अपनाती है या इस्लामिक जो रीति रिवाज है उसका पालन नहीं करती है तो वो भी जहन्नुम में जाएगी और उसके परिवार को भी हानि पहुंच सकती है। इस तरीके से उसे डरा धमका कर, ब्रेन वॉश कर उसे धर्मांतरण करने की उससे कोशिश की जा रही थी। यहाँ तक ये भी कहा गया था कि इस बारे में किसी को बताना नहीं है और जब तुम्हारा नाम हम बदल देंगे, उसका नाम भी बदल लिया गया था, उसका नाम हानिया रख दिया गया था और उसके बाद उसकी डॉक्यूमेंट्स लेकर उसके पूरे धर्मांतरण की जो प्रोसीजर है उसे पूरा करने के लिए मालेगांव के एक व्यक्ति के भी टच में था दानिश।
0: एक मजबूत चार्जशीट इसे कहा जा सकता है जिस तरह से इसमें एक एक तथ्य को स्पष्ट किया गया है। शुक्रिया दिव्येश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब एक और बड़ी खबर आपको बता दूं और ये बड़ी खबर आ रही है पटना से। पटना के दो कोचिंग संचालकों के बीच वर्चस्व की लड़ाई में खान ग्लोबल कोचिंग के फैजल खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पुलिस ने फायरिंग वाले वायरल वीडियो की जांच की और उसके बाद केस दर्ज किया। सूत्रों के मुताबिक फैजल खान के खिलाफ केस दर्ज, पटना पुलिस से थोड़ी देर में आधिकारिक पुष्टि अब इसकी कर भी सकती है। कदमकुआ थाने में ये केस दर्ज किया गया है और देखिए दो गार्ड उनको हिरासत में लिया गया था, पूछताछ हुई, फिर गिरफ्तार कर लिया गया और उनसे पूछताछ में ये पता लगा है जो गार्ड्स की तरफ से कहा गया है कि फैजल खान के कहने पर उन्होंने फायरिंग की थी। ये पुलिस की तरफ से पूछताछ की गई है। अब फायरिंग का वीडियो अब सामने आ गया, ये देखिए ये गार्ड गोली चला रहा है लेकिन फैजल खान जब मीडिया के सामने आए तो उन्होंने क्या कहा था कि बगल वाले कोचिंग वालों ने यह फायरिंग करवाई और 8-10 फायरिंग तो उन्होंने सुनी थी, 8-10 फायरिंग तो उन्होंने सुनी थी, खूना खून कर दिया, लतपत कर दिया और अब यह वीडियो, और वीडियो आता है तो सच्चाई सामने आ जाती है। फिर पुलिस की पूछताछ, तो पुलिस की पूछताछ में दोनों गार्ड्स ने बता दिया कि फायरिंग उन्होंने ही की और अब तो वीडियो भी सामने है और फैजल खान के कहने पर की। अब पुलिस ने मामला भी दर्ज किया है आर्म्स एक्ट के तहत। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे, फैजल खान के खिलाफ केस दर्ज और पटना पुलिस थोड़ी देर में इसकी आधिकारिक पुष्टि कर सकती है। रुक करते सीधे हमारे सहयोगी शशि भूषण का। शशि, क्या यह माना जाए कि कुछ देर में पुलिस, पटना पुलिस कंफर्म कर देगी इस केस के बारे में?
2: पुलिस कंफर्म कर देगी इस केस के बारे में। बिल्कुल देखिए हिमांशु, ये अपने आप में बहुत बड़ा झटका है फैजल खान के लिए, जो खान ग्लोबल स्टडीज के संचालक हैं, और कल ही उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही थी जिस तरह से पटना पुलिस ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद जो है वो केस दर्ज करने के पहले दो गार्ड्स से लगातार पूछताछ करी थी, और उन गार्ड्स ने पूछताछ के बाद अब जो खबर आ रही है फैजल खान के खिलाफ जो आर्म्स एक्ट के तहत केस है वो दर्ज कर लिया गया है। पटना पुलिस थोड़ी देर में आधिकारिक तौर पे जानकारी दे सकती है, लेकिन जो हमारे सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि फैजल खान की मुश्किलें बढ़ गई है। पहले उन्होंने एक आरोप लगाया था ज्ञानबिंदु एकेडमी के रोशन आनंद के ऊपर, और बाद में पुलिस ने गिरफ्तार किया था रोशन आनंद को, अभिषेक को और गौरव को, तीन लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। और अब ये बड़ा झटका है जो खान सर कहे जाते हैं उनके लिए, क्योंकि जो फायरिंग वाला वीडियो वायरल हुआ, पहले पुलिस ने कल खान ग्लोबल स्टडीज के कोचिंग सेंटर जो मुसल्लपुर हाट इलाके में है वहां पहुंच करके पहले उन दोनों गार्ड्स को हिरासत में लिया था, एफएसएल भेजा गया दोनों गार्ड्स के पास जो हथियार थे जैसे फायरिंग की गई थी उसको, और उसके बाद उन गार्ड्स से लगातार पूछताछ हो रही थी। और अब जो बड़ी खबर आ रही है, जो खान ग्लोबल स्टडीज के संचालक है फैजल खान, उनके खिलाफ भी केस पुलिस दर्ज कर रही है, और थोड़ी देर में आधिकारिक तौर पर जानकारी पटना पुलिस की तरफ से दे दी जाएगी, और विस्तार से पुलिस बताएगी कि आखिर किस तरह के आरोप फैजल खान के
0: ऊपर। वही तो, रोशन आनंद वो भी शिक्षक थे, उनके ऊपर केस दर्ज किया गया, गिरफ्तार किया गया, और अब फैजल खान के ऊपर केस दर्ज किया जाएगा, और कुछ ही देर में पुलिस जो औपचारिक ऐलान है वो भी इस पे कर देगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और कहेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से, इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
5: नीड बेटर इंटरनेट? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, yeah! and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan, price lock guarantee, plus equipment included. Oh, yeah! So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
6: Tune in How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
7: TuneIn has got your favorite podcast, from sports to special interests. Did you know that you can listen to all your favorites offline? It's simple. Just head to any podcast page, tap the three little dots next to the episode title, and hit download. Whether it's true crime, lifestyle, health, and science, or anything else, stream your favorite podcasts and listen to them anytime, anywhere. Sokudo.
8: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
9: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
10: सोच बदलो और बैंक भी।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो।
3: In association with
4: cool stylish fans, enhance home decor with beautiful fans.
5: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
6: समर कूल कूलर हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। समर कूल कूलर लाइफ बनाए वंडरफुल।
3: हिंट बड़े आराम से। विमल बोलो जुबां केसरी।
7: शारदा यूनिवर्सिटी द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी वेयर आर यू।
8: हम सिखाएंगे आपको मास कम्युनिकेशन के एक्सपर्ट बनने का हुनर। ज्वाइन कीजिए इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट।
9: रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.indiatodaymediainstitute.in या 9560065465 पर कॉल करें।
10: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक।

0: समाजवादी पार्टी के गढ़ में ये आरएलडी की हुंकार है। ये समाजवादी पार्टी का वो किला है जिसे ध्वस्त करने की तैयारी कर रहे हैं जयंत चौधरी। 27 के समर की शुरुआत है ये। इधर जयंत तैयार हैं, तो उधर बहुजन समाज पार्टी में सेंध लगाने के लिए नगीना से सांसद चंद्रशेखर परिवर्तन रैली पर निकल पड़े हैं।
1: यात्रा पूरे उत्तर प्रदेश में चलेगी। दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी लगातार अब अपनी यात्रा के परे कैंडिडेट पर सीधा फोकस कर रही है और जल्द ही नए कैंडिडेट विधानसभा चुनाव के लिए उतारना शुरू कर देगी।
0: समाजवादी पार्टी पहले ही बैठकें कर रही है और मुद्दों को धार दे रही है। बीजेपी भी एक कदम आगे है, खुद मुख्यमंत्री मोर्चा संभाले हुए हैं, वो लॉ एंड ऑर्डर को लगातार मुद्दा बना रहे हैं।
2: हमने माफिया को भी समाप्त किया और मच्छर को भी समाप्त किया। ये मच्छर बीमारी लाता था, माफिया बेरोजगारी लाता था।
0: बीजेपी की ओर से भी साफ कहा जा रहा है कि यूपी में 27 का चुनाव बीजेपी सीएम योगी की अगुवाई में ही लड़ेगी।
3: मुख्यमंत्री जी हैं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आपको भी बताया है, आप तो सब जानते हैं, अखबार में छप चुका है,
4: तो उनके नेतृत्व में ही चुनाव में
3: आप जानते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष तो सर्वोच्च पद पर हमारी पार्टी के नेता है, वो
5: नेतृत्व मुख्यमंत्री का ही है।
0: मतलब ये है कि हर बीते दिन के साथ यूपी में सभी दल अपने कील कांटे दुरुस्त करने में लग गए हैं। मुरादाबाद से समर श्रीवास्तव के साथ आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।

दो तिहाई से ज्यादा विधायकों के साथ छोड़ने के बाद टीएमसी सांसदों में भी टूट की अटकलें। चौतरफा मुसीबत के बाद आज ममता बनर्जी ने बुलाई पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक। बंगाल नतीजों से बदले समीकरणों के बाद परिसीमन विधेयक को दोबारा संसद में लाने की तैयारी। मॉनसून सत्र में आ सकता है बिल। इंडिया अलायंस में फूट का मिल सकता है फायदा। तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके अन्नामलाई ने दिया पार्टी से इस्तीफा। नितिन नवीन ने स्वीकार किया। चुनाव से पहले EIADMK से गठबंधन के बाद से अलग थलग थे अन्नामलाई। देश के कई इलाकों में आग ने मचाया तांडव। इंदौर की इमारत में आग, छत से हुआ रेस्क्यू। नोएडा की सोसाइटी में लपटों से हाहाकार। भिवाड़ी इंडस्ट्रियल एरिया की दो फैक्ट्रियां जली। और मोहाली की कंपनी में काम करने वाली लड़की के पूर्व बॉयफ्रेंड ने चाकू गोद कर की हत्या। जालंधर की रहने वाली थी डिंपल। दिल्ली यूनिवर्सिटी की असिस्टेंट प्रोफेसर की हत्या से भी हड़कंप।

दो दिन पहले दिल्ली के होटल में लगी आग में 21 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे की जांच और लापरवाही बरतने वालों पर अब एक्शन जारी है। और इसी बीच आज भी देश के कई शहरों में आग की घटनाओं की तस्वीरें सामने आई हैं। पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं दिल्ली से सटे नोएडा की है, जहां एक सोसाइटी के फ्लैट में आग लगी। दूसरी आप देख रहे हैं राजस्थान के भिवाड़ी से, इंडस्ट्रियल इलाके की दो फैक्ट्रियां स्वाहा हो गई, 5 कर्मचारी घायल हो गए। तो तीसरी तस्वीर मध्य प्रदेश के इंदौर की है, जहां गाड़ियों के शोरूम में भीषण आग लग गई। और लगातार हो रहे इन हादसों के बीच लोगों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठते आ रहे हैं। नोएडा, भिवाड़ी, इंदौर और भी अलग अलग जगह से आग लगने की खबरें सामने आई हैं। दिल्ली के मालवीय नगर के होटल में लगी आग ने राजधानी में फायर सेफ्टी उपायों की पोल खोल कर रख दी। सब ने देखा क्या बंदोबस्त किए गए और इस हादसे में किस लोगों ने अपनी जान गंवा दी। पूरा देश स्तब्ध है और इस घटना के बाद आज तक की टीम ने देश के अलग अलग शहरों में फायर सेफ्टी का जायजा लिया। दिल्ली, मुंबई,

लखनऊ, पटना सहित अलग अलग शहरों में आज तक की टीम होटल्स में पहुंची। इस पड़ताल में होटल्स में कई खामियां दिखाई थी, कहीं आग से बचाव के पर्याप्त उपकरण ही नहीं थे, कहीं थे तो वो चलने की हालत में नहीं थे, कहीं बिखरी हुई तार भयानक हादसों को न्योता दे रही है, तो कहीं पर सकरी गलियों के चलते हादसे किसी भी वक्त हो सकते हैं और राहत बचाव बहुत मुश्किल हो सकता है। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड के बाद आज तक की टीम ने राजधानी के कई होटल्स की पड़ताल की। आज तक की पड़ताल में सकरी गलियां मिली, खराब एग्जिट व्यवस्था दिखी और मानकों की अनदेखी दिखी, कई गंभीर खामियां भी सामने आई, जिसे लेकर अब सवाल एक बार फिर खड़े हो रहे हैं।

0: दिल्ली के मालवीय नगर के होटल में लगी आग की इन तस्वीरों में ऐसी त्रासदी छिपी है जिसकी जिम्मेदार वो व्यवस्था है जो तमाम लापरवाही तमाम बद इंतजामी पर आंखें मूंदे रही। 21 लोगों की मौत के बाद एक्शन हो रहा है, नियमों को ताक पर रखने वालों पर कार्रवाई का भरोसा दिया जा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या राजधानी के तमाम होटलों में ऐसी जानलेवा लापरवाही पर लगाम लगाना इतना आसान है। हर रोज दिल्ली में हजारों लोग आते जाते हैं, हजारों होटल उनका पड़ाव बनते हैं और इनमें से कई होटल ऐसे हैं जो हर कानून को धता बताकर चल रहे हैं। दिल्ली के होटलों के जमीनी हाल की पड़ताल के लिए आज तक की टीम उस पहाड़गंज इलाके में पहुंची जहां से सबसे ज्यादा लोगों की राजधानी में एंट्री होती है। सबसे ज्यादा लोग इसी इलाके के बने होटलों में ठहरते हैं।
1: यहाँ पर जब लोग आते हैं, लाखों की संख्या में रोजाना लोग नई दिल्ली पहुंचते हैं, तो सबसे पहला ठिकाना होता है उनका पहाड़गंज के जो होटल है, जो गेस्ट हाउस है, जो लॉज है, वो ये। और यहाँ से शुरू होती है वो फहरिस्त जो इस वक्त आप तस्वीर में देख सकते हैं। जिधर आप नजर दौड़ाएंगे वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ होटल नजर आएंगे। यहाँ पर लॉज है, गेस्ट हाउस है। लेकिन
0: नई दिल्ली से पहाड़गंज की ओर बढ़ते ही ऐसी तस्वीर दिखाई देती है जो किसी बड़े और खौफनाक हादसे को न्योता देती है। पूरी गली में हर ओर बिखरे हुए तार नजर आते हैं।
1: कैसे यहाँ पर तारों का जाल यहाँ पर बुना हुआ है। यहाँ पर गेस्ट हाउस है, होटल है और ऊंची ऊंची इमारतों वाले होटल आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आप भी देखिए कि 4 से 5 मंजिलों के जो होटल गेस्ट हाउस है वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ तारों का जाल, संकरी गलियां। अगर आग लग जाती है तो फायर ब्रिगेड का यहाँ पर पहुंचना तो एक तरह से नामुमकिन सा ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से आगे तो आप बढ़ ही नहीं सकते।
0: खतरा ऐसा है कि एक चिंगारी भी किसी होटल में बड़ी आग की वजह बन सकती है। पहाड़गंज की हर गली में ऐसी ही अव्यवस्था दिखाई दे रही है।
1: छोटा सा ये कि ये होटल है, इसका एंट्री और एग्जिट जो है वो एक ही है। ये देखिए यहाँ पर एसी लगे हुए हैं और बड़े बड़े जो तार जो हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर एक शॉर्ट सर्किट होता है तो वो आग लगेगी और आग लगने के बाद किसी का यहाँ से बचकर निकलना पूरी तरह से मुश्किल हो जाएगा।
0: हादसे का संकट सिर्फ पहाड़गंज की सड़कों गलियों तक नहीं है, बेहद संकरे रास्तों पर होटल बने हैं, न गाड़ियां पहुंच सकती है, न ही किसी अनहोनी में आसानी से मदद की उम्मीद दिखती है।
1: ये हम आपको इस वक्त तस्वीरें दिखा रहे हैं पहाड़गंज के अंदर की। और आप ये देखिए, ये एक ऐसा होटल है, यहाँ पे दो दो होटल हैं। आगे बढ़िए, ये देखिए ये होटल है और इस होटल का जो एंट्री गेट तो अंदर की तरफ है। ये देखिए, ये पतली सी गली, ये इतनी पतली सी गली है, यहाँ से तो कोई गाड़ी भी नहीं जा सकती। आप देखिए, ये है इस होटल का एंट्री गेट है और ये है हरी किरण गेस्ट हाउस। लगभग 5 मंजिला ये गेस्ट हाउस है। इस गेस्ट हाउस के बाहर की आप ये स्थिति देखिए। आप अंदर चलेंगे तो देखिए बाहर यहाँ पर ये सब सामान रखे हुए हैं। अगर आग लग जाती है तो ये सारा सामान धू धू करके जल जाएगा और लोगों को निकलने का समय भी यहाँ पर नहीं मिलेगा।
0: अब इस होटल के अंदर का हाल देखिए, लापरवाही की इंतहा है। बिजली के तार बिखरे पड़े हैं जो कभी भी हादसे की वजह बन सकते हैं।
1: ये देखिए होटल के अंदर, ये देखिए कैसे यहाँ पर जो बिजली के सारे उपकरण खुले हुए यहाँ पे दिख रहा है, तारों का जंजाल अंदर होटल के अंदर ही है। तो एकदम सामने सामने जो है यहाँ पर आप देखिए कि कैसे तारें खुली हुई रखी हैं। एक शॉर्ट सर्किट हुआ तो यहाँ पर आग लगेगी। तो सबसे पहले तो ये तार आग पकड़ती है क्या। ये देखिए, ये खुले में यहाँ पर मीटर है। कई बार कह चुके हैं यहाँ पे अधिकारी के जो मीटर हैं वो खुले में नहीं, अंदर होटल के अंदर नहीं होने चाहिए, बाहर होने चाहिए। लेकिन अभी देखिए कैसे यहाँ पर जो मीटर हैं, बिजली के मीटर हैं, वो यहाँ पर धड़ल्ले से ओपन में आपको नजर आ रहे हैं।
0: दिल्ली के मालवीय नगर में हुए दर्दनाक हादसे ने अवैध निर्माण सुरक्षा की अनदेखी को उजागर कर दिया है। नियमों की अनदेखी और लापरवाही का ये जाल पूरी राजधानी के होटलों में फैला हुआ है जो लोगों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े करता है। दिल्ली से पीयूष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
2: दिल्ली होटल अग्निकांड के बाद उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रशासन अलर्ट पर है। बहुत से होटल्स हैं, वहां जांच की जा रही है और इसी बीच आज तक की टीम भी लखनऊ के होटल्स में सुरक्षा के इंतजाम की पड़ताल के लिए पहुंची। अब इस दौरान कई होटल्स में फायर सेफ्टी सिस्टम पूरी तरह फेल दिखे।

0: यात्रा के दौरान जिन होटलों में लोग रुकते हैं, जिनकी व्यवस्था पर भरोसा करते हैं, दिल्ली जैसे हादसे उस भरोसे का कत्ल कर देते हैं और ऐसे हादसे सुरक्षा पर कई गंभीर सवाल खड़े करते हैं, जिसकी पड़ताल के लिए जब आज तक की टीम लखनऊ के पॉश माने जाने वाले गोमती नगर इलाके में पहुंची, तो वहां के एक होटल क्लासिक में बेहद डराने वाली लापरवाही दिखी। होटल में लगे फायर उपकरण खराब हैं, यहां तक कि फायर उपकरण में पाइप भी नहीं है। ऐसे में अगर होटल में आग लग जाए तो ये महज शोपीस बनकर रह जाएगा। लेकिन होटल में ठहरने वालों की जान जोखिम में डालने वाली लापरवाही बस इतनी नहीं है, आगे की तस्वीरें और भी डराने वाली हैं। यहाँ देखिए, कई सिलेंडर खुले में पड़े हैं और इनके ठीक ऊपर किचन बना है, यानी हादसा हुआ तो तबाही मचनी तय है।
1: लखनऊ के हम इस गोमती नगर स्थित हैं, यहाँ पर ये एक होटल है क्लासिक, जहाँ पर अगर हम आपको फायर सिस्टम दिखाएंगे तो आप पाएंगे कि इसमें पाइप अवेलेबल नहीं है इस समय, जबकि इसमें पूरा पाइप होना चाहिए। हालांकि वो बॉक्स तोड़ने के लिए यहाँ पर ये बना हुआ है, ये सिस्टमेटिक तरीके से शीशा है, इसमें इसको खोलने के लिए पाइप निकालने के लिए हैमर अलग से होना चाहिए, वो मौजूद नहीं है। जो इक्विपमेंट्स हैं वो कितने वर्क कर रहे हैं ये पूरी तरीके से फिट नहीं है। और दूसरी तरफ अगर देखेंगे तो सिलेंडर जो है वो खुले हुए रखे गए हैं, अगर कोई भी परिस्थिति आती है तो उसमें यहाँ पर घटना हो सकती है। अगर हम आपको इसके बैकग्राउंड से ऊपर लेकर जाएंगे, जो किचन है, किचन में भी आप देख सकते हैं कि जो सिस्टमेटिक तरीके से बनना चाहिए वो यहाँ पर नहीं है। फायर के लिए ज़रूर एक चीज़ ऑन कराई गई है, लेकिन वो फायर पर कितना कामगर होगा ये देखने वाला होगा कि इसमें केवल एक के, इसमें ये फायर का एक ही चल रहा है, एक्सटिंग्विश और भी है और चल रहा है, केवल एक चल रहा है।
0: अब होटल के बेसमेंट का हाल दिखाते हैं, जिसे ऐसे बनाया गया है कि आग लगने पर लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके। लेकिन इस अंडरग्राउंड जगह में ना तो फायर अलार्म लगा है, न ही सुरक्षा का कोई इंतजाम किया गया है।
1: हम होटल में मौजूद है गोमती नगर के, और ये अंडरग्राउंड एरिया है। अगर हम आपको दिखाएंगे कि इस एरिया में क्या है, क्योंकि क्या फायर सेफ्टी की सिस्टम है, इन केस अगर आग लगती तो कितना ये उपलब्धता है, तो आप पाएंगे कि यहाँ पर फायर अलार्म्स की उपलब्धता नहीं है। ये पूरी तरीके से अनसेफ बनाया गया है, यहाँ इसको गोडाउन तरीके से बना दिया गया है, जो स्विचेस हैं वो सारे ओपन लगे हुए हैं। ये एक जो परमानेंट होटल है उसके बैकग्राउंड या कह सकते हैं अंडरग्राउंड बने हुए कंस्ट्रक्शन का एरिया है, और यहाँ पर आप पाएंगे कि फायर अलार्म जैसी कोई सुविधा नहीं, सीसीटीवी जरूर है, और दूसरा जो भी एक्सटिंग्विश होते हैं वो भी नहीं है। फायर के जो वायर्स हैं अगर आप देखेंगे तो जो यहाँ पर गोडाउन टाइप है इसको बना के रख दिया गया है कि इन केस अगर कुछ भी होता है तो कैसे यहाँ से परिस्थितियों से निकलेगा वो व्यक्ति जो अगर फंस जाता है, तो ये भी बड़ा सवाल करता है।
0: आज तक की पड़ताल में पता चला कि यूं ही नियमों को ताक पर रखकर कई होटल चलाए जा रहे हैं, जिसे लेकर अब यूपी में अभियान और एक्शन दोनों शुरू हो गया है।
1: जो जर्मनी कॉन्टिनेंटल होटल है हजरतगंज में, यहाँ पर फायर डिपार्टमेंट की जो टीम पहुंची थी उसने यहाँ पर बात की, और उसके बाद जो यहाँ के कर्मचारी थे, जो यहाँ के मैनेजर थे, उनसे बात की, और साफ तौर से जो कि सीएफओ जब यहाँ मौके पर पहुंचे थे तो इस दौरान उन्होंने कई चीज़ों की सिक्योरिटी चेक भी किया, कई चीज़ों का उन्होंने मानक भी चेक किए। आप लोग यहीं से हैं?
2: नहीं, आप यहीं से?
1: बिल्कुल, तो कई नोटिस जारी करने की बात भी कही गई है, तो ये तो साफ है कि इस होटल में जो कमियां पाई गई हैं उसको लेकर सीएफओ ने एक लिस्ट बना ली है और उसको जारी किया जाएगा।
0: किसी भी होटल के सुरक्षा मानकों में इस तरह की चूक मामूली लापरवाही नहीं है, ऐसी अनदेखी किसी की जान पर भारी पड़ सकती है, जैसी त्रासदी दिल्ली के होटल में दिखाई दी। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
3: दिल्ली लखनऊ आपने देखा, अब आपको पटना लिए चलते हैं, पटना के होटलों का हाल दिखाते हैं, जहां रेलवे स्टेशन के बाद बने कई होटल में सुरक्षा इंतजाम ना काफी थे।

0: होटलों में सुरक्षा व्यवस्था की पड़ताल के लिए आज तक की टीम जब बिहार की राजधानी पटना के रेलवे स्टेशन के बेहद करीब फ्रेजर रोड इलाके में पहुंची, तो सबसे पहले यहां हैरान करने वाली तस्वीर दिखी। पूरी गली के दोनों ओर कतार से होटल बने हुए हैं और करीब करीब हर होटल के नीचे रेस्टोरेंट या भोजनालय चल रहे हैं। पूरी गली में बिजली की तारों का जाल बिछा हुआ है, जो कभी भी हादसे की बड़ी वजह बन सकता है।
1: इस वक्त हम पटना के फ्रेजर रोड इलाके में हैं और ये होटल गली है, स्टेशन का करीब का इलाका, और यहाँ पर तमाम छोटे छोटे होटल्स चलते हैं, नीचे रेस्टोरेंट चलते हैं। हर जगह फायर सेफ्टी को लेकर के क्या इंतजाम है ये जानने और समझने की हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। और देखिए, ये रेस्टोरेंट चल रहे हैं यहाँ पे, ऊपर में होटल्स हैं और ऊपर तक आपकी नज़र जहाँ जाती है तो यहाँ पर तमाम एसी और जो इलेक्ट्रिक वायर्स हैं वो यहाँ पे हैं।
0: पटना के फ्रेजर रोड के होटलों की पड़ताल के दौरान ये बात भी सामने आई कि यहाँ कई होटल काफी पुरानी बिल्डिंग्स में चल रहे हैं। इन होटलों में फायर एक्सटिंग्विशर तो लगाया गया है, लेकिन ये इंतजाम इतने पुख्ता नहीं है कि किसी बड़े हादसे में लोगों की सुरक्षा की गारंटी बन सके।
1: यहाँ पर चूंकि पुरानी इमारतें हैं और इसी में होटल्स चलते हैं फ्रेजर रोड में, कहीं भी आपको उस तरह का कोई वाटर फिटिंग नहीं मिलेगा जो आग पर नियंत्रण काबू करने के लिए आज की इमारतों में या सेफ्टी मेजर्स के हिसाब से होना चाहिए। लेकिन छोटे सिलेंडर्स लगाए गए हैं, हालांकि बहुत छोटे हैं, अगर आग बड़े पैमाने पर फैलती है तो शायद उससे काबू ना पाया जा सके, ये स्टाफ भी यहाँ के कबूल रहे हैं।
0: आज तक संवाददाता शशि भूषण ने पूरी पड़ताल के दौरान कई होटलों का मुआयना किया। कई होटलों में फायर सिलेंडर तो लगे मिले, लेकिन वो पुराने हो चुके थे, यानी आग लगने पर किसी भी काम के नहीं थे।
1: पर हम अपने सहयोगी नदीम से कहेंगे थोड़ा दिखाएं इसको, ये 2025 से 2026 12 मई 2026 तक इसकी वैलिडिटी थी, जो वैलिडिटी भी अब खत्म हो गई है, इसकी तो वैलिडिटी यहाँ खत्म हो गई है, तो इसको हाँ, तो ये जरा थोड़ा सा हाँ इधर, ये इस साइड में भी लिखा हुआ है, इस साइड में ये लिखा हुआ है इसकी वैलिडिटी कब तक है, ये 2026 में 12 मई को इसकी वैलिडिटी खत्म हो गई है।
0: हालांकि कुछ होटलों में सुरक्षा के इंतजाम बेहद पुख्ता दिखे, फायर सेफ्टी के मानकों का पूरी तरह पालन किया गया था।
1: पटना के फ्रेजर रोड स्थित होटल गली में जहां कई होटल्स के अंदर फायर सेफ्टी के नाम पे खाना पूर्ति है, तो कई होटल्स ऐसे भी हैं जहां पर पूरा फायर फाइटिंग का सिस्टम, फायर सेफ्टी का इंतजाम जो है वो नजर आता है। इस वक्त हम पटना के जिस श्री विनायक होटल में है, यहाँ देखिए फायर फाइटिंग सिस्टम लगा हुआ। कुछ होटल्स में जहाँ खाना पूर्ति है वहाँ लक्ष्मण राय जैसे लोग भी हैं जो होटल संचालन में जुड़े हुए हैं और कई वर्षों से काम कर रहे हैं, और एक इन्होंने सीख ली है, पटना में भी घटना हुई थी होटल में आगलगी की, उसके बाद इन्होंने अपने पूरे होटल में फायर सेफ्टी सिस्टम को नए सिरे से इंस्टॉल करवाया है।
0: पड़ताल के दौरान ये बात भी सामने आई कि हाल में फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट ने इन होटलों में लगे सुरक्षा उपकरणों की पड़ताल भी की थी और जहां कमियां पाई गईं उन्हें दुरुस्त करने का निर्देश भी दिया, लेकिन अब तक कई होटलों ने इसे अनदेखा कर रखा है, जो किसी हादसा होने पर जानलेवा बन सकते हैं। पटना से शशि भूषण के साथ आज तक ब्यूरो।
2: तो जिस तरह दिल्ली के एक होटल में अग्निकांड में 21 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, उसके बाद से आज तक संवाददाता अलग अलग शहरों में जाकर होटलों का रियलिटी चेक कर रहे हैं, आपने देखा भी उनमें सुरक्षा इंतजामों का जायजा ले रहे हैं। आज हमारी टीम ने मुंबई के कई होटल्स में जाकर देखा कि अगर हादसा हुआ तो क्या वहां इससे निपटने के जरूरी इंतजाम है।
3: सिस्टम और नाकामी की लापरवाही से 21 लोगों की मौत से पूरे देश में आक्रोश है। राजधानी में दिल्ली में आग लगने से 21 लोगों की मौत हुई है, उसमें 13 लोग विदेशी नागरिक भी हैं। आगे ऐसे हादसे ना हो इसलिए आज तक की टीम अलग अलग शहरों में होटलों में जाकर रियलिटी चेक कर रही है। हमारे संवाददाता दिव्येश सिंह दक्षिण मुंबई के बेलार्ड स्ट्रीट के पास डॉल्फिन नाम के होटल में पहुंचे। इस 4 मंजिला इमारत में पर्यटकों के लिए रुकने की व्यवस्था है, साथ ही इसी बिल्डिंग में लड़कों का एक हॉस्टल भी है। जब कैमरे के बिना उनसे बात की गई तो होटल के मैनेजर या रिसेप्शन काउंटर पर मौजूद व्यक्ति ने पूछा कि हमें कितने कमरों की जरूरत है, लेकिन जब उन्हें बताया कि हम रियलिटी चेक कर रहे हैं तो उन्होंने बहाने बनाने शुरू कर दिए और हमें होटल से बाहर जाने को कह दिया।
4: एक आपके होटल के बारे में ये जानना है कि
5: अंदर अलाउड नहीं है। नहीं
4: नहीं, ये तो बताइए आपने एंट्री और एग्जिट है वो तो बताइए। अलाउड नहीं है। कितने कमरों की परमिशन है आपके?
3: लेकिन होटल में आने जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था और रिसेप्शन एरिया में आग से सुरक्षा के कोई भी इंतजाम नहीं थे।
4: आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर मुझे एक ही एंट्री और एग्जिट भी दिखाई दे रही है। एक ही एंट्री है और एक ही एग्जिट है। पुराना होटल है और यहाँ पर हमें जब हमने विदाउट कैमरा बात करने की कोशिश की थी उन्होंने बताया कि यहाँ पे बॉयज हॉस्टल भी चलता है, आपको कितने कमरे चाहिए उसके बारे में बात हुई। बाद में उन्होंने कहा कि कुछ काम चल रहा है और फिर जब हमने ऑन कैमरा बात करने की कोशिश की तो जो स्टाफ है उसने यहाँ पर मना कर दिया।
3: इसके बाद हमारी टीम दक्षिण मुंबई के ही पीडी मेलो रोड पर बने पेवेलियन डॉर्मेट्री पहुंची। सीएसएमटी टर्मिनस और इंदिरा डॉक्स के पास के इलाके में ऐसी कई डॉर्मेट्री हैं जो काम के सिलसिले में या थोड़े समय के लिए रुकने वाले लोगों को बेड देती है।
4: ये आपके डॉर्मेट्री में क्या सब रूल्स फॉलो हो रहे?
6: जी जी, हमारे पास सब सेफ्टी है
4: और फायर सेफ्टी पूरा प्रिकॉशन है।
6: जी, फायर सेफ्टी हमारे पास है
4: और एंट्री और एग्जिट
6: जी सब सेफ्टी हमारे पास है।
4: एंट्री और एग्जिट के दो गेट है।
6: जी जी, जो दो गेट है।
3: इस डॉर्मेट्री के स्टाफ ने दावा किया कि यहाँ बीएमसी और फायर डिपार्टमेंट की टीम नियमित समय पर आकर सुरक्षा इंतजामों को जांचती है। हमने अंदर जाकर यह जानने की कोशिश की कि अगर यहाँ आग लग जाए तो स्टाफ कैसे यहाँ रुके लोगों को सुरक्षित बाहर निकालेगा। देखिए आगे क्या हुआ।
4: तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फायर सेफ्टी का प्रिकॉशन रखा हुआ है। फायर
7: एमरजेंसी
4: गेट, इमरजेंसी गेट है ये, बट इसको लॉक करके रखा है आपने?
7: नहीं सर, लॉक इसलिए है, एसी चालू है ना।
4: अच्छा
7: जी सर।
4: हाँ, ऐसा खुला रखा है, ये खुला रखना पड़ता है।
7: जी, जी, जी।
4: तो इसको खुला रखना है। तो ये इमरजेंसी गेट तो इनके पास है, इन्होंने लॉक रखा हुआ है, बोल रहे हैं एसी है इसीलिए, बट इमरजेंसी गेट पीछे का दिखाई दे रहा है। पीछे एक गेट है, आगे एक गेट है और ये रहा फायर सेफ्टी सिस्टम।
3: सच तो ये है कि दिल्ली हो या मुंबई, अभी भी हजारों ऐसे होटल नियमों को ताक पर रखकर चल रहे हैं जिसमें ना तो फायर के एनओसी है और ना ही इमरजेंसी एग्जिट के इंतजाम। कई जगह तो बेसमेंट में ही कमरे बना दिए जाते हैं। सवाल है कि आखिर सरकार या प्रशासन समय रहते ऐसे अवैध तरीके से बनाए गए होटलों पर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? हमारा सिस्टम ऐसा क्यों है कि हम हादसों के बाद ही अलर्ट मोड पर आते हैं? दिव्येश सिंह, मुंबई आज तक।
2: हादसा होने के बाद नहीं, जरूरी है कि हादसे से पहले अलर्ट रहें। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
9: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
10: नीड बेटर इंटरनेट? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 meg internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included. Oh yeah. So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
11: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars, NSYNC, and Britney Spears. Or rock artists, like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
12: Sokudo.

0: बहुत चुल मच रहा है कसम से, आज घर जाकर दहिया पूरा कपड़ा उतार के खुजाएंगे।
1: क्योंकि मैं आपकी खुजली को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा, आपका जो दर्द है वो सही है, तकलीफ सही है, जो आप इतने दिनों से अपने छोटे से दिल में लेके इतना बड़ा पहाड़ घूम रहे हो,
0: अधूरा प्यार ही
1: तुम्हें दुनिया के यार ठीक है मत दुराओ
2: बिजुरी आई गए।
1: हाँ हाँ थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा राइट, ओ थोड़ा राइट,
2: यह अब ही नसिया पाया भैया।
3: अरे थोड़ा सा और ऊपर,
2: अरे लेफ्ट बोल रहा हूँ।
3: हाँ यही यही यही खुजा जोर से।

0: presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस
1: एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया.
2: Hear what the world is listening to. Global Hits brings together music in motion. From pop to K-pop, Latin dance, and Afro beats. Chart-topping tracks to hidden gems. Whatever the globe is listening to, it's all right here. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Today's Global Hits to start listening now.
0: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस.

से ज्यादा विधायकों के साथ छोड़ने के बाद टीएमसी सांसदों में भी टूट की अटकलें। चौतरफा मुसीबत के बाद आज ममता बनर्जी ने बुलाई पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक। त्रिपुरा के बॉर्डर इलाके पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, कहा नहीं होने देंगे घुसपैठ और डेमोग्राफी चेंज। त्रिपुरा हो, बंगाल हो या बिहार, घुसपैठियों के खिलाफ अटल है सरकार। देश के कई इलाकों में आग ने मचाया तांडव। इंदौर की इमारत में आग, छत से हुआ रेस्क्यू। नोएडा की सोसाइटी में लपटों से हाहाकार। भिवाड़ी इंडस्ट्रियल एरिया की दो फैक्ट्रियां जली। पटना में कोचिंग चलाने वाले फैजल खान के खिलाफ आर्म्स एक्ट में दर्ज हुआ केस। गिरफ्तारी के डर से काले शीशे की गाड़ी में निकले। क्लास में छात्रों को भड़काने का भी आरोप। और मोहाली में पूर्व बॉयफ्रेंड ने चाकू गोद कर की लड़की की हत्या। जालंधर की रहने वाली थी डिंपल, दिल्ली यूनिवर्सिटी की असिस्टेंट प्रोफेसर का मर्डर। गाजियाबाद में लड़के की मिली लाश।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। दोपहर के 2 बज गए हैं, एक बार फिर से न्यूज रूम लाइव में हम आपके सामने हाजिर हैं। और न्यूज रूम लाइव में जैसा हम हर बार बताते हैं कि शुरुआत में कौन सी खबर आपको दिखाने जा रहे हैं, तो वो हम आपको बता देते हैं कि सबसे पहले आज कौन सी खबर हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले आज हम आपको जो खबर दिखाने जा रहे हैं वो होगी पटना से कि कोचिंग की लड़ाई अब फैसल खान की गिरफ्तारी तक आई। कुछ ही देर में बहुत कुछ स्पष्ट हो जाएगा और पुलिस हो सकता है कि जल्दी इस बारे में खुलासे और भी करे। दूसरी बड़ी खबर वो हम आपको यहां पर बताने जा रहे हैं, और दूसरी बड़ी खबर होगी ममता बनर्जी ने बड़े जो उनके नेता थे पार्टी के उनकी बैठक बुलाई है, लेकिन टीएमसी की जो टूट है लड़ाई वो कहां तक जाएगी हम आपको बताएंगे आपसे कुछ ही देर में। जो तीसरी बड़ी खबर यहां पर होगी वो भी हम आपको बता दें, टीसीएस आपको याद है जबरन धर्मांतरण का जो मामला सामने याद आया था, उत्पीड़न का मामला सामने आया था, उसमें चार्जशीट आई है, चार्जशीट जब दायर की गई है उसमें खुलासे क्या हुए, पॉइंट वाइज हम आपको बताएंगे कि कौन से बड़े खुलासे हुए। जो चौथी बड़ी खबर होगी वो होगी मोहाली में मर्डर की। दोपहर 2:30 बजे हम आपको बताएंगे कैसे मोहाली में एक सनकी ने एक लड़की की बेरहमी से हत्या कर दी। लेकिन सबसे पहले जो बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं वो बड़ी खबर आपको बता देते हैं, और वो बड़ी खबर आ रही है पटना से, जहां पर फैसल खान अब गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। फैसल खान से जुड़ी ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, और अब ये भी खबर आ रही है केस दर्ज हो गया है फैसल खान पर, पटना के कोचिंग संचालक फैसल खान पर केस दर्ज हुआ है। पटना के दो कोचिंग संचालकों के बीच वर्चस्व की लड़ाई, अब फैसल खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पुलिस ने फायरिंग वाले वायरल वीडियो की जांच के बाद केस दर्ज किया, अब फैसल खान के खिलाफ केस दर्ज हो गया। कदमकुआ थाने में यह दर्ज हुआ है केस। फैजल खान के दो सिक्योरिटी गार्ड को कल हिरासत में लिया था, फिर पूछताछ में उसने फैजल खान का नाम लिया दोनों गार्ड्स ने, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी की गई। और अब यह खबर आ रही है कि फैजल खान की भी गिरफ्तारी हो सकती है, केस दर्ज हुआ है। और ये हो क्यों रहा है, आप ऐसे समझिए कि ये कुल मिलाकर दो कोचिंग संचालकों के बीच वर्चस्व की लड़ाई हो रही है। अब आपके मन में चल रहा होगा कि फैसल खान के खिलाफ ये गिरफ्तारी की तलवार क्यों लटक रही है, तो एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, उस वीडियो की हकीकत हम आपको बताएंगे कि उस वीडियो में है क्या। और ये बताया जा रहा है कि इस वीडियो जो वीडियो है वो फैसल खान की कोचिंग का है, और इस वीडियो में फैसल खान छात्रों को पढ़ा नहीं रहे हैं। वो ये वीडियो दिखाते हुए जब वारदात हुई थी उस वक्त का ये वीडियो दिखाकर मार्कर से पॉइंट करते हुए ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, मोबिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं छात्रों को, और बता रहे हैं कि ये देखिए ये हमलावर, इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई अभी तक।
1: विद्या के मंदिर में अस्पष्ट गोलियां चल रही थी और अफरा तफरी इतना था कि किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि बाहर निकल के देख सके। यहाँ क्यों नहीं कोई आए लोग तक वगैरह, बहुत यही था कि तो उस समय आए रहे थे, बता रहे थे क्या गोलियां चल रही है कि नहीं चल रही, इसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है अभी तक, जबकि कैमरा के सामने है और सारे लोग 20-25 आदमी कैसे गए। यकीन मानिए जिस दिन केजीएस बंद हुआ, जिस दिन खान साहब का आवाज दबाया गया, उसके 6 महीने के अंदर आकर फिर से फीस 1-1.5 लाख नहीं चली गई तो आप कहिए। आज इसीलिए रखा गया, आज लोग स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि नहीं खान साहब का इतना है तो इसी के आसपास रखा गया, और हम लोग का कोई उद्देश्य कमाना नहीं है। आप देखिए कभी कमाने वमाने के लिए मैं जाना होगा रहेंगे 2 दिन पहले, अभी तक इसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। इसकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई जबकि सबके सामने ये लेके जा रहा है।
0: अब देखिए ये जो वीडियो है ना, ये वीडियो छात्रों के माता पिता को भी देखना चाहिए। छात्र पढ़ाई करने जा रहे हैं लेकिन वहां पर इक्वेशन सॉल्व नहीं की जा रही है, वहां पर घटना का एक्सप्लेन किया जा रहा है, घटना को बताया जा रहा है, छात्रों को कहा जा रहा है कि ये देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर। लेकिन इस दौरान एक और बड़ी खबर आ रही है वो भी हम आपको बता दें। बड़ी खबर ये है कि फैसल खान के जो अधिवक्ता है, वकील है, वो खान ग्लोबल स्टडीज पहुंचते हैं, और उसके बाद काले शीशे वाली गाड़ी से बताया जा रहा है वहां से फैसल खान को लेकर निकल गए। गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है, पुलिस जांच आगे बढ़ा रही है, तो वकील सबसे पहले फैसल खान के पहुंचते हैं खान ग्लोबल आता है, और उसके बाद वहां से काले शीशे वाली गाड़ी से फैसल खान को लेकर निकल गए। जांच आगे बढ़ रही है। अब देखिए ये वीडियोस भी सामने आ रहे हैं, वीडियोस में ये देखा जा रहा है कि पढ़ाई की जगह कुछ और हो रहा है अंदर, छात्रों को यह बताया जा रहा है कि ये देखिए सामने वाले की गिरफ्तारी नहीं हो रही है। और अब जब गिरफ्तारी की तलवार लटकी तो अधिवक्ता आते हैं, फैसल खान को शीशे वाली गाड़ी में बैठाकर ले जाते हैं। सीधे रुक करते हैं, हमारे सहयोगी शशि भूषण इस वक्त हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। शशि, एक वीडियो सामने आ रहा है, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए कि बच्चे पढ़ाई की जगह वो वीडियो देख रहे हैं और वहां पर वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, जबकि वो तो पुलिस का काम है। और दूसरी ये भी खबर आ रही है कि वकील काली गाड़ी वाले में, काली शीशे वाली गाड़ी में ले गए फैजल खान को।
2: बिल्कुल हिमांशु, देखिए सबसे पहली बात, पहले वीडियो की बात करते हैं। जो वीडियो खुद खान सर के जो क्लास है, मतलब जो खान ग्लोबल स्टडीज के अंदर जो क्लासरूम है, उसमें फैजल खान किस तरह अपने स्टूडेंट्स को बता रहे हैं कि घटनाक्रम क्या हुआ था 2 जून की रात को और कौन गिरफ्तार हुआ, कौन हमलावर बच गया। पुलिस की चिंता और प्रशासन की चिंता यहीं से बढ़ती है। सबसे पहले ये बताना होगा कि जो ज्ञान बिंदु एकेडमी है उसके डायरेक्टर रोशन आनंद गिरफ्तार हुए और उनकी गिरफ्तारी के बाद कल पटना में छात्रों का एक बड़ा समूह ज्ञान बिंदु एकेडमी का पटना के कारगिल वाले चौक वाले इलाके पर प्रदर्शन कर रहा था। इस प्रदर्शन को लेकर के प्रशासन या पटना पुलिस की चिंता थी, लेकिन आज जब ये वीडियो सुबह फैजल खान का सामने आया तो उसके बाद पटना पुलिस को ये लग गया कि जो फैजल खान है वो अपने स्टूडेंट्स को मोबिलाइज करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसको इस बात का अंदाजा हो गया था कि जो 2 गार्ड्स गिरफ्तार किए गए हैं वो निश्चित तौर पर उनसे कनेक्टेड है, तो जाहिर तौर पे पुलिस की जांच का दायरा उन तक पहुंचेगा, वो उस जांच के हद में आ सकते हैं। तो इसी वजह से जो फैजल खान है वो अपने स्टूडेंट्स को बता रहे थे। और सबसे दिलचस्प बात ये हिमांशु कि फैजल खान ने अपने स्टूडेंट्स को कहा कि अगर जो खान ग्लोबल स्टडीज है वो बंद हो गया तो 6 महीने में जो कोर्सेज वो कम पैसे में पढ़ाते हैं उनकी प्राइस, उनकी फी जो है वो बढ़ करके 1.5 लाख रुपए हो जाएगी। मतलब आप समझिए किस तरह से ये व्यक्ति जो है वो अपने स्टूडेंट्स का ब्रेन वॉश कर रहा था। और ये आशंका आज सुबह से ही पटना पुलिस और प्रशासन के सामने थी कि हो सकता है कि अगर फैजल खान के ऊपर कोई एक्शन हो तो वो जिस तरह से अपने स्टूडेंट्स को कन्विंस कर रहा था, मोबिलाइज कर रहा था, एक बड़ा एजिटेशन हो सकता है पटना के अंदर और स्थिति लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ सकती है। उसके पहले ही पुलिस ने FIR करने का फैसला किया। और देखिए जैसे ही FIR की खबर मिली है फैजल खान को, उसने तुरंत अपने ग्लोबल स्टडीज में वकीलों को बुलाया है और संभव है जो काला शीशा ही नहीं, गाड़ी पर पूरा काला पर्दा लगा करके एक गाड़ी निकली है वहां से, संभव है कि वो कानूनी बचाओ दांवपेच और अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर रहने की कोशिश फैजल खान।
0: ठीक है, आपको अधिकार है, आप अपने कानूनी बचाव कर सकते हैं, लेकिन छात्रों को पढ़ाई की जगह सवाल सॉल्व कराने की जगह अगर ये सब आप कराएंगे तो फिर आप पर सवाल उठेंगे और पुलिस वही कर रही है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब बात करते हैं TCS उत्पीड़न मामला और कथित धर्मांतरण मामले की, जिस तरह मैं यौन उत्पीड़न का मामला आया। अब इसमें हुआ क्या है, इसमें चार्जशीट दायर कर दी गई। अब चार्जशीट में क्या खुलासे हुए हैं, बड़े खुलासे वो हम आपको बता देते हैं। आरोपियों ने पीड़िता का ब्रेन वॉश किया, मतलब बिल्कुल उसे बताया कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये कहा इस्लाम धर्म अपना लो, इस्लाम धर्म अपनाओगे तो जितना भी तनाव है आपके जीवन का वो छू बंतर हो जाएगा। ये चार्जशीट में खुलासा हुआ, ये बताया गया है। पीड़िता को मंदिर जाने, भजन गाने से रोक दिया गया कि जितना मंदिर जाओगे, जितना भजन गाओगे, आपकी टेंशन बढ़ती जाएगी, तनाव बढ़ता जाएगा। इस्लाम के उपदेशकों के वीडियो देखने को कहा, और कौन, जाकिर नाइक, भगोड़ा जाकिर नाइक, उसके वीडियो दिखाए जाने लगे। तारिक जमील, जाकिर नाइक, ये वीडियो जो ब्रेन वॉश करने के लिए एक्सपर्ट माने जाते हैं, तारिक जमील, जाकिर खान के वीडियो दिखाए गए। और ये भी बताया गया कि अगर आप मस्जिद जाते हैं तो वहां पर आपका तनाव कम होगा, इबादत करेंगे अगर आप खुदा की तो आपका तनाव कम होगा। धर्मांतरण ना करने पर नुकसान पहुंचाने की धमकी भी दी कि अगर प्यार से नहीं माने तो फिर नुकसान पहुंचाया जाए, नुकसान किया जाएगा आपको। यौन उत्पीड़न किया, शादी का झांसा देकर एक बार नहीं कई बार यौन उत्पीड़न किया, ये चार्जशीट में पुलिस की तरफ से जो दाखिल की गई है उसमें खुलासा हुआ है। पीड़िता ने बताया है कि क्या क्या हुआ है उसके साथ और कितने लोग इसमें शामिल थे। ये कहा गया कि मंदिर जाना छोड़ दो, भजन सुनना बंद कर दो। क्या सिखाया धर्मांतरण के धंधेबाजों ने, ये हम आपको बता रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि इस्लाम में अगर आप इबादत करेंगे खुदा की तो आपका तनाव कम हो जाएगा, मंदिर जाएंगे तो आपका तनाव बढ़ जाएगा, भजन गाएंगे तनाव बढ़ जाएगा, तस्बीह पढ़ो, अस्तफगार पढ़ो, ये यहां पर कहा गया। इस्लामी उपदेशकों को सुनो, जाकिर नाइक जिसके बारे में अभी जिक्र किया जा रहा था। और ऐसे ही धीरे धीरे बरगलाते हुए ब्रेन वॉश किया गया, तारिक जमील को सुनाया गया, छोटे छोटे वीडियोस तक पहुंचाया गया और उसको धीरे धीरे मंदिरों से दूर किया गया। दिवेश सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। दिवेश, अब जब चार्जशीट दाखिल हुई तो इस चार्जशीट से बहुत बड़ा खुलासा हुआ कि कितना जुल्म पीड़िता पर किया गया, पता चल रहा है अब कि कैसे ब्रेन वॉश करते थे, एक मोडस ऑपरेंडी थी इनकी।
3: बिल्कुल, आपको बता दें कि ये पूरा जो माजरा है ये चार्जशीट में साफ तौर पर नासिक पुलिस की जो एसआईटी है उन्होंने डिटेल में बताया है कि किस तरीके से पीड़िता को टारगेट किया गया, किस तरीके से उसका ब्रेन वॉश किया गया, किस तरीके से पाकिस्तानी इस्लामिक उपदेशकों को लेकर जैसे तारिक जमील हो गए, इकरार अहमद हो गए, इनके वीडियो उसे देखने के लिए कहा गया। इसके अलावा रजा खान जो आरोपी है, आरोपियों में से एक है, वो अपने घर में जाकर पीड़िता को बताती थी कि कैसे बुरका पहनना है, कैसे हिजाब पहनना है, कैसे नमाज पढ़ना है और कैसे इस्लामिक धर्म को फॉलो करना है, इस्लामिक धर्म के रीति रिवाज कैसे फॉलो करने हैं और क्या क्या नहीं करना है, कैसे हिंदू रिवाज जो है, पूजा पाठ जो है वो इससे तो दूर रहना है, नहीं तो उसे तनाव होगा, उसका तनाव और बढ़ेगा। और इसके अलावा यही नहीं, उसे डराया भी गया, डरा कर ये कहा गया कि अगर वो इस्लामिक धर्म के रीति रिवाज अब फॉलो नहीं करती है, क्योंकि अब उसने कलमा पढ़ लिया है, कलमा पढ़ लिया तो वो
0: जी बिल्कुल, मतलब खुलासे तो बहुत सारे इसमें हो रहे हैं, ये बात बहुत स्पष्ट है। दिव्य, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन अभी बात अब बंगाल की कर लेते हैं, क्योंकि बंगाल में बहुत कुछ हलचल इस वक्त होती हुई दिखाई दे रही है। ममता बनर्जी ने क्या किया है, ममता बनर्जी ने आज पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक बुलाई है, लेकिन बैठक तो बुला ली है, वरिष्ठ नेताओं में पहुंचेगा कौन, सबकी नजर तो इसी पे टिकी हुई है कि वरिष्ठ नेताओं में वो कौन से नाम हैं जो आज इस बैठक में शामिल होंगे, बड़े पदाधिकारियों को जो बुलाया गया है। ममता बनर्जी, टीएमसी में तो टूट हो ही रही है, बिखराव हो रहा है, गले पर निखम जो नमक है वो छिड़का जा रहा है ममता बनर्जी के, और इसीलिए आज पार्टी पदाधिकारियों की बैठक बुलाई गई। तो लोगों के मन में ये सवाल चल रहा है कि आखिर बंगाल में अब होगा क्या, ममता बनर्जी के सामने कितनी चुनौतियां, ममता बनर्जी आगे क्या करेंगी, पार्टी जोड़े रख पाएंगी या फिर जो पार्टी के बागी हैं वो ममता को ही साइडलाइन कर देंगे। ममता की चुनौतियों पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
4: टीएमसी में कहां तक बगावत, ममता के साथ सिर्फ 20 विधायक, विधायकों ने साथ छोड़ा मुंह मोड़ा, सांसद भी बगावत की राह पर जाएंगे।
5: मानसिक तौर पे आप पार्टी के साथ नहीं हैं?
6: मानसिक तौर पे मैं पार्टी के साथ नहीं हूँ।
5: और ऐसे ही मानसिक तौर पे और कितने सांसद हैं तृणमूल में जो पार्टी के साथ नहीं है, आपको क्या पता है?
6: देखिए, मैं तो किसी का मानसिक स्थिति को रीड नहीं कर पाता।
5: नहीं, बातचीत तो होती होगी।
6: बातचीत होती है, मेरे सुनने में जो है मैंने आपको बता दिया ना कि लोकसभा में ज्यादा मेंबर मैंने मेजोरिटी मेंबर थे।
4: टीएमसी के सीनियर नेताओं में से एक सुखेंदु शेखर रॉय ने जो कुछ कहा वो ममता बनर्जी के लिए गहराते संकट के संकेत हैं। तृणमूल के सांसदों में असंतोष और बेचैनी साफ साफ देखी जा सकती है, और अगर ममता नाकाम रही तो ये संकट तृणमूल को तिनका तिनका कर सकता है।
5: लोकसभा में आपके 29 सांसद हैं, आपको क्या सुनाई दे रहा है, कितने सांसद होंगे फिर?
6: 29 नहीं, 28 है।
5: 28
6: बसीरहाट आपका पेंडिंग है कलकत्ता हाई कोर्ट में,
5: क्या होने वाला है, आपको क्या सुनाई दे रहा है, आपको पार्टी के अंदर अभी भी है
6: मेजोरिटी चला जाए?
5: ये एक बड़ा बयान है आप दे रहे हैं कि मेजोरिटी ही चला जाएगा,
6: मेजोरिटी चला जाएगा।
4: तृणमूल के सांसदों पर एनडीए की नजर है, संसद के मानसून सत्र में सरकार परिसीमन बिल लाने की तैयारी में है, और खबर है कि तृणमूल के सांसदों से संपर्क साधा गया है, यानी विधायकों के बाद ममता बनर्जी के सामने अपने सांसदों को टूटने से बचाने की बड़ी चुनौती है। क्या ममता बनर्जी इस सुनामी का सामना कर पाएंगी? उनके लिए एक अच्छी खबर ये है कि बागियों में से पहली आवाज उनके समर्थन में आई है।
7: ममता बनर्जी हम लोग का सर्वोच्च नेतृत्व है, ये बात बोला एवं ममता बनर्जी का छवि घर में रहेगा, सबका घर में रहेगा। ममता बनर्जी के फोटो का लेके मीटिंग मीटिंग करेगा, ये सब बात हुआ, इसलिए हम साइन किया।
8: आने वाले दिनों में कि ममता बनर्जी फिर चीफ एडवाइजर ही रहे, आप इसको मानते
7: हैं? नहीं, हम लोग चीफ एडवाइजर मानते हैं।
4: ममता के लिए ऐसी कई आवाजों की जरूरत होगी, तभी वो इस संकट से उबर पाएंगे। इंद्रजीत कुंडू के साथ अनुपम मिश्र, कोलकाता। आज तक।
0: और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, और ये बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश की संभल से, जहां पर अवैध मजार पर इस वक्त बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, हमारे सहयोगी भी हमारे साथ में जुड़े होंगे इस वक्त। लेकिन ये बड़ी खबर देखिए, बुलडोजर तैयार है उत्तर प्रदेश के संभल में, बुलडोजर एक्शन जारी है। और ये बताया जा रहा है कि अवैध मजार पर बुलडोजर का एक्शन हो रहा है। अभिनव हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए, सीधे उनका रुख करेंगे। अभिनव, क्या हो रहा है वहां?
9: देखिए बिल्कुल, आप मेरे पीछे तस्वीरों में जो ठीक जो देख सकते हैं, देखिए ये वो बुलडोजर एक्शन की जो तस्वीरें हैं, जहां पर आप ये देख सकते हैं बागाऊ गांव की वो तस्वीरें हैं, जहां पर ये पूरा बुलडोजर एक्शन इस वक्त यहां पर आपको तस्वीरों में जो है होता हुआ जो नजर आएगा, जहां पर ये पूरी सरकारी जमीन पर बनी हुई वो पूरी मजार है जिसको फिलहाल यहां पर जो है ध्वस्त किया जा रहा है। और इस पूरे मजार को ध्वस्त करने के लिए लगातार प्रशासन के स्तर पर बड़ी कार्रवाई की गई थी। हालांकि बताया जाता है कि इस पूरी मजार को लेकर के पिछले कई महीने से SDM विकास चंद्र के स्तर पर ये पूरी कार्रवाई की जा रही थी। और आप जो देख सकते हैं, देखिए ये वो नहर किराने की जमीन है जिस पर ये पूरी मजार को बनाकर के अवैध कब्जा किया गया था। और ठीक इसके दूसरी तरफ यहाँ पर एक मंदिर स्थित है, जहाँ पर ये पूरे उसके ठीक सामने पूरी मजार है। और यहीं पर आप जो देखेंगे तो देखिए सामने आपको यहाँ पर DM अंकित खंडेलवाल और SP KK बिश्नोई फिलहाल यहाँ पर आपको यहीं पर जो है नजर आएंगे। हम उनसे भी बात करेंगे। सर यहाँ पर सर किस तरीके से सर ये पूरी कार्रवाई सर आज यहाँ पर की जा रही है?
10: देखिए सार्वजनिक जमीन पर अतिक्रमण का मामला था, तहसीलदार कोर्ट से धारा 67 के तहत दर्ज होकर के इसमें प्रॉपर सुनवाई के बाद वाद निर्णित किया गया था। उसके बाद भी इनके द्वारा अपील की गई थी और अपील जिलाधिकारी कोर्ट में लंबित थी, उसका पूरा विधिवत तरीके से सुन करके निस्तारण करके फाइनल आदेश कारित किया गया और अपील को खारिज किया गया। उसी क्रम में अपील खारिज होने के बाद इस कब्जे को हटवाया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के और शासन के स्पष्ट निर्देश हैं कि सार्वजनिक जमीन पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। आप देखेंगे इसके पीछे से एक बहुत पुरानी वर्धमान नदी भी निकलती है, तो नदी के कैचमेंट एरिया में भी ये जमीन बाधा बन रही है। इस नदी के पुनरुद्धार को लेकर के भी हम लोग कदम उठाने जा रहे हैं, तो उस दृष्टि से भी ये कब्जा हटाया जाना।
0: जिस जगह का जिक्र अभिनव अधिकारी करते हुए नजर आ रहे हैं, जरा वो तस्वीरें जरा दिखाइए कि किस नदी का जिक्र किया जा रहा है और इस वक्त वहां पर कैसे बुलडोजर कार्रवाई हो रही है।
9: देखिए बिल्कुल, ये वो जो आप अगर जो देखेंगे तो देखिए इसी नहर का जिक्र ये पूरे अधिकारी जो है कर रहे हैं, जिस पूरे नहर के किनारे ही, हालांकि पूरी नहर जो सूख गई है लेकिन इस पूरी नहर के किनारे ही स्थित ये पूरा स्ट्रक्चर है जिसको फिलहाल यहां पर जो है ध्वस्त करने के लिए ये पूरी कार्रवाई को यहां पर जो अंजाम यहां पर जो दिया जा रहा है। आप यहां देखेंगे तो देखिए बुलडोजर एक्शन आपको यहां तस्वीरों में नजर आएगा। यहां पर पूरी तरह से जो मजार का स्ट्रक्चर है उसको कहीं ना कहीं जमींदोज करना जो है इस पूरे बुलडोजर ने शुरू कर दिया है। हालांकि जो लोग इसकी पूरी जो है देखभाल कर रहे थे, अभी हमने उनसे भी बातचीत करी, और आप यहां देखेंगे देखिए अब जो वो पूरी मीनार है उसको यहां पर गिराया गया और इसी तरह से जो पूरा ये स्ट्रक्चर है उसको ध्वस्त किया जा रहा है। हालांकि ये अगर देखा जाए तो इसके ठीक दूसरी तरफ ही मैं अगर आपको जो आपको सामने तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूं तो देखिए ये वो सामने मंदिर आपको तस्वीरों में नजर आएगा जो कि खेड़ेश्वर महादेव मंदिर है जिसको फिलहाल यहां पर इसी के ठीक सामने ये पूरी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन आप यहां देखेंगे तो देखिए कितनी बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी आपको यहां पर जो है तैनात जो नजर आएंगे, और इसी तरह से जो पूरा लॉ एंड ऑर्डर के दृष्टिकोण से जो पूरा पुलिस फोर्स है वो भी यहां पर जो है तैनात किया गया है। तकरीबन 70 के लगभग यहां पूरी पुलिसकर्मी यहां पर तैनात हैं। SP KK बिश्नोई भी हैं मौजूद है। सर किस तरीके से सर ये पूरी कार्रवाई चल रही है और सर लॉ एंड ऑर्डर के दृष्टिकोण से सर कितना फोर्स लगा है?
11: जनपद संभल में जो लैंड बैंक बनाने के कंसेप्ट है उस पर काफ़ी दिनों से जो विभिन्न गांव हैं उनके अंदर ज़मीनें चिन्हित की गई है, जो सरकारी ज़मीनों पे इस तरीके के जितने भी अवैध अतिक्रमण बने उन सबको तोड़ा जा रहा है। आज यहाँ पे गुन्नौर सर्कल के 4 थानों की फोर्स है वो मौजूद है, और ये नदी के कैचमेंट एरिया के अंदर बने हुए स्ट्रक्चर है तो उसको हटाने का कार्य वो पुलिस और प्रशासन के द्वारा करवाया जा रहा है, और उसमें पुलिसकर्मी हैं, सुरक्षार्थ यहाँ पे खड़े हैं, और अभी तक करीबन 100 हेक्टेयर से अधिक लैंड है उसको मुक्त करवाया जा चुका है।
9: तो देखिए बिल्कुल जाहिर तौर पर ये देखा गया कि लगभग 100 हेक्टेयर से ज्यादा जो पूरी जमीन है उसको फिलहाल यहाँ पर कब्जा मुक्त यहाँ पर कराया गया है। और आप यहाँ पर जो देखेंगे तो देखिए लगातार बुलडोजर इस पूरी जो मजार है अवैध रूप से बनी हुई उस पर यहाँ पर आपको जो है गरजता हुआ जो है नजर आएगा तस्वीरों में, और इस पूरे बुलडोजर एक्शन के जरिए जो भी अवैध निर्माण है उसको यहाँ पर जो ध्वस्त किया जा रहा है। SP KK बिश्नोई की तरफ से बिल्कुल साफ किया गया कि 4 थानों की पुलिस फोर्स को यहाँ पर तैनात किया गया है सुरक्षा के दृष्टिकोण से, लेकिन फिलहाल इस पूरे अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जा रहा है। और अगर बात की जाए तो देखिए पिछले बीते साल से लगातार संभल जिले में अलग अलग इलाकों में बुलडोजर एक्शन होता हुआ नजर आता है, जहाँ कभी किसी मस्जिद को ध्वस्त किया जाता है, कभी किसी धार्मिक स्थल को ध्वस्त किया जाता है, लेकिन
0: पुलिस का संदेश बहुत साफ है, करेंगे तो फिर कार्रवाई भी की जाएगी। शुक्रिया अभिनव आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर आ रही है गाजियाबाद से, जहां पर जुमे की नमाज को लेकर पुलिस अलर्ट पर है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ये गाजियाबाद से आ रही है, जुमे की नमाज को लेकर पुलिस अलर्ट पर है। खोड़ा की बात की जा रही है, खोड़ा के नवजीत विहार निवासी युवक सूर्य चौहान की हत्या के बाद से इलाके में तनाव का माहौल अभी भी बना हुआ है। हिंदू संगठनों में भी युवक की बेरहमी से हत्या को लेकर रोष और नाराजगी है। अब गाजियाबाद पुलिस अलर्ट पर है, क्योंकि आज शुक्रवार है, जुमे की नमाज है और आज ही के दिन मस्जिद में एकत्र होकर मुस्लिम समाज के लोग नमाज करते हैं। लेकिन आज ये देखिए सुरक्षा के क्या खास इंतजाम किए गए हैं, चप्पे चप्पे पर हर जगह आपको पुलिस नजर आएगी, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी यहां पर हैं, भारी संख्या में पुलिस बल यहां पर तैनात किया गया है कि कहीं कोई असामाजिक तत्व माहौल न बिगाड़ सके। और अगर ऐसा कुछ किया जाता है तो उसके बाद फिर पुलिस यहां पर तैयार है तत्पर कार्रवाई के लिए। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और आपको याद होगा सूर्या चौहान की हत्या के बाद बेरहमी से जब हत्या की गई थी तो पूरे देश में उसका विरोध हुआ था, और उसके बाद गाजियाबाद में कार्रवाई भी की गई, बुलडोजर कार्रवाई हुई, असद जो आरोपित था उसको ढेर किया गया पुलिस की तरफ से एनकाउंटर में, और उसी के बाद से यहां माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। अब शुक्रवार जब जुमे की नमाज हमने देखा है, इससे पहले भी कई बार जुमे की नमाज शुक्रवार पर कई जगह बेहद संवेदनशील हालात रहे हैं, तो ऐसे में पुलिस की तरफ से पूरी गंभीरता बरती जा रही है, पुलिस को तैनात किया गया है, अधिकारी तैनात किए गए हैं और अधिकारी नजर बनाए हुए हैं इस पूरे मामले पर। और लोगों से अपील भी की जा रही है कि शांति के साथ अपनी नमाज करें, अपने घरों पर जाएं, भीड़ इकट्ठा ना करें, और अगर यहां पर भीड़ इकट्ठा होती है तो पुलिस तुरंत उस भीड़ को तितर बितर करती है। एक जगह जब ज्यादा लोग खड़े होते हैं तो पुलिस साफ मना करती है। गाजियाबाद में जुमे की नमाज को लेकर ये अलर्ट की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हिमांशु हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, इस वक्त क्या तस्वीरें हैं जुमे की नमाज को लेकर, क्या सावधानी बरती जा रही है?
12: देखिए पूरे इलाके में जो पूरा खोड़ा का इलाका है वहां पर पुलिस पहले से ही तैनात थी, और दूसरी तरफ लगातार जो संपर्क में रहे जो अमन कमेटी के लोग हैं उन लोगों से बातचीत थी और बेहद शांति थे, क्योंकि एक बजे से टाइम था अलग अलग मस्जिदों का, हिमांशु अलग अलग टाइम था, तो एक बजे से करीब 12:45 से जो पहली अजान है वो शुरू हुई थी दोपहर के वक्त की नमाज की, और वो होती रही, लोग पहुंचते रहे और बेहद शांति से पूरे इलाके में पूरे खोड़ा में जुमे की नमाज अदा की गई, कहीं से किसी तरीके की कोई खबर नहीं आई। हालांकि सुरक्षा के पूरे इलाके में कड़े इंतजाम किए गए थे, जो लोग गड़बड़ी कर सकते थे, जो हंगामा कर सकते थे उन लोगों को दूर रखा गया था और कुछ लोगों को एहतियातन डिटेन भी किया गया था। जी हिमांशु,
0: शुक्रिया हिमांशु आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए भी। तो फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
13: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
14: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
15: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included. Oh yeah! So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
16: This is the sound of Jack buzz cutting his way to a small fortune. To Jack, every time he cuts his own hair, that's $50 right in his pocket. If Jack sees DIY buzz cuts as a saving strategy, Wells Fargo is right behind him. And with their mobile app, tracking his savings is easy.
17: Oh, ouch.
16: However you make money work, we can work with that.
18: Mobile carrier's message and data rates may apply. Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
17: Diehard music fan? Quello Concerts brings you thousands of full-length concert films and behind-the-scenes music documentaries. From today's icons to yesterday's legends, we have it all. Quello Concerts by Stingray. Now available for free on Pluto TV. Stream now, pay never.
18: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो।
2: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
3: AU सोच बदलो और बैंक भी।
4: हनी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
5: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
6: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी। लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा। इन एसोसिएशन विद
8: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Akajay, the number one Korean skincare brand, now in India.
9: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included. Oh, yeah. So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
10: Tune in's How To. A brief look at all the special functions.

पोतियाई से ज्यादा विधायकों के साथ छोड़ने के बाद टीएमसी सांसदों में भी टूट की अटकलें। चौतरफा मुसीबत के बाद आज ममता बनर्जी ने बुलाई पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक। त्रिपुरा के बॉर्डर इलाके पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, कहा नहीं होने देंगे घुसपैठ और डेमोग्राफी चेंज। त्रिपुरा हो, बंगाल या बिहार, घुसपैठियों के खिलाफ अटल है सरकार। देश के कई इलाकों में आग ने मचाया तांडव। इंदौर की इमारत में आग, छत से हुआ रेस्क्यू। नोएडा की सोसाइटी में लपटों से हाहाकार। भिवाड़ी इंडस्ट्रियल एरिया की दो फैक्ट्रियां जली। पटना में कोचिंग चलाने वाले फैजल खान के खिलाफ आर्म्स एक्ट में दर्ज हुआ केस। गिरफ्तारी के डर से काले शीशे की गाड़ी में निकले, क्लास में छात्रों को भड़काने का भी आरोप। मोहाली में पूर्व बॉयफ्रेंड ने चाकू गोद कर की लड़की की हत्या। जालंधर की रहने वाली थी डिंपल। दिल्ली यूनिवर्सिटी की असिस्टेंट प्रोफेसर का मर्डर। गाजियाबाद में मिली लड़की की लाश।

और न्यूज रूम लाइव के इस सेगमेंट में हम किन खबरों के बारे में बात करेंगे, सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे जालंधर की। जालंधर में किस तरह से एक सनकी आशिक अपनी एक मित्र की, जो उसके ऑफिस में काम करती थी, उसकी हत्या कर देता है। लव ब्रेकअप के बाद दफ्तर में मर्डर होता है। चाकू से कुछ ही सेकंड में कई बार वार किए जाते हैं, ताबड़तोड़ वार किए जाते हैं। खून से लथपथ महिला वहीं दम तोड़ देती है लड़की। दूसरी बड़ी खबर की बात करेंगे कि डीयू की प्रोफेसर, कमरे में शव मिला लेकिन कमरा तो बंद था, तो अब इस मामले में क्या जानकारी है, ये भी हम आपको बताएंगे। दोनों खबरों की डिटेल में हम आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं यूपी के पूर्वांचल एक्सप्रेस पर आपको ले चलते हैं टॉप 25 में। पहली खबर अयोध्या से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 54वें जन्मदिन पर समर्थक जोरदार जश्न मना रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने मंदिर में पूजा अर्चना कर केक काटा और योगी के पोस्टर की आरती उतारी। झांसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर महिलाओं ने बुलडोजर वाला केक काट कर सीएम योगी का जन्मदिन मनाया। महिलाओं ने उनके फिर से मुख्यमंत्री बनने की कामना की। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर शहर भर में बधाई पोस्टर लगाए गए। दारुल सफा विधायक निवास में सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ। वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी के जन्मदिन पर समर्थकों ने विशेष आयोजन किया। इस दौरान 54 किलो के लड्डू केक के साथ जश्न मनाया गया और 54 पौधे लगाए गए। अलीगढ़ में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन मनाया, लड्डू और समोसे बांटकर बधाई दी। जिला मुख्यालय के सामने जुटे लोगों ने सीएम योगी की लंबी उम्र की दुआ मांगी। लखनऊ में एक पेड़ मां का नाम अभियान में शामिल हुए सीएम योगी। कुकरेल वन क्षेत्र में किया पौधारोपण, पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। लखनऊ में कार्यक्रम के दौरान बोले मुख्यमंत्री, हर घर नल योजना को आगे बढ़ाया तो कुछ लोग कोटी तक चोरी कर ले गए। गोरखपुर में सड़क परियोजना के दौरान मिट्टी में दबकर मजदूर की मौत पर अखिलेश यादव ने जताया दुख। बोले अच्छा नहीं है संवेदनाओं का मर जाना, मिट्टी में इंसानियत का दब जाना। संबल में

सरकारी जमीन पर बनी मजार पर चल रहा बुलडोजर, प्रशासन की कार्रवाई, सरकारी अभिलेखों में भूमि दर्ज, जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप। गाजियाबाद के होटल में युवती की संदिग्ध मौत, कमरे में फंदे से लटका मिला शव। होटल में युवक के साथ ठहरी थी युवती, पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। प्रयागराज में फायर विभाग ने होटलों का इंस्पेक्शन अभियान चलाया, सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर कई होटल्स को नोटिस जारी करने की तैयारी। वहीं सहारनपुर में होटलों की फायर सेफ्टी जांच के दौरान गंभीर लापरवाही सामने आई, कई होटलों में फायर अलार्म बंद और सुरक्षा उपकरण एक्सपायर्ड पाए गए, जिससे एनओसी पर कार्रवाई की तलवार लटक गई है। अलीगढ़ में होटल जांच के दौरान बड़ा खुलासा, सकरी गलियों में कई होटल बिना फायर एनओसी के अवैध रूप से चलाए जा रहे हैं। नोएडा के सेक्टर 75 स्थित आईवी काउंटी सोसाइटी में आग लगने से हड़कंप, मौके पर दमकल की कई गाड़ियां पहुंची, आग पर काबू पाया, मुख्यमंत्री योगी ने फौरन संज्ञान लिया। नोएडा के सेक्टर 52 स्थित शताब्दी विहार के एक पीजी में आग लगने से हड़कंप, नीचे रेस्टोरेंट और ऊपर पीजी होने के कारण आग तेजी से फैल गई। ग्रेटर नोएडा के यमुना एक्सप्रेसवे पर चलती जगुआर कार में आग लग गई, जिससे पूरी गाड़ी जल गई, गनीमत रही कि चालक ने वक्त रहते बाहर निकलकर जान बचा ली। लखनऊ में दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया, मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुरादाबाद में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर के बेटे पर गोली चलाने के आरोपी को गिरफ्तार किया, मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी, अस्पताल में भर्ती। गाजीपुर में एनकाउंटर, मारे गए 1,00,000 का इनामी कमलेश बिंद का शव, पहुंचते इलाके में बवाल, शव देखकर परिजन महिलाएं और ग्रामीण आक्रोशित, पुलिस से झड़प। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने गाजीपुर एनकाउंटर को लेकर बीजेपी सरकार पर हमला बोला, उन्होंने कहा कि हत्याओं और एनकाउंटर से यूपी की छवि नकारात्मक बनी है। बिजनौर में तेज रफ्तार प्राइवेट बस डिवाइडर से टकराई, एक युवक की मौत, 35 यात्री घायल, गागर नदी पुल के पास हादसा हुआ, बस में सवार यात्रियों में चीख पुकार मची। बागपत में पिज्जा डिलीवरी में देरी पर रईस जादो का बवाल, रेस्टोरेंट पर की ताबड़तोड़ फायरिंग, पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, वारदात में इस्तेमाल स्कॉर्पियो और अवैध हथियार बरामद। गाजियाबाद के खोड़ा में जुम्मे की नमाज को देखते हुए पुलिस अलर्ट पर है और भारी पुलिस बल तैनात किया गया है, सूर्य चौहान की हत्या के बाद इलाके में तनाव चलते सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। मेरठ के एक मेले में कार्यक्रम के दौरान हंगामा, बाउंसर और साउंड ऑपरेटर पक्ष में विवाद, स्टेज पर धक्का मुक्की और मारपीट से अफरा तफरी। गोरखपुर के निजी अस्पताल में प्रसूदा की मौत के बाद हंगामा, पुलिस कार्रवाई का वीडियो वायरल, परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया, भीड़ को हटाने के दौरान मृतका के पति की पिटाई का दावा करता वीडियो चर्चा में।

और अब सबसे पहले बात यहां पर करेंगे मोहाली की। तीन शहर और तीन वारदात, लेकिन सबसे पहले बात मोहाली की, जहां पर एक ऐसी वारदात हुई जिसने सभी को सन्न कर दिया। एक 30 साल की लड़की, वो ऑफिस में जाती है रोजमर्रा की तरह, अपने काम करती है, कुर्सी पर बैठती है, लेकिन तभी उसका एक्स यानी उसका पूर्व बॉयफ्रेंड आता है, चाकू निकालता है और ताबड़तोड़ हमले करता है और महज 30 सेकंड में 30 से 35 वार कर देता है चाकू से और वहीं उसकी जान ले लेता है। सहकर्मी थे, बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस वक्त उस सिरफिरे आशिक पर खून सवार था और युवती की हत्या कर देता है।

0: मोहाली की इन तस्वीरों को जिसने भी देखा दहल गया। चाकू से ताबड़तोड़ हमले, देखने वालों की रूह कांप जाए। पहले लड़की को मारा, फिर उसी चाकू से खुद पर हमले किए। इन तस्वीरों को हम सीधे नहीं दिखा सकते क्योंकि ये घटना झकझोर देने वाली है और सीसीटीवी का ये फुटेज विचलित करने वाला। ऑफिस के अंदर लड़की अपनी सीट पर काम कर रही होती है। उसे क्या पता था कि ये उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है। तभी पीछे से एक शख्स आता है और ताबड़तोड़ चाकू से हमला करने लगता है।
1: बेसिकली 25 से 30 बार चाकू का उसने वार किया, गर्दन पे भी है और पीछे हार्ट पे भी है। सो यू कैन से सीरियस, उसने मतलब 25 से 30 वार किए थे उसने, और अपने भी उसने ऐसे ही अपने आप को भी स्टैब किया है। अपने गले में भी उसके हैं, हार्ट में भी उसने अपने स्टैब किया अपने आप को भी। और ये सारी जो हैं, जो आप इनके वूंड्स बारे दैट डॉक्टर कैन टेल यू बेटर।
2: पेरेंट्स के, दोनों साइड के पेरेंट्स का क्या
1: कहना है? मतलब जो लड़के के पेरेंट्स हैं दे आर इन यूएस, दे विल बी कमिंग, पर अभी जो लड़की के पेरेंट्स हैं उनका हमने बयान लिखकर अभी पोस्टमार्टम करवाएंगे आज।
0: हमलावर ने एक के बाद एक करीब 30 बार लड़की पर चाकू मारे और ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि लड़की को संभलने तक का मौका नहीं मिला। पूरे दफ्तर में चीख पुकार मच जाती है, साथ में काम करने वाले बाकी लोगों के होश फाकता हो जाते हैं। उधर लड़की लहूलुहान हो गई। बीच बचाव के लिए दफ्तर के बाकी लोग आगे आते जरूर हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि इस दरिंदे को रोक सकें। खून से लथपथ लड़की कुर्सी से नीचे गिर गई, लेकिन हमलावर तब भी नहीं रुका। दफ्तर के ही कुछ लोग सीढ़ियों से भागकर ऊपर आए, लेकिन कोई भी शख्स लड़की की सहायता नहीं कर सका। हमलावर को डराने के लिए एक शख्स ने चाकू जरूर निकाला, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। वो दरिंदा चाकू से ताबड़तोड़ हमला करता रहा, तब तक मारता रहा जब तक उसकी मौत नहीं हो गई।
2: मोहाली में फेज 11 में स्थित एसआरपी यूएस लॉजिस्टिक्स एक कंपनी में तब सनसनी फैल गई जब एक महिला एम्प्लॉई का कत्ल कर दिया गया। लड़की को, जो कि डिंपल आइडेंटिफाई की जा रही है, उसे 25 से 30 बार उसी के पूर्व प्रेमी ने चाकू से भून डाला। आपको बता दें ये वो कंपनी है, दूसरी मंजिल पे वो काम करती थी और उसके पीछे हरजिंदर एलियस हरी मान है जो उसका पूर्व प्रेमी है। दोनों एक दूसरे को 2-3 साल से जानते थे, दोनों ही पटियाला के रहने वाले थे और उसी बीच में दोनों के बीच में कुछ खटास रही जिसके बाद से वो दोनों अलग हो गए थे।
1: हम वी विल बी डूइंग दिस इन्वेस्टिगेशन, सारे एंगल्स में इन्वेस्टिगेशन देखनी होती है भी कहां से ही हैज बोरोड द वो नाइफ, जो चाकू है कहां से लेकर आए हैं, कैसे वो सारा, दिस इज ऑल पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। वी विल जब इसकी अरेस्ट डालेंगे तो वी विल लेट यू नो एवरीथिंग।
0: भरे दफ्तर में सबके सामने एक सनकी ने डिंपल को मार डाला, लेकिन किसी ने हत्यारे पर जवाबी हमला करने की हिम्मत नहीं दिखाई। अगर ऑफिस के सब लोग मिलकर हरजिंदर पर हमला कर देते तो क्या डिंपल की जान बच नहीं जाती? क्या जब हरजिंदर सीढ़ी के पास वाले गेट पर डिंपल को चाकू गोद रहा था तब उसे रोका नहीं जा सकता था? सवाल इस दफ्तर के मालिकान से भी है कि जब खूनी हरजिंदर भरे दफ्तर में डिंपल पर हमला कर रहा था तब ऑफिस के सिक्योरिटी गार्ड और एडमिन के लोग कहां थे? हरजिंदर चाकू लेकर दफ्तर में घुसा कैसे? कमलजीत संधु, मोहाली, आज तक।
3: और देखिए इसी दौरान एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, वो भी आपको बता दें। पश्चिम बंगाल की राजनीति से जुड़ी है बड़ी खबर है और ये बताया जा रहा है कि टीएमसी के 23 सांसद जो बाकी टीएमसी है उनके संपर्क में और बड़ी टूट आने वाले हफ्ते में देखने को मिल सकती है तृणमूल कांग्रेस में। पश्चिम बंगाल की राजनीति से जुड़ी बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बागी गुट के संपर्क में है 23 टीएमसी के सांसद। अब आप ऐसे समझिए कि कुल अगर सांसदों की संख्या देखी जाए तृणमूल कांग्रेस की तो वो 29 है। अब 29 में से 23 बागी टीएमसी गुट के संपर्क में है, तो यानी ये मान के चलिए कि टीएमसी के लोकसभा सांसदों में टूट के आसार हैं। और ये बताया जा रहा है कि अगले सप्ताह की शुरुआत में, आज शुक्रवार, फिर शनि, रवि, सोमवार को कुछ बहुत बड़ी खबर आ सकती है। अनुपम मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुपम, क्या होने वाला है?
4: जी देखिए, ये जो बागी विधायक हैं, लगभग 58 लोगों का जो गुट है, जो खबर अभी आ रही है सोर्सेज के हिसाब से कि लोकसभा के जो सांसद हैं टीएमसी के, लगभग 28 सांसद हैं, उनमें से लगभग 23 सांसद इन बागी गुट के साथ संपर्क में हैं। और ये भी खबर आ रही है कि अगले सप्ताह के हो सकता है मंगल या बुधवार तक टीएमसी के जो सांसद दल है, संसदीय दल है, उसमें फूट पड़ सकती है, उसमें ब्रेक हो सकता है। कुछ बागी सांसद इस जो बागी जो विधायकों का दल है, इनके समर्थक में आ सकता है, ऐसी आशंका, ऐसी संभावना जताई जा रही है। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि ये जो 23 सांसद फिलहाल बागी गुट के संपर्क में हैं, इनमें से कितने टूटते हैं, लेकिन अभी तक जो खबर आ रही है कि ये 23 सांसद फिलहाल जो बागी गुट है उसके साथ संपर्क में है।
3: लेकिन अनुपम, एक बात बताइए, आज शाम को तो पार्टी के बड़े पदाधिकारियों के साथ बैठक करने जा रही है ममता बनर्जी, उससे पहले अगर इस तरह की खबरें आती हैं तो क्या मायने निकाले?
4: ये देखिए, सबसे पहले बड़ी बात है कि जब विधायकों में फूट पड़ी, विधायक अलग हो गए, एक अलग गुट बना लिया, तभी से ये आसार नजर आ रहे थे कि जो सांसद हैं वो भी अलग थलग होने की कोशिश में हैं और कईयों के सुर भी बदले हुए हैं। खासतौर पर काकुली घोष दस्तीदार की बात करें या शुकेंदु शेखर की हम बात करें तो इनके सुर बदले हुए हैं। ऐसे में 2-3 सांसद तो एक तरह से मुखर हो ही रहे हैं, लेकिन अब जो अंदर की खबर आ रही है कि इतने सांसद बागी गुटों के साथ संपर्क में है, तो ये ममता बनर्जी के लिए एक और बड़ा झटका है, क्योंकि जो विधायक है 80 विधायक में से 60 विधायक पहले ही एक अपना अलग गुट बना चुके हैं, और ऐसे में अब जब सांसद टूट जाएंगे तो ये बहुत बड़ी दिक्कत ममता बनर्जी के लिए हो सकती है। पार्टी में टूट का जो संकेत सामने आ रहा है, जो तोड़ने की बात सामने आ रही है।
3: अभिनव, क्या ये माना जाए, मतलब जो आपके सूत्रों से खबर आ रही है कि आज शुक्रवार, शनिवार, रविवार यानी अगले हफ्ते की जो शुरुआत होगी तो उसमें स्थिति बहुत स्पष्ट हो जाएगी, इफ एंड बट नहीं रहेगा?
4: देखिए, काफी स्पष्ट तो हो जाएगी। 23 सांसदों में से कितने सांसद इस तरफ आना चाह रहे हैं, जो अभी तक हमारे पास जो सूचना आ रही है कि मंगल बुधवार तक ये स्पष्ट हो जाएगा कि कुछ सांसद जो बातचीत कर रहे हैं बागी गुट के साथ, उनमें से कितने सांसद इस तरफ आने की कोशिश में हैं या इस तरफ आ सकते हैं। हो सकता है कि नाम भी सामने आने शुरू हो जाए, तो इसकी संभावना जरूर नजर आ रही है।
3: अच्छा अनुपम, आप हमारे साथ बने रहिए, एक और बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से जुड़ी, वो भी बता देते हैं। 4 बजे एक इमरजेंसी मीटिंग होने वाली है, आपातकालीन बैठक जिसे कहा जाता है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, पश्चिम बंगाल की राजनीति से जुड़ी हुई एक के बाद एक बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि हलचल इतनी बढ़ गई है पश्चिम बंगाल में कि ममता बनर्जी भी नहीं समझ पा रही होंगी कि अब करना क्या है। लेकिन अभी ये बताया जा रहा है इमरजेंसी मीटिंग है। अनुपम हमारे सहयोगी लगातार बने हुए। अनुपम, इस मीटिंग से जुड़ी क्या जानकारी, क्या हो सकता है इस बैठक में?
4: ये देखिए, ममता बनर्जी लगातार मीटिंग्स कर रही हैं, क्योंकि जो परिस्थिति इस वक्त, जो हालात इस वक्त हैं, वो काफी नाजुक हालात हैं, खासतौर पर ममता बनर्जी के लिए। पार्टी को किस तरह से बचाया जाए, ये जो बागी गुट हो चुका है उससे किस तरह से मतलब लोहा लिया जाए, तो ऐसे में उनके जो लॉयलिस्ट हैं, इससे पहले भी हमने देखा कि मदन मित्र कहें या कल्याण बनर्जी कहें या धूला सेन कहें, इन सबके साथ ममता बनर्जी 2 दिन पहले भी बैठी थी, मीटिंग की थी ममता बनर्जी ने, तो आज भी अपने कोर उसके साथ ममता बनर्जी मीटिंग कर रही हैं, और ऐसे में चर्चा होगी रणनीति कर कि आखिर क्या रणनीति अपनाया जाए, किस तरह से आगे बढ़ा जाए। तो ये काफी महत्वपूर्ण मीटिंग है इस वक्त, देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से ममता बनर्जी की रणनीति तय करती हैं, आगे बढ़ती हैं, क्या कोर्ट का सहारा लिया जाएगा, मामला कोर्ट में जाएगा या किस तरीके से हैंडल किया जाएगा, इन सब पर आज चर्चा होनी है।
3: लेकिन अनुपम, आपने पश्चिम बंगाल की राजनीति को बहुत अच्छे से समझा है, आपने देखा है कि कितना कुछ बदलाव हुआ है खासतौर पर चुनाव के बाद से, तो क्या ये जो शनिवार रविवार है इसमें भी कोई बड़ी हलचल हो सकती है या फिर ममता बनर्जी की तरफ से कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है, क्या इसकी उम्मीद है, और अगर है तो वो क्या हो सकता है?
4: ये देखिए, घटनाक्रम जिस तेजी से बदल रहे हैं, आप देखिए ना, 4 मई को असेंबली का रिजल्ट आया और लगभग एक महीने तक का भी समय नहीं लगा कि पार्टी 2 हिस्सों में बंटने के कगार पर आ गई। 60 विधायकों ने अपना अलग एक गुट बना लिया, तो ऐसे में घटनाक्रम जिस तेजी से बदल रहे हैं, अब सांसद भी बागी गुट के साथ बातचीत कर रहे हैं, तो ऐसे में कभी भी कुछ हो सकता है, दिन तारीख तय करके कुछ नहीं होगा, बहुत जल्दी ही होना है जो होगा, तो ऐसे में बड़ी संभावना यह है कि कभी भी कुछ हो सकता है, और शनिवार रविवार को हो या सोम मंगलवार को हो, ये कहना अभी बड़ा मुश्किल है, लेकिन घटनाक्रम जिस तेजी से बदल रहे हैं, बहुत ज्यादा दिन नहीं लगेंगे कि स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि आखिर किस ओर पानी ज्यादा है, किस ओर तेल ज्यादा है, ममता बनर्जी का पल्ला भारी है या बागी गुट का पल्ला भारी है, किस ओर ऊंट करवट ले रहा है, क्या नया तृणमूल दल गठित होने जा रहा है या क्या होने जा रहा है, ये सब कुछ दिनों में स्पष्ट हो जाएगा।
3: बीजेपी भी अभी उसी पोजिशन में होगी कि तेल देखो, तेल की धार देखो, यानी अभी इंतजार करो, देखते हैं क्या होता है। बीजेपी की तरफ से अभी तक क्या रिएक्शन है, क्योंकि पूरे घटनाक्रम पर पश्चिम बंगाल में जब इतना कुछ हो रहा है तो नजर तो उनकी भी होगी।
4: जी देखिए, बीजेपी की ओर से वेट एंड वॉच पॉलिसी फिलहाल अपनाई गई है। बीजेपी इस पर अब ज्यादा कुछ नहीं बोल रही है। हालांकि अभी जो स्थिति है वो बीजेपी के लिए अनुकूल परिस्थिति है। स्थिति है कि एक पार्टी जो पिछले 15 सालों तक सत्ता में रही, ममता बनर्जी जैसा धाकड़ नेता बंगाल की धरती पर पिछले 15 सालों से उन्होंने राज किया एक तरह से, और वो अचानक से ताश के पत्तों की तरह बिखरने की ओर जा रहा है। तो ऐसे में ये राजनीतिक दृष्टिकोण से बीजेपी के लिए काफी अनुकूल परिस्थिति है। ऑपोजिशन एक तरह से खत्म होने जा रहा है, तो ऐसे में बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं। फिलहाल तो वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब भीतर में क्या गेम चल रहा है ये तो बड़ा मुश्किल है बताना, लेकिन ऊपरी तौर पर
3: अनुपम, मैं चाहता हूं, क्योंकि आप बहुत अच्छे से पश्चिम बंगाल की राजनीति को समझते हैं, तो मैं चाहता हूं कि एक बार जो नए दर्शक हमारे साथ जुड़े उनको आप बता सकें कि आखिर ऐसा क्या हो गया रिजल्ट आने के बाद, या फिर ये पहले से कुछ नाराजगी भरी हुई थी कि इतनी टूट, सांसद हो, विधायक हो, हर जगह कुछ बागी दिखाई दे रहे हैं।
4: ये देखिए, बहुत सारी वजह है, बहुत सारे रीजंस है। सबसे बड़ी बात है कि ये जो हार हुई है ये अप्रत्याशित हार हुई है। टीएमसी के ज्यादातर लोगों ने सोचा भी नहीं था कि इस तरह से तृणमूल कांग्रेस अचानक से हार जाएगी और बीजेपी को इतनी संख्या में सीटें मिलेंगी, और उसके बाद लगातार जो इतने सालों तक का करप्शन हुआ वो अचानक से उजागर होने लगा, और टीएमसी के नेता और सांसद या कहिए जो एमएलए हैं उनको कटघरे में खड़ा,
3: मतलब चलिए कि आने वाला वक्त बहुत कीमती है पश्चिम बंगाल के लिए, ममता बनर्जी के लिए। अब क्या कदम उठाती है मीटिंग के बाद देखेंगे। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक।
5: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach, in association with
6: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.
7: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 meg internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included. So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
8: Turn your TV into a portal to serenity with Zen Life by Stingray. Enjoy wellness videos for yoga, sleep, meditation, and more, tailored to every moment of your day. Zen Life by Stingray, now available for free on Pluto TV. Stream now. Pay never.
9: ग्यारह मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
10: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है, 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
11: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, एनटीए को पता नहीं।
9: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
12: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
10: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
9: जहां खबर वहां खबरदार,
5: इन एसोसिएशन विद मोंटी कार्लो, इट्स द वे यू मेक मी फील। E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: दिल्ली के मालवीय नगर में आग लगती है, 21 लोगों की जान चली जाती है। उसके बाद से आग लगने की कई खबरें सामने आई। उत्तर प्रदेश के नोएडा में दो जगहों पर आग लगने की खबर आई। सेक्टर 52 में भी एक जगह पर आग लग जाती है और सेक्टर 75 में एक बहुमंजिला इमारत में आग लग जाती है। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई करने को कहा गया था, जल्द से जल्द मदद पहुंचाने को कहा गया था और उसके बाद से आग बुझाने की प्रयास किए गए और आग को बुझा लिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन भी जगह जगह चल रहा है।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
1: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।
2: Accoje, the number one Korean skincare brand, now in India.

0: Diehard music fan? Qwello Concerts brings you thousands of full-length concert films and behind-the-scenes music documentaries. From today's icons to yesterday's legends, we have it all. Qwello Concerts by Stingray. Now available for free on Pluto TV. Stream now, pay never.
1: ममता दीदी बंगाल की सत्ता से क्या बाहर हुई, अब पार्टी बचाना बड़ी चुनौती बन गई है। सरकार बदले एक महीना भी नहीं हुआ कि विधायक बागी हो गए, अब बात सांसदों तक जा पहुंची है। टीएमसी के राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रॉय ने दावा किया है कि विधायक दल के बाद अब पार्टी के संसदीय दल में भी दरार पड़ सकती है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में टीएमसी सांसदों के बीच असंतोष बढ़ रहा है।
2: चंद दिनों में लोकसभा में वो बंगाल वाला सिचुएशन रिपीट होने जा रहा है। चंद दिनों में, ज्यादा दिन आपको इंतजार नहीं करने पड़ेगा।
1: ममता को झटके पर झटके लग रहे हैं। टीएमसी से बागी नेता ऋतव्रत के निलंबन को स्पीकर ने गलत ठहराया है।
3: लोकतंत्र को बचाने के लिए और लोकतंत्र की सफलता के लिए एक रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन का जरूरत है, लेकिन दुर्भाग्य है इस समय पश्चिम बंगाल का, जो तृणमूल का झंडा लगाने के लिए कोई लोग बचा नहीं है, इसीलिए आपस में लड़ रहे हैं।
1: इस बीच बंगाल में बाबरी मस्जिद बनवा रहे हुमायूं कबीर ने ममता बनर्जी को बड़ा ऑफर दिया है।
4: ममता बनर्जी को मेरे को खास बोलेगी तो मैं ही ममता बनर्जी को ये सीट छोड़ने के लिए तैयार हूँ।
1: हुमायूं कबीर ने आरोप लगाया टीएमसी को खत्म करने के लिए बीजेपी प्लान बी पर काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
5: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। In association with
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो, Akajay, the number one Korean skincare brand now in India.

विधायकों के बाद अब सांसद भी ममता को दे सकते हैं बड़ा झटका। सूत्रों के मुताबिक बागी गुट के संपर्क में करीब 23 सांसद। चौतरफा मुसीबत के बाद आज ममता बनर्जी ने बुलाई पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक।

घुसपैठियों के खिलाफ अटल है सरकार। देश के कई इलाकों में आग ने मचाया तांडव। इंदौर की इमारत में लगी आग, छत से हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन। नोएडा की सोसाइटी में भी लपटों से हाहाकार। भिवाड़ी इंडस्ट्रियल एरिया में भी दो फैक्ट्रियां जली। पटना में कोचिंग चलाने वाले फैजल खान के खिलाफ आर्म्स एक्ट में दर्ज हुआ केस। गिरफ्तारी के डर से काले शीशों की गाड़ी में निकले, क्लास में छात्रों को भड़काने का भी आरोप।

0: संभल में बुलडोजर एक्शन शुरू। खडेश्वर महादेव मंदिर के पास सरकारी जमीन पर बनी मजार ध्वस्त। बादुगांव में अवैध कब्जे पर कार्रवाई, सरकारी भूमि पर बनी मजार पर चला बुलडोजर। डीएम एसपी की मौजूदगी में संभल की बड़ी कार्रवाई, मजार को किया गया ध्वस्त। सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज पूसर भूमि पर अवैध निर्माण किया गया, संभल में प्रशासन का सख्त एक्शन। संभल में बुलडोजर कार्रवाई से हड़कंप, मंदिर के पास बनी थी मजार हटाई गई। पटना में कोचिंग संचालक खान सर पर बड़ा एक्शन, फैजल खान पर आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज, जांच जारी की गई है। वायरल फायरिंग वीडियो के बाद पुलिस की कार्रवाई तेज हुई है, दो गार्ड गिरफ्तार किए गए, हथियार एफएसएल जांच के लिए भेज दिए गए। भारत बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ जवानों को संबोधित करते हुए अमित शाह का बड़ा बयान, लंकामुरा बॉर्डर आउटपोस्ट पर अमित शाह का संदेश, त्रिपुरा फ्रंटियर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण। त्रिपुरा में बोले गृहमंत्री अमित शाह, कहा कि देश के किसी भी हिस्से में जनसंख्या का स्वरूप बदलने नहीं दिया जाएगा और यह सरकार का पक्का संकल्प है। राज्यसभा चुनावों के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे आज दाखिल करेंगे अपना नामांकन, कांग्रेस की सूची में पवन खेड़ा का भी नाम शामिल। राज्यसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने 11 उम्मीदवार उतारे हैं, 6 राज्यों में नामांकन की तेजी तैयार की जा रही है। मध्य प्रदेश में तरुण चुग और राजस्थान से सतीश पूनिया को बीजेपी ने दिया राज्यसभा का टिकट। लखनऊ के कार्यक्रम के दौरान बोले मुख्यमंत्री, हर घर जल योजना को आगे बढ़ाएंगे तो कुछ लोग टूटी तक चोरी कर ले गए। अखिलेश यादव पर सीएम योगी का निशाना, ट्वीट कर लिखा लत से गलत की ओर और हार की हताशा और बयान को बताया निकृष्ट। टीएमसी ने टूट की अटकलें तेज हो गई, 2/3 विधायकों के बाद अब सांसदों पर भी सस्पेंस बरकरार है। ममता बैनर्जी ने बुलाई है वरिष्ठ नेताओं की बैठक, पार्टी में बढ़ते संकट पर मंथन किया जाएगा। बंगाल जीत के बाद बदले सियासी समीकरण, परिसीमन विधेयक को फिर से संसद में लाने की तैयारी। मानसून सत्र में आ सकता है परिसीमन बिल, टीएमसी में टूट और इंडिया गठबंधन के फूट का फायदा मिलने की चर्चा की जा रही है। ममता बैनर्जी के खिलाफ कोलकाता में अखिल भारतीय हिंदू महासभा की ओर से पुलिस में शिकायत, राष्ट्रद्रोह का मामला दर्ज किया जा रहा है। बीजेपी ने स्वीकार किया है कि अन्नामलाई का इस्तीफा, नितिन नवीन ने दी है मंजूरी। तमिलनाडु बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई ने छोड़ी है पार्टी की प्राथमिक सदस्यता। रामलिंगा रेड्डी के इस्तीफे पर भी डीके शिव कुमार ने बयान दिया, कहा है कि मामला बातचीत से सुलझाया जाएगा। डीके शिव कुमार बोले कि चिंता की बात नहीं है, कैबिनेट में हम करीबी दोस्त हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में राहुल गांधी ने वीडियो कॉल कर माता पिता से बातचीत किया, जल्द से जल्द न्याय दिलाने का आश्वासन भी दिया है। गाजियाबाद के खोड़ा में भारी पुलिस बल तैनात किया गया, संवेदनशील माहौल के बीच सुरक्षा बल बढ़ा दिए गए। जुम्मे के दिन खोड़ा में कड़ी निगरानी भी की जा रही है, युवक की हत्या के बाद इलाके में पुलिस का सख्त पहरा है। सूर्या चौहान हत्याकांड के बाद खोड़ा में तनाव बरकरार है, जुम्मे की नमाज को लेकर पुलिस हाई अलर्ट पर है। डीजीपी राजीव कृष्ण का बड़ा संदेश, धर्मांतरण और अपराध पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। आज तक से बोले डीजीपी राजीव कृष्ण, कहा कि कानून तोड़ने वालों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। इंदौर के इलेक्ट्रॉनिक वाहन शोरूम में भीषण आग लग गई, कई वाहन जलकर खाक हो गए। शोरूम में लगी आग से मची अफरा तफरी, ऊपरी मंजिल पर फंसे लोगों को सुरक्षित निकाला गया। दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू, बड़ा नुकसान हुआ। आनंद में चरोतर में गैस की मुख्य पाइपलाइन में भीषण आग लग गई है, दमकल की मुस्तैदी के बाद बड़ा हादसा टला है। आधी रात गैस पाइपलाइन में लगी आग से मचा हड़कंप, सप्लाई बंद कर आग पर पाया गया काबू। राजस्थान के भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में भीषण अग्निकांड, ट्रांसफार्मर ब्लास्ट में ऑयल में लगी आग ने लिया विकराल रूप। ऑयल में लगी आग के पास की दो फैक्ट्रियों की भी चपेट में आ गई, इलाके में मचा हड़कंप। भीषण आग में 5 कर्मचारी झुलसे, राहत और बचाव कार्य में जुटी है टीमें। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू, बड़ा नुकसान हुआ की आशंका जताई जा रही है। नोएडा सेक्टर 75 की आईवीवाई काउंटी सोसाइटी में 12वीं मंजिल पर फ्लैट में भीषण आग लग गई। फ्लैट में आग लगने की सूचना पर फायर विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची, आग पर पाया गया काबू। नोएडा सेक्टर 75 हाईराइज में आग पर सीएम योगी ने लिया है संज्ञान, राहत और बचाव कार्य तेज करने के लिए निर्देश भी दिए हैं। नोएडा सेक्टर 52 में भी पीजी में आग से लगने से हड़कंप मच गया, फायर विभाग मौके पर मौजूद। बिल्डिंग में नीचे रेस्टोरेंट और ऊपर पीजी, आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। मालवीय नगर अग्निकांड पर सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा एक्शन, आज बुलाई गई है हाई लेवल मीटिंग, अधिकारियों की तय होगी जवाबदेही। बैठक में दिल्ली पुलिस, राजस्व विभाग, नगर निगम, अग्निशमन विभाग और दिल्ली जल बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी भी रहेंगे मौजूद। दिल्ली सरकार ने अवैध होटलों, गेस्ट हाउस, अनधिकृत निर्माण और अग्नि सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के खिलाफ एक सख्त अभियान चलाने की घोषणा की है। दिल्ली अग्निकांड के हादसे वाले होटल के पास एमसीडी का सिर्फ टी एंड स्नैक्स का लाइसेंस था, 31 मार्च को खत्म हो चुका था यह वैधता। 4 दिन के पुलिस रिमांड पर मुख्य आरोपी और होटल मालिक लवकेश, होटल के मैनेजर और अकाउंटेंट की तलाश जारी है। विश्व पर्यावरण दिवस पर लखनऊ के सीएम योगी ने किया पौधारोपण, लोगों को किया पर्यावरण संरक्षण का संदेश। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने एक पौधा मां के नाम अभियान की शुरुआत की है, पर्यावरण को लेकर लोगों को किया जागरूक। चमोली की प्रसिद्ध फूलों की घाटी में विश्व पर्यावरण दिवस पर पर्यटकों ने किया पौधारोपण, एक पेड़ मां के नाम का दिया संदेश। दिल्ली के प्रदूषण को कम करने के लिए काम आएंगे राजस्थान के अलवर में तैयार पौधे, नर्सरियों में लगाए गए 24,00,000 पौधे। वायुसेना की 94वीं एनिवर्सरी को लेकर शानदार तैयारी हो गई, हिंडन एयरफोर्स स्टेशन में होगा समारोह। हरियाणा के सोनीपत में तेज हवाओं और बारिश से गिरा तापमान, गर्मी से जूझ रहे लोगों को इस बदलाव से मिली है राहत। जयपुर में सूरज की तपिश से लोगों की मिली है राहत, आसमान में परसे बादल, मौसम सुहाना हो गया। देहरादून में भी हुई बारिश, उत्तराखंड के पहाड़ों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी हल्की ठंड का एहसास किया गया। भोपाल में भी बरसे हैं बादल, बढ़ती गर्मी के बीच लोगों ने लिया राहत की सांस। पहाड़ों पर भी राहत की फुहार हुई है, शिमला में छूब में बरसे हैं बादल, मौसम का हुआ सुहाना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 54वें जन्म दिवस के समर्थनों ने जोरदार जश्न मनाया, कार्यकर्ताओं ने मंदिर में पूजा अर्चना भी की और केक भी काटा, योगी के पोस्टर की आरती भी उतारी गई। गुजरात के सूरत में दिन दहाड़े हुई लूट की वारदात सीसीटीवी कैद हो गई है, फुटेज के शख्स को फोन पर बात करता हुआ और आता हुआ देखा गया, बाइक के पीछे की सीट पर रखी रुपए से भारी भरकम थैली उठाकर फरार हो जाता है। ग्रेटर नोएडा में रफ्तार का कहर देखने को मिला है, सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि गाड़ियों में भीषण टक्कर हुई, जिसके बाद कार नियंत्रण खो बैठी और सड़क किनारे बैठे लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। राजस्थान के जयपुर में बुजुर्ग महिला के साथ दिन दहाड़े लूट की सनसनीखेज वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है, फुटेज में एक बदमाश महिला को सड़क पर धक्का देकर गिराता है और उसके सोने के गहने छीनने के बाद फरार हो जाता है। यूपी के प्रयागराज में सीसीटीवी फुटेज में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराती हुई दिखाई दे रही है, इस कार हादसे में समाजवादी पार्टी के लोहिया वाहिनी के प्रदेश सचिव की मौत हो गई है। मोहाली में बेहद दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, 7 काम करने वाली कर्मचारी ने महिला कर्मचारी को बेरहमी से चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी, खुद भी सुसाइड का प्रयास किया। प्रारंभिक जांच में प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया, ब्रेकअप के बाद डिप्रेशन में था आरोपी। गाजीपुर में पुलिस टीम पर पथराव किया गया। एनकाउंटर में मारे गए कमलेश का शव देखकर बौखला गए ग्रामीण। मामले में 5 पुलिस वाले घायल हुए। पुलिस ने इस मामले में करीब 70 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मध्य प्रदेश के खरगोन में मामूली विवाद को लेकर कार चालक ने चढ़ाई कार। पुलिस ने कार की जब्त की है। कार चालक की तलाश जारी है। सहारनपुर में भी होटल की फायर पोल खोली गई है। सुरक्षा इंतजाम फेल हुए। एनओसी पर तलवार। पटना के फुलवारी में शरीफ में निगरानी विभाग की छापेमारी। राजस्व कर्मचारी और दलाल 45,000 रुपए घूस लेते गिरफ्तार किए गए। अलीगढ़ में होटलों की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। संकरी गलियों में चल रहे कई होटल बिना फायर एनओसी के संचालित किए जा रहे हैं। सूरत में फायर ब्रिगेड की विशेष जांच की गई है। 57 होटल में रेस्टोरेंट में फायर सेफ्टी का अभाव है। कनेक्शन बंद करने के निर्देश दिए गए। गोपालगंज में पुल की दरार का वीडियो बनाते समय युवक का मोबाइल गिरा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आरा में पुलिस का नशे के सौदागरों पर बड़ा प्रहार। 1.5 किलो ब्राउन शुगर बरामद किया गया। राजस्थान के बाड़मेर में पानी के टैंक में शव बरामद किया गया। पत्नी और उसके साथियों पर हत्या का शक है। पुलिस जांच में जुट गई है। दिल्ली के सफदरजंग इंक्लेव के हुमायूंपुर बेसमेंट में फर्नीचर गोदाम में आग लग गई। दमकल की 5 गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। कोई हताहत नहीं हुआ है। मुंडियाखेड़ा हत्याकांड में बड़ा फैसला। एडीजी कोर्ट ने 3 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। गोरखपुर में दर्दनाक हादसा। डिवाइडर पर सो रहे मजदूरों पर मिट्टी से लदा डंपर पर पलट गया। मौके पर मौत हो गई। कल से शुरू होगा भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच। न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादवेंद्र सिंह के स्टेडियम में खेला जाएगा भारत का यह पहला टेस्ट। भारत और अफगानिस्तान का मुकाबला आईसीसी वर्ल्ड कप टेस्ट चैंपियनशिप का नहीं हुआ हिस्सा। इस मैच में भारत से 2 खिलाड़ियों के डेब्यू की संभावना है। भारतीय बल्लेबाजी क्रम में नंबर 3 के लिए साई सुदर्शन और देवदत्त के बीच मुकाबला होगा। हालिया फॉर्म को देखते हुए पेडिकल का खेलना लगभग तय है। वेदर में हर्ष दुबे के राजस्थान के मानव सुधार को मिल सकता है टेस्ट में डेब्यू का मौका। बुमराह को आराम। सिराज करेंगे पेस अटैक लीड। अफगानिस्तान की टीम की कमान हशमतुल्ला शाहिदी संभालेंगे। टेस्ट के बाद 3 वनडे खेले जाएंगे। एक बार फिर से पर्दे पर छाने वाले हैं डेविड धवन का 90 का जादू। आज सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म है जवानी तो इश्क होना है। एक बार फिर से दर्शकों का मनोरंजन करते हुए सबकी चहेती मिश्रा फैमिली। आज सोनी लिव पर रिलीज होगी वेब सीरीज गुल्लक का नया सीजन। एक्ट्रेस करिश्मा कपूर अब एक पुलिस अफसर के रोल में नजर आएंगी। आज Zee5 पर रिलीज होगी ब्राउन। दृश्यम 3 के बाद एक्टर मोहनलाल अब OTT पर दिखाएंगे अपना जादू। आज Zee5 पर रिलीज हो रही है उनकी फिल्म पैट्रियट। आज Amazon प्राइम पर स्ट्रीम होगी वेब सीरीज द पिरामिड स्कीम जिसमें मुख्य भूमिका में परमवीर सिंह चीमा, रणबीर शौरी और शेखर सुमन होंगे। ईरान पर अमेरिकी इसराइल हमले के करीब 100 दिन पूरे हो चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान से संवर्धित यूरेनियम लेने के लिए नहीं है समझौते की जरूरत। गुरुवार को दक्षिणी लेबनान पर इजरायली हवाई हमलों के बाद उठाया दिखा धुएं का गुब्बार। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के लेबनान मामले पर बात आगे बढ़ने के दावे को के बावजूद हमला किया गया। लेबनान और ईरान की इजरायल से हमले रोकने की मांग की गई है। कहा है कि लेबनान से इजरायली सेना की पूर्ण वापसी हो। अरब लीग की यूएन सुरक्षा परिषद में अपील की गई है। फिलिस्तीन क्षेत्र के इजरायल में विलय अभियान पर रोक की मांग की गई है। पुतिन बोले हैं कि यूक्रेन से बातचीत के लिए तैयार है। अमेरिकी सैन्य ठिकानों में चर्चा संभव है। ट्रंप से हुई बैठक की योजना के तहत समझौते की बात की गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यूक्रेन और रूसी नेताओं के बीच बैठक की योजना को बताया पहली बड़ी पहल। कहा है कि मैंने समझौता कराने में की दी थी सलाह। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में यूक्रेन को मदद जारी रखने और रूस पर नए प्रतिबंध के पक्ष में प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत अमेरिका के बीच जल्द कारोबार समझौते की जताई उम्मीद, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया अपना अच्छा दोस्त। उत्तर कोरिया ने नए परमाणु केंद्रों की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई है। किम जोंग उन ने हथियारों का जखीरा बढ़ाने का आह्वान किया है। मैक्सिको के गैस प्लांट में धमाके के बाद पास के 2000 लोगों को निकाला गया। 4 एलपीजी टैंकरों में धमाके से भड़की थी बड़ी आग।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माह।
0: और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक विधायकों के बाद अब सांसद भी ममता बैनर्जी का साथ छोड़ सकते हैं। ममता बैनर्जी को बड़ा झटका दे सकते हैं। अभिषेक बैनर्जी से पार्टी के कई सांसद नाराज बताए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि नाराज सांसद का एक अलग गुट बना सकते हैं और सूत्रों के अनुसार एक दर्जन से अधिक सांसद अलग ग्रुप बनाने के पक्ष में है। सूत्रों के अनुसार पार्टी के एक बेहद वरिष्ठ सांसद इस संभावित बगावत की अगुवाई कर रहे हैं। टीएमसी के लोकसभा में टीएमसी के करीब 29 सांसद हैं। दल बदल कानून के तहत अलग समूह को मान्यता मिलने के लिए कम से कम 22 सांसदों का समर्थन आवश्यक होगा। राज्यसभा में टीएमसी के 13 सांसद हैं और वहां अलग समूह को मान्यता के लिए करीब 9 सांसदों का समर्थन होना चाहिए। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुपम मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ गए। अनुपम, देखिए पहले सरकार से हाथ धोना पड़ा और उसके बाद ममता बैनर्जी के लिए दिक्कतें लगातार सामने इस बात को लेकर आ रही है कि अब पार्टी से भी हाथ धोना पड़ सकता है, और खास तौर पर तब जब ममता बैनर्जी एक तरीके से बिल्कुल साइलेंट थी, एकदम चुप बैठी हुई है।
2: जी देखिए, ममता बनर्जी के लिए मुश्किलें और चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ हमने देखा कि 80 जो विधायक थे उनमें से 60 विधायकों ने अपना अलग गुट बना लिया। अब ये जो 60 विधायक हैं ये अब कोशिश कर रहे हैं कि जो लोकसभा के सांसद हैं उनमें से ज़्यादातर लोगों को अपनी ओर खींचा जाए। तो अभी तक जो खबर आ रही है लगभग 23 ऐसे सांसद हैं जो इस बागी गुट के साथ संपर्क में हैं। अब इसमें देखने वाली बात ये होगी कि इन 23 सांसदों में, चूँकि जो रेबल कैंप है, जो बागी कैंप है, ये दावा कर रहा है कि अगले सप्ताह तक ये जो सांसदों से बातचीत चल रही है इनमें से बहुत सारे उनके साथ आ जाएंगे। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि 23 सांसदों में कितने सांसद इनके साथ आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, ये स्पष्ट होगा अगले सप्ताह, यानी मंगल बुधवार तक जो कहा जा रहा है कि स्पष्ट हो सकता है कि इनमें 23 में से कितने सांसद इधर आ रहे हैं। चूंकि 20 से ज्यादा सांसदों की जरूरत है एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत, ऐसे में अगर 20 से कम होते हैं तब फिर मुश्किल होगी बागी कैंप को। इसलिए बागी कैंप की फिलहाल कोशिश कि ज्यादा से ज्यादा सांसदों को अपनी ओर खींचा जाए। इसीलिए लगातार जो बागी कैंप है उनके साथ जो सांसद हैं टीएमसी के वो संपर्क में बने हुए हैं और हो सकता है एक सप्ताह के भीतर ये जो बातचीत सामने आ रही है इसमें से कुछ मतलब आगे आए, कुछ नाम आगे आ सकते हैं, ये भी कहा जा रहा है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनुपम मिश्रा हमारे सहयोगी। देखिए बता रहे थे कि करीबन एक हफ्ते का वक्त लगेगा और बातचीत का दौर दोनों तरफ से जारी है। इसी बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दे कि पश्चिम बंगाल से एक और बड़ा अपडेट मिल रहा है कि पार्टी में बगावत के बीच ममता बैनर्जी ने आज शाम पार्टी की एक बड़ी बैठक बुलाई है। इसमें पार्टी के बड़े पदाधिकारियों को बुलाया गया है। ममता बैनर्जी ने अपने आवास पर शाम 4 बजे नेताओं की एक बड़ी बैठक बुलाई है। देखने की बात यह होगी कि इस बैठक में कितने उपस्थित रहते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी कई बार विधायकों की मीटिंग बुलाई गई और विधायक उसमें नदारद रहे। और देखिए अब ये बात कही जाने लगी है कि आखिरकार बंगाल में अब क्या होगा, क्या ममता बैनर्जी को अभी और झटके सहने पड़ेंगे। पहले विधायकों ने ममता बैनर्जी का साथ छोड़ा और अब सांसदों की तरफ से भी असंतोष के सुर बढ़ते जा रहे हैं।
3: टीएमसी में कहां तक बगावत, ममता के साथ सिर्फ 20 विधायक, विधायकों ने साथ छोड़ा, मुंह मोड़ा, सांसद भी बगावत की राह पर जाएंगे।
4: मानसिक तौर पे आप पार्टी के साथ नहीं हैं?
5: मानसिक तौर पे मैं पार्टी के साथ नहीं हूँ।
4: और ऐसे ही मानसिक तौर पे और कितने सांसद हैं तृणमूल में जो पार्टी के साथ नहीं हैं? आपको क्या पता है?
5: देखिए मैं तो किसी का मानसिक स्थिति को रीड नहीं कर पाता।
4: नहीं, बातचीत तो होती होगी।
5: बातचीत होती है, मेरे सुनने में जो है मैंने आपको बता दिया ना कि लोकसभा में ज्यादा मेंबर, मैंने मेजोरिटी मेंबर थे।
3: टीएमसी के सीनियर नेताओं में से एक सुखेंदु शेखर रॉय ने जो कुछ कहा वो ममता बनर्जी के लिए गहराते संकट के संकेत हैं। तृणमूल के सांसदों में असंतोष और बेचैनी साफ साफ देखी जा सकती है और अगर ममता नाकाम रही तो ये संकट तृणमूल को तिनका तिनका कर सकता है।
4: लोकसभा में आपके 29 सांसद है, आपको क्या सुनाई दे रहा है, कितने सांसद होंगे फिर?
5: 29 नहीं, 28 है।
4: 28
5: बसीरहाट आपका पेंडिंग है कलकत्ता हाई कोर्ट में,
4: क्या होने वाला है, आपको क्या सुनाई दे रहा है, आपको पार्टी के अंदर अभी भी है?
5: मेजोरिटी चला जाएगा,
4: ये एक बड़ा बयान है आप दे रहे हैं कि मेजोरिटी ही चला जाएगा।
3: तृणमूल के सांसदों पर एनडीए की नजर है। संसद के मॉनसून सत्र में सरकार परिसीमन बिल लाने की तैयारी में है और खबर है कि तृणमूल के सांसदों से संपर्क साधा गया है, यानी विधायकों के बाद ममता बनर्जी के सामने अपने सांसदों को टूटने से बचाने की बड़ी चुनौती है। क्या ममता बनर्जी इस सुनामी का सामना कर पाएंगी? उनके लिए एक अच्छी खबर ये है कि बागियों में से पहली आवाज उनके समर्थन में आई है।
6: ममता बनर्जी हम लोग का सर्वोच्च नेतृत्व है, ये बात बोला एवं ममता बनर्जी का छवि घर में रहेगा, सबका घर में रहेगा। ममता बनर्जी के फोटो का लेके मीटिंग मीटिंग करेगा, ये सब बात हुआ, इसलिए हम सही किया।
7: आने वाले दिनों में कि ममता बनर्जी फिर चीफ एडवाइजर नहीं रहे, आप इसको मानते हैं?
6: नहीं, हम लोग चीफ एडवाइजर मानते हैं।
3: ममता के लिए ऐसी कई आवाजों की जरूरत होगी, तभी वो इस संकट से उबर पाएंगे। इंद्रजीत कुंडू के साथ अनुपम मिश्र, कोलकाता आज तक।
8: पांच राज्यों के चुनावी नतीजों का असर देश की राजनीति पर भी देखने लगा है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की हार और तमिलनाडु में डीएमके के पराजय ने एनडीए के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोल दिए। मोदी सरकार ने नतीजे आते ही परिसीमन विधेयक दोबारा पेश करने की तैयारियां शुरू कर दी है। उम्मीद की जा रही है कि टीएमसी के बागी सांसद और डीएमके इस बार बिल का समर्थन करेंगे, इसलिए दोनों से संपर्क भी साधा जा रहा है।

0: बंगाल से आती बगावत की इस आवाज को बड़े गौर से सुना जा रहा है। दिल्ली टकटकी लगाए बंगाल की ओर देख रही है। तृणमूल कांग्रेस की आपदा में उसे अवसर नजर आ रहा है। कैसे, ये समझ लीजिए। 17 अप्रैल को लोकसभा में 131वां संविधान संशोधन बिल गिर गया। ये बिल महिला आरक्षण कानून में संशोधन के लिए लाया गया था। एनडीए बिल के पक्ष में 2/3 वोट हासिल करने में नाकाम रहा। बिल के पक्ष में 298 वोट मिले जबकि इसके विरोध में 230। मोदी सरकार को उपस्थित 528 सांसदों में से 352 सांसदों का समर्थन चाहिए था। लेकिन ये तब की बात थी, विपक्ष एकजुट था। संख्या बल में सरकार पर भारी पड़ा था। विपक्षी एकता के सामने सरकार को हार का मुंह देखना पड़ा। हालांकि पीएम मोदी ने तब कहा था कि आज हम हारे जरूर हैं, लेकिन इरादा नहीं टाला है।
1: कल हमारे पास संख्या बल नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हार गए। हमारा आत्मबल अजय है। हमारा प्रयास रुकेगा नहीं, हमारा प्रयास थमेगा नहीं। हमारे पास आगे भी और मौके आएंगे।
0: जिस मौके की बात,
2: चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से परो। इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
5: नीड बेटर इंटरनेट? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included. So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
6: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
7: TuneIn is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
8: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: In association with
3: cool stylish fans, enhance home decor with beautiful fans.
4: Punjab National Bank, भरोसे का प्रतीक।
5: समर कूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। समर कूल कूलर, लाइफ बनाए वंडरफुल।
2: हिंट, बड़े आराम से। विमल बोलो जुबां केसरी।
6: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी। वेयर आर यू?

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Accuje, the number one Korean skincare brand, now in India.
2: Listening to your favorite station just got even easier with Google Assistant and TuneIn. Your go-to station is just a voice away. Just tell Google to play your favorite station on TuneIn and you

विधायकों के बाद आप सांसद भी ममता को दे सकते हैं झटका। करीब एक दर्जन सांसदों के बागी गुट के संपर्क में होने की खबर। ममता ने बुलाई पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक। त्रिपुरा के बॉर्डर इलाके में पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, कहा नहीं होने देंगे घुसपैठ और डेमोग्राफिक चेंज। त्रिपुरा हो, बंगाल या फिर बिहार, घुसपैठियों के खिलाफ अटल है सरकार। देश के कई इलाकों में आग ने मचाया तांडव। इंदौर की इमारत में लगी आग, छत से हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन। नोएडा की सोसाइटी में भी आग की लपटों से हाहाकार। भिवाड़ी इंडस्ट्रियल एरिया में भी दो फैक्ट्रियां जलकर खाक। पटना में कोचिंग चलाने वाले फैजल खान के खिलाफ आर्म्स एक्ट में दर्ज हुआ केस। गिरफ्तारी के डर से काले शीशे की गाड़ी में निकले क्लास में छात्रों को भड़काने का भी आरोप। पटियाला में आईटीआई पास बेरोजगारों पर चली पंजाब पुलिस की लाठी। पावर काम मुख्यालय का कई दिनों से कर रहे थे प्रदर्शन।

0: नमस्कार, खबरें असरदार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित चौधरी। और चलिए खबरें असरदार में सबसे पहले बात करते हैं मालवीय नगर को लेकर, जहां पर बुलडोजर एक्शन की शुरुआत की गई। आपको सीधे लिए चलते हैं, आपको बताते हैं कि दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड के बाद अब प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। दिल्ली के मालवीय नगर में बुलडोजर एक्शन जारी। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुशांत भी हमारे साथ जुड़ गए, उनका सीधा रुख करते हैं। सुशांत, इस समय की तस्वीरें अगर आप हमें दिखा सके, और कौन से इलाकों में कहां कहां पर ये बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है?
1: देखिए, मैं आपको बता दूं कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से जो ज्वाइंट कमेटी का गठन किया गया था, जिसमें डीएम, एसडीएम और एमसीडी दिल्ली पुलिस के साथ, अब इस वक्त दिल्ली के अलग अलग इलाके, चाहे वो मालवीय नगर हो, हौजरानी हो, साकेत हो, एमजी रोड हो, वहां पर बुलडोजर एक्शन के साथ साथ सीलिंग एक्शन भी जो है वो देखने को मिल रहा है। ये देखिए, ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट के नाम पर जो इनलीगल तरीके से होटल चल रहे थे, उस पर अब एमसीडी की तरफ से सीलिंग जो है वो यहाँ पर की जा रही है। सीलिंग की टीम, एमसीडी की टीम जो है वो यहाँ पर पहुंची है, और तमाम यहाँ पर हौजरानी इलाके में जब ये मालवीय नगर में हादसा हुआ था जिसमें 21 लोगों की जान गई थी, और आप देखिए किस तरीके से यह तमाम होटल जो है वो बने हुए हैं, इन सब पर इस वक्त जो है वो ज्वाइंट कमेटी की जो टीम जो दिल्ली सरकार की तरफ से गठित की गई थी, उसका एक्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। एक के बाद एक 18 ऐसी यूनिट्स हैं जहां पर इस वक्त एक्शन जो है वो देखने को मिल रहा है, खास तौर पर मालवीय नगर हौजरानी इलाके के अंदर। आप ये तस्वीरें देखिए कि एक और होटल की तरफ जाती हुई एमसीडी की टीम, क्योंकि यहाँ पर पहले बिजली जो है वो काटी जाती है, जो इलीगल तरीके से बिजली चल रही होती है, उसके बाद एक एक यूनिट को सर्च किया जाता है कि कहाँ पर किस तरीके के होटल के अंदर कुछ लोग तो नहीं रह रहे, उसके बाद यहाँ पर एक्शन जो है वो होता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए कि यहाँ पे आगे की तरफ मैं कहूंगा कि यहाँ पर जो टीम है वो आगे की तरफ जाती हुई दूसरा होटल, क्योंकि अब तक 2 से 3 होटल्स को जो है वो यहाँ पर अब सील कर दिया गया, जो कि इनलीगल तरीके से चल रहे थे, जिनके पास किसी प्रकार

0: कार की परमिशन नहीं थी, सिर्फ बेड एंड ब्रेकफास्ट की परमिशन थी, लेकिन उसमें भी 25-25, 30-30 कमरे जो है वो चल रहे थे। अब उस पर एक्शन जो है वो देखने को मिल रहा है और यहाँ पर एक के बाद एक जो टीमें हैं वो यहाँ पर पहुंची हैं। जो जो यहाँ पर होटल्स या इस तरीके से गेस्ट हाउस चल रहे थे होटल की आड़ में, उन पर अब एक्शन जो है वो दिल्ली की सरकार की तरफ से जो है वो किया जा रहा है। देखिए एक और होटल की ये तस्वीरें, सुमित मैं दिखाऊंगा कि यहाँ पर पहुंची है जो टीम, अब इस पर भी एक एक्शन जो है वो होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि पूरे हौजरानी इलाके में कई ऐसी यूनिट्स चल रही हैं जहाँ पर इस तरीके से अवैध रूप से जो होटल्स हैं वो चल रहे थे। अब अंदर गलियों में देखिए किस तरीके से इन तंग गलियों के अंदर यहाँ पर ये जो टीम है वो पहुंची है इन इलाकों के अंदर, जहाँ पर अब ये सीलिंग अभियान जो है वो किया जाएगा। मैं अंदर की तस्वीरें कहूंगा कैमरामैन से वो दिखाएं कि देखिए कि कितनी तंग गलियां हैं ये अंधेरों के अंदर, यहाँ पर लोग जो है वो रहते हैं और यहाँ पर पास में इलाज कराने के लिए आते हैं, लेकिन अब इन तीन तंग गलियों के अंदर जो टीमें हैं वो पहुंच करके सीलिंग अभियान जो है वो कर रही है। दिल्ली सरकार के गृह मंत्री आशीष सूद ने भी ये बताया था कि तकरीबन 18 ऐसी यूनिट है जहाँ पर इस तरीके से अवैध रूप से जो है गेस्ट हाउस और होटल जो है वो चल रहे हैं। देखिए कि यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी को सील करने के लिए जो टीम है पहुंची है, यहाँ पर बिजली जो है वो काट दी गई है। जो यहाँ पर होटल चला रहे थे, मालिक थे, वो गायब हो चुके थे, अपनी यूनिट्स को छोड़ छोड़ करके चले गए थे।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन अब यहाँ पर अब देखिए दिल्ली पुलिस और एमसीडी की टीम, डीएम और एसडीएम की टीम जो है, जो ज्वाइंट कमेटी गठित की गई थी, वो अब टीमें जो है वो पहुंची हैं।
1: एक और बात सुशांत, क्या ये कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ सीलिंग को लेकर ही की जा रही है या फिर कोई बुलडोजर एक्शन भी लिया जा रहा है?
0: देखिए बुलडोजर एक्शन भी है, जो अतिक्रमण है और जो साकेत के बिल्डिंग
1: सुशांत आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, अगर आप उस इलाके से थोड़ा सा आगे निकले और आप हमें तस्वीरें भी दिखाएं और बताएं कि आखिरकार इस समय वहां पर क्या ताजा हालात हैं, क्योंकि आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है।
0: तस्वीरें जो है वो दिखाएं, क्योंकि अंदर नेटवर्क की थोड़ी सी दिक्कत।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन इस पूरे इलाके में अगर आप देखेंगे तो कैसे इन तंग गलियों के अंदर जो होटल्स हैं वो चल रहे थे, उन सब पर एक एक करके पूरी इस ज्वाइंट कमेटी की टीम की तरफ से जो है वो यहाँ पर अगर देखा जाए तो सबसे पहले उसकी इंस्पेक्शन की गई, जांच की गई कि क्या क्या नियमों की अनदेखी है, उन सब पर अब एक्शन जो है वो हो रहा है। और तमाम वो इलाके जहाँ पर अवैध निर्माण चल रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले शुरुआत जो होती है अवैध निर्माण से होती है, पहले निर्माण होता है उसके बाद अलग अलग तरीके से उसके बिल्डिंग बायलॉज को जो है वो चेंज किया जाता है और उसके बाद तमाम इन बायलॉज को चेंज करने के बाद, नियमों की अनदेखी होने के बाद जब इस तरीके के हादसे होते हैं तो एक एक की जिम्मेदारी जो है वो तय होती है। और यही वजह है कि चाहे वो एमसीडी हो, चाहे वो फायर डिपार्टमेंट हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, सबकी जिम्मेदारी बनती थी।
1: बिल्कुल।
0: अगर वो इस जिम्मेदारी को अपनाते तो शायद ये हादसे नहीं होते। अब लेकिन जब ये हादसे हुए तो अब सरकार जो है वो कहीं ना कहीं एक्शन में जो है वो नजर आ रही, ताकि आगे इस तरीके की कार्रवाई जो है वो ना हो। लेकिन देखना ये होगा, क्योंकि जब ये सीलिंग यूनिट हुई है वो आगे कब तक ये पूरा अभियान जो है वो चलता है, क्योंकि यहाँ पर तकरीबन 18 ऐसी यूनिट्स हैं जिनको यहाँ पर सील करना है पूरी हौजरानी इलाके में। और ये जो पूरी टीम है आपको इस वक्त जो है वो नजर आएगी अलग अलग लोकेशंस पर जाती हुई, ताकि ये सीलिंग अभियान जो है वो बड़े स्तर पे किया जाए, क्योंकि दिल्ली के तीन बड़े इलाके, एमजी रोड जो कि बड़ा एरिया है वहां पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है, मालवीय नगर जहां पे ये पूरा हादसा हुआ था, जहां पे लोगों ने अतिक्रमण कर रखे थे, अपने घरों को आगे तक बढ़ा रखा था, उनके फुटपाथ को जो है वो डेमोलिशन किया जा रहा है। उसके अलावा साकेत मेट्रो स्टेशन के पास जो है बड़ा एक्शन जो है वो इस वक्त देखने को मिल रहा है, और जहाँ पर बुलडोजर और बड़ी बड़ी सीलिंग जो है वो यहाँ पर बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स है, हजार हजार यूनिट की जो यूनिट खड़ी कर दी गई, एमसीडी के जो जेई होते हैं उनकी मिली भगत से, पुलिस की मिली भगत से, उन सब पर इस वक्त जो है वो एक्शन जो है वो हो रहा है, क्योंकि सीएम का साफ तौर पर यही कहना है दिल्ली सरकार का कि अब इस तरीके की कार्रवाई, इस तरीके की घटनाएं जो है वो ना हो, उस पर अंकुश लगाने के लिए सख्त कदम जो है वो उठाने पड़ेंगे। और यही वजह है जिसको लेकर के दिल्ली सचिवालय में इस वक्त मुख्यमंत्री की तरफ से अहम बैठक जो है वो की जा रही है। उस बैठक में DDA, MCD, NDMC, दिल्ली पुलिस, दिल्ली फायर और MCD।
1: बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सुशांत, बात यही कही जाती है कि देखिए ऐसा नहीं है कि प्रशासन को ऐसे अवैध निर्माणों का बारे में जानकारी ना हो, आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि थोड़ी देर में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता एक बड़ी बैठक करने वाली। आपको जिस तरीके से सुशांत भी बता रहे थे कि देखिए किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है अलग अलग इलाकों में, खासतौर पर एमजी रोड हो या फिर आप हौजरानी का इलाका हो, साकेत, मालवीय नगर, इन इलाकों के अंदर अवैध निर्माण के साथ साथ सीलिंग का काम भी किया जा रहा है। यानी वो निर्माण, वो इलाके, यानी वो होटल या फिर वो गेस्ट हाउस जिन्होंने एनओसीज नहीं ले रखी उनके खिलाफ भी लगातार सीलिंग का काम किया जा रहा है। और देखिए अब दिल्ली के बाद रुख करते हैं पटना से आ रही बड़ी खबर का। दरअसल पटना में दो बड़े कोचिंग संस्थानों के बीच चल रही वर्चस्व की लड़ाई ने एक नया मोड़ ले लिया है। खान ग्लोबल स्टडीज के संचालक फैजल खान उर्फ खान सर की मुश्किलें बढ़ गई। सूत्रों के मुताबिक वायरल फायरिंग वीडियो की जांच के बाद पटना पुलिस ने यह पाया कि फैजल खान के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस ने फैजल खान के दो सिक्योरिटी गार्ड्स को भी एक दिन पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। उनसे पूछताछ के बाद अब फैजल खान के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी शशि भूषण इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हैं। शशि, देखिए लगातार ये कहा गया कि फैजल खान के ऊपर, उनके इंस्टीट्यूट के ऊपर फायरिंग हुई, लेकिन अब जब परतें खुल रही हैं तो ऐसा लग रहा है कि मामला कुछ और ही निकलकर सामने आ रहा है।
2: बिल्कुल सुमित, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मामला कुछ और निकल करके सामने आ। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि अपने राइवल यानी दूसरे कोचिंग संस्थान के संचालक रोशन आनंद को कहीं ना कहीं ट्रैप करने की कोशिश कर रहे थे फैसल खान, लेकिन वो खुद अपने ही बुने जाल में लगता है फंस गए हैं। और पुलिस के सामने जो सबसे बड़ा बयान है वो उनके दो सिक्योरिटी गार्ड्स ने दिया है। दोनों उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, नोएडा की एजेंसी सिक्योरिटी एजेंसी से दोनों को हायर किया था। कुल 17 सिक्योरिटी गार्ड्स फैजल खान ने हायर किए अपने सिक्योरिटी के लिए। और इन दोनों गार्ड्स ने अपनी गिरफ्तारी के बाद कल पुलिस के सामने जो बयान दिया है उसमें कहा है कि जो खान सर हैं फैजल खान, उन्होंने जो मारपीट की घटना हुई 2 जून की रात, उसके बाद खुद कहा कि देख क्या रहे हो, गोली चलाओ, जो होगा मैं देख लूंगा। मतलब ये कि जो खान सर हैं जिनको लगातार कह सकते हैं कि इस वक्त सुर्खियों में है, उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। 3 लोगों का नाम एफआईआर में है, इसके अलावा अन्य लोगों का भी है, अज्ञात लोगों का, जिसमें 2 गार्ड्स जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और एक फैजल खान का भी नाम है। तो अब गिरफ्तारी कंफर्म मानिए कि गिरफ्तारी उनकी होगी, वो अपने बचाव के लिए हो सकता है कानूनी राय ले रहे हों या फिर कोई और ये कर रहे हों। लेकिन इस वक्त तो जो सबसे अहम अपडेट है वो सुमित कि पटना आईजी जो हैं उनके कार्यालय में पटना के एसएसपी और तमाम आला अधिकारी बैठक कर रहे हैं और उसके बाद हो सकता है कि फैजल खान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस आगे मूव करे।
1: बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शशि आपका। देखिए शशि, हमारे सहयोगी बता रहे थे कि देखिए फैजल खान की गिरफ्तारी यानी उर्फ खान सर की गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है, इसको लेकर एक बड़ी मीटिंग भी चल रही है। और ये इसलिए होगी क्योंकि उनके ऊपर आर्म्स एक्ट के मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और कभी भी उनकी बड़ी गिरफ्तारी हो सकती है। उनके वकील भी लगातार उनकी जमानत के लिए लगातार इधर उधर घूम रहे हैं। बताया जा रहा है कि देखिए फैजल खान यानी खान सर की गिरफ्तारी कभी भी की जा सकती है और उनके कोचिंग सेंटर के वकील भी लगातार उनको गिरफ्तारी से बचाने के लिए, आप देख सकते हैं उनके कोचिंग सेंटर पर आपको उनकी तस्वीरें नजर आ जाएंगी। और देखिए इन्हीं खबरों के बीच फैजल खान का एक नया वीडियो भी सामने आया जिसमें वो छात्रों को फायरिंग का वीडियो दिखाकर भड़काते हुए दिख रहे हैं। पुलिस ने वीडियो की तफ्तीश भी शुरू कर दी है और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि आखिरकार कैसे अब नए वीडियो के बाद ही फैजल खान के काम पर या फिर उनके ऊपर ही सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। और जिस तरीके से हमारे सहयोगी भी बता रहे थे कि इन्हीं बेसिस के ऊपर, इन्हीं साक्ष्यों के बाद अब ये माना जा रहा है कि फैजल खान की भी गिरफ्तारी की जा सकती है।

और देखिए इसी बीच फैजल खान का भड़काऊ वीडियो वायरल होने के बाद पटना पुलिस ने छात्रों के लिए एक एडवाइजरी भी जारी किया है। पटना पुलिस ने खान ग्लोबल स्टडीज के दो गार्डों की गिरफ्तारी के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि छात्र किसी के बहकावे में ना आए, और इसको लेकर पुलिस ने एक एडवाइजरी भी जारी कर दिया, यानी छात्रों से कहा गया है कि वो किसी के भड़कावे में या किसी के बहकावे में ना आए।

0: अब आपको बताते हैं कि आखिर कैसे कोचिंग सेंटर के बाहर हुई फायरिंग के बाद फैजल खान की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं।
1: ज्ञानबिंदु कोचिंग के निदेशक रोशन आनंद की रिहाई की मांग को लेकर ज्ञानबिंदु कोचिंग के अलग अलग सेंटर के छात्र सड़कों पर उतर गए हैं। पोस्टर बैनर के साथ छात्रों ने प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। ये छात्र रोशन आनंद की रिहाई की मांग कर रहे हैं। दरअसल रोशन आनंद को फैजल खान उर्फ खान सर के कोचिंग सेंटर पर हमले के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन एक नया वीडियो वायरल होने के बाद इस केस में ट्विस्ट आ गया है और रोशन आनंद पर आरोप लगाने वाले फैजल खान खुद आरोपों से घिर गए हैं। नए वीडियो में फैजल खान का गार्ड गोली चलाता नजर आ रहा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस ने फैजल खान के दो गार्ड को गिरफ्तार कर लिया। फायरिंग वाली शाम का वो बयान देखिए जिसमें फैजल खान अपनी कोचिंग पर फायरिंग का आरोप लगा रहे थे।
2: अभी इन लोग का बस यही है कि इतने कम फीस में नहीं पढ़ाया जाए और इतने हजारों संख्या में जो रिजल्ट आता है पूरी तरह से इतनी गोली चलाने लगे। 10 मिनट में ऐसा लगा कि जैसे अफरा तफरी होके रख गया। यहाँ पर 8-10 राउंड तो हम देखे हैं, यहाँ पे 8-10 राउंड हम देखे हैं। हमें क्या पता है, अभी PMCH में एडमिट है, उसका पूरा सर फाड़ दिया गया है। यहाँ पर बगल की कोचिंग वाले,
1: दरअसल कोचिंग संचालक फैजल खान और रोशन आनंद के बीच वर्चस्व की लड़ाई 27 मई से शुरू हुई थी जब बिहार पुलिस भर्ती का रिजल्ट आया था। दोनों कोचिंग संचालकों ने अपने ज्यादा स्टूडेंट की कामयाबी के दावे किए। दोनों तरफ से अपने अपने अभ्यर्थियों के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान दोनों ने बढ़ चढ़ कर पोस्टर भी लगाए।
3: 30 मई को पटना में दोनों ही कोचिंग संस्थानों और संचालकों की तरफ से अपने अभ्यर्थियों की सफलता का जश्न भी मनाया गया। लेकिन बात जब बिगड़ गई जब 3 जून की रात अपने अपने बैनर पोस्टर को लेकर के दोनों खेमे आमने सामने आ गए और नतीजा वर्चस्व की लड़ाई में बदल गया।
1: आरोप है कि फैजल खान के स्टाफ ने ज्ञानबिंदु कोचिंग सेंटर के बोर्ड पर अपना बैनर लगा दिया और यहीं से विवाद भड़क गया। 2-3 जून की रात को दोनों कोचिंग संचालकों के बीच में बवाल हो गया और तोड़फोड़ पत्थरबाजी से लेकर गोलियां चल गईं।
4: बिहार पुलिस में जो शानदार रिजल्ट हुआ है उसी का साजिश से हमको फंसाया जा रहा है। किसान कोल्ड स्टोर के मालिक और खान सर जो है दोनों मिल करके जो है ज्ञान बिंदु को बर्बाद करने का पूरा प्रयास कर रहा है, लेकिन सत्यमेव जयते, हमेशा सत्य की जीत।
1: दोनों कोचिंग संचालकों के बीच की जंग अब गोलीबारी तक पहुंच चुकी है। बच्चों का भविष्य बनाने का दावा करने वाले गुरु आपस में झगड़ रहे हैं और इस झगड़े में नए खुलासे के बाद खुद कोचिंग वाले खान सर बुरे फंसे हैं। क्या रोशन आनंद की तरह उन्हें भी गिरफ्तार करेगी पुलिस? पटना से शशि भूषण के साथ आज तक ब्यूरो।
0: और अब बात रीवा की आकांक्षा की करेंगे। नीट छात्रा जिसके पेपर लीक से परेशान होकर आत्महत्या कर ली, उसके परिजनों से राहुल गांधी ने फोन पर बात की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आकांक्षा के पिता और माता पिता से फोन पर बात की। राहुल गांधी ने परिजनों के साथ बात की और उसके अलावा राहुल गांधी ने आकांक्षा के परिवार को 3 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने की बात भी कही।
5: आज मैं सुबह गाड़ी में एयरपोर्ट जा रहा था और मैंने आपकी बेटी के बारे में पढ़ा
6: जी सर,
5: और वो जो उसने चिट्ठी लिखी थी वो मैंने देखी
6: जी सर,
5: तो मुझे काफी दुख हुआ
6: जी सर,
5: और मैं आपको बस अपना प्यार देना चाहता हूँ
6: सर। परिवार बहुत अच्छा परिश्रम आपने प्यार दिया हमारे दुख में, अपने सभी कर्मचारियों को भेज करके हमारे इसलिए धन्यवाद है। इस बात के लिए बहुत बहुत आपके लिए, हम तो बड़े आपत्ति में हैं सर।
5: बेचारी उसका उसकी इसमें कोई गलती नहीं थी, उसने कुछ कुछ गलत नहीं किया, बस पढ़ाई की थी। आपने कर्ज लिया, मतलब बिल्कुल
7: सबसे बड़ी बात दुख की हमको ये है कि उसने इतना मेहनत करी, शायद ऐसा ना होता तो ये ना होता, हमारा तो कोई दूसरा है भी नहीं, एक ही तो थी मेरी, इसी के भरोसे पिताजी भी उसके टिके थे, इसी के भरोसे मैं भी टिकी थी।
5: और उसने मेरे चिट्ठी में लिखा कि उसको लगा कि उसने आपको बर्बाद कर दिया।
7: नहीं,
5: उसने आपने कर्जा लिया था और उसने आपको बर्बाद कर दिया, मतलब क्या बेचारी कितना दर्द हुआ, दुख हुआ होगा उसको।
0: अब अगली खबर पंजाब से, जहां पर पटियाला में आईटीआई पास छात्रों पर पुलिस ने लाठी चार्ज की है। दरअसल छात्र पावरकॉम हेड ऑफिस के पास प्रदर्शन कर रहे थे, जिस वक्त पुलिस की तरफ से ये लाठी चार्ज की। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पटियाला की तस्वीरें, जहां पर आईटीआई छात्रों पर इस तरीके से प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से लाठी चार्ज किए। पावरकॉम के अफसर के बाहर लगातार ये छात्र जो थे प्रदर्शन कर रहे थे, और जिसके बाद हेड ऑफिस के बाहर प्रदर्शन पर बैठे इन छात्रों पर पंजाब पुलिस की तरफ से लाठी चार्ज किया गया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
9: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
10: Ready to tackle those home projects? Whether it's a new patio, fresh paint, or some more space, now's the perfect time to make it happen. With a home equity loan from CME Federal Credit Union, you'll get an introductory 3.99% APR for 12 months, giving you the flexibility to take on those dream house projects. From big renovations to simple refreshes, your home's next chapter starts at CME. Visit CMEFCU.org to apply today and get your plans underway. Terms and conditions apply. Federally insured by NCUA. Equal Housing Lender.
11: This is the sound of Claire cooking dinner at home, and that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge, and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
12: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
13: TuneIn's how-to, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
14: TuneIn is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop. Loop.

0: वाराणसी में कहां तक बगावत। ममता के साथ सिर्फ 20 विधायक, विधायकों ने साथ छोड़ा, मुंह मोड़ा। सांसद भी बगावत की राह पर जाएंगे।
1: मानसिक तौर पे आप पार्टी के साथ नहीं हैं?
2: मानसिक तौर पे मैं पार्टी के साथ नहीं हूं।
1: और ऐसे ही मानसिक तौर पे और कितने सांसद हैं तृणमूल में जो पार्टी के साथ नहीं है, आपको क्या पता है?
2: देखिए, मैं तो किसी का मानसिक स्थिति को रीड नहीं कर पाता।
1: नहीं, बातचीत तो होती होगी।
2: बातचीत होती है, मेरे सुनने में जो है, मैंने आपको बता दिया ना कि लोकसभा में ज्यादा मेंबर, मैंने मेजोरिटी मेंबर थे।
0: टीएमसी के सीनियर नेताओं में से एक सुखेंदु शेखर रॉय ने जो कुछ कहा वो ममता बनर्जी के लिए गहराते संकट के संकेत हैं। तृणमूल के सांसदों में असंतोष और बेचैनी साफ साफ देखी जा सकती है, और अगर ममता नाकाम रही तो ये संकट तृणमूल को तिनका तिनका कर सकता है।
1: लोकसभा में आपके 29 सांसद हैं, आपको क्या सुनाई दे रहा है, कितने सांसद होंगे फिर?
2: 29 नहीं, 28 है।
1: 28
2: बसीरहाट आपका पेंडिंग है कलकत्ता हाई कोर्ट में,
1: क्या होने वाला है, आपको क्या सुनाई दे रहा है, आपको पार्टी के अंदर अभी भी है?
2: मेजोरिटी चला जाएगा,
1: ये एक बड़ा बयान है आप दे रहे हैं कि मेजोरिटी ही चला जाएगा।
0: तृणमूल के सांसदों पर एनडीए की नजर है। संसद के मॉनसून सत्र में सरकार परिसीमन बिल लाने की तैयारी में है, और खबर है कि तृणमूल के सांसदों से संपर्क साधा गया है, यानी विधायकों के बाद ममता बनर्जी के सामने अपने सांसदों को टूटने से बचाने की बड़ी चुनौती है। क्या ममता बनर्जी इस सुनामी का सामना कर पाएंगी? उनके लिए एक अच्छी खबर ये है कि बागियों में से पहली आवाज उनके समर्थन में आई है।
3: ममता बनर्जी हम लोग का सर्वोच्च नेतृत्व है, एक बार बोला, एवं ममता बनर्जी का छवि घर में रहेगा, सबका घर में रहेगा। ममता बनर्जी के फोटो का लेके मीटिंग मीटिंग करेगा, ये सब बात हुआ, इसलिए हम साइन किया।
4: आने वाले दिनों में कि ममता बनर्जी फिर चीफ एडवाइजर ही रहे,
0: ममता के लिए ऐसी कई आवाजों की जरूरत होगी, तभी वो इस संकट से उबर पाएंगे। इंद्रजीत कुंडू के साथ अनुपम मिश्र, कोलकाता आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस
2: एक्जे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया

दिल्ली के मालवीय नगर समेत कई इलाकों में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। अग्निकांड पर सीएम रेखा गुप्ता की आज बड़ी बैठक, मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगी। विधायकों के बाद अब सांसद भी ममता को दे सकते हैं झटका। करीब एक दर्जन सांसदों के बागी गुट के संपर्क में होने की खबर। ममता ने बुलाई पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक।

नहीं होने देंगे घुसपैठ और डेमोग्राफिक चेंज, त्रिपुरा हो बंगाल या फिर बिहार, घुसपैठियों के खिलाफ अटल है सरकार। पटना में कोचिंग चलाने वाले फैजल खान के खिलाफ आर्म्स एक्ट में दर्ज हुआ केस, गिरफ्तारी के डर से काले शीशे की गाड़ी में निकले, क्लास में छात्रों को भड़काने का भी आरोप।

0: रोजगारों पर चली पंजाब पुलिस की लाठी, पावरकॉम मुख्यालय पर कई दिनों से कर रहे थे प्रदर्शन।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोको।
3: किसने लगाई थी गेराल्ड फोर्ड में आग, कैसे डूबते डूबते बचा विनाशकारी युद्धपोत, क्यों अमेरिका ने छिपाया करोड़ों का नुकसान, फिर फंस गई डी, अब होगा घमासान। यूएई का वार प्लान, बेहद खफा है ईरान। यूरेनियम को सफाई से छिपा रहा ईरान। खुफिया रिपोर्ट जो उड़ा देगी ट्रंप के होश। न होर्मुज खुला, न यूरेनियम मिला, न टोलबंदी खत्म, न अमेरिका की नाकेबंदी खत्म। सीज फायर जारी है, कोहराम भी भारी है।
0: नमस्कार, रणभूमि में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित चौधरी। अमेरिका और ईरान के बीच अब तक डील को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। सीज फायर के दौरान भी गोलीबारी एक दूसरे पर किए जा रहे हैं, ड्रोन अटैक किए जा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बीच कई बड़े बयान दिए हैं, जिसमें के बारे में हम आपको इस शो के दौरान आगे भी बताएंगे। लेकिन यूरेनियम को लेकर यूएन की एक रिपोर्ट जरूर उनकी मुश्किलें बढ़ा रही है। फिलहाल जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक ईरान के यूरेनियम के बारे में यह पता नहीं चल पा रहा है कि उसका यूरेनियम कहां पर छुपा हुआ है और पिछले साल जून के महीने में हुए अमेरिकी हमले में के बाद उसे कितना नुकसान पहुंचा है। इस बीच खाड़ी देशों के हालात को देखते हुए अमेरिका ने एक ताजा एडवाइजरी भी जारी कर दिया है। उसने अपने नागरिकों को दो तरह के एडवाइजरी जारी कर की है, ईरान, इराक और सीरिया जैसे देशों में जाने के लिए बिल्कुल मना कर दिया है। इधर लेबनन में इसराइल के हमले बदस्तूर जारी है और इसराइल की एयर स्ट्राइक्स ने कई लोगों की मौत की खबरें भी मिल रही है, जबकि कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। अमेरिका ने सीज़फ़ायर की कोशिशें तो तेज की थी, लेकिन हिजबुल्ला ने साफ इनकार कर दिया है कि वो किसी भी तरीके के युद्ध विराम को नहीं मानेगा और जब तक इसराइल की फौज वापस लेबनन से वापस नहीं लौटती वो किसी तरीके के सीज़फ़ायर को नहीं मानने वाला। यानी लगातार अब लेबनन भी ये कोशिश कर रहा है, लेबनन में भी लगातार अभी कोशिश की जा रही है कि हिजबुल्ला इसराइल को कड़े हमले का जवाब दे सके। इसी बीच ईरान और अमेरिका युद्ध को के संघर्ष को लेकर करीब 100 दिन के बाद कई बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं। इस बीच एक बड़ा खुलासा ये सामने आया जिसमें अमेरिकी मीडिया के दावा किया है कि अमेरिका के विनाशकारी और ताकतवर युद्धपोत यूएसएस गेराल्ड फोर्ड को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। ये वही युद्धपोत है जो हाल ही में इसराइल की सीमा के बेहद करीब खड़ा था, यानी हाइफा के पास तैनात था और लगातार इसराइल को एक डिफेंस सिस्टम के तौर पर ये वहां पर मुस्तैद किया गया था। मई 2026 में वर्जीनिया के बंदरगाह पर ये लौटा और सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2026 में जहाज पर आग लगने की एक गंभीर घटना हुई थी जिसमें से व्यापक नुकसान भी पहुंचा। अब लंबे समय तक इसकी मरम्मत का काम किया जाएगा। इन रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अमेरिका ने इसके नुकसान को लेकर सच छुपाने की कोशिश की, इस खबर को दबाया गया। अमेरिकी मीडिया ने अपनी रिपोर्ट्स में कई वीडियो भी जारी किए जिसमें साफ देखा जा सकता है कि आग लगने के बाद युद्धपोत को कितना ज्यादा भारी नुकसान पहुंचा है। वियतनाम युद्ध के बाद किसी भी अमेरिकी विमान वाहन पोत को सबसे लंबी तैनाती मिडिल ईस्ट के इन देशों में की गई थी, जिसमें भूमध्य सागर और ईरान के पास के कई इलाकों में सक्रिय भूमिका इन एयरक्राफ्ट कैरियर्स ने, इन शिप्स ने निभाई। इस साल मार्च में ही इस युद्धपोत के लॉन्ड्री रूम में भयानक आग लग गई थी। बताया जा रहा है कि करीब 30 घंटे तक जलती रही ये आग, पर बहुत मशक्कत के बाद काबू पाया गया। इस हादसे में कई क्रू मेंबर्स घायल भी हुए और हादसे के वक्त जहाज के फायर जो फाइटिंग सिस्टम के नाम नाकाम होने की खबरें भी लगातार सामने आई। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि अमेरिकी नेवी ने शुरू में आग में हुए व्यापक नुकसान को कम ही आंका और इस खबर को दबाने की कोशिश भी की गई। अब इस युद्धपोत को ठीक होने में कम से कम एक साल का वक्त लगेगा। इस वक्त में जिस वक्त यह हादसा हुआ उस समय क्रू मेंबर्स को लगने लगा था कि जल्द ही वो इस विशाल युद्धपोत को खोने वाले हैं और उनकी जान भी नहीं बच पाएगी। दरअसल अमेरिका पर यह आरोप पहले भी लगते आए हैं कि वो लगातार अपने नुकसान के आकलन को दुनिया भर से छुपाता रहा, लेकिन अब 100 दिन करीब करीब आते आते वो खबरें भी सामने आने लगी हैं और ये खुद अमेरिकी मीडिया जाहिर कर रहा है। अब ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने यूएई पर कई आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया है कि इस युद्ध के दौरान हमारे पास कई ऐसे सबूत हैं जिससे साफ होता है कि यूएई की जमीन और आसमान अमेरिका और इसराइल की सेनाओं ने हमारे खिलाफ इस्तेमाल किए। अराग्ची ने कहा है कि खुद यूएई ने हमारे खिलाफ हुए कई ऑपरेशन में सैन्य हिस्सेदारी भी ली है, इसे याद रखा जाएगा। अराग्ची ने कड़ी चेतावनी दी है, इसराइल का साथ देने वाले और क्षेत्र में तनाव पैदा करने वाले देशों को जवाब दे ठहराया जाएगा। दिल्ली में हुए ब्रिक्स सम्मेलन में भी अराग्ची और यूएई के मंत्री के बीच इस मुद्दे को लेकर बहस हो गई थी। आपको बता दें कि ये बात ईरान पहले भी कहता आया है कि मिडिल ईस्ट के कई देश जिनके ऊपर ईरान हमले कर रहा है या फिर बड़ी कार्रवाई की, ये वही देश थे जिनकी जमीन, जिनके बेसिस का इस्तेमाल, जिनकी सेनाएं लगातार ईरान के खिलाफ कार्रवाई में बनी हुई थी। और देखिए, इसी बीच अमेरिका ने अपने खाड़ी देशों में मौजूद अपने नागरिकों को एक बार फिर से एक नई एडवाइजरी जारी की है। अपने नागरिकों को सुरक्षा को लेकर एक ताजा एडवाइजरी जारी की गई है और हर दिन तेजी से बदलते हालातों को लेकर यह एडवाइजरी जारी की है। ये लेवल 3 और 4 की एडवाइजरी है और इसके मुताबिक जो लोग ईरान, इसराइल या फिर आप कह सकते हैं कि इराक में मौजूद हैं, वो वहां से निकल आए या फिर इन देशों का ट्रैवल ना करें। इसराइल और बहरीन से लेकर यूएई तक ये निर्देश जारी किए गए। इन निर्देशों में करीब 15 देशों के नाम दिए गए हैं और अमेरिकी नागरिकों को बताया गया है कि किन देशों की यात्रा वो ना करें और किन किन देशों की यात्रा करने से पहले एक बार फिर से एडवाइजरी को या फिर सोच समझ ले और लगातार डायरेक्शंस को फॉलो करें। अमेरिका लगातार ऐसी एडवाइजरी पिछले कई दिनों से जारी करता है, लेकिन एक बार फिर से अमेरिका ने अपने नागरिकों को यह एडवाइजरी जारी की। आइए आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाते हैं कि किन किन देशों के हालात अमेरिका के मुताबिक बेहद संवेदनशील है और किन किन देशों में ताजा एडवाइजरी को मुख्य रूप से आप दिखाया गया या फिर इस एडवाइजरी के तौर पर अमेरिकी नागरिकों को वहां जाने की इजाजत नहीं दी गई, यानी उन्हें मना किया गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करें लेवल 3 एडवाइजरी यात्रा, यानी पूर्ण विचार करें, यानी आप अगर जा रहे हैं तो एक बार रिव्यू कर ले, देख ले, समझ ले, हालातों का जायजा ले ले, उसके बाद ही जाइए। देश है इजराइल, जॉर्डन, वेस्ट बैंक या फिर सऊदी अरब, कतर, यमन, यूएई, कुवैत और बहरीन। मिडिल ईस्ट के तमाम देश वो हैं जहां पर लेवल 3 की एडवाइजरी जारी की गई है और ये एडवाइजरी इसलिए है कि अगर इन इलाकों में आप दोबारा से ट्रैवल करने जा रहे हैं तो एक बार फिर से पूर्ण विचार कर ले, सारे के सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें और वहां के ताजा हालातों पर भी नजर बनाए रखें, तभी उसके बाद आप इन इलाकों में, इन क्षेत्रों में ट्रैवल करें। अब लेवल 4 की एडवाइजरी कहां पर जारी की गई है, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये करीबन ऐसे 4 से 5 देश हैं जहां पर लगातार कहा जा रहा है कि यहां पर ट्रैवल ना करें। अब अमेरिकी नागरिकों के निर्देश ये भी है कि प्रदर्शन वाले इलाकों में दूर रहे, यानी जिन इलाकों में प्रदर्शन किए जा रहे हैं वहां से आप दूरी बनाए रखें। और अगर आप देखें कि अमेरिका ने ये सावधान रहने के लिए इसलिए कहा है क्योंकि इराक हो, इसराइल हो या फिर आप कह सकते हैं कि ईरान के देश हो या फिर मिडिल ईस्ट के दूसरे देश हो, वहां पर जाने से बचे और प्रदर्शन वाले इलाकों से दूरी रहे। इसके अलावा ट्रैवल इंश्योरेंस कराकर ही निकले, इसके बिना ना निकले। ये एडवाइजरी में क्या क्या चीजें मुख्य रूप से दी गई है ये भी हम आपको बता रहे हैं। एडवाइजरी के अलावा अपने नागरिकों को सतर्क रहने के लिए अमेरिका ने साफ इसमें निर्देश दिए हैं, भारी पुलिस बलों की तैनाती वाली जगहों से दूर रहें, यानी जहां पर लोग बहुत ज्यादा इकट्ठा हो रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हो, वहां ना जाएं। इसके अलावा जहां पर पुलिस बल की ज्यादा तैनाती हो, यानी सेंट्रल इलाके जहां पर महत्वपूर्ण बिल्डिंग होती है, वहां से बचें। अब आसपास नजर बनाए रखें, लगातार सर्विलेंस रखें या नजर बनाए रखें कि कैसे हालात बदल रहे हैं और उसी के हिसाब से फिर आगे ट्रैवल करें। लो प्रोफाइल रहें, यानी लगातार ज्यादा प्रमुखता से किसी भी जगह पर जाकर अपनी नागरिकता, अपने प्रोफाइल के बारे में जानकारी ना दें और लो प्रोफाइल बने रहे। एयरलाइंस के सीधे संपर्क में रहे, यानी अगर परिस्थितियां बदलती हैं तो फिर एयरलाइंस पे आप सीधे संपर्क में रहे ताकि अपनी टिकट, रिटर्न टिकट्स बुक करा सके और वहां से तुरंत निकल सके, ये भी एडवाइजरी में कहा गया है। और ऐसे में ये नंबर दिए जाते हैं कि आप लगातार एयरलाइंस के डायरेक्ट नंबर रखें, वहां पर जो लोकल मौजूद हैं उनके नंबर रखें ताकि अगर कोई भी हालात, विपरीत हालात बदलते हैं तो फिर आप उन इलाकों से निकल सके। अब आपको दिखाते हैं कि यूएन की वो रिपोर्ट जो ट्रंप के होश उड़ा रही होगी, क्योंकि पिछले साल ही इसी महीने में अमेरिका ने जब 12 दिन के ईरान युद्ध के दौरान इसराइल का साथ देते हुए B-2 बॉम्बर से ईरान पर कई परमाणु साइट्स पर हमले किए थे तो दावा किया था कि उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब कुछ नष्ट कर दिया गया। लेकिन अब परमाणु कार्यक्रमों की दुनिया भर में निगेबानी करने वाली संस्था यानी IAEA ने रिपोर्ट के उन तमाम देशों के चिंता बढ़ाने वाली बात बताई है जो बताती है कि जो नुकसान अमेरिका की तरफ से किए गए थे वो आखिरकार हुए भी या फिर सिर्फ ये बातें हवाई बाई थी। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
4: कहां गायब हो गया ईरान का यूरेनियम? क्यों नहीं हो पा रही एटमी केंद्रों की जांच? ईरान ने जमीन के नीचे दबा रखा है तूफान। ये तस्वीरें करीब साल भर पहले की हैं, जब इसराइल और ईरान के बीच युद्ध का आगाज हुआ था। दोनों ओर से बैलिस्टिक मिसाइलें कहर ढा रही थी और तबाही का मंजर देखने को मिल रहा था। कहने को युद्ध बेशक 12 दिन ही चला था, लेकिन बीच में अमेरिका की एंट्री ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। इसराइल के पक्ष में उतरे अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स ने ईरान की 3 परमाणु साइट्स फोड़ दो। नतांज और इस्फहान पर जबरदस्त बमबारी की। ट्रंप ने ईरान की एटमी ताकत को जमीन में मिला देने का दावा भी किया था, लेकिन अब UN की एक ताजा रिपोर्ट ने अमेरिका की चिंता बढ़ा दी है। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने एक खुफिया रिपोर्ट में खुलासा किया है कि पिछले साल जून में युद्ध का शिकार हुए ईरानी परमाणु केंद्रों की जांच करने में उसे अब तक कामयाबी नहीं मिल सकी है। वो इतना तक बता पाने की हालत में नहीं है कि ईरान के पास इस वक्त कुल कितना संवर्धित यूरेनियम मौजूद है, उसका स्वरूप क्या है और उसे किस खुफिया जगह पर छिपा कर रखा गया है। एजेंसी ये तक नहीं बता पा रही कि ईरान ने यूरेनियम को और ज्यादा ताकतवर बनाने की अपनी सभी गतिविधियों को पूरी तरह से रोका है या नहीं। ये समझ से परे है कि दुनिया भर की परमाणु साइट्स और कार्यक्रमों की देखरेख और नियंत्रण करने वाली संस्था इतनी बेबस और मायूस क्यों नजर आ रही है। क्या ईरान पिछले साल अपनी परमाणु साइट को बचाने में कामयाब हो गया था और यूरेनियम समेत तमाम परमाणु सामग्री उसने खुफिया और सुरक्षित तरीके से अभी भी सुरक्षित है? लेकिन इसका पता लगाने तक में नाकामी ट्रंप के लिए किसी बड़े झटके और चुनौती से कम नहीं है। एजेंसी की पिछली फरवरी में आई पिछली रिपोर्ट के बाद से अब तक जांच करने वालों को ईरान में सिर्फ बुशहर का दौरा करने की इजाजत मिली है। ये दौरा 1 से 3 जून के बीच किया गया था। हैरानी की बात तो ये है कि बुशहर में चल रहा परमाणु रिएक्टर असल में रूस से मिले 4.5% एनरिच्ड यूरेनियम का इस्तेमाल करता है, जिसे सिर्फ बिजली बनाने के लिए जरूरी माना जाता है। यानी संकेत साफ, ईरान किसी भी सूरत में अपने असली परमाणु साइट्स तक दुनिया की किसी भी ऐसी एजेंसी की पहुंच नहीं होने देना चाहता जिसकी रिपोर्ट का फायदा किसी भी रूप में अमेरिका को मिल सके। खैर, एजेंसी की रिपोर्ट में महानिदेशक ग्रॉसी ने इस विवाद को सुलझाने के लिए चल रही कूटनीतिक बातचीत का समर्थन किया है और कहा है कि वे किसी भी नए शांति समझौते को लागू कराने में पूरा सहयोग देने के लिए तैयार है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर तमाम पाबंदियों के बीच जब तक सही तस्वीर सामने नहीं आएगी, फिर से तूफान आने की आशंका हमेशा बनी रहेगी। आज तक ब्यूरो।
0: पिछले 2 सालों में अमेरिका ने ईरान पर 2 बड़े हमले किए, लेकिन ना तो इनरिच यूरेनियम मिला और ना ही रिजिम चेंज के लिए कोई बड़ा सत्ता परिवर्तन अमेरिका कर पाया। लेकिन अब इसी बीच IAEA ने जो पोल खोली है या जो बातें सामने रखी हुई दिखाती है कि अब भी ईरान की कैपेसिटी में वो इनरिच यूरेनियम है जिससे ईरान कभी भी न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकता है। आखिरकार ईरान ने इसे कहां छुपाए रखा है? ये आपको रिपोर्ट के उन आप कह सकते हैं विश्लेषण के दौरान बताते हैं कि आखिरकार क्यों इतने सवाल ईरान के इस एनरिच यूरेनियम पे उठाए गए। आखिरकार ईरान के पास कितना एनरिच यूरेनियम है? जो IAEA की रिपोर्ट बताती है वो बताती है कि 440.9 किलोग्राम ये यूरेनियम है जो 60% संवर्धित है यानी एनरिच है। अब अगर आप देखें कि हथियारों में तब्दील करने के लिए चाहिए 90% संवर्धित यूरेनियम और ये कैसे हो सकता है? ये महज 1 महीने की एक्सरसाइज में किया जा सकता है। यानी अगर 2025 में भी अगर ईरान ने कोशिश की होती सही तौर पर तो तब भी करीबन 2-3 महीनों के अंदर ही वो इसको कर सकता था। यानी 60 से 90 का जो दौर होता है, जो एनरिचमेंट प्रोसेस होता है, उसमें ज्यादा समय नहीं लगता है, सिर्फ और सिर्फ 60 तक जाने में सालों लग जाते हैं। अब ईरान चाहे तो बना लेगा 10 से 11 परमाणु बम, यानी जो 440 किलो का एनरिच यूरेनियम है इससे करीब करीब 10 से 11 बॉम्ब्स बनाए जा सकते हैं। यही सबसे बड़ा कंसर्न है कि अगर एक दो नहीं, अगर ये 10 से 11 परमाणु हथियार ईरान के हाथ में आ गए तो अमेरिका कहता है कि उससे अमेरिका और इसराइल की संप्रभुता पर, उनकी सिक्योरिटी पर बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। अब तीसरी बड़ी बात क्या है, आईए के निर्देश अनुसार हर महीने इसका सत्यापन जरूरी है, यानी आपको रेक्टिफाई करना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा, आपको अपनी साइट्स पर ले जाना पड़ेगा, वो ईरान नहीं कर रहा है। दरअसल आईए की बातों को अब ईरान सीरियसली लेता भी नहीं है। ईरान का मानना है कि देखिए आईए एक टूल है जो लगातार अमेरिका और इसराइल के कहने पर चलता है। अब मौजूदा हालातों में आईए के सत्यापन में पूरी तरीके नाकाम रहे। आईए ने कहा है कि देखिए हमें तो किसी साइट पर जाने की इजाजत नहीं मिली, हमें कहीं पर भी लगातार जाने नहीं दिया गया और मौजूदा हालातों में करने से नाकाम रही। लगातार उन जगहों पर वेरीफाई करने में आईए पूरी तरीके से नाकाम रही। ईरान की पाबंदियों की वजह से सत्यापन में मुश्किलें आई, ये आईए का दावा है और अमेरिका भी इन्हीं दावों को लेकर अटैक करने की बातें करता रहा। अमेरिका की तरफ से कहा गया कि देखिए आईए की टीम को जाने नहीं दिया जाता। ईरान ने कहा कि जहां जहां पर उनको जाने दिया जा रहा है वहां पर कैमरे लगे हुए हैं, लगातार सीसीटीवी की नजर से रखी जा रही है, लेकिन फिर भी ईरान ने कई जगहों पर अमेरिका या फिर आईए के लोगों को, उनकी कमेटी को नहीं जाने दिया। अब ईरान की पाबंदियों पर ईरान ने यूएन एजेंसी को सिर्फ बुशेर में ही दौरा करने दिया। बुशेर वो इलाका है जो दरअसल रशियन साइंटिस्ट का एक इलाका माना जाता है। यहां पर रूस के बहुत साइंटिस्ट है बुशेर के इलाकों में जो रहा करते थे। इसके अलावा आईए का दावा था कि उसको इश्फहान, नतांज या बाकी के इलाकों में, नतांज, इश्फहान, फोर्दो, इन इलाकों में नहीं जाने दिया, सिर्फ और सिर्फ बुशेर के इलाकों में जाने दिया। अब यहां पर 4.5% सर्वाधिक यूरेनियम ही मौजूद है, यानी जो यूरेनियम है उसकी मात्रा 4.5% ही है। बाकी यूरेनियम कहां पर है, कितना इनरिच है, ये आईए की टीम को पता ही नहीं। ये आईए की टीम लगातार दावा करती आई है। वहीं ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि देखिए जितना भी सर्वाधिक यूरेनियम यानी इनरिच यूरेनियम है उसका इस्तेमाल किसी भी तरीके के वेपन मैन्युफैक्चरिंग के लिए नहीं किया जाएगा, वो सिर्फ हमारे लोगों की भलाई के लिए। वहीं कुवैत में ईरान के हमलों की सीसीटीवी फुटेज तो आपने कल भी देखी होगी, आपने आपको कल भी बताया था कि देखिए कैसे लगातार कुवैत पर बड़े हमले किए गए जिसमें एक भारतीय की मौत भी हुई और कई लोग घायल भी हुए। अब कुवैत के अली अल सलेम बेस और एयरक्राफ्ट हैंगर में हुए हमले की एक सैटेलाइट इमेज भी सामने आई है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस कदर इस बेस को नुकसान पहुंचा। ईरान पहले से ही चेतावनी देता आया है कि अगर खाड़ी देश अपनी जमीन को उसके खिलाफ हमलों के तैयार करने के लिए अमेरिका को देते रहेंगे और अमेरिका इनका इस्तेमाल करता रहेगा तो फिर उसका खामियाजा इन देशों को भी भुगतना पड़ेगा। हालांकि ईरान की तरफ से ये दावा किया गया है कि ये हमला ईरान के ड्रोन से नहीं किया गया बल्कि अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम के फायर एक मिसाइल के मिस लॉन्च होने की वजह से या फिर उसके मिसाइल की वजह से किया गया है, इसमें ईरान के ड्रोन का इस्तेमाल नहीं हुआ। ईरान ने इस बात का खंडन किया कि यह हमला हमने नहीं किया था, यह दरअसल अमेरिका की ही पेट्रियट मिसाइल के हमले से हुआ है। और देखिए अमेरिका के ऊपर लगातार संधि को लेकर, सीजफायर को लेकर दबाव बढ़ता जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप इस कमोबेश में है कि जल्दी से जल्दी ये संधि या फिर ये सीजफायर लागू हो जाए, ईरान के साथ कोई बड़ी डील हो जाए। और इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति की दिक्कतें उनके देश में भी बढ़ती जा रही है। अमेरिकी सांसद रिचर्ड लीन ने यूएस इजराइल युद्ध और ईरान युद्ध की के कारण बढ़ती कीमतें और अर्थव्यवस्था पर पड़ रहे इसके असर को लेकर ट्रंप प्रशासन की आलोचना भी की, यानी डोनाल्ड ट्रंप के को लेकर लगातार उनके खिलाफ कई आवाजें उठ रही हैं। हाउस वेज और मींस कमेटी के सुनवाई में उन्होंने कहा कि अमेरिकी परिवारों को युद्ध के कारण अतिरिक्त प्रति व्यक्ति $750 का खर्च भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि गैसोलीन की कीमतों में भी कई जगहों पर लगभग 50% की बढ़ोतरी हो गई है जो लोगों के लिए बहुत बड़ा बोझ है। और नील ने यानी उनके सांसद ने यह भी कहा कि ट्रंप की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि जंग की वजह से आम अमेरिकी महंगाई की मार से जूझने को मजबूर हो गए हैं और प्रति व्यक्ति इसका बोझ जो है हर अमेरिकी पे $750 आया है।
5: ७० प्रतिशत ऑफ द अमेरिकन पीपल डिसएग्री विद द इकोनॉमिक डायरेक्शन दैट द कंट्री हैज टेकन। Families are forced to shell out $1,700 more last year to cover many of the costs that were estimated to be rosy here not that long ago. Between the tariffs, the Iran war,
6: Prices are rising faster than they have in years. But when you're paying more for everything else, that quickly goes away. The price of a tank of gasoline in many places has gone up by almost 50%. That's a staggering amount.
0: और देखिए डोनाल्ड ट्रंप पर ये दबाव ये प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है और इसी वजह से वो नाटो के देशों से मदद भी मांग रहे थे और इसी बीच उसी को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है कि हॉर्मूज को लेकर एक बड़ा अपडेट ये मिल रहा है कि ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम ने मिलकर एक खास प्लान तैयार किया है। ये योजना हॉर्मूज के समंदर में बिछी बारूदी सुरंगों यानी माइंस को हटाने को लेकर है। इन दोनों देशों की पहल पर तैयार किए गए इस प्लान के कई देशों को शामिल किए जाने की बात भी कही जा रही है। कई दिनों तक इन देशों के प्रतिनिधियों की मीटिंग हुई और सीज़फ़ायर बढ़ाने के आसार को देखते हुए इसे अमली जामा पहनाने की तैयारी भी की जा रही। रिपोर्ट के मुताबिक इसमें करीब 15 देशों के शामिल होने की आशंका है जो सैन्य सहयोग देंगे ताकि हॉर्मूज के जहाजों की आवाजाही सुचारू रूप से चलाई जा सके और हॉर्मूज में छोटी नावों के जरिए जगह जगह पर ईरान ने युद्ध शुरू होते ही माइंस बिछा दी थी जिससे पूरे इलाके में खतरा बढ़ गया था। ईरान के इस वक्त माना जा रहा है कि कई जगहों पर ईरान खुद माइंस लगाकर भूल चुका है और इस इलाके में खतरा बना हुआ है। ऐसे में लगातार फ्रांस यूके और कई देश जो है मिलकर इन माइंस को हटाने के लिए अपने सैन्य मदद दे सकते हैं। इस बीच यानी अमेरिका जिस बात को लेकर मदद मांग रहा था या दावे कर रहा था उस बात को लेकर भी एक बड़ी खबर आ रही है कि 15 देशों के सैन्य जो है वो मिलकर यहां पर माइंस हटाने का काम कर सकते हैं। आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर एक बड़ा अपडेट तो देख लिया कि कैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अब भी एक ऐसी यथास्थिति बनी हुई है जो लगातार दुनिया के लिए एक परेशानी का सबब है। लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है लेबनन से, जहां पर लेबनन में इजराइल के ताबड़तोड़ हमले अब भी जारी है। उन्होंने कई जगहों पर ड्रोन हमले कर हिजबुल्ला के कई ठिकानों को निस्तनाबूद कर दिया है। इजरायली एयर स्ट्राइक्स में दक्षिणी लेबनन में कई लोगों के मारे जाने की खबरें भी सामने आ रही है। इसी बीच हिजबुल्ला ने सीज़फ़ायर के लिए साफ मना कर दिया है। हिजबुल्ला की तरफ से कहा गया है कि जब तक इजरायली की सेना लगातार लेबनन के इलाकों से पीछे नहीं हटती, अपने इलाकों में वापस नहीं जाती, तब तक वो सीज़फ़ायर नहीं मानेंगे। अमेरिकी की मध्यस्थता ने हाल ही में इजरायल और लेबनन की सरकार के बीच एक समझौता तैयार किया था जिसके तहत दक्षिणी लेबनन में हिजबुल्ला की गतिविधियों पर रोक लगाने और इलाके में नियंत्रण पूरी तरीके से लेबनन की सेना करेगी और ये सारी जिम्मेदारी लेबनन की सेना के कंधों पर सौंप दी जाएगी। लेकिन हिजबुल्ला प्रमुख नईम कासिम ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है और उनका मानना है कि जब तक इसराइल की सेना साउथ लेबनन में बनी हुई है वो अपने इलाकों में वापस नहीं लौटते, तब तक किसी भी तरीके की सीज़फ़ायर को वो नहीं मानेंगे। चले रणभूमि में हमने आपको बताया कि कैसे युद्ध क्षेत्र के यानी अमेरिका और ईरान के युद्ध में तमाम बड़े अपडेट हमने आपको बताया, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से पर इन एसोसिएशन विद भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Accuje, the number one Korean skincare brand.
7: Diehard music fan? Qello Concerts brings you thousands of full-length concert films and behind-the-scenes music documentaries. From today's icons to yesterday's legends, we have it all. Qello Concerts by Stingray. Now available for free on Pluto TV. Stream now, pay never.
2: Now in India.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: हनी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
2: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
3: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
4: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
5: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
6: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
7: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, NTO को पता नहीं।
5: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
8: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
6: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, NTA जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
5: जहां खबर वहां खबरदार।
9: In association with
10: Monte Carlo, it's the way you make me feel.
11: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
12: The action never stops and neither do we. From breaking updates to match analysis, from big moments to bigger conversation. This is where sports comes alive. Fast, sharp, unfiltered. For the fans who want every update, every story, every headline first. Welcome to Sports Today, your destination for everything sports. Press that bell icon and subscribe now.

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Accuje, the number one Korean skincare brand, now in India.
3: Jack FM is now streaming commercial-free on TuneIn Premium.
4: Jack, you're killing me.
3: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial-free.
5: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
6: सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम, जहां वैश्विक शक्तियां ग्लोबल हाई टेबल पर एकजुट हो रही हैं, मॉस्को, बीजिंग, दिल्ली, दुनिया बहुत सोच समझ कर चुन रही है कहां बोलना है, क्या कहना है और किस पर भरोसा करना है। ग्लोबल हाई टेबल पर मौजूद एकमात्र न्यूज चैनल सिर्फ आज तक पर, ग्लोबल लीडर्स की ग्लोबल चॉइस।

दिल्ली के मालवीय नगर समेत कई इलाकों में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। अग्निकांड पर सीएम रेखा गुप्ता की बैठक। पुलिस कमिश्नर समेत चीफ सेक्रेटरी और तमाम वरिष्ठ अफसर भी रहे मौजूद। अब टीएमसी सांसद भी ममता को दे सकते हैं झटका। करीब एक दर्जन सांसदों के बागी गुट में संपर्क होने से खबर। ममता की आज पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक। त्रिपुरा के बॉर्डर इलाके में पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह का नहीं होने देंगे घुसपैठ और डेमोग्राफिक चेंज। घुसपैठियों के खिलाफ अटल है सरकार। पटना में कोचिंग चलाने वाले फैजल खान के खिलाफ आर्म्स एक्ट में केस दर्ज। गिरफ्तार गार्ड्स के पूछताछ में खुलासा। फैजल खान के कहने पर ही की गई थी फायरिंग।

0: पर कई दिनों से कर रहे थे प्रदर्शन, नहीं हटने पर हुई सख्ती।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक।
3: जिसके पिता को मार दिया, जिसकी पत्नी को मार दिया, जिसके पूरे परिवार का कर दिया खात्मा, जिस पर अमेरिका ने की थी जानलेवा एयर स्ट्राइक, अमेरिकी हमलों में जो लड़ रहा जिंदगी और मौत की लड़ाई, उस शख्स से क्यों मिलना चाहते हैं ट्रंप? मुज्तबा खामेनेई की तारीफ क्यों कर रहे हैं ट्रंप? ये है कोई वार प्लान या फिर दिखावे वाला बयान? दिल के ख्याल बदल गए या फिर दिमाग में कुछ और ही रणनीति बना रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? कुछ तो नया है जो व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में पका रहे हैं ट्रंप। इस शो में आपको दिखाएंगे अमेरिका के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई की तारीफों के पुल बांध रहे ट्रंप के प्लान की इनसाइड स्टोरी।
0: ब्रेक के बाद रणभूमि में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी को अपना दोस्त बताते हुए दावा कर रहे हैं कि जल्दी भारत के साथ कोई बड़ी डील हो जाएगी, तो दूसरी तरफ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साफ कह दिया है कि पश्चिमी देशों को भारत को पर दबाव नहीं डालना चाहिए, खासतौर पर रूस के साथ भारत के रिश्तों को लेकर, क्योंकि दोनों देशों के रिश्ते बहुत मजबूत हैं और पीएम मोदी दबाव में आने वाली शख्सियत नहीं है। दूसरी तरफ ट्रंप ने एक बार ऐसा बयान दिया है जो पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोर रहा है। उन्होंने कहा है कि मुज्तबा खामेनेई से मिल सकते हैं और ये एक सम्मानजनक मुलाकात होगी, ऐसे वक्त पर जब डील को लेकर पूरी तरीके से अड़चन है, लेकिन फिर से घमासान के आसार भी बन रहे हैं। ट्रंप ने इस बयान के कई मतलब निकाले जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप अब सरेंडर करने के मोड में आ चुके हैं। और आपको बताते हैं कि देखिए कैसे राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी को अपना दोस्त बताया और कहा है कि वो जल्दी भारत के साथ ट्रेड डील करेंगे। उन्होंने कहा कि लगातार, लेकिन इसी बीच, और देखिए इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छा अपडेट, एक अच्छी खबर आ रही है कि वित्त वर्ष 2025-26 में जीडीपी 7.7% हुई है, इसमें वृद्धि हुई है। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छी अपडेट, एक बड़ा अपडेट मिल रहा है, जहां पर आपको बता रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छा संकेत, एक अच्छी खबर सामने आ रही है। यानी वित्त वर्ष 2025-26 में जीडीपी 7

0: 0.60% का वृद्धि का अनुमान बताया जा रहा है। और देखिए हमारे साथ हमारी सहयोगी मारिया शकील भी हमारे साथ जुड़ के। मारिया देखिए एक अच्छा संकेत, खासतौर पर जब दुनिया भर में मंदी छाई हुई है, अर्थव्यवस्था पर आप कह सकते हैं काले बादल मंडरा रहे, ऐसे में भारतीय व्यवस्था को लेकर एक बड़ा अच्छा अपडेट मिल रहा है।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने, और सरकार का दावा है कि जो GDP नंबर्स हैं और वो बहुत ही पॉजिटिव हैं और सही डायरेक्शन में इंडियन इकोनॉमी ग्रो कर रही है। ये जो स्टेटिस्टिक्स है, जो डेटा सरकार ने अभी रिलीज किया है, वो इसलिए भी संकेत अच्छा दे रही है कि लगभग 3.2% का ग्रोथ रेट है जो ड्रिवन बाय एग्रीकल्चर सेक्टर और फिशरी सेक्टर है। और उसके साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी बहुत अच्छा ग्रोथ रहा है, जो डबल डिजिट ग्रोथ के मुताबिक देखा जा रहा है। उसके साथ साथ रियल एस्टेट और जो ट्रांसपोर्ट और होटल सेक्टर है, इसमें भी बहुत ही पॉजिटिव और अच्छे संकेत दिख रहे हैं। तो जब बहुत सारे डेवलप्ड नेशंस की अर्थव्यवस्था चरमरा रही है, भारत की अर्थव्यवस्था सॉलिड हाथों में है, ये भी इंडिकेट है। और ये भी देखा जा सकता है कि जो जो सवाल उठ रहे थे, बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने सवाल उठाए थे, तो उन लोगों को भी ये चुप करने का संकेत हम बोलेंगे, क्योंकि अगर GDP इस रेट से ग्रो कर रही है, सर्टेनली जो फाउंडेशन है, इकोनॉमी के फाउंडेशन है, पॉलिसी ड्रिवन इकोनॉमी रही है। और ये भी इंडिकेशन है कि जब जब कोई कोई सेक्टर का जो डिमांड रहा है, वो भी सरकार ने बार बार पूरा किया है।
0: बिल्कुल, और ये भी लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि जनवरी से मार्च तक 7.8 रही है GDP की जो परसेंटेज है। और आपको बता दें कि 2025-26 में जो रफ्तार है या फिर जो GDP है, वो लगातार इस तरीके से एक मजबूत स्थिति में पहुंच रही है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए। एक अच्छी खबर, एक अच्छा अपडेट लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि अर्थव्यवस्था जो है, GDP जो है, वो 7.7 की दर से वृद्धि हो रही है। और देखिए ये आकलन या फिर जो आंकड़ा है, वो सरकार के अनुमान से भी ज्यादा है। यानी तमाम देशों के अंदर, दुनिया भर में ईरान अमेरिका युद्ध के बाद जो GDP डाउन जा रही थी, जो लगातार उनकी अर्थव्यवस्था पर काले बादल मंडराने लगे थे, उसी बीच भारत की अर्थव्यवस्था की एक बड़ी उपलब्धि या फिर आप कह सकते हैं एक बड़ी खबर भी सामने आ रही है। एक पॉजिटिव नोट पे आप देखें तो जो GDP वृद्धि दर, वो 7.8 रही है। जनवरी और मार्च के आंकड़े बताते हैं। और आपको हम बता रहे हैं कि कृषि में से रियल स्टेट तक विकास की तेज रफ्तार जारी है। और देखिए एक तरफ तो ये प्रमाण मिलते जा रहे हैं कि कैसे भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार इन तमाम मुश्किलों और चुनौतियों के बाद भी लगातार तेजी से आगे बढ़ रही है। वहीं उसी बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी को अपना अच्छा दोस्त बताया और कहा है कि वो जल्दी भारत के साथ ट्रेड डील करेंगे। उन्होंने कहा कि अमेरिका और भारत के रिश्ते बेहद मजबूत है और कई क्षेत्रों में दोनों एक साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे।
2: India for years took advantage of this country. They charged us tremendous tariffs, and they paid nothing. And now it's the exact reverse. And we're making a lot of money with India, but we'll get to a deal, because I like, I like your prime minister a lot. He's a good friend of mine. Get along great, and we're going to make a deal. We have a very good relationship.
0: अब आपको दिखाते हैं कि आखिरकार ट्रंप ने मुश्तबा खमनेई से मिलने का बयान क्यों दिया, आखिरकार दोनों देशों के बीच में डील कहां तक पहुंची है और कहां पर डेडलॉक क्रिएट हुआ है। इसी बीच उनसे अपने बयान ने, उनके बयान ने सुर्खियां भी बटोरनी शुरू कर दी है। आइए आपको दिखाते हैं कि आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप ने ये आखिरकार बयान क्यों दिया है।

0: सीज फायर होगा खत्म, अब होगा आर पार। डील पर सस्पेंस कायम, जारी है मिसाइलों का वार। ट्रंप को मोस्तबा से मुलाकात का इंतजार। कई कोशिशें हो गई, कई वार हो गए, कई पलटवार हो गए, लेकिन अमेरिका और ईरान के बीच डील पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। कहने को सीज फायर है, लेकिन दोनों देशों की ओर से बमबारी रुकी नहीं। युद्ध विराम के दौरान अमेरिका होर्मुज में अपनी नाकेबंदी को चुनौती देने वाले जहाजों पर शिकंजा कसता रहा है। तो ईरान ने होर्मुज में अमेरिकी जहाज पर हमला करने का दावा किया है और खाड़ी देशों में उसके सैन्य बेस पर बम बरसाए हैं। इस बीच ट्रंप का एक हैरान कर देने वाला बयान सामने आया है। ये बयान यूरेनियम या होर्मुज को लेकर नहीं है, बल्कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई से मुलाकात को लेकर है। ओवल ऑफिस में उनसे खामेनेई के साथ संभावित मुलाकात को लेकर सवाल पूछा गया था, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा।
1: I don't want to meet, but if I did meet, I'd be honored to meet him. I'd like to see if we make a deal. But if we make a deal, it's possible that I would meet him. I'd be okay with it.
0: लगे हाथों मीडिया ने उन्हें उस ऑपरेशन की याद दिलाई जिसमें मुज्तबा खामेनेई के परिवार का खात्मा कर दिया गया था। तो ट्रंप ने साफ कहा कि नए सुप्रीम लीडर एक प्रोफेशनल है और कई जगह उनका काफी नाम है। 28 फरवरी को अमेरिका ने ईरान युद्ध का आगाज किया था और ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक में सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई और उनके परिवार समेत कई कमांडरों को मार डाला था। उस हमले में सुप्रीम लीडर के बेटे मुज्तबा खामेनेई बच गए थे, लेकिन गंभीर रूप से घायल हो गए थे। बाद में उन्हें ईरान का सुप्रीम लीडर घोषित कर दिया गया। शुरुआत में उनके जिंदा रहने पर सस्पेंस था, लेकिन बाद में कहा गया कि कई गंभीर चोटों की वजह से वो खुफिया स्थान पर अपना इलाज करा रहे हैं। 28 फरवरी के बाद से उनकी एक भी तस्वीर, वीडियो और ऑडियो दुनिया के सामने नहीं आया है, हालांकि बीच बीच में उनका संदेश देश के नाम जारी किया जाता रहा। शुरुआत में ट्रंप भी कहते रहे कि उन्हें नहीं पता कि मुज्तबा खामेनेई जिंदा हैं या नहीं। ईरान हमेशा से कहता रहा है कि मुज्तबा ही उनके सुप्रीम लीडर हैं और अहम फैसले वही करते हैं। पिछले हफ्ते ही ईरान के राष्ट्रपति ने साफ साफ कहा कि स्थायी युद्ध विराम पर अंतिम फैसला उनके सुप्रीम लीडर ही करेंगे। वैसे धीरे धीरे अमेरिका की ओर से भी ये संकेत लगातार मिल रहे हैं कि मुज्तबा खामेनेई जिंदा है और पहले से कहीं अधिक सक्रिय हो गए हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने अमेरिकी सीनेट पैनल को संबोधित करते हुए कहा कि उनके पास ऐसे पुख्ता संकेत हैं जो ये दर्शाते हैं कि ईरान के नए सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई किसी न किसी स्तर पर देश के अहम फैसलों में सक्रियता बढ़ा रहे हैं।
2: I think there are indications out there that he is increasingly engaging at some level, although all of his communications have been in writing and through intermediaries. So the way to think about it is the following. You have the supreme leader, and understand that at the end of the day, the supreme leader in their system is, there really is no analogy to it in our system or anybody else's system. It is a theological office.
0: खैर, ट्रंप और मुज्तबा खामेनेई की मुलाकात कब होगी, होगी भी या नहीं, अभी कुछ भी साफ नहीं है। लेकिन इतना तय है कि डील को लेकर अगर जल्द फैसला नहीं हुआ तो महायुद्ध में एक बार फिर घमासान देखने को मिल सकता है। आज तक ब्यूरो।
3: बिल्कुल, आर या पार, यानी ये स्थिति ऐसी है कि या तो बातचीत होगी या दोनों देश एक बार फिर से नए युद्ध में कूद जाएंगे। चले अब आपको ले चलते हैं अपने सहयोगी रोहित शर्मा के पास, जो पिछले कई सालों से लगातार अमेरिका की रणनीति हो, सैन्य नीति हो, कूटनीति हो, इस पर नजर बनाए रहते हैं। रोहित, हमने अपने दर्शकों को अभी ट्रंप का वो बयान सुनाया जिसमें उन्होंने कह रहे हैं कि मुज्तबा से मिलने के लिए वो तैयार है और ये एक सम्मानजनक मुलाकात होगी। आखिर इस बयान के मायने क्या निकाले जाए?
4: देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप हमेशा से उनका ये रहा है कि वो मिलने के लिए उत्सुक रहते हैं, लोगों से बात करने के लिए। ये वही प्रेसिडेंट है जो किम जोंग उन से मिले थे अपने पहले टर्म में, तो ये कोई शॉकिंग वैल्यू नहीं है इस चीज में लेके कि वो कह रहे हैं कि अगर डील होती है और डील के लिए अगर खामने तैयार है तो हम मिलना चाहेंगे। यही बात जब हमने सेक्रेटरी रूबियो से पूछी थी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, जो इंटरव्यू उन्होंने हमें दिया था, उसमें सेक्रेटरी रूबियो ने ये बात कही थी कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे प्रेसिडेंट है, वो हर किसी को मौका देना चाहते हैं, हर किसी से मिलना चाहते हैं, बातचीत जो है वो करना चाहते हैं चीजों को रिजॉल्व करने के लिए। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसी चीज को लेकर उन्होंने ये बात कही कि अगर हमें तैयार है डील करने के लिए और अगर डील होती है तो उसमें बिल्कुल वो उनसे मिलके इस डील को फाइनलाइज करने की कोशिश करेंगे। हालांकि इसे थोड़ा एक उस ट्रंप के स्वरूप में देखा जाना चाहिए कि इज मोर देन विलिंग अगर कुछ होता है तो। हालांकि ऐसे कोई प्लान है नहीं अभी तक, व्हाइट हाउस ने इस तरह की कोई बात नहीं कही है कि इस तरह की कोई डील के लिए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ट्रैवल कर रहे हैं, इस तरह की कोई चीज होगी। बट एक सिग्नल दिया जा रहा है कि अमेरिका जो है और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है इस डील को रीच करने के लिए पूरी तरह से इसमें कमिटेड है, और अगर उसमें ऐसा हो कि खामनेई उनसे मिलना चाहते हैं डील को समझने के लिए या उस पर डिस्कशन करने के लिए, तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से तैयार है।
3: बिल्कुल रोहित, देखिए कहा तो यही जा रहा है कि देखिए डील पूरी तरीके से अमेरिका चाहता हो जाए, लेकिन आखिरकार डेडलॉक कहां क्रिएट हुआ है, क्यों लगातार ये डील अब तक नहीं हो पा रही है, क्या क्या मजबूरी लगातार दोनों तरफ से देखी जा रही है?
4: देखिए डील तो वहीं फंसी हुई है जहां पहले थी, ये कोई नई बात नहीं है। जो यूरेनियम मैनेजमेंट को लेकर बात है, क्या अमेरिका यूरेनियम वहां से निकाल पाएगा, ईरान क्या आश्वासन दे पा रहा है अमेरिका को कि वो जो न्यूक्लियर डेवलपमेंट है उनका प्रोग्राम है मिसाइल्स को लेकर, उसे रोकेगा नहीं रोकेगा। और तीसरा स्टेट ऑफ हॉर्मुज, जिसे अब ईरान जो है टोल लगाना चाहता है, और सेक्रेटरी रूबियो ने अगेन हमसे जब बात की तो यही कहा था कि टोल्स जो है वो नहीं लगाना चाहिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर, बहुत गलत मॉडल जाएगा पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में। तो मुझे लगता है यही तीन चीजें हैं जो पहले काफी महीनों से चल रहा है, यही बातचीत चल रही है। और दूसरा जो खामनेई को लेकर जो हमने पहला जो बात की, पहला ऐसा माना जा रहा था कि शायद जो IRGC है और साथ ही साथ जो दूसरे लोग हैं जो इस डील को कम्युनिकेट कर रहे हैं उनके बीच में कोई गैप है, लेकिन जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कह दिया है कि खामनेई खुद इन्वॉल्व है, वो सुन रहे हैं चीजों को, मुझे लगता है कि दो तीन वो जो चीजें हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज, न्यूक्लियर वेपन डेवलपमेंट जिसमें ईरान जो है पूरा आश्वासन दे कि इस तरह से वो न्यूक्लियर वेपन्स को एनरिच नहीं बनाएगा, और तीसरा जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है उसे खोला जाए जल्दी। तो ये अगर तीनों चीज पे ईरान मान जाते तो मुझे लगता है कि ये डील जो है जल्द हो जाएगी।
3: बिल्कुल उम्मीद तो यही की जा रही है रोहित, देखिए ये डील जल्दी हो जाए क्योंकि लोगों के ऊपर यानी पूरी दुनिया के ऊपर इसका जो प्रभाव पड़ा है वो बहुत ज्यादा विनाशकारी है। अब अमेरिका और ईरान तनाव के बीच ईरान के सुप्रीम लीडर रहे अली खामनेई का अंतिम संस्कार रुका हुआ है। ईरानी मीडिया का दावा है कि बहुत जल्द अली खामनेई का दफनाया जाएगा। IRGC के मुताबिक खामनेई को 21 जून को के आसपास आखिरी विदाई दी जा सकती है, लेकिन सवाल यह है कि 28 फरवरी को अली खामनेई की मौत अमेरिका और इसराइल में के हमलों के दौरान हो गई थी, तो आखिरकार अब तक 3 महीनों में ज्यादा वक्त में गुजर चुके हैं, लेकिन इनको स्पुर्दे खाक क्यों नहीं किया गया? क्या अब भी ईरान को लगता है कि कहीं ईरान के ऊपर कोई बड़े हमले ना हो जाए?
5: क्यों खामनेई को अब तक दफनाया नहीं गया? क्या बेटे मुश्तबा से जुड़ा है कोई बड़ा राज? क्या हमले का डर है या फिर वजह कुछ और? क्या 21 जून को खामनेई को दफनाया जाएगा? ताबूत में अली खामनेई का आखिरी राज? अट्ठाईस फरवरी को अमेरिका और इजराइल के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की मौत हुई। इसी हमले में अली खामनेई के बेटे मुश्तबा खामनेई भी बुरी तरह जख्मी हो गए थे। पिता के निधन के बाद सर्वसम्मति से मुश्तबा खामनेई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर बनाया गया, लेकिन मुश्तबा के सुप्रीम लीडर बनने के बाद भी अली खामनेई को सुपुर्दे खाक नहीं किया गया। ऐसा क्यों है, इसे लेकर कई तरह की थ्योरी सामने आई। हालांकि एक बार फिर ईरानी मीडिया में छपी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 21 जून के आसपास ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई को दफनाया जाएगा। सवाल यही है कि अली खामनेई का अंतिम संस्कार क्यों अब तक टलता रहा है? बड़ी बात यह है कि अली खामनेई के शव को कहां रखा गया है, इसे लेकर अब तक ईरान सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है। जानकारी के मुताबिक खामनेई के शव को किसी गुप्त लोकेशन पर रखा गया है। मार्च में अंतिम दर्शन के लिए तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला कॉम्प्लेक्स में रखने की तैयारी थी, अचानक अंतिम दर्शन के कार्यक्रम को सुरक्षा कारणों से टाल दिया गया। 28 फरवरी के बाद कई ऐसे मौके आए जब खामनेई को दफनाए जाने की खबरें आई।
3: दरअसल ईरान को अब भी लगता है कि अमेरिका और इसराइल मिलकर कभी भी अपनी बातचीत से या अपने वादों से पीछे हट सकते हैं, और जून 2025 और फरवरी 2026 के बाद एक बार फिर से ईरान पर बड़े हमले कर सकते हैं। चलिए रणभूमि में आज इतना ही, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.
8: This is the sound of Jack buzz cutting his way to a small fortune. To Jack, every time he cuts his own hair, that's $50 right in his pocket. If Jack sees DIY buzz cuts as a saving strategy, Wells Fargo is right behind him. And with their mobile app, tracking his savings is easy.
9: Oh, ouch.
8: However you make money work, we can work with that.
10: Mobile carrier's message and data rates may apply. Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
11: All sports, all the time, right here on TuneIn. Catch live sports talk, expert analysis, and nonstop discussion from your favorite stations, like ESPN Radio.
12: Not missed out on one player that the Yankees wanted.
11: Big 12 Radio.
13: Today is Big 12 Insiders Game Day. We're breaking
11: and
13: down.
11: And talk sports.
14: I just can't see a turnaround in the way that we're going to perform and result.
11: And much more. Get your head in the game and never miss a minute of the action. Just search sports or ask your device to play your favorite sports talk station on TuneIn.
15: Akaji, the number...

सपनों की आशियानों की तलाश में निकले घर खरीदारों के लिए चमक धमक वाले विज्ञापनों का माया जाल बिछाया जा रहा है। दिल्ली NCR के रियल एस्टेट मार्केट में इन दिनों लग्जरी और सुपर एरिया के नाम पर बड़े बड़े वादे करने की होड़ सी मची हुई है, लेकिन अक्सर इन सुहाने विज्ञापनों के पीछे की हकीकत वैसी नहीं होती जैसे ब्रोशर में दिखाई देती है। इसीलिए रेरा ने बिल्डर्स को चेतावनी दी है कि विज्ञापनों में बढ़ा चढ़ाकर किए गए दावों की जगह केवल वेरिफाइड फैक्ट्स ही दिखाएं। प्रोजेक्ट की जगह बताने के लिए सुपर एरिया जैसे भ्रामक शब्दों का इस्तेमाल बंद करके कारपेट एरिया की जानकारी दें और अश्योर्ड रिटर्न या गारंटीड रेंटल स्कीम जैसे लुभावने वादों से बिल्डर्स को बचाने की सलाह दी गई है। रियल एस्टेट मार्केट में तेजी का फायदा उठाकर कई बिल्डर्स खरीदारों को जल्द ही पोजेशन और भारी मुनाफे का लालच देकर गुमराह कर रहे हैं। रेरा के नियमों के मुताबिक कोई भी डेवलपर रजिस्टर्ड अग्रीमेंट से पहले खरीदार से कुल कीमत का 10% से ज्यादा भुगतान नहीं ले सकता। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पहली बार निवेश करने वालों को सावधानी से सौदा करना चाहिए। घर खरीदारों को भी ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि केवल रेरा रजिस्ट्रेशन होने का मतलब ये नहीं कि प्रोजेक्ट पूरी तरह से जोखिम से दूर है। कंस्ट्रक्शन में देरी या कानूनी विवाद जैसी समस्याएं रेरा प्रोजेक्ट्स में भी आ सकती हैं। ऐसे में सलाह दी गई है कि गारंटीड रिटर्न वाले प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाने से पहले उनकी लीगल और फाइनेंशियल कंडीशन जरूर चेक कर लें। घर बुक करने से पहले विज्ञापनों पर भरोसा करने की जगह साइट पर जाकर कंस्ट्रक्शन की हालत देखें। बिल्डर का पुराना रिकॉर्ड और पिछले प्रोजेक्ट्स की डिलीवरी रिकॉर्ड की जांच करना भी जरूरी है। प्रोजेक्ट के अप्रूवल और जमीन के मालिकाना हक से जुड़े लीगल डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन खुद करें। अगर कोई बिल्डर वादे से मुकरता है या प्रोजेक्ट में देरी होती है तो घर खरीदार सीधा रेरा पोर्टल पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। रेरा की सख्ती का मकसद घर खरीदारों के अधिकारों की रक्षा करना और रियल एस्टेट बाजार से धोखेबाजी को पूरी तरह से खत्म करना है। आदित्य किराणा, आज तक ब्यूरो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

0: दिल्ली के मालवीय नगर में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, कई इलाकों में सीलिंग एक्शन। अग्निकांड पर सीएम रेखा की बैठक, पुलिस कमिश्नर समेत तमाम वरिष्ठ अफसर मौजूद। अब टीएमसी सांसद भी ममता को दे सकते हैं झटका, करीब एक दर्जन सांसदों के बागी गुट के संपर्क में होने की खबर। ममता की आज पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक। पटना में कोचिंग चलाने वाले फैजल खान के खिलाफ आर्म्स एक्ट में केस दर्ज, गिरफ्तार गार्ड्स का पूछताछ में खुलासा, फैजल खान के कहने पर ही की थी फायरिंग। दुनिया में उथल पुथल के बीच भारत की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर, वित्त वर्ष 2026 में जीडीपी विकास दर अनुमान से ज्यादा, 7.7% की वृद्धि। पटियाला में आईटीआई पास, बेरोजगारों पर चली पंजाब पुलिस की लाठी, पावर काम मुख्यालय पर कई दिनों से कर रहे थे प्रदर्शन, नहीं हटने पर सख्ती।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
0: नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी, दंगल में आपका स्वागत है। आज का दंगल देश में आपदा और अवसर की सियासत पर होगा, क्योंकि एक दिन बाद यानी 8 जून को इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई गई है। खबर है कि 15 विपक्षी दलों को राहुल और खड़गे की ओर से न्योता भेजा गया है। नीट पेपर लीक से लेकर सीबीएसई पेपर जांच, धांधली और तेल गैस की महंगाई से लेकर आर्थिक मंदी और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर विपक्ष को एकजुट करके आगामी मानसून सत्र में सरकार को घेरने का प्लान बनाया जाएगा। मतलब ईरान युद्ध संकट की आपदा में इंडिया गठबंधन मोदी सरकार को घेरने का अवसर तलाश रही है। लेकिन इस बैठक से पहले सबसे ज्यादा चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि कांग्रेस ने तमिलनाडु में जिस तरह डीएमके की हार वाली आपदा में टीवीके के साथ सरकार बनाने का अवसर तलाशा, उसने इंडिया गठबंधन की मजबूती को कमजोर कर दिया है। अब डीएमके गठबंधन से अलग है, 8 जून वाली बैठक में भी वो नहीं जाएगी। संसद में भी कांग्रेस से दूर अलग बैठने का फैसला डीएमके कर चुकी है। इसी बीच आपदा में अवसर की एक और कहानी सामने आ रही है। बंगाल में ममता बनर्जी की सियासत घोर आपदा में चल रही है, चुनाव हार चुकी है, अब पार्टी भी टूट रही है, विधायक तो टूट ही चुके हैं, अब संसदीय दल में भी टूट की खबर आ रही है और विपक्षी दलों के सिर आई इस विभिन्न तरह की आपदा में सरकार भी अवसर तलाशने की कोशिश कर रही है। खबर है कि सरकार ने अब आगामी मानसून सत्र में एक बार फिर परिसीमन बिल लाने की तैयारी कर रखी है। पिछले विशेष सत्र में यह बिल लोकसभा में 54 वोटों से हार गया था। अब बदले हुए राजनीतिक समीकरण में सरकार एक बार फिर इस बिल को पास कराने की जुगत में है। तो इन्हीं तमाम मुद्दों पर दंगल में हम चर्चा करेंगे। चुनाव दर चुनाव इंडिया गठबंधन दिनों दिन मजबूत हो रहा है या कमजोर से भी और कमजोर होता जा रहा है, यह भी पूछेंगे। 2 साल बाद जब इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही है तो देश में क्या बदला है, तमाम मुद्दों पर चर्चा से पहले इंडिया गठबंधन की इस मीटिंग को लेकर यह रिपोर्ट देखते हैं।

0: अगले महीने संसद का मानसून सत्र आने वाला है और उससे पहले सरकार और विपक्ष दोनों अपने अपने मोर्चे तैयार कर रहे हैं।
1: दो दिन बाद इंडिया गठबंधन की बैठक, दूसरी तरफ सरकार फिर से संसद में डी लिमिटेशन बिल लेकर आने के संकेत दे रही है। ठीक दो साल पहले 5 जून को भी इंडिया गठबंधन के 21 दलों की बैठक हुई थी, तब सबने मिलकर बीजेपी को पटकनी देने के फॉर्मूले गढ़े, लेकिन उसके बाद बीजेपी ने हरियाणा में कांग्रेस को हराया, महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी, शिवसेना यूबीटी, समाजवादी पार्टी सबको हराया, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस से हारी मगर दिल्ली में केजरीवाल को हराया, बिहार में आरजेडी को हराया, बंगाल में ममता को हराया, असम में पूरे इंडिया गठबंधन को हराया। और अब इस अविजित बीजेपी की काट क्या है, इसी का मंथन करने इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई गई। कांग्रेस की ओर से 15 दलों को न्योता भेजा गया, लेकिन तमिलनाडु में दूध की जली डीएमके अब विपक्षी एकता की छाछ से भी परहेज कर रही है। कनिमोझी ने कांग्रेस से ऐसा नाता तोड़ा कि संसद में अलग बैठने की बेंच तक तय करवा चुकी, दो टूक कह दिया कि 8 जून की बैठक में डीएमके नहीं जाएगी। अब कांग्रेस समझाने मनाने की कोशिश करती है।
2: Yes. That is what this mean. We are not no more in the India block. That is why we are not attending the meeting.
3: This DMK के साथ रहने के बावजूद भी वहाँ सरकार आने की कोई गुंजाइश नहीं थी, उसका फायदा बीजेपी उठाएगी ये ध्यान में लेके उन्होंने वो वहाँ निर्णय लिया। और मेरे ख्याल से ठीक है, अभी ये अलायंस जो है ऑल इंडिया का अलायंस है, उनको समझाना पड़ेगा।
0: हालांकि डीएमके के एक प्रवक्ता अन्नादुराई ने कहा कि दिल्ली में देश के मुद्दों पर डीएमके सरकार के खिलाफ ही रहेगी। दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के अंदर विचार हो रहा कि डीएमके की जगह पीवीके को ही गठबंधन में ले लिया जाए। डीएमके कहते हैं कि विजय ने तो सोनिया से मुलाकात तक नहीं की थी, इंडिया ब्लॉक की मीटिंग में क्या जाएंगे।
2: Then they did not go and meet Sonia Gandhi or Rahul Gandhi. But originally his program was to meet these two leaders also.
0: अब देखना है कि 8 जून को राहुल और खड़गे के बुलावे पर कितने दल दिल्ली में एकजुट होते। खबर है कि इस मीटिंग में नीट CBSE पेपर लीक घोटाले से लेकर युद्ध में तेल गैस संकट से लेकर आर्थिक मंदी, महंगाई, बेरोजगारी जैसे तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। सरकार ने परिसीमन बिल का जिक्र छेड़ दिया है तो उस पर भी रणनीति बनेगी और TMC के अंदरूनी झगड़े के बाद पैदा हुए हालात को लेकर भी चर्चा हो सकती है। खबर है कि इंडिया गठबंधन की ये बैठक ममता बनर्जी के कहने पर बुलाई जा रही है, क्योंकि ममता बनर्जी नतीजों के ठीक बाद कह चुकी है कि अब वो आजाद पंछी है और पूरी तरह मोदी सरकार के खिलाफ विपक्षी एकजुटता पर काम करेंगी।
4: राहुल गांधी रैंग अप मी, अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, तेजस्वी, हेमंत सोरेन यादव झारखंड चीफ मिनिस्टर एंड ऑल द यूनाइटेड इंडिया लीडरशिप, दे आर आल्सो टुगेदर, विल बाउंस बैक, विल फाइट दिस बैक।
0: पहले इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने की हसरत के साथ कांग्रेस की मीटिंग से दूरी रखने वाली ममता बनर्जी इस बार खुद दिल्ली की बैठक में शामिल होने वाली है, क्योंकि अब मसला सिर्फ विपक्षी एकता का नहीं उनकी पार्टी की फूट का भी है और इसी बदले हुए राजनीतिक समीकरण का फायदा बीजेपी संसद में उठाने की कोशिश कर रही है। और इसीलिए खबर कि परिसीमन बिल फिर से संसद में लाया जा रहा है, जिसमें संसद की सीटें 543 से बढ़ाकर 850 करने की योजना रही है। जो कि संसद में नंबरों की बात की जाए तो लोकसभा में अलग अलग बैठने की व्यवस्था करने के बाद डीएमके के 22 सांसद बिल का समर्थन करेंगे, विरोध करेंगे या एब्सटेन करेंगे अभी साफ नहीं। टीएमसी के 28 सांसद जिसमें 20 सांसद नाराजगी बताए जाते हैं। पिछली बार सदन में मौजूद 528 में से परिसीमन बिल के समर्थन में 298 के बनाम 230 वोट पड़े थे, 54 वोटों से बिल गिर गया था। इंडिया गठबंधन के दलों के हालात और बैक चैनल हो रही बातचीत में आंकड़े पक्ष में आ जाए तो सरकार के लिए बिल पास कराना आसान हो सकता है। आज तक ब्यूरो।
5: तो जून 2023 में पहली इंडिया अलायंस की बैठक हुई थी और तब इंडिया अलायंस फॉर्म किया गया था। मुंबई में जो तीसरी बैठक हुई उसमें इंडिया अलायंस को इंडिया अलायंस का नाम दिया गया। ये 11वीं बैठक हो रही है, लेकिन इस बार इंडिया अलायंस का सुर कहीं ना कहीं बदला हुआ नजर आ रहा है। ममता बनर्जी खुद कह रही है कि अब वो इस बार मीटिंग में जाएंगी। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस पार्टी क्या इंडिया अलायंस के साथ रहेगी, इसको लेकर कई सवाल भी उठाए जा रहे थे। चर्चा होना बहुत जरूरी है कि आपदा में अवसर कौन ढूंढने की कोशिश कर रहा है, क्या सरकार भी परिसीमन बिल लाएगी, तमाम मुद्दे होंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं। सैयद जफर इस्लाम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। अजय वर्मा कांग्रेस के तरफ से इस चर्चा में शामिल होंगे। डॉक्टर आशुतोष वर्मा समाजवादी पार्टी के तरफ से इस चर्चा में शामिल होंगे। स्वयं प्रकाश पुरोहित तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता भी इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। आनंद दुबे शिवसेना यूबीटी से और धीरेन्द्र कुमार लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता वो भी इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। तीन सवाल पहले इस पैनल के सामने। पहला सवाल, क्या 8 जून की बैठक के बाद इंडिया गठबंधन मजबूती से सरकार को घेर पाएगा, क्योंकि अब सभी लोग कहना शुरू कर चुके हैं कि इंडिया अलायंस का होना जरूरी है, खास करके विपक्षी दल। 15 विपक्षी दलों को यह न्योता भेजा गया है। दूसरा सवाल, क्या डीएमके से विश्वासघात के बाद क्षेत्रीय दलों का कांग्रेस पर भरोसा घटा है? ये सवाल भी हम जो क्षेत्रीय दल है उनसे पूछेंगे। कई क्षेत्रीय दलों को यह बात मंजूर रास नहीं आई थी। और तीसरा सवाल, क्या विपक्षी दलों की बदहाली का फायदा उठाकर सरकार परिसीमन बिल पास करा लेगी? 54 वोटों से लोकसभा में यह बिल गिरा था। क्या इस बार तृणमूल कांग्रेस में जो टूट हो रही है वो डीएमके का साथ छोड़ देना, इसका फायदा सरकार उठाएगी? इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले मेरे साथ संजय राउत जुड़ रहे हैं। शिवसेना यूबीटी के सांसद है, मुख्य प्रवक्ता है और उसके साथ साथ इंडिया अलायंस की बैठक में हर बार वो शामिल रहे हैं। इंडिया अलायंस टूट रहा है राउत साहब, क्या आपकी पार्टी इस बैठक में शामिल हो रही है? क्योंकि खबरें आ रही थी कि आप सोच रहे हैं शामिल होना है नहीं होना है, क्या करना है, फाइनली आप शामिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं?
6: बात ऐसी है कि विधानसभा चुनाव हो गए 4 या 5 स्टेट में लगता है, पश्चिम बंगाल, केरलम, असम, पौंडीचेरी, और जो नतीजे आए हैं केरल छोड़कर सब जगह पर बीजेपी जीत गई। कैसी जीती भगवान को मालूम, श्री राम को मालूम। पश्चिम बंगाल में जो हम देख रहे हैं चुनाव के नतीजे आने के बाद जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश हो रही है या टूट गई है, देखो आप चुनाव जीतने के बाद भी पार्टियां तोड़ रहे हो, ये आपकी हवस है, ये नशा है और ये नशा देश के लिए खतरा बन चुकी है। असम में भी ऐसा ही हो गया। इस सभी मुद्दे पर चर्चा होना जरूर है कि आगे की रणनीति क्या होगी इंडिया ब्लॉक की।
5: लेकिन आप भी तो टूट रहे हैं ना, आप डीएमके अभी आपके साथ में नहीं है। कई लोग कह रहे हैं डीएमके बाहर हो चुकी है, कई लोग कह रहे हैं टीवीके को लेके आइए, तो अभी क्या टीवीके को साथ में ले लेना चाहिए?
6: बात ऐसे है कि देखिए जो मेरी जानकारी है, तमिलनाडु की जनता ने सत्ता परिवर्तन के पक्ष में मैंडेट दिया है। टीवीके को पूरा बहुमत नहीं मिला है, बॉर्डर पे है, कांग्रेस ने सपोर्ट किया और सरकार बन गई। उससे पहले राहुल गांधी जी ने डीएमके के जो सुप्रीमो है मिस्टर स्टालिन से बात की कि इस बार हमको अगर बीजेपी और एआईडीएमके को रोकना है तो हमको ये सरकार बनाने देने की हमारी जरूरत है। तो टीवी के को जो मैंडेट मिला था वो मैंडेट के हिसाब से कांग्रेस ने सपोर्ट किया और डीएमके ने थोड़ा संयम बरतना चाहिए था, ये मेरा कहना है। और तुरंत डीएमके ने लोकसभा स्पीकर को लेटर दिया कि हमें अलग से सीट का अरेंजमेंट दीजिए वगैरह। लगता है कि धीरे धीरे डीएमके का गुस्सा भी शांत हो जाएगा, लेकिन अब हमें एक नया मित्र मिला है टीवीके, और कांग्रेस के साथ उनका अलायंस तमिलनाडु में चल रहा है, उसका स्वागत करना चाहिए।
5: नहीं, वो तो ठीक है कि नया मित्र आप में ज्वाइन कर रहा है, लेकिन क्या इंडिया गठबंधन बचा है? क्या एकजुट होकर सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए जो बना था क्या वो बचा है? क्योंकि पहले 25-26 पार्टियां उसमें आती थी, आज 15 पार्टियों को न्योता दिया गया है।
6: हम चुनाव नहीं हार रहे, भारतीय जनता पार्टी के पास एक ऐसी सिस्टम बनी है वो पूरा इलेक्शन हाईजैक कर लेते हैं, पूरा सिस्टम हाईजैक कर लेते हैं और चुनाव जीतते हैं। ये कोई साधारण विजय नहीं है पश्चिम बंगाल का, अगर आप अभी बैलेट पेपर पर चुनाव लीजिए पश्चिम बंगाल का, आपको पता चलेगा क्या हो रहा है।
5: नहीं, लेकिन चुनाव आप नहीं हार रहे हैं, लेकिन क्षेत्रीय दल तो टूट रहे हैं ना। बंगाल में हम देख रहे हैं महाराष्ट्र में क्षेत्रीय दल टूट रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? इसीलिए तो इंडिया गठबंधन कमजोर हो रहा है।
6: पार्टियां टूट नहीं रही है, पार्टियां तोड़ी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी उस दिशा में देश को ले जा रही है कि वन पार्टी वन नेशन वन इलेक्शन, वन पार्टी रहेगी देश में बीजेपी, बाकी कोई नहीं रहेगा, ना कोई रीजनल पार्टी रहेगी, ना कोई और अपोजिशन पार्टी रहेगी, बस हम ही हम रहेंगे।
5: नहीं, लेकिन चर्चा इस बात की भी है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी खास करके ये सोचने लगी है कि अच्छा क्षेत्रीय दल कम हो रहे हैं, इन्हीं क्षेत्रीय दलों ने कांग्रेस को हरा कर ही तो अपना पांव जमाए थे उस राज्य में। अब अगर क्षेत्रीय दल टूट रहे हैं तो कांग्रेस भी खुश हो रही है, कांग्रेस को भी लग रहा है कि अच्छी बात है, अगर क्षेत्रीय दल टूटेंगे तो हमको मौका मिलेगा। आज की स्थिति में यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है। अब आगे क्या करना चाहिए?
6: कांग्रेस के इंदिरा जी के जमाने से रीजनल पार्टी है, पंडित नेहरू जी के जमाने से रीजनल पार्टी है, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये सभी पार्टियां जो है, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे महाराष्ट्र में एनसीपी हो, या और कुछ जगह पर अपने हमारे तेलंगाना में क्या बीआरएस हो, यह ओरिजिनल कांग्रेस पार्टी से पेट से निकली हुई पार्टी है। यह अगर सभी एक साथ कांग्रेस के साथ जुड़ जाते हैं और एक महान कांग्रेस बन जाती है तो जरूर एक बड़ा अपोजिशन इस देश में खड़ा हो जाएगा।
5: धन्यवाद संजय राउत, यहां पर कह रहे हैं एक बड़ा बयान संजय राउत की तरफ से कि इंडिया गठबंधन की बैठक के पहले संजय राउत ये कह रहे हैं कि जो कांग्रेस से बाहर निकली हुई क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो सभी कांग्रेस में शामिल हो जाए, सबसे बड़ा फायदा इससे हो पाएगा इंडिया गठबंधन के लिए। शिवसेना यूबीटी के नेता सांसद ये कह रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी, एनसीपी शरद पवार या बीआरएस, जो कांग्रेस के पेट से बाहर निकली हुई पार्टियां हैं वो सभी साथ में हो जाए, एकजुट हो जाए। यहां पर हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ रहे हैं, एनसीपी एसपी और दोनों को कह रहे हैं कि दोनों साथ में हो जाए। यहां पर स्वयं प्रकाश पुरोहित, देखिए क्या कह रहे हैं आपके दोस्त, और एनसीपी एसपी को भी बोल रहे हैं वापस चले जाइए, अब हो गया आपका, नहीं बचेगा कुछ।
7: देखिए ये उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, उनकी व्यक्तिगत राय है, उनका सम्मान करना चाहिए, हर व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत राय होती है, मगर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 28 साल पुरानी पार्टी है और ममता बनर्जी के नेतृत्व में उसने बहुत शानदार काम किया है पूरे देश में, चाहे वो विपक्ष में रही हो चाहे सत्ता में रही हो, बहुत अच्छा काम किया है। तो अगर अपनी पार्टी को अगर मर्जर करने की बात है तो उसका फैसला ममता बनर्जी के अलावा कोई नहीं ले सकता, मेरी पार्टी की मैं बात कर सकता। दूसरी जो पार्टी की आप बात कर रहे हैं, देखिए कॉमन विचारधारा, अभी जो लड़ाई है एक तरफ हिंदुत्व के नाम पर, एक तरफ कुछ लोग हैं जो मुसलमान के नाम पर वोट मांगते हैं, जबकि हमारे देश का संविधान कहता है कि हम सर्वधर्म संभाव की बात करें, हमारी नेत्री क्या कहती है, धर्म अपना अपना उत्सव सबका, ये ममता बनर्जी ने एक नारा दिया था। ममता बनर्जी सभी धर्म के लोगों को लेकर चलने की बात करती है, कांग्रेस भी वही बात करती है, गांधी के विचारों को ममता बनर्जी ने जिया है, उस सादगी को जिया है, आज भी सत्ता चली गई है वो अलग बात है, मगर ममता बनर्जी की गरिमा में एक इंची की एक सेंटीमीटर की भी मीटर की भी कमी नहीं है।
5: तो वो सब ठीक है,
7: बड़े लोगों का फैसला है।
5: ममता बनर्जी क्या नेता है, कैसी नेता है, इस पर तो हम कई बार बातचीत कर चुके हैं, आज स्थिति बदल चुकी है। देखिए राजनीतिक स्थिति के हिसाब से बात करनी चाहिए, पहली बार हम देख रहे हैं कि ममता बनर्जी कैमरा के सामने आकर ये कह रहे कि इंडिया अलायंस की बैठक होनी चाहिए। अब आपके इंडिया अलायंस के एक दोस्त है शिवसेना यूबीटी, ममता बनर्जी उद्धव ठाकरे को राखी बांधती है, आपके भाई वाली पार्टी से आपको एक एक एक तरीके से आप कहा गया है, एक मशवरा दिया गया है, अब हो चुका, आपकी पार्टी टूट रही है, कांग्रेस में शामिल हो जाइए, एक ही विचारधारा है, एक बड़ा गठबंधन बन जाएगा अगर पार्टी में आप शामिल हो जाएंगे तो।
7: नहीं नहीं नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, क्योंकि हर पार्टी के अपने एक कार्यकर्ता होते हैं, एक कार्यकर्ता की टीम होती है, मैं इस पक्ष में व्यक्तिगत तौर पर नहीं रहूंगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी पर अगर आप किसी भी एक पार्टी में, चाहे तृणमूल कांग्रेस में सारे मिल जाए, हमने हमारी नेत्री ममता बनर्जी ने जब 2024 में ये मीटिंग हुई थी चुनाव के पहले, 2023 में जब पहली मीटिंग हुई थी तब कहा था एक व्यक्ति के खिलाफ पे बीजेपी का एक उम्मीदवार, उसके सामने इंडिया गठबंधन का एक उम्मीदवार, INDIA इंक्लूसिवनेस की बात करके करके ममता बनर्जी ने ये नाम दिया
5: और उसी के तहत चुनाव लड़ने जा रहे थे, असेंबली के चुनाव हो रहे थे, तब तो आप भूल गए इस बात को, आपने तो कांग्रेस को झूठी की नोक पर रख दिया, इसीलिए तो कांग्रेस पार्टी आज खड़ी होकर कह रही है।
7: 2024 का जो लोकसभा का चुनाव था, कांग्रेस के जीते हुए कितने सांसद थे, हमने उनसे ज्यादा सीटें उनको देने की बात की थी कि आपके दो सांसद जीते हुए हैं, आप तीन पर लड़िए, मगर वो अड़ जाते हैं अधीर रंजन चौधरी कि हमें 10 चाहिए, 5 चाहिए। अरे आपकी ग्राउंड नहीं है वहां पे। अभी अधीर रंजन चौधरी,
5: तो अधीर रंजन चौधरी आप ही के लोगों को न्योता दे रहे हैं कि भाई हमारे पास शामिल हो जाइए करके। एक बड़ा इंडिया अलायंस का, इंडिया अलायंस के बैठक के पहले एक दूसरे पर नजर लगाए बैठे हैं, टूट रहे तो हमारे पास आ जाइए, बीजेपी के पास कहां जा रहे हैं, ओपन न्योता दे रहे हैं अधीर रंजन चौधरी।
7: 1:1 इलेक्शन होना चाहिए, 1:1, एक बीजेपी का कैंडिडेट उसके सामने।
5: आनंद दुबे भाई, आपके नेता तो सबको राय देते घूमते रहते हैं, ठीक है, क्या आप भी तो सोच लीजिए ना, आपकी भी तो पार्टी टूटी है, लोग बाहर निकल गए, अपने भी तो गिरेबान में झांक कर देखिए ना, दूसरे को राय दे रहे हैं कि आप शामिल हो जाइए कांग्रेस पार्टी में, एक चुनाव हार गए शामिल हो जाइए, आप भी तो चुनाव हार गए विधानसभा का।
8: साहिल भाई नमस्ते, सभी को सादर प्रणाम। देखिए हम एक परिवार में बैठे हैं, जब हम परिवार में बैठे हैं तो हम परिवार की भलाई के लिए बात करेंगे। आदरणीय संजय राउत साहब यही कह रहे हैं कि अब सब इकट्ठे हो जाओ। आखिर कांग्रेस से निकल के टीएमसी बनी, कांग्रेस से निकल के एनसीपी बनी, कांग्रेस से निकल कर बीआरएस बनी, और भी बहुत सारे छोटे छोटे दल निकले, वो सब इकट्ठे होके कांग्रेस को मजबूत बनाओ ताकि कांग्रेस और बीजेपी लड़े और बाकी सभी दल उनको सहयोग करें। ये तो अच्छी एक उन्होंने सलाह दी है, मानना न मानना अलग बात है। और साहिल भाई देखिए, इंडिया गठबंधन तभी मजबूत होगा ना जब एक दूसरे की बात वहां कहने की लोकतांत्रिक आजादी होगी। हमारा गठबंधन बहुत मजबूत गठबंधन है। ये अलग बात है कि हमारी मीटिंगें थोड़ी कम होती हैं, हमारा कौन नेता है आज तक हमें भी पता नहीं चला, समय समय पर इसकी बैठक भी होती रहती है, तो ऐसा इसका एक रूपरेखा है। भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए एक स्किल जो आपको लानी होगी वो तो सीखनी होगी। चुनाव
5: जीतने की कला, चुनाव आनंद दुबे, एक वक्त था जब इंडिया अलायंस के भीतर आपको भी सपने आ रहे थे कि उद्धव ठाकरे को नेता बनाया जाए, वहां पर तृणमूल कांग्रेस ये कह रही थी कि ममता बनर्जी, यही प्रवक्ता वहां पर बैठे हुए थे और कह रहे थे कि ममता बनर्जी बेहतर लड़ लेती है कांग्रेस से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के साथ, ममता बनर्जी को इंडिया अलायंस का नेता बनाया जाए। अभी तो क्लियर हो गया ना, क्षेत्रीय पार्टी आ रही है, कांग्रेस पार्टी लड़ रही है
8: इस पूरे, नहीं, क्षेत्रीय दल अपने अपने क्षेत्र में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं, इसमें अगर बड़े भाई की भूमिका निभानी है तो कांग्रेस को निभानी होगी। अब आप सोचिए, आम आदमी पार्टी से जब लड़ना होता है तो कांग्रेस लड़ती है, जबकि लड़ना चाहिए बीजेपी को। पश्चिम बंगाल में बीजेपी से लड़ना चाहिए, टीएमसी को लड़ लेती है कांग्रेस। गुजरात में कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई होनी चाहिए, हो जाती है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की लड़ाई। दिल्ली में देख लीजिए, अब साउथ में देख लीजिए। तो कांग्रेस पार्टी को बैठकर, अगर कांग्रेस बड़ा पेड़ है, कांग्रेस एक बरगद है, तो कांग्रेस को ये सोचना होगा कि जो छोटे मोटे घास उसके अगल बगल जमे हैं उनको भी
5: बरगद के पेड़
8: पड़ेगा।
5: को काट काट के तो टहनियां इधर उधर फैली थी, उसी से कहीं तृणमूल कांग्रेस खड़ी हो गई, कहीं एनसीपी खड़ी हो गई, कहीं बीआरएस खड़ी हो गई थी। अजय वर्मा जी, संजय राउत का सुझाव, क्या आपको लगता है कि होने का वक्त आ गया है अभी?
9: देखिए साहिल जोशी जी, संजय जी जो बात कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, देश हित की बात कर रहे हैं, हमें देश को बचाना है। देश में जो आर्थिक सुनामी, आर्थिक तूफान आना है, उसके लिए देश के सारे दलों को मिलकर, देश की सरकार की जो नीतियां चल रही हैं, कहां हम लोग थे, हमारा डॉलर देखो 100 के पार पहुंचने जा रहा, पेट्रोल तो 100 पार कर ही गया है, तो ये गठबंधन बनाकर और उसके खिलाफ, सरकार के खिलाफ जाकर हम लोग, देखिए आपका प्रोग्राम का नाम दंगल है, बहुत बढ़िया नाम है, अगर हम एक उंगली से दंगल लड़ेंगे तो नहीं जीत पाएंगे, और मुट्ठी बनाकर घूसा मार के दंगल लड़ेंगे तो सामने वाले के दांत भी तोड़ देंगे और जीत भी जाएंगे। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द दंगल, मतलब मजबूती, एकता और एकता में समरसता, सब मिलके लड़ेंगे। तो संजय जी जो कह रहे हैं, ममता जी भी आज भी कह रही है, हमने कल भी कहा, अभी इनके पुरोहित जी कह रहे थे हमने कोई 10 सीट नहीं मांगी थी, अधीर रंजन जी ने भी और हमारे हाईकमान ने भी 4-5 सीट की बात थी, ममता जी ने, चलिए उनका जो निर्णय रहा कोई बात नहीं, अब जो हो गया जो बीती बातें छोड़िए, आगे चल के देख। तो मैं बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने निर्णय किया है, चूंकि अभी मीटिंग ऑफिशियल भी चल रही है और निर्णय, चूंकि सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा 2027 में होने वाले 7 स्टेटों के चुनाव है, उसकी रणनीति बनाकर हम 29 की भूमिका तय करेंगे, क्या करना है, कैसे करना है, महत्वपूर्ण हिंदीवासी और दोनों तरफ के क्षेत्र हैं।
5: मैं तो थोड़ी याद दिला दूं आपको अजय वर्मा जी,
9: हम चाहते हैं कि हमें कोई डाउट
5: नहीं, 11वीं बैठक हो रही है इंडिया अलायंस की।
8: साहिल भाई
5: अजय वर्मा जी, एक याद दिला दूं आपको मैं, सुनिए, हाँ आता हूँ आपके पास, लेकिन एक बात मैं अजय वर्मा जी को याद दिला,
9: बताइए साहिल,
5: ये 11वीं बैठक यहाँ पर हो रही है, 11वीं बैठक हो रही है, इससे पहले की बैठकों में जरा आप निकाल के देखिएगा किस तरीके से क्षेत्रीय दल के नेता उठकर ये कहते थे कि कांग्रेस में दम नहीं है, बीजेपी के खिलाफ लड़ नहीं सकती, जिस तरीके से हम क्षेत्रीय दल लड़ सकते हैं उस तरीके से बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस नहीं लड़ पा रही, वो हार जाती है, और इसीलिए कांग्रेस इंडिया अलायंस का नेतृत्व नहीं कर सकती। अब सबको जमी दोस्त कर दिया है तो सबको लगता है कि अभी इंडिया अलायंस की बैठक होनी चाहिए, ऐसे तो आपके दोस्त है और वो आपको भी इसी तरीके से देख रहे हैं। आशुतोष वर्मा जी यहाँ पर बैठे हुए, पिछली बार जब हमने चर्चा की थी उन्होंने कहा था डीएमके के साथ जो आपने किया वो गलत किया, कैसे ये मुट्ठी कैसे बनेगी, आपको जब लगता है तब उंगली निकाल लेते हैं आप।
9: मैं इसी का जवाब,
8: 10 सेकंड साहिल भाई, 10 सेकंड।
9: इंडिया गठबंधन, देखिए इंडिया गठबंधन में, भाई साहब प्लीज बाद में बात करना, इंडिया गठबंधन में इंटरनल डेमोक्रेसी है, हमारे सब लोगों को, सारे सहयोगी एक दूसरे की बात खुल के रख देते हैं, अधिनायक बात भाजपा की तरह मोदी जी की तरह नहीं है कि उंगली हुआ इशारा हुआ और एक तरफ जैसे चाहे तोड़फोड़ करके गठबंधन, सब तोड़फोड़ देखिए, महाराष्ट्र को देखिए, अब बिहार को देखिए, झारखंड में देखिए, और सब जगह देखिए तोड़फोड़ करके क्या होता है, सबका साथ सबका विकास नहीं होता, सबका साथ बीजेपी का विकास और सबका विनाश हो जाता है, यह इनका मूल सूत्र है। हमारे यहाँ इंटरनल डेमोक्रेसी है, सबकी बात सुनते हैं, निर्णय जब आएगा मौके पर मजबूती से मिलकर लड़कर, हमारा उद्देश्य यह है इस देश से बीमारी को दूर भगाना है, इस देश से। अब देखिए दिल्ली,
5: ठीक है आनंद दुबे जी, और उसके बाद सैयद जफर इस्लाम वहां पर, देखिए आज शांति से सुन रहे हैं सब कुछ, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है क्योंकि ममता बनर्जी ने आज कोलकाता में एक बैठक बुलाई थी, तृणमूल कांग्रेस की बैठक ये बुलाई थी और सीमित नेता इस बैठक में बुलाए गए थे, क्योंकि अब पार्टी पर संकट मंडरा रहा है कि क्या तृणमूल कांग्रेस की बागडोर ममता बनर्जी के हाथ से निकल जाएगी। जिस तरीके से पार्टी के भीतर बगावत हुई है, 58 पार्टी के विधायकों ने सीधे सीधे पार्टी के हाईकमान को चैलेंज किया हुआ है, लोकसभा के 3, राज्यसभा के 2 सांसद वहां पर मौजूद है, सिर्फ 7 विधायक और 3 पूर्व विधायक भी बैठक में मौजूद है, सीमित नेताओं को बुलाया गया था ये कहा गया है। मदन मित्रा क्या कह रहे हैं इस बैठक के बाद, जरा वो एक बार सुनते हैं, तो बैठक जारी है।
10: ममता बनर्जी चेयरपर्सन है, उन्होंने बुलाए हैं, जो कहना है क्या मीटिंग का भाषण क्या है, मतलब क्या है, क्या आलोच डिस्कशन की सब्जेक्ट क्या है वो बताएंगे, वो
11: सांसद उनके साथ हैं, बाकी विधायक बोल रहे हैं,
10: वो पूरा बात कर सकता है, पूरा कह सकता है जब पूरा पार्टी उनका साथ है। दे हैव वोन द गेम, दे हैव वोन द इलेक्शन बाय यूजिंग द फेस ऑफ ममता बनर्जी। इफ दे आर रियल पॉलिटिशियंस, अपना हिम्मत है तो लेट देम फाइट बैक वंस अगेन आफ्टर गिविंग द रेजिग्नेशन। Now let them go to the people and let them say that we are fighting without the face of Mamta. Change the jersey. After that you come back, I will salute you. Wafadari hoga. Sher abhi tak mara nahi, Sher jinda hai.
5: अनुपम मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कितनी देर से ये बैठक चल रही है, क्या हो रहा है बैठक के भीतर, क्योंकि बात तो साफ नजर आ रही है कि विधायक तो सुनने को तैयार नहीं है।
12: जी साहिल, देखिए इस वक्त मैं ममता बनर्जी के कालीघाट स्थित आवास के ठीक बाहर हूँ, ये जो विजुअल्स हैं ये ममता बनर्जी के आवास के बाहर के विजुअल्स हैं। 4 बजे के बाद ये मीटिंग शुरू हुई है, लगभग 5 सांसद हैं जिसमें 2 राज्यसभा के हैं और 3 लोकसभा के सांसद हैं, लगभग 8 विधायक उपस्थित हैं और 2 पूर्व विधायक उपस्थित हैं, तो ऐसे में जो कहा जा रहा था पहले से ही कि बहुत लिमिटेड लोगों को बुलाया गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस बैठक में क्या चर्चा हो रही है। जहां तक भीतर से जानकारी है कि इस बैठक में अगली रणनीति क्या होगी, किस तरह से आगे बढ़ना है, क्योंकि यह संकट काल है पार्टी का, पार्टी 2 टुकड़ों में बंटने के लिए पूरी तरह से बैठी हुई है, ऐसे में इस आगे की रणनीति क्या होगी। ममता बनर्जी अलग थलग पड़ चुकी हैं, 60 विधायक अपना अलग गुट बना चुके हैं, कुछ ही विधायक बचे हुए हैं जो लॉयल हैं, लॉयल्टी अब आज भी आप देखिए जो पुराने लोग हैं ममता बनर्जी के साथ वही यहाँ पहुंचे हैं, जो नए लोग हैं वो बिल्कुल कतरा रहे हैं, अब शाइनी घोष नहीं है यहाँ पर। पिछले कई
5: बैठक लंबी चलेगी, मतलब
12: पिछले कई दिन
5: गर्मी के दिन चल रहे हैं कोलकाता के भीतर, लेकिन चुनावी गर्मी इस तरीके से बढ़ी कि ममता बनर्जी की पार्टी बर्फ की तरह पिघल गई और एक महीने के भीतर जिस तरीके से पार्टी की हालत इस वक्त नजर आ रही है, और यहाँ पर अनुपम मिश्रा जब वहां पर बैठक से बाहर निकलेंगे लोग, तो जरा उनको पूछ लीजिएगा, उनके दोस्त संजय राउत यहाँ पर उनको सलाह दे रहे हैं कि अब हो चुका, कांग्रेस में शामिल हो जाइए तभी कुछ आपकी पार्टी बची रहेगी, तो ये सलाह के बारे में भी जरा उनको पूछ लीजिएगा। लेकिन आनंद दुबे, जल्दी से आपकी बात खत्म करिए, उसके बाद सैयद जफर इस्लाम जी के पास भी मुझे जाना है।
8: देखिए, इंडिया परिवार में कांग्रेस पार्टी को सुनिश्चित करना होगा आगामी चुनाव की लड़ाई में कि क्षेत्रीय दलों को क्षेत्र में मजबूती दें और राष्ट्रीय स्तर पर क्षेत्रीय दल उनको मजबूती दें। हम यही तो चाहते हैं, आप राष्ट्रीय राजनीति करिए, लेकिन आप महाराष्ट्र में भी मुख्यमंत्री बनने आएंगे, झारखंड में भी बनने आएंगे, बिहार में भी बनने आएंगे, यूपी में भी बनने आएंगे, तब कैसे, पश्चिम बंगाल में भी बनने आएंगे। आप राष्ट्र की राजनीति करिए और खूब फलिए फूलिए, और हम लोगों को अपने अपने राज्यों में फलने फूलने दीजिए। ये जो प्रेम का आदान प्रदान अगर आप करेंगे तो कांग्रेस की बल्ले बल्ले हो जाएगी, हम लोगों की भी बल्ले बल्ले हो जाएगी, और बीजेपी की तो फिर पूछो मत। तो ये जो प्यारी भूमिका आपको बनानी है, इसमें कहीं कहीं आप पिछड़ जाते हैं, इसीलिए तो हम आपसे कहते हैं कि हम सबको साथ में लेके चलो। आज 15 है, कल 150 हो जाएंगे, लेकिन आपको अगुवाई करनी पड़ेगी, आपको भरोसा देना होगा क्षेत्रीय दलों को।
5: हमारे तो नेता संजय राउत जी ने तो अलग अलग चुनाव में हार का सामना करने के बाद कांग्रेस की अगुवाई अब मंजूर होते हुए नजर आ रही है। इससे पहले क्या कांग्रेस नेतृत्व करेगा कि नहीं करेगा, उसी को लेकर बार बार सवाल यहां पर उठाए जा रहे थे। अजय वर्मा जी, आपके पास ही आता हूं, लेकिन उससे पहले जरा जफर इस्लाम जी, आज एकदम शांति से डिबेट सुन रहे हैं, मतलब वो पॉपकॉर्न लेके बैठे हुए हैं, बस देख रहे हैं कि कैसे कौन क्या बात कर रहे हैं। अजय वर्मा जी, जल्दी से 10 सेकंड के, मुझे जाना है उनके पास में, जल्दी से।
9: ओके ओके, जफर भाई के पास जाइए, पहले जफर भाई को सुनते।
5: नहीं, आप बोल लीजिए ना, जल्दी से एक साथ ही चले जाएंगे उनके पास।
9: हाँ, मैं तो ये कह रहा हूं कि बड़े, देखिए हमारे भाई शिवसेना वाले, हमारे महाराष्ट्र वाले प्रवक्ता बड़े आजकल सौम्य रस में है, और ये पानी हो गए, पानी मतलब जिस रंग में मिलेगा उसी की तरह हो जाएगा, तो इनका स्वरूप वाटर का हो गया, शुद्ध वाटर, ये सब रंग में मिल रहे हैं आजकल बहुत खुशी से, सौ में चेहरा लेकर, बस केवल इतना कहना चाह रहा हूं मैं।
5: चलिए ठीक है, ये क्या है ना कि जैसे मैंने कहा कि बर्फ पिघलकर पानी हो गया है वहां पर, इतनी गर्मी है वहां पर फिलहाल पश्चिम बंगाल के भीतर, एक महीने के भीतर इस तरीके से पिघल जाएगा ऐसा सोचा नहीं था हमने। लेकिन जफर इस्लाम जी, खुशी तीन बात की नजर आ रही है आपके चेहरे पर, एक तो जीडीपी के नए नंबर आ गए हैं जो हेडलाइन हम यहां पर चला रहे हैं, दूसरा इंडिया अलायंस कहीं तितर बितर हो जाएगा तो आपका परिसीमन बिल निकल जाएगा, तो आने वाले चुनाव के लिए भी भारतीय जनता पार्टी एकदम अच्छे पोजीशन में रहेगी, ये सोचकर भी आप कहीं ना कहीं मुस्कुरा रहे हैं, और तीसरा ममता बनर्जी की पार्टी टूट रही है जिस तरीके से, वो सोचकर भी आप शायद मुस्कुरा रहे हैं, तीनों बातें हैं ना एक साथ।
13: ऐसा साहिल जी, देखिए आप कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस जो है बिखर रहा है, ये तो बिखरा हुआ डिसजॉइंटेड अलायंस तो है ही है, न क्लैरिटी है, न विजन है, न डायरेक्शन है, न यूनिटी है, एक दूसरे को सब पीछे से वार करते हैं, और सबको कहीं ना कहीं सत्ता की मोह, सत्ता की लालच, और सत्ता का ये कह रहे हैं फले फूले, अरे आप तो फूल तो चुके हैं, फलेगे नहीं ये इंडिया अलायंस, फलेगी नहीं भाई, इसलिए कि आप लोगों का सबका मन इतना बड़ा है कि हम कहीं ना कहीं राजनीति में सिर्फ सत्ता के लिए राजनीति करते हैं। अरे सेवा की राजनीति करना सीखिए, सेवा की राजनीति में आप फलेंगे, सत्ता की राजनीति में आप फूलेंगे, तो आपके यहाँ ज्यादातर लोग फूले हुए हैं, फले हुए नहीं है। आप खूब खुश रहिए, खुश रहिए भाई, आप हार में भी खुशी है, देखिए राहुल गांधी कम से कम 50 इलेक्शन हार चुके हैं, लेकिन फिर एक बात बता रहा
5: हूँ, उनकी शिकायत क्या होती है मालूम है आपसे, आपसे शिकायत क्या होती है मालूम है उन लोगों की, देखिए बीज तो वो बोते हैं, पेड़ भी वो उगाते हैं, लेकिन जब फल निकलते हैं उसमें ना चुनाव के बाद, तो आप तोड़ के लेके जाते हैं,
13: ऐसा नहीं है,
5: और उसके वजह से वो बिखर जाते हैं।
13: नहीं, इसीलिए ना देखिए नियत क्या होनी चाहिए, जब नियत में खोट हो, नियत होनी चाहिए,
5: फूल तो हो जाते हैं वो, लेकिन आप तोड़ के लेके जाते हैं, दिक्कत उनकी वो है।
13: साहिल भाई, जब आप बीज को बोइएगा तो उस पर नियत क्या होनी चाहिए कि हम इस बीज को बो रहे हैं जनता की सेवा के लिए, देश हित में सेवा के लिए, प्रदेश हित के लिए, यहाँ तो परिवार हित चलता है, परिवार का प्रेम है, सत्ता का प्रेम है, लेकिन जनता का प्रेम नहीं। आप देखिए, आप अगर जनता के लिए प्रेम ना हो तो आप कैसे सत्ता में रह पाएंगे, तो ये जनता के आशीर्वाद की, जनता के दरबार में जाएंगे तो जनता का आशीर्वाद चाहिए। आज मैं दो तीन बातें बहुत अहम कहता हूँ, पहली बात कि देखिए

0: ये लालच में है इनको, इनको तो मतलब क्या कहूं, आप कहीं भी मलाई दे दीजिए भाग जाएंगे। इनको कोई जब कोई इनका आइडियोलॉजी नहीं है, सिर्फ मलाई आइडियोलॉजी है। इसलिए इनको मलाई खाने की आदत है, ये जनता के बीच में जनता की सेवा नहीं कर
1: साहिल
0: सकते
1: जी,
0: हैं। तो
1: साहिल जी, जोशी
0: अभी जरा सुन लीजिए, पूरे बहुत
1: जी
0: देर
1: हो,
0: से सुन रहा है,
1: पटेल
0: बहुत
1: जी।
0: देर से सुन रहा है, मैं जरा सुन लीजिए भाई। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आप जिस दिन ये मन बनाएंगे कि जनता के बीच में जाके काम करना है, तो शायद आपको जनता का आशीर्वाद, अब आशीर्वाद ना भी मिले तो जनता आपसे नाराज नहीं होगी। आज तो जनता आपसे दूर
1: ठीक है
0: भागती है और जनता ने आपको इतना दूर कर दिया कि
1: अजय
0: आप
1: वर्मा
0: नजदीक
1: जी,
0: आ भी नहीं सकते।
1: जरा
0: एक और
1: आशुतोष
0: लास्ट
1: वर्मा जी
0: चीज,
1: को बोलने दीजिएगा।
0: लास्ट
1: हाँ
0: चीज
1: जी
0: दोस्त, खत्म
1: जी
0: कर दो,
1: जी
0: लास्ट चीज। देखिए
1: जी जी खत्म
0: ये जो
1: करिए। ठीक
0: ये
1: है ठीक
0: अलायंस जो है ना, ये बिखरे हुए लोग कभी साथ नहीं आ सकते। ममता बनर्जी कमजोर होती ही याद आ गई। नहीं
1: जफर भाई से मैं एक बात, इनको
0: नहीं
1: एक थोड़ा सा जवाब डिस्कस करना
0: नहीं
1: चाह रहा था।
0: एक मिनट, जनता ये
1: स्टाइल
0: कमजोर
1: जी,
0: हो गई,
1: हम भी
0: जनता के
1: बैठे
0: सामने
1: हुए
0: में
1: हैं।
0: ताकत खत्म हो गई, तो अब ये दौड़ के आ रही है, फलाना 10 नाम ले रही है। कल तक देखिए तो ये तो बिल्कुल मुंह फुला के बाहर बैठी रहती थी,
1: कुल मिलाकर
0: मुंह
1: आशुतोष वर्मा, यहां पर कहने की कोशिश यह है कि जो जफर इस्लाम भी जिसका जिक्र कर रहे हैं, कि ममता बनर्जी हारने के बाद उनको लगता है कि इंडिया अलायंस साथ में होनी चाहिए। इससे पहले वो अपने बाजू दिखा रही थी कि हम ही ताकतवर हैं, हमें कोई जरूरत नहीं है इंडिया अलायंस की, हम अपने बंगाल में अपने आप लड़ लेंगे, इंडिया अलायंस छोड़ दीजिएगा, हमें नहीं आपके साथ रहना है। यही बात कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में भी दिखाई देती है और इसी का फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी उठा रही है। आपने सुना सैयद जफर इस्लाम क्या कह रहे
2: देखिए
1: हैं?
2: साहिल जी, जो इंडिया अलायंस की गठजोड़ता बता रहे हैं और जो जफर भाई ने बताया, तो उनके लिए यही कहूंगा कि सूप बोले तो बोले, छलनी बोल रहे जिसमें 76 छेद। एनडीए गठबंधन जब बना था 1998 में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में, आज उस दौर में कौन सी पार्टी है इनके पास में? एक जनता दल यूनाइटेड और एक आधी टूटी हुई शिवसेना। 1998 के बाद से 99 के चुनाव में आईडीएम की छोड़ गई, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार गिरा के चली गई। 2002 में डीएमके चली गई और जम्मू कश्मीर से नेशनल कॉन्फ्रेंस निकल गई। 2003 से समता पार्टी चली गई, टूट
0: अरे
2: गई,
0: भाई आज
2: मर्जर हो गई
0: सोचिए
2: जेडी
0: ना
2: के रूप में।
0: भाई,
2: 2004, रुक
0: आशुतोष
2: जफर भाई, मैंने
0: भाई
2: आपके बीच में नहीं बोला, मैंने आपके
0: खड़े
2: बीच
0: खड़े
2: में नहीं
0: आज
2: बोला,
0: की
2: तो
0: चिंता
2: पूरा
0: कर
2: सुन लीजिए।
0: लीजिए,
2: नहीं, इतने इतने अधीर मत
0: आराम
2: होइए।
0: से बोलिए, आराम से,
2: 2004
0: कोई
2: में
0: दिक्कत
2: टीडीपी
0: नहीं।
2: ना, 2006 में टीएमसी इनके साथ में थी, वो चली गई। 2009 में बीजू जनता दल चली गई। 2013 में जेडीयू चली गई पहली बार, जब वो डीएनए वाली बात चल रही थी। 2018 में टीडीपी चली गई। 2019 में शिवसेना और यूबीटी में अलग अलग टूट गई और असम गण परिषद भी छोड़ के चली गई। 2020 में शिरोमणि अकाली दल की याद चली गई, फॉर्म लास्ट के ऊपर जो आपने गया था। 2022 में जेडीयू फिर गई दूसरी बार। 2023 में एआईएडीएमके गई, मिजो नेशनल फ्रंट गई। 2024 में जननायक जनता पार्टी और हरियाणा की इंडियन लोकदल चली। कहां टुकड़े इतने फैले हुए हैं?
3: अनिश्चितता और निराशा को पसंद नहीं करता कांग्रेस। बीते 12 वर्षों से अराजकता और अनिश्चितता फैलाकर अपने लिए अवसर खोज रही है, लेकिन देश की जनता उसे बार बार करारा जवाब दे रही है। गुजरात के आप लोगों ने तो कांग्रेस को हाशिए पर धकेल दिया है, लेकिन जहां कांग्रेस की सरकारें हैं वहां भी जनता कांग्रेस के कुशासन से तंग आ गई है। अभी अभी हिमाचल में भी स्थानीय निकाय के चुनाव हुए, कांग्रेस की सरकार है, वहां कांग्रेस बुरी तरह हार गई। हिमाचल की जनता ने कांग्रेस के कुशासन को नकार दिया है। इससे पहले हरियाणा के निकाय चुनावों में कांग्रेस को हार मिली और पंजाब के लोगों ने भी कांग्रेस को स्पष्ट संदेश दे दिया है। संदेश यह है कि कांग्रेस की परजीवी पॉलिटिक्स नहीं चलेगी, कांग्रेस की अराजकता में अवसर ढूंढने की राजनीति नहीं चलेगी। कर्नाटका की जनता में भी कांग्रेस सरकार को लेकर के बहुत आक्रोश है और यही कारण है कि कर्नाटका में भी कांग्रेस को सीएम बदलना पड़ रहा है। साथियों, भारत नकारात्मकता से कहीं आगे निकल चुका है। यह असीमित आशावाद वाला देश है, अद्भुत आकांक्षाओं से लेस

0: देश है। भारत के नागरिक सपनों से भरे हुए हैं, संकल्पों से भरे हुए हैं और संकल्प को सिद्धि में बदलने के लिए प्रतिबद्ध जनता जनार्दन है। और जब देश की जनशक्ति संकल्पित है तो देश का हर लक्ष्य पा सकता है। और यही भारत की ताकत है। आइए हम विकसित भारत के निर्माण को मिलकर एक साथ मिलकर के गति दें। हम सपनों को संकल्प में बदलें और संकल्प को सिद्धि में परिवर्तित करने के लिए अपने आप को झोंक दे। दोस्तों, मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हूं।
1: एक बार फिर विपक्ष और कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। सूरत में जब वो संबोधित कर रहे थे एक सभा को, उसमें उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर अभियान का मजाक उड़ाते हैं निराशावादी। आत्मनिर्भर अभियान का मजाक उड़ाते हुए निराशावादी अपनी राजनीति करना चाहते हैं। इन्होंने जिन्होंने भारत को हमेशा किसी और के भरोसे रखा, उनका यह कहना है कि आपदा में अवसर ढूंढने की कोशिश कांग्रेस पार्टी करती है और इसी की वजह से उनको उसका फल नहीं मिल पा रहा है। अराजकता लोगों को पसंद नहीं है। डॉक्टर आशुतोष वर्मा, एक बार फिर विपक्ष पर प्रधानमंत्री का सीधा सवाल यहां पर, और कह रहे हैं कि इसी की वजह से विपक्ष नहीं जीत रहा है। हम परजीवी राजनीति नहीं करते, इसके लिए हम जीत जाते हैं।
2: साहिल जी, परजीवी राजनीति का क्या होता है? प्रधानमंत्री जो भाषण तो देते ही हैं, परजीवी क्या होता है कि दूसरों के वोट के ऊपर जीना। और ये कम से कम शिरोमणि अकाली दल, शिवसेना के जो लोग बैठे हुए हैं, समता पार्टी, AIDMK और जनता, JJP और INLO से पूछो कि परजीवी भारतीय जनता पार्टी कब बनी है। मैं एक बड़ी बात कहने जा रहा हूं, जिन पार्टियों ने इस देश में भारतीय जनता पार्टी के सामने सरेंडर नहीं किया, वो पार्टियां जीवित रहेंगी और वो पार्टियां सशक्त तरीके से जीवित रहेंगी। समाजवादी पार्टी वही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा वही है, कांग्रेस वही है। तो जितने लोग भी यहां बैठे हुए हैं वो सब परोक्ष अपरोक्ष रूप में भारतीय जनता पार्टी के समय कभी ना कभी सरेंडर हो चुके हैं और वो अब अपनी एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम फिर बोल दें, हम जिसके साथ खड़े हैं मजबूती से खड़े रहेंगे, हम ना इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे। लेकिन कम से कम हिम्मत होनी चाहिए विपक्ष कहलाने के लिए, कम से कम हिम्मत होनी चाहिए एक अखिलेश यादव बनने के लिए कि सारे लोग अपने आप को सरेंडर करने के मोड में खड़े हैं, लेकिन बाकी लोग
1: बता रहे हैं वो।
2: समय देखते बदल जाते हैं।
1: ठीक है, धीरेन्द्र कुमार भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सैयद जफर इस्लाम आपने सुना, वो कह रहे हैं कि अभी भी विपक्षी पार्टियां अगर साथ में रहेगी तो भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ी हो पाएंगी, और खास करके प्रधानमंत्री जो कहने की कोशिश कर रहे हैं।
3: अरे भाई, मैं तो बार बार कह रहा हूं, आप खड़े रहिए ना, लेकिन खड़े रहने के लिए आपका कुछ आधार होना चाहिए, पांव आपका मजबूत होना चाहिए, जहन आपका सही जगह पर होना चाहिए, आपका दिमाग। लेकिन जब आपका सत्ता की लालच हो मन में और पांव जो है वो परिवार की तरफ बढ़ता सिर्फ हो, तो जाहिर है जनता से दूर हो जाइएगा, और मलाई की तरफ जाइएगा तो जनता तो आपको दूर कर ही देगी। तो यही है। और आप जहां कांग्रेस की और बाकी पार्टियों के बारे में बात कर रहे हैं, भाई आज भारतीय जनता पार्टी जहां खड़ी है वो सब उनके साथ खड़े। हमने कभी किसी का दामन नहीं छोड़ा, जो दामन छोड़ के गया वो हमारे पास वापस आया। आप बताइए कांग्रेस पार्टी के बारे में, आज कांग्रेस पार्टी खोखली पार्टी हो गई है। जो अपने लोग हैं पार्टी के, पार्टी कोई पार्टी से थोड़ी बनती है, पार्टी लोगों से बनती है, लोगों की सोची। एक मिनट, पार्टी लोगों से बनती है,
4: तो इसका जवाब पार्टी दे सकता हूँ ना।
3: नहीं नहीं, पार्टी लोगों से बनती है, पार्टी जो है आइडियोलॉजी से बन सकती है, पार्टी सोच से बन सकती है, पार्टी विचारधारा से बन सकती है। जब विचारधारा परिवारवाद हो, जब जनता नहीं जनपद की कोशिश हो कि 10 जनपद को कुछ किया जाए, तो जाहिर है जनता जनार्दन के दरबार में आप पीछे रह जाएंगे। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि देखिए आज कांग्रेस खोखली क्यों है, कांग्रेस के लोग कांग्रेस में नहीं है, समाजवादी पार्टी के लोग समाजवादी में नहीं है, जनता दल
4: मैं अभी बताता हूँ,
3: जो RJD के पार्टी के लोग RJD में नहीं है, और इसीलिए सब पार्टियां छोड़ के जाए, TMC के लोग छोड़ के जाना चाहते हैं।
1: वो तो आपके पार्टी में आ रहे हैं, वो तो BJP में आ रहे हैं।
3: अरे कहीं भी
1: जाए, वो तो BJP में आ रहे हैं।
3: मैं तो कह रहा हूँ कहीं जाए, लेकिन जनता के दरबार में जा रहे हैं ना, जनता की सेवा के लिए।
4: साहिल,
3: जनता की सेवा के लिए।
1: ठीक है, अजय वर्मा जवाब दीजिए जल्दी।
4: साहिल जी,
1: ठीक है अजय वर्मा,
4: देखिए मैं जवाब ही देना चाहता हूं। देखिए अभी थोड़ी देर पहले माननीय प्रधानमंत्री जी को आप सुन रहे थे, आपने सुना, मित्रों पहले मैंने सोचा था कि मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया है, लेकिन अब मुझे लगता है मैं शायद नॉन बायोलॉजिकल मैं इसलिए भी कह रहा हूं, वो खुद भी कहते हैं कि अभी भी थोड़ी देर के भाषण में 20 बार कांग्रेस, इसके बिना रोटी नहीं पचती है। और मैं तो जफर इस्लाम साहब बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, बड़े ज्ञानवान हैं, मैं तो इनको फोन करके कल बधाई देना चाह रहा था, आज भी मैंने इनको फोन मिलाया, इन्होंने उठाया नहीं। जो पेड़ जफर इस्लाम नाम का बीजेपी ने लगाया है, बीज की बात कर रहे थे, उस बीज का सर्वनाश बीजेपी ने करके इनका राज्यसभा में नाम ही नहीं आया, जबकि सबसे ज्यादा डिजर्विंग कैंडिडेट थे ये। चलिए हमारे लिए तो पवन खेड़ा आ गए, हमारे प्रणब झा आ गए, हमारे हमारी टीम से आगे, अच्छी बात है,
1: लेकिन मैं तपस्या के बदले दो बार ट्वीट करना पड़ा पवन खेड़ा जी को,
4: नाम नहीं है
1: कि तपस्या में कुछ कमी रह गई होगी इसीलिए उनको मौका नहीं मिला, आप लोगों शायद पता नहीं होगा।
3: अभी अभी अभी
4: नहीं, मेरी तो सुन तो लीजिए साहिल जी, फाइनल कर रहा हूं।
1: अच्छा वो सब छोड़िए,
4: अब ये बीज की बात कर रहे हैं
1: अजय वर्मा जी, वो सब छोड़िए अजय वर्मा जी, वो सब छोड़िए,
3: अरे जनता
1: नहीं छोड़िए ना, वो सब छोड़िए। अभी सबसे बड़ी चिंता क्या है पता है आपको? भारतीय जनता पार्टी परिसीमन का बिल ला सकती है, ये सही है ना सैयद जफर इस्लाम जी?
3: नहीं, मुझे
1: एक बार फिर परिसीमन का बिल लाया जाएगा।
4: देखिए भारतीय जनता पार्टी की ये कुछ चिंता जो है, जो पहले भी
1: महिला, अजय वर्मा जी एक सेकंड,
4: ये परिसीमन का बिल ला रहे थे।
3: देखिए ऐसा है,
1: नहीं एक सेकंड अजय वर्मा जी, एक मिनट,
4: उस बिल को,
1: परिसीमन का बिल इसीलिए लाया जा रहा है क्योंकि इंडिया अलायंस के टुकड़े टुकड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। डीएमके के 22 सांसद वहां पर निकलकर अगर उनके खिलाफ वोट डालेंगे, तृणमूल कांग्रेस पार्टी, अभी अभी खबर आ रही थी कि 19 से 20 सांसद ये कह रहे हैं कि शायद हो सकता है कि पार्टी से टूट जाए। 54 वोट
3: ऐसा है साहिल जी कि देखिए सबसे पहली बात कि ये जानकारी सिर्फ पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर दे सकते हैं कि कौन से परिसमन बिल आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन ये बात जरूरी है कि
1: लेकिन ये तो आप बता सकते हैं।
3: नहीं वही बता रहा आपको,
1: क्या आज की स्थिति में अगर परिसीमन बिल आता है तो पास कराने का मौका ज्यादा है, ये बात भी तो सही है ना?
3: वही उसी को बोल रहा है कि बहुत सारे ऐसे विपक्षी पे मेरा पार्लियामेंट है, विपक्षी पार्टियों के, जो इस बात से नाराज है, दबाव में उन्होंने वोट के फेवर में दिया, इसके खिलाफ दिया, लेकिन इस बार अगर मौका मिला तो जरूर इस परिसीमन बिल को पास कराने का काम करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।
4: ये तो आप
1: ठीक है, चलिए जाते जाते
4: खंड करना चाहते हैं, पहले देश की सोशल फैब्रिक हिंदू मुस्लिम के रूप में खराब करी, बांटने के आप प्लेयर हैं, इंटरनेशनल प्लेयर हैं बांटने के, इस देश के हित की बात करिए, बांटिए मत,
2: भारत
4: की एकता और कौमी एकजुटी को खंड रहने दीजिए। हिंदू मुस्लिम
1: आशुतोष वर्मा जी,
4: बौद्ध पार्टी अभी समानता का अधिकार,
1: अगली टेस्ट आपकी होने वाली है, अगली परीक्षा उत्तर प्रदेश की है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जितनी भी परीक्षाएं हुई झारखंड छोड़कर बाकी सभी जगह पर इंडिया अलायंस को हार का ही सामना करना पड़ा है। पश्चिम बंगाल में इंडिया अलायंस था ही नहीं, तो मैं उसके बारे में बात ही नहीं करूंगा, लेकिन अब असली लड़ाई अब उत्तर प्रदेश के भीतर होगी, अगली परीक्षा आपके यहां पर है, यहां पर पश्चिम बंगाल की तरह चुनाव लड़ना है या इंडिया अलायंस की तरह चुनाव लड़ना है, कुछ तय हुआ है उसका?
2: साहिल भाई देखिए ऐसा है कि 2024 का जो आपने बेंचमार्क बनाया है वो बेंचमार्क भी समाजवादी पार्टी ने बनाया है, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को कहीं रोकने का काम भी समाजवादी पार्टी ने किया है, और समाजवादी पार्टी ने ही भारतीय जनता पार्टी को धूल चटा दी है। तो जब हम बेंचमार्क बनाने वाले हैं तो हम आगे भी बेंचमार्क बनाएंगे, और हम ही से हो पाएगा ये हमको पता है, हम इंडिया अलायंस के साथ में रहेंगे, और परेशान मत होइए, जिनको बहुत घमंड है अपने ऊपर उनको हम यहीं पे खत्म करेंगे, आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी का
1: आशुतोष वर्मा उत्तर प्रदेश में खत्म होने वाला है। आशुतोष वर्मा जी मैं आपको एक बात बताऊं, आपने जो अभी बात कही ना, दो लाइनें आपने अभी आप कही है, छह महीने पहले स्वयं प्रकाश पुरोहित यही लाइनों का इस्तेमाल किया करते थे कि बंगाल से हम सारी चीजें बदलेंगे, यही से हो पाएगा
2: नहीं क्या?
1: स्वयं प्रकाश पुरोहित यही बात किया करते थे,
2: साहिल भाई आप मुझे एक जवाब दीजिएगा, क्या 2024 में ये वो कर पाए थे? अगर वो कर लेते तो बातों करने में और जमीनी में हकीकत में अंतर होता है, हमने करके दिखाया है, तब मैं ये बात कर रहा हूँ, हम हवा हवाई बातें नहीं कर रहे, समाजवादी पार्टी जमीन पे बात कर रहे
5: हैं। अरे 29 साहिल भाई
3: वाली बात कर रहे हैं, ये साहिल भाई दूसरे को देखे लड़ेंगे,
1: आनंद दुबे
3: लड़ जाए
5: साहिल भाई, 2024 में
6: 2024 में, 2024 में टीएमसी पार्टी पश्चिम बंगाल में 29 सीटें जीती थी लोकसभा में।
2: आपके गठबंधन से
6: हमें ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है।
1: देखिए वो बोल रहे हैं कि सिर्फ समाजवादी पार्टी,
6: हमें अलर्ट रहना है,
1: आप नहीं कर पाए थे,
6: रहना है।
1: ठीक है
2: जफर इस्लाम भाई, अपना गठबंधन
1: जल्दी से स्वयं प्रकाश पुरोहित और उसके बाद आखिर में बीजेपी के प्रवक्ता बोले। चलिए
7: कांग्रेस पार्टी हो, सभी पार्टियों को ये देखना है कि जो ताकत है ना, हमारी लड़ाई सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से भी है, सीबीआई से भी है, ईडी से भी है, इनकम टैक्स से भी है, जितने इंस्टीट्यूशन है प्लस भारतीय जनता पार्टी। उसके बाद में ये आकर के जो चुनाव करवाते हैं पश्चिम बंगाल से, आप दूसरे राज्य की तुलना नहीं कर सकते हैं। 27 लाख वोटरों का नाम काट के चुनाव करवाया गया पश्चिम बंगाल में, आज तक वोटरों के नाम जुड़ रहे हैं।
1: सैयद जफर इस्लाम,
7: बंगाल में तो
1: आखिर में
3: आपने आपने
1: आप भी इंडिया अलायंस के इस तितर बितर होने में परिसीमन का बिल पास कराने का मौका ढूंढ रहे हैं कि नहीं ढूंढ रहे? अच्छा मौका है कि नहीं है, लाएंगे कि नहीं लाएंगे वो बात अलग है, मौका अच्छा है कि नहीं है?
3: मैंने कहा, बड़े सावगोई से कहा कि बहुत सारे ऐसे विपक्षी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जो नाखुश थे वो बिल गिरने से, वो शायद अब मौका मिलेगा तो जाहिर इसके फेवर में वोट करेंगे, इसलिए कि उनकी अंदर आत्मा जो है ना वो कहीं ना कहीं इस बात को कह रही है कि वो देना चाहिए। लेकिन
1: 8 तारीख को इंडिया अलायंस की बैठक होगी, 11वीं बैठक इंडिया अलायंस की होने जा रही है, लेकिन इसी बीच सरकार की तरफ से भी परिसीमन बिल लाने की क्या तैयारी हो रही है इस पर नजर रखनी होगी। फिलहाल हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, आप देखते रहिए आज तक।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
9: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
8: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ।
10: Hey, it's Harry Douglas for Freddie and Harry. Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
11: Third period comes to an end. Game two headed to overtime.
10: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and nonstop sports talk so you don't miss a second of the action.
11: They score!
10: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
8: Sanitary solutions.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
3: In association with
4: cool stylish fans, enhance home decor with beautiful fans.
5: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
6: समर कूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। समर कूल कूलर, लाइफ बनाए वंडरफुल।
3: हिंट, बड़े आराम से। विमल बोलो जुबां केसरी।
7: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी। वेयर आर यू?
8: 20 साल से इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट देश को दे रहा है बेहतरीन पत्रकार। अगर आपका लक्ष्य भी है पत्रकारिता तो फिर सोचना क्या। रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.indiatodaymediainstitute.in या 9560065465 पर कॉल करें।
3: छात्रों के भविष्य पर उठे सवाल।
9: बच्चों के भविष्य से जब जब खिलवाड़ होगा हम आवाज उठाते रहेंगे। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या छात्रों की चिंताएं दूर होंगी।
3: तो हमने पूछे जिम्मेदारों से सवाल।
9: CBSE के कोई चेयरमैन होंगे ना, कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। कोचिंग माफिया के खिलाफ मैं बोलती रहूंगी।
3: छात्रों को दिया मंच।
9: उज्मा हमारे साथ कोटा से और अदिति मुंगेर से हैं और तानिया कोटा से हैं और अर्गम जैन भी जुड़ गए हैं। तो एक बार आप दिखाएं और बताएं अपनी समस्या।
10: नंगी देखिए, इसमें सेकंड की मार्किंग है, ये तीनों ही अनचेक हैं।
11: IIT मद्रास के एक्सपर्ट लगा रहा है, क्या वो भी इतने सक्षम नहीं है कि उनसे एक सरकारी वेबसाइट नहीं चलाई जा रही।
3: छात्रों के मुद्दे, छात्रों की आवाज और खबर का असर।
9: आज तक की खबर का असर हुआ है, छात्रों की आवाज बना आज तक। और अब सरकार की तरफ से CBSE के चेयरमैन राहुल सिंह और सचिव दोनों का तबादला किया गया है।
3: छात्रों के हित में हल्ला बोल सिर्फ आज तक पर

0: Jack FM, now playing what we want, commercial-free on TuneIn Premium.
1: What about me, Jack? What about me?
0: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial-free.
2: Well played, Jack. Well played.
0: Jack FM, playing what we want.
3: उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों का आशीर्वाद इस बार किसे मिलेगा? इसकी जुगत बीजेपी से लेकर समाजवादी पार्टी तक के अंदर चल रही है। योगी राज में ब्राह्मणों की कथित नाराजगी की अफवाह पिछले बरस खूब उड़ी, लेकिन अब योगी की कैबिनेट में मौजूद धम्मर चेहरों ने सीएम योगी को अगले कार्यकाल के लिए अभी से आशीर्वाद देने की घोषणा कर दी। पिछले दिनों इंडिया टुडे ग्रुप के कार्यक्रम के मंच पर योगी कैबिनेट के ब्राह्मण चेहरों ने कबूल किया कि आने वाले चुनाव में भी सीएम योगी ही उनका चेहरा होंगे।
4: नेतृत्व मुख्यमंत्री जी का, योगी जी का ही होगा, उनके नेतृत्व में जा रहे हैं।
5: मुख्यमंत्री जी हैं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आपको भी बताया है, आप तो सब जानते हैं, अखबार में छप चुका है,
4: तो उनके नेतृत्व में ही चुनाव में
5: आप जानते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष तो सर्वोच्च पद पर हमारी पार्टी के नेता है, वो जो निर्देश देते हैं उसको हम लोग मानते हैं कि हम सब उसको कार्यकर्ता के रूप में सहर्ष स्वीकार करते हैं।
4: 2027 का जो चुनाव होगा, योगी जी के नेतृत्व में चुनाव मैदान में जा रहे हैं आप लोग?
6: जाहिर है, उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने काम किया है। आज हमें खुशी है, इस बात की प्रसन्नता है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा खींची गई लकीर का अनुसरण आज देश के तमाम अन्य राज्य कर रहे हैं। इससे ज्यादा हमारे लिए गर्व का कोई विषय नहीं हो सकता। हमारी तमाम योजनाओं को आज अन्य सरकारें उसका अनुसरण कर रही।
3: हालांकि मंत्रियों की ओर से सीएम योगी के नेतृत्व को दिए जा रहे समर्थन का असर जमीन पर उस तरह दिखाई नहीं देता। कानपुर में आम ब्राह्मणों की नाराजगी यूजीसी बिल जैसे मुद्दों को लेकर दिखाई देती है।
7: ये तो साफ स्वाभाविक है कि हमें एक परमानेंट वोटर माना गया, ये हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ। ये हमने अपनी जो भूमिका बना ली कि हम कहीं जाएंगे नहीं, ये हमारे लिए पक्षाघात रहा। अब ब्राह्मण समाज इस बात पे सोचेगा कि जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा।
8: हमारे समाज के तो मुद्दे को ही है नहीं, क्योंकि समाज तो हमारा हमेशा दिशा देता था समाज को। आज हमारा समाज खुद ही दिशाविहीन हो चुका। उसका कारण है कि आज इस सरकार को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, इसने हमको ये एहसास करा दिया कि हम लोग ब्राह्मण हैं।
3: यूपी में ब्राह्मण वोट को बीजेपी से अलग करने के लिए तमाम खबरें चलती रही हैं। कभी ब्राह्मण विधायकों के नाराज होने की खबर, तो कभी अलग से पिकनिक मीटिंग खबर, और ऐसी खबरों से समाजवादी पार्टी के अंदर ब्राह्मण वोटों को लेकर उम्मीद जगी। यही वजह है कि अखिलेश यादव ने भी अपनी रणनीति बदल दी। अखिलेश यादव ने माता प्रसाद पांडे को नेता विपक्ष बना रखा है, जो स्थानीय चुनावों में ब्राह्मणों का प्रतिनिधित्व बढ़ा रहे हैं। अखिलेश गोसाईगंज से भगवान परशुराम की मूर्ति लगाने से लेकर परशुराम जयंती पर सरकारी छुट्टी तक की मांग कर चुके हैं। और इतना ही नहीं, इन दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ रहे अखिलेश भी जरूरी काम पंडित जी के मुहूर्त वाली सलाह पर करने की बातें करते हैं। समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर ब्राह्मणों के समर्थन वाले पोस्टर लगते हैं, तो राजकुमार भाटी जैसे नेता के ब्राह्मण विरोधी बयान के बाद जोरदार फटकार भी लगाते हैं। ब्राह्मणों को रिझाने की ये सारी कवायद कितनी कामयाब होती है, ये 27 के चुनाव में पता चलेगा, क्योंकि 2012 में जिस बीजेपी को 40% भी ब्राह्मण वोट नहीं मिले थे, उसे पिछली बार 89% ब्राह्मण वोट मिले थे। कानपुर से समर चावला के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।
9: ममता बनर्जी के घर तृणमूल कांग्रेस की एक अहम बैठक वहां पर चल रही है। ममता बनर्जी की इस बैठक के बाद 8 तारीख को ममता बनर्जी खुद ही कह रही है कि अब इंडिया अलायंस को साथ में आने का वक्त आ चुका है, साथ में रहने का वक्त आ चुका है। इसी बीच सूर ये भी निकल रहे हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने में इंडिया अलायंस के पार्टनर्स अलग अलग क्या अपनी भूमिका निभा पाएंगे या नहीं निभा पाएंगे, तमाम सवाल है, चर्चा होती रहेगी। फिलहाल हम लेंगे एक ब्रेक, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे हल्ला बोल के साथ, आप देखते रहिए। आज
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
11: एकजे द नंबर 1 कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

0: विपक्ष पर जमकर बरसे प्रधानमंत्री मोदी। सूरत में कहा आत्मनिर्भरता अभियान का मजाक उड़ाते हैं कुछ निराशावादी, देश को दिखाना चाहते हैं नीचा। बोले अराजकता फैला रही है कांग्रेस। दिल्ली के कई अवैध निर्माणों पर चला बुलडोजर, कुछ इलाकों में सीलिंग एक्शन। अग्निकांड पर मुख्यमंत्री रेखा की बैठक में दोषी अफसरों पर सख्ती के आदेश। कई टीएमसी सांसदों के भी बागी होने की खबर के बीच ममता की बड़ी बैठक। लोकसभा के सिर्फ 3 एमपी ही मौजूद। विधायक मदन मित्रा बोले दीदी ही पार्टी अध्यक्ष। पटना में कोचिंग चलाने वाले फैजल खान के खिलाफ आर्म्स एक्ट में केस दर्ज। गिरफ्तार गार्ड्स का पूछताछ में खुलासा, फैजल खान के कहने पर ही की थी फायरिंग। दुनिया में उथल पुथल के बीच भारत की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर। वित्त वर्ष 2026 में जीडीपी विकास दर अनुमान से ज्यादा, 7.7% की वृद्धि।
1: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste Complete Oral Health ka Sach.
2: Akajay, the number one Korean skincare brand, now in India.
0: नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कांग्रेस पार्टी पर बड़ा प्रहार किया है। सबसे पहले आइए आपको सुना देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वो आत्मनिर्भर भारत का मजाक उड़ाते हैं। विपक्ष और कांग्रेस पर पीएम मोदी का बड़ा हमला। आत्मनिर्भर अभियान का मजाक उड़ाते हैं निराशावादी, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। इन्होंने जिन्होंने भारत को दूसरे देशों पर निर्भर रखा, अराजकता फैलाकर अवसर खोज रही है कांग्रेस पार्टी। आइए आपको सुना देते हैं पीएम ने क्या कहा।
3: साथियों, आज देश में कुछ निराशावादी लोग हैं जो आत्मनिर्भर भारत अभियान का मजाक उड़ाते रहते हैं। देश के इस संकल्प को वो लगातार नीचा ही दिखाते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा भारत को दूसरे देशों पर निर्भर रखा। वो लोग ये भूल जाते हैं कि दूसरों पर निर्भर देश विकास की वो ऊंचाई कभी प्राप्त नहीं कर सकता जिसका वो हकदार है।
0: उत्तर प्रदेश का चुनाव, अब हम जिस विषय पर आज चर्चा करने वाले थे उसका रुख कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बोला है उस पर जवाब देंगे। हमारे साथ सभी खास मेहमान यहां स्टूडियो में जुड़ गए हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के आ गए हैं। आलोक शर्मा जी राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ आ गए हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन बात यूपी की भी करते हैं और जो पीएम ने कहा है उस पर भी सवाल जवाब करेंगे। लेकिन यूपी का चुनाव भले अभी दूर है, लेकिन जातीय समीकरणों पर दाव अभी से चले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए बीजेपी का ब्राह्मण कार्ड सामने आया है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और मंत्री मनोज पांडे जैसे बीजेपी के बड़े ब्राह्मण चेहरों ने साफ कह दिया है कि योगी आदित्यनाथ ही बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे। योगी आदित्यनाथ पर बीजेपी के ब्राह्मण नेताओं का इतना साफ संदेश इसलिए बेहद अहम है क्योंकि जहां विपक्ष लंबे समय से योगी सरकार के खिलाफ ब्राह्मण दाव चलने की कोशिश करता रहा है, वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव भी अब बड़े मंगलवार पर भंडारे का प्रसाद बांटने जैसे संदेश देने में पीछे नहीं है। सवाल है कि क्या योगी पर बीजेपी के ब्राह्मण नेताओं के संदेश से ही बीजेपी का काम बनेगा? क्या यूपी के ब्राह्मणों में नाराजगी का समाजवादी पार्टी का दावा फुस हो जाएगा? क्या इस दाव से हाल ही में ब्राह्मण समाज पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी की कथित अपमानजनक टिप्पणी का भी बीजेपी को फायदा मिलेगा? हल्ला बोल में हम बहस शुरू करें, उससे पहले आइए आपको सुना देते हैं ब्रजेश पाठक ने क्या कहा है। मतलब अभी तक बीजेपी आरोप लगाती थी कि जाति का कार्ड हम नहीं खेलते, ब्रजेश पाठक क्या कह रहे हैं सुनिए।
4: अब 2027 का चुनाव है, नेतृत्व मुख्यमंत्री जी का योगी जी का ही होगा, उनके नेतृत्व में जा रहे हैं।
5: मुख्यमंत्री जी हैं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आपको भी बताया है, आप तो सब जानते हैं, अखबार में छप चुका है।
4: तो उनके नेतृत्व में ही चुनाव में
5: आप जानते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष तो सर्वोच्च पद पर हमारी पार्टी के नेता है, वो जो निर्देश देते हैं उसको हम लोग मानते हैं कि हम सब उसको कार्यकर्ता के रूप में सहर्ष स्वीकार करते हैं।
0: तो आज तक के ही यूपी तक के कार्यक्रम में आपने देखा कि किस तरह से ब्रजेश पाठक ये कह रहे हैं कि भाई वही हमारे चेहरे होंगे, योगी आदित्यनाथ और ब्राह्मण उनको सीएम बनाने वाले हैं। तो क्या ब्राह्मणों की नाराजगी का एहसास था? क्या ये तमाम मुद्दे एक साथ आगे आ रहे हैं? और सुधांशु जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी विपक्ष को निराशावादी कहा है, इस पर भी आपका जवाब कि आखिर किस आधार पर पीएम ये आरोप लगा रहे हैं? और वहीं दूसरी तरफ ये आप कहते थे जाति हम लोग नहीं मानते हैं, हम तो सबका विकास सबका साथ कहते हैं, तो फिर ब्राह्मण कार्ड क्यों खेलना पड़ रहा है ब्रजेश पाठक जी को? ब्राह्मणों की नाराजगी का डर है क्या?
6: देखिए, इसमें दोनों बातों का जवाब देता हूं। अभी आपके जो इस पे दिखाया जा रहा था स्क्रीन पे, इस पे तो आपका संवाददाता उनसे पूछ रहा है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, तो उप मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि योगी जी होंगे। इसमें कार्ड कहां से आ गया? ये तो बिल्कुल जिसे कहते हैं संगठनित व्यवस्था की बात है कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी कह रहे हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी ने जो कहा है वही पार्टी का अंतिम निर्णय है, तो उसके अनुसार योगी जी सीएम हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव होगा। अब मुझे लगता है इसमें जो लोग जरूरत से ज्यादा कार्ड का एंगल, कास्ट का एंगल देखना चाहते हैं, उसका कारण जानते क्या है? विपक्ष की सीएम बनने की चाहत जानते किस में रुकी है? CNM, कास्ट एंड मुस्लिम।
0: मतलब
6: हिंदू समाज को कास्ट में डिवाइड करो और मुस्लिम तो अपना पक्का है, इसलिए CM means कास्ट एंड मुस्लिम। मगर मुझे लगता है उनके जो मंसूबे हैं ये भली भांति देश की जनता को पता है, तो वो इतनी आसानी से साकार होने वाले नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सभी को साथ में लेकर और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, धर्म की बात करके, और मैं कहना चाहता हूं यदि कोई उसमें ब्राह्मण एंगल
0: की
6: भी
0: बात करके,
6: हाँ बिल्कुल धर्म, क्योंकि यह राष्ट्र धर्मनिष्ठ राष्ट्र है, यह राष्ट्र धर्म निरपेक्ष नहीं है, यह धर्म प्राण राष्ट्र है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के एम्बलम पर भी लिखा हुआ या तो धर्मस्तत्व जया, तो इसलिए हम धर्म के साथ हैं। और जो लोग धर्म विरोधी हैं वो जब जात का कार्ड खेलते हैं तो बहुत अजीब सा लगता है। उदाहरण के लिए, एक तरफ जिनके समर्थक इतिहासकारों ने लिखा कि वेद क्या थे, दे वर द ब्लबर ऑफ द एनिमस, यानी जानवरों के बीच में घूमने वाले लोगों के मुंह से निकले हुए अनाप शनाप वाक्यों के अलावा कुछ नहीं थे, और फिर वो कहते हैं कि साहब हम तो हिंदू धर्म और ब्राह्मणों के बड़े भारी पैरोकार हैं। मुझे लगता है इन सारी बातों को लोग समझते हैं। अब मैं प्रधानमंत्री जी की बात पे कहता हूं, प्रधानमंत्री जी ने कहा वो तथ्यात्मक है, राहुल गांधी जी आज से थोड़ी निराशावादी है। राहुल गांधी जी के मैं सत्ता में आने से पहले का स्टेटमेंट कोट करता हूं, 14 जुलाई 2011, वो कहते हैं आतंकवाद पर नियंत्रण संभव ही नहीं है। देखिए निराशावाद का एक बयान, फिर याद करिए गरीबी तो एक मानसिकता है, अन्यथा आदमी उसमें से बाहर निकल सकता है। फिर आइए जब 2014 के बाद इनके एक नहीं अनेक बयान, इन्होंने जाके 2022 में ये कहा इंग्लैंड में, पहले मार्च 2023 में इन्होंने कहा कि भाई वाई द डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी अमेरिका एंड यूरोप आर साइलेंट, वो भारत के अंदर हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। 2022 मई में जाके इंग्लैंड में ये कहा कि साहब भारत जो है वो तो इंडिया इज नॉट ए नेशन, इट इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स लाइक यूरोपियन यूनियन। अब आइए इन्होंने 2022 में कहा बिल्कुल वो साहब वो तो बारूद सुलगा हुआ है, केरोसिन डाल दिया गया है, अब किसी भी समय तीली निकल सकती है, और वो जैसे कहते हैं सीली हुई तीली के थ्रू 4 साल उन्होंने गुजार दिए हैं। तो मुझे लगता है फिर उसके बाद अगर आप इनके एक के बाद एक बयान देखें, इन्होंने कहा है भारत की इकोनॉमी डेड है, इन्होंने और तो सुनिए निराशावाद की पराकाष्ठा तो ये है कि ये गुजरात में जाकर अपनी पार्टी के सम्मेलन में बोलते हैं कि गुजरात में दो प्रकार की कांग्रेस है, एक कांग्रेस के साथ है एक बीजेपी के साथ है। अब बताइए इससे ज्यादा निराशावादी प्रतिक्रिया क्या होगी? चुनाव के दौरान निराशावाद की पराकाष्ठा क्या है? अमित शाह जी 25 दिन रहे बंगाल में, राहुल गांधी जी कितने दिन रहे? चलो बंगाल में आप कहते मेरा कुछ था ही नहीं, तो आप असम में तो मुख्य विपक्षी दल थे, कितने दिन रहे वहां पर? अब बताइए केरल में तो बाय डिफॉल्ट आपकी सरकार आ गई मुस्लिम लीग की कृपा से, वहां पे आप कितने दिन रहे?
0: उस समय आप डिफॉल्ट से जीते,
6: मुस्लिम लीग की वजह से जीते, और भारत के इतिहास में पहली बार स्वतंत्र भारत के इतिहास में मुस्लिम लीग के 5 मंत्री बने हैं, उस जिन्ना की मुस्लिम लीग के जिसने देश का विभाजन कराया था। और अगर कोई ये झूठ कहना चाहे कि ये वो मुस्लिम लीग नहीं है, तो मार्च 1949 में मोहम्मद इस्माइल और पीके पोकर साहब बहादुर जिन्होंने ये मुस्लिम लीग बनाई, वही जिन्ना की मुस्लिम लीग के मद्रास प्रेसिडेंसी के अध्यक्ष थे, और जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता था, तो मोहम्मद इस्माइल को कायदे मिल्लत। तो मुझे लगता है इसलिए मैं पूछना चाहता हूं भाई साहब आप थे कहां? आप तो वियतनाम में थे, वो निकोबार में थे, और बाहर जाकर वो पता नहीं कहां ओमान में घूम रहे थे। तो मुझे लगता है संस्कृत का श्लोक है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। अर्थात उद्यमन से कार्य सिद्ध होते हैं, केवल मन में सोच लेने से नहीं। जैसे बैठे हुए ख्वाब देख रहे सिंह के मुख में अपने आप आकर मृग प्रवेश नहीं कर जाते हैं। राहुल गांधी जी वही ख्वाबों ख्यालों में रहते हैं, बाहर घूमते रहो, दो चार बयान दे दो, फिर कास्ट और ये कर दो, डिवाइड कर दो और अपने आप सब कुछ हो जाएगा। न मंडल स्तर के सम्मेलन हमने आज तक देखे, न हम इनके बूथ स्तर के सम्मेलन देखे, न शक्ति केंद्र स्तर के सम्मेलन देखे,
0: बताइए कितनी बार देखे। कह रहे सिली हुई तिली से ये सब कुछ कर रही है आपकी पार्टी।
7: एक भी चीज नहीं बताई कि निराश क्यों ना हो, उसका कोई जवाब नहीं मिला। कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, राहुल गांधी राहुल गांधी। हम तो कह रहे हैं कि भाई आपने हिंदुत्व की भी बात की, अभी संस्कृति की बात की, गाय के काटने की परमिशन देने वाली पार्टी हिंदुत्व की बात करती है? शंकराचार्य की पालकी को उठा के फेंक दे जो पार्टी लाठियों से बटकों को पिटवाए चोटी से खिंचवाए वो हिंदुत्व की बात करती है? बीफ कंपनियों से पैसा लेने वाली पार्टी हिंदुत्व की बात करती है? मुस्लिम लीग में अगर कोई मेंबर पुरानी पार्टी में था, खैर वो तो आप ही ने जवाब दे दिया कि वो मुस्लिम लीग नहीं। अरे भाई आज निराशावाद का, आप नीट और सीबीएसई के एग्जाम के बाद आप बच्चों की निराशा तो देख लीजिए जाकर क्या हालत है। मोदी जी कह रहे हैं आत्मनिर्भर भारत, उन्होंने नहीं होने दिया। अरे भाई 12 साल का आप अर्थव्यवस्था का इतिहास तो उठा लीजिए, और मोदी जी इतना ही आपने आत्मनिर्भर भारत बना दिया है तो हम आपको चैलेंज करते हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीजिए आत्मनिर्भर भारत पे। जिस तरह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 17% से लगभग 12.5% पे आ गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट लगातार बढ़ता चला जा रहा है, 9 गुना इंपोर्ट बढ़ गया, जिस तरह से मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, बैटअप इंडिया, लेटअप इंडिया सारे फेल हो गए, जिस तरह से स्किल इंडिया का हालत है, स्किल इंडिया में 6 महीने में 0.6% अभी तक रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन हुआ है, जिस तरह से आज 30 लाख के करीब पासपोर्ट सरेंडर हो गए, मोदी जी ये तो बहुत अच्छे सिग्नेचर होंगे। आप जिस तरह से साइन होंगे, जिस तरह से देश के ऊपर 5 गुना कर्जा हो गया, आज जो हालत है, आप ट्रंप के सामने सरेंडर किए बैठे हैं, किसानों की आप सुध नहीं ले रहे हैं, आप हिंदुत्व की बात, इसकी बात, उसकी बात। अरे भाई 97% बच्चे जो नीट में एग्जाम दे के आए हैं वो हिंदू हैं, 6 बच्चे जिन्होंने सुसाइड किया 6 के 6 हिंदू हैं, उस पर एक शब्द नहीं बोलते हैं। एक आप व्यक्ति जो 4 साल से वहां पर एजुकेशन मिनिस्टर बन के बैठा है उसको हटाते क्यों नहीं मोदी जी? क्या बच्चों की निराशा आपको दिखती नहीं? क्या वो बच्ची कल जिसने सुसाइड किया है उसकी निराशा आपको नहीं दिखती है? केवल राहुल गांधी के ऊपर बयान देना, कांग्रेस के ऊपर बयान देना, अब तो 12 साल हो गए मोदी जी आपकी सरकार को, क्या आपकी कोई जवाबदेही नहीं? क्या आप कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं लेंगे? रुपए की तुलना में डॉलर कहां जा रहा है मोदी जी? पहले तो आप कहते थे सरकार की छवि गिरती है, सरकार का ये गिरता है, सरकार का वो गिरता है, कौन आगे बढ़ेगा? आज पेट्रोल डीजल और रुपए में जिस तरह से होड़ लगी हुई है कि कौन जल्दी सेंचुरी मारेगा, पेट्रोल तो मार ही गया। मोदी साहब आज अर्थव्यवस्था का बैंड बजा हुआ है, उसको संभालिए। निराशावाद ही आप देखिए कि कल ही आप ही का कोई मित्र बताया राजेश करके 15,000 करोड़ का गबन करके भाग गया LIC का सारा पैसा लेकर।
0: मोदी जी 15 लाख करोड़,
7: 15 लाख करोड़, क्या आप एक शब्द बोलेंगे मोदी जी उसके ऊपर? फिर आप कहते हैं कि निराशावादी विपक्ष है, आपने पूरे देश को भ्रष्टाचार के ज्वालामुखी पर बैठा दिया है। केवल स्टूडियो में बैठकर भाषण देने से और उद्यमेन ही सिद्धंती करने से काम नहीं होगा।
0: सुधांशु जी जवाब दीजिए, सबसे बड़ी समस्या है ये जो एग्जाम को लेकर है, वो डेडलॉक अभी तक सीबीएसई के इस बैच के लिए सुधांशु जी खत्म नहीं हुआ है।
6: देखिए जो नीट और सीबीएसई के बीच में जो घटनाएं हुई बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, सरकार इस विषय पे न सिर्फ सतर्क है बल्कि संवेदनशील भी है, और सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में भी कहा कि प्रधानमंत्री जी स्वयं इस चीज को देख रहे हैं।
7: की अब दूसरे, अब हम दोनों पढ़े लिखे लोग हैं। अब एक छोटी सी बात कह रहा हूं आपसे। नहीं नहीं, आपने कहा एक मिनट, केवल 10 सेकंड लूंगा। आप केवल कह रहे हैं मोदी साहब संवेदनशील हैं। अरे भाई वो वेबसाइट अभी तक नहीं चली, खाक संवेदनशील है? उत्तर दीजिए।
6: आप उत्तर देता हूं, जब नीट नहीं होता था तब कैसे एडमिशन हो रहे थे
7: सीबीएसई से?
6: जी नहीं, नीट के नीट जब नहीं था तो प्राइवेट कॉलेजों का भी कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं होता था, सब एक एक लिस्ट लगाते थे और सीटें बिकती थी 25 लाख 30 लाख 35 लाख में,
0: ये एक फैक्ट था,
6: सिर्फ डोनेशन से होते थे। आज मोदी जी ने ये स्थिति की है, अब अपने टन पे बोलिए, आज मोदी जी ने कम से कम ये स्थिति की कि अब वो कोई जो पहले सीधे सीटें नीलाम होती थी, यानी एक प्रकार के करप्शन का ही एक स्वरूप था, उस संस्थागत स्वरूप को चेंज करके एक व्यवस्था की कि गरीब और सामान्य व्यक्ति का वर्ग का जो परीक्षार्थी है वो भी आगे आकर वहां पर जा सकता है। ठीक है, आज जो स्थिति हुई है इसमें चुनौतीपूर्ण और एक बड़ी विचित्र विचित्र स्थिति उत्पन्न हुई है कि पेपर लीक तब होता है जहां पेपर छपे और छपने के बाद जहां सेंटर में जाए उस बीच में लीक हो जाए, मगर पहली बार ऐसा हुआ है कि पेपर सेटिंग करने वाले लोग उसको पेपर आउट करने में हो गए। ये तो ऐसी स्थिति हो गई कि जैसे जज जो जजमेंट लिख रहा हो और जजमेंट प्रनाउंस होने से पहले वो गोपनीय रहता हो वही लीक कर दे। खैर उसकी व्यवस्था की जा रही है कि अब किस प्रकार से आगे होगा। मगर जो इन्होंने कहा कि हम लोग निराशावाद की बात करें, इकोनॉमी का बैंड बजाए, तो मैं चुनौती के साथ कहता हूं आलोक जी से, इस समय दुनिया का एक देश बताइए जहां पर महंगाई की दर भारत से कम हो। नंबर दो, दुनिया का एक देश बताइए जहां पेट्रोल के दाम भारत से कम बढ़े हों। अमेरिका में 10-40% बढ़े हुए हैं, यूरोप में 20-40%, एशिया में तो 20-60%। अभी अभी मैं आपके लाखों दर्शकों से कहता हूं, सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में खोल के देखिए आज कितना डीजल का पेट्रोल का रेट है और भारत में कितना है। सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हकीकत यह है कि दुनिया में सुनामी आई हुई है आर्थिक, आर्थिक सुनामी आने वाली नहीं। आज
0: समाजवादी पार्टी से और अनुपम मिश्रा आरएलडी से जुड़ गए। मैं आ रही हूं अमित भाई, एक सेकंड जल्दी से आलोक जी, छोटा सा जवाब।
7: ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत
6: बता के जाइएगा,
7: मैं बता रहा हूं 150 करोड़ के लोगों का आप तुलना छोटे छोटे देशों से करें, सैन फ्रांसिस्को से करने लग जाएं, ये देश को
6: अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत है।
7: सुन तो लीजिए, वहां का पर कैपिटा इनकम और हमारे का क्या डिफरेंस है आप बता सकते हैं? वो
6: बताइए,
7: लगभग 40 गुना।
6: तो आज वहां पेट्रोल कितना है? 160 रुपए, 170 रुपए लीटर।
7: अरे भाई सुनिए ना, एक जब 40 गुना पर कैपिटा इनकम है, अरे सुनिए ना भाई,
6: अब पर कैपिटा में तो डॉलर का कन्वर्जन चाहिए मगर रेट में डॉलर का कन्वर्जन नहीं चाहिए। ये होती है,
7: मैं फिर कहूंगा, आप मान के चलिए महंगाई भी नहीं है, बेरोजगारी भी नहीं है, नीट पेपर
6: नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ
7: नीट पेपर भी आउट नहीं हुआ। रोज बैठ के आप लोग गुमराह कर रहे हैं देश को। कर्नाटका वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, जो मेडिकल एग्जाम्स होते थे जिस समय पर कांग्रेस की वहां पर सरकार थी, उस समय पर ये फैसला हुआ था कि सीबीएसई से होगा, और उसी समय पर आपके 2017 में एनटीए बनी, 18 में पहला एग्जाम लिया जो आउट हुआ, उससे पहले सीबीएसई एग्जाम कंडक्ट करती थी। और आज भी जो एग्जाम एनटीए करती, एक मिनट भाई, एनटीए जो एग्जाम
6: की बात कर रहे हैं,
7: मैं 2018 की बात कर रहा हूं कि एनटीए बनी ही 2018 में,
6: तो उससे एक मिनट
7: सुन तो लो, मैं बता तो रहा हूं, उससे पहले सीबीएसई एग्जाम लेती थी और आज भी सीबीएसई लेती थी 2006 या 2007 से,
6: तो 2008 में तो हमारी सरकार, 6-7 में भी हमारी सरकार थी, 8 में भी
7: हमारी सरकार थी, वो फैसला भी कर्नाटक में, कर्नाटका
6: 2006 में जेडीएस के साथ थी, 2008 में अपने दम पे थी।
7: अरे प्रभु
6: बोलिए, फैक्चुअली रॉन्ग है आप।
7: मैं फिर कहूंगा कि जिस समय पर जो हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर थे उनके समय पर, जब वो उस समय पर एआरसी के चेयरमैन भी रहे, उसके बाद से सीबीएसई को गया, और आज भी एनटीए एक एनजीओ है जिसको 2017 में आपने काम दिया, एक एनजीओ को आपने पूरे देश के बच्चों का भविष्य दे दिया, उसका नाम एनटीए है। पिछले 2 साल से वो पेपर लीक होता चला जा रहा, 3 साल से एक चिड़िया का बच्चा आपको पकड़ में नहीं आता। बुलडोजर चलते हैं आपके जगह जगह, बुलडोजर राज और ट्रिपल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार, क्या एक एनटीए के ऊपर बुलडोजर चल सकता है? क्यों? क्योंकि आपके लोग, आरएसएस के लोग उसमें भर्ती हैं और वो जानबूझकर व्यापम कांड रोज करवा रहे हैं। दुर्भाग्य यह है कि आप सच्चाई से भागना चाहते हैं। क्या आज भी सीबीएसई की वेबसाइट प्रॉपरली चलती है? डिजिटल इंडिया, विश्व गुरु, 56 इंच का सीना, और फिर मेलोडी खेलने लग जाते हैं आप लोग। देश को कहां पहुंचा दिया आपने?
6: चलिए इनको बधाई हो, ये एक भी देश का जवाब नहीं दे पाए। हाँ। यानी ये कौन सच बोलता है, कौन झूठ, सबके सामने।
7: अरे मैंने
6: दूसरी
7: तो
6: बात,
7: किसी
6: देश, एक देश का नाम बताइए ना, अरे यहाँ भारत से कम बढ़ा हो, बताइए।
7: मैं फिर
6: नहीं बता पाए,
7: मैं फिर कहूंगा हमारी करेंसी,
6: अरे किसी,
7: सुनो ना भाई,
6: परसेंटेज में बताइए,
7: बांग्लादेश
6: जहाँ कम बढ़ा हो।
7: अरे छोड़ दो ना यार, ये
6: रोज नहीं पता है,
7: आंकड़ों को, आंकड़ों को बाजीगरी रोज करते हैं, आंकड़ों की रोज बाजीगरी करते हैं। आज भी जो जीडीपी ग्रोथ रेट का जो आंकड़ा आया वो झूठा है, फर्जी, इसीलिए आईएमएफ हमारे आंकड़ों को सी कैटेगरी में रखता है।
6: आईएमएफ ने तो अभी कहा है, फिर कोट करिए, सोर्स कोट करिए,
7: आईएमएफ की बात कह रहा हूं।
6: अरे आईएमएफ को मैं कोट कर रहा हूं,
7: आप अप्रैल का आईएमएफ का पूरा स्टेटमेंट सुन लीजिए कि हमारे आंकड़ों पर किसी पर भी चीज पर वो विश्वास नहीं करते, सी कैटेगरी में रखते हैं हमारे आंकड़ों को। आंकड़े भी आपके, सरकार भी आपकी है। मैं तो कह रहा हूं ना, महंगाई है, ना बेरोजगारी है, ना नीट का पेपर आउट हुआ है। आप केवल और केवल जिस तरह से हरा हरा सब है वो दिखाते रहिए, कांग्रेस को कोसते रहिए। अरे भाई 12 साल हो गए आपकी सरकार को, क्या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो मेक इन इंडिया शुरू हुआ था उसका क्या हाल है? क्या उसका परसेंटेज गिरा कि नहीं गिरा? मैं फिर कहूंगा, क्या वो फैक्ट गलत है? आप मुझे केवल ये बता दीजिए कि बांग्लादेश और पाकिस्तान की करेंसी भी हमसे ज्यादा मजबूत नजर आ रही है,
0: जल्दी से छोड़ा
6: जा रही है कि नहीं? सरासर झूठ बोल के फर्जीफिकेशन करते हैं। मैं स्टेटमेंट कोट कर रहा हूं, लुक एट इंडिया टुडे, इंडियाज ग्रोथ रेट इज मोर देन 2 times हायर देन द एवरेज ग्लोबल ग्रोथ। दिस इज हैपनिंग बिकॉज द कंट्री हैज ए स्ट्रांग फंडामेंटल, सेड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड चीफ क्रिस्टिना जॉर्जिवा 16th अप्रैल 2026। फालतू में बोलने लगेंगे जाके वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम
7: फिर बता रहा हूँ
6: 16 अप्रैल 2026 IMF चीफ कृष्णा जॉर्जिवा का स्टेटमेंट कोट किया। अब आप कोट करिए
7: इस कॉन्टेक्स्ट में क्या सुन तो लो भाई आप यही तो प्रॉब्लम है आप लोगों के बीच में नहीं बोलता
6: आप फैक्ट नहीं बोल
7: फैक्ट ही बोल रहा हूँ
0: फिर यूपी पर आना है
7: क्या आपका रुपया मजबूत है देखिए आप इस तरह से झूठ बोलकर नहीं जा सकते
6: झूठ क्या
7: मैं बता रहा हूँ ना आप सुनिए ना भाई आप मुझे बताइए एक मिनट सुनिए
6: सोर्स कोट करिए
7: कोई मुझे माइक्रो मैक्रो एक इंडिकेटर इकोनॉमिक्स का बताइए जो पॉजिटिव हो एक बता दीजिए आपका रुपया मजबूत हो रहा आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट कम हो रहा आपका एक्सपोर्ट बढ़ रहा हो सब कुछ तो नेगेटिव जा रहा है आपकी बेरोजगारी बढ़ रही है आपकी महंगाई बढ़ रही है तो कौन सा इंडिकेटर ऐसा है मोदी साहब केवल ये बता दीजिए कि सुसाइड रेट देश में क्यों बढ़ रहा है आप निराशा की बात कर रहे हैं ना महिलाओं पर और एससी एसटी पर अत्याचार 2014 से लेकर अभी तक एनसीआरबी के आंकड़े में 50% बढ़ गया मोदी जी अगर आपके पास ये आंकड़े नहीं है तो मैं पहुंचवा दूं
6: बोल दूं
0: तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर आप जीडीपी का नंबर बता रहे थे भाई अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी खबर है 2025-26 में जीडीपी में 7.7% की दर से वृद्धि हुई है और आपको बता दें कि 25-26 की जो जीडीपी है वो दोनों का ही क्योंकि उन्होंने कहा है कि रियल जीडीपी हैज बीन एस्टिमेटेड टू ग्रो बाय 7.8% इन फोर्थ क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25-26 और वहीं रियल जीडीपी हैज बीन एस्टिमेटेड टू ग्रो बाय 7.7% 25-26 में वो कह रहे हैं कि गलत है
6: अंजना जी जस्ट 10 सेकंड
0: कृषि से रियल
6: ये लोग आए बाएं साएं बोलते हैं मैं आपको बताना चाहता हूं देखिए सीमेंट आउटपुट बढ़ा 9.4% स्टील प्रोडक्शन बढ़ा 5.8% ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन 26% थ्री व्हीलर 41.6% कैपिटल गुड्स 21.6% टू व्हीलर प्रोडक्शन 28.1% थ्री व्हीलर प्रोडक्शन 41.6% रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी 11% ट्रैक्टर प्रोडक्शन 18% पीएमआई 54.7
7: अब मैं केवल एक छोटा सा
6: ना आईएमएफ का आंकड़ा ना
7: सुनिए ना सुनिए प्रभु अगर ये सब
6: यही मेरा
7: आप ऐसे नहीं कर सकते ना आप सवाल का जवाब
0: दीजिए
7: एक मिनट सुनिए अगर ये सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है
6: मैं ये नहीं कह रहा
7: तो लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपया 2 महीने में करेंसी फ्लाई क्यों हो गया उसका उत्तर दीजिए
6: चले वो भी
7: अगर सब कुछ इंडस्ट्री हाँ। बहुत अच्छा बूम बूम कर रही है तो सब लोग पैसा निकालकर विदेशों में क्यों इन्वेस्ट
6: हाँ बताए
7: इसका उत्तर दीजिए
6: कंपनी का नाम बताइए जो बाहर गई है
7: यार कंपनी के नाम
6: हाँ मैं बताता हूँ
7: आपका क्या 2.5 लाख करोड़ रुपया यहाँ से गया कि नहीं ये विदेश मंत्रालय कह रहा है सेबी की रिपोर्ट
6: सारे दर्शक देख रहे हैं कोई फैक्ट नहीं पता होता मैं बताता हूँ जो कंपनियों ने बाहर लगाया है टाटा है एलएनटी है भारतीय कंपनियों ने विदेश में जाकर इन्वेस्ट किया है पेंशन के लिए भारतीय कंपनी है
7: एलएनटी
6: इंडिया में एलएनटी इंडिया ने लगाया है टाटा ने लगाया है इसीलिए आप कंपनी का नाम नहीं बता
7: भाई मैं फिर कहूंगा मैं फिर कहूंगा अगर इतना अच्छा सब कुछ है
0: तो
7: महंगाई क्यों बढ़ रही है क्यों पेट्रोल के दाम रोज बढ़ाते चले जा रहे
6: हैं सब कुछ है बताइए अमेरिका रूस चीन ब्रिटेन फ्रांस जर्मनी बड़े बड़े देशों के नाम बोले नहीं नहीं पता होता
7: फिर कहूंगा
6: ये निराशा का एहसास
7: निराशा का एहसास नहीं है
6: कि ये एकदम डूबे हुए हैं राहुल गांधी की निराशा वाले में मजबूरी
7: कह रहा हूँ कि अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठा हुआ है आपने पूरे देश को भ्रष्टाचार के ज्वालामुखी पर बैठा दिया है और ये हर बच्चा जान रहा है डायलॉग नहीं बोल रहा हूं मैं कल ही 15 लाख करोड़ का घोटाला करके एक आदमी भाग गया मोदी जी के साथ फोटो खींची हुई है उसकी और आप कहने डायलॉग है ये भी डायलॉग है क्या
0: चलिए सभी मेहमानों को एक बार दिखा दीजिए और योगी आदित्यनाथ के इर्द गिर्द जो पूरी बहस थी
6: वो फोटो जो है सही
7: आप संतुष्टि हो गई क्या बता दो बस एक सोच बता दो
6: सोच कोट कर पाते देश का नाम कोट कर पाते ना कुछ अगर केवल निराशा की बातें
7: गुजरात का मोरबी में कितने प्लांट बंद हो गए जाके ग्राउंड पे जाके देख के आओ
6: मोरबी में प्लांट सारे बंद हो गए
7: मोरबी में कितने बंद हो गए जाके देख के आओ जरा
6: बताइए कौन कौन से
7: मोरबी में सिरेमिक्स इंडस्ट्री है कुछ ठीक है
6: अभी मैंने जाके पता करो बता दी उसके बाद नहीं
7: यार ग्रोथ रेट 21% 20% सब कुछ बढ़ गया
6: आपकी जहां सरकार है तेलंगाना और इसकी कर्नाटक की ग्रोथ रेट बताइए
7: मैं फिर कहूंगा
6: फिर नहीं फिर कहूंगा कि मैं कुछ
7: अरे भाई स्टेट के आंकड़े अलग है जीडीपी के आपके आंकड़े अलग है
6: जब मोदी जी सीएम ने लगातार
7: आप लोग आंकड़ों के
6: अरे भाई अब पूरी
7: आप लोग केवल और केवल आंकड़ों के साथ बाजीगरी करते हैं
6: लगातार
7: इसके अलावा कुछ भी नहीं
6: यूपीए सरकार
7: आंकड़ों की बाजीगरी करते हैं आप कुछ भी नहीं देश के ऊपर 5 गुना कर्जा चढ़ा दिया सारे नेशनल हाईवे गिरवी रख दिए उसके बाद कह रहे हैं बहुत अच्छा चल रहा है
6: कोई फैक्ट हम इंडिया टुडे में
7: सारे तो फैक्ट दे रहा हूं मैं बताइए कौन सा दिल्ली से बॉम्बे का जो एक्सप्रेस वे बना, 19 कंपनियां जो है थी उसमें सारी के सारे जो है जिस तरह से बैंकों के पास रखे,
0: ठीक है, बार बार
7: 1100 टोल थे, आज 7000 टोल हो गए हिंदुस्तान में।
0: अमित जमाई जी को भी थोड़ा बोलने का मौका दीजिए। अमित जमाई जी, ये हम दिखा रहे हैं एक बार जो नंबर्स हैं, क्योंकि अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कौन निराशावादी है उस पर ये बहस चली गई। प्रधानमंत्री ने आज बड़ा हमला विपक्ष पर किया है, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी पर। लेकिन वहीं जब हम उत्तर प्रदेश की राजनीति को देखते हैं तो ऐसा लग रहा है कि सब थोड़े थोड़े ब्राह्मणवादी हुए चले जा रहे हैं। बीजेपी की तरफ से ब्रजेश पाठक जी ने कहा है, लेकिन इसी के साथ साथ अगर आप देखिए विधायक जो 258 है बीजेपी के, उनमें हम आपको दिखा रहे हैं हर वर्ग के कितने हैं। और अब तो अखिलेश जी भी पूजा पाठ की फोटो डालने लगे हैं, सब कह रहे हैं कि सब अब हिंदू कार्ड खेल रहे हैं।
8: देखिए अंजना जी, सीधी सी बात यह है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना हुई कि ब्रजेश पाठक जी को आगे आना पड़ा, उन्हें कहना पड़ा कि मुख्यमंत्री तो योगी आदित्यनाथ जी होंगे। पहली बात तो ये बहुत अनडेमोक्रेटिक है, चुनाव होते हैं, आपके पास विधायक होंगे तभी तो आप मुख्यमंत्री बनेंगे। दूसरी बात यह है कि अभी भारतीय जनता पार्टी ने एक पीडीए का कैंपेन शुरू किया है, पिछड़ा दलित को फोकस करके, कि भारतीय जनता पार्टी यूपी में पिछड़ा दलित पॉलिटिक्स करेगी। अभी जब मुख्यमंत्री जी का होम डिपार्टमेंट जाना था, दो एक महकमे कम होने थे, तो दो मुख्यमंत्री के दावेदार लखनऊ में टहल रहे थे, एक गुजरात से थे, एक प्रयागराज वाले थे। अब सवाल यह है कि वोट देगा पिछड़ा और दलित, मुख्यमंत्री अभी से कोई और होगा, तो पंकज चौधरी जी को काहे बनाया है प्रदेश का अध्यक्ष, कुर्मी समाज के साथ काहे आप घात कर रहे हो जब आपने पहले से ही तय कर लिया है। फिर अगर आप सनातनी सरकार हैं तो यह बताइए कि पूरे प्रदेश में ब्राह्मणों के फेक एनकाउंटर, बुलडोजर की कार्रवाइयां पूरे सूबे में, मैं क्रिमिनल्स के ऊपर नहीं कह रहा हूं, उनसे जुड़े हुए सैकड़ों परिवार हैं जिनके ऊपर इस मुख्यमंत्री ने, जो सूबे में अराजकता का काम कर रहे हैं, अव्यवस्था का काम कर रहे हैं ये मुख्यमंत्री, और जिनके होम सेक्रेटरी को हाई कोर्ट ने धमकाया है, मामला डीओपीटी को गया है। देखिए होम सेक्रेटरी बहुत ही सीजेंट एफिशिएंट आईएएस ऑफिसर रहे संजय प्रसाद, लेकिन उनको बिगाड़ने वाला कौन शख्स है? उनको बिगाड़ने वाला मुख्यमंत्री है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर से कंप्लेंट आई है कि ये बेलगाम होम सेक्रेटरी है जो पार्टी को भी परेशान करता है, जो पूरे सूबे में अव्यवस्था की वजह बना हुआ है। तो आप जरा सुधांशु जी से पूछिए, कानपुर में शुक्ला जो इनकी मंत्री हैं, उनका पूरा ब्राह्मण परिवार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सड़कों पर आंदोलन क्यों कर रहा है? गाजीपुर में एनकाउंटर किया, एक दिन तो आपने मार दिया, दूसरा जो सामान्य वर्ग के थे वो कहां पे हैं? उनको आपने जेल क्यों भेज दिया?
0: ठीक है,
8: एक तो ये पूरे जो मामले हैं, मुख्यमंत्री का जाना तय है। आप छोड़ दीजिए अंजना जी, सीटें नहीं आएंगी भारतीय जनता पार्टी की, जनता ने माननीय अखिलेश यादव जी के लिए पीडीए के लिए मन बना लिया है। मैं आज आपको बहुत अंजना जी, मैं जौनपुर में बहुत जमीन में बैठा हूं, समाजवादी सरकार थम्पिंग मेजोरिटी में आदरणीय अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाने वाली है, जनता लखनऊ की तरफ आगे बढ़ रही है।
0: ठीक है, एक बार डेटा भी दिखा दीजिए, क्योंकि खास तौर पर अगर हमने कास्ट इक्वेशन भी निकाला है कि किस तरह से कौन किसकी तरफ वोट डालता है, सुधांशु जी उनकी बातों का जवाब दीजिए।
6: देखिए जो इन्होंने
0: पिछली बार भी ठीक से नहीं दिया, ऐसा माना जा रहा है कि लोग ब्राह्मण नाराज हैं क्या बीच में?
6: अब बताना चाहता हूं,
0: इसलिए पाठक जी को आगे किया जा रहा है।
6: अब ये भी बता देता हूं,
0: ये देखिए 2024 लोकसभा में इंडिया गठबंधन को सवर्ण 16 और एनडीए को 79 यादव वोट 82% इंडिया गठबंधन की तरफ, तो 15% एनडीए की तरफ गया था। ये लोकसभा चुनाव का डेटा हम दे रहे हैं। और आपने देखा था यूपी में समाजवादी पार्टी ने जबरदस्त परफॉर्मेंस की थी, बीजेपी को परेशान कर दिया था। इंडिया गठबंधन 34, कुर्मी कोयरी 61, एनडीए, अन्य ओबीसी में भी एनडीए की बाजी मारी थी और उन्होंने 59 लिए थे लेकिन 34 इधर। वहीं इंडिया गठबंधन को जाट वोट 25 और 56 गैर जाट वोट, ये सबसे बड़ा फैक्टर रहा, क्योंकि मायावती की जमीन पूरी तरह से खिसक गई और वो आप देखिए कि सब उस तरफ जाते हुए दिखाई दिए। जल्दी से बताएं,
6: देखिए नॉन डेमोक्रेटिक बोलते बोलते क्या पहले वाक्य में कहा कि ब्रजेश पाठक जी ने पहले ही कह दिया कि योगी जी सीएम होंगे तो ये तो इलेक्ट होने के बाद होगा, और अंत में क्या कहा, अखिलेश जी सीएम होंगे ये पहले तय है, ना कोई पिछड़ा बनेगा, ना दलित, ना कोई यादव बनेगा, बनेगा तो परिवार वाला ही बनेगा। अद्भुत है साहब, आप लोगों की डेमोक्रेसी अद्भुत है। और मैं बताता हूं, पिछड़ों के अलंबरदार और आप जातियों की बात करने वाले, आपके तो लोग ब्राह्मणों के लिए कैसी कैसी गाली और अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं वो एक अलग बात है, मगर मैं बताना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी से भी पूछना चाहता हूं, हमने 1984 में बीजेपी ने कल्याण सिंह जी को यूपी का अध्यक्ष बनाया था, बताइए 80 के दशक में किसी ने ओबीसी को अध्यक्ष बनाया हो, और ऐसा नहीं अकेला था। 1986 में हमारे विनय कटियार जी बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, 1988 में उमा भारती जी सांसद हो गई थी। अगर देखा जाए नैसर्गिक रूप से हम लोगों ने समाज के सभी वर्गों को आगे बढ़ाया, तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं आपने समाज के वर्ग तो छोड़िए, पिछड़ा तो छोड़िए, अपनी जात में भी एक व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ाया। यादव समाज का एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसे राष्ट्रीय अध्यक्ष सीएम, इसे छोड़िए, वो आपके लिए कास्ट प्लस मुस्लिम है, और मुस्लिम तो इतना भारी है कि अगर वो कमेंट भी कर देगा, अखिलेश जी की पत्नी पर भी कमेंट कर देगा, तो चुप्पी साध लेनी है। इतना ही नहीं, अगर रमाकांत यादव, याद करिए आजमगढ़ का दंगा 2008, यादव समाज के साथ अभद्रता हुई थी, उनके साथ मारपीट हुई थी, मुलायम सिंह जी ने कहा था माफी मांगो, और रमाकांत यादव विद्रोह करके बाहर आए थे, और फिर बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़के जीते थे। इसलिए आप ध्यान रखिए, कोई इसमें कोई किसी जात को बख्शने वाला नहीं है। ठीक है, चंद दिन की आप हंसी ख्वाब देखकर
0: छोटा सा जवाब अमित जी, फिर मैं जाऊंगी हर्ष जी और उनके पास।
8: देखिए सुधांशु जी से मैंने पूछा कि अगर आप पिछड़ा दलित पॉलिटिक्स करते हो तो आपने अभी से मुख्यमंत्री कैसे तय कर लिया, वोट चाहिए पिछड़ों का, वोट चाहिए दलितों का, इसका जवाब आएं बाएं शाय करके निकल लिए सुधांशु भाई। ये इनकी आदत है, ये इनकी आदत है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, 2024 में पूरा उत्तर प्रदेश बीजेपी नरेंद्र मोदी जी
6: अच्छा, मुस्लिम हो सकता है कि नहीं आपका सीएम, मुस्लिम हो सकता है कि नहीं, एम वाइगा ने बताइए।
8: अरे मुसलमानों ने उत्तर प्रदेश की, मैं आपसे दोबारा कह रहा हूं, मुसलमानों ने, दलितों ने, लोधी समाज ने, कोयरी ने, कुर्मी ने, निषाद ने, मल्ला ने, बिंद ने, राजभर ने, सब ने मिलकर यह तय किया है कि हमारे 27 में जो मुख्यमंत्री होंगे वो अखिलेश जी होंगे। आपको समस्या क्या है? आप ओम प्रकाश राजभर जी को मुख्यमंत्री अभी से डिक्लेयर कर दीजिए।
6: आप ही ने कहा कि अखिलेश यादव होंगे, खुद ही डिक्लेयर कर रहे हैं, हमारे तो एग्जिस्टिंग है, आपके तो है नहीं तब आप डिक्लेयर कर रहे हैं, हमारे तो हैं
8: भाई। ये बताइए अगर आपके हैं तो आज
6: तो जो है वही रहेंगे।
8: उमा भारती जी मुख्यमंत्री योगी के खिलाफ क्यों है? कल्याण सिंह जी अपनी जिंदगी में भारतीय जनता पार्टी छोड़ गए, अपनी जिंदगी में कहा ये कलंक है, ये पिछड़ा विरोधी है भारतीय जनता पार्टी, आप तो एक जाति की पार्टी थे,
6: आप तो आज भी उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी कल्याण सिंह जी के अंतिम संस्कार में नहीं गए, उन्हीं दिनों मुख्तार अंसारी के नमाज़े जनाज़ा में चले गए।
8: मैं कह रहा हूं उत्तर प्रदेश में एक जाति की सरकार चल रही है, दूसरी कोई जाति नहीं है। सुधांशु त्रिवेदी भाई कभी तो ब्राह्मण समाज के बारे में सोचो,
6: किस जाति नहीं, आपके उदय परिवार की सरकार चलती थी, एक परिवार की सरकार।
0: अरे जी आप क्या कह रहे हैं, ब्राह्मण सीएम चाहिए आपको? आप चाहते हैं कि बीजेपी ब्राह्मण सीएम बनाए?
8: हम तो कह रहे हैं ये अभी आप कैसे तय कर लिया आपने, अभी आप कह रहे हैं हम पीडीए का
0: हर्षवर्धन त्रिपाठी जी जल्दी से
6: बारे कैसे बारे कैसे ये जलवे बनाए राम जी, आंखें तकती हैं राम जी, आंखें जलती हैं राम जी।
0: त्रिपाठी जी
9: बड़ा रोचक है,
0: लेकिन बीजेपी को क्यों बताना पड़ रहा है ये सब?
9: मुझे लगता है ये तो ये सच्चाई है कि पिछले कुछ समय में ब्राह्मणों के एक वर्ग में निराशा, उनके मन में एक असंतोष, उनको ये लगता है कि हमारा जो हिस्सा है वो हमको नहीं मिला। लेकिन यह भी सच है कि ब्राह्मण योगी आदित्यनाथ के साथ या कहें कि किसी जाति के साथ नहीं जाता है, वो भारतीय जनता पार्टी का सिंबल देखकर लंबे समय से वोट करता रहा। और जो सुधांशु जी का वो बड़ी तथ्यात्मक बात है, वो सिर्फ ऐसा नहीं कि कल्याण सिंह और उमा भारती, बाबूलाल गौर को नेता माना, शिवराज सिंह चौहान को नेता माना, मोहन यादव को नेता माना, और देश भर में वो लगातार इस तरह, और सबको छोड़िए ना नरेंद्र मोदी को, नरेंद्र मोदी तो घाची तेली समाज से आते हैं ना, लेकिन उनको देश के ब्राह्मणों ने नेता माना, उनको कौन सा ऐसा है जो नहीं? मुझे लगता है कि ये डिबेट समाजवादी पार्टी भाजपा के ट्रैप में फंस रही, भारतीय जनता पार्टी के ट्रैप में फंस रही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब इस तरह की बातें,
8: एक मिनट भाई,
9: नहीं सर्टिफिकेट
8: मुझे बताइए,
9: अपना सर्टिफिकेट अपना वाला खारिज कर दीजिए,
8: ब्राह्मण
9: आप अपना दत्तात्रेय वाला खारिज कर दीजिए, सर दत्तात्रेय वाला खारिज कर दीजिए, मैं अपना वाला बता, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब समाजवादी पार्टी ये कहती है कि ब्राह्मण मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी बनाए, तो बड़ा रोचक।

0: जिस पाठक जी ने अपनी खुन्नस निकाली है उन्होंने पूरी तरह से कह दिया है कि हम फिर ठाकुर बना रहे हैं। तो ब्राह्मण अपने आप में समझ जाइए, ब्राह्मण समझ रहे हैं कि बीजेपी ने ठाकुर को डिक्लेयर कर दिया। इनकी भाषा बोल रहा हूं मैं, तो उनके उप मुख्यमंत्री महोदय की भाषा बोल रहा हूं। दुर्भाग्य ये है कि जो गाय की परमिशन काटने की देते हो वो ब्राह्मणों के वोट की उम्मीद करते हैं। ब्राह्मणों भी सोचिए भाई कि आपके किस तरह से गाय को, जिसको हम माता और पूजनीय मानते हैं, ऑफिशियली डिक्लेयर कर रहे हैं 14 साल की हो जाए तो काट लेना भाई, घर के अंदर बैठ के खा लेना। ब्राह्मण वोट देगा आपको? बिल्कुल नहीं देगा। ब्राह्मण इस बार इंडिया गठबंधन के साथ आएगा। उमा भारती ने मोदी जी के लिए क्या क्या कहा और कल्याण सिंह ने क्या क्या बोला, आज का विषय वो नहीं है। और उत्तर प्रदेश का चुनाव जाति से आगे बढ़ चुका है, आपकी परफॉर्मेंस पे जाएगा। वो पूछना चाहते हैं कि भाई वो हाथरस की बेटी, उसके जो चार लोग थे उनमें से तीन तो छूट के आ गए, एक अंदर है, वो किस जाति की थी? क्या वो हिंदू नहीं थी? नीट के एग्जाम, क्या हिंदू बच्चे 97% बच्चे हिंदू नहीं थे? सीबीएसई के जो सड़कों पे बच्चे घूम रहे हैं क्या वो हिंदू नहीं है? क्या जो 6 बच्चों ने सुसाइड किया 6 के 6 हिंदू नहीं है? आपका हिंदुत्व का कार्ड चलेगा ना इस बार ब्राह्मण का कार्ड चलेगा।
1: कोई भी फैक्ट ना बता के बार बार वही बात रिपीट की, तो अब यहाँ तक मैं कहना चाहता हूँ आपके तो भारत,
0: क्या आपने गाय को काटने की परमिशन दी या नहीं, ये फैक्ट गलत है, हाँ या ना?
1: बिल्कुल, बीफ एक्सपोर्ट पूरी तरह बैन है भारत में।
0: अरे भाई
1: हो ही नहीं सकता। अब सुनिए, अब
0: एक्सपोर्ट की बात नहीं की, क्या 14 साल से ऊपर की गाय को बंगाल में काटने की परमिशन दी या नहीं दी, हाँ या ना? दे दीजिए ना उत्तर भाई।
1: अरे गाय खाई किसने? नेहरू ने।
0: अब फिर वो कहेंगे मिथुन
1: 19 तो। नहीं मिथुन, नहीं मिथुन तो गाय ही नहीं है भाई, जरा पढ़ो, मिथुन इज अ नाइदर ए काउ नॉर ए बफेलो, इसे कहते अकल बड़ी है भैंस, अकल बड़ी। अभी अभी जाके नेट पे चेक करिए, मिथुन इज नाइदर ए काउ नॉर ए बफेलो, ना गाय की प्रजाति ना। अब सर, अब बीच में बोलिए,
0: बीच में नहीं,
1: अब मैं बताता हूं। नेहरू जी पंडित जवाहरलाल नेहरू 1956 में गए
0: यार, मैं गोलवर आइजनहावर के उसका कोई सेंस नहीं
1: है। हमने टन पे सुना
0: 1952 में पहला राज्य अगर कोई था तो उत्तर प्रदेश था, जिसमें गौवध पर प्रतिबंध लगाया और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लगाया।
1: उस समय गोविंद बल्लभ पंत थे
0: पीएम, तो थे मोदी,
1: तो आप
0: पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे के नहीं थे?
1: अब देखिए लगातार डिस्टर्ब कर रहे हैं।
0: मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा, आपसे
1: लगातार
0: क्या बंगाल में आपने परमिशन दी या नहीं, कहां
1: तक जवाब दे दिए?
0: मुझे बताइए भाई, 14 साल कि बुजुर्ग गाय को काटने की परमिशन दी के नहीं वेस्ट बंगाल में, हां या ना बता दीजिए।
1: सुनिए मैं बताना चाहता हूं, और जो डीक्लासिफाइड किया गया 20 साल के बाद अमेरिका के द्वारा 16 से 18 सितंबर
0: की बात कर रहे हैं, पूरी भागेंगे, 1950 में भागेंगे,
1: क्योंकि अभी आप
0: यार वेस्ट बंगाल का जवाब दीजिए ना, मुझे केवल वेस्ट बंगाल का जवाब देना।
1: अरे सुना वेस्ट बंगाल की बात,
0: क्या वेस्ट बंगाल में 14 साल की गाय कट सकती है
1: भाई? आप ना बता दीजिए भाई, मुझे हड्डी उड़ा दीजिएगा। अभी
2: देखिए,
1: अब सुनिए, उसमें लिखा हुआ है कि नेहरू से उनकी ईटिंग प्रेफरेंस पूछा गया तो उन्होंने कहा फिलिट मैगिन ए बीफ एंड ए स्कॉच,
0: क्या
1: उसमें आगे लिखा हुआ सुनिए। अब देखिए बीफ, मुझे पता है परेशानी है,
0: किसी आपके आरएसएस के चीफ ने कहा कि गाय को मैं माता नहीं मानता, गाय तो जो है वो गोबर में रहती है, किसने कहा था ये बता दो?
2: अरे जवाब नहीं मिलेगा तो आप
1: फैक्ट नहीं हो रहा है, मैं ऐसा कौन बोल रहा है
0: ना, वेस्ट बंगाल में परमिशन दी के नहीं
1: कुछ, और बीच में चिल्लाना
0: मुझे केवल ही बताइए वेस्ट बंगाल में परमिशन दी के नहीं,
2: आपको तुरंत मौका मिलेगा उनको बोलने का। अगर वो जवाब नहीं देते,
0: विश्व शर्मा ने जो कहा वो सच है कि नहीं?
1: सुनो सुनो सुनो,
0: कि घर के अंदर मीट खा लिया करो गाय का, कहा कि नहीं कहा है ना, मैं जवाब दे दो भाई,
1: हां या ना मैं बता रहे हैं आपको। तो पहली बात तो उसमें लिखा हुआ बड़े आश्चर्य की बात थी कि बिगेस्ट हिंदू नेशन का प्राइम मिनिस्टर अपने
0: बीफ और
1: अब आज की बात कर रहा हूं
0: हेमंत विश्व शर्मा की पूछ रहा हूं,
1: चिल्ला रहे
0: हैं, पता नहीं कहां पहुंच जाते हो भाई।
1: अब आज
0: इसको कहते हैं आए बाएं दाएं साएं,
1: देखिए फैक्ट
0: सही जवाब नहीं,
1: बिल्कुल साफ बता रहा हूं।
0: बंगाल में आपने परमिशन दी कि नहीं दी?
1: वेस्ट बंगाल में कहां पे है भाई?
0: अरे भाई 14 साल के ऊपर आपके मंत्री का बयान आया,
1: कौन सा भाई ऑफिशियल स्टेटमेंट की बात करिए? अब सुनिए मंत्री का बयान, तो इनके तमिलनाडु के मंत्री ने कहा जब ये गठबंधन में थे कि सड़क पे दिखे तो ब्राह्मण को मार दो, बोलो बोला था कि नहीं डीएमके के मंत्री ने? और आप साथ में बैठे रहे, बोलो हाँ या ना, बोलो सनातन धर्म जो है वो डेंगू है, वायरस है, ये है, एचआईवी है, और ये कहा ब्राह्मण को देखते ही मार दो, और आप सरकार में शामिल रहे, और अब जब विजय आ गया छोड़ गए, बोलो बोला था कि नहीं डीएमके वाले ने? छोड़िए,
0: आप गाय को काटने से रोकेंगे?
1: निंदा किए,
0: क्या बंगाल में आप गाय को काटने से रोकेंगे, हाँ या ना?
1: हम लोग तो रोक ही रहे हैं, वरना आपके जमाने में तो खड़ा
0: कहां रोक रहे हैं? आपने तो परमिशन दे दी, ऑफिशियल परमिशन,
1: ऑफिशियल परमिशन,
0: आपके केंद्र के मंत्री ने कहा कि गौ हत्या नहीं रुक सकती।
2: अनुपम मिश्रा जी को दिखा दीजिए भाई, वो बेचारे शो खत्म हो जाएगा, बोल ही नहीं पाएंगे, बस अनुपम मिश्रा जी, अनुपम मिश्रा जी,
1: दर्शक देख रहे हैं मैं इनके बीच में चिल्लाता हूँ,
0: लगातार चिल्लाते
2: आपकी पार्टी

0: पश्चिमी
1: उत्तर प्रदेश। अच्छा सुनिए, गाय काट के पार्टी सड़क में किसने की? कांग्रेस ने केरल में।
2: उसको जेल में डाला।
1: कौन सा जेल में डाला? उस समय तो आपकी आपकी पार्टी का पदाधिकारी था जिसने जाके वो
2: किया। हमने पार्टी से बाहर किया।
1: कहां पाए बाहर बताइए। चलो स्वीकार किया कि पार्टी का पदाधिकारी
2: था और हमने पार्टी से बाहर किया।
1: कहां पार्टी से बाहर किया?
2: उसको जेल में
1: दिखाइए कहां पार्टी से बाहर किया।
2: यूथ कांग्रेस का जिला अध्यक्ष था, उसको पार्टी से
1: देखिए। और ये कबूलनामा यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सड़क के ऊपर भी पार्टी
2: कह रहा हूँ।
0: अनुपम मिश्र जी, जल्दी से बताइए, आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में अब आपकी पार्टी का अस्तित्व है, लेकिन इन सब के बीच एक तरफ पीडीए की बात अखिलेश यादव करते हैं और दूसरी तरफ ब्राह्मण आपके साथ है ये और हमारे साथ है और हम फिर से योगी आदित्यनाथ को ही सीएम बनाएंगे, इसको कैसे देख रही है आपकी पार्टी?
3: अंजना जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रही बात ब्राह्मणों की, चूंकि ये डिबेट बहुत तरफ गई इस इधर और उधर, तो मैं पहले शुरुआत वहीं से करता हूँ। ये सब पॉलिटिकल नैरेटिव्स हैं जो बनाने का प्रयास किया जाता है विपक्षी दलों के द्वारा, अपोजिशन का काम है इस तरीके करना, लेकिन ब्राह्मणों में ऐसी कोई नाराजगी फिलहाल नहीं है। ये जरूर है कि कुछ बातें ऐसी शुरुआती दौर में आई जिससे ऐसा एक संदेश जा रहा था, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि वो दिखाई देने लगा है कि ये गलत नैरेटिव था। मैं बात करना चाह रहा हूँ क्योंकि हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता दोनों लोगों ने विभिन्न बातें की। वो कह रहे हैं कि आपके यहाँ पे शुक्ला जी ये कानपुर की विधायिका हैं, वो सरकार के खिलाफ हैं, वो आपकी पार्टी से इधर गई। मैं आपको ये जवाब देना चाहता हूँ कि जिनके घर शीशे के होते हैं दूसरे के घरों में पत्थर नहीं उछाला करते हैं। मैं आपसे पूछ लूँ, अगर आपके पवन पांडे जी आपकी पार्टी के थे और विधायक थे और वो बहुत ही हताश होकर आपकी पार्टी से निकले, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी थे और उन्होंने कहा था कि ब्राह्मणों की उत्तर प्रदेश में कोई मदद ना करे, इस तरीके के सारे सेंटेंस आपके यहाँ से आए और आपके यहाँ कितना सफोकेशन रहा है। आपके यहाँ एक कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करते थे जिनको कि काम करने में, चूंकि वो बढ़ चढ़ के ब्राह्मण थे, हिस्सा लेते थे और उन्होंने बहुत सारा काम किया, उनको आप लोगों ने साइडलाइन कर दिया क्योंकि उनकी लोकप्रियता बढ़ रही थी, वो लगातार काम कर रहे थे। तो आप ब्राह्मणों की बात ना करें तो बेहतर है। दूसरा, ब्रजेश पाठक जी ने जो कहा, आप कह रहे हैं कि आप पहले ही आप मुख्यमंत्री का चेहरा बता रहे हैं। अरे आप अभी ना कहें तो कहेंगे भारतीय जनता पार्टी के पास, एनडीए के पास मुख्यमंत्री का कोई फेस नहीं है। और अगर हम कह रहे हैं, हमारा सिटिंग डिप्टी सीएम भी उस बात को कह रहा है, तो आपको उसमें भी एतराज है। और मैं दूसरी बात
0: टिकट पता नहीं कितने थे, आप सब बैठे ब्राह्मण है आज बहस में।
4: नहीं, मैं मिश्रा साहब से पूछ रहा हूँ, ब्राह्मण तो टिकट नहीं देते आप लोग।
3: अरे शर्मा जी, आप
1: सुनिए, ओबीसी जात गिनाने वाले हिमाचल तेलंगाना और कर्नाटक तीनों फॉरवर्ड हो गए, बैकवर्ड को हटा दिया। बोलो भाई, जात बोलो।
2: कहूंगा
3: शर्मा जी, जंपिंग जैक मत बनिए।
2: प्रदेश अध्यक्ष कर्नाटक का है,
4: सब सिंपल लो ना भाई, पांचों के पांचों कर
2: ओबीसी आया कर्नाटक,
4: हां या ना हो तो बता दीजिए।
3: और उसके बाद भी आप
0: सुना था कि कांग्रेस पार्टी में प्रवक्ताओं की भी लिस्ट निकाली जा रही है देखने के लिए कि पिछड़ों को मौका मिले नहीं मिले।
2: ऐसा नहीं, मेरी नॉलेज में इस तरह की कोई लिस्ट नहीं है। वो तो ज्यादातर
0: अमित जी आज खुश है कि हम समाजवादी पार्टी से आए हैं तो हम अपनी पार्टी को
2: कांग्रेस पार्टी में चाहे प्रवक्ता हो चाहे बाकी कोई लिस्ट आती हो, सब में बैलेंस रखने का प्रयास किया जाता है। अभी पांच राज्यसभा के कल अनाउंस हुए हैं, पांच में से दो ब्राह्मण हैं।
1: नहीं वैसे
2: हम बैलेंस करके चलते हैं,
3: लेकिन
2: दो दलित हैं, एक ओबीसी हैं। मुझे नहीं लगता कांग्रेस पार्टी में जितना बैलेंस होता किसी भी पार्टी में होता हो। मैं तो मिश्रा साहब से एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ कि आरएलडी ने कोई एकाध कैंडिडेट ब्राह्मण दिया था क्या? मेरठ बेल्ट में ब्लॉक में बहुत ब्राह्मण पॉपुलेशन है।
3: मैं आप आने दीजिए, समय देंगे। और मैं तो उस
2: कब समय आएगा भाई, अब तो जाने का समय आ गया आप लोगों का।
3: अरे मैं ब्राह्मण प्रवक्ता बैठा हुआ हूँ, आपको इससे भी आपको दिक्कत है?
2: मुझे आपसे कोई दिक्कत नहीं है।
3: अपने
2: मैं तो वही था उस दिन लखनऊ में, जब जिस तरह से आपकी पार्टी ने गठबंधन किया, 7 सीटें मिली और फिर छोड़ के भाग गए आप 2 घंटे के बाद बीजेपी के पास। पता नहीं कोई डर होगा या कोई लालच होगा,
1: जैसे आप चले गए टीवी के पास।
3: हाँ,
1: क्या था डर था कि लालच?
2: चुनाव के
1: बोलो भाई, चुनाव के बाद चले गए, चुनाव साथ में मिलकर लड़ो, पलट के चले गए।
2: आपका तो प्रदेश अध्यक्ष भाग गया, उसको तो रोक लो। तमिलनाडु का
3: पार्टनर को डिच किया आलोक जी, आप तो डिच करते हैं। आप अभी अखिलेश यादव जी को भी डिच कर रहे हैं, आपकी पार्टी को वो डिच कर रहे हैं। आपके नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी जाकर के समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, आप क्या बात कर रहे हैं?
2: 10 साल तक काहे को आप हमारे साथ यूपीए 1 और यूपीए 2 में थे भाई।
3: अरे आप वो कर रहे
2: हैं, आप अगर डिची करते हैं तो अगर आप लोग तो मौसम वैज्ञानिक हो, जब मर्जी इधर उधर चल देते हो। कौन सी पार्टी ऐसी है जिसके साथ मिलकर आपने गठबंधन नहीं बनाया?
1: मौसम होता उसके विपरीत ही चलते हैं।
2: आप सपा के साथ भी गए, आप भाजपा के साथ भी, आप कांग्रेस के साथ भी, आप तो सबके साथ गए।
5: आप हमारे
2: नहीं गए क्या?
5: लगाइए और
2: एक जाति विशेष की राजनीति करते हैं यूपी के एक हिस्से में, बात ब्राह्मणों की करने बैठ गए आप यहाँ।
5: अरे आपसे तो वो भी नहीं समझ रहा है।
2: आप मुझे बताइए ना, एक आध कैंडिडेट को बता दो भाई,
5: भी नहीं समझ रहा है।
2: लोकसभा का, विधानसभा का कोई एमएलसी को भेज दिया ब्राह्मण।
5: आपसे आलोक जी जितने प्रश्न आपसे सुधांशु जी ने अभी पूछे, मैं ही नहीं देख रहा हूँ, देश की जनता देख रही। आपने एक का भी उचित जवाब नहीं दिया।
2: एक सवाल का जवाब दिया है मेरा, एक एक फैक्ट सही है।
5: जब जो जो उन्होंने,
2: मैं तो पूछ रहा हूँ, आप गाय काटने में बीजेपी के साथ हैं?
5: अरे आप उत्तर दे दीजिए पंडित,
2: आप गाय काटने की परमिशन में बीजेपी के साथ हैं? हाँ या ना?
5: मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ।
2: गाय खाने वाले तो, गाय खाने वाले तो
1: पीएम,
2: अरे भाई अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कहा, मैंने भी खाई है, अमेरिका में खाया कि नहीं खाया?
1: शब्द नहीं बोल सकता था,
2: अरे भाई
1: उर्दू बोलता था, अंग्रेजी बोलता था, आजकल शेरवानी पहनता था।
2: मुझे केवल ये बताइए अटल बिहारी वाजपेयी ने बीफ खाया कि नहीं अमेरिका में जाकर?
5: नेहरू जी जो गाय का
1: रिकॉर्ड दिखाई,
2: हर चीज का रिकॉर्ड,
1: हमने
2: स्टूडियो में रिकॉर्ड लेना
1: है।
2: मैं फिर कहूंगा बहुत कुछ, कौन कौन मांसाहारी था, आप लोग बीफ के एक्सपोर्ट में आज हिंदुस्तान नंबर वन पे आपने पहुंचाया है?
1: नहीं पहुंचाया, एक्सपोर्ट होता ही नहीं
2: है। बीफ एक्सपोर्ट कहा, बीफ में दोनों है ना,
1: मीट इज अ डिफरेंट थिंग।
2: अच्छा मतलब,
1: काऊ बीफ इज अ डिफरेंट थिंग,
2: मतलब पशु पशु हत्या जो है वो सनातन में अलाउड है? सनातन में अलाउड है?
1: सुनिए सुनिए सुनिए,
2: सनातन में अलाउड है
1: भाई? क्या
2: कमाल कर रहे हो भाई, गाय को काटने की परमिशन देते हो, आप सनातन की बात करते हो यार?
1: एक मिनट सुनिए, ये वो लोग हैं जिनके लिए अगर पशु बलि त्रिपुर सुंदरी मंदिर में होती है साल में दो बार, तो पशु प्रेमियों की, एनिमल लवर्स की लवरई जागती है, मगर बकरीद के दिन हलाल कर करके जब काटे जाते हैं उसमें से, अरे उसमें वो लोग इनके साथ
2: 2016 में जिनकी सरकार आई, सबसे पहले इनका काम था अरुण जेटली जी ने, कि बीफ की जो इंडस्ट्री थी उसकी सारी मशीनों पर एक्साइज ड्यूटी घटाई थी।
0: अमित जी, आज बड़ा सवाल यह है कि पीडीए और इस तरफ से जो बीजेपी अपना कार्ड खेल रही है, अब सवाल यह है कि आपके ए में आप कहते हैं आगरा भी है, अल्पसंख्यक भी है, आधी आबादी भी है, लेकिन
1: अपराधी है ए से?
0: जवाब दीजिए अमित जी।
6: देखिये सुधांशु भाई, जब मिथुन नाम सुनते हैं तो इनका चेहरा गुलाब की तरह खिल जाता है। आलोक भाई ने जैसे कहा मिथुन गुलाब की तरह, क्या बात है भाई, मिथुन पे मुस्कुराने लगते हैं आप जो है। दूसरी बात क्या है कि देखिए, उत्तर प्रदेश का समाजवादी पार्टी का जो कॉम्बिनेशन है नेताजी के जमाने से, उनके साथ जनेश्वर मिश्र जी थे, उनके साथ ब्रजभूषण तिवारी जी थे, उनके साथ आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा के सबसे सीनियर लीडर आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी एलओपी है। तो हमारी पॉलिटिक्स समाजवादी तहरीक की पॉलिटिक्स है, हमारी पॉलिटिक्स सामाजिक न्याय की पॉलिटिक्स है, हमारी पॉलिटिक्स सामान्य वर्ग के वो सभी प्रगतिशील लोग उनको साथ में लेके चलने की पॉलिटिक्स है। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी, दलित पिछड़ा वोट चाहिए, मुख्यमंत्री का नाम अभी से ब्रजेश पाठक जी खेल गए। अब ये पता करवाइए कि ब्रजेश पाठक जी खेले कहां से हैं, क्योंकि 2024 में आरएसएस के ब्राह्मण समाज ने कहां वोट दिया था? सुधांशु भाई, इसका आइडिया तो आपको ज्यादा होना चाहिए। आज भी जो ब्राह्मण समाज है, जो आपकी पार्टी से जुड़ा हुआ है, आप तो बैठते होंगे ना ब्राह्मण महासभा में जब समाज की बैठक करते होंगे, आज आप यहाँ कुछ और बोल रहे हैं,
0: वहाँ
6: कुछ
0: और बोल रहे हैं।
6: अन्याय को रोकिए, अन्याय को रोकिए।
7: गाली देते रहते हैं, जो छोटी शिखा पर टिप्पणी करते हैं वो कह रहे हैं ब्राह्मण भाग रहा है। ब्राह्मण जो बचा खुचा भी होगा ना, वो आलोक जी के घर वाला भी ना वोट दे दे भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में, इसकी चिंता करनी चाहिए।
0: हाँ शर्मा जी,
2: देखिए मुझे
5: नहीं
2: लगता
5: दे भी रहा होगा,
2: आज ब्राह्मण भी जाग चुका है, यूजीसी बिल
7: जाग गया, बिल्कुल जाग गया।
2: और पूरी तरह से जिस तरह से इन्होंने नकली हिंदुत्व का जो बैंड बजाया, पूरी तरह से हिंदुओं का नुकसान किया। नीट पेपर के बाद आप सोचते हैं कि हिंदू बच्चे नीट एग्जाम लीक होने के बाद इनको वोट देंगे? गाय को काटने की परमिशन देने वालों को क्या ब्राह्मण वोट देगा? नहीं देगा।
0: जल्दी से
5: जी, आप आलोक जी, अभी त्रिपाठी जी ने बिल्कुल सही कहा है, आप संभालिए। मुझे तो डाउट है कहीं आप ऐसा ना बूथ तक पहुंचते पहुंचते आप भी एनडीए को वोट कराएं।
2: कौन किसको देगा, आप ज्यादा समय बताएगा?
5: नहीं, मुझे तो पक्का यकीन है, क्या
2: गाय काटने के वाले के साथ हैं आप?
0: ठीक, सुधांशु जी,
5: मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप पंडित नेहरू जी ने जो कहा,
0: जी जी हो गया हो गया।
1: अब मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, जात जात की बात करने वाले आज अपनी जात बता नहीं पाते, और आज वो सारी बातों में देखिए वक्त कितना बदला है, कितना वक्त बदला है कि आज कांग्रेस पार्टी को क्या क्या नहीं बोलना पड़ रहा है, कितना बदलना पड़ रहा है। और मैं एक पंक्ति ये कह देना चाहता हूं, बाकी छोड़िए जातियों की बहुत बात हो गई, अरे यादवों के साथ कितने खड़े हो
4: आप, कहिए ना
1: एयर चीफ मार्शल एके भारती जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद बोला, जब उन्होंने रामचरित मानस की चौपाई कोर्ट की उसकी तारीफ नहीं की अखिलेश यादव ने,
4: ब्राह्मण को सीएम बनाएंगे,
0: ब्राह्मण सीएम चाहिए मतलब फिर यही जीतेंगे क्या?
4: कह रहा हूं कि आप ये ऐलान तो करें कि अगर हमारी सरकार आई तो ब्राह्मण को बनाएंगे,
1: हमारी सरकार आएगी हिंदू सीएम और कट्टरवादी हिंदू सीएम होता है आपके लिए, वही बात आ गई, कास्ट
4: हिंदू कट्टरवादी चाहिए,
1: कास्ट बिल्कुल कट्टर हिंदूवादी होगा
4: जो मुसलमान कर सके, जिसमें एक ठाकरे जी जिसमें एक दर्जन केस लदे उनको वो।
0: चलिए इसी के साथ वक्त इतने की इजाजत देता, सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज रात 9 बजे ब्लैक एंड व्हाइट में आपको बताएंगे कि भारत का फायदा उठाने के ट्रंप के दावे में कितना दम है, आरबीआई द्वारा सोना बेचे जाने की अफवाह पर ब्लूमबर्ग ने तो माफी मांग ली, क्या भारत में इस आधार पर झूठ फैलाने वाले माफी मांगेंगे। आज आपको देश में 15 लाख करोड़ के कॉर्पोरेट घोटाले की हकीकत बताएंगे और आखिर में आपको बताएंगे कि बड़ी डिग्री वाले अब छोटी नौकरी क्यों नहीं कर सकते। देखते रहिए आज तक।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
9: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
8: Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of...
10: Whatever you're in the mood for, TuneIn has the music to match. From today's hits to timeless favorites and new discoveries. It's all streaming in one place. Discover stations that fit your vibe and keep the music going all day long. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
8: Sanitary solution.
11: कुछ भी खा नहीं पा रहा हूँ, बहुत अपसेट हूँ।
12: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स बादाम पिस्ता काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
13: लायन डेट नट बाइट्स।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
2: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
3: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
4: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
5: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
6: सोच बदलो और बैंक भी।
7: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
8: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
9: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
10: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
11: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
12: 15 दिन पहले से पूरे देश में बंट रहा था, NTO को पता नहीं।
10: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
13: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
11: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, NTA जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
10: जहां खबर वहां खबरदार।
14: इन एसोसिएशन विद मोंटी कार्लो, इट्स द वे यू मेक मी फील।
1: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
15: तक डिजिटल फर्स्ट चैनल्स, 11 बिलियन व्यूज, 85 मिलियन यूनिक व्यूअर्स, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर ब्रांड, रीजनल और हाइपर लोकल रीच। हर शहर हर कस्बे तक एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल करें।
16: मैं इस वक्त उसी बिल्डिंग के बाहर हूँ जहाँ पर ये आग लगी।
17: मैं आपको टॉप एंगल से एक तस्वीर दिखाता हूँ और ये तस्वीर जो पूरा मंजर है उसको बयान करने के लिए काफी है।
18: यहाँ पर दूसरा एग्जिट गेट नहीं है तो किस तरीके से सेफ्टी नॉर्म्स का पालन किया गया था।
19: ये तस्वीरें बताती है कि किस तरीके से लापरवाही जो है वो पूरे इस इलाके में जो है वो चल रही है।
17: 20 लोगों की जान चली गई। और देखिए, जब तस्वीर दिखाई जाती है एक एक करके तो इस तरह से दिल्ली पुलिस की टीम आती है और कहती है कि आप यहाँ से नहीं दिखाएंगे।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: मम्मी पापा, आपका मुझ पर भरोसा था कि मेरी बेटी पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाएगी, पर दोबारा नीट देने की हिम्मत नहीं है मेरे अंदर। पहले नीट के पेपर में मेरे अच्छे मार्क्स आ रहे थे, पर दोबारा पेपर अच्छा जाए इसकी क्या गारंटी है। सॉरी मम्मी पापा, मैंने सब बर्बाद कर दिया आप दोनों का।
3: सोचिए ये शब्द किसका कलेजा नहीं चीर देंगे।
4: हम कर्ज ले लेके पढ़ा रहे थे, हम किसी से मांग मांग के उसकी फीस भर रहे थे।
5: कितने सारे सपने दिखा के चली गई थी तुम उसके नाम की आगे का कर्ज।
3: मध्य प्रदेश की आकांक्षा की मौत सिस्टम पर वो करारा तमाचा है जिसकी गूंज सुनाई तो पड़ रही है, लेकिन सवाल वही है कि क्या कुछ दिनों के हंगामे के बाद पेपर लीक माफिया और शिक्षा तंत्र में बैठे धंधेबाजों पर फिर तो चुप्पी नहीं ओढ़ ली जाएगी। आज जो विपक्ष में है वे नीट पेपर लीक और सीबीएसई ओएसएम की गड़बड़ी पर सरकार से तीखे सवाल पूछ रहे हैं।
6: दुख है हमें, लेकिन कार्रवाई में कभी कमी नहीं रखा।
7: How many questions normally will someone apply for?
8: I guess अभी जो problem आ रही है, they can apply for all the questions.
7: So how many total questions?
8: 30-35 around questions होते हैं।
7: So huge amount of money
8: is involved.
3: विपक्ष को सवाल पूछने भी चाहिए, जवाबदेही तय होनी ही चाहिए, लेकिन शिक्षा तंत्र को फेल करने वालों का जाल बहुत गहरा है और बहुत पुराना है। 2002 से 2025 के बीच 1,00,000 से अधिक उम्मीदवारों ववाली 45 लीक परीक्षाओं ने 3,86,00,000 छात्रों को प्रभावित किया। लीक के इन मामलों में 1,658 लोगों की गिरफ्तारी हुई, 925 पर चार्जशीट दाखिल की गई, 2 मामलों में 18 लोग दोषी करार दिए गए, 43 आरोपी जेल में बंद हैं। आरोपों के मुताबिक पेपर लीक माफिया का कोचिंग माफिया के साथ सांठगांठ होता है। इस बार की नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में भी आरोपियों के तार कोचिंग सेंटर से जुड़े हैं। इसलिए शिक्षा तंत्र के ओवरहॉल की जरूरत है। छात्र तो अपना भविष्य बनाने की परीक्षा देते हैं, अब की बार सरकार को परीक्षा में पास होकर दिखाना है। आज तक ब्यूरो।
9: साथियों, आज देश में कुछ निराशावादी लोग हैं जो आत्मनिर्भर भारत अभियान का मजाक उड़ाते रहते हैं। देश के इस संकल्प को वो लगातार नीचा ही दिखाते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा भारत को दूसरे देशों पर निर्भर रखा। वो लोग ये भूल जाते हैं कि दूसरों पर निर्भर देश विकास की वो ऊंचाई कभी प्राप्त नहीं कर सकता जिसका वो हकदार है।
10: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
3: तो हल्ला बोल में आप बहस देख रहे थे उत्तर प्रदेश की राजनीति पर। हम ब्रेक नहीं ले रहे हैं, अब देखिए 7 तक मार्या के साथ।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.

0: नमस्कार, मैं हूँ मारिया शकील। शाम के 7 बजने वाले हैं आज तक के इस खास शो में। अगले आधे घंटे में दिन भर की सभी बड़ी खबरें होंगी, लेकिन खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सूरत में पीएम मोदी का विपक्ष पर बड़ा हमला, कहा अराजकता फैलाकर अफसर तलाश रही है कांग्रेस। देश को नीचा दिखाने में जुटे हैं निराशावादी नेता। अग्निकांड के बाद दिल्ली सरकार का बड़ा एक्शन, इनक्रोचमेंट पर चलाया बुलडोजर, कुछ इलाकों में सीलिंग, दोषी अफसरों पर सख्ती। अपनी ही पार्टी में अकेले पड़ती जा रही हैं ममता बैनर्जी। आज बैठक में पहुंचे सिर्फ 3 एमपी। ऋतुव्रता को एलओपी बनाने के खिलाफ हाईकोर्ट जाने की तैयारी। झूठ बोलकर बुरे फंसे फैजल खान, पटना में आर्म्स एक्ट में केस दर्ज। गिरफ्तार गार्ड्स का खुलासा, खान के कहने पर ही चलाई थी गोली। ऑयल और एनर्जी संकट के बीच भारत के लिए बहुत अच्छी खबर, जीडीपी में दिखा बड़ा उछाल, रियलिटी सेक्टर से लेकर एग्रीकल्चर तक ग्रोथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उस खबर से जो पूरे देश के लिए बड़ी चिंता है। दिल्ली अग्निकांड के बाद एक बार फिर सवाल खड़ा हो रहा है कि देश आग जैसे हादसों से निपटने के लिए कितना तैयार है। आज एक बार फिर अग्निकांड की ऐसी ही तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों से आईं, जिन्होंने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा कर दिया है।
1: खिड़की के छज्जे पर लटका एक परिवार, पति पत्नी और एक मासूम बेटी इस जद्दोजहद में है कि किसी तरह जान बच जाए। पड़ोसी रस्सी फेंक रहे हैं तो कोई सीढ़ी लगाने की कोशिश कर रहा है। वजह बिल्डिंग में लगी आग है, घर के अंदर भरा धुआं है। मध्य प्रदेश के इंदौर में इलेक्ट्रिक शोरूम में लगी आग एक बार फिर देश के सिस्टम पर सवाल खड़े करती है। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड की तस्वीरें अभी धुंधली भी नहीं हुई थी कि इंदौर के इस अग्निकांड ने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। हालांकि अच्छी बात ये रही कि इसमें किसी जानमाल का नुकसान नहीं हुआ।
2: पहली बार उठे जैसे हमने धुआं देखा, और इसके अलावा हमने कुछ नहीं देखा। मतलब बच्ची और हमको सबको साथ में लेके बाउंड्री के बाहर इधर बालकनी के यहाँ पर पहुंच गए, खड़े रहे दीवार के साइड से जो पाइपलाइन इसको पकड़ के। मतलब फिर लोगों ने हमको देखा कि ये लोग भी ऊपर हैं, मतलब कब से हुए हैं।
3: बहुत दूर धुआं हो रहा था, घबराहट हो रही थी, सांस लेने में भी दिक्कत आ रही थी, तो हम इधर से कूद के और दूसरी बिल्डिंग पे गए, तो उधर से लोगों ने हमको निकाला, बच्ची को भी निकाला, हमको रस्सी बांध के कमर में सीढ़ी से निकाला।
1: आग की एक और भयानक तस्वीर नोएडा के सेक्टर 75 की ईवी काउंटिंग से भी आई, जहां 24 मंजिला इमारत की 12वीं मंजिल के एक फ्लैट में भीषण आग लग गई। लोग अपने घरों को खाली करने नीचे भागे। आग इतनी ऊंचाई पर थी कि फायर ब्रिगेड की टीम के हाथ पैर फूल गए। शुरुआत में दमकल की जो गाड़ियां आई उसका पानी 6 फ्लोर तक ही पहुंच पाया, जबकि आग 12वीं फ्लोर में लगी थी। कुछ देर बाद हाइड्रोलिक क्रेन मंगाई गई, इसके बाद फ्लैट में पानी डाला गया और किसी तरह आग पर काबू पाया गया। लेकिन इसने एक बार फिर नोएडा जैसे हाईराइज बिल्डिंग वाले इलाकों में आग के इंतजामों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर इतनी ऊंचाई पर अग्निशमन की टीम के पास क्या इंतजाम है? सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी पूरे मामले में संज्ञान लिया है। आज तक ब्यूरो।
0: इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड को लेकर। सीएम रेखा गुप्ता ने बड़ी बैठक की है, जिसमें फैसला किया गया है कि अवैध निर्माण में शामिल अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली सरकार दोषी पाए जाने पर अधिकारियों की सैलरी, पेंशन और संपत्ति से वसूली करेगी।

0: उधर मालवीय नगर अग्निकांड के बाद अब दिल्ली की अवैध जगहों पर बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है, तो वहीं एमसीडी की टीम गैर कानूनी तरीके से चल रहे अवैध होटलों को भी सील कर रही है।
1: मालवीय नगर हादसे के बाद एक्शन में दिल्ली सरकार जो है वो नजर आ रही है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में, चाहे वो साकेत हो, चाहे इसके अलावा मालवीय नगर हो, चाहे वो एमजी रोड हो, जबरदस्त बुलडोजर एक्शन, जबरदस्त सीलिंग का एक्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। हम आपको दिखा देंगे, फ्लोरिश इन होटल है जिसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई थी कि किस तरीके से बेड एंड ब्रेकफास्ट के लाइसेंस पर किस तरीके से अवैध रूप से होटल जो है वो चलाया जा रहा था। अब इस पर एमसीडी की तरफ से कार्रवाई जो है वो की जा रही है। एमसीडी की टीम इस वक्त यहां पर सीलिंग करने के लिए पहुंची है। ये तस्वीरें देखिए कि एमसीडी के अधिकारी हैं जो कि इस वक्त इस पूरी बिल्डिंग को जो है वो यहां पर सील कर रहे हैं। हालांकि जब एमसीडी की टीम पहुंची थी तब भी यहां पर कई सारे लोग जो है वो रह रहे थे और उनको जो है वो बाहर निकाला गया। और अब ये तस्वीरें देखिए, ये सीलिंग जो है वो यहाँ पर एमसीडी की टीम से जो है वो हो रही है। और दिल्ली के कई इलाकों में अगर बात की जाए तो मालवीय नगर के बाद जिस तरीके से हादसा हुआ उसके बाद से ही दिल्ली सरकार की तरफ से ज्वाइंट कमेटी का जो है वो गठन किया गया था। और उस कमेटी के गठन के बाद ये फैसला लिया गया कि दिल्ली में एमसीडी, डीएम, एसडीएम और इसके अलावा दिल्ली पुलिस की एक ज्वाइंट कमेटी जो है वो इस पूरे सीलिंग अभियान को, इस बुलडोजर एक्शन को जो है वो लीड करेगी। दिल्ली में अवैध निर्माणों पर इस वक्त एक्शन जो है वो दिल्ली के अंदर जो है वो देखने को मिल रहा है।
0: मालवीय नगर अग्निकांड को लेकर रोजाना कई खुलासे हो रहे हैं। अब होटल के मालिक लवकेश बजाज के पिछले कई अपराध सामने आ रहे हैं।

0: मालवीय नगर में 21 लोगों की मौत के सबसे बड़े गुनहगार के अपराधों की एक लंबी लिस्ट है। पुलिस ने गिरफ्त में आए होटल के मालिक लवकेश बजाज को लेकर कई बड़े खुलासे किए हैं। लवकेश बजाज के खिलाफ दो पुराने आपराधिक मामले सामने आए हैं। बजाज को 2025 में दिल्ली पुलिस ने एक फर्जी पासपोर्ट मामले में गिरफ्तार किया था। पहाड़गंज में बांग्लादेशी नागरिकों को फर्जी भारतीय दस्तावेज और पासपोर्ट उपलब्ध कराने के मामले में लवकेश की गिरफ्तारी हुई थी। गिरफ्तारी के बाद बजाज करीब 15 दिन तिहाड़ जेल में रहा और बाद में जमानत पर रिहा हुआ था। फर्जी पासपोर्ट मामले की सुनवाई अभी भी अदालत में लंबित है। वहीं साल 2024 में भी लवकेश बजाज पर FIR दर्ज हुई थी। होटल में सुरक्षा मापदंड को पूरा न करने को लेकर केस दर्ज हुआ था। सुरक्षा मापदंड में CCTV कैमरे से जुड़े कोई नियम फॉलो नहीं किए गए थे, जो गेस्ट हाउस और होटल में होना जरूरी है। उस वक्त दिल्ली पुलिस ने रूटीन जांच में इस होटल में ये अनियमितता पाई थी, लेकिन पुलिस ने कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया और नतीजा लोकेश ऐसे नियमों की अनदेखी करता रहा। अब पुलिस होटल के अकाउंटेंट जय मिश्रा और मैनेजर राकेश की तलाश कर रही है। जय मिश्रा दिल्ली के छतरपुर का रहने वाला है, लेकिन हादसे के बाद से फरार है। वहीं मैनेजर राकेश समेत होटल के बाकी स्टाफ के बारे में भी पुलिस जानकारी जुटा रही है। आज तक ब्यूरो।
1: अब बात यूपी की सियासत की, जहां 2027 चुनाव का असर नेताओं के बयान पर साफ नजर आने लगा है। योगी आदित्यनाथ लगातार अखिलेश यादव पर हमलावर हैं, तो वहीं अखिलेश भी सरकार की खामियों की लिस्ट लेकर जनता के बीच जा रहे हैं।
2: हम देखते हैं, हमने हर घर नल की योजना को आगे बढ़ाया, पता लगा कोई टोंटी चोरी कर रहा है।
3: योगी ने भले ही अपने इस बयान में किसी का नाम न लिया हो, लेकिन टोंटी चोरी शब्द के बाद योगी की मुस्कुराहट ने यूपी की सियासत के 10 साल पुराने चैप्टर को फिर से खोल दिया, जब अखिलेश के CM बंगला खाली होने के बाद इन आरोपों पर जमकर घमासान मचा था।
4: अगर हमारे पे ये इल्जाम लगे हम टोंटी ले गए, हमारे घर को गंगा जल से धुलाओगे, आप भूल सकते हो, मैं नहीं भूल सकता।
3: उधर योगी के बयान के जवाब में अखिलेश यादव ने भी बिना किसी का नाम लिए एक तंज भरा ट्वीट किया। वनस्पति विवेक छीन लेती है और निर्दोष लोगों की हत्याओं का खौफ रातों की नींद, नहीं तो पूरे होश में इतने ऊंचे पद पर बैठकर इतना निकृष्ट बयान कोई भी नहीं देता है। कुछ लोग अपनी असफलता के लिए दूसरों को दोषी ठहराते हैं, ये हार की हताशा बोल रही है, क्योंकि कुदरत का बुलडोजर अब घूम गया है। इसके बाद योगी के हमलों की दूसरी किश्त जारी हुई, जहां निशाने पर एक बार फिर विपक्ष था।
5: अच्छे लोगों को चुनोगे अच्छा परिणाम आएगा, माफिया को चुन करके भेजोगे तो खून भी चूस डालेगा, विकास का पैसा तो हजम करेगा ही करेगा, संपत्तियों पर भी माफिया कब्जा करता है।
3: यूपी में अब चुनाव की तैयारियों ने पूरा जोर पकड़ लिया है, जिसका अंदाजा नेताओं के बयानों से लगाया जा सकता है। आज तक ब्यूरो।
1: अखिलेश और योगी के बीच तंज की ये सियासत योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन के दिन भी देखने को मिली, जो बताता है कि यूपी में 2027 चुनाव से पहले कोई पार्टी सियासत का कोई मुद्दा नहीं छोड़ना चाहती है। इस बीच योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर जश्न की तस्वीरें भी आज सड़कों से लेकर मंदिरों तक देखने को मिल रही हैं।
3: ये तस्वीरें हैं यूपी के CM योगी आदित्यनाथ के 54वें जन्मदिन के जश्न की, जिसकी शुरुआत योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के साथ की। यूपी से लेकर दिल्ली तक योगी के जन्मदिन के जश्न की तमाम तस्वीरें आईं, जहां लोग अपने अपने अंदाज में CM योगी को बधाइयां दे रहे हैं। दिल्ली के कालकाजी मंदिर में योगी दीर्घायु की कामना की गई। विंध्याचल के माँ पीताम्बरा देवी मंदिर में यूपी के ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन मनाया। अलीगढ़ में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मुख्यमंत्री योगी के जन्मदिन के मौके पर मिठाइयां बांटी। वाराणसी में 54 किलो का लड्डू केक के तौर पर काटा गया। अयोध्या में भी इस मौके पर जन्मदिन मनाने की तस्वीरें सामने आईं। तो वहीं झांसी में बुलडोजर का केक काटकर महिलाओं ने जश्न मनाया।
6: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन के मौके पर लखनऊ की सड़कों पर जहां पोस्टर लगाए गए हैं, वहीं तमाम मंदिरों में सुंदरकांड पूजन का पाठ किया जा रहा है। लखनऊ के दारुल शफा, जिसे विधायक निवास कहते हैं, वहां पर भी इसी तरीके से आयोजन किया गया है। सुंदरकांड का पाठ किया जा रहा है, हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है। मौका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 54वें जन्मदिन के मौके का है।
3: इस मौके पर केंद्र से लेकर यूपी के मंत्रियों और विपक्ष के नेताओं ने भी योगी आदित्यनाथ को जन्मदिन की बधाई दी। आज तक ब्यूरो।
1: बंगाल से एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। टीएमसी ने नेता प्रतिपक्ष ऋतव्रता बैनर्जी की नियुक्ति को अवैध बताया है। इसी को लेकर टीएमसी सोमवार को कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख करेगी। यही फैसला लिया है ममता बैनर्जी ने, जो जिन्होंने कुछ ही देर पहले एक अहम बैठक बुलाई थी जिसमें बसिर्फ 3 MPs शामिल हुए, और उन्होंने ये फैसला लिया है कि जो LOP का डेजिग्नेशन मिला है ऋतव्रता बैनर्जी को वो इनवैलिड है उनके मुताबिक, क्योंकि जो स्पीकर हैं बंगाल असेंबली के उन्होंने इस को खारिज किया था जब टीएमसी ने उस डिसीजन को चैलेंज किया था। इंद्रजीत कुंडू हमारे साथ जुड़ गए हैं। इंद्रजीत, तो ये फैसला जो लिया गया है, सवाल ये है कि इसका डिसीजन असेंबली का स्पीकर कर सकते हैं जब जो स्पीकर ने अपना फैसला ले लिया है?
7: बिल्कुल मारिया, तृणमूल कांग्रेस ने अपना रुख साफ कर दिया है, रवैया साफ कर दिया है। सोमवार को वो हाईकोर्ट में चैलेंज करेंगे स्पीकर का फैसला। वो ये कह रहे हैं कि स्पीकर ने जो फैसला लिया है वो अवैध है। क्यों अवैध है? तृणमूल का जो जस्टिफिकेशन है वो ये मानते हैं कि स्पीकर ने जो कहा है इस वक्त कि तृणमूल कांग्रेस ने ऋतुव्रत बंदोपाध्याय को एक्सपेल किया था, उससे पहले उनको शोकॉस करना चाहिए था पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। लेकिन तृणमूल ये मानती है कि स्पीकर का कोई जुरिस्डिक्शन नहीं बनता है। एक पॉलिटिकल पार्टी किस तरीके से चलेगा, उसका नियम क्या है, वो पॉलिटिकल पार्टी तय करेगा। और यही कारण है कि वो इस वक्त ये फैसला उन्होंने ले लिया है कि कोलकाता हाईकोर्ट में सोमवार को वो इसको चैलेंज करेंगे, क्योंकि ऋतुव्रत बैनर्जी अब तृणमूल में नहीं है, उनको एक्सपेल कर दिया गया है। लेकिन फिर भी स्पीकर ने उनको लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का जो दर्जा है वो ऑफिशियली दे दिया है।
1: इंद्रजीत, हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। रुक करते हैं अगली खबर पर। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सूरत में एक कार्यक्रम में विपक्ष की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं, तो वहीं पश्चिम बंगाल में प्रचंड जीत का भी जिक्र किया है।
8: हर चुनाव का एक ही मैसेज है, देश अराजकता, अनिश्चितता और निराशा को पसंद नहीं करता। कांग्रेस बीते 12 वर्षों से अराजकता और अनिश्चितता फैलाकर अपने लिए अवसर खोज रही है, लेकिन देश की जनता उसे बार बार करारा जवाब दे रही है। गुजरात के आप लोगों ने तो कांग्रेस को हाशिए पर धकेल दिया है, लेकिन जहां कांग्रेस की सरकारें हैं वहां भी जनता कांग्रेस के कुशासन से तंग आ गई है।
1: आज बीजेपी को तमिलनाडु की सियासत से बड़ा झटका लगा है, जहां तमिलनाडु के पूर्व बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। वहीं उन्होंने फैसला किया है कि अगले विधानसभा चुनाव में वो अकेले सियासी मैदान में उतरेंगे।
9: दिल्ली के आलाकमान की तमाम कोशिशें भी तमिलनाडु में बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई को पार्टी में नहीं रोक पाई। अन्नामलाई ने बीजेपी से इस्तीफा देते हुए नई पार्टी का ऐलान कर दिया। सोशल मीडिया में वीडियो पोस्ट करते हुए अन्नामलाई ने कहा कि तमिलनाडु की पहचान उनके लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है।
10: तमिलनाडु की पहचान बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए नेता जेपी नड्डा ने कई लोगों से बात की और हम स्थानीय निकाय चुनाव अकेले लड़ेंगे। इसी तरह लोकसभा चुनाव भी अकेले लड़ेंगे। जब भारतीय जनता पार्टी तमिल पहचान के साथ मैदान में उतरेगी तभी वो एक ऐसी पार्टी बन पाएगी जो हिंदी पहचान के साथ तमिलों के कल्याण को बढ़ावा दे सके।
9: अन्नामलाई कर्नाटक कैडर के IPS अधिकारी रहे हैं। नौकरी छोड़कर 2020 में बीजेपी से जुड़े। पार्टी ने पहले उन्हें प्रदेश उपाध्यक्ष और फिर अध्यक्ष बनाया। अन्नामलाई के रहते हुए बीजेपी ने 2021 और 2026 विधानसभा चुनाव लड़ा। दोनों ही चुनावों में बीजेपी का वोट शेयर 2% से ज्यादा नहीं बढ़ सका, जिसके बाद अब अन्नामलाई ने अपनी राह अलग कर ली है। अब वो एक आंदोलन शुरू करेंगे और 2031 के विधानसभा चुनाव में तमिलनाडु की सियासी पिच पर उतरने की तैयारी करेंगे। आज तक ब्यूरो।
1: खान सर की कोचिंग के बाहर हुए गोलीकांड पर अब फैजल खान की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। जहां कोचिंग के गार्ड से पूछताछ के बाद बिहार पुलिस अब फैजल खान को गिरफ्तार करने की तैयारी कर रही है।
10: फैजल खान उर्फ खान सर की कोचिंग के बाहर की इन वायरल तस्वीरों ने अब उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पटना पुलिस ने फैजल खान के खिलाफ आर्म्स एक्ट के मामले में FIR दर्ज की है। कल पुलिस ने कोचिंग के दो गार्ड्स को गिरफ्तार किया था, जिनसे पूछताछ के बाद ये केस दर्ज किया गया है। FIR के मुताबिक फैजल खान के आदेश पर दोनों बॉडी गार्ड्स ने राइफल से दो दो राउंड फायरिंग की। दोनों गार्ड्स के पास NPB 315 बोर की राइफल मिली।
11: दो व्यक्ति जो वीडियो में दिख रहे हैं फायरिंग करते हुए, उसको पहचान करके उसको गिरफ्तार किया गया है और उनको भी भेजा जा रहा है। उनके हथियार जब्त करके फसल जांच कराया जा रहा है।
12: क्या खान सर की गिरफ्तारी होगी सर?
11: उसमें मैंने आपको बताया कि जिस तरह का लोग एविडेंस आएगा उस सबसे कार्रवाई होगी।
10: इस बीच फैजल खान का एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो हमले के वक्त की तस्वीरें दिखाकर कोचिंग क्लास में छात्रों को भड़काता नजर आ रहा है।
13: आपके सामने आप रख दिए, आप बताइए, आप आंदोलन को है नहीं, आपने दिखाया गोली चलते हुए आपने देख रहा है, अब आप बताइए आप अपनी आवाज उठा सकते हो कि नहीं उठा सकते, अब अपने विद्या को तुमने ड्रॉप कर ध्यान से आपको दिखाते क्लास है तो यही विद्या है, आपने की यही हमने कर लिया है, अब आपको तो विद्या के मंदिर में बताए अस्पष्ट गोलियां चल रही थी और अपना अपनी इतना था कि किसी के किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि बाहर निकल के दे सके।
10: खान सर के भड़काऊ वीडियो के वायरल होने के बाद पटना पुलिस ने छात्रों के लिए एडवाइजरी जारी की है, जिसमें छात्रों से कहा गया है कि दो कोचिंग संस्थानों की प्रतिस्पर्धा में किसी के बहकावे में आना ठीक नहीं है। FIR के बाद फैजल खान की कोचिंग पर उनके वकील पहुंचे। इधर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर IG ऑफिस में पुलिस की हाई लेवल मीटिंग की। सूत्रों की माने तो फैजल खान अग्रिम जमानत के विकल्प पर अपने वकीलों के साथ काम कर रहा है। बताया जा रहा है कि वो अपने कोचिंग सेंटर को छोड़कर अंडरग्राउंड हो चुका है। शशि भूषण, पटना आज तक।
1: अब बात मोहाली से आई खौफनाक तस्वीर की, जहां एक सिरफिरे आशिक ने ब्रेकअप के बाद अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की ऑफिस के अंदर चाकुओं से हमला करके हत्या कर दी।

0: मोहाली के ऑफिस से आई ये तस्वीरें विचलित करने वाली हैं, जहां एक सिरफिरा आशिक हरजिंदर महिला सहकर्मी डिंपल पर अचानक से चाकू से हमला कर देता है। हमलावर ने एक के बाद एक करीब 30 बार लड़की पर चाकू चलाया। लड़की जान बचाकर चारों तरफ भागने की कोशिश करती है, लेकिन हमले जारी रहते हैं। बाकी सहकर्मी उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नाकाम साबित होते हैं। लड़की दम तोड़ देती है, लेकिन इसके बाद की तस्वीर और भयानक है, जहां वो लड़का सबके सामने खुद की गर्दन पर चाकू से ताबड़तोड़ वार करने लगता है और सबके सामने आत्महत्या की कोशिश करता है, जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है।
1: बेसिकली 25 से 30 बार चाकू का उसने वार किया, गर्दन पे भी है और पीछे हार्ट पे भी है। सो यू कैन से सीरियस, उसने मतलब 25 से 30 वार किए थे उसने, और अपने भी उसने ऐसे ही अपने आप को भी स्टैब किया है। अपने गले में भी उसके हैं, हार्ट में भी उसने अपने स्टैब किया अपने आप को भी। और ये सारी जो हैं, जो आप इनके वुंड्स बारे दैट डॉक्टर कैन टेल यू बेटर।
2: अभी पेरेंट्स के, दोनों साइड के पेरेंट्स का क्या कहना
1: है? मतलब जो लड़के के पेरेंट्स हैं, दे आर इन यूएस, दे विल बी कमिंग, पर अभी जो लड़की के पेरेंट्स हैं उनका हमने बयान लिखकर अभी पोस्टमार्टम करवाएंगे आज।
0: डिंपल पटियाला की रहने वाली थी, हरजिंदर भी पटियाला का है। दोनों में दोस्ती थी, प्यार था, अच्छे संबंध थे। करीब 3 साल से दोनों एक दूसरे को जानते थे, लेकिन कुछ दिनों से दोनों के रिश्तों में खटास आ गई थी। डिंपल ने ब्रेकअप कर लिया, हरजिंदर से मिलना जुलना छोड़ दिया, लेकिन हरजिंदर डिंपल को नहीं छोड़ना चाहता था। पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि हरजिंदर दोबारा से डिंपल के साथ रिश्ते ठीक करना चाहता था। गुरुवार को जब वो दफ्तर आया तो डिंपल से बात करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी और झगड़ा हो गया। इसके बाद जो तस्वीरें आई वो हैरान करने वाली थी। मोहाली से कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो।
3: अब बात देश की अर्थव्यवस्था की। दुनिया में उथल पुथल के बीच भारत की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर, बड़ी खबर आ रही है, जहां फाइनेंशियल ईयर 2026 में जीडीपी विकास दर अनुमान से ज्यादा है। बाकी बाजार का क्या हाल है, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट।
0: कारोबार के दौरान बिकवाली के दबाव के बीच घरेलू शेयर बाजार आज गिरावट के साथ बंद हुआ। इस दौरान सेंसेक्स 117 अंक कमजोर होकर 74,243 और निफ्टी 50 अंक टूटकर 23,367 के स्तर पर बंद हुआ। हालांकि शेयर बाजार की गिरावट के बीच रुपए में आज अच्छी मजबूती देखने को मिली। डॉलर के मुकाबले रुपया 81 पैसे मजबूत होकर 94.93 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। वहीं सराफा बाजार में आज गिरावट का रुख रहा और 10 ग्राम सोना 1,391 रुपए सस्ता होकर 1,54,190 रुपए पर आ गया, जबकि चांदी 4,193 रुपए टूटकर 2,54,950 रुपए प्रति किलो पर बंद हुई।
3: और आज तक ने एक और इतिहास रचा है, जहां सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम के कार्यक्रम में आज तक ने मुख्य भूमिका निभाई है। ग्रुप एडिटर फॉरेन अफेयर्स गीता मोहन ने फोरम के हाई प्रोफाइल लीडरशिप प्लेनरी सेशन को मॉडरेट किया है, जिसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और दुनिया के 3 अन्य दिग्गज नेता शामिल हुए हैं।
4: Moderator of the plenary session, Gita Mohan.
5: Namaskar, Namaste, Drastvitya. Hello. Excellencies, distinguished guests and friends, it is a privilege to welcome you to this very important conversation at a time when the world is clearly standing at an inflection point. For decades, the global economic order was shaped by a few powerful capitals, a few dominant institutions, and a few accepted rules of engagement.
3: इस पूरे सेशन को आप हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। वक्त है अब एक ब्रेक का, देखते रहिए आज तक।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो
7: इन एसोसिएशन विद
8: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Akajay, the number one Korean skincare brand.
9: The great thing about Atlas Butler is they do it all. Heating, cooling, plumbing. Look, I'm busy with work. I don't have time to wait around or deal with lots of people. One company, one call, and they do it all. Wonder if they'll clean out my inbox. Seriously, offer that service. Please.
10: Atlas Butler is at your service. Call 1-800-FURNACE.
11: Tune in's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
12: Missed out on your latest podcast episodes? Don't worry. TuneIn has got you covered. Not only can you catch up and stream all the episodes you missed, but we can remind you when the next episode airs so you don't miss a thing. Just favorite the podcast you love. All new episodes will appear on the homepage. Nice, right?
13: Now in India.
14: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
15: ओह नो, बहुत बोर लग रहा है।
16: Take a date, not bites.
17: No added sugar, preservative के बिना। Dates, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया। Lion dates, nut bites.
16: Lion date, nut bites.
18: Where the software engineer meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
19: Honey, is ghar mein kuch hai jo tootta nahi?
20: Ye pillar kabhi nahi tootega. Rungta Steel TMT se bana.
21: Rungta nahi, to ghar strong nahi. Rungta Steel TMT bar, ekdam solid.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
3: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
4: सोच बदलो और बैंक भी।
5: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
6: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
7: In association with
8: cool stylish fans, enhance home decor with beautiful fans.
9: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
10: समर कूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। समर कूल कूलर, लाइफ बनाए वंडरफुल।
7: हिंट, बड़े आराम से। विमल बोलो जुबां केसरी।
11: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी। वेयर आर यू?
12: 25 सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक।
13: शेयर बाजार, जहां कुछ लोग सीखते रह जाते हैं और कुछ इतिहास लिख जाते हैं। आखिर बड़ा पैसा बनता कैसे है, कौन सी सोच, कौन सी रणनीति और कैसा नजरिया किसी को बनाता है बाजार का असली खिलाड़ी, इन्हीं सवालों का जवाब लेकर आ रही है बिजटेक की नई पॉडकास्ट सीरीज मनी मेकर्स। यहां मुलाकात होगी बाजार के उन दिग्गजों से, उन मार्केट लेजेंड से जिन्होंने सिर्फ मार्केट को देखा नहीं बल्कि बड़े उतार चढ़ाव दिए हैं, मौके पहचाने हैं और दौलत बनाई है। जानेंगे उनकी जर्नी, बड़े फैसले, निवेश की सीख और बड़ा पैसा बनाने की सोच। मनी मेकर्स, बाजार के बड़े नाम, बड़ी सीख, सिर्फ बिजटेक पर।

मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर अब भारत की रसोई तक पहुंच चुका है। हजारों किलोमीटर दूर चल रहा संघर्ष आम लोगों के बजट पर दबाव बढ़ा रहा है। सुबह की चाय से लेकर रात के खाने तक कई जरूरी सामान महंगे हो गए हैं। इसकी बड़ी वजह कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें हैं, जिन्होंने ट्रांसपोर्ट और यातायात की लागत बढ़ा दी है। पिछले कुछ महीनों में दूध की कीमतों में बढ़ोतरी हुई, पेट्रोल और डीजल महंगे हुए, खाने के तेल की कीमतों में उछाल आया, FMCG प्रोडक्ट्स की लागत बढ़ी है और कंस्ट्रक्शन से जुड़े कई सामान महंगे हो गए। इसका असर इसलिए ज्यादा दिखाई दे रहा है क्योंकि जिन सामानों की सप्लाई लंबी चेन के जरिए होती है उन पर सबसे पहले दबाव आता है। ऊपर से आयातित कच्चे माल की बढ़ी लागत और कमजोर रुपया महंगाई को और हवा दे रहा है। महंगाई का दबाव बढ़ने की आशंका के बीच बड़ी FMCG कंपनियां डैमेज कंट्रोल में जुट गई हैं। कोशिश ये है कि सप्लाई बाधित ना हो, क्योंकि सप्लाई अटकने का मतलब लागत में और बढ़ोतरी, जिसका बोझ आखिरकार ग्राहकों पर ही पड़ सकता है। इसी वजह से कंपनियां अपने पुराने सप्लाई मॉडल में बदलाव ला रही हैं। डाबर ने कुछ उत्पादन UAE से भारत, मिस्र और तुर्की में शिफ्ट किए हैं। साथ ही नए एक्सपोर्ट रूट तैयार किए जा रहे हैं। ब्रिटानिया ने ओमान की जगह गुजरात के मुंद्रा हब से सप्लाई शुरू की है। कंपनी ने हॉर्मुज रूट पर निर्भरता घटाने की रणनीति अपनाई है। कंपनियों को डर है कि अगर पश्चिम एशिया में हालात और बिगड़े तो सप्लाई चेन पर असर पड़ सकता है और यही वजह है कि कई कंपनियां बैकअप प्लान तैयार कर रही हैं। टाटा कंज्यूमर ने अपने सप्लायर नेटवर्क का दायरा बढ़ाया है। पैकेजिंग और दूसरे कच्चे माल के लिए नए सोर्स जोड़े गए हैं। कुछ कंपनियों के विदेशी कारोबार पर असर दिखा है। कई बाजारों में उत्पादन और सप्लाई की रणनीति बदली गई है। मकसद साफ है, बाजार में सामान की उपलब्धता बनी रहे और कीमतों पर अतिरिक्त दबाव न हो। पश्चिम एशिया का संकट भारत में महंगाई की नई चुनौती बनकर उभरा है। पेट्रोल, डीजल, दूध और खाने के तेल जैसे रोजमर्रा के सामान की कीमतों पर इसका असर दिख रहा है। वहीं दूसरी तरफ कंपनियां सप्लाई चेन मजबूत करने, नए उत्पादन केंद्र बनाने और वैकल्पिक व्यापारिक रास्ते तैयार करने में जुटी हैं। इससे साफ है कि कारोबार जगत भी महंगाई के खतरे को समझ रहा है, उसे काबू में रखने की कोशिश भी हो रही है। आने वाले महीनों में हालात किस दिशा में जाते हैं इस पर ही तय होगा कि आम आदमी के बजट को कितना राहत मिलेगी। आज तक ब्यूरो।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Acoje, the number one Korean skincare brand, now in India.

0: हर बार की तरह हादसे के बाद जागने वाली सरकार अलर्ट मोड पर दिख रही है। अवैध होटलों पर लगातार नकेल कसने का दावा किया जा रहा है, लेकिन आज तक के स्टिंग ऑपरेशन हम ऐसा खुलासा करने जा रहे हैं जिससे आप समझ जाएंगे कि ये करप्ट सिस्टम लाइलाज हो चुका है। आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम 3 जून को ही हादसे के तुरंत बाद इसी इलाके में कमरा लेने पहुंची थी। देखिए कैमरे में दोपहर 2:12 हुए, यानी जब एक तरफ आग बुझाई जा रही थी, चीख पुकार मची थी, डेड बॉडी पर डेड बॉडी निकाली जा रही थी, फिर भी दूसरों की जान की दलाली करने वाले ब्रोकर एक और हादसे की तरफ हमें झोंकने के लिए तैयार थे। ये लोग हादसे के कुछ ही घंटे बाद नियमों को ताक पर रख कर कमरे बुक करने में लगे थे। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम हादसे के बाद रेस्क्यू के दौरान यहाँ की सकरी गलियों में कमरे तलाश रही थी। पहले तो कई होटल और गेस्ट हाउस चलाने वाले लोगों ने बताया कि पुलिस ने फिलहाल कमरे खाली करने के निर्देश दिए हैं, इसलिए कमरा नहीं मिल सकता।
1: बिल्डिंग ही खाली करवा रहे हैं, पूरे एरिया में कहीं नहीं मिलेगा, कहाँ जाए तो।
0: इसके बाद सकरी गलियों में पड़ताल के दौरान हमें कई ब्रोकर मिले। एक ब्रोकर हमें कुतुबुद्दीन चौधरी के घर चलने वाले एक गेस्ट हाउस में ले गया, जहां बिना किसी औपचारिकता के कमरा दिखाया गया।
2: ये किचन हो गया
3: है जी,
2: और ये क्या
3: ये रूम है, 1+1 इसमें डबल बेड वगैरह, उसकी मम्मी द पेशेंट है ना, उनका पेशेंट
2: सर क्या डेली में चाहिए 10-15 दिन में बता दो। एसी उसमें भी है ना?
3: हाँ
2: एसी, ये पूरा वही
3: वो पूरे में चिल्ले करता है।
0: हमारी टीम और आगे गई तो हमें एक और ब्रोकर मिला। उसने तीसरी मंजिल पर 2 कमरों का फ्लैट 3300 रुपए प्रतिदिन में ऑफर किया। पूरे इलाके में गलियों के ऊपर बिजली के तारों का जाल लटका दिख रहा है। अतिक्रमण की वजह से कई रास्ते इतने सकरे हो चुके हैं कि आपात स्थिति में दमकल की गाड़ियों का पहुंचना भी मुश्किल है। इसी दौरान विजेंद्री नाम की महिला ने अपने मकान की तीसरी मंजिल पर 900 रुपए प्रतिदिन में एसी कमरा दिखाया।
4: माता जी वो रूम
5: अच्छा कौन सा वाला? ये देखो
0: सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि किस लोगों की मौत के बावजूद हमें जितने भी ब्रोकर मिले उन्होंने हमसे पहचान पत्र तक नहीं मांगा, ना आधार कार्ड, ना पासपोर्ट और ना ही किसी प्रकार का पुलिस वेरिफिकेशन। दिल्ली पुलिस के नियमों के मुताबिक होटल, गेस्ट हाउस और किरायेदार रखने वाले मकान मालिकों के लिए मेहमानों का रिकॉर्ड रखना और सत्यापन करना अनिवार्य है। विदेशी नागरिकों के मामले में सी फॉर्म भरकर जानकारी संबंधित एजेंसियों को देना भी जरूरी है, लेकिन हमारी पड़ताल में इन नियमों का पालन कहीं भी होता नहीं दिखा। सवाल है कि जब इतनी बड़ी संख्या में इस इलाके में विदेशी नागरिक भी रुकते थे तो उनका रिकॉर्ड किसके

0: पास है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या MCT, दिल्ली पुलिस, अग्निशमन विभाग और स्थानीय प्रशासन अगर समय रहते अपनी जिम्मेदारी निभाते तो 21 लोगों की जान बचाई जा सकती थी। नितिन जैन, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, आज तक।
1: दिल्ली के मालविया नगर के होटल में लगी आग ने राजधानी में फायर सेफ्टी उपयोगों की पोल खोलकर रख दी है। इस हादसे में 21 लोगों की मौत ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है। इस घटना के बाद आज तक की टीम ने देश के तमाम शहरों में फायर सेफ्टी का जायजा लिया। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, पटना समेत तमाम शहरों में आज तक की टीम होटलों में पहुंची। इस पड़ताल में होटलों में कई खामियां नजर आई हैं। सबसे पहले देखते हैं दिल्ली का क्या हाल है।

0: दिल्ली के मालवीय नगर के होटल में लगी आग की इन तस्वीरों में ऐसी त्रासदी छिपी है जिसकी जिम्मेदार वो व्यवस्था है जो तमाम लापरवाही तमाम बद इंतजामी पर आंखें मूंदे रही। 21 लोगों की मौत के बाद एक्शन हो रहा है, नियमों को ताक पर रखने वालों पर कार्रवाई का भरोसा दिया जा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या राजधानी के तमाम होटलों में ऐसी जानलेवा लापरवाही पर लगाम लगाना इतना आसान है। हर रोज दिल्ली में हजारों लोग आते जाते हैं, हजारों होटल उनका पड़ाव बनते हैं और इनमें से कई होटल ऐसे हैं जो हर कानून को धता बताकर चल रहे हैं। दिल्ली के होटलों के जमीनी हाल की पड़ताल के लिए आज तक की टीम उस पहाड़गंज इलाके में पहुंची जहां से सबसे ज्यादा लोगों की राजधानी में एंट्री होती है। सबसे ज्यादा लोग इसी इलाके के बने होटलों में ठहरते हैं।
1: यहाँ पर जब लोग आते हैं, लाखों की संख्या में रोजाना लोग नई दिल्ली पहुंचते हैं, तो सबसे पहला ठिकाना होता है उनका पहाड़गंज के जो होटल हैं, जो गेस्ट हाउस है, जो लॉज हैं, वो ये। और यहाँ से शुरू होती है वो फहरिस्त जो इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं। जिधर आप नजर दौड़ाएंगे वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ होटल नजर आएंगे। यहाँ पर लॉज है, गेस्ट हाउस है। लेकिन
0: नई दिल्ली से पहाड़गंज की ओर बढ़ते ही ऐसी तस्वीर दिखाई देती है जो किसी बड़े और खौफनाक हादसे को न्योता देती है। पूरी गली में हर ओर बिखरे हुए तार नजर आते हैं।
1: कैसे यहाँ पर तारों का जाल यहाँ पर बुना हुआ है। यहाँ पर गेस्ट हाउस है, होटल है और ऊंची ऊंची इमारतों वाले होटल आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आप भी देखिए कि 4 से 5 मंजिलों के जो होटल गेस्ट हाउस है वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ तारों का जाल, संकरी गलियां। अगर आग लग जाती है तो फायर ब्रिगेड का यहाँ पर पहुँचना तो एक तरह से नामुमकिन सा ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से आगे तो आप बढ़ ही नहीं सकते।
0: खतरा ऐसा है कि एक चिंगारी भी किसी होटल में बड़ी आग की वजह बन सकती है। पहाड़गंज की हर गली में ऐसी ही अव्यवस्था दिखाई दे रही है।
1: छोटा सा ये कि ये होटल है, इसका एंट्री और एग्जिट जो है वो एक ही है। ये देखिए यहाँ पर एसी लगे हुए हैं और बड़े बड़े जो तार जो हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर एक शॉर्ट सर्किट होता है तो वो आग लगेगी और आग लगने के बाद किसी का यहाँ से बचकर निकलना पूरी तरह से मुश्किल हो जाएगा।
0: हादसे का संकट सिर्फ पहाड़गंज की सड़कों गलियों तक नहीं है, बेहद संकरे रास्तों पर होटल बने हैं, न गाड़ियां पहुंच सकती है, न ही किसी अनहोनी में आसानी से मदद की उम्मीद दिखती है। दिल्ली के मालवीय नगर में हुए दर्दनाक हादसे ने अवैध निर्माण सुरक्षा की अनदेखी को उजागर कर दिया है। नियमों की अनदेखी और लापरवाही का ये जाल पूरी राजधानी के होटलों में फैला हुआ है जो लोगों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े करता है। दिल्ली से पीयूष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
2: दिल्ली होटल अग्निकांड के बाद यूपी की राजधानी लखनऊ में भी प्रशासन अलर्ट है, तमाम होटलों की जांच की जा रही है। इस बीच आज तक की टीम भी लखनऊ के होटलों में सुरक्षा की इंतजाम की पड़ताल कर रही थी। इस दौरान कई होटलों में फायर सेफ्टी सिस्टम पूरी तरह फेल दिखा।

0: यात्रा के दौरान जिन होटलों में लोग रुकते हैं, जिनकी व्यवस्था पर भरोसा करते हैं, दिल्ली जैसे हादसे उस भरोसे का कत्ल कर देते हैं और ऐसे हादसे सुरक्षा पर कई गंभीर सवाल खड़े करते हैं, जिसकी पड़ताल के लिए जब आज तक की टीम लखनऊ के पॉश माने जाने वाले गोमती नगर इलाके में पहुंची, तो वहां के एक होटल क्लासिक में बेहद डराने वाली लापरवाही दिखी। होटल में लगे फायर उपकरण खराब हैं, यहां तक कि फायर उपकरण में पाइप भी नहीं है। ऐसे में अगर होटल में आग लग जाए तो ये महज शोपीस बनकर रह जाएंगे। लेकिन होटल में ठहरने वालों की जान जोखिम में डालने वाली लापरवाही बस इतनी नहीं है, आगे की तस्वीरें और भी डराने वाली हैं। यहाँ देखिए, कई सिलेंडर खुले में पड़े हैं और इसके ठीक ऊपर किचन बना है, यानी हादसा हुआ तो तबाही बचनी तय है।
1: लखनऊ के हम इस गोमती नगर स्थित हैं, यहाँ पर ये एक होटल है क्लासिक, जहाँ पर अगर हम आपको फायर सिस्टम दिखाएंगे तो आप पाएंगे कि इसमें पाइप अवेलेबल नहीं है इस समय, जबकि इसमें पूरा पाइप होना चाहिए। हालांकि वो बॉक्स तोड़ने के लिए यहाँ पर ये बना हुआ है, ये सिस्टमेटिक तरीके से शीशा है, इसमें इसको खोलने के लिए पाइप निकालने के लिए हैमर अलग से होना चाहिए, वो मौजूद नहीं है। जो इक्विपमेंट्स हैं वो कितने वर्क कर रहे हैं ये पूरी तरीके से फिट नहीं है। और दूसरी तरफ अगर देखेंगे तो सिलेंडर जो है वो खुले हुए रखे गए हैं, अगर कोई भी परिस्थिति आती है तो उसमें यहाँ पर घटना हो सकती है।
0: अब होटल के बेसमेंट का हाल दिखाते हैं, जिसे ऐसे बनाया गया है कि आग लगने पर लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके। लेकिन इस अंडरग्राउंड जगह में न तो फायर अलार्म लगा है, न ही सुरक्षा का कोई इंतजाम किया गया है।
1: हम होटल में मौजूद है गोमती नगर के, और ये अंडरग्राउंड एरिया है। अगर हम आपको दिखाएंगे कि इस एरिए में क्या है, क्योंकि क्या फायर सेफ्टी की सिस्टम है, इनकेस अगर आग लगती तो कितना ये उपलब्धता है, तो आप पाएंगे कि यहाँ पर फायर अलार्म्स की उपलब्धता नहीं है। ये पूरी तरीके से अनसेफ बनाया गया है, यहाँ इसको गोडाउन तरीके से बना दिया गया है। जो स्विचेस हैं वो सारे ओपन लगे हुए हैं। ये एक जो परमानेंट होटल है उसके बैकग्राउंड या कह सकते हैं अंडरग्राउंड बने हुए कंस्ट्रक्शन का एरिया है।
0: आज तक की पड़ताल में पता चला कि यूं ही नियमों को ताक पर रखकर कई होटल चलाए जा रहे हैं, जिसे लेकर अब यूपी में अभियान और एक्शन दोनों शुरू हो गया है।
1: जो जैमिनी कॉन्टिनेंटल होटल है हजरतगंज में, यहां पर फायर डिपार्टमेंट की जो टीम पहुंची थी उसने यहां पर बात की, और उसके बाद जो यहां के कर्मचारी थे, जो यहां के मैनेजर थे, उनसे बात की, और साफ तौर से जो की CFO जब यहाँ मौके पर पहुंचे थे तो इस दौरान उन्होंने कई चीजों की सिक्योरिटी चेक भी किया, कई चीजों का उन्होंने मानक भी चेक किए।
0: किसी भी होटल के सुरक्षा मानकों में इस तरह की चूक मामूली लापरवाही नहीं है, ऐसी अनदेखी किसी की जान पर भारी पड़ सकती है, जैसी त्रासदी दिल्ली के होटल में दिखाई दी। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
2: अब आपको पटना के होटलों का हाल दिखाते हैं, जहां रेलवे स्टेशन के पास बने कई होटलों में सुरक्षा इंतजाम नाकाफी है।

0: सुरक्षा व्यवस्था की पड़ताल के लिए आज तक की टीम जब बिहार की राजधानी पटना के रेलवे स्टेशन के बेहद करीब फ्रेजर रोड इलाके में पहुंची, तो सबसे पहले यहां हैरान करने वाली तस्वीर दिखी। पूरी गली के दोनों ओर कतार से होटल बने हुए हैं और करीब करीब हर होटल के नीचे रेस्टोरेंट या भोजनालय चल रहे हैं। पूरी गली में बिजली की तारों का जाल बिछा हुआ है जो कभी भी हादसे की वजह बन सकता है।
1: इस वक्त हम पटना के फ्रेजर रोड इलाके में हैं और ये होटल गली है, स्टेशन का करीब का इलाका, और यहाँ पर तमाम छोटे छोटे होटल चलते हैं, नीचे रेस्टोरेंट चलते हैं। हर जगह फायर सेफ्टी को लेकर के क्या इंतजाम है ये जानने और समझने की हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। और देखिए, ये रेस्टोरेंट चल रहे हैं यहाँ पे, ऊपर में होटल्स हैं और ऊपर तक आपकी नज़र जहाँ जाती है तो यहाँ पर तमाम एसी और जो इलेक्ट्रिक वायर्स हैं वो यहाँ पे हैं।
0: पटना के फ्रेजर रोड के होटलों की पड़ताल के दौरान ये बात भी सामने आई कि यहाँ कई होटल काफी पुरानी बिल्डिंग में चल रहे हैं। इन होटलों में फायर सिलेंडर तो लगाया गया है, लेकिन ये इंतजाम इतने पुख्ता नहीं कि किसी बड़े हादसे में लोगों की सुरक्षा की गारंटी बन सके। आज तक संवाददाता शशि भूषण ने पूरी पड़ताल के दौरान कई होटलों का मुआयना किया। कई होटलों में फायर सिलेंडर तो लगे मिले, लेकिन वो पुराने हो चुके थे, यानी आग लगने पर किसी भी काम के नहीं रहे।
1: पर हम अपने सहयोगी नदीम से कहेंगे थोड़ा दिखाएं इसको। ये 2025 से 2026, 12 मई 2026 तक इसकी वैलिडिटी थी, जो वैलिडिटी भी अब खत्म हो गई है।
2: वक्त है अब एक ब्रेक का, देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
5: This is the sound of Claire cooking dinner at home. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
6: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
7: Jack FM, now playing what we want, commercial-free, on TuneIn Premium.
8: What about me, Jack? What about me?
7: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial-free.
9: Well played, Jack. Well played.
7: Jack FM, playing what we want.
10: Where the software engineer meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer, to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
3: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
4: सोच बदलो और बैंक भी।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: अगले महीने संसद का मानसून सत्र आने वाला है और उससे पहले सरकार और विपक्ष दोनों अपने अपने मोर्चे तैयार कर रहे हैं।
1: दो दिन बाद इंडिया गठबंधन की बैठक, दूसरी तरफ सरकार फिर से संसद में डी लिमिटेशन बिल लेकर आने के संकेत दे रही है। ठीक दो साल पहले 5 जून को भी इंडिया गठबंधन के 21 दलों की बैठक हुई थी, तब सबने मिलकर बीजेपी को पटकनी देने के फॉर्मूले गढ़े, लेकिन उसके बाद बीजेपी ने हरियाणा में कांग्रेस को हराया, महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी, शिवसेना यूबीटी, समाजवादी पार्टी सबको हराया, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस से हारी मगर दिल्ली में केजरीवाल को हराया, बिहार में आरजेडी को हराया, बंगाल में ममता को हराया, असम में पूरे इंडिया गठबंधन को हराया। और अब इस अविजित बीजेपी की काट क्या है, इसी का मंथन करने इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई गई। कांग्रेस की ओर से 15 दलों को न्योता भेजा गया, लेकिन तमिलनाडु में दूध की जली डीएमके अब विपक्षी एकता की छाछ से भी परहेज कर रही है। कनिमोझी ने कांग्रेस से ऐसा नाता तोड़ा कि संसद में अलग बैठने की बेंच तक तय करवा चुकी, दो टूक कह दिया कि 8 जून की बैठक में डीएमके नहीं जाएगी। अब कांग्रेस समझाने मनाने की कोशिश करती है। हालांकि डीएमके के एक प्रवक्ता अन्नादुराई ने कहा कि दिल्ली में देश के मुद्दों पर डीएमके सरकार के खिलाफ ही रहेगी। दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के अंदर विचार हो रहा कि डीएमके की जगह पीवीके को ही गठबंधन में ले लिया जाए। डीएमके कहते हैं कि विजय ने तो सोनिया से मुलाकात तक नहीं की थी, इंडिया ब्लॉक की मीटिंग में क्या जाएंगे। अब देखना है कि 8 जून को राहुल और खड़गे के बुलावे पर कितने दल दिल्ली में एकजुट होते। खबर है कि इस मीटिंग में नीट सीबीएसई पेपर लीक घोटाले से लेकर युद्ध में तेल गैस संकट से लेकर आर्थिक मंदी, महंगाई, बेरोजगारी जैसे तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। सरकार ने परिसीमन बिल का जिक्र छेड़ दिया है तो उस पर भी रणनीति बनेगी और टीएमसी के अंदरूनी झगड़े के बाद पैदा हुए हालात को लेकर भी चर्चा हो सकती है। खबर है कि इंडिया गठबंधन की ये बैठक ममता बनर्जी के कहने पर बुलाई जा रही है, क्योंकि ममता बनर्जी नतीजों के ठीक बाद कह चुकी कि अब वो आजाद पंछी है और पूरी तरह मोदी सरकार के खिलाफ विपक्षी एकजुटता पर काम करेंगे।
2: I am grateful to all my India team's leader. Sonia ji rang up me, Rahul Gandhi rang up me, Arvind Kejriwal, Uddhav Thackeray, Akhilesh Yadav, Tejaswi, Hemant Soren Yadav, Jharkhand Chief Minister, and all the United India leadership. They are also together. We will bounce back, we will fight this battle.
0: पहले इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने की हसरत के साथ कांग्रेस की मीटिंग से दूरी रखने वाली ममता बनर्जी इस बार खुद दिल्ली की बैठक में शामिल होने वाली है, क्योंकि अब मसला सिर्फ विपक्षी एकता का नहीं उनकी पार्टी की फूट का भी है और इसी बदले हुए राजनीतिक समीकरण का फायदा बीजेपी संसद में उठाने की कोशिश कर रही है। और इसीलिए खबर कि परिसीमन बिल फिर से संसद में लाया जा रहा है, जिसमें संसद की सीटें 543 से बढ़ाकर 850 करने की योजना रही है। जो कि संसद में नंबरों की बात की जाए तो लोकसभा में अलग अलग बैठने की व्यवस्था करने के बाद डीएमके के 22 सांसद बिल का समर्थन करेंगे, विरोध करेंगे या एब्सटेन करेंगे अभी साफ नहीं। टीएमसी के 28 सांसद जिसमें 20 सांसद नाराजी बताए जाते हैं। पिछली बार सदन में मौजूद 528 में से परिसीमन बिल के समर्थन में 298 के बनाम 230 वोट पड़े थे, 54 वोटों से बिल गिर गया था। इंडिया गठबंधन के दलों के हालात और बैकचैनल हो रही बातचीत में आंकड़े पक्ष में आ जाए तो सरकार के लिए बिल पास कराना आसान हो सकता है। आज तक ब्यूरो।

0: विशेष में अब इतना ही, आगे देखिए खबरदार।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
1: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस,
2: एक्जे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

0: पीएम का विपक्ष पर बड़ा हमला, कहा अराजकता फैलाकर अवसर तलाश रही है कांग्रेस, देश को नीचा दिखाने में जुटे हैं निराशावादी नेता। अग्निकांड के बाद दिल्ली सरकार का बड़ा एक्शन, अवैध निर्माण पर बुलडोजर, कुछ इलाकों में सीलिंग, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की बैठक में दोषी अफसरों पर सख्ती के आदेश। बागी नेता ऋतुव्रत को नेता विपक्ष बनाए जाने के खिलाफ सोमवार को हाईकोर्ट जाएंगी ममता, आज ममता की बैठक में पहुंचे सिर्फ कुछ लोकसभा सांसद। बिहार में विधान परिषद चुनाव के लिए बीजेपी के चार उम्मीदवारों की लिस्ट, पवन सिंह संजय मयूख शामिल, जेडीयू ने चार नामों का ऐलान किया। मराठा समाज पर फडणवीस सरकार का बड़ा निर्णय, महाराष्ट्र में ओबीसी की तरह शिक्षा में मिलेगा लाभ और दूसरी रियायतें, कुल 8 योजनाएं शुरू करने का भी निर्णय।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
1: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।
2: Acoje, the number one Korean skincare brand, now in India.

0: नमस्कार, आज तक पर आपका स्वागत है। मौसम बदल रहा है, दक्षिण भारत में मॉनसून दस्तक दे चुका है, उत्तर भारत में तेज गर्मी से राहत मिली है, लेकिन आंधी तूफान ने आफत भी मचा दी। लेकिन खबरदार में आज बात बदलते सियासी मौसम की पहले करेंगे, क्योंकि पश्चिम बंगाल में अगर टीएमसी में टूट के बाद ममता को मीटिंग बुलानी पड़ी है तो उत्तर प्रदेश में लड़ाई तेज होने लगी है, तमिलनाडु में नई राह पर राजनीति अन्नामलाई और डीएमके की चलने लगी है, कर्नाटक में नए सीएम शिवकुमार के सामने नया नाटक होने लगा है, महाराष्ट्र की सरेंडर सियासत से भी खबरदार करेंगे, साथ ही बताएंगे कि दिल्ली में कॉकरोच वाली राजनीति की चर्चा क्यों हो रही है। इन सबके साथ समझेंगे कि क्या राजनीति का मौसम बदल रहा है।
1: अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है।
2: सियासत कुछ ऐसी इस वक्त देश की है कि ममता बनर्जी सत्ता गवाकर पार्टी गवाने से बचने का युद्ध लड़ रही है। कर्नाटक में सत्ता चलाती कांग्रेस 2.5 साल बाद मुख्यमंत्री बदलकर भी असंतोष की लहरों का सामना कर रही है, जहां रामलिंग रेड्डी शपथ लेकर मन का विभाग न पाने पर इस्तीफा दे चुके हैं। महाराष्ट्र में अलग ही खेल पता चला, 17 MLC के चुनाव में 6 सीट NDA निर्विरोध जीत गई, क्योंकि कांग्रेस के 3, शरद पवार के 2, उद्धव के 1 कैंडिडेट ने सरेंडर कर दिया। इन सब के बीच जब राहुल गांधी ने हवा में तीर चलाया, बयान दिया कि 1 साल में या तो मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे या इमरजेंसी लग जाएगी।
3: आप देखना, मेरे अंदाजे से मेरा असेसमेंट है, 1 साल के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे।
2: तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जवाब आ गया है, जनता को बीजेपी पसंद।
4: हर चुनाव का एक ही मैसेज है, देश अराजकता, अनिश्चितता और निराशा को पसंद नहीं करता। कांग्रेस बीते 12 वर्षों से अराजकता और अनिश्चितता फैलाकर अपने लिए अवसर खोज रही है, लेकिन देश की जनता उसे बार बार करारा जवाब दे रही है।
2: अराजक राजनीति को जनता पसंद नहीं करती, ये बात प्रधानमंत्री अगर सूरत से पूरे देश को बताते हैं तो इसकी वजह राहुल गांधी का ये बयान है।
3: चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं, हेड ऑफ इंटेलिजेंस सिस्टम, सीनियर जुडिशरी, सारों के सारे रिवोल्ट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हमें। तो जो कंट्रोल का सिस्टम था एक तरफ से, वो कोलैप्स कर रहा है अंदर से, क्योंकि लोगों को दिख रहा है कि जनता का प्रेशर अब ऐसा भयंकर आएगा, अगर हम इस रास्ते पे चलते गए तो हमारे लिए रिस्क हो जाए।
2: जनता के दबाव और रिस्क की बात करते राहुल गांधी के बयानों पर कांग्रेस की जमीनी हालत प्रधानमंत्री ने बताई।
4: जहां कांग्रेस की सरकारें हैं वहां भी जनता कांग्रेस के कुशासन से तंग आ गई है। अभी अभी हिमाचल में भी स्थानीय निकाय के चुनाव हुए, कांग्रेस की सरकार है, वहां कांग्रेस बुरी तरह हार गई। हिमाचल की जनता ने कांग्रेस के कुशासन को नकार दिया है। इससे पहले हरियाणा के निकाय चुनाव में कांग्रेस को हार मिली और पंजाब के लोगों ने भी कांग्रेस को स्पष्ट संदेश दे दिया है। संदेश यह है कि कांग्रेस की परजीवी पॉलिटिक्स नहीं चलेगी, कांग्रेस की अराजकता में अवसर ढूंढने की राजनीति नहीं चलेगी। कर्नाटका की जनता में भी कांग्रेस सरकार को लेकर के बहुत आक्रोश है और यही कारण है कि कर्नाटका में भी कांग्रेस को सीएम बदलना पड़ रहा है।
2: राहुल गांधी नहीं, इस वक्त समूचे विपक्ष के सामने चुनौती है। जहां ममता बनर्जी से उम्मीदें थी, वो बंगाल में हार के बाद उनके घर में मचे अंदरूनी हाहाकार से टूट रही है। दक्षिण में डीएमके ने संसद में अपनी सीटें कांग्रेस से अलग कर ली है। पंजाब चुनाव से पहले केजरीवाल की पार्टी बहुत साफ कांग्रेस के दिखने से बचना चाहेगी, और तब भी राहुल गांधी जब जनता के आक्रोश की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बताते हैं कि बंगाल के नतीजों ने भरोसे को लेकर क्या कहा है।
4: देश का भरोसा भाजपा पर है, भाजपा के विकास कार्यों पर है, इसलिए देश की जनता बार बार भाजपा को जनादेश दे रही है। हाल में ही हुए बंगाल के चुनाव, बंगाल बोल दिया, एकदम से यहां ऊर्जा आ गई। लेकिन मेरा अनुभव था, मैं पिछले दिनों 5 देशों की यात्रा पर था, वहां भी बंगाल बंगाल चल रहा था, हर कोई बंगाल की चर्चा करता था।
2: बंगाल की चर्चा के बीच जीडीपी के आंकड़े आ जाते हैं, जो कहते हैं कि पिछले वित्त वर्ष के आखिरी क्वार्टर में ग्रोथ 7.8% रही। इसमें युद्ध का एक महीना शामिल, पूरे साल की ग्रोथ 7.7%, इससे पहले साल ग्रोथ 7.1% थी। यानी युद्ध के पहले महीने तो देश ने मोर्चा संभाल लिया, लेकिन आगे के लिए चुनौती की बातें हैं। और तब राहुल गांधी इमरजेंसी याद दिलाने लगते हैं, तो प्रधानमंत्री कहते हैं निराशावादियों की चलने वाली नहीं।
3: अब ये हो सकता है कि जनता के प्रेशर को ये सप्रेस करने की कोशिश करें, इमरजेंसी जैसी चीज कर दे, हो सकता है। बट अब हम दूसरी स्टेज में जा रहे हैं, पहले हम फुल कंट्रोल स्टेज में थे, अब ये आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है इनके। और आप देखना, मेरे अंदाजे से मेरा असेसमेंट है, 1 साल के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे।
4: आज देश में कुछ निराशावादी लोग हैं जो आत्मनिर्भर भारत अभियान का मजाक उड़ाते रहते हैं, देश के इस संकल्प को वो लगातार नीचा ही दिखाते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा भारत को दूसरे देशों पर निर्भर रखा। वो लोग ये भूल जाते हैं कि दूसरों पर निर्भर देश विकास की वो ऊंचाई कभी प्राप्त नहीं कर सकता जिसका वो हकदार है।
0: सबसे बड़ा राजनीतिक बदलाव पश्चिम बंगाल में आ रहा है, जहां ममता बनर्जी की पार्टी हर दिन के साथ कमजोर होती जा रही है। विधायकों की बगावत के बाद अब ममता बनर्जी के सांसदों को लेकर भी खबरें हैं कि वो भी विद्रोह कर सकते हैं। दावा तो यहाँ तक हो रहा है कि अगले हफ्ते की शुरुआत में तृणमूल कांग्रेस के सांसद बड़ा खेला कर सकते हैं।
2: क्या विधायकों के बाद अब सांसद भी तृणमूल कांग्रेस से अलग हो जाएंगे? क्या अगले हफ्ते की शुरुआत में ममता बनर्जी के सांसद भी अलग गुट बना लेंगे? ममता बनर्जी की पार्टी पर संकट गहराता जा रहा है। इसका साफ साफ संकेत ममता बनर्जी के कालीघाट वाले घर पर बैठक के दौरान मिलता है। पार्टी के 60 विधायकों के अलग गुट बनाने के दावे के बाद बुलाई गई इस बैठक में अभिषेक बनर्जी, कल्याण बनर्जी, माला रॉय शामिल हुई। इसके अलावा डेरेक ओब्रायन और डोला सेन भी ममता के घर पहुंचे। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं, 80 विधायकों वाली टीएमसी के सिर्फ 8 मौजूदा विधायकों और 2 पूर्व विधायकों ने बैठक में हिस्सा लिया। ममता बनर्जी के घर पर बुलाई गई इस बैठक में विधायकों की तरह सांसद भी गायब दिखे। 28 लोकसभा सांसदों वाली टीएमसी के चीफ के घर पर लोकसभा के 3 और 2 राज्यसभा सांसद पहुंचे, जिसके बाद खबरदार करता सवाल है कि क्या विधायकों के बाद अब सांसद भी ममता बनर्जी को टाटा बाय बाय करने वाले हैं? इस सवाल पर ममता बनर्जी के करीबी विधायक मदन मित्रा का जवाब सुनने लायक है।
5: विधायक बोल रहे हैं 23 सांसद उनके साथ हैं, बाकी विधायक बोल रहे हैं।
6: वो पूरा बात कर सकता है, पूरा कह सकता है जब पूरा पार्टी उनका साथ है।
2: तो मदन मित्रा ने पार्टी के सांसदों के विद्रोह के सवाल को खारिज नहीं किया, बल्कि बागियों को चुनौती देकर ये बता दिया कि दाल में कहीं कुछ काला जरूर है।
6: 2,30,00,000 जनता ममता बनर्जी का नाम से वोट दिया, जो लोग जा रहे हैं उसमें से कोई मां का लाल है रेजिग्नेशन देके अपना क्षेत्रों में जाके बोलेंगे ममता को फोटो नहीं लेके मैं फिर से एक बार चुनाव लड़ने चाहता हूं, अगर उसका पास कोई चुनाव जीत के आए मैं उसको सलाम करवाऊंगा।
2: ममता के करीबियों के इस बयान को टीएमसी के सूत्रों के हवाले से आ रही खबर से समझा जा सकता है, जिसके मुताबिक टीएमसी में विधायक दल के बाद अब संसदीय दल में जल्दी टूट हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी के कई सांसद अभिषेक बनर्जी से नाराज बताए जा रहे हैं। नाराज सांसद एक अलग गुट बना सकते हैं। टीएमसी के लोकसभा में 28 सांसद अभी हैं। दल बदल कानून के तहत अलग समूह को मान्यता मिलने के लिए कम से कम 22 सांसदों का समर्थन जरूरी होगा। सूत्रों के अनुसार एक दर्जन से अधिक सांसद अलग ग्रुप बनाने के पक्ष में है। सूत्र कहते हैं कि पार्टी के एक बड़े वरिष्ठ सांसद इस संभावित बगावत की अगुवाई कर रहे हैं। राज्यसभा में टीएमसी के 13 सांसद हैं और वहां अलग समूह को मान्यता के लिए कम से कम 9 सांसदों का समर्थन चाहिए। ममता बनर्जी के विधायकों की टूट के बाद उनके घर बैठक में 41 सांसदों में से सिर्फ 5 सांसदों का पहुंचना अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या विधायकों के बाद सांसदों के टूटने की चर्चा है?
7: मानसिक तौर पे आप पार्टी के साथ नहीं है?
8: मानसिक तौर पे मैं पार्टी के साथ नहीं हूँ।
7: और ऐसे ही मानसिक तौर पे और कितने सांसद है तृणमूल में जो पार्टी के साथ नहीं है, आपको क्या पता है?
8: देखिए, मैं तो किसी का मानसिक स्थिति को रीड नहीं कर पाता।
7: नहीं, बातचीत तो होती होगी।
8: बातचीत होती है, मेरे सुनने में जो है, मैंने आपको बता दिया ना कि लोकसभा में ज्यादा मेंबर, मैंने मेजोरिटी मेंबर नहीं।
2: सूत्रों के मुताबिक टीएमसी के 23 लोकसभा सांसद बागी गुट के संपर्क में कहे जा रहे हैं। माना जा रहा है कि अगले हफ्ते की शुरुआत में टीएमसी के लोकसभा सांसदों में टूट हो सकती है, मतलब कुछ ही दिनों में। क्या खेला हो जाएगा?
6: दुनिया में सब कुछ हो सकता है ना, ऐसा कोई चीज नहीं है जो दुनिया में नहीं हो सकता है। लड़ाई जारी है।
2: विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की हार के बाद जिस तेजी से और बड़े पैमाने पर पार्टी के विधायकों का संतोष सामने आया, वह अभूतपूर्व है, जिसका असर संसद में भी दिख सकता है।
7: कितने सांसद होंगे ऐसे? लोकसभा में आपके 29 सांसद है, आपको क्या सुनाई दे रहा है? कितने सांसद होंगे फिर?
8: 29 नहीं, 28 है।
7: 28?
8: बसीरहाट आपका पेंडिंग है कलकत्ता हाई कोर्ट में,
7: क्या होने वाला है? आपको क्या सुनाई दे रहा है? आपको पार्टी के अंदर अभी भी है
8: मेजोरिटी चला जाए?
7: ये एक बड़ा बयान है आप दे रहे हैं कि मेजॉरिटी ही चला जाएगा?
8: मेजॉरिटी चला जाएगा।
2: टीएमसी में मची इस बगावत के लिए भले ही बागी अभिषेक बनर्जी को दोषी देते हों, लेकिन ममता बनर्जी को नेता मानने पर सब एकमत। इसीलिए जब ऋतुव्रत बनर्जी ने ममता को सलाहकार के रूप में सीमित करने की कोशिश की तो पाला बदलने वाले कई विधायकों ने विरोध जताया। हालांकि ऋतुव्रत इसे कोई चुनौती नहीं मानते और उन्हें भरोसा है कि बगावत करने वाले विधायकों की संख्या बढ़ेगी।
9: जहां तक हमारे आंकड़ा का सवाल है, वो आंकड़ा बढ़ता जाएगा। जो आंकड़ा हम लोग प्रेजेंट किए थे 2/3 से ज्यादा, काफी सारे ज्यादा, वो जो आंकड़ा है, जब आप लोग से मिलेंगे विधानसभा का अधिवेशन जो होगा, वो आंकड़ा ऊपर जाएगा और आगे जाएगा।
2: विधानसभा चुनाव में हार के महीने भर के अंदर जिस तरह से ममता की पार्टी में टूट हुई, उसे देखते हुए राजनीतिक हलकों में ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या आने वाले समय में टीएमसी के सांसद भी पार्टी का साथ छोड़ देंगे।
0: तृणमूल कांग्रेस में बगावत से जुड़ी बड़ी खबर। ऋतुव्रत बनर्जी को नेता विपक्ष बनाए जाने पर तृणमूल कांग्रेस कलकत्ता हाईकोर्ट जाएगी। सोमवार को स्पीकर के खिलाफ अर्जी दी जाएगी। इसके अलावा ये भी बड़ी खबर है कि अभिषेक बनर्जी तृणमूल कांग्रेस के महासचिव बने रहेंगे, मतलब ममता बनर्जी का भरोसा अपने भतीजे पर बरकरार है। जबकि तृणमूल कांग्रेस से बगावत करने वाले विधायक अभिषेक को ही पार्टी छोड़ने की बात कर रहे हैं।
7: तृणमूल कांग्रेस ने अपना रुख साफ कर दिया, रवैया साफ कर दिया है। सोमवार को वो हाईकोर्ट में चैलेंज करेंगे स्पीकर का फैसला। वो ये कह रहे हैं कि स्पीकर ने जो फैसला लिया है वो अवैध है। क्यों अवैध है? तृणमूल का जो जस्टिफिकेशन है वो ये मानते हैं कि स्पीकर ने जो कहा है इस वक्त कि तृणमूल कांग्रेस ने ऋतुव्रत बंदोपाध्याय को एक्सपेल किया था, उससे पहले उनको शोकॉस करना चाहिए था पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। लेकिन तृणमूल ये मानती है कि स्पीकर का कोई ज्यूरिसडिक्शन नहीं बनता है। एक पॉलिटिकल पार्टी किस तरीके से चलेगा, उसका नियम क्या है, वो पॉलिटिकल पार्टी तय करेगा। और यही कारण है कि वो इस वक्त ये फैसला उन्होंने ले लिया है कि कोलकाता हाईकोर्ट में सोमवार को वो इसको चैलेंज करेंगे, क्योंकि ऋतुव्रत बनर्जी अब तृणमूल में नहीं है, उनको एक्सपेल कर दिया गया है। लेकिन फिर भी स्पीकर ने उनको लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का जो दर्जा है वो ऑफिशियली दे दिया है।
0: ममता बनर्जी की पार्टी से इस बार 31 मुस्लिम विधायक जीते, जो पार्टी के 80 विधायकों का लगभग 40% है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि ऋतुव्रत बनर्जी का साथ देकर बगावत करने वालों में 17 विधायक मुस्लिम हैं। मतलब ममता बनर्जी की पार्टी के आधे से ज्यादा मुस्लिम विधायक अब ममता बनर्जी का साथ छोड़ चुके हैं। सवाल ये, क्या इसकी वजह तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ देखा जा रहा जनता का गुस्सा है, जिसके डर से कटमनी लेने के आरोपी पलंग के नीचे छिपने को मजबूर हैं।
10: पश्चिम बंगाल में जनता ने भले ही ममता बनर्जी की पार्टी को हरा दिया हो, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ लोगों का गुस्सा थमता नहीं दिखता। कम से कम तस्वीरें तो यही बताती हैं। कटमनी मांगने वाले को जनता ने पलंग के नीचे से भी ढूंढ लिया। टीएमसी विधायकों के खिलाफ नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन का सिलसिला थम नहीं रहा। लोग अलग अलग शहरों में टीएमसी के मौजूदा और पूर्व विधायकों के खिलाफ मैदान में उतरे हुए हैं। सवाल है कि क्या जनता से बचने के लिए ही टीएमसी के विधायक पाला बदलना चाहते हैं, ताकि सरकार की दीवार की ओट में बचा जा सके। हावड़ा के उलवेरिया में 4 मई से पहले इस तरह का प्रदर्शन सोचा तक नहीं जा सकता था, लेकिन सरकार बदलने के साथ टीएमसी के विधायक अरुणाप सेन लोगों के निशाने पर हैं। प्रदर्शन करने वालों में ज्यादातर महिलाएं, जो हाथ में झाड़ू लेकर विरोध करने पहुंची। जब विधायक के घर की तरफ बढ़ने लगी तो पुलिस ने रोका। प्रदर्शन करने वाली इन महिलाओं ने नारेबाजी की, वहीं कुछ ने ममता के विधायक की तस्वीर पर झाड़ू मारी। अरुणाप सेन और उनके करीबियों पर आरोप है, सत्ता में पहुंच की वजह से वो भ्रष्टाचार में डूबे रहते थे, लोगों को डराते धमकाते थे। जो उनकी बात नहीं मानता था उसे टीएमसी के नेता दावा है झूठे केस में फंसा देते थे। प्रदर्शन करने वालों ने अब की बार टीएमसी के विधायक के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई। चुनाव से पहले अरुणाप सिंह का एक वीडियो बीजेपी ने पोस्ट किया था, जिसमें दावा है कि वो बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को सरेआम जिंदा दफना देने की धमकी देते रहते थे। अरुणाप सेन बागनान से टीएमसी के विधायक हैं, जो ममता के खिलाफ लहर में भी जीत गए, लेकिन बीजेपी नेताओं को जिंदा गाड़ने की धमकी देने वाले ये नेता जनता के गुस्से की वजह से खुद गायब हो जाते हैं। अरुणाप सेन से भले ही जनता का आमना सामना नहीं हो पाया, लेकिन कूचबिहार में कटमनी वसूलने वाले मोहम्मद शहीदुल मियाँ को जनता ने पलंग के नीचे से भी खोज लिया। मोहम्मद शहीदुल मियाँ सरकारी योजना का लाभ दिलाने के नाम पर कटमनी वसूलते थे। सरकारी योजना में किसी का नाम जोड़ना हो या फिर भुगतान जारी करवाना हो, मोहम्मद शहीदुल मियाँ आवास योजना के लाभार्थियों से दावा है कि 5 से 20 हजार रुपए कटमनी लेता था, लेकिन बंगाल में सत्ता बदलते ही ये छिपने लगा। पर जनता को इसकी जैसे ही खबर लगती है तो जनता इनके घर में घुस जाती है, जहां ये डर के मारे पलंग के नीचे से छिपे मिलते हैं। लेकिन जनता ने पकड़ कर इनकी सड़क पर परेड निकाली। इस दौरान इनसे ये भी बुलवाया गया कि अब कभी कटमनी नहीं मांगी। तो बदले बंगाल में कथित कटमनी गैंग और सिंडिकेट चलाने वाले खुद को असुरक्षित पा रहे हैं। जो गरीबों से वसूली करते थे वो पलंग के नीचे छिपने की जगह खोजते हैं, फिर भी पकड़े जाते हैं। हालांकि टीएमसी का कहना है कि पार्टी का ऐसे लोगों से कोई लेना देना नहीं, लेकिन जनता ऐसे लोगों को खबरदार कर रही है। कुछ दिन पहले कूचबिहार से तस्वीर आई, जिसमें रिक्शे पर लाउड स्पीकर लगाकर घोषणा की गई कि आवास योजना के लिए लिया गया पैसा गाँव वालों को अब वापस दिया जाएगा।
11: আগামী 4 তারিখ পঞ্চায়েতের বাড়ির থেকে সকলকে নিয়ে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
10: কুচবিহার নেই टीएमसी के पंचायत प्रमुख पर महिला प्रदर्शनकारियों की तरफ से अंडे और पानी की बोतल फेंकते देखी गई। लोगों का कहना है कि विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद से टीएमसी से जुड़ा मुखिया गायब है, जिससे बुनियादी पंचायत सेवाएं ठप हो गई। कई नामों को जानबूझकर नौकरी की सूची से हटा दिया गया, जिसका विरोध जनता करती है। कूचबिहार भारत बांग्लादेश की सीमा पर है, जहां से घुसपैठ होती रहती है। इसीलिए नई सरकार में ड्रोन से अवैध घुसपैठियों पर नजर रखी जा रही है। आज तक की रिपोर्ट में कूचबिहार के लोग जबरन बांग्लादेशी घुसपैठियों को हिंदुओं के घरों में छिपाने की बात बता चुके हैं, जिनका पैसे लेकर आधार और वोटर आईडी बना दिया जाता था। लेकिन लोगों को लगता है कि नई सरकार में ये सब नहीं होगा, इसलिए लोग लगातार टीएमसी विधायकों के खिलाफ मोर्चा खोलकर अपनी नाराजगी जता रहे हैं। ये उत्तर 24 परगना का हरोवा, जहां पर तृणमूल कांग्रेस के विधायक अब्दुल मतीन एक स्कूल के कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे, तभी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ नारेबाजी की। पुलिस ने हालात संभाले। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के नेताओं और विधायकों पर सरकारी योजनाओं को लेकर कटमनी लेने के अलावा सामान को भी गायब करने का आरोप लगता है। आसनसोल में पूर्व टीएमसी विधायक के घर के पास बने इस गोदाम से गांव वालों को राहत सामग्री मिली तो हंगामा हो गया। पश्चिम बंगाल में दशकों से विपक्ष के दम को राजनीतिक हिंसा के इतिहास के बहाने से ढका गया। यही वजह है कि जो भी पार्टी सत्ता से जाती है वो खत्म हो जाती है। सवाल है कि बंगाल बदलने आई बीजेपी बंगाल के इस चरित्र को बदल पाएगी?
0: ममता बनर्जी के विधायक और मंत्री लगातार निशाने पर हैं। बड़ी खबर कोलकाता से आ रही है, जिसके न्यू अलीपुर इलाके में सुरुचि संघ क्लब में स्थानीय लोगों ने तोड़फोड़ की। ये क्लब ममता बनर्जी सरकार में मंत्री रहे अरूप विश्वास का है, जो लियोनेल मेसी के कार्यक्रम में हुई अव्यवस्था और टिकट कालाबाजारी मामले में आरोपी है। उनसे नाराज स्थानीय लोगों ने उनके क्लब में तोड़फोड़ की। अरूप विश्वास से पहले उनके भाई स्वरूप विश्वास को भी छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।
12: कि आज ही पुलिस के हाथों अरेस्ट हुआ है तृणमूल के जो प्राक्तन मंत्री थे अरूप विश्वास और उसका भाई स्वरूप विश्वास, उन लोगों का यह क्लब है सुरुचि संघ। जो स्थानीय लोग हैं उन लोगों का यह मानना है कि इस क्लब में किसी का भी आना जाना नहीं था, किसी को भी आने नहीं दिया जाता था और ये क्लब के अंदर लग्जरियस रूम ये दिखा जा रहा है। यहाँ पे एक लग्जरियस टीवी है, यहाँ पे खत्म नहीं होता, ये तो एक कमरा है और इसके बगल में और एक कमरा भी है। उस कमरे के अंदर हम लोग अभी जा रहे हैं और ये जो कमरा है ये कमरा एकदम से यहाँ पे एक लग्जरियस बेड है, बेडरूम टाइप एक कमरा है, ये एक लग्जरियस बेड यहाँ पर है और यहाँ पे अलमारी जो है यह अलमारी भी यहाँ पर मौजूद है। ये देखिए एकदम ग्राउंड जीरो रिपोर्ट आज तक में जो तृणमूल के जो मंत्री थे अरूप विश्वास उनके भाई स्वरूप विश्वास, उन लोगों का ये पूजा है ये माना जा रहा है। और उसके बेडरूम के साथ एक अटैच्ड बाथरूम भी है, बाथरूम भी एक लग्जरी बाथरूम है, बाथरूम के अंदर हर एक लग्जरी चीज है यहाँ पर, वैसे कि यहाँ पे गर्मी ना लगे इसलिए बाथरूम के ऊपर पंखा भी लगाया हुआ है। ये आप देख सकते हैं ये जो पूरा जो चित्र है, ये पूरा चित्र है जो कोलकाता के जो सुरुचि संघ है, उस सुरुचि संघ का जो क्लब है, इस क्लब का ये चित्र है।
13: जब एक क्लब के अंदर जो क्लब को बोलता है स्पोर्ट्स क्लब है, जिसका फुटबॉल टीम है, वहाँ पे कोई खेलकूद का सामान तो मिला नहीं, लेकिन एक आलीशान बेडरूम दिखा अटैच बाथ के साथ, और उसके साथ जो है बहुत सारे फोन आईफोन ये आपका जो है आईपैड के सारे खाली डब्बे, मतलब लग रहा था कोई शोरूम में आ गए आप। इसका साथ जो था नशे के सारा हुक्का मिला बहुत सारे, मतलब यहाँ पे हुक्का से नशा वशा किया जाता था।
0: उत्तर प्रदेश की खबर से खबरदार करते हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन है। खास बात ये देखने को आज मिली कि प्रदेश से लेकर देश के कई हिस्सों में योगी के जन्मदिन को लोग मनाते दिखते हैं। वहीं अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच एनकाउंटर की गोली से लेकर टोटी की चोरी तक पर सियासी जुबानी जंग होती रही।
10: दिल्ली में कालका मंदिर में योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर रुद्राभिषेक करके भोग लगता है। अलीगढ़ में मुस्लिम समुदाय के लोग मुख्यमंत्री योगी के 54 साल का होने पर समोसा लड्डू खाकर जन्मदिन मनाते हैं। सियासत चमत्कारी है, बिजली मंत्री एके शर्मा तक मुख्यमंत्री योगी के बर्थडे पर मंदिर में पूजा करके तस्वीर को लड्डू खिलाते दिखते हैं। झांसी में तो रात 12 बजते ही महिला समर्थक बुलडोजर वाला केक लाकर काटती हैं। योगी आदित्यनाथ को स्क्रीन पर तस्वीर में केक खिलाने लगती हैं। और लखनऊ को पोस्टर होर्डिंग से पाटने के बाद सुंदरकांड हनुमान चालीसा पढ़ते लोगों को जन्मदिन मुख्यमंत्री का मनाते देखा गया। 54 साल के योगी आदित्यनाथ अपने सियासी प्रतिद्वंदी अखिलेश यादव से 13 महीने बड़े हैं। जहां बर्थडे के दिन विश्व पर्यावरण दिवस पर पेड़ लगाने के साथ ऐसा सियासी बयान भी मुख्यमंत्री ने रोप दिया, जिसकी गूंज उत्तर प्रदेश में आगे और बड़ी लड़ाई में सुनाई देगी। पहले बयान सुनिए।
14: हम देखते हैं, हमने हर घर नल की योजना को आगे बढ़ाया, पता लगा कोई टोंटी चोरी कर रहा है, कोई अन्य प्रकार से उसको नुकसान कर रहा है, खुला है तो खुला हुआ है।
10: यूं तो योगी आदित्यनाथ जल जीवन मिशन की गायब होती टोटी यानी नल की बात करते हैं, लेकिन बोलते बोलते ही तंजुनुमा हंसते हैं। मुख्यमंत्री ने किसी का नाम नहीं लिया तो अखिलेश यादव ने भी किसी का नाम लिए बिना पोस्ट किया है, लिखा है कि लत से गलत की ओर। अखिलेश यादव लिखते हैं कि वनस्पति विवेक छीन लेती है और निर्दोष लोगों की हत्याओं का खौफ रातों की नींद। अखिलेश यादव ने पोस्ट में कहा कि पूरे होश में इतने ऊंचे पद पर बैठकर इतना निकृष्ट बयान कोई नहीं देता। कुछ लोग अपनी सफलता के लिए दूसरों को दोषी ठहराते हैं। यह हार की हताशा बोल रही है क्योंकि कुदरत का बुलडोजर अब घूम गया है। दोनों नेता एक दूसरे का नाम लिए बिना अटैक करते हैं। टोटी विवाद वो राजनीतिक लड़ाई है जिस पर अखिलेश यादव आक्रामक होते आए हैं। ये पूरा मामला 2017 से जुड़ा है जब समाजवादी पार्टी सत्ता से हटी थी। बीजेपी ने अखिलेश यादव पर आवास छोड़ने पर टोटी यानी नल उखाड़ कर ले जाने का आरोप लगाया। अखिलेश यादव ने इसे बीजेपी नेताओं और कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से रची गई झूठी साजिश बताया था।
15: पीछे पिंक पत्थर है और एक टोटी टूटी हुई है, बताओ वो टोटी तुमने रखी थी कि नहीं रखी थी टूटी हुई? आज भी टोटी वैसी की वैसी लगी हुई है।
10: इसके बाद भी लगातार बीजेपी के नेता टोटी चोर का नाम लेकर सियासत करते आए हैं।
16: यादव जी ये बताएं कि जब मुख्यमंत्री आवास छोड़ा था तो टोटियां कहाँ चली गई थी? अभी तक टोटियां मिली नहीं है वापस, सरकारी टोटियां हैं। पहले अखिलेश यादव जी वो टोटियां वापस करा दे, उसके बाद वो जो वापस कराने की चालू कराने की बात करेंगे उस पर विचार किया जाएगा।
10: टोटी के नाम पर होती राजनीति को लेकर समाजवादी पार्टी आक्रामक ही जवाब देती आई है।
17: हमारे पे ये इल्जाम लगे हम टोटी ले गए, हमारे घर को गंगा जल से धुला हो गया। आप भूल सकते हो, मैं भूल नहीं सकता, मैं नहीं भूल सकता।
10: इसीलिए माना जा रहा है कि अब की बार जब मुख्यमंत्री ने ये विवाद फिर से बिना नाम लिए उठाया है,
14: पता लगा कोई टोटी चोरी कर रहा है, पता लगा कोई टोंटी चोरी कर रहा है,
10: तब इस पर और बड़ी राजनीति आगे दोनों तरफ से देखने को मिलेगी।
0: उत्तर प्रदेश में बड़ी राजनीति एनकाउंटर पर हो रही है। एक तरफ सीएम योगी कहते हैं कि कोई छेड़ेगा तो छोड़ेंगे नहीं, दूसरी तरफ अखिलेश यादव और कांग्रेस यूपी में चलती पुलिस की गोली के पीछे जाति सियासत बताती है।
18: अगर किसी ने छेड़ने का यहाँ काम किया तो फिर उसको छोड़ेंगे भी नहीं, ये सरकार की घोषित नीति है।
10: किसी ने छेड़ा तो छोड़ेंगे नहीं का बयान जब उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में मुख्यमंत्री देते हैं तो साफ पता चलता है कि कानून व्यवस्था के मुद्दे पर योगी का आक्रामक वार 2027 के लिए जारी है।
18: अच्छे लोगों को चुनोगे अच्छा परिणाम आएगा, माफिया को चुन करके भेजोगे तो खून भी चूस डालेगा, विकास का पैसा तो हजम करेगा ही करेगा, संपत्तियों पर भी माफिया कब्जा करता है। आप देख रहे हो ना, जिन माफियाओं की गरीबों की जमीनों पर, सरकारी जमीनों पर बड़ी बड़ी हवेलियां बनी हुई थी, जिन पर बुलडोजर चल रहा है, जिन पर हम गरीबों के आवास आज बना रहे हैं, ये जनता के ही वोट से ये मजबूत हुए हैं। चूहे जैसे पहले बितकते थे, बाद में सुअर बन करके पूरे प्रदेश को ही तबाह करने में उतारू हो गए थे।
10: माफिया पर चुन चुन कर वार करते योगी आदित्यनाथ के इन्हीं बयानों के बीच विपक्ष का सवाल यूपी में होते एनकाउंटर पर उठता आ रहा है, जहां गाजीपुर के गैसाबाद गांव में टकराव के हालात बने दिखते हैं। पुलिस एक वैन में कमलेश बिंद नाम के वांटेड का शव लेकर पहुंची, भड़की हुई भीड़ पुलिस पर हमलावर हुई, पथराव में सीओ समेत 4-5 पुलिस वाले घायल हो जाते हैं। पुलिस किसी तरह शव वाले वाहन को सुरक्षित मृतक के घर तक पहुंचाना चाहती थी, बड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने हालात पर काबू पाया, शव का अंतिम संस्कार कराया। दरअसल मामला 29 मई की रात गौसाबाद इलाके से शुरू हुआ। बाइक सवार हमलावरों ने विनीत राय नाम के होटल कारोबारी की गोली मारकर हत्या की थी। पीड़ित परिवार ने इलाके में दहशत का नाम बन चुके कटरा गैंग के लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट कराई, जिसमें कटरा गैंग के सरगना शंकर पांडे के अलावा जगदीश यादव, आलोक दुबे और कमलेश बिंद नामजद आरोपी थे। इसी हत्याकांड में पुलिस आरोपियों तक पहुंचती उससे पहले समाजवादी पार्टी ने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। सवाल ये कि गाजियाबाद में तो एनकाउंटर असद का कर दिया गया और गाजीपुर में शंकर पांडे तक पुलिस पहुंच नहीं पा रही। उधर पुलिस ने हत्याकांड के 4 दिन बाद बताया कि विनीत राय की हत्या के आरोपी और 1 लाख रुपए की इनामी कमलेश बिंद को एनकाउंटर में मार गिराया गया। पुलिस ने कहा कि विनीत राय हत्याकांड में नामजद आरोपी और 1,00,000 के इनामी जिस कमलेश बिंद के एनकाउंटर में मौत हुई वो हिस्ट्री शीटर था और उसके खिलाफ कई केस थे, लेकिन कमलेश जिस मर्डर केस में आरोपी हुआ उसका मुख्य आरोपी शंकर पांडे है जो अब तक पुलिस की पहुंच से दूर है। ऐसे में चार में से एक आरोपी के एनकाउंटर के बाद राजनीति फिर उठती है, क्योंकि मारे गए आरोपी कमलेश बिंद का परिवार दावा करता है कि उनका परिवार समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ था। कमलेश के बड़े भाई संजय की पत्नी इस इलाके की प्रधान है और परिवार कहता है कि उनका भाई समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता था, इसीलिए उसे पुलिस ने अगवा करके मार दिया।
19: ये घटना रामगढ़ में उठाया गया था, उन लोग दो लोग थे साथ में, इनको ले जाके जंगल में मारा गया था। हम लोग को इंसाफ, हम भी लोग को चाहिए, जैसे उन लोग मारे हैं हम लोग को भी इंसाफ चाहिए।
10: कांग्रेस आरोप लगाती है कि जाति देख एनकाउंटर हो रहा है।
20: गाजियाबाद में दो दो घटनाएं घटी, चिराग त्यागी की, चौहान की, एक पे हिंदू और मुसलमान के एंगल दिखाकर आप एनकाउंटर करते हो, दूसरे में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। उनके पिताजी और पूरा खानदान कल डीएम कार्यालय के बाहर चिराग त्यागी का पूरा खानदान

0: पूरे उत्तर प्रदेश में बड़ी बड़ी घटनाओं में, उसमें 22 लोग पीडीए के लोग हैं।
1: फर्जी इनकाउंटर के माध्यम से मेंटल सॉफ्टवेयर को सेट किया जाता है लेकिन अपडेट या अपग्रेड नहीं किया जाता बल्कि आउटडेटेड डाउनग्रेडेड बनाया जाता है। इससे मानस में हिंसा को भरा जाता है, हत्या को जायज ठहराया जाता है। फर्जी इनकाउंटर करने वाले सरकार नहीं गुनहगार हैं।
2: यूपी सरकार का ये डेटा कहता है कि योगी राज में हर 12वें दिन एक अपराधी एनकाउंटर में मारा गया है। योगी राज में हर दिन 3 बदमाश पैर में गोली खाकर जख्मी होकर पकड़े गए, तो योगी सरकार के कार्यकाल में हर दिन 10 बदमाश एनकाउंटर में ही पकड़े गए हैं। लेकिन इसी एनकाउंटर पर विपक्ष के सवाल के जवाब में मजबूत कानून व्यवस्था का आईना मुख्यमंत्री दिखाते हैं।
3: याद करना, ये दंगे, फसाद, कर्फ्यू, गुंडागर्दी, अराजकता, लूट खसोट, उसके दिन लद गए हैं। और हमने तय किया है कि जीरो टॉलरेंस की नीति इन पे लगातार बनी रहेगी। किसी भी गुंडे को और किसी भी माफिया को उत्तर प्रदेश की धरती में पनपने नहीं देंगे, और अगर उसने पनपने का दुस्साहस किया तो उसकी जहां जगह होगी वहां उसको जरूर पहुंचाएंगे।
2: योगी सरकार जब बुलडोजर और पुलिस एनकाउंटर से माफिया राज को खत्म करने के साथ अपराध पर लगाम को ताकत मानती है, तब इसी साल जनवरी में एनकाउंटर से जुड़े एक मामले में सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि उत्तर प्रदेश के पुलिस अफसर जजों खासकर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पर विशिष्ट आदेश पारित करने के लिए दबाव बना रहे हैं। जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल की बेंच ने तब कहा था कि अक्सर पुलिस की गोली आरोपियों के पैर में लगती है, यह एनकाउंटर एक तरह से रूटीन बन गए हैं।
1: उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर वर्चस्व की धाक जमाने के लिए कहे जाते हैं, अपनी धाक बनी रहे, धाक से लोग डरे, इसलिए उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर किए जा रहे हैं।
2: लेकिन जब दिल्ली के मालवीय नगर होटल अग्निकांड में नए नए खुलासे हो रहे हैं, होटल मालिक ने एक ऐसी बात कबूली है जो कि सिस्टम पर सवाल खड़ा कर रहा है। दावा है होटल मालिक लवकेश बजाज ने बताया कि होटल उनका अकाउंटेंट ऑपरेट कर रहा था। वहीं दिल्ली सरकार ने आज बड़ी ड्राइव चलाकर नियम तोड़ चलते होटल रेस्टोरेंट पर एक्शन लिया है। नोएडा में लगी आग ने फिर सवाल उठाया है।
4: आप ये तस्वीर देखिए कि एक और होटल की तरफ जाती हुई एनसीबी की टीम, क्योंकि यहाँ पर पहले बिजली जो है वो काटी जाती है, आगे की तरफ कहूँगा कि यहाँ पर जो टीम है वो आगे की तरफ जाती हुई दूसरा होटल, क्योंकि अब तक 2 से 3 होटल्स को जो है वो यहाँ पर अब सील कर दिया गया।
2: दिल्ली के मालवीय नगर में होटल अग्निकांड के बाद दिल्ली सरकार एक्शन मोड में दिख रही है। दक्षिणी दिल्ली के कई इलाकों में अवैध इमारतों की पहचान करके उन पर बुलडोजर चलाया गया। मालवीय नगर इलाके में हुए अग्निकांड ने देश को झकझोर दिया। इस इलाके में सुबह ही बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया। अवैध निर्माण के खिलाफ दिल्ली के अलग अलग इलाकों में रेखा गुप्ता सरकार फुल एक्शन में है, जिसके तहत साकेत, MG रोड, मालवीय नगर में सीलिंग और बुलडोजर कार्रवाई होती है।
4: देखिए, मैं आपको बता दूं कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से जो ज्वाइंट कमेटी का गठन किया गया था, जिसमें DM, SDM और MCD दिल्ली पुलिस के साथ, अब इस वक्त दिल्ली के अलग अलग इलाके, चाहे वो मालवीय नगर हो, हौजरानी हो, साकेत हो, MG रोड हो, वहाँ पर बुलडोजर एक्शन के साथ साथ सीलिंग एक्शन भी जो है वो देखने को मिल रहा है। ये देखिए, ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट के नाम पर जो इनलीगल तरीके से होटल चल रहे थे उस पर अब MCD की तरफ से सीलिंग जो है वो यहाँ पर की जा रही है। सीलिंग की टीम, MCD की टीम जो है वो यहाँ पर पहुंची है, और तमाम यहाँ पर हौजरानी इलाके में जब ये मालवीय नगर में हादसा हुआ था जिसमें 21 लोगों की जान गई थी, और आप देखिए किस तरीके से यह तमाम होटल जो है वो बने हुए हैं, इन सब पर इस वक्त जो है वो ज्वाइंट कमेटी की जो टीम जो दिल्ली सरकार की तरफ से गठित की गई थी उसका एक्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। एक के बाद एक 18 ऐसी यूनिट्स हैं जहां पर इस वक्त एक्शन जो है वो देखने को मिल रहा है।
2: दक्षिणी दिल्ली के हौज खास में बेड एंड ब्रेकफास्ट होटल को MCD की टीम ने सील किया। यहां भी नियमों की अनदेखी हो रही थी। दक्षिणी दिल्ली के गिटौरनी में भी अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया। यहाँ पर देखिए कितनी बड़ी इमारत नियमों की अनदेखी करके बना दी गई। यहाँ पर कई दुकानों को सील किया गया। इसके साथ पूर्वी दिल्ली के करावल नगर, हौज खास गांव में भी अतिक्रमण और सीलिंग की कार्रवाई हुई। दिल्ली सरकार ने अवैध निर्माण रोकने और बेड एंड ब्रेकफास्ट होटल को लेकर बड़ा फैसला लिया। भविष्य में मालवीय नगर अग्निकांड जैसा हादसा न हो, इसके लिए अब अफसरों की जिम्मेदारी भी तय की गई।
5: सरकारी निर्देशों का उल्लंघन करने

0: पर 2 साल की सजा और मिलीभगत पाए जाने पर अधिकारियों पर भी कठोर कार्रवाई, जिसमें जेल तक और जुर्माने तक की कार्रवाई की जा सकती है, उसको इन्वोक करने का फैसला सरकार ने लिया है।
1: दिल्ली के होटल अग्निकांड में 21 लोगों की मौत के सदमे से लोग उभरे भी नहीं थे कि सुबह सुबह नोएडा में 2 जगह आग लगने से हड़कंप मच गया। आग लगने की पहली घटना नोएडा सेक्टर 74 में हुई, जहां 12वें फ्लोर के एक फ्लैट में आग लगती है। तेज हवा के चलते आग तेजी से फैलती है और फ्लैट की खिड़कियों से ऊंची लपटें निकलने लगी। आसमान में काले धुएं का गुबार फैल गया। इस हादसे ने दमकल विभाग की तैयारियों पर एक बार फिर सवाल उठा दिए। हालांकि बाद में इस आग पर काबू पाया गया। नोएडा के अपार्टमेंट में लगी आग की इस घटना का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया और अधिकारियों को तुरंत मौके पर पहुंचकर राहत, बचाव और निगरानी करने के निर्देश दिए। नोएडा में आग लगने की एक और घटना सेक्टर 52 के एक पीजी में हुई। जिस पीजी में आग लगी उस बिल्डिंग में नीचे रेस्टोरेंट था। काफी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने यहां पर आग पर काबू पाया है।
2: दिल्ली की तरह ही आज इंदौर में भी बड़ा हादसा हो सकता था। इंदौर में ग्राउंड फ्लोर पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों का शोरूम था, जिसमें आग लगने से ऊपर की मंजिल पर रहने वाले कई परिवारों की जान खतरे में पड़ गई। लोगों का आरोप है कि दमकल विभाग की टीम देर से पहुंची।
1: खिड़की के छज्जे पर लटका ये उस आम आदमी का परिवार, जिसे जिम्मेदार सरकारी विभाग अक्सर मुसीबत के आगे अकेला छोड़ देता है। तस्वीरें मध्य प्रदेश के इंदौर की हैं, जहां पति पत्नी और एक मासूम बेटी की चुनौती मौत के चंगुल से खुद को बचाने की है। जिंदा रहने के लिए खुद को बचाने की कोशिश कर रहा दमकल विभाग की टीम नदारद, इसीलिए पड़ोसी रस्सी फेंक रहे तो कोई सीढ़ी लगाने की कोशिश कर रहा। वजह, बिल्डिंग में आग लगी है, घर के अंदर धुआं भरा है। मध्य प्रदेश के इंदौर में इलेक्ट्रिक शोरूम में लगी आग एक बार फिर सुरक्षा के सिस्टम पर सवाल उठाती। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड की तस्वीरें अभी धुंधली भी नहीं हुई कि इंदौर के इस अग्निकांड ने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। हालांकि बस गनीमत की बात यह है कि यहां किसी जान माल का नुकसान नहीं हुआ।
3: पहली बार उठे जैसे हमने धुआं देखा, और इसके अलावा हमने कुछ नहीं देखा। मतलब बच्ची और हमको सबको साथ में लेके बाउंड्री के बाहर इधर बालकनी के यहाँ पर पहुंच गए, खड़े रहे दीवार के साइड से जो पाइपलाइन इसको पकड़ के। मतलब फिर लोगों ने हमको देखा कि ये लोग भी ऊपर हैं, मतलब कब से हुए हैं।
4: बहुत दूर धुआं हो रहा था, घबराहट हो रही थी, सांस लेने में भी दिक्कत आ रही थी, तो हम इधर से कूद के और दूसरी बिल्डिंग पे गए, तो उधर से लोगों ने हमको निकाला, बच्ची को भी निकाला, हमको रस्सी बांध के कमर में सीढ़ी से निकाला।
1: ग्राउंड फ्लोर पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों के शोरूम में जब आग लगी तब उसकी ऊपर की मंजिल पर रहने वाले लोग सो रहे। बताया जा रहा है कि शोरूम के बाहर कुछ एक फोर व्हीलर गाड़ी को चार्जिंग पर लगाया गया। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट को आग लगने की संभावित वजह माना जा रहा है।
5: इस शोरूम के ऊपर जो फ्लैट है, तकरीबन यहाँ पर 20 से 25 परिवार यहाँ रहते हैं इस बिल्डिंग के ऊपर, तो जब इसका धुआं ऊपर गया तो उन लोगों को निकलने में बड़ी परेशानी आ रही थी, तो जो पड़ोसी है इस पास की बिल्डिंग के जो लोग है उन्होंने सीढ़ियां लगा के रेस्टोरेंट वहां से निकाला। लेकिन बहुत देर बाद जो है फायर ब्रिगेड आई यहाँ पर, क्योंकि जो रहवासी है क्षेत्रीय उन्होंने काफी मदद की और उन्होंने रेस्क्यू करके बाकी लोगों को निकाला।
1: गर्मियों में आग लगने की घटनाएं बढ़ती। दिल्ली में मंगलवार को एक होटल में आग लगने की घटना पूरे देश को दहला दी। दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर होटल टूरिस्ट स्टे में लगी आग में कुल 21 लोगों की जान गई, जिसमें 11 विदेशी थे। ऐसा नहीं कि दिल्ली या देश में इस तरह की पहली घटना। दिल्ली हो या फिर इंदौर, हर घटना सरकारी विभागों को बार बार खबरदार करती, लेकिन हर हादसे के बाद जैसे ही मामला शांत होता है संबंधित विभाग ढीले पड़ जाते हैं और आम आदमी सरकारी अफसरों की लापरवाही का शिकार होने लगता है।
2: अब खबर पंजाब के पटियाला से, जहां पावरकॉम हेड ऑफिस के सामने प्रदर्शन करते आईटीआई पास बेरोजगार नौजवानों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। ये डिग्रीधारी बेरोजगार युवा कई दिन से यहां प्रदर्शन कर रहे थे। आज इनकी तरफ से हेड ऑफिस के दूसरे गेट को भी बंद कर दिया गया, जिसके बाद पुलिस ने इनको वहां से उठाने के लिए प्रशासन की मदद से पहले बातचीत की कोशिश की, लेकिन जब कोई नतीजा नहीं निकला तो इन पर लाठीचार्ज कर दिया गया। बेरोजगारों पर हर राज्य में लाठी चलती है, और फिर दूसरे राज्य में बेरोजगारों के मुद्दे पर सवाल उठाने वाले अपने राज्य में बेरोजगारों को भूल जाते हैं। आज तक खबरदार करता है तो सरकारों की नींद टूटती है, यही मध्य प्रदेश में हुआ है। गुरुवार को हमने झाबुआ जिले में जल जीवन मिशन के कागज में पूरा और जमीन पर अधूरा होने की खबर दिखाई। 24 घंटे से भी कम वक्त में खबर का असर हुआ है।
6: आज तक करता है खबरदार, सुनता है सिस्टम, जागती है सरकार। 4 जून रात 8:30 बजे जब आज तक ने झाबुआ जिले के खेड़ा गांव में जल जीवन मिशन की हकीकत दिखाई। आज तक संवाददाता रवीश पाल सिंह ने दिखाया किस तरह गर्मी में यहां के ग्रामीण सूखी हुई नदी में गड्ढा खोदकर अब भी पानी ले जाने को मजबूर हैं, जिन्हें रोज 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है ताकि पानी मिल सके।
7: ये जो महिलाएं हैं यहां इस तरीके से इन गड्ढों में पानी निकाल करके फिर अपने और अपने परिवार की प्यास बुझाने पे मजबूर है।
6: खबर दिखाने के 24 घंटे से भी कम वक्त के भीतर जिला प्रशासन हरकत में आता है। 4 जून रात दिखाई खबर के बाद 5 जून की सुबह बोरवेल खोदने के लिए मशीन के साथ गांव में प्रशासन पहुंच जाता है। 24 घंटे पहले जहां पानी की एक एक बूंद के लिए ग्रामीणों को सूखी नदी में गड्ढे खोदने पड़ रहे थे, अब उसी खेड़ा गांव में बोरवेल की मशीनें चल रही हैं। ये तस्वीर बताती है जब जमीनी सच्चाई आज तक सामने लाता है तो व्यवस्था को जवाब देना पड़ता है।
7: आज तक पर खबर दिखाई जाने के बाद 24 घंटे से भी कम समय में प्रशासन सक्रिय हुआ और झाबुआ जिले के खेड़ा गांव में नया बोरवेल खोदा जाने लगा है। गांव वालों को अब भरोसा जागा है कि जल्द ही पानी की उनकी किल्लत दूर हो जाएगी।
8: हमको गड्ढे में पानी भरवा जाता था तो फिर रास्ता वाला आया था तो हमें यूज सिलाड़ी थी तो उस फिर हमें कलेक्टर साहब को भेजा तो कलेक्टर साहब हेडपंप मोकला जाता है।
7: आज तक पर खबर दिखाई जाने के बाद सरकार और प्रशासन जागे तो हैं, लेकिन हम इस मुद्दे पर आगे भी खबरदार करेंगे क्योंकि एक जगह पानी पहुंचाने में तो सरकारी व्यवस्था जुट गई है, लेकिन जल जीवन मिशन जहां जहां भी पूरा होने का दावा किया जा रहा है कहीं वो दावा कागजी न रह जाए, इसलिए हम आगे भी खबरदार करेंगे। झाबुआ से चंद्रभान भदौरिया के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक।
2: आज तक की खबर का बड़ा असर राजस्थान से पंजाब तक भी हुआ है। राजस्थान के कोटा में गर्भवती महिलाओं की नकली इंजेक्शन से मौत के मामले में आज तक की रिपोर्ट के बाद बड़ा एक्शन लिया गया। पंजाब ड्रग विभाग ने अमृतसर की जैक्सन लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड का ड्रग मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है। यही वो कंपनी है जिसका ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन कोटा में सप्लाई हुआ था और जांच में यह इंजेक्शन पूरी तरह से फेल पाया गया था आज तक। पर खबर दिखाए जाने के बाद केंद्र सरकार और पंजाब सरकार की ड्रग्स कंट्रोल विभाग ने अमृतसर की इंजेक्शन कंपनी पर छापा मारकर जांच की तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। लैब से दवा की बिना जांच रिपोर्ट आए ही बाजार में देश के 4 राज्यों में इंजेक्शन सप्लाई कर दी गई थी।
9: कोटा में महिलाओं की मौत हुई तो दवा की जांच हुई और दवा नकली निकली तो आज तक ने खबरदार किया कि किस तरह से अमृतसर की फैक्ट्री से नकली दवा निकलकर देश भर के अस्पतालों में जा रही है। इसके बाद भारत सरकार और पंजाब सरकार की टीम फैक्ट्री में छापा मारी और वहां पर चौंकाने वाले खुलासा हुए। उसके बाद सभी तरह की दवाई बनाने के लाइसेंस फैक्ट्री की रद्द कर दी गई है। मगर बड़ा सवाल है कि देश भर में नकली दवाएं जो सप्लाई हुई है और मरीजों का जो नुकसान हुआ है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा।
10: डाक द्वारा अधीक्षक महोदय मेडिकल कॉलेज की तरफ से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है जिसमें एक दवा है ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन, वो अमानक पाई गई है। इस संबंध में रिपोर्ट प्राप्त हुई है जिस संबंध में जांच की जा रही है। जांच में
11: आगे क्या
10: अभी बयान बयान लेंगे जो भी है और संबंधित जो फर्म से है उनसे पूछताछ की जाएगी।
2: खबरदार में वक्त है एक ब्रेक का, देखते रहिए आज तक।
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
13: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
12: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ।
14: नीड बेटर इंटरनेट? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included. Oh yeah! So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
15: This is the sound of Claire cooking dinner at home. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
16: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
17: Whatever you're in the mood for, TuneIn has the music to match. From today's hits to timeless favorites and new discoveries, it's all streaming in one place. Discover stations that fit your vibe and keep the music going all day long. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
18: Sanitary Solutions.
19: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
20: कूल फैंस के स्टाइलिश डिजाइन से घर की शान बढ़ाएं।
21: कूल फैंस जो दे आधी बिजली में ज्यादा हवा कम आवाज की है।
20: कूल फैंस स्मार्ट भी स्टाइलिश भी।
22: Where the software engineer meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer. To create the big dream, the world comes together at Sharda University. So where are you?
23: Goldie Hing ka tadka lage to sabhi daba ke khate hain. Goldie Hing, kan kan mein. Jaan.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: अर्जुन कुछ भी पढ़े मेमोरी में नहीं रहता।
3: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स बादाम पिस्ता काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
4: लायन डेट नट बाइट्स।
5: केंट से पानी होता है 100% प्योर।
6: केंट आरो प्योरिटी दिखाता भी है।
5: केंट देता है सबसे शुद्ध पानी।
7: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो।
8: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
9: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
10: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
11: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, NTO को पता नहीं।
9: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
12: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
10: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, NTA जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
9: जहां खबर वहां खबरदार।
13: इन एसोसिएशन विद मोंटी कार्लो, इट्स द वे यू मेक मी फील।
8: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस
1: एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया

0: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
1: Where the software engineer meets the cool UI UX designer meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
2: मम्मी पापा, आपका मुझ पर भरोसा था कि मेरी बेटी पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाएगी, पर दोबारा नीट देने की हिम्मत नहीं है मेरे अंदर। पहले नीट के पेपर में मेरे अच्छे मार्क्स आ रहे थे, पर दोबारा पेपर अच्छा जाए इसकी क्या गारंटी है। सॉरी मम्मी पापा, मैंने सब बर्बाद कर दिया आप दोनों का।
3: सोचिए ये शब्द किसका कलेजा नहीं चीर देंगे।
4: हम कर्ज ले लेके पढ़ा रहे थे, हम किसी से मांग मांग के उसकी फीस भर रहे थे।
5: कितने सारे सपने दिखा के चली गई उसके नाम की आगे कर।
3: मध्य प्रदेश की आकांक्षा की मौत सिस्टम पर वो करारा तमाचा है जिसकी गूंज सुनाई तो पड़ रही है, लेकिन सवाल वही है कि क्या कुछ दिनों के हंगामे के बाद पेपर लीक माफिया और शिक्षा तंत्र में बैठे धंधेबाजों पर फिर तो चुप्पी नहीं ओढ़ ली जाएगी। आज जो विपक्ष में है वे नीट पेपर लीक और CBSE SAM की गड़बड़ी पर सरकार से तीखे सवाल पूछ रहे हैं।
6: दुख है हमें, लेकिन कार्रवाई में कभी कमी नहीं रखा।
7: How many questions normally will someone apply for?
8: I guess अभी जो problem आ रही है, they can apply for all the questions.
7: So how many total questions?
8: 30-35 around right. questions होते हैं.
7: So huge amount of money.
8: Huge amount of money is involved.
3: विपक्ष को सवाल पूछने भी चाहिए, जवाबदेही तय होनी ही चाहिए, लेकिन शिक्षा तंत्र को फेल करने वालों का जाल बहुत गहरा है और बहुत पुराना है। 2002 से 2025 के बीच 1,00,000 से अधिक उम्मीदवारों वाली 45 लीक परीक्षाओं ने 3,86,00,000 छात्रों को प्रभावित किया। लीक के इन मामलों में 1,658 लोगों की गिरफ्तारी हुई, 925 पर चार्जशीट दाखिल की गई, 2 मामलों में 18 लोग दोषी करार दिए गए, 43 आरोपी जेल में बंद हैं। आरोपों के मुताबिक पेपर लीक माफिया का कोचिंग माफिया के साथ सांठगांठ होता है। इस बार की नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में भी आरोपियों के तार कोचिंग सेंटर से जुड़े हैं, इसलिए शिक्षा तंत्र के ओवरहॉल की जरूरत है। छात्र तो अपना भविष्य बनाने की परीक्षा देते हैं, अब की बार सरकार को परीक्षा में पास होकर दिखाना है। आज तक ब्यूरो।
9: बहुत चुल मच रहा है कसम से, आज घर जाकर दहिया पूरा कपड़ा उतार के खुजाएंगे।
10: क्योंकि मैं आपकी खुजली को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा, आपका जो दर्द है सही है, तकलीफ सही है, जो आप इतने दिनों से अपने छोटे से दिल में लेके इतना बड़ा पहाड़ घूम रहे हो।
9: अधूरा प्यार ही
10: तुम्हें दुनिया की सिम यार ठीक है मत दुराओ।
11: बिजुरी आए गए।
10: हाँ हाँ, थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा राइट, ओ थोड़ा राइट, हाँ हाँ हाँ,
11: यह अब ही नसिया पाया भैया।
9: यही
10: अरे थोड़ा सा और ऊपर,
11: अरे लेफ्ट बोल रहा हूँ,
10: हाँ यही यही यही यही खुजा जोर से।
12: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले आपको बताएंगे कि क्या भारत में हर्षद मेहता से भी बड़ा स्कैम हो चुका है, क्या कोई कॉरपोरेट घपला 15 लाख करोड़ रुपए का हो सकता है। ये वो रकम है जो पाकिस्तान की आधी जीडीपी भारत के 2 साल के रक्षा बजट के बराबर है। आरोप लगे हैं कि राजेश एक्सपोर्ट्स नाम की कंपनी पर। सेबी के मुताबिक इस कंपनी ने पिछले 4 सालों में अपना रेवेन्यू फर्जी तरीके से बढ़ा चढ़ाकर दिखाया। सेबी ने सख्त एक्शन लिया है, लेकिन सबसे गंभीर बात यह है कि इसमें सरकारी बीमा कंपनी एलआईसी की करीब 11% हिस्सेदारी है। सोचिए, आम लोगों का पैसा एलआईसी के जरिए यहां लगा और क्या हाल हुआ। इसके बाद आपको अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत को लेकर दिए गए बयान के बारे में बताएंगे। उन्होंने दावा किया कि पहले व्यापार में भारत अमेरिका का खूब फायदा उठाता था, लेकिन अब अमेरिका भारत से खूब पैसा कमा रहा है। जो लोग इस बयान को सत्य मान रहे हैं, उनसे सवाल है कि क्या किसी ने एक पल रुककर पूछा कि इस दावे का आधार क्या है, या किसी ने व्यापार के असली आंकड़े निकाले, क्या किसी ने यह जांचने की कोशिश की कि वास्तविक स्थिति क्या है। लेकिन जांचने की जरूरत ही क्या है, क्योंकि ऐसे बयान ही तो सरकार पर सियासी हमले के काम आते हैं। इसमें तथ्य सबसे पहले बलि चढ़ जाते हैं। और इसके बाद आपको बताएंगे कि क्या देश में ज्यादा पढ़ लिख जाना अब एक गुनाह है। अच्छी डिग्री हो तो बड़ी नौकरी मिलेगी या नहीं, ये तो तय नहीं, लेकिन अब छोटी नौकरी मिलना भी मुश्किल है। सुप्रीम कोर्ट के एक ताजा फैसले में कहा गया है कि छोटी नौकरियों पर बड़ी डिग्री वाले कब्जा नहीं कर सकते और कम पढ़े लिखे लोगों का हक नहीं छीन सकते। लेकिन इसमें एक दूसरी बड़ी बात यह भी है कि दरअसल जिस शख्स के मामले में इस पूरे केस की सुनवाई हुई है, उसने अपनी पढ़ाई के बारे में अपने ऑफिस में गलत जानकारी दी थी। और किसी भी नौकरी के लिए अगर आप गलत जानकारी देंगे तो वो गैर कानूनी ही माना जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बड़ा मुद्दा यह है कि ज्यादा पढ़े लिखे हैं तो छोटी नौकरी के काबिल नहीं, बड़ी नौकरियों का पता नहीं। इस देश में डिग्री बांटने वाली यूनिवर्सिटीज तो हैं, लेकिन उन डिग्रियों को सम्मान देने वाले दफ्तर कहां हैं। और आखिर में आपको बताएंगे कि भारत इस नई अग्नि परीक्षा से कैसे बाहर निकलेगा। देश के अलग अलग हिस्सों में बार बार आग लग रही है और हमारा सिस्टम इसके सामने नाकाम साबित हो रहा है। लेकिन आज सबसे पहले हम एक बड़ा सवाल ये पूछेंगे कि आखिर भारतीय राजनीति में सब कुछ जायज क्यों माना जाता है, और ऐसा क्यों है कि जैसे ही कोई मुद्दा सरकार को घेरने का अवसर देता है, वैसे ही तथ्य पीछे हो जाते हैं, राष्ट्रहित पीछे चले जाते हैं या धकेल दिए जाते हैं। और सबसे हैरानी की बात यह है कि इस पर किसी को कोई असहजता भी नहीं होती, किसी को यह चिंता नहीं होती कि राजनीतिक लाभ के लिए देश की छवि, देश की प्रतिष्ठा, देश के तथ्य दांव पर लगाए जा रहे हैं। आज राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत को लेकर एक बयान दिया और ये कहा कि पहले व्यापार के मामले में भारत अमेरिका का खूब फायदा उठाता था, लेकिन अब अमेरिका भारत से खूब पैसा कमा रहा है। इस बयान को भारत की राजनीति में ब्रह्म वाक्य मान लिया गया और इसे ऐसे पेश किया गया जैसे राष्ट्रपति ट्रंप जो कह रहे हैं वही अंतिम सत्य है और भारत ने अमेरिका के सामने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है। लेकिन आज हम ये सवाल पूछते हैं कि क्या किसी ने रुककर पूछा कि इस दावे का आधार क्या है, क्या किसी ने व्यापार के असली आंकड़े निकाले, क्या किसी ने यह जांचने की कोशिश की कि वास्तविक स्थिति क्या है, और क्या किसी ने यह देखा कि अमेरिका और भारत के बीच व्यापार संतुलन आखिर कहता क्या है, या किसी ने यह समझने की कोशिश की कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी निजी राजनीति को साधने के लिए भारत के खिलाफ बोल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ और इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि इस बयान की सच्चाई से ज्यादा महत्वपूर्ण यह था कि इससे रणनीतिक और राजनीतिक हमला किया जा सके। हमारे देश में जब राजनीति का मौका दिखाई देता है तो अक्सर तथ्य सबसे पहले बलि चढ़ जाते हैं। विडंबना देखिए, आज के दौर में हर तरफ फैक्ट चेक की बातें होती हैं, कई तथाकथित फैक्ट चेकर इसकी सोशल मीडिया पर दुकान सजाते हैं, लेकिन हकीकत में कई बार यही लोग राजनीतिक रूप से सुविधाजनक बयानों को बिना किसी सवाल के स्वीकार कर लेते हैं, और इसीलिए कर लेते हैं क्योंकि यहां ऐसे बयान उनके एजेंडे को सूट करते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप का यह बयान आज उनको बड़ा मजेदार लग रहा है, आज यही हुआ है। आप पहले इस बयान को सुनिए, फिर इसके बाद हम आपको बताएंगे कि इसमें कितनी हकीकत है और कितना फसाना। सुनिए।
1: लुक, इंडिया फॉर इयर्स हैज, एंड आई डोंट ब्लेम देम, आई ब्लेम अस बिकॉज़ वी हैड स्टूपिड पीपल हियर, India for years really took advantage of the United States. You know, they charged us tremendous tariffs and they paid nothing. They wouldn't let Harley, as an example in the past, they wouldn't let Harley Davidson sell its motor. They would charge 200% tariff. Mm-hmm. So Harley Davidson was precluded. They ended up going to India and building their own plants, which is unfortunate that that happened, but it happens. It was before me. But they charged tremendous amounts of tariffs to our company, and we didn't charge them anything. You know, they sold motorbikes here, too. You know, we charged them nothing. And now it's the exact reverse. And we're making a lot of money with India. But we'll get to a deal, because I like, you know, I like your prime minister a lot. He's a good friend of mine. Get along great. And we're going to make a deal. We have a very good relationship.
0: इस बयान को सुनने के बाद कोई भी व्यक्ति यही सोचेगा कि क्या वाकई में अमेरिका भारत का फायदा उठा रहा है और इसमें आखिर कितनी सच्चाई है। तो आज आंकड़ों से इसे समझने की कोशिश करते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने यही कहते हुए भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था ना कि हम अमेरिका के साथ बराबरी का व्यापार नहीं करते। अमेरिका तो हम पर काफी कम टैरिफ लगाता है लेकिन हम अमेरिका के सामानों पर बहुत ज्यादा टैरिफ लगाते हैं जिससे भारत को फायदा होता है। अब आंकड़े बताते हैं कि यह फायदा होता भी था। साल 2024-25 में भारत ने अमेरिका को 7,33,000 करोड़ रुपए का निर्यात किया जबकि इसी दौरान अमेरिका ने हमें 3,86,000 करोड़ रुपए का ही निर्यात किया और इससे अमेरिका के साथ भारत का जो व्यापार मुनाफा है वो 3,47,000 करोड़ रुपए का था। तो इतना हम फायदे में रहते थे और इन्हीं आंकड़ों के आधार पर राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि पहले कम टैरिफ के कारण भारत अमेरिका का बहुत फायदा उठाता था लेकिन इसके बाद वो कहते हैं कि अब ये स्थिति बदल गई है और अब अमेरिका भारत से खूब पैसा कमा रहा है। इस बयान से ऐसा लगता है कि टैरिफ लगने के बाद भारत का ट्रेड सरप्लस खत्म हो गया। ये नंबर याद रखिएगा 3,47,00,000 रुपए, यही है ना हमारा मुनाफा जो 24-25 में था। और ऐसा लग रहा है जैसे अब हम अमेरिका हमसे व्यापार मुनाफा कमा रहा है, हम नहीं कमा रहे, जबकि ये बात सरासर गलत है। टैरिफ लगने के बाद साल 2025-26 में भारत और अमेरिका के बीच 12,43,000 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ। ये व्यापार पिछले साल से 1,24,000 करोड़ रुपए ज्यादा है और इसमें भी भारत ने अमेरिका को 7,70,000 करोड़ रुपए का निर्यात किया है जबकि अमेरिका ने हमें 4,73,000 करोड़ रुपए का निर्यात किया है। यानी मतलब ये हुआ कि टैरिफ लगने के बाद भी भारत का अमेरिका के साथ व्यापार मुनाफे में है 2,97,000 करोड़ रुपए का है और अब भी अगर हम देखें तो हम ट्रेड सरप्लस में है। पिछली बार से कमी जरूर आई है पहले से लगभग 1.25 करोड़ की लेकिन आज भी भारत फायदा उठा रहा है और जो ये डोनाल्ड ट्रंप अपनी निजी राजनीति के लिए डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए स्वीपिंग स्टेटमेंट दे रहे हैं कि अब हमें फायदा हो रहा है ये बात किसी भी फैक्ट की सच्चाई पर कसौटी पर खरी नहीं उतरती है। आज भी भारत का व्यापार मुनाफा 3,00,000 करोड़ के आसपास है। ये बात सही है कि अमेरिका का निर्यात पिछले साल से 87,000 करोड़ रुपए बढ़ा है और हमारा व्यापार मुनाफा 50,000 करोड़ रुपए कम हुआ है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अमेरिका फायदे में है। भारत आज भी फायदे में है और नंबर आपके सामने है लगभग 3,00,000 करोड़ का। आगे बढ़िए। हकीकत तो यह है कि हम अब भी लगभग 3,00,000 करोड़ रुपए के ट्रेड सरप्लस में चल रहे हैं, लगभग 3,00,000। अगर कुछ लोगों को परेशानी है तो एग्जैक्ट नंबर बता देते हैं, 2,97,000 करोड़। ठीक है, तो हम आज भी ट्रेड सरप्लस में ही है। अगर मार्च 2026 के भी आंकड़े देखें तो इस एक महीने में अमेरिका और भारत के बीच 1,21,000 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ जिसमें भारत कुल 38,146 करोड़ रुपए के फायदे में रहा। लेकिन फिर भी जब राष्ट्रपति ट्रंप इन आंकड़ों से इतर गलत दावा करते हैं तो हमारे देश में विपक्षी नेता इसे सच मान लेते हैं और इस पर पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है। हम कहते हैं कि आप करिए राजनीति, सरकार पर सवाल उठाइए, लेकिन सवाल है कि राष्ट्रपति ट्रंप जब जब भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं अपनी राजनीति को डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को साधने के लिए तो हम सबको एक आवाज में उनके खिलाफ बोलना चाहिए। राष्ट्रपति ट्रंप गलत दावा करके हमारे देश की छवि ऐसे पेश कर रहे हैं जैसे अमेरिका हमारा फायदा उठा रहा हो। लेकिन आज भी हम 3 लाख करोड़ के सरप्लस में चल रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि टैरिफ लगने से अमेरिका भारत से खूब पैसा कमा रहा है, लेकिन यहां भी उनका दावा गलत है। न्यूयॉर्क का फेडरल रिजर्व बैंक कहता है कि राष्ट्रपति ट्रंप के फैसलों से अमेरिका का औसत टैरिफ 2.6% से 13% हुआ, लेकिन इस टैरिफ का बोझ दुनिया के दूसरे देशों पर नहीं पड़ा। टैरिफ का 90% भुगतान अमेरिका के लोगों ने ही किया, जबकि 10% भुगतान कंपनियों ने किया। यानी अगर भारत पर सबसे ज्यादा टैरिफ लागू भी हुआ, तब भी इस टैरिफ को हमने और हमारी कंपनियों ने भरा ही नहीं। इसे तो अमेरिका के लोगों ने भरा, लेकिन फिर भी राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि वो भारत से खूब पैसा कमा रहे हैं। हमारे देश के विपक्षी नेता इसे सच मान लेते हैं। अगर अमेरिका की इस रिपोर्ट पर यकीन ना हो तो जर्मनी के केल इंस्टीट्यूट के आंकड़े देखिए, जो ये कहता है कि टैरिफ का 96% बोझ अमेरिका के लोगों ने उठाया, सिर्फ 4% बोझ कंपनीज ने उठाया। हमारा सोर्स है केल। इसके अलावा भारत और अमेरिका के बीच ऐसा कोई बहुत बड़ा समझौता नहीं हुआ जिसके आधार पर यह कहा जाए कि अमेरिका भारत का फायदा उठा रहा है। 31 अक्टूबर 2025 को भारत और अमेरिका के बीच जो रक्षा समझौता हुआ वो इंफॉर्मेशन शेयरिंग, टेक्नोलॉजी के साझा इस्तेमाल को लेकर था। उसी का वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। 19 मई 2026 को भी एक करार हुआ जिसमें यह तय हुआ कि अमेरिका भारत को अपाचे हेलीकॉप्टर्स के लिए जरूरी सेवा, जरूरी उपकरण देगा, लेकिन यह भी कोई ऐसा समझौता नहीं था जिससे अमेरिका ने हमारा फायदा उठा लिया। अगर हमने अमेरिका से अपाचे हेलीकॉप्टर्स खरीदे हैं तो उनकी मेंटेनेंस के लिए ऐसे समझौते हमें करने ही होंगे। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप हर बार की तरह ऐसे दावे बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। हमारे देश में इस पर राजनीति होती है। राष्ट्रपति ट्रंप ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को लेकर यह दावा किया था कि वो अमेरिका से टैरिफ से डरे हुए हैं, अमेरिका के टैरिफ से, और ऐसा दावा था कि जिस पर फ्रांस के विपक्षी दल राजनीति कर सकते थे और यह भी कह सकते थे कि उनके राष्ट्रपति अमेरिका के टैरिफ से डर गए हैं, उनके दबाव में हैं। लेकिन फ्रांस में ऐसा कुछ हुआ नहीं और वहां के विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति ट्रंप पर ही सवाल उठाया और उनके देश के लिए ऐसी टिप्पणी आखिर वो कैसे कर सकते हैं, ये जमकर उन्होंने बात रखी। कैनेडा को लेकर भी राष्ट्रपति ट्रंप ने यह दावा किया था कि वहां के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी उनके टैरिफ से आशंकित हैं। और अब तक कनाडा अमेरिका का फायदा उठाता था, लेकिन अब अमेरिका कनाडा का फायदा उठाएगा। लेकिन सोचिए, कनाडा में भी इस पर पॉलिटिक्स नहीं हुई, सारा देश एक साथ मिलकर कनाडा के विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति ट्रंप के बयानों पर खूब सवाल किए। यही चीज जर्मनी के मामले में हुई, स्पेन के मामले में, नेटो के मामले में, यूरोपियन यूनियन के मामले, यहां तक कि चाइना के मामले में राष्ट्रपति ट्रंप ने जो दावे किए उन्हें गंभीरता से नहीं लिया गया। और अमेरिका के मीडिया ने खुद कई बार इन बयानों का फैक्ट चेक किया, लेकिन हमारे देश में इसको लेकर खूब पॉलिटिक्स हो रही है और डोनाल्ड ट्रंप के दावे को आज खूब महिमामंडन किया जा रहा है। इसी के साथ यह आंकड़ा हमारा नहीं है, यह आंकड़ा जो वहां पर छापे गए वॉशिंगटन पोस्ट में है वो हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि अभी तक के आंकड़े को अगर आप देखिए तो वॉशिंगटन पोस्ट यह दावा करता है, वॉशिंगटन पोस्ट ये दावा करता है, एक बार फिर से वो नंबर दिखा दीजिए, वॉशिंगटन पोस्ट ये दावा कर रहा है कि खुद ट्रंप ने अपने कार्यकाल में 30,573 झूठ बोले हैं। ये किसी और का दावा नहीं है, ये हमारे आंकड़े भी नहीं है, अमेरिका के मीडिया का है। और आप ईरान को ही याद कर लीजिए, ईरान को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप ने क्या क्या दावे नहीं किए, लेकिन सोचिए क्या वहां इन दावों पर आंख मूंद कर कोई विश्वास कर रहा है। याद कीजिए जब राष्ट्रपति ट्रंप ने पिछले साल भारत को डेड इकोनॉमी बताया था, तब भी कई विपक्षी नेताओं ने इस पर आपत्ति नहीं जताई, बल्कि हां में हां मिलाया। लेकिन आज राष्ट्रपति ट्रंप के इस दावे की भी पोल खुल गई। चलिए आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाते हैं कि आज साल 2025-26 की जीडीपी के आंकड़े क्या है। तो डेड इकोनॉमी जिसे बता रहे थे डोनाल्ड ट्रंप और हमारे देश में हां में हां मिलाया जा रहा था, तो एक बार ये नजर मार लीजिए, ये 2025-26 के आज नंबर्स आए हैं, 7.7%। पिछले साल का अगर आप नंबर देखिएगा तो ये देखिए 7.1%। इसी के नजरिए से अगर आप अमेरिका का देखें तो मौजूदा नंबर है 2.1% का की वृद्धि, और वहीं जब आप पिछले साल का देखेंगे तो 2.8% का, इसी के आसपास ये झूल रहे हैं। वहीं पर चाइना में भी देखेंगे तो चाहे वो इस साल का हो या फिर पिछले साल का हो, दोनों में ही 5% है जीडीपी। फिर आप आ जाइए जर्मनी पर, जर्मनी में हालत इन दिनों दुरुस्त नहीं है और ये गिरावट है -0.5% की उनकी जीडीपी में, जो कि पूरी तरह से आप कह सकते हैं एक रेड सिग्नल यहां पर ब्लिंक कर रहा है। वहीं अगर आप देखें तो अभी जो नंबर ये पिछली बार का है, पिछले साल का है, इस बार वो 0.2% आगे बढ़े हैं, इससे उभरे हैं। अब जापान पर आ जाइए, जापान 0.1% है, 0.1% पिछले साल था और इस बार कितना है वो 1.1%, और वैसे ही ब्रिटेन में 1.3%। मतलब आप समझ लीजिए कि ये दोनों देश लगभग आसपास ही हैं, इनसे 1% ऊपर ये अमेरिका है और यहां पर आप देखिए तो पिछले साल में इनके नंबर्स 1.1% थे। तो इससे अंदाजा आपको लग जाएगा कि चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे चाइना, जर्मनी, जापान, जीडीपी के मामले में जो नंबर्स आए हैं वो साफ तौर पर हमारी अर्थव्यवस्था को लेकर एक बात कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। बड़ी बात यही है कि आज इन सब के इर्द गिर्द हो रही पॉलिटिक्स के बीच सच कहीं छिप ना जाए। बात सिर्फ भारत की डेयर इकोनॉमी बताने की नहीं है। राष्ट्रपति ट्रंप ने 5 बार यह दावा किया कि भारत ने रशिया से कच्चा तेल खरीदना बंद कर दिया है। खूब हमारे देश में इसमें पॉलिटिक्स हुई, लेकिन सच यही है कि आज तक एक बार ऐसा नहीं हुआ जब हमने रशिया से अपने कच्चे तेल के आयात को बंद किया। अगर आपको विश्वास ना हो तो ये आंकड़े देखिए। राष्ट्रपति ट्रंप ने 6 अगस्त 2025 को भारत पर रशिया से तेल खरीदने के लिए 50% टैरिफ लगाया था। रशिया से तेल क्यों खरीद रहे हो, लेकिन तब भी हम नहीं झुके। और मुझे आज भी व्लादिमीर पुतिन का मेरा वो इंटरव्यू याद आता है जिसमें यह सवाल पूछने पर उन्होंने कहा कि वो तो हमसे यूरेनियम खरीदते हैं तो खुद पर टैरिफ क्यों नहीं लगा देते। तो अमेरिका अगर यूरेनियम खरीद सकता है तो भारत तेल क्यों नहीं। और अगस्त 2025 में हमने रशिया से प्रतिदिन 16,90,000 बैरल कच्चा तेल आयात किया था। अगस्त के बाद सितंबर में भी ये प्रतिदिन 16,10,000 बैरल रहा। और जब हमारे देश के बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि भारत अमेरिका से डर गया है और हमने रशिया से कच्चे तेल की खरीद कम कर दी है, तब यही खरीद अपने सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंची और नवंबर महीने में हमने रशिया से प्रतिदिन 18,40,000 बैरल तेल खरीदा। और ये पूरा ग्राफ आप देख सकते हैं कि इसके बाद भी हमने रशिया से कच्चे तेल की खरीद बंद नहीं की और रशिया हमारा सबसे बड़ा ऑयल पार्टनर बना रहा। दुख की बात यह है कि जब राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि वो भारत से खूब पैसा कमा रहे हैं तो हमारा विपक्ष इस बयान को उठाकर मुद्दा बनाता है। जब रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ये कहते हैं कि अमेरिका ने भारत पर जो दबाव बनाया वो सारा दबाव बेकार गया, भारत अमेरिका से डरा नहीं, तो ये बयान कोई कोट नहीं करता। लेकिन आज हम आपको राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का यह बयान भी दिखाना चाहते हैं जो उन्होंने उसी वक्त दिया जब राष्ट्रपति ट्रंप भारत को लेकर यह भ्रामक दावा कर रहे थे। सुनिए।
2: हमें खुशी है कि भारत दुनिया के सभी देशों के साथ अपने संबंध विकसित कर रहा है। भारत एक महान देश है, ये लगभग 1.5 अरब लोगों का देश है, इसकी बड़ी अर्थव्यवस्था है और इसे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है। भारत अपने हितों के अनुसार उन देशों के साथ आर्थिक और अन्य संबंध विकसित करेगा जिन्हें भारत आवश्यक समझता है। अमेरिका कुछ मुद्दों पर भारत पर दबाव डालने की कोशिश करता है, खासकर रूस के साथ भारत के सहयोग को लेकर, लेकिन हर कोई समझ चुका है कि नरेंद्र मोदी और दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश भारत पर दबाव डालना अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और द्विपक्षीय रिश्तों के लिए नुकसानदायक है। ये मायने नहीं रखता कि ये दबाव कहां से आ रहा है, ऐसा दबाव वैश्विक संबंधों के लिए अच्छा नहीं है।
0: आज जब हमारे देश में ये सारी राजनीति हो रही है तब हम आपको 6 जनवरी 2021 की ये तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। ये वही तस्वीरें हैं जब अमेरिकी संसद कैपिटल हिल में राष्ट्रपति ट्रंप के समर्थकों ने चुनावी नतीजों के खिलाफ दंगे किए थे और अमेरिका की संसद का मजाक बनाकर रखा था। इन दंगों में जो लड़का कैपिटल हिल की खिड़कियों को तोड़कर अंदर घुसा था और जिसे अमेरिका की अदालत ने इसके लिए दोषी माना था, जानते हैं इस दंगाई के साथ राष्ट्रपति ट्रंप ने क्या किया है। एलियस इरिजारी नाम के इस लड़के को राष्ट्रपति ट्रंप ने पेंटागन में यानी अमेरिका के रक्षा विभाग में नौकरी दे दी है और जब इस पर सवाल खड़े हुए तो पेंटागन के प्रेस सचिव जोएल वाल्डेज ने कहा कि यह लड़का देशभक्त है, इसके जैसे लड़कों की अमेरिका के रक्षा विभाग को सख्त जरूरत है। सोचिए, अब तक हम नहीं सोचते थे कि भारत में बाहुबलियों, अपराधियों, दंगाइयों को चुनावों में टिकट कैसे ये पार्टियां दे देती हैं। सांसद विधायक वो बन जाते हैं, जेल से चुनाव लड़कर जीत जाते हैं, लेकिन अमेरिका तो इससे भी एक कदम आगे निकल गया। उसने अमेरिकी संसद में हिंसा करने वाले लड़के को रक्षा विभाग में नौकरी ही दे दी। वह क्या गजब हो रहा है राष्ट्रपति ट्रंप के राज में। आगे बढ़ते हैं, आपको ये बताते हैं कि भारत को दूसरे देशों से सर्टिफिकेट लेने की आखिर क्या जरूरत है। अगर कोई विदेशी अखबार, कोई अंतरराष्ट्रीय एजेंसी, कोई ग्लोबल थिंक टैंक भारत के बारे में कोई दावा कर दे तो हमारे यहां उसे लगभग अंतिम सत्य की तरह स्वीकार कर लिया जाता है। आज बात सोने की होगी। उसे शेयर किया जाता है, उसके आधार पर बहसें होती हैं, राजनीतिक निष्कर्ष निकाले जाते हैं, सरकारों को घेरा जाता है। लेकिन जब उसी दावे को देश का केंद्रीय बैंक, आधिकारिक आंकड़े, जिम्मेदार संस्थाएं तथ्यों के साथ खारिज करती हैं, तो अचानक लोगों को सबूत कम और संदेह ज्यादा दिखाई देने लगता है। आखिर ऐसा क्यों, और क्यों विदेशी होने भर से कोई दावा विश्वसनीय नहीं हो जाता। इस हफ्ते 2 जून 2026 को ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट आई जिसमें ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स के अर्थशास्त्री अभिषेक गुप्ता ने अनुमान लगाया कि 22 मई तक के 2 हफ्तों में आरबीआई ने $12 बिलियन यानी लगभग 1,16,000 करोड़ रुपए का सोना बेचा है, और इसी दौरान $7.5 बिलियन की विदेशी मुद्रा खरीदी है। इस रिपोर्ट का सबसे बड़ा तर्क यह था कि ईरान युद्ध के कारण भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर काफी दबाव है और शायद इसीलिए आरबीआई ने अपने सोने का कुछ हिस्सा बेच दिया और बेचकर डॉलर रिजर्व को मजबूत किया है। बड़ी बात यह है कि इस अनुमान का कोई विश्वसनीय आधार था ही नहीं। भारत को लेकर इतनी बड़ी बात सिर्फ ये सोचकर लिख दी गई कि अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत बढ़ रही है और फिर भी आरबीआई के गोल्ड रिजर्व की वैल्यू में इजाफा नहीं हो रहा है तो शायद आरबीआई ने कुछ सोना बेच दिया होगा। अब ब्लूमबर्ग की यह रिपोर्ट प्रकाशित हुई, हमारे देश में खूब हंगामा हुआ। विपक्षी नेताओं ने कहा कि यह भारत के इतिहास में पहली बार है जब देश का सोना बेचा गया, इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। इस रिपोर्ट के आधार पर राहुल गांधी ने यह कहा कि भारत में आर्थिक सुनामी आने वाली है और प्रधानमंत्री मोदी की सरकार अगले 1 साल में गिर जाएगी। इतना हंगामा हुआ, आरबीआई ने इस खबर का फैक्ट चेक किया, ये बताया कि 3 जून को भारत की फिजिकल होल्डिंग, जो गोल्ड होल्डिंग है, वो 880.52 टन थी और इसमें कोई बदलाव नहीं आया है। आरबीआई के बाद पीआईबी ने भी यही बताया कि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में सोने का महत्व बढ़ रहा है ना कि घट रहा है। दिसंबर 2025 में यह हिस्सेदारी 13.92% थी जो 31 मार्च 2026 को 16.70% हुई और 22 मई को 2026 को 16.85%। जानते हैं, इस फैक्ट चेक के बाद ब्लूमबर्ग ने अपनी गलती मानी, अपनी रिपोर्ट को हर प्लेटफॉर्म से डिलीट किया। जब तक ब्लूमबर्ग ने खुद माफी नहीं मांगी थी और खुद रिट्रैक्ट नहीं किया आपने इस खबर को, तब तक कोई भी इसे मानने को तैयार नहीं था। अब ब्लूमबर्ग ने यह भी कहा कि उसकी पुरानी रिपोर्ट गलत थी, इनएक्यूरेट शब्द उन्होंने लिखा है और वो इसके लिए खेद प्रकट करता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ब्लूमबर्ग ने तो इस रिपोर्ट को डिलीट कर दिया, लेकिन हमारे देश के जिन लोगों ने, जिन नेताओं ने, जिन यूट्यूबर्स ने इस रिपोर्ट पर आधारित बड़े बड़े एक्सप्लेनर्स बना दिए, इस पर पोस्ट लिखे, उन्होंने अब तक इसे डिलीट नहीं किया है। उनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर अब भी यह खबर एक लेबल की तरह चिपकी हुई है, जबकि ब्लूमबर्ग इस रिपोर्ट को डिलीट कर चुका है। और इसीलिए सवाल यह है कि अगर फेक न्यूज फैलाकर ब्लूमबर्ग उस खबर को हटा सकता है, उस पर खेद प्रकट कर सकता है, तो इस रिपोर्ट पर लंबे चौड़े पोस्ट लिखने वाले जो अलग अलग लोग हैं, लेकिन ईरान की तरह उसे अपना यूरेनियम सरेंडर करने के लिए मजबूर नहीं किया, और इसी बात का फायदा उठाकर गोपनीय तरीके से उत्तर कोरिया ने साल 2006 में अपना पहला परमाणु हथियार बना लिया। और यह वो क्षण है जिसके कारण आज अमेरिका ईरान के मामले में कोई लापरवाही नहीं करना चाहता है। अमेरिका को लगता है कि अगर उसने ईरान का यूरेनियम उससे हासिल नहीं किया तो कुछ सालों के बाद ईरान भी परमाणु हथियार बना लेगा और वहां के सुप्रीम लीडर भी इसी तरह से परमाणु हथियार बनाने वाले कारखानों का दौरा करेंगे जैसे किम जोंग उन उत्तर कोरिया में कर रहे हैं। देखिए

उत्तर कोरिया की तस्वीर आपने देख ली, किम जोंग उन का अपना एक स्टाइल है और उस स्टाइल में आप देख रहे हैं उनका एक मॉडल है और उसी मॉडल पर उत्तर कोरिया काम कर रहा है, जिसके कारण वो अपने यूरेनियम को अमेरिका के हवाले नहीं करना चाहता। ये तस्वीरें करीब साल भर पहले की हैं, जब इसराइल और अमेरिका के हमलों में ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया गया था। यह अमेरिका का दावा था। उस वक्त अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों ने यही कहा था कि ईरान का यूरेनियम अमेरिकी हमलों के कारण जमीन के नीचे दब गया है और यह अब भी सुरक्षित है। लेकिन आज संयुक्त राष्ट्र की एक नई रिपोर्ट आई है जो ये बताती है कि ईरान का यही यूरेनियम अब गायब हो चुका है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने एक खुफिया रिपोर्ट में यह खुलासा किया है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम उसकी निगरानी से बाहर निकल गया है। वो अब इतना तक बता सक पाने की हालत में नहीं है कि ईरान के पास इस वक्त कुल कितना यूरेनियम है, उसका क्या फॉर्म में वो यूरेनियम है, किस स्वरूप में है, उसे किस खुफिया जगह पर छिपा कर रखा गया है। आईएईए ये तक नहीं बता पा रही कि ईरान ने यूरेनियम को और ज्यादा ताकतवर बनाने की अपनी जितनी भी उसकी गतिविधियां थी उसको पूरी तरह से रोका है या नहीं। ये समझ से परे है कि दुनिया भर के न्यूक्लियर साइट्स और कार्यक्रमों की देखरेख नियंत्रण करने वाली संस्था इतनी बेबस और असहाय नजर आ रही है। और ऐसा क्या ऐसा हो भी सकता है कि ईरान पिछले साल अपनी न्यूक्लियर साइट्स को बचाने में कामयाब हो गया था और यूरेनियम को उसने किसी और जगह सुरक्षित छिपा दिया है। खैर आगे बढ़ते हैं और आपको यह बताते हैं कि क्या भारत में हर्षद मेहता से भी एक बड़ा स्कैम हुआ है और क्या यह स्कैम 15 लाख करोड़ रुपए का हो सकता है। 15 लाख करोड़ रुपए कोई छोटी रकम नहीं होती, यह पैसा हमारे 2 साल के रक्षा बजट के बराबर है, पाकिस्तान जैसे देश की आधी GDP। और यहां तो ये मामला सीधे भारत के शेयर मार्केट और LIC से जुड़ा हुआ है। राजेश एक्सपोर्ट्स नाम की जिस कंपनी पर इस घोटाले के आरोप लग रहे हैं उसमें सरकारी बीमा कंपनी LIC की 10.8% की हिस्सेदारी है और इसी वजह से ये मामला बहुत गंभीर हो जाता है। हम आपको एक एक करके वो सारी बातें बताएंगे जिससे आप इस पूरे मामले को समझ सकें।

ये पूरा विवाद शुरू होता है सेबी के एक अंतरिम आदेश ने। वही सेबी जो भारत के शेयर बाजार का चौकीदार है, उसकी निगरानी करने वाला एक रेगुलेटर है। अब सेबी ने क्या किया? सेबी ने कड़ा एक्शन लिया और सेबी ने राजेश एक्सपोर्ट्स के खिलाफ 109 पन्नों का एक अंतरिम आदेश जारी किया है। राजेश एक्सपोर्ट्स भारत की एक बड़ी कंपनी है। करती क्या है यह कंपनी? सोने की रिफाइनिंग और गोल्ड ज्वेलरी के एक्सपोर्ट्स का ये काम करती है। सेबी ने आरोप लगाया कि इस कंपनी ने अपने रेवेन्यू और सेल्स के आंकड़ों में बहुत बड़ी गड़बड़ी की है। अब ये गड़बड़ी इसलिए चिंताजनक थी क्योंकि रेवेन्यू में हेरफेर कुछ पैसों का नहीं हुआ। आरोप है कि इस कंपनी ने वित्त वर्ष 2021 से 2025 के बीच पूरे 15,00,000 करोड़ रुपए का कारोबार दिखाया, जो वास्तविकता से कहीं ज्यादा था। आसान भाषा में कहें तो ये कंपनी कह रही थी कि उसने इन 4 सालों में 15,00,000 करोड़ रुपए का कारोबार किया, जबकि सेबी का कहना है कि इतना कारोबार इस कंपनी ने कभी किया ही नहीं है। मतलब 15,00,000 करोड़ का जो उसने नंबर दिया वो पूरी तरह से गलत है। इसका मतलब ये हुआ कि इस कंपनी ने अपने रेवेन्यू को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया, और कैसे किया अब वो भी समझिए। दरअसल ये कंपनी कहती थी कि उसका सबसे बड़ा रेवेन्यू स्विट्जरलैंड की एक गोल्ड रिफाइनरी से आता है, सबसे ज्यादा रेवेन्यू। नाम है वालकैम्बी। अब इस दावे के आधार पर सेबी ने इस विदेशी कंपनी के भी बैंक खातों की जांच की, और जब जांच हुई तो यह पता चला कि जितना कारोबार राजेश एक्सपोर्ट्स ने इसके साथ होने का दावा किया है वो इस कंपनी के रिकॉर्ड से मेल ही नहीं खाता। सेबी का यह भी आरोप है कि इस कंपनी ने अपने रेवेन्यू के सही और जरूरी दस्तावेज उपलब्ध ही नहीं कराए, जैसे उन ग्राहकों की पूरी सूची नहीं दी जिन्हें सोना बेचने का दावा था। जो सप्लायर्स सोना इससे खरीद और बेच रहे थे उनकी भी जानकारी नहीं दी। इस कंपनी की जो सहायक कंपनियां हैं और जो विदेशों में काम कर रही हैं उनका भी वित्तीय रिकॉर्ड सेबी को सौंपा नहीं गया, और इसी वजह से ऑडिटर इस कंपनी की पूरी तरह से जांच नहीं कर पाए। अब मान लीजिए कोई दुकानदार आपसे ये कहे कि उसने पूरे साल काम करके 1 करोड़ रुपए कमाए लेकिन उसका मुनाफा सिर्फ 1,00,000 रुपए रहा, तो आप क्या कहेंगे? आप यही सोचेंगे कि इतनी बड़ी बिक्री के बावजूद मुनाफा इतना कम। और आरोप है कि इस मामले में भी यही खेल चल रहा था। राजेश एक्सपोर्ट्स का रेवेन्यू तो करोड़ों में था लेकिन इसका कुल बाजार मूल्य सिर्फ 3,000 करोड़ रुपए। ये आंकड़े भी इस साल के हैं जब ये कंपनी 7,80,000 करोड़ रुपए का कारोबार करने का दावा कर रही है। सेबी का यह भी कहना है कि इस कंपनी ने अफ्रीका में सोने की खदानों में 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा निवेश करने का दावा किया, लेकिन जब जांच हुई तो सेबी को इसके पास से वैल्यूएशन रिपोर्ट, निवेश के प्रमाण और पर्याप्त दस्तावेज मिले ही नहीं। इससे यह सवाल उठता है कि यह निवेश हुआ भी था, यह सिर्फ कंपनी की आमदनी को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने के लिए किया गया था। अब आप पूछेंगे कि अगर इस कंपनी ने 15,00,000 करोड़ रुपए के रेवेन्यू को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया तो ये भारत का सबसे बड़ा कॉरपोरेट घोटाला कैसे हो गया? तो इसके पीछे है शेयर बाजार की कहानी। शेयर बाजार में जब निवेशक किसी कंपनी में पैसे लगाते हैं तो वहां उसकी आर्थिक सेहत देखी जाती है, यानी उस कंपनी का कारोबार कितना बड़ा है, उसकी सेल कितनी है, उसका रेवेन्यू कितना है, उसमें निवेश करना ठीक रहेगा नहीं रहेगा। आप भी अगर शेयर में इन्वेस्ट करते होंगे तो यही सब देखते होंगे, तमाम जो हेल्थ पैरामीटर्स एक कंपनी के कहलाते हैं। अब क्योंकि इस कंपनी पर आरोप लग रहा है कि उसने अपने रेवेन्यू को वास्तविकता से ज्यादा बताया था, इसीलिए शेयर बाजार में उसका माहौल बना, उसने दिखाया बढ़ा चढ़ा कर नंबर, उसके हक में पूरा शेयर बाजार में एक माहौल बना और सबको लगा कि यहां पर अगर हमने इन्वेस्ट किया तो हमको अच्छा रिटर्न मिलेगा। निवेशकों ने सोचा कि इस कंपनी में पैसा लगाने से उनको फायदा होगा, और इन निवेशकों में सिर्फ आम लोग नहीं थे। यह खबर इसीलिए बहुत बड़ी है, इनमें सरकारी बीमा कंपनी LIC भी थी। इन आंकड़ों को देखिए, मार्च 2016 में इस कंपनी में LIC की हिस्सेदारी सिर्फ 1.99% थी, साल 2022 में बढ़कर हो गई 11.22%, मार्च 26 में 10.8%। इसका मतलब यह है कि LIC ने पिछले 10 सालों में अपनी हिस्सेदारी इस कंपनी में 5 गुना बढ़ाई, और यह भी तब हुआ जब म्यूचुअल फंड्स को पहले दिन से इस कंपनी पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। 2016 में म्यूचुअल फंड्स की इस कंपनी में 0.5% की हिस्सेदारी थी जो आज शून्य है।
पिछले 10 सालों में म्यूचुअल फंड्स इस कंपनी के रेवेन्यू को संदिग्ध मानकर इससे दूर रहा, लेकिन इसी जगह LIC ने इसमें अपना निवेश 5 गुना बढ़ा दिया। LIC एक सरकारी बीमा कंपनी है। जो लोग LIC में पॉलिसी खरीदते हैं उन्हें पैसे को ये कंपनी आगे निवेश करती है, जिससे ये मामला बड़ा हो जाता है। अच्छी नौकरी चाहिए तो अच्छी डिग्री होनी चाहिए, लेकिन अच्छी नौकरी ना मिले तो क्या बड़ी डिग्री से छोटी नौकरी नहीं कर सकते? आज हम आपको यही बताएंगे कि आपकी बड़ी डिग्री से बड़ी नौकरी मिले या ना मिले, लेकिन छोटी नौकरी तो अब मिलने से रही, क्योंकि नौकरियों के लिए आप जरूरत से ज्यादा पढ़े लिखे हैं। देश के सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जिसने देश के करोड़ों नौजवान के कान खड़े कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि अगर नौकरी छोटे पद की है तो बड़े बड़े डिग्रीधारी उस पर कब्जा नहीं कर सकते। ज्यादा पढ़े लिखे

बैंक ने साफ कहा था कि उन्हें इस काम के लिए सिर्फ 10वीं पास 10th पास व्यक्ति की जरूरत है। अब नौकरी की किल्लत ऐसी कि एक अच्छे खासे ग्रेजुएट ने सोचा कि बड़ा अच्छा मौका है, भाई एक स्थायी नौकरी लग जाएगी। उन्होंने अपनी बड़ी डिग्री को बक्से में छिपा दिया, खुद को सिर्फ 10th पास बताया और नौकरी हासिल कर ली। एक दिन इस बात की जानकारी बैंक को हुई तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा। हाईकोर्ट ने कहा कि वो नौकरी कर चुका है और सिर्फ ज्यादा योग्य होने के आधार पर उसे नौकरी से बाहर करना ठीक नहीं होगा। लेकिन जब बात सुप्रीम कोर्ट पहुंची तो पासा पलट गया। जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्ला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने साफ शब्दों में कहा कि ये हेराफेरी नहीं चलेगी। कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को पलटा और कहा कि अपनी ऊंची योग्यता को छिपाकर झूठ बोलकर नौकरी पाना सरासर धोखा है। ग्रेजुएट था और नौकरी के लिए बताया कि मैं सिर्फ 10th पास हूं। सुप्रीम कोर्ट ने बेहद अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकार का काम हर वर्ग का ख्याल रखना है। अगर सरकार कुछ नौकरियां कम पढ़े लिखे लोगों के लिए बचाकर रखती है तो वो बिल्कुल सही है। जरा सोचिए, एक 8वीं या 10वीं पास युवा नौकरी की रेस में किसी एमए, एमटेक, एमबीए, पीएचडी वाले का मुकाबला कैसे करेगा? बड़ी डिग्रियां जो है उनके पास तो अपना फर्राटेदार अंग्रेजी किताबी ज्ञान से उसे चंद मिनटों में रेस से बाहर कर देंगे। फिर वो गरीब और कम पढ़ा लिखा आदमी कहां जाएगा? क्या उसे जीने और कमाने का हक नहीं है? ये समस्या सिर्फ इस बैंक कर्मचारी की नहीं है। आज देश में हालात ये हैं कि जब चपरासी जैसे पदों पर कुछ सौ भर्तियां निकलती हैं, लाखों की संख्या में बीए, एमए, बीटेक, एलएलबी भी युवा लाइन में खड़े हो जाते हैं। इसे एक उदाहरण से समझिए। साल 2015 में लखनऊ सचिवालय में 368 चपरासियों की जगह निकली। इसकी योग्यता रखी गई थी आवेदन में कि 5वीं पास हो और साइकिल चलाना जरूर आता हो। इसमें लिखित परीक्षा की जगह इंटरव्यू होना था। आप कल्पना नहीं कर सकते कि इसमें कितने आवेदन आए। चपरासी के 368 पदों के लिए 23,24,887 लोगों ने आवेदन किया, जिसमें 10वीं 12वीं पास छोड़िए पीएचडी, एमबीए, बीटेक, बीएससी, एमएससी होल्डर्स शामिल थे। इसे देखकर तत्कालीन सरकार के हाथ पांव फूल गए। अगर हर दिन 2200 लोगों के इंटरव्यू भी किए जाते तो इंटरव्यू में ही 3 साल लग जाते। आखिरकार ये भर्ती रद्द करनी पड़ी। और ये ऐसा अकेला मामला नहीं है। मजबूरी और बेरोजगारी का आलम ऐसा है कि लोग कम योग्यता वाले पदों के लिए अपनी डिग्रियां तक छुपाने को तैयार हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने एक लक्ष्मण रेखा खींच दी है। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट सिर्फ और सिर्फ तय नियमों के तहत ही मिलेगा। ज्यादा योग्यता का मतलब ये कतई नहीं कि आप कम योग्यता वाले का हक छीन लें। लेकिन इस सिक्के का एक दूसरा पहलू यह भी है जो हमें सोचने के लिए मजबूर करता है। देश में डिग्री तो ऊंची से ऊंची मिल रही है लेकिन इस उस लायक काम नहीं मिल रहा है। और तभी शायद ऐसी बड़ी डिग्री वाला शख्स भी छोटी नौकरी करने के लिए आज तैयार है। हमारे देश में हर साल 1 करोड़ से ज्यादा नए ग्रेजुएट्स कॉलेज की दहलीज पर पार करके बाहर निकलते हैं। 20 से 29 साल के बेरोजगारों में 2/3 संख्या इन्हीं पढ़े लिखे नौजवानों की है। लेकिन जब बात नौकरी देने की आती है तो बेरोजगारों की नई खेप तैयार हो जाती है, क्योंकि नौकरियों की मांग समंदर जैसी है और वैकेंसी चम्मच से नाप कर निकाली जा रही है। जब ये डिग्रियों का पहाड़ चढ़ने के बाद युवाओं को ढंग का काम नहीं मिलता तो फिर डिग्रियों से भरोसा टूट जाता है और वो अपने से कम क्षमता की नौकरी करते हैं। आज आपको कुछ चौंकाने वाले आंकड़े बताते हैं। देश में हर साल करीब 15 लाख इंजीनियर्स पास आउट होते हैं। जानते हैं कितनों को नौकरी मिलती है या फिर मिलने की उम्मीद होती है? 10%। इससे आप कल्पना कर सकते हैं बाकी की 90% के लिए क्या चुनौती है। मजबूरी में आज देश का इंजीनियर कैब चलाने, कॉल सेंटर्स, अलग अलग जगहों पर काम करने को मजबूर है। बड़ी यूनिवर्सिटी से लिटरेचर की पढ़ाई करने वाले होनहार छात्र सिर्फ अगर आप देखें पेट पालने के लिए 10,500 शब्दों का जो एसईओ कंटेंट है वो लिख रहे हैं। जिन उंगलियों को देश का भविष्य लिखना था वो कीबोर्ड पर चंद रुपयों के लिए कीवर्ड सेट कर रही है। और हद तो तब हो जाती है जब 5वीं 5 की चपरासी की नौकरी के लिए एक पद पर हजारों ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स, पीएचडी लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं। सबसे बड़ा क्रूर मजाक तो यही है कि एक युवा पूरी तरह वाकिफ है कि उसे चपरासी अटेंडेंट की नौकरी में कितनी सैलरी मिलेगी, उसे क्या काम करना होगा। सब कुछ जानते हुए वो अपनी मर्जी से काम करने को तैयार है। व्यवस्था उसे सिर्फ इसलिए नो कह देती है क्योंकि उसके पास डिग्री बड़ी है। अदालत का यह फैसला अपनी जगह कानूनी रूप से सही है, क्योंकि हक किसी का नहीं मारा जा सकता और ना ही
कोई नौकरी ले

0: समय सही बात को छुपा सकता है। सही जानकारी देना अनिवार्य है और ये इलीगल है अगर उसने गलत जानकारी दी। लेकिन इससे हमारी पूरी जो शिक्षा व्यवस्था है रोजगार के खोखलेपन की पोल जरूर खुल रही है। बड़ा सवाल यह है कि हमारे देश में डिग्रियां बांटने वाली यूनिवर्सिटीज तो खुल गई लेकिन उन डिग्रियों को सम्मान देने वाले दफ्तर कहां हैं? खैर आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि जम्मू कश्मीर में हमारा देश सिर्फ आतंकवाद से नहीं लड़ रहा है बल्कि हम नार्को टेररिज्म से भी लड़ रहे हैं जिस पर अब तक का सबसे बड़ा प्रहार हुआ है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा खुद कमान संभालकर घाटी को नशा मुक्त बनाने के मिशन पर निकले हैं और सिर्फ 55 दिनों के भीतर घाटी में ड्रग माफिया की कमर टूट चुकी है। जम्मू कश्मीर में बदलाव की बयार अब एक नए और निर्णायक रूप में बह रही है और ड्रग माफिया के खिलाफ इतिहास का सबसे बड़ा ऑपरेशन क्लीन चल रहा है और इस मिशन की फ्रंटलाइन पर खुद खड़े हैं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। उन्होंने खुद घाटी के सबसे संवेदनशील इलाकों बांदीपुरा, अनंतनाग, बडगांव और कुलगांव समेत जम्मू कश्मीर के 20 से 17 जिलों में खुद ड्रग्स मुक्त जम्मू कश्मीर पदयात्रा का नेतृत्व किया और कश्मीर का कोना कोना मथने के बाद अब इस मुहिम का रुख जम्मू डिवीजन की तरफ हो गया है। लेकिन उससे पहले गांदरबल की सड़कों पर उतरे हजारों लोगों के सैलाब ने साफ कर दिया कि जनता इस जंग में उपराज्यपाल के साथ खड़ी है। आंकड़ों की गवाही देखिए कि नशे के खिलाफ यह एक्शन कितना बेरहम है। महज 55 दिनों के भीतर पुलिस ने 1036 FIR दर्ज की, 1128 कुख्यात ड्रग तस्करों को सलाखों के पीछे धकेल दिया, 344 किलो ड्रग्स बरामद की गई जिसमें 120 करोड़ रुपए की कीमत की 13 किलो अफीम शामिल है। इसके अलावा 24,000 से ज्यादा नशे के टैबलेट और कैप्सूल्स जब्त किए गए। प्रहार सिर्फ गिरफ्तारी के रूप में नहीं हो रहा बल्कि ड्रग माफिया की फाइनेंशियल ऑक्सीजन यानी उनकी काली कमाई पर भी हो रहा है। 63 बड़े तस्करों पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया गया, 700 से ज्यादा के ड्राइविंग लाइसेंस रद्द हो चुके हैं, सबसे बड़ा हंटर चला है उनकी अचल संपत्तियों पर नशे की कमाई से। जानते हैं यहां पर 100 से भी ज्यादा आलिशान मकान और ठिकाने हैं जिन पर ये या तो बुलडोजर गर्जा है या उन पर सरकारी ताला आज लटक चुका है। एक तरफ जहां गुनहगारों के लिए कोई रहम नहीं वहीं दूसरी तरफ भटक चुके युवाओं के लिए प्रशासन ने हमदर्दी का हाथ बढ़ाया है। हर जिले में एडवांस रिहैब सेंटर्स खोले गए हैं जहां मुफ्त इलाज के साथ साथ युवाओं को स्किल ट्रेनिंग, उनको रोजगार देकर मुख्य धारा में आज लौटाया जा रहा है। कश्मीर की वादियों में यह सिर्फ एक प्रशासनिक हंटर नहीं है बल्कि नार्को टेररिज्म के खिलाफ एक जन आंदोलन है। गांदरबल का यह सैलाब गवाह है कि कश्मीर का युवा अब पाकिस्तान के पाले में हुए ड्रग माफिया, जो उसका पाकिस्तान का पाला हुआ ड्रग माफिया है, उसके आगे झुकने को तैयार नहीं है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने साफ कर दिया है कि यह लड़ाई अब रुकने वाली नहीं है। जम्मू कश्मीर के युवाओं को नशे की लत में धकेलने वाले आकाओं को सीधा संदेश है, या तो सुधर जाओ या मिट जाओ। अब नशे का यह काला साम्राज्य आखिरी दिन गिन रहा है।
1: परिवार गांदरबल में कश्मीर का जो चैप्टर है नशा मुक्त भारत, उसकी आज आखिरी पदयात्रा, लेफ्टिनेंट गवर्नर खुद इसको आज फिर से लीड कर रहे हैं। मैसिव जन अभियान, सब लोग इससे जुड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं इसकी कमी थी। कैसा फील आज आप कर रहे हैं कि इतने सारे लोग आपके साथ हैं जिस डिस्ट्रिक्ट आप जा रहे हैं और एक वेव सी जो है फैल चुकी है।
2: जम्मू कश्मीर पुलिस और फोर्सेस ने नशे पर लगाम लगाई है, पूरी तरह से सप्लाई चेन को डिसरप्ट कर दिया है और तस्करों के खिलाफ जिस सख्ती से कार्रवाई की है वहीं आवाम भी जागरूक होकर सड़कों पर आकर के ये आवाम का कार्यक्रम बन गया।
1: तो सर कितने होपफुल हैं ये आप ऐसी नींव डाल के जो है रख रहे हैं जो कि आगे इंस्टीट्यूशनलाइज होगी, इस 100 दिन के बाद भी चलेगी क्योंकि मिशन बहुत बड़ा है, इतनी खराबी हो चुकी थी।
2: मैं जानता हूं कि 100 दिन में नशा पूरी तरह समाप्त नहीं होने वाला है लेकिन एक मजबूत आधार हमने बनाया है और तीन फ्रंट पर जैसा मैंने कहा कि एक पब्लिक अवेयरनेस, सप्लाई चेन डिसरप्शन और तीसरा रिहेबिलिटेशन, उस पर शिद्दत से काम।
3: Thank you. अब जो भी मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं उनसे ये कहना चाहूंगी कि आपसे जितना हो सके उतना आप ड्रग्स से दूर रहिए।
4: ड्रग्स से हमें कुछ देर तक टेंशन से राहत मिलती है मगर ये बहुत बड़ी बीमारी है, इससे इंसान की जान जा सकती है।
5: हमें नशे से दूर रहना चाहिए, हमें यूथ को भी नशे से दूर रखना है।
6: जब से ये नशा मुक्त अभियान शुरू हुआ है तब से मुझे एक चीज मैंने नोटिस की है कि जितना भी यूथ है, यूथ बहुत खुश है कि ड्रग्स से हम नजात पाए, क्योंकि ड्रग्स एक ये नहीं है कि हम कहेंगे कि नशा जहर है, वो है नशा एक बहुत बड़ा जुल्म है, एक बहुत बड़ा कत्ल है। नशे से दूर रहो क्योंकि आप अपनी जिंदगी खो रहे हो।
0: और इसी के साथ ब्लैक एंड व्हाइट में हम रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार अंजना की विचारधारा, देखते रहिए आज तक।

0: Every city has hidden stories. The building you pass every day. The park where history was made. The person no one remembers who changed everything. Audio brings those stories to life. And now we're on TuneIn. Explore 15 unique cities. Discover what you've been missing. Audio, now on TuneIn. Search Audio on TuneIn to start exploring.
1: केंट से पानी होता है 100% प्योर।
2: केंट आरो प्योरिटी दिखाता भी है।
1: केंट देता है सबसे शुद्ध पानी।
3: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
4: कोई ऐसा कूलर दिखा,
5: पूरी फैमिली बोले वाह।
6: फैमिली कितनी बड़ी है चाचा?
4: ज्यादा बड़ी ना है।
6: छोटे ऑन कर दे,
7: ऑन कर दे, ऑन कर दे,
4: पैक कर दे समर कूल।
6: समर कूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
3: Cool fans ke stylish design se घर की शान बढ़ाएं।
4: Cool fans जो दे आधी बिजली में ज्यादा हवा कम आवाज की है।
3: Cool fans smart भी stylish भी।
5: In association with
6: cool stylish fans, enhance home decor with beautiful fans. Punjab National Bank, bharose ka prateek.
7: Summer cool cooler, hawa aisi chhode, puri family ko thandak se jode. Summer cool cooler, life banaye wonderful.
5: Hint, bade aaram se. Vimal, bolo zubaan kesri.
8: Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
9: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत की विदेश नीति का खुलकर समर्थन किया है। पुतिन ने पीएम मोदी की तारीफ की और अमेरिका को सीधी चेतावनी दी है कि भारत पर रूस के साथ संबंधों को लेकर दबाव बनाने की कोशिश नुकसानदेह हो सकती है। अमेरिका कुछ मामलों में भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। उदाहरण के लिए कुछ क्षेत्रों में रूस के साथ सहयोग को लेकर हर कोई ये समझ चुका है कि नरेंद्र मोदी पर दबाव बनाना, जहां दुनिया की सबसे बड़ी आबादी रहती है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और द्विपक्षीय संबंधों के लिए नुकसानदेह है। पुतिन ने अमेरिका के किसी खास कदम का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनकी टिप्पणियां ऊर्जा, व्यापार और रक्षा के क्षेत्र में रूस के साथ भारत के जुड़ाव पर पश्चिमी देशों की चिंताओं की ओर इशारा मानी जा रही है। पुतिन ने जोर देकर कहा कि इस बाहरी दबाव का रूस और भारत के रिश्तों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये मायने नहीं रखता कि ये दबाव कहाँ से आ रहा है, हमें इसका कोई नकारात्मक परिणाम दिखाई नहीं देता। हम भारत के साथ अपने संबंधों को विकसित कर रहे हैं और इसे आगे भी जारी रखेंगे। भारत हमारा एक बहुत ही भरोसेमंद भागीदार है। पुतिन का ये बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भारत पर कच्चे तेल की खरीद को लेकर बनाए जा रहे दबाव पर कड़ा प्रहार है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।

0: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
1: कोई ऐसा कूलर दिखा,
2: पूरी फैमिली बोले वाह।
3: फैमिली कितनी बड़ी है चाचा?
1: ज्यादा बड़ी ना है।
3: छोटे ऑन कर दे,
4: ऑन कर दे, ऑन कर दे,
1: पैक कर दे समर कूल।
3: समर कूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल।

0: वाराणसी में कहां तक बगावत? ममता के साथ सिर्फ 20 विधायक, विधायकों ने साथ छोड़ा, मुंह मोड़ा, सांसद भी बगावत की राह पर जाएंगे।
1: मानसिक तौर पे आप पार्टी के साथ नहीं हैं?
2: मानसिक तौर पे मैं पार्टी के साथ नहीं हूं।
1: और ऐसे ही मानसिक तौर पे और कितने सांसद हैं तृणमूल में जो पार्टी के साथ नहीं है, आपको क्या पता है?
2: देखिए, मैं तो किसी का मानसिक स्थिति को रीड नहीं कर पाता।
1: नहीं, बातचीत तो होती होगी।
2: बातचीत होती है, मेरे सुनने में जो है, मैंने आपको बता दिया ना कि लोकसभा में ज्यादा मेंबर, मैंने मेजोरिटी मेंबर थे।
0: टीएमसी के सीनियर नेताओं में से एक सुखेंदु शेखर रॉय ने जो कुछ कहा वो ममता बनर्जी के लिए गहराते संकट के संकेत हैं। तृणमूल के सांसदों में असंतोष और बेचैनी साफ साफ देखी जा सकती है, और अगर ममता नाकाम रही तो ये संकट तृणमूल को तिनका तिनका कर सकता है।
1: लोकसभा में आपके 29 सांसद हैं, आपको क्या सुनाई दे रहा है? कितने सांसद होंगे फिर?
2: 29 नहीं, 28 है।
1: 28
2: बसीरहाट आपका पेंडिंग है कलकत्ता हाई कोर्ट में,
1: क्या होने वाला है? आपको क्या सुनाई दे रहा है? आपको पार्टी के अंदर अभी भी है
2: मेजोरिटी चला जाएगा?
1: ये एक बड़ा बयान है आप दे रहे हैं कि मेजोरिटी ही चला जाएगा।
0: तृणमूल के सांसदों पर एनडीए की नजर है। संसद के मानसून सत्र में सरकार परिसीमन बिल लाने की तैयारी में है, और खबर है कि तृणमूल के सांसदों से संपर्क साधा गया है, यानी विधायकों के बाद ममता बनर्जी के सामने अपने सांसदों को टूटने से बचाने की बड़ी चुनौती है। क्या ममता बनर्जी इस सुनामी का सामना कर पाएंगी? उनके लिए एक अच्छी खबर ये है कि बागियों में से पहली आवाज उनके समर्थन में आई है।
3: ममता बनर्जी हम लोग का सर्वोच्च नेतृत्व है, एक बार बोला, एवं ममता बनर्जी का छवि घर में रहेगा, सबका घर में रहेगा। ममता बनर्जी के फोटो का लेके मीटिंग मीटिंग करेगा, ये सब बात हुआ, इसलिए हम सही किया।
4: आने वाले दिनों में कि ममता बनर्जी फिर चीफ एडवाइजर नहीं रहे, आप इसको मानते
3: हैं? नहीं, हम लोग चीफ एडवाइजर मानते हैं।
0: ममता के लिए ऐसी कई आवाजों की जरूरत होगी, तभी वो इस संकट से उबर पाएंगे। इंद्रजीत कुंडू के साथ अनुपम मिश्र, कोलकाता आज तक।

0: के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही. अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे. तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए. और लोग कड़वे सच से नहीं बल्कि भ्रम के माया जाल के टूटने से डरते हैं जिसके दम पर उनका वजूद टिका है. नमस्कार.
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो. Accuray, the number one Korean skincare brand, now in India.

0: आज तक के साथ मंच पर पुतिन समेत दुनिया के बड़े दिग्गज रूसी राष्ट्रपति ने भारत की तारीफ की, बताया प्रमुख साझेदार, आईटी सेक्टर के अग्रणी देशों में शामिल है भारत। सूरत में पीएम का विपक्ष पर हमला, बोले अराजकता फैलाकर अवसर तलाश रही है कांग्रेस, देश को नीचा दिखाने में जुटे हैं निराशावादी नेता। अग्निकांड के बाद दिल्ली सरकार का एक्शन, अवैध निर्माण पर बुलडोजर, कुछ इलाकों में सीलिंग, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की बैठक में दोषी अफसरों पर सख्ती के आदेश। बागी नेता ऋतुव्रत को नेता विपक्ष बनाए जाने के खिलाफ सोमवार को हाईकोर्ट जाएंगी ममता, आज ममता की बैठक में पहुंचे सिर्फ 3 लोकसभा सांसद। और मराठा समाज पर फडणवीस सरकार का बड़ा निर्णय, ओबीसी की तरह शिक्षा में मिलेगा लाभ और दूसरे लाभ, कुल 8 योजनाएं शुरू करने का फडणवीस का निर्णय।
1: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste Complete Oral Health ka Sach in association with
2: Bharat ki apni electric sawari Sokudo. Akaje, the number one Korean skincare brand now in India.
0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी, स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं आज तक, आप देख रहे हैं दस्तक, और दस्तक में आज बात कोचिंग वाले खान सर की। यहाँ कोचिंग वॉर में खान सर बुरी तरह से फंस गए। पहले तो फैसल खान और खान सर ने अपने पड़ोस वाली ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद को गिरफ्तार करवाया, और अब कोचिंग गोलीकांड में खान सर खुद फंस गए हैं, उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। पुलिस ने खान सर के खिलाफ हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा FIR दर्ज कर लिए। गोली चलाने वाले खान सर के गार्ड्स ने पुलिस को बयान दे दिया है कि उनसे तो खान सर ने कहा था कि तुम गोली चलाओ, बाकी हम देख लेंगे। तो खान सर फिलहाल कहां है किसी को पता नहीं, फरार हैं। खान सर कभी भी किसी भी समय गिरफ्तार हो सकते हैं। आइए दिखाएं आपको खान सर का अब आगे क्या होगा।
3: इंसान घमंड अपने अच्छे समय में दिखाता है और उसका खामियाजा उसको अपने बुरे समय में भुगतना पड़ता है। एयरबस A380 ये सबसे ऊंची जहाज,
4: ये एरिया कौन सा है? मंचूरिया। हिटलर ने ग्रेनेड बनाना चालू किया, तो टैंक पनडुब्बी पानी वाली जहाज सब बनाया।
5: कोचिंग की दुनिया में खान सर इतना बड़ा नाम बन चुके हैं कि अब छात्रों के बीच लेक्चर देने के लिए वो भारी सुरक्षा बलों और हथियारबंद बॉडीगार्ड्स के साथ रेड कार्पेट पर चलते हुए ग्रैंड एंट्री लेते हैं।
3: याद रखिएगा, 1.5 साल की लगन के साथ पढ़ाई आपको पूरी दुनिया से 5 साल आगे रख देती है। कोई पोत पात के आएगा, तुम कहते कितना बढ़िया लग रहे हो, तो वो पतेगा एकदम सियार लग रही हो, इसलिए एकदम अखंड सिंगल।
5: लेकिन अब खान सर का यही जलवा उनके लिए मुसीबत का सबब बन रहा है। 2 जून को खान सर के कोचिंग सेंटर पर हुए गोलीकांड में वो बुरी तरह से फंस चुके हैं।
3: आप सबके जीवन में कुछ न कुछ तकलीफ है, तो इससे घबराना क्या है? अगर रात अंधेरी है तभी तारों के चमकने का अहमियत भी है।
5: खान सर पर पटना के कदम कुआं थाने में हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ है। जी हां, खान सर के गार्ड्स ने पुलिस को बयान दिया है कि उन्होंने हमें कहा तुम गोली चलाओ, बाकी हम देख लेंगे। इसी आधार पर पुलिस ने खान सर के खिलाफ FIR दर्ज की है। BNS की धारा 109 के तहत ये केस दर्ज किया गया है। इसमें 10 साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है। इसमें अग्रिम जमानत भी नहीं मिल सकती है। पुलिस की FIR में 3 लोगों का नाम दर्ज है, फैजल खान उर्फ खान सर और उनके साथ उनके 2 गार्ड्स। फायरिंग करने वाले दोनों गार्ड्स के नाम प्रदीप कुमार और तलविंदर सिंह हैं। खान सर के ये दोनों निजी गार्ड उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। नोएडा की सिक्योरिटी एजेंसी से खान सर ने 17 गार्ड्स हायर किए हैं।
6: जो व्यक्ति जो वीडियो में दिख रहे हैं फायरिंग करते हुए, उसको पहचान करके गिरफ्तार किया गया है और उनको भी भेजा जा रहा है। उनके हथियार जब्त करके फसल जांच कराया जा रहा है। आगे आगे जो जांच में आएगा और उसके सबूत जो मिलेंगे हम लोग को सफाई करेंगे।
7: खान सर का क्या आरोप सिद्ध हुआ है? गार्ड ने जो बताया आखिर लोग के द्वारा जो FIR भेजा गया उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि उन्होंने आदेश दिया था, क्या खान सर की गिरफ्तारी होगी सर?
6: इसमें मैंने आप लोगों को बताया कि जिस तरह का भी लोग एविडेंस आएगा उस सबसे कार्रवाई होगी और इसमें जिसके ऊपर भी एविडेंस आएगा विधि व्यवस्था या अपराध इसके ऊपर भी होगी उनसे सख्त कार्रवाई की जाएगी सबूतों के आधार पर।
8: ये क्या है इसका? ये एग्जैक्ट इसी साइज का होता है।
5: और अब जिसमें खान सर को महारत हासिल है उसी रास्ते से खान सर बचकर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से कठिन और जटिल विषयों को खान सर बहुत ही सरल देसी और मजाकिया अंदाज में छात्रों को समझाते हैं, आज खान सर कोचिंग सेंटर में छात्रों के बीच अपना केस समझा रहे हैं। इस लेक्चर में खान सर गिरफ्तारी से बचने की सफाई पेश करते हैं। तो आइए आपको भी खान सर की सेल्फ डिफेंस वाली क्लास में लिए चलते हैं।
8: ये लोग कहा कि खान सर के ऊपर माला चढ़ जाए, फोटो पे क्या चढ़ जाए माला, यही तो चाहते हैं लोग। अरे पागलो मेरे भाई लोग, एक बात बता यार, वो हमला किसके ऊपर करने आया है? हमारे ऊपर। दिन में आएगी रात में? रात। अकेले आए ग्रुप में? पथराव किया कि नहीं? गोली चलाए कि नहीं चलाए? गार्ड को अधमरा किया कि नहीं किया? क्या FIR भी नहीं करें? ले अब पूछिए जरा ये बात। सबसे जरूरी चीज जो आप लोग को गुमराह किया जा रहा है, सेल्फ डिफेंस की फायरिंग, चूंकि पुलिस लेट से पहुंची थी, पुलिस को आने में टाइम लगता है, हमें भी पता है कि 5 मिनट में पुलिस उड़ के नहीं आ जाएगी, तो सेल्फ डिफेंस में वो नहीं भाग रहे थे, उसको मार डालते तो कोई क्या करता? एक गार्ड का कर्तव्य क्या होता है? सुरक्षा करना।
5: और तो और खान सर अपनी कोचिंग के स्मार्ट क्लासरूम में 2 जून की घटना की CCTV फुटेज का पूरा विश्लेषण कर रहे हैं।
9: इसकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं की है, जबकि सबके सामने ये लेके जा रहा है, मुद्दे से भटकाया जा रहा है, आप इसकी गिरफ्तारी करिए, ये आदमी कौन है और कैसे आता है 20-25 लोगों को उठा के लेके चला जा रहा है, 20-25 लोगों को एक साथ कैसे?
5: खान सर मार्कर से स्क्रीन पर आरोपियों को घेर घेर कर दिखा रहे हैं और छात्रों को बता रहे हैं कि देखिए इनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। खान सर उसका नाम विकास बताते हैं और उसकी पूरी पहचान भी बताते हैं।
9: इसका नाम विकास या विवेक करके विकास, इसने बयान दिया है, देखो हम लोग तो पढ़ाने वाले आपके, हम लोग इतना नहीं बता रहा था कि कौन कहां क्या काम कर रहा है, क्या हमने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया है?
5: फिर खान सर हाथ में किताब लेकर विद्या की कसम खाते हैं और कहते हैं कि कोचिंग पर लगातार गोलियां चली थी और पूरी सच्चाई सामने नहीं लाई जा रही है।
9: हमने दिखाया गोली चलते हुए आप लोग देख रहे हैं, अब आप बताइए आप अपनी आवाज उठा सकते हैं कि नहीं उठा?
5: स्मार्ट क्लासरूम में लेक्चर देने वाले खान सर वेरी स्मार्ट हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कोचिंग में हुए गोलीकांड पर वो कैसे गच्चा खा गए और अपने ही बयानों से कैसे फंस गए वो आपको दिखाते हैं। खान सर ने पहले कहा उनके कोचिंग सेंटर पर रोशन आनंद के लोगों ने गोलियां चलाई, 10 राउंड फायरिंग हुई, फिर खान सर पलट गए और गोलियों की बात से मुकर गए, लेकिन जब गोलियां चलाते हुए खान सर के अपने ही गार्ड्स का वीडियो वायरल हो गया, फायरिंग करने वाले 2 गार्ड्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और खान सर पर भी आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज हो गया, तो अब खान सर फिर से कोचिंग में गोलियां चलाने की थ्योरी ले आए हैं।
10: अभी इन लोग का बस यही है कि इतने कम फीस में नहीं पढ़ाया जाए और इतने हजारों संख्या में जो रिजल्ट आता है पूरी तरह से, इतनी गोली चलाने लगे 10 मिनट में, ऐसा लगा कि जैसे अफरा तफरी होके रख गया यहाँ पर। 8-10 राउंड तो हम देखे हैं यहाँ पे, 8-10 राउंड हम देखे हैं, हमें क्या पता है? अभी PMCH में एडमिट है, उसका पूरा सर फाड़ दिया गया है यहाँ पर।
11: क्या लगता है कौन क्या होगा?
10: बगल की कोचिंग वाले
12: सर, आप खुद मौजूद थे यहाँ जब फायरिंग हो रही थी?
10: बिल्कुल, ये देखिए मेरा गार्ड है ये।
12: अच्छा,
10: इसका ये पूरी तरह से खून से इसको लहूलुहान कर दिया गया यहाँ पे।
12: तो गार्ड से क्या दुश्मनी थी?
10: बस कि तुम ही खान सर को सब गार्ड है हमारा मार के रखा है।
13: देखिए उस समय इतना घटना हुआ, अभी जो जो घायल है जो मेन, हम लोग तो अंदर से भी अपने चैम्बर में थे, टीचर लोग क्लास ले रहे थे, जो गार्ड है उससे पूछा गया तो उसका कहना है कि सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, इतना मार के फोड़ दिया गया उसे।
9: तो अस्पष्ट गोलियां चल रही थी और अफरा तफरी इतना था कि किसी के किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि बाहर निकल के देख सके। यहाँ क्यों नहीं कोई आए लोग तक वगैरह, बहुत यही था कि तो वह उस समय आए रहते तो कह रहे थे क्या गोलियां चली है कि नहीं चली,
0: तुम गोली चलाओ बाकी हम देख लेंगे। अपने गार्ड्स को उकसाया गोली चलाने के लिए खान सर ने, और खान सर के इसी बयान ने उन्हें फंसा दिया। अब खान सर अपनी कोचिंग के छात्रों के द्वारा बचने का रास्ता खोज रहे हैं। कोचिंग के बाहर छात्रों ने खान सर के समर्थन में जमकर नारेबाजी की है और इस दौरान पुलिस ने छात्रों से शांति बनाए रखने की अपील भी की और कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने में आप प्रशासन का सहयोग कीजिए। खबर यह आई है कि खान सर की गिरफ्तारी के लिए पटना पुलिस ने टीम गठित कर दी है। पुलिस सूत्रों के अनुसार किसी भी समय खान सर को गिरफ्तार किया जा सकता है, गिरफ्तारी संभव है। कहा यह भी जा रहा है खान सर कहां है इसका किसी को कोई अता पता नहीं है।
5: लेकिन खान सर अब बुरी तरह से फंस चुके हैं कि अब पुलिस उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेगी। ऐसे में सवाल ये है कि क्या खान सर स्टूडेंट्स के जरिए पुलिस और प्रशासन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ये कहकर छात्रों को उकसा रहे हैं कि अगर उनका कोचिंग सेंटर बंद हो गया तो 6 महीने में कई कोचिंग संस्थानों की फीस 1 से 1.5 लाख रुपए तक हो जाएगी।
9: यकीन मानिए जिस दिन KGS बंद हुआ, जिस दिन खान सर का आवाज दबाया गया, उसके 6 महीने के अंदर फिर से फीस 1.5 लाख नहीं चली गई। तो
8: जो आप लोग को गुमराह किया जा रहा है, सेल्फ डिफेंस की फायरिंग, चूंकि पुलिस लेट से पहुंची थी, पुलिस को आने में टाइम लगता है, हमें भी पता है कि 5 मिनट में पुलिस उड़ के नहीं आ जाएगी।
5: और खान सर किसी हद तक अपने स्मार्ट क्लास से छात्रों को अपने पक्ष में इकट्ठा करने में कामयाब भी हो जाते हैं। जी हाँ, खान सर की गिरफ्तारी को देखते हुए उनकी कोचिंग खान ग्लोबल स्टडीज के छात्र मुसल्लापुर कोचिंग सेंटर में पहुंचने लगते हैं। बिहार पुलिस भर्ती के रिजल्ट को लेकर शुरू हुई लड़ाई में खान सर ने ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर को तो गिरफ्तार करवा दिया, लेकिन अब गोलीकांड का सच बाहर आने के बाद गिरफ्तारी की तलवार खुद खान सर पर भी लटक गई है।
14: बिहार पुलिस में जो शानदार रिजल्ट हुआ है उसी का साजिश है, हमको फंसाया जा रहा है। किसान कोल्ड स्टोर के मालिक और खान सर जो है दोनों मिल करके जो है ज्ञान बिंदु को बर्बाद करने का पूरा प्रयास कर रहा है, लेकिन सत्यमेव जयते, हमेशा सत्य की जीत है।
5: लेकिन सवाल ये है कि कैसे पटना के 2 कोचिंग संचालकों के बीच वर्चस्व की लड़ाई में एक तरह से कोचिंग वॉर छिड़ गई है और इस कोचिंग वॉर में अब गोलियां भी चल रही हैं। ऐसे में पुलिस सख्त एक्शन ले रही है। इस कोचिंग वॉर में खान सर बुरी तरह से फंस चुके हैं। पटना से शशि भूषण के साथ आज तक ब्यूरो।
0: और अब खबर ब्रेकअप वाले मर्डर की। मोहाली में हत्या का बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया। एक पूर्व प्रेमी ने ब्रेकअप के बाद अपनी प्रेमिका डिंपल नाम की लड़की की दफ्तर में चाकू से हत्या की। हत्यारे ने चाकू से 35 वार किए और उसके बाद अपनी जान देने की भी कोशिश की। क्या है ये पूरा मामला, आइए हम आपको बताते हैं।
5: कैमरे में कैद एक्स बॉयफ्रेंड की खूनी सनक, 35 सेकेंड में 30 बार फिर अपना गला काटा, ऑफिस में डिंपल के कातिल का इंतकाम, मोहाली में ब्रेकअप वाला खौफनाक मर्डर। तीस साल की डिंपल रोज की तरह दफ्तर में अपना काम कर रही थी, तभी पीछे से हरजिंदर सिंह मान उर्फ हैरी हाथ में चाकू लेकर आता है। डिंपल कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसकी गर्दन पर हैरी चाकू से सीधा वार करता है। जान बचाने के लिए डिंपल भागती है, हैरी पीछा करते हुए उसे पकड़ लेता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं दफ्तर में मौजूद एक कर्मचारी हैरी को रोकने की कोशिश करता है, तभी एक और शख्स भी डिंपल को बचाने के लिए आगे आता है, लेकिन हैरी के सिर पर खून सवार था। वो चाकू से हमले की धमकी देता है। इसके बाद वो एक बार फिर डिंपल पर चाकू से ताबड़तोड़ वार करता है। दफ्तर में मौजूद लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, लेकिन हैरी अपने नापाक मंसूबे को अंजाम देने के बाद खुदकुशी की कोशिश करता है, अपनी गर्दन पर भी चाकू से प्रहार करता है। जख्मी हालत में हैरी और डिंपल को हॉस्पिटल में दाखिल कराया जाता है, लेकिन डिंपल दम तोड़ देती है, जबकि हैरी की हालत नाजुक बनी हुई है।
15: मोहाली में फेज 11 में स्थित एसआरपी यूएस लॉजिस्टिक्स एक कंपनी में तब सनसनी फैल गई जब एक महिला एम्प्लॉई का कत्ल कर दिया गया। ये वो कंपनी है, दूसरी मंजिल पे वो काम करती थी और उसके पीछे हरजिंदर एलियस हरी मान है, जो उसका पूर्व प्रेमी है। दोनों एक दूसरे को 2-3 साल से जानते थे, दोनों ही पटियाला के रहने वाले थे और उसी बीच में दोनों के बीच में कुछ खटास रही, जिसके बाद से वो दोनों अलग हो गए थे। लेकिन ऐसा बताया जाता है कि लड़का वापस रिश्ता बनाना चाह रहा था डिंपल से, उसने जब मना किया उसके बाद इस तरह का घटनाक्रम को अंजाम दिया गया।
5: शुरुआती जांच में ये बात सामने आई है कि बीते 3 साल से डिंपल एसआरपी यूएस लॉजिस्टिक कंपनी में काम कर रही थी। इसी दफ्तर में हैरी भी काम करता था। पुलिस के मुताबिक दोनों के बीच पहले दोस्ती हुई और दोस्ती प्यार में बदल गई, लेकिन कुछ दिन पहले दोनों का किसी बात को लेकर ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप के बाद हैरी इंतकाम की आग में जलने लगा और फिर डिंपल को सबक सिखाने के लिए हैरी ने खौफनाक कदम उठा लिया।
15: क्या कारण रहे हैं, क्योंकि ऐसा भी बताया जा रहा है कि दोनों रिश्ते में थे, रिलेशनशिप में थे और ये रिलेशनशिप गॉन सॉर जिल्टेड लवर वाली थी।
16: हाँ, बेसिकली अभी तक तो जो प्राइमरी ये आ रहा है ये तो यही आ रहा है, पर डीप इन्वेस्टिगेशन के बाद वी कैन लेट यू नो। मतलब पहले ये आपस में क्लोज थे क्योंकि दोनों पटियाले के रहने वाले थे, अब थोड़ी कोई इनकी आपस में कहा सुनी हुई इसके कारण नहीं हो सका।
5: पुलिस के मुताबिक पूरी प्लानिंग के साथ हैरी ने हत्या की साजिश रची। प्लान यही था कि पहले डिंपल का कत्ल करेगा और फिर खुदकुशी कर लेगा। हैरी यही चाहता था कि डिंपल किसी भी कीमत पर जिंदा ना बचे, लिहाजा उसने डिंपल पर चाकू के 30 वार किए। वो तब तक वार करता रहा जब तक डिंपल की सांसें थम नहीं गईं।
16: 25-30 वार चाकू का उसने वार किया, गर्दन पे भी है और पीछे हार्ट पे भी है। सो यू कैन से भी सीरियस उसने, मतलब 25-30 वार किए थे उसने, और अपने भी उसने ऐसे ही अपने आप को भी स्टैब किया है, अपने गले में भी उसके हैं, हार्ट में भी उसने अपने स्टैब किया अपने आप को भी, और ये सारी जो हैं जो आप इनके वुंड्स बारे दैट डॉक्टर कैन टेल यू बेटर।
5: पुलिस ने कत्ल का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन हैरी भी जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। वहीं दूसरी तरफ डिंपल के घर वाले ब्रेकअप की थ्योरी को सिरे से खारिज कर रहे हैं।
17: इस तरह की कोई चर्चा की बात नहीं थी भी, उसके किसी लड़की से संबंध थे, कोई चर्चा नहीं थी, ना ही डिंपल ने कभी हमारे पास ऐसी कोई शिकायत की। अगर ऐसी बात होती तो हम बात करके शॉर्ट आउट करने का प्रयास करते, लेकिन हमें तो ये भी नहीं पता लड़का पटियाले का कि नहीं। इतना पता है, रात को पता लगा भी लड़का भी जो है उसी अमेरिकन कंपनी के अंदर काम करता है और लड़की भी हमारी पोती भी वहां पर जॉब करती है।
5: घर वालों का दावा है कि बहुत जल्द डिंपल की शादी तय होने वाली थी। अगर हैरी से डिंपल के रिश्ते होते तो वो शादी करने से इनकार करती, लेकिन डिंपल ने ऐसा कभी नहीं किया, न ही कभी हैरी से रिश्तों के बारे में घर वालों को बताया।
17: मैं करूं लड़के के विषय में हमारे पूरे परिवार को कुछ पता ही नहीं है। हमारे परिवार की संख्या जो है कम से कम 80 है। हम हर हफ्ते यहाँ बैठते हैं, बातचीत करते हैं, कोई ऐसी चर्चा ही नहीं थी।
18: डिंपल ने जानकारी नहीं थी,
17: मतलब तंग परेशान ना।
18: पुलिस से क्या उम्मीद
17: है? ऐसा है, मैं आपको ड्यूटी के टाइम पे इस तरह की घटना हो जाना, लड़की का शरेआम हत्या हो जानी और वो भी फुटेज के अंदर आ जाना, ये कंपनी का दोष। कंपनी को चाहिए जॉब में उस लड़के को उसने रखा है, बिटिया को भी रखा है, उसके बारे में सारी जानकारी कंपनी को है, और कंपनी अगर लुकोया है, ये बात छुपा करके रखी है, तो सबसे बड़ी दुश्मन।
5: डिंपल अब इस दुनिया में नहीं है, हैरी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। अब पुलिस को इंतजार है हैरी के ठीक होने का, ताकि हत्या की पूरी वजह सामने आ सके। हालांकि डिंपल के घर वाले ब्रेकअप वाले एंगल को खारिज कर रहे हैं। डिंपल की मौत हो चुकी है, अब पूरी कहानी तभी सामने आएगी जब हैरी अपनी जुबान खोलेगा। लेकिन हैरी की हैवानियत को देखकर सभी की रूह कांप उठी। सवाल यही है कि आखिर ऐसी सनक का इलाज क्या है। मोहाली से कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो।
0: हमारे देश की राजधानी दिल्ली में एक लेडी प्रोफेसर की उनके फ्लैट के अंदर हत्या कर दी गई। हत्यारे ने पहले हत्या की और फिर फरार होने से पहले फ्लैट के बाहर इस तरह से ताला लगा दिया। अब पुलिस को इस ताले वाले हत्यारे की तलाश। आखिर लेडी प्रोफेसर का वो ताला वाला हत्यारा कौन है? पुलिस इसी गुत्थी को सुलझाने में अब जुटी हुई है।
5: वसुंधरा एनक्लेव, दिल्ली का बेहद ही पॉश इलाका। इसी सत्यम अपार्टमेंट में दिल्ली यूनिवर्सिटी की सहायक प्रोफेसर देवोस्मिता पॉल रहती थी। लेकिन 4 जून को सत्यम अपार्टमेंट से निकली खबर ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। वजह थी फ्लैट के अंदर बेहद शातिराना अंदाज में कातिल ने देवोस्मिता पॉल के कत्ल को अंजाम दिया।
19: दिल्ली के वसुंधरा इंक्लेव में उस वक्त सनसनी मच गई जब एक महिला की लाश उसके घर के अंदर मिली। इस वक्त मैं उसी सोसाइटी के बाहर मौजूद हूं और अगर मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊं तो ये सत्यम अपार्टमेंट्स हैं, जहां डीयू की एक असिस्टेंट प्रोफेसर जो यहां रहती थी उनकी लाश उनके घर में ही करीब 2:30 बजे मिली। ये मामला तब शुरू हुआ जब उनकी बहन ने उन्हें कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की और जब उन्होंने फोन नहीं उठाया, उन्हें शक हुआ, तब वो घर पहुंचती हैं, घर का दरवाजा तोड़ती हैं और जब अंदर जाती हैं तो उन्हें अपनी बहन की लाश मिलती है। जो यहाँ प्रत्यक्ष दर्शी थे उनका ये कहना है कि महिला के शरीर पर कुछ चोट के निशान भी थे। हालांकि दिल्ली पुलिस के हाथ अभी तक पूरी तरीके से खाली है।
5: सवाल यही है कि देवोस्मिता पॉल की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती थी। शुरुआती तफ्तीश के मुताबिक 2 जून को देवोस्मिता को आखिरी बार देखा गया था। उसके बाद से देवोस्मिता के ड्राइवर ने जब कई बार फोन किया और कॉल नहीं उठी तो ड्राइवर ने किसी अनहोनी की आशंका के चलते घर वालों को फोन न उठने की जानकारी दी। घर वाले जब फ्लैट पर पहुंचे तो बाहर ताला लगा हुआ था। घर वाले जब ताला तोड़कर घर में अंदर दाखिल हुए तो अंदर का मंजर दिल दहला देने वाला था। कातिल हत्या के बाद देवोस्मिता की डेड बॉडी पीछे छोड़ गया था।
20: कातिल कोई अजनबी नहीं बल्कि देवोस्मिता पॉल का परिचित था, क्योंकि पुलिस को मौके वारदात से फ्लैट में जबरन दाखिल होने का कोई सबूत नहीं मिला है। इसके अलावा कत्ल की वजह लूटपाट भी नहीं है, क्योंकि फ्लैट से कोई कीमती सामान गायब नहीं हुआ है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कातिल ने अपनी पहचान का फायदा उठाते हुए फ्लैट में एंट्री की, कत्ल किया और उसके बाद फ्लैट का ताला लगाकर आसानी से फरार हो गया।
5: जांच टीम के मुताबिक कातिल कोई परिचित था जिसे देवोस्मिता जानती थी। कातिल पूरी प्लानिंग के साथ फ्लैट में आया था, लिहाजा वो आसानी से फ्लैट के अंदर दाखिल हुआ। फ्लैट में दाखिल होने के बाद कातिल ने देवोस्मिता के सिर पर कातिलाना हमला किया जिससे उनकी मौत हो गई। कत्ल के बाद कातिल फ्लैट से बाहर निकला, फ्लैट के मेन डोर पर ताला लगाया और फिर मौके से फरार हो गया। मतलब यही है कि कातिल जल्दबाजी में नहीं था, पूरी प्लानिंग के साथ आया था। चौंकाने वाली बात यह है कि हत्या लूटपाट के इरादे से नहीं की गई। फ्लैट के अंदर लूटपाट के निशान नहीं मिले हैं। ज्वेलरी और कैश अपनी जगह पर पुलिस को मौजूद मिला। न तो फ्लैट के अंदर कातिल और देवोस्मिता के बीच हाथापाई के कोई सबूत मिले हैं। फ्लैट के आसपास सीसीटीवी नहीं लगे हैं। कातिल को ये बखूबी पता था। पुलिस के मुताबिक सर पर गहरी चोट के निशान हैं और हाथ की नस भी कटी हुई मिली है। वहीं घर वालों का कहना है कि देवोस्मिता अकेले फ्लैट में रहती थी जबकि पति बेंगलुरु में रहते थे। शुरुआती जांच में दोनों के बीच संबंधों में अनबन की बात भी सामने आई है। पड़ोसी बताते हैं कि देवोस्मिता शांत स्वभाव की थी और आसपास रहने वाले लोगों से ज्यादा बातचीत नहीं करती थी। कॉलेज जाना और कॉलेज से आना यही दिनचर्या थी। अब सवाल यही है कि देवोस्मिता का कातिल कौन है? देवोस्मिता की हत्या करने वाला वो परिचित कौन है? क्यों कत्ल के बाद कातिल फ्लैट पर ताला लगा कर गया? अगर कातिल का इरादा लूटपाट नहीं था तो फिर क्या था?
20: कत्ल और कातिल की कड़ियों को आपस में जोड़ने के लिए दिल्ली पुलिस ने क्राइम सीन से फॉरेंसिक एविडेंस जुटाए हैं। इसके अलावा देविश्मिता पॉल की कॉल डिटेल भी दिल्ली पुलिस खंगाल रही है, जिससे पता चल सके कि कत्ल के पहले उन्होंने किस किस से बात की थी। इसके अलावा सोसाइटी का सीसीटीवी भी खंगाला जा रहा है। दिल्ली पुलिस को इस मामले में कुछ अहम लीड मिली है और जल्द ही दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा कर देगी।
0: दस्तक में एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लौट कर आएंगे तो ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे दुनिया का सबसे बड़ा इंटरव्यू, रूसी राष्ट्रपति पुतिन और तीन राष्ट्राध्यक्षों के साथ वर्ल्ड एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हमारी संवाददाता गीता मोहन के साथ। देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुभरात्रि।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद भारत की अपनी इलेक्ट्रिक।
1: Tune in how to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
21: Looking for your favorite local radio stations? Look no further. Tune in has got you covered. Not only can you stream all the best music, news, sports from all around the world, but you can also listen to all your local radio stations. Just head to the radio page on TuneIn to listen, and you can explore our interactive map to find all the local stations you know and love. Are you ready to dive in? Start listening today.
22: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
23: बहुत टायर्ड हो गई।
24: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
25: लायन डेट नट बाइट्स।
26: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
27: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
28: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
3: AU सोच बदलो और बैंक भी।
4: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
5: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
6: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
7: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
8: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
9: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, NTO को पता नहीं।
7: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
10: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
8: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, NTA जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
7: जहां खबर वहां खबरदार।
11: इन एसोसिएशन विद मोंटी कार्लो, इट्स द वे यू मेक मी फील। E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
12: मैं इस वक्त उसी बिल्डिंग के बाहर हूँ जहाँ पर ये आग लगी।
13: मैं आपको टॉप एंगल से तस्वीर दिखाता हूँ और ये तस्वीर जो पूरा मंजर है उसको बयान करने के लिए काफी है।
14: यहाँ पर दूसरा एग्जिट गेट नहीं है तो किस तरीके से सेफ्टी नॉर्म्स का पालन किया गया था।
15: ये तस्वीरें बताती है कि किस तरीके से लापरवाही जो है वो पूरे इस इलाके में जो है वो चल रही है।
13: 20 लोगों की जान चली गई। और देखिए जब तस्वीर दिखाई जाती है एक एक करके तो इस तरह से दिल्ली पुलिस की टीम आती है और कहती है कि आप यहाँ से नहीं दिखाएंगे।
16: साथियों, आज देश में कुछ निराशावादी लोग हैं जो आत्मनिर्भर भारत अभियान का मजाक उड़ाते रहते हैं। देश के इस संकल्प को वो लगातार नीचा ही दिखाते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा भारत को दूसरे देशों पर निर्भर रखा। वो लोग ये भूल जाते हैं कि दूसरों पर निर्भर देश विकास की वो ऊंचाई कभी प्राप्त नहीं कर सकता जिसका वो हकदार है।
17: साल पहले एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI को लेकर सबसे बड़ा डर था कि मशीनें इंसानों की नौकरियां छीन लेंगी, लेकिन वक्त के साथ तस्वीर बदलती दिख रही है। दुनिया की बड़ी टेक कंपनियां जिस रफ्तार से AI पर दाव लगा रही हैं, उससे संकेत मिल रहे हैं कि ये तकनीक रोजगार खत्म करने से ज्यादा नए मौके पैदा कर रही है। और ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि AI के दम पर NVIDIA की बाजार वैल्यू $5.5 trillion के पार पहुंच गई है। वहीं माइक्रोन और SK हाइनिक्स जैसी मेमोरी चिप कंपनियां $1 trillion क्लब में शामिल हो गई हैं। बाजार में AI बबल की चर्चा के बीच NVIDIA के CEO जेनसन हुआंग ने नौकरी जाने की आशंकाओं को खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि AI इंसानों की जगह लेने नहीं उनकी क्षमता बढ़ाने का काम कर रहा है। हुआंग के मुताबिक AI से सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की मांग बढ़ी है, हार्डवेयर डिजाइन और जटिल सिस्टम संभालने वाले एक्सपर्ट्स की जरूरत भी बढ़ी है। AI कारोबार और कमाई बढ़ाने का बड़ा जरिया बन रहा है। इसी बीच AI की दुनिया में एक और बड़ा कदम उठाया गया है। चैटबॉट बनाने वाली OpenAI अब रोबोटिक्स की तरफ तेजी से बढ़ रही है। कंपनी ने अपने नए रोबोटिक्स डिवीजन के लिए हायरिंग शुरू कर दी है। ओपन एआई ने हार्डवेयर, मशीन लर्निंग और सिस्टम इंजीनियर्स के लिए कई पद निकाले हैं। शुरुआती फोकस स्किल्ड कर्मचारियों की मदद करने वाले रोबोट तैयार करना है। लंबी अवधि का लक्ष्य हर व्यक्ति के लिए पर्सनल एआई रोबोट विकसित करना है। साफ है कि एआई आने वाले वर्षों में फैक्ट्रियों, दफ्तरों और रोजमर्रा की जिंदगी में भी दिखाई देगा। भारत की तस्वीर भी काफी दिलचस्प है। यहाँ एआई को अपनाने का भरोसा दुनिया की औसत से ज्यादा नजर आ रहा है। ACCA के मुताबिक 57% भारतीय प्रोफेशनल्स अपने काम में एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। 52% लोग एआई आधारित हायरिंग प्रक्रिया पर भरोसा जता रहे हैं, जबकि इसका वैश्विक औसत 43% है। 86% भारतीयों को भरोसा है कि वो एआई से जुड़ी नई स्किल्स सीख सकते हैं। जनरेशन जी में ये भरोसा 54% तक पहुंच चुका है। हालांकि एक्सपर्ट्स चेतावनी दे रहे हैं कि एआई कितना भी स्मार्ट क्यों ना हो जाए, इंसानी निगरानी जरूरी रहेगी। पुराना डेटा कई बार पुरानी गलतियों और पक्षपात को दोहरा सकता है और ऐसे में भर्ती, प्रमोशन और करियर से जुड़े अहम फैसलों में इंसानी समझ की भूमिका बनी रहेगी। यानी आने वाले समय में बढ़त उसी को मिलेगी जो एआई से मुकाबला करने की जगह उसे अपने काम का साथी बनाना सीख लेगा। आदित्य के राणा, आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Acoje, the number one Korean skincare brand, now in India.

आज तक के साथ मंच पर पुतिन समेत दुनिया के बड़े दिग्गज रूसी राष्ट्रपति ने की भारत की तारीफ, बताया प्रमुख साझेदार आईटी सेक्टर के अग्रणी देशों में शामिल है भारत। सूरत में पीएम का विपक्ष पर हमला, बोले अराजकता फैलाकर अवसर तलाश रही है कांग्रेस, देश को नीचा दिखाने में जुटे हैं निराशावादी नेता।

0: इस अलगाव की शुरुआत अमेरिका के पूर्व प्रशासन ने की थी, ये बात सभी जानते हैं, और फिर यूरोपीय देशों ने, और वर्तमान में वो अमेरिकी प्रशासन से भी अधिक सफल हैं। लेकिन शुरुआत में ऐसा नहीं था, और अमेरिका सहित कुछ साझेदारों के सहयोग से हम यहाँ अलग थलग नहीं पड़े।
1: Вот я уже приводил этот пример. А, вот, пожалуйста, здесь.
0: हमारे प्रतिनिधि यहाँ मौजूद हैं। एक ऊर्जा कंपनी और पूर्व अमेरिकी प्रशासन हमारी परियोजना का विरोध करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही यह परियोजना शुरू हुई, सबसे पहले अमेरिका को भेजा गया, फिर यूरेनियम। जी हाँ, हम यूरेनियम की आपूर्ति कर रहे हैं, वो भी अमेरिकी बाजार में। मात्रा के हिसाब से पहले स्थान पर एक अमेरिकी कंपनी है, फिर यूरोपीय और अमेरिकी पूंजी की भागीदारी वाली एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है, और मात्रा के हिसाब से तीसरे स्थान पर एक रूसी कंपनी है। अब तक तो सब कुछ ठीक चल रहा है, वे व्यावहारिक हैं और हमें उन्हें एक उदाहरण के रूप में लेना चाहिए, इसलिए जब भी उन्हें लाभ हुआ, काम चलता रहा। हम अभी भी रूसी सुदूर पूर्व में उन देशों के साथ ऊर्जा परियोजनाएं जारी रखे हुए हैं, जिन्होंने औपचारिक रूप से अपनी वापसी की घोषणा कर दी है, फिर भी वो इन परियोजनाओं में बने हुए हैं।
1: Хотят и просят по многим другим направлениям. Я уже не говорю о наших друзьях.
0: वे प्रगति करते रहते हैं, और मैं सिर्फ अपने दोस्तों की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि अपने विश्वसनीय साझेदारों की भी बात कर रहा हूं। जैसे अफ्रीकी देश, एशियाई देश, जिनमें से एक भारत खुद है, जिसने कभी भी विदेश से कोई आदेश नहीं माना है। साथ ही मैं पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की भी बात कहना चाहता
1: हूँ,
0: जिसकी संप्रभुता और संप्रभु निर्णय लेने की क्षमता पर कभी सवाल नहीं उठाया जा सकता। जहां तक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की बात है, हम अपने साझेदारों और ऐतिहासिक पड़ोसियों के साथ काम कर रहे हैं, इसलिए सब कुछ आगे बढ़ रहा है। हमें ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, और जैसा कि आपने बताया, हमें अमेरिका के आधिकारिक प्रतिनिधि दिखाई दे रहे हैं। मुझे पता है कि वे यूरोप के प्रतिनिधि हैं, और यह एक ऐसी बात है जिसका हम स्वागत करते हैं। हमने कभी भी खुद को किसी से अलग नहीं किया है, और अगर स्थिति इस तरह बदली है कि हमें इन देशों के लोग मिले हैं, तो हम जरूर इसका स्वागत करेंगे।
2: मैं आर्थिक प्रश्नों पर ही रहना चाहती हूं, लेकिन एक पत्रकार होने के नाते मुझे आपसे ये पूछना होगा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने एक खुला पत्र लिखा है, और उन्होंने न सिर्फ आपसे सीधी बातचीत का प्रस्ताव रखा है, बल्कि आपको सीधी धमकी भी दी है और इसे आपका युद्ध बताया है। आपकी अनुमति से मैं उनके शब्द दोहराना चाहूंगी। उनका कहना है कि हमारे लंबी दूरी के ड्रोन ने सेंट पीटर्सबर्ग में आपके मंच का दौरा किया, जिसने 1000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय की। उनका कहना है कि यह युद्ध आपकी निजी पसंद है, एक ऐसा युद्ध जिसका कोई वास्तविक कारण नहीं है। जेलेंस्की कहते हैं कि आप युद्ध से सहज हैं। उनका कहना है कि आपके लिए आपका अपना जीवन मूल्यवान है। साथ ही उन्होंने आपके और उनके बीच एक बैठक के लिए एक निश्चित तारीख तय करने का प्रस्ताव रखा है। इस पर आप क्या कहेंगे?
0: जहाँ तक मेरे आवाज या परेड का सवाल है, ये मेरा निजी मामला नहीं है। इसके अलावा उन्होंने पहले से कुछ जानकारी दी थी। उन्होंने कहा कि हमें पता था कि आप आवाज पर नहीं होंगे। सवाल ये है कि उन्होंने ऐसा किया ही क्यों? मेरे प्रेस सचिव ने कल मुझे यह पत्र दिखाया था। हमने उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के साथ लंच किया। सच कहूं तो मुझे विस्तार से देखने का मौका नहीं मिला। पेस्कोव ने आज सुबह मुझे इस पत्र के बारे में फिर से बताया। मैंने उस पर सरसरी नजर डाली।

0: бегло, но тем не менее. Значит, несколько вещей, на которые обращаю внимание.
1: मैंने उसे सरसरी तौर पर पढ़ा, इसलिए कुछ ही बातें ऐसी हैं जिन पर मैं ध्यान दे पाया। पहली बात, ये पत्र लिखने वाले ने मेरी उम्र का जिक्र किया है। मैं क्या कहूँ, खैर, हर किसी को अपनी उम्र के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन मेरा मानना है कि मेरी उम्र में भी कई अन्य राजनीतिक हस्तियां अपना काम बखूबी निभा रही हैं। उनमें से कुछ मुझसे उम्र में बड़े हैं। खैर, उम्र महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण नहीं।
0: Это на самом деле безусловно важно, но главное это не возраст, главное
1: सबसे खास बात यह है कि क्या आप ठीक से काम करने में सक्षम हैं, अपना काम ठीक से कर रहे हैं। तो मेरे कुछ सहकर्मी हैं जो उम्र में बड़े हैं और अभी भी बहुत ऊर्जावान हैं, चाहे वे सही फैसले ले रहे हों या नहीं। खैर, यह कहना मेरा काम नहीं है, यह एक राजनीतिक आकलन है, लेकिन फिर भी उन्होंने निर्वाचित पद पर बने रहने के बारे में कहा कि यह अहम है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन आपको चुनाव में भाग लेना होगा, चुनाव लड़ना होगा, साहसी बनना होगा और हमेशा संविधान का पालन करना होगा। क्योंकि यदि आप संवैधानिक दायरे से बाहर सत्ता पर काबिज रहते हैं तो यह सत्ता का अतिक्रमण माना जाता है और यह एक अपराध है। इसलिए किसी को डरना नहीं चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए और यह मैं सभी को सुझाऊंगा। खासकर इसलिए क्योंकि यूक्रेन ने कहा था कि वे चुनाव कराएंगे और फिर अचानक वे चुप हो गए। पत्र लिखने वाले ने कहा है कि एंकरेज में हुए समझौतों का पालन नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि यूक्रेन और रूस के बीच हुए समझौतों के सच्चे गारंटर की तलाश यूरोप में की जानी चाहिए। विश्वसनीय गारंटर हमेशा स्वागत योग्य होते हैं। लेकिन वे अमेरिकी प्रशासन और विशेष रूप से राष्ट्रपति ट्रंप के इस आदेश से इनकार क्यों कर रहे हैं, यह मेरी समझ से परे है। वे अमेरिका से हथियार तो चाहते हैं, लेकिन वे अमेरिकी प्रशासन या राष्ट्रपति ट्रंप को गारंटर के रूप में नहीं देखना चाहते और ये बात सवाल खड़े करती है। हमने राष्ट्रपति ट्रंप को देखा कि वो ओवल ऑफिस में जेलेंस्की को निर्देश दे रहे थे, उन्हें समझा रहे थे, उन्होंने उनके पहनावे तक के बारे में बता रहे थे, ये भी कि कभी कभी खून खराबा करना शायद ठीक है, लेकिन हर वक्त नहीं।
0: मनीर
1: अब शिष्टाचार की बात करें तो कुल मिलाकर मैं इस काम के लिए राष्ट्रपति ट्रंप को धन्यवाद कहना चाहूंगा। यह उपयोगी रहा, लेकिन उन्हें इस पर अभी और काम करना होगा, इसे जारी रखना होगा। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात पर आते हैं। यूक्रेनी पक्ष ने हमारे संबंधों को सार्वजनिक रूप से उजागर किया है, उन्होंने इसे सार्वजनिक क्षेत्र में लाना सही समझा, जो मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगता। मुझे लगता है कि यह पूरी तरह से अनुचित है, लेकिन फिर भी इससे मुझे कुछ ऐसी बातें कहने का अधिकार मिल जाता है जिनके बारे में कुछ ही लोग जानते हैं या शायद कोई भी नहीं जानता।
0: तो это даёт мне возможность и даёт право сказать о некоторых вещах, о которых мало кто знает или вообще пока никто не знает. О чем идет речь? И вот это уже серьезно. Это уже без всякой иронии, без всякой шутки.
1: Я гамбир мамла хэ. मैं कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ। तीन हफ्ते पहले हमारे व्यापारिक हलकों के एक प्रतिनिधि ने मुझे फोन किया और उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा, श्रीमान राष्ट्रपति, मैं इस व्यक्ति को काफी समय से जानता हूँ, हम करीबी नहीं हैं, लेकिन मुझे उन पर भरोसा है, वे एक ईमानदार व्यक्ति हैं। उन्होंने आगे कहा, श्रीमान राष्ट्रपति, मुझे कीव आमंत्रित किया गया है। मैंने कहा, ठीक है, आगे बढ़िए, मुझे इससे क्या लेना देना है। वो आगे बोले, लेकिन मैं आपको सूचित करना चाहता था, क्योंकि मुझे लगता है कि वे हमारे दोनों देशों के बीच संबंधों से संबंधित विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। मैंने कहा, मैं आपको आधिकारिक तौर पर दूत के रूप में नहीं भेज सकता, क्योंकि विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और विशेष सेवाओं के प्रशिक्षित लोग ही ऐसा कर सकते हैं। जैसा कि इस्तांबुल में हमारी बातचीत के दौरान हुआ था, उन्होंने कहा, दुर्भाग्यवश मैं आपको आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं दे सकता, मैं बस आपको सूचित करना चाहता था। मैं वहां जाऊंगा, सुनूंगा और फिर आपको बता सकता हूं कि वे किस बारे में बात करने वाले हैं। इसके बाद वे कीव चले गए और वहां उन्होंने जेलेंस्की से उनके आवास पर मुलाकात की।
0: У него там резиденция. Не на Валдае. Вернулся. Я с ним встретился.
1: फिर वो वापस आ गए। मैं उनसे मिला। आप जानते हैं, कई बातें हैं, लेकिन मुख्य बात यह है कि श्री जेलेंस्की ने बैठक का अनुरोध किया है। मैंने कहा कि मैंने कभी भी मिलने से इनकार नहीं किया, लेकिन मैं जानता हूं कि सिर्फ मिलने के लिए मिलना ठीक नहीं है। खैर, मैंने देखा है कि मिन्स्क समझौतों का जिक्र हो रहा है, लेकिन हम पूरी रात उन मिन्स्क समझौतों पर काम कर रहे थे, उन्हें अंतिम रूप दे रहे थे, और फिर फ्रांस और जर्मनी के पूर्व नेताओं ने बाद में कहा कि ये समझौता खोखला है। सभी मिन्स्क समझौते एक ही बात पर केंद्रित थे, वो ये कि यूक्रेन के पुनर्शस्त्रीकरण के लिए और समय मिल जाए। हमें फिर से ऐसी किसी चीज की क्या जरूरत है? मैंने कहा कि मुझे बैठक में कोई मतलब नहीं दिखता। ये सिर्फ यूक्रेन के लिए जरूरी है, क्योंकि वे रूस की सेनाओं के आक्रमण को रोकना चाहते हैं। हमें समझौतों, व्यवस्थाओं की जरूरत है, 6 महीने या 1 साल के लिए नहीं, बल्कि लंबे समय के लिए। पहले विशेषज्ञों को काम करने दें, कोई हल निकालने दें, और फिर हम हस्ताक्षर करने के लिए मिल सकते हैं, लेकिन पहले हमें एक समाधान पर पहुंचना होगा, और यही मुख्य मुद्दा है। मुझे लगता है कि दर्शक मेरी बात समझ जाएंगे, खासकर रूस के लोग।
0: И аудитория меня поймет, особенно российская. Это было, по-моему, 21-го.
1: Мне кажется, что это 21 мая की बात है। वहीं 22 मई को यूक्रेनी सशस्त्र बलों ने लुहांस्क पीपल्स रिपब्लिक के कॉलेज छात्रावास पर एक जघन्य आतंकवादी हमला किया, जिसमें किशोरों की हत्या कर दी गई। ये एक जघन्य अपराध है। ये पत्र किस बारे में है? क्या यह व्यक्तिगत मुलाकात के लिए माहौल बनाने का एक साधन है, या फिर इस पत्र का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी व्यक्तिगत मुलाकात न हो पाए? मुझे लगता है कि उनकी दिलचस्पी बातचीत में नहीं है, लिहाजा हमें इस पत्र और उसके लिखने वाले को संबोधित नहीं करना चाहिए। इसीलिए मैं हमारे लड़ाकों और सीमा पर तैनात हमारे सैनिकों को संबोधित कर रहा हूं। मैं उनसे कहना चाहता हूं, साथियों, सैनिकों और नाविकों, एडमिरलों, जनरलों, अधिकारियों, देश की निगाहें आप पर टिकी हैं, देश को आप पर गर्व है और आप ही पर सबकी आशाएं टिकी हैं। भाइयों, अपने काम में पूरी मुस्तैदी से लगे रहिए।
2: Is there a waiver or carve out for India in acquiring and procuring Su-57s and S-500 air defense systems from the United States of America, and will that stand? How do you think India should be dealing with America and the sanctions?
0: India всегда ведёт себя как
3: Well, I would say India always acts as a sovereign country, and under the leadership of Prime Minister Modi, any potential threats of sanctions would boomerang immediately. And I know that for sure we've been in close talks with Prime Minister Modi for a long while, and he knows that for sure. We all remember time when Prime Minister Modi was banned from going to the territory of the United States of America. And I know that Prime Minister Modi would never forget about it. Now he's a prime minister, all the sanctions have been eliminated, and the relationship between the USA and India are developing successfully, as I understand. And India is a sovereign country, and it is free to choose those products that they consider to be most up-to-date and most applicable for them, and obviously offering the best price-quality ratio. No matter what people say, India has always been acting in this manner. How? Well, India is always guided by its national interests. Of course, that is a very sensitive area, the defense area. But one thing is particularly important. It is crucially important. And the thing is that our cooperation with India, just like with all other partners of ours, is not subject to political environment. We can't be dictated. Do not deliver that to India. Nobody can dictate us, and nobody would even try to do that. We are always going to do what we consider to be right, and we will always stand true to commitments given to our partners, especially such partners as India. And in this key, in this spirit, according to those rules, we do our business, and this is how we're determined to continue.
4: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. In association with
5: Bharat ki apni electric savari.
6: This is the sound of Jack buzz cutting his way to a small fortune. To Jack, every time he cuts his own hair, that's $50 right in his pocket. If Jack sees DIY buzz cuts as a saving strategy, Wells Fargo is right behind him. And with their mobile app, tracking his savings is easy.
7: Oh, ouch.
6: However you make money work, we can work with that.
8: Mobile carriers, message and data rates may apply. Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
9: Take it easy with Soft Hits. Soft Hits brings together relaxing pop favorites from the 70s, 80s, and 90s. Familiar songs, easy melodies, and a sound that lets you slow down. Perfect for stepping back and catching your breath. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Soft Hits to start listening now.
10: Sokudo,

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
3: एयू, सोच बदलो और बैंक भी।
4: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
5: मम्मी पापा, आपका मुझ पर भरोसा था कि मेरी बेटी पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाएगी, पर दोबारा नीट देने की हिम्मत नहीं है मेरे अंदर। पहले नीट के पेपर में मेरे अच्छे मार्क्स आ रहे थे, पर दोबारा पेपर अच्छा जाए इसकी क्या गारंटी है। सॉरी मम्मी पापा, मैंने सब बर्बाद कर दिया आप दोनों का।
6: सोचिए ये शब्द किसका कलेजा नहीं चीर देंगे।
7: हम कर्ज ले लेके पढ़ा रहे थे, हम किसी से मांग मांग के उसकी फीस भर रहे थे।
8: कितने सारे सपने दिखा के चली गई उसके नाम की आगे कर।
6: मध्य प्रदेश की आकांक्षा की मौत सिस्टम पर वो करारा तमाचा है जिसकी गूंज सुनाई तो पड़ रही है, लेकिन सवाल वही है कि क्या कुछ दिनों के हंगामे के बाद पेपर लीक माफिया और शिक्षा तंत्र में बैठे धंधेबाजों पर फिर तो चुप्पी नहीं ओढ़ ली जाएगी। आज जो विपक्ष में है वे नीट पेपर लीक और सीबीएसई एसएम की गड़बड़ी पर सरकार से तीखे सवाल पूछ रहे हैं।
9: दुख है हमें, लेकिन कार्रवाई में कभी कमी नहीं रखा।
10: How many questions normally will someone apply for?
11: I guess अभी जो problem आ रही है, they can apply for all the questions.
10: So how many total questions?
11: 30-35 around questions होते हैं.
10: So huge amount of money.
11: Huge amount of money is involved.
6: विपक्ष को सवाल पूछने भी चाहिए, जवाबदेही तय होनी ही चाहिए, लेकिन शिक्षा तंत्र को फेल करने वालों का जाल बहुत गहरा है और बहुत पुराना है। 2002 से 2025 के बीच 1,00,000 से अधिक उम्मीदवारों वाली 45 लीक परीक्षाओं ने 3,86,00,000 छात्रों को प्रभावित किया। लीक के इन मामलों में 1,658 लोगों की गिरफ्तारी हुई, 925 पर चार्जशीट दाखिल की गई, 2 मामलों में 18 लोग दोषी करार दिए गए, 43 आरोपी जेल में बंद हैं। आरोपों के मुताबिक पेपर लीक माफिया का कोचिंग माफिया के साथ सांठगांठ होता है। इस बार की नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में भी आरोपियों के तार कोचिंग सेंटर से जुड़े हैं, इसलिए शिक्षा तंत्र के ओवरहॉल की जरूरत है। छात्र तो अपना भविष्य बनाने की परीक्षा देते हैं, अब की बार सरकार को परीक्षा में पास होकर दिखाना है। आज तक ब्यूरो,

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

0: बंगाल से आती बगावत की इस आवाज को बड़े गौर से सुना जा रहा है। दिल्ली टकटकी लगाए बंगाल की ओर देख रही है। तृणमूल कांग्रेस की आपदा में उसे अवसर नजर आ रहा है। कैसे, ये समझ लीजिए। 17 अप्रैल को लोकसभा में 131वां संविधान संशोधन बिल गिर गया। ये बिल महिला आरक्षण कानून में संशोधन के लिए लाया गया था। एनडीए बिल के पक्ष में 2/3 वोट हासिल करने में नाकाम रहा। बिल के पक्ष में 298 वोट मिले, जबकि इसके विरोध में 230। मोदी सरकार को उपस्थित 528 सांसदों में से 352 सांसदों का समर्थन चाहिए था। लेकिन ये तब की बात थी। विपक्ष एकजुट था। संख्या बल में सरकार पर भारी पड़ा था। विपक्षी एकता के सामने सरकार को हार का मुंह देखना पड़ा। हालांकि पीएम मोदी ने तब कहा था कि आज हम हारे जरूर हैं, लेकिन इरादा नहीं टाला है।
1: कल हमारे पास संख्या बल नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हार गए। हमारा आत्मबल अजय है। हमारा प्रयास रुकेगा नहीं, हमारा प्रयास थमेगा नहीं। हमारे पास आगे भी और मौके आएंगे।
0: जिस मौके की बात पीएम मोदी कर रहे थे वो बहुत जल्दी आ गया। अप्रैल में महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा में पारित नहीं हो सका। तब सरकार ने परिसीमन विधेयक 2026 भी वापस ले लिया था। लेकिन एक महीने के भीतर राजनीतिक हालात तेजी से बदल गए। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस बुरी तरह परास्त हो गई। तृणमूल कांग्रेस में बगावत शुरू हो गई। ममता कमजोर पड़ गई। उधर तमिलनाडु में डीएमके को करारी हार का सामना करना पड़ा। इस नतीजे का असर इंडिया गठबंधन की एकजुटता पर पड़ा। कांग्रेस ने विजय की पार्टी टीडीके से हाथ मिला लिया, सरकार में शामिल हो गई। नाराज डीएमके ने इंडिया गठबंधन से दूरी बना ली, यहाँ तक कि संसद में बैठने के लिए अलग जगह आवंटित करवा ली और 8 जून को होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक में ये कहकर शामिल होने से इनकार कर दिया कि कांग्रेस मौजूद रहेगी तो वो दूर ही रहेगी। तो बंगाल और तमिलनाडु के घटनाक्रम ने मोदी सरकार को नया हौसला दिया है। खबर है कि मोदी सरकार मॉनसून सत्र में परिसीमन विधेयक को दोबारा पेश कर सकती है। सरकार परिसीमन पर आम सहमति बनाने के लिए डीएमके और टीएमसी जैसी क्षेत्रीय पार्टियों से बात करने पर विचार कर रही है। सूत्रों ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के कई सांसद परिसीमन के पक्ष में हैं और उन्होंने सरकार के दृष्टिकोण पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। डीएमके ने भी कोई कड़ा रुख नहीं अपनाया है। वो सरकार की तरफ से तैयार किए जा रहे विधेयक के नए मसौदे का इंतजार कर रहे हैं। अगर 22 सांसदों वाली डीएमके बिल को समर्थन देने के लिए राजी हो जाती है और टीएमसी सांसदों का एक धड़ा भी साथ आ जाता है तो सरकार के लिए संख्या बल जुटाना आसान हो सकता है। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
2: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
3: खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब से कुछ ही क्षणों में वारदात लेकर हमारे साथी शम्स होंगे आपके साथ। आप देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: आज तक के साथ मंच पर पुतिन समेत दुनिया के बड़े दिग्गज रूसी राष्ट्रपति ने भारत की तारीफ की, कहा प्रमुख साझेदार आईटी सेक्टर के अग्रणी देशों में शामिल है भारत। सूरत में पीएम का विपक्ष पर बड़ा हमला, बोले अराजकता फैलाकर अवसर तलाश रही है कांग्रेस, देश को नीचा दिखाने में जुटे हैं निराशावादी नेता। अग्निकांड के बाद दिल्ली सरकार का बड़ा एक्शन, अवैध निर्माण पर चलाया बुलडोजर, कुछ इलाकों में सीलिंग, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की बैठक में दोषी अधिकारियों पर सख्ती के आदेश। बागी नेता ऋतुव्रत को नेता विपक्ष बनाए जाने के खिलाफ सोमवार को हाईकोर्ट जाएंगी ममता, आज ममता की बैठक में पहुंचे सिर्फ 3 लोकसभा सांसद। और मराठा समाज पर फडणवीस सरकार का बड़ा निर्णय, महाराष्ट्र में ओबीसी की तरह शिक्षा में मिलेगा लाभ और दूसरी सहूलियतें, कुल 8 योजनाएं शुरू करने का निर्णय।
1: नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। पंजाब के मोहाली से एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई। एक अमेरिकी लॉजिस्टिक कंपनी के दफ्तर में एक शख्स अचानक एक लड़की पर हमला कर देता है। मुश्किल से 30 से 40 सेकंड के अंदर वो उस लड़की पर चाकू के 25 से 30 वार करता है। वो लगातार लड़की के गले और सीने पर चाकू से हमला कर रहा था। इसके बाद फिर उसी चाकू से वो अपने गले और सीने पर भी बेतहाशा वार करता है। लड़की की मौत हो चुकी है जबकि लड़के की हालत अब भी नाजुक बनी हुई है। ये पंजाब के मोहाली के फेज 2 और सेक्टर 66 में मौजूद अमेरिकी लॉजिस्टिक कंपनी का दफ्तर है। इसी दफ्तर में 28 साल की डिंपल डिस्पैच सेक्शन में काम करती थी। गुरुवार 4 जून की शाम के करीब 7 बजे थे, डिंपल अपनी सीट पर बैठी काम कर रही थी। तभी पीछे से एक शख्स आता है और अचानक पीछे से ही उसके गले पर चाकू से हमला करना शुरू कर देता है। डिंपल अब घबरा कर कुर्सी से उठती है और जान बचाने के लिए दूसरी तरफ भागने लगती है। वो शख्स उसके पीछे पीछे भागता है और फिर उसे दोबारा पकड़ लेता है। चाकू अब भी उसके हाथ में है और वो लगातार डिंपल पर बेतहाशा उसी चाकू से वार किया जा रहा है। इस बीच दफ्तर के कुछ लोग ये मंजर देखकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं पर वो उन्हें भी वही चाकू दिखाकर धमकाता है। फिर भी हिम्मत जुटाकर एक कलीग उससे चाकू छीन लेता है, लेकिन तभी वो दूसरा चाकू निकालता है और डिंपल पर फिर से हमले शुरू कर देता है। इस बार गर्दन के साथ साथ वो डिंपल के दिल पर भी चाकू से वार कर रहा था। अब डिंपल जमीन पर गिर चुकी थी। 30-40 सेकंड के अंदर ही वो शख्स डिंपल के गर्दन और सीने पर करीब 25 से 30 वार कर चुका था। जब उसे यकीन हो गया कि अब डिंपल नहीं बचेगी, तब उसने उसी चाकू से उसी दफ्तर में खुद के गले और सीने पर बेतहाशा वार करना शुरू कर दिया। अब तक पूरे दफ्तर में अफरा तफरी मच चुकी थी। थोड़ी देर बाद मौके पर पुलिस आती है और दोनों घायलों को उठाकर पास के एक प्राइवेट अस्पताल में ले जाती है, पर अस्पताल पहुंचने से पहले ही डिंपल दम तोड़ चुकी थी, जबकि हमलावर की सांसें अब भी चल रही थी। डॉक्टर उसका इलाज शुरू करते हैं, लेकिन जिस तरह से उसने खुद के गले और सीने पर चाकू के अनगिनत वार किए थे, उससे उसकी हालत भी अब भी नाजुक बनी हुई है।
2: बेसिकली 25 से 30 बार चाकू का उसने वार किया, गर्दन पे भी है और पीछे हार्ट पे भी है। सो यू कैन से सीरियस, उसने मतलब 25 से 30 बार किए थे उसने, और अपने भी उसने ऐसे ही अपने आप को भी स्टैब किया है, अपने गले में भी उसके हैं, हार्ट में भी उसने अपने स्टैब किया अपने आप को भी, और ये सारी जो हैं जो आप इनके वुंड्स बारे दैट डॉक्टर कैन टेल यू बेटर।
1: एक विदेशी कंपनी के दफ्तर के अंदर इस तरह सरेआम हुए इस कत्ल से दफ्तर का हर स्टाफ सन्न था, पर सवाल ये था कि डिंपल को मारकर खुद को मारने की कोशिश करने वाला ये शख्स कौन था। ये दफ्तर के अंदर कैसे आए, डिंपल से इसकी क्या दुश्मनी थी। तो शुरुआती तफ्तीश के बाद जो कहानी सामने आई वो ये है। डिंपल को मारने वाले इस शख्स का नाम है हरजिंदर सिंह मान उर्फ हैरी। हैरी और डिंपल दोनों ही पटियाला के रहने वाले हैं और पिछले 3 साल से दोनों ही इसी अमेरिकी लॉजिस्टिक कंपनी में साथ काम किया करते थे। एक साथ काम करने के दौरान दोनों में पहले दोस्ती और फिर प्यार हो गया, लेकिन 6 महीने पहले डिंपल और हैरी के बीच कुछ अनबन हुई और दोनों का ब्रेकअप हो गया। डिंपल अब हैरी को भुला चुकी थी, यहाँ तक कि अब डिंपल के घर वाले उसकी शादी के लिए रिश्ता भी देखने लगे थे। 4 जून की रात को ही डिंपल को अपने घर पटियाला जाना था। घर वाले उसके रिश्ते की बात करने वाले थे। घर वालों का कहना था कि उन्हें तो डिंपल और हैरी के रिश्ते और ब्रेकअप के बारे में कोई जानकारी तक नहीं थी।
3: बात थी 2 दिन पहले बात हुई थी, करीब कोई मंगलवार को। अब वो बात हुई थी राहुल से, उसका भाई है, उससे बात हुई थी, हालचाल पूछा। और घरों के अंदर जैसे लड़कियों की उम्र होती है तो हम रिश्ते वगैरह ही तलाश करते हैं, तो डिंपल को भी इस बात का पता लग गया भी मेरा रिश्ता मेरे परिवार वाले कर रहे हैं। तो उसने कभी ऐसी शिकायत की नहीं भी मेरा रिश्ता यहाँ है, वहां मेरी बात है, कोई ऐसी चर्चा नहीं। डिंपल इसलिए आना था भी राहुल से बात हुई थी, मैं अब ये जॉब छोड़ के रिश्ता वगैरह करके अपना घर बसाना चाहता
4: हूँ। तो अपने जैसे कि उसने आना ही था, बात हुई आपके साथ उसकी, और लड़के का कुछ पता हुआ, लड़के के साथ कोई बात वगैरह होती थी या आना जाना था उसके साथ?
3: मैं करूँ लड़के के विषय में हमारे पूरे परिवार को कुछ पता ही नहीं है। हमारे परिवार की संख्या जो है कम से कम 80 है। हम हर हफ्ते यहाँ बैठते हैं, बातचीत करते हैं, कोई ऐसी चर्चा ही नहीं थी।
1: उधर ब्रेकअप के बाद से ही हैरी परेशान रहने लगा था। उसने डिंपल के साथ दोबारा रिश्ता शुरू करने की कोशिश की, लेकिन डिंपल इसके लिए तैयार नहीं थी। शुरुआती तफ्तीश के बाद पुलिस का भी यही मानना है कि शायद इसी ब्रेकअप के चलते हैरी ने डिंपल को मार डाला।
2: सो सीसीटीवी फुटेज और एफएसएल की टीमें भी मौके पर पहुंच गई थी, और उसकी साइंटिफिक तफ्तीश और ई साक्ष्य आजकल जो नए कानूनों के हिसाब से वो करनी होती है, उसके करने और इन्वेस्टिगेशन से ये सामने आया कि जो हरजिंदर मान है उस जो भी पटियाले का रहना है, और डिंपल को पीछे मतलब शी वॉज नॉट सीइंग हर, क्योंकि वो अपने कंप्यूटर पे काम कर रही थी, उसके 3 स्टेप पीछे वो कंप्यूटर पे काम करते एकदम उठा और उसको मतलब चाकू के साथ उसने वार किया।
5: सर क्या कारण रहे हैं, क्योंकि ऐसा भी बताया जा रहा है कि दोनों रिश्ते में थे, रिलेशनशिप में थे, और ये रिलेशनशिप गॉन सॉर जिल्टेड लवर वाली थी।
2: हाँ बेसिकली अभी तक तो जो प्राइमरी ये आ रहा है ये तो यही आ रहा है, पर डीप इन्वेस्टिगेशन के बाद वी कैन लेट यू नो। मतलब पहले ये आपस में क्लोज थे क्योंकि दोनों पटियाले के रहने वाले थे, अब थोड़ी कोई इनकी आपस में कहा सुनी हुई इसके कारण नहीं हो सकता।
5: ये वो कंपनी है, दूसरी मंजिल पे वो काम करती थी, और उसके पीछे हरजिंदर एलियस हैरी मान है जो उसका पूर्व प्रेमी है। दोनों एक दूसरे को 2-3 साल से जानते थे, दोनों ही पटियाला के रहने वाले थे, और उसी बीच में दोनों के बीच में कुछ खटास रही जिसके बाद से वो दोनों अलग हो गए थे। लेकिन ऐसा बताया जाता है कि लड़का वापस रिश्ता बनाना चाह रहा था डिंपल से, उसने जब मना किया उसके बाद इस तरह का घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। और आपको ये भी बता दें कि बाकी इम्प्लॉयज वहां पे मौजूद थे जिन्होंने उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन लड़के ने वहां पर उसी चाकू से लड़की के गर्दन पे और उसके दिल पर तकरीबन 25 से 30 बार वार किया और लहूलुहान कर दिया। उसके बाद अगर हम बात करें, खुद भी उसने अपने आप को गले पे और दिल पर चाकू मारने की कोशिश की, और वहीं पर दोनों को घायल अवस्था में निजी अस्पताल ले जाया गया।
1: डिंपल के घर वाले इस बात पर हैरान हैं कि इतनी बड़ी कंपनी के दफ्तर के अंदर भी सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे। अगर सुरक्षा होती तो कोई चाकू लेकर दफ्तर के अंदर नहीं जा पाता।
3: ड्यूटी के टाइम पे इस तरह की घटना हो जाना, लड़की का शरेआम हत्या हो जानी और वो भी फुटेज के अंदर आ जाना, ये कंपनी का दोष। कंपनी को चाहिए जॉब में उस लड़के को उसने रखा है, बिटिया को भी रखा है, उसके बारे में सारी जानकारी कंपनी को है, और कंपनी अगर लुकोया है, ये बात छुपा करके रखी है, तो सबसे बड़ी दुश्मनी है। लाइन ऑर्डर मेंटेन करना दफ्तर के अंदर कंपनी का काम है।
1: हालांकि मोहाली पुलिस का कहना है कि दफ्तर में सुरक्षा की इस लापरवाही को लेकर भी वो मामले की जांच कर रही है।
5: मैनेजमेंट से आप लोग क्या बात करेंगे, क्योंकि ये कंपनी यूएस बेस्ड है और उनके टाइमिंग भी वैसे हैं, देर शाम की ये घटना है, तो ये चाकू कहाँ से लाया और क्या कोई चेकिंग थी? आपको लग रहा है कि कोई लैप्स ऑफिस की तरफ से रहा हो या इस एंगल पे भी आप?
2: हम वी विल बी डूइंग दिस इन्वेस्टिगेशन, सारे एंगल्स में इन्वेस्टिगेशन देखनी होती है भी कहाँ से ही हैज बोरोड द वो नाइफ जो चाकू है, कहाँ से लेकर आए हैं, कैसे वो सारा, दिस इज ऑल पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन. वी विल जब इसकी अरेस्ट डालेंगे तो वी विल लेट यू नो एवरीथिंग.
1: पुलिस के मुताबिक हैरी पटियाला में अकेले रहा करता था. इस वक्त हैरी के माँ बाप अमेरिका में, उन्हें इस हादसे की खबर दे दी गई है. फिलहाल हरजिंदर सिंह मान उर्फ हैरी अस्पताल में भर्ती है. डॉक्टरों के मुताबिक उसकी हालत अब भी नाजुक है. उधर पुलिस इंतजार कर रही है हैरी के खतरे से बाहर आने का, ताकि वो उससे पूछताछ कर इस केस की पूरी सच्चाई तक पहुंच सके, क्योंकि डिंपल अब इस दुनिया में है नहीं. डिंपल के घर वालों के मुताबिक उन्हें डिंपल और हैरी के रिश्ते की कोई भनक नहीं है. अब जाहिर है ऐसे में आखिरी सच हैरी ही बता सकता है, बशर्ते वो होश में आ जाए. मोहाली से कमलजीत कौर संधू के साथ मुनीश कौशल, पटियाला आज तक. 24 साल की एक MBA स्टूडेंट बबीता अपने दो दोस्तों के साथ ट्रैकिंग के लिए उत्तराखंड जाती है, लेकिन 29 मई को वो अचानक रहस्यमय ढंग से गायब हो जाती है. पूरे 7 दिन बीत चुके हैं, लेकिन बबीता का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है. इस दौरान जंगल से लेकर झील तक उसकी तलाश जारी है. बबीता को ढूंढने के लिए ड्रोन तक से इलाकों को खंगाला जा रहा है.
6: उत्तराखंड की वादियों में बसा ये है ट्रैक दयारा बुकिया, और ये है इस ट्रैक का इंसेप्शन पॉइंट यानी शुरुआती बिंदु, गांव रेथल. तकरीबन 21 किलोमीटर लंबे इस ट्रैक को नापने के लिए दुनिया भर के बीसियों पर्यटक हर साल उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में पहुंचते हैं, और इसे पूरा करने में तकरीबन 4 से 5 दिनों का वक्त लगता है. रामनगर की रहने वाली 24 साल की MBA स्टूडेंट बबीता पांडे ने भी अपने दो दोस्तों के साथ इसी एडवेंचर की तलाश में उत्तरकाशी के इस दयारा बुग्याल ट्रैक तक पहुंची थी. तारीख थी 29 मई, लेकिन अभी उनकी ट्रैकिंग शुरू ही हुई थी कि बीच रास्ते से बबीता ऐसे गायब हो गई कि उसकी गुमशुदगी अब एक पहेली बन चुकी है. बबीता के गायब होने के बाद अगर पीछे कुछ बचा है तो वो है बबीता का एक बैग, जिसे लेकर वो ट्रैकिंग के लिए गई थी, और ये आखिरी CCTV फुटेज जो 28 मई को दिन में उत्तरकाशी के एक होटल के बाहर रिकॉर्ड हुई. इस CCTV फुटेज में बबीता अपने दो दोस्तों के साथ दिखाई दे रही है. फिलहाल उसे गुम हुए 7 दिनों का वक्त गुजर चुका है, लेकिन बबीता का दूर दूर तक कोई सुराग नहीं है. सवाल है, आखिर उसके साथ क्या हुआ? वो कहां चली गई? आखिरी बार उसे कब और किसने देखा? क्या वो अपनी मर्जी से कहीं गई, या फिर उसकी गुमशुदगी के पीछे कोई और वजह है? आसमान की ऊंचाइयों से ड्रोन के जरिए चलती सर्चिंग, उबड़ खाबड़ और जंगली रास्तों में हर कोने की कॉम्बिंग, झील की गहराइयों में गोताखोरों की डीप डाइविंग, और CCTV और मोबाइल फोन के सहारे डिजिटल मैपिंग. बबीता की गुमशुदगी का राज क्या हो सकता है और उसकी तलाश कहां तक पहुंची, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे. लेकिन फिलहाल आइए उसके ट्रैकिंग के लिए घर से निकलने से लेकर गायब होने तक की इस पूरी कहानी को एक बार सिलसिलेवार तरीके से समझने की कोशिश करते हैं. बबीता 25 मई को उधम सिंह नगर से अपने दो दोस्तों के साथ निकली थी. इसके बाद वो अलग अलग जगहों से घूमती हुई 28 मई को रेथल गांव पहुंची. ट्रैकिंग पर जाने से पहले बबीता ने घर वालों को बताया था कि वो अपनी कुछ फीमेल फ्रेंड्स के साथ ट्रैकिंग पर जा रही है. चूंकि बबीता पहले भी कई बार ट्रैकिंग पर जा चुकी थी, घर वालों ने उसकी इस ट्रिप पर कोई भी एतराज नहीं किया. मगर सच्चाई कुछ और थी. बबीता लड़कियों के साथ नहीं, बल्कि दो लड़कों के साथ ट्रैकिंग पर गई थी. और उसका सबूत उसकी गुमशुदगी के पहले के ये आखिरी सीसीटीवी फुटेज हैं। इनमें वो एक होटल के बाहर गाड़ी से उतरती हुई और कहीं जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ बबीता के साथ दो लड़के भी देखे जा सकते हैं।
7: जैसे हम लोग जो पूछताछ कर रहे हैं, तो ये जो युवती है ये अपने फ्रेंड्स के साथ 25th को ही यहाँ आई थी, इस तरफ, मतलब इस तरफ तो नहीं एग्जैक्टली, ये देहरादून आ गई थी। तो उसके बाद से ये यहाँ देहरादून भी, इनका पता चल रहा है कि देहरादून में भी रहे एक दिन, उसके बाद ये दो दिन यहाँ पे हर्षिल में और गंगोत्री धाम में भी इन्होंने दर्शन किए हैं। तो उसके बाद ये जो 28th को यहाँ आए हैं हमारे उत्तरकाशी जिले में, उत्तरकाशी में 28th को यहाँ यहाँ पे आराम से रहे हैं। 29th की रात्रि से कह रहे हैं ये मिसिंग है, तो अभी हम उस पर पूरा देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं।
6: असल में उधम सिंह नगर से निकलकर बबीता अपने इन्हीं दोस्तों के साथ गांव रेथल पहुंची थी और यहां से तीनों ने ट्रैकिंग की शुरुआत करते हुए गोई तक अपना सफर पूरा किया। गोई के बाद ही असली ट्रैकिंग शुरू होती है। जानकारी के मुताबिक बबीता और उसके दोस्तों ने गोई के पास ही एक टेंट लगाया था और रात को वहीं रुके थे। ये पूरा इलाका जंगलों से घिरा है, लेकिन सुबह होने पर जब बबीता के दोस्तों की आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि बबीता गायब है, वो टेंट में नहीं थी। हालांकि बबीता का बैग टेंट में ही रखा था। बबीता को गायब देखकर पहले तो उसके दोस्त घबरा गए और फिर उन्होंने पुलिस को इसकी खबर दी। बबीता को आखिरी बार देखने वाले उसके दोस्तों ने पुलिस की पूछताछ में ये स्वीकार किया है कि उस रात वो दोनों टेंट लगाने के बाद शराब पीने लगे थे, जिसके बाद बबीता कुछ देर के लिए टेंट से बाहर निकल गई थी। चूंकि वो शराब के नशे में थे इसलिए उनकी आंख लग गई और उन्हें बबीता का ख्याल ही नहीं रहा। लेकिन जब अगले दिन उनकी आंख खुली तो बबीता गायब मिली। बबीता सिर्फ एक चप्पल पहने हुए अपने मोबाइल फोन के साथ टेंट से बाहर निकली थी और गुम हो गई। पुलिस को बबीता की गुमशुदगी की जानकारी 30 मई की रात को मिली। चूंकि यह इलाका जंगली है और यहाँ जंगली जानवरों की भी मौजूदगी है, पुलिस ने लड़की को अपने तौर पर ढूंढने के साथ साथ उसकी गुमशुदगी के बारे में वन विभाग को भी सूचित किया और तलाशी अभियान में कई और महकमों की मदद ली। यहाँ तक कि पुलिस ने बबीता के पोस्टर वगैरह बनाकर भी आसपास के इलाकों में सर्कुलेट किया, ताकि अगर किसी को उसके बारे में पता हो तो वो पुलिस को बताएं।
7: तो जब 30 की रात्रि में हमें ये सूचना मिली तो तत्काल हमने इसमें कार्रवाई करते हुए इंस्पेक्टर मनेरी को, जिनके एरिया में वो दयारा बग्याल वाला क्षेत्र आता है, तो हमने उनको और एसओजी की टीम को उसमें तत्काल ही लगा दिया था। साथ में हमने एसडीआरएफ की, क्योंकि वो एरिया सारा फॉरेस्ट का है, तो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स को भी और एसडीआरएफ को भी लिया था। नेक्स्ट डे जो कल था, मतलब 31 मई को, इसमें हमने एनडीआरएफ की भी मदद ली और हमारा जो इसमें रेस्क्यू कर रहे हैं उसमें हमारी लोकल की पुलिस टीम है, साथ में हमने इसमें एसओजी को भी लगाया हुआ है, SDRF, NDRF, Forest Official, और जो वहाँ के लोकल रेजिडेंट्स हैं वो सब भी इसमें, उसको मिसिंग जो फीमेल है उसके हमने कई पोस्टर्स वगैरह भी बनाए हैं और सभी में वहाँ पूछताछ कर रहे हैं और प्रॉपर ट्रैकिंग हो रही है, हमारा डॉग स्क्वाड भी इसमें काम कर रहा है।
6: लेकिन पुलिस की इस कोशिश का भी कोई असरदार नतीजा अब तक सामने नहीं आया है। फिलहाल पुलिस ने इस सिलसिले में FIR दर्ज कर ली है और बबीता के साथ आखिरी बार मौजूद दोनों लड़कों से पूछताछ कर रही है, मगर नतीजा सिफर है।
7: इसमें हमने कल रात्रि में ही जब उनके फैमिली मेंबर्स यहाँ आ गए थे तो उसमें उसकी हमने एक FIR भी इसमें दर्ज की है और इसमें जो दो लोग जो उसके कंपेनियन बताए जा रहे हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है। तो इसमें हम पूरा प्रयास कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि इसमें जल्दी हमें कुछ सफलता मिले।
6: अब सवाल यह है कि आखिर बबीता की गुमशुदगी के पीछे क्या क्या संभावित वजहें हो सकती हैं? तो तफ्तीश में पुलिस उन सारी वजहों को एक्सप्लोर कर रही है। अव्वल तो यही है कि बबीता किसी को बताए बगैर खुद ही अपनी मर्जी से कहीं चली गई हो। दूसरा ये कि बबीता के साथ ट्रैकिंग पर गए दोस्त झूठ बोल रहे हैं और उन्होंने ही बबीता को कहीं गायब कर दिया हो। तीसरा ये कि वो टेंट के बाहर निकली हो और कोई जंगली जानवर उसे उठा ले गया हो। और चौथा ये कि वो या तो जंगलों में रास्ता भटक गई हो या फिर उसके साथ कोई और अनहोनी हुई हो। इन आशंकाओं के मद्देनजर 150 से ज्यादा लोगों का लवाजमा बबीता को ढूंढने में लगा है। पुलिस के साथ साथ SDRF, NDRF, SOG, ITBP, वन विभाग, डॉग स्क्वाड, ड्रोन सर्चिंग टीम और यहाँ तक कि गोताखोर भी बबीता की तलाश कर रहे हैं।
7: तो इसमें हमारी लोकल पुलिस और एसओजी और साथ में हमारी एसडीआरएफ है, हमारा एनडीआरएफ भी है अपने डॉग टीम के साथ, और फॉरेस्ट के ऑफिशियल्स हैं और लोकल रेजिडेंट, और यहाँ की जो डिज़ास्टर की जो फोर्स है वो भी है, बल्कि हम इसमें ड्रोन्स वगैरह की भी हेल्प ले रहे हैं। तो काफ़ी एक्सटेंसिव टीम है हमारी, काफ़ी लोग हैं उसमें, अराउंड 100 आप समझ लीजिए।
6: 5 दिनों की तलाशी के बाद भी जब बबीता का कुछ पता नहीं चला तो 6ठे दिन जिला प्रशासन ने गोई के पास मौजूद एक झील की गहराई को नापने का फैसला किया और इसके लिए खास तौर पर गोताखोरों की टीम बुलाई गई। वैसे भी अगर खुदा न खास्ते बबीता किसी जंगली जानवर का शिकार बनी होती तो फिर उसके कुछ न कुछ निशान अब तक की तलाशी में जरूर नजर आते। ऐसे में अब ये शक होने लगा है कि कहीं बबीता गलती से पानी में तो नहीं गिर गई। इसी के बाद लगभग 9 फीट गहरे इस झील को भी खंगाला गया लेकिन बबीता का कोई सुराग नहीं मिला। अब जब बबीता की तलाश शुरू हुई तो पहले ही कदम पर शासन प्रशासन और खासकर उत्तरकाशी के पर्यटन विभाग की घोर लापरवाही और पर्यटन के नाम पर चल रही धंधेबाजी का खुलासा हो गया। असल में ट्रैकिंग के लिए जाने वाले हर पर्यटक के बारे में एक्सप्लोर उत्तरकाशी नाम की एक वेबसाइट में पहले से ही जानकारी दर्ज करवानी होती है ताकि पर्यटन विभाग के पास हर सैलानी की खबर मौजूद रहे। लेकिन जब बबीता की गुमशुदगी के बाद पर्यटन विभाग ने अपने तौर पर उसका ब्यौरा खंगालना शुरू किया तो देखा कि बबीता और उसके नाम से तो उनके डॉक्यूमेंट्स में कोई एंट्री ही नहीं है और जो एंट्री हुई भी है वो फर्जी है।
8: संज्ञान में आया है कि एक उस नाम लिखी हुई एक परमिशन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जमा की गई है एजेंसी द्वारा और उसको चेक करने पर ये पाया गया है कि वो उसमें उसने पीडीएफ एडिटर या किसी दूसरे माध्यम से ऐसा प्रतीत होता है कि कोई एडिट एडिशन किया है और उसमें लिख दिया गया है बबीता पांडे, जबकि इस नाम से कोई अनुमति पर्यटन विभाग का जो पोर्टल है explore.uttarkashi.com, इनफैक्ट विभाग का नहीं बल्कि जिला प्रशासन का पोर्टल है, तो उससे जनरेट नहीं हुई है।
6: फिलहाल डॉक्यूमेंटेशन के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाले ट्रैवल एजेंसी का लाइसेंस पर्यटन विभाग ने सस्पेंड कर दिया है। लेकिन यह भी सच है कि इस फर्जीवाड़े के बाद एक लड़की 7 दिनों से गायब है और उसका कोई पता ठिकाना किसी के पास नहीं।
8: जो भी एजेंसीज की जिम्मेदारी होती है जो ट्रैक पर लोगों को लेकर के जाती है कि वो उस पर अनुमति प्राप्त करें, तो जो बबीता पांडे नाम की एक महिला के गायब होने की बात आ रही है, इस नाम से हमारे जो explore.uttarkashi.com है इससे कोई परमिशन जनरेट नहीं हुई है।
6: फिलहाल बबीता के घर वाले इस उम्मीद में हैं कि आने वाले दिनों में बबीता का कोई पता चले और ये इंतजार खत्म हो। बबीता 2 भाइयों की इकलौती बहन है और घर वाले उसकी गुमशुदगी से सदमे में है।
9: मैं तो प्रशासन से यही कह रहा हूँ करके ढूंढ लिया जाए जल्दी से जल्दी से, जैसा भी हो। सभी परेशान हो रहे हैं, मम्मी भी भाई भी, उसको वहीं पड़ा हुआ है, वहीं जा रखे हो, और देखो कोई खबर उबर मिलती है तो।
10: आपको भी कुछ परेशानी है शायद, क्या परेशानी है?
9: मेरे पैरों में दिक्कत है जरा, चल के नहीं पाता हूँ। प्रशासन से ये कहता हूँ जल्दी से जल्दी हमारी सकुशल लड़की को हमें मिलवा दिया जाए। पढ़ने में ग्रेजुएशन कर रही थी वो, MBA फाइनल था उसका, और पढ़ने में ठीक थी, सर्विस भी करती थी, अपना पार्ट टाइम जॉब भी करती थी, और
11: वहाँ पे NDRF SDRF सब लगे हुए हैं। बट हमें ऐसा लग रहा है कि जो हमारा प्रशासन है वो खाली मिसिंग वो देख रहा है, मिसिंग कंप्लेंट देख रहा है, बट उनको कम से कम 1-2 चांसेस और हैं कि किडनैपिंग का या कुछ और भी केस है, उनको उसमें भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए।
6: अपनी बेटी के गायब हो जाने के बाद सबसे ज्यादा सदमे में बबीता की माँ हैं। उन्हें बबीता ने ये बताया था कि वो अपनी सहेलियों के साथ उत्तरकाशी घूमने जा रही है, लेकिन रामनगर से उत्तरकाशी आने के बाद उन्हें पता चला कि वो सहेलियों के साथ नहीं बल्कि 2 लड़कों के साथ घूमने आई थी। जाहिर है ये रहस्य भी उन्हें परेशान कर रहा है।
12: कब चली है वहाँ से?
13: 25 तारीख के सामने।
12: अच्छा, कुछ कहा आपसे?
13: मुझसे कहा घूमने जा रही हूँ, मना कर रहा, करी गढ़वाल साइड जा रही हूँ, आ जाऊंगी मैं परसों।
12: अच्छा, और कौन था बबीता के साथ, और लोग कौन गए, कोई जानकारी आपको?
13: मेरी सहेलियाँ हैं कहा इसने बताया, और बार भी जाती थी मैं, एक बार पहले भी आई थी, दोबारा आई।
6: अब तक की तफ्तीश में सामने आई जानकारी के मुताबिक 29 मई की रात बबीता के मोबाइल फोन की लोकेशन रात करीब 12 बजे तक गोई में ही थी। इसके बाद उसका फोन स्विच ऑफ हो गया, जबकि बबीता के साथियों ने अगले दिन यानी 30 मई की रात करीब 7:30-8 बजे पुलिस को बबीता की गुमशुदगी की जानकारी दी। सवाल है कि पुलिस को इत्तला देने में इतनी देर क्यों हुई? गोई में जहां बबीता और उसके दोस्त टेंट में ठहरे हुए थे, क्या वहां बबीता और उसके दोस्तों के अलावा और भी ट्रैकर टेंट में रुके हुए थे? अगर हाँ तो वो कौन थे? क्या उनसे इस बारे में पूछताछ हुई? जिस तरह से पर्यटकों के रजिस्ट्रेशन के मामले में घपले की बात सामने आई है, उसे देखते हुए लगता है कि पुलिस सारे पर्यटकों को शायद ही ट्रेस कर पाए। ऐसे में बबीता की गुमशुदगी का रहस्य और उलझता दिख रहा है। नैनीताल से लीला सिंह बिष्ट के साथ ओंकार बहुगुणा, उत्तरकाशी, आज तक।
14: तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
15: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

0: और वो शेर हमारी तरफ आ रहा है, थोड़ा सा पीछे की तरफ हट रहे हैं इस समय। वाकई आप ये समझ लीजिए कि आपके ऊपर बंदूकें तली हो और आपके सामने शेर आ जाए, दोनों में फर्क।
1: Jack FM, now playing what we want, commercial free, on TuneIn Premium.
2: What about me, Jack? What about me?
1: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.
2: Well played, Jack. Well played.
1: Jack FM, playing what we want.
3: बहुत चुल मच रहा है कसम से, आज घर जाकर दहिया पूरा कपड़ा उतार के खुजाएंगे।
4: क्योंकि मैं आपकी खुजली को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा, आपका जो दर्द है वो सही है, तकलीफ सही है, जो आप इतने दिनों से अपने छोटे से दिल में लेके इतना बड़ा पहाड़ घूम रहे हो।
3: अधूरा प्यार ही
4: तुम्हें दुनिया की सिम यार ठीक है मत दोहराओ।
5: बिजुरी आई गए।
4: हाँ हाँ थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा राइट, ओ थोड़ा राइट, हाँ हाँ
5: हाँ हाँ। यह अब एक नसिया पाया भैया।
3: यही अरे थोड़ा सा और ऊपर।
5: अरे लेफ्ट बोल रहा हूँ तुमको।
3: हाँ यही यही यही यही खुजा जोर से।
6: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

0: आज तक के साथ मंच पर पुतिन समेत दुनिया के बड़े दिग्गज रूसी राष्ट्रपति ने की भारत की तारीफ, कहा प्रमुख साझेदार आईटी सेक्टर के अग्रणी देशों में शामिल भारत। सूरत में पीएम का विपक्ष पर बड़ा हमला, अराजकता फैलाकर अवसर तलाश रही है कांग्रेस, देश को नीचा दिखाने में जुटे हैं निराशावादी नेता। समुद्र मंथन मिशन में भारत को बड़ी सफलता, गहरे समुद्र में ऑयल इंडिया को मिली प्राकृतिक गैस, हरदीप सिंह पुरी ने किया ऐलान। अग्निकांड के बाद दिल्ली सरकार का एक्शन, अवैध निर्माण पर बुलडोजर, कुछ इलाके सील, सीएम रेखा गुप्ता की बैठक में दोषी अफसरों पर सख्ती के आदेश। बागी नेता ऋतव्रत को नेता विपक्ष बनाए जाने के विरुद्ध सोमवार को हाईकोर्ट का रुख करेंगी ममता, आज पूर्व सीएम की बैठक में पहुंचे सिर्फ 3 लोकसभा के सांसद।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस।
0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी, स्वागत है आपका मुंबई मेट्रो में। मुंबई मेट्रो की खबरों की शुरुआत हम करें उससे पहले एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, समुद्र मंथन मिशन में भारत को बड़ी सफलता मिली है, गहरे समुद्र में ऑयल इंडिया को प्राकृतिक गैस का खजाना मिल गया, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इसका ऐलान किया है। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये अंडमान सागर में मौजूद गैस है जिसका पता चला है, और ये पता हमारे एक मिशन के तहत चला जिसे नाम दिया गया था समुद्र मंथन मिशन। गहरे समुद्र में गैस और तेल खोजा जा रहा था, ऑयल इंडिया को नेचुरल गैस यानी कि प्राकृतिक गैस मिल गई है, और इसका ऐलान खुद केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट करके किया है, तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये बहुत बहुत बड़ी भारत की सफलता। ये भारत के लिए अच्छी खबर है, राहत की खबर है। और अब मुंबई मेट्रो में मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र में चल रही राजनीति के बीच आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा निर्णय लिया। बड़ी खबर यह है कि ओबीसी समाज की तरह अब मराठा समाज को भी अलग अलग शिक्षा से जुड़ी सुविधाएं और रियायतें मिलेंगी। मराठा समाज के लिए कुल 8 योजनाएं शुरू करने का निर्णय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लिया है, और माध्यमिक शिक्षा यानी 10वीं के बाद की स्कॉलरशिप, और इस स्कॉलरशिप में कंडक्टर प्रशिक्षण योजना, माध्यमिक उच्च माध्यमिक छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना, ओबीसी छात्रों की तरह उन सभी पाठ्यक्रमों के लिए मराठा समाज के छात्र भी पात्र होंगे, और सीएपी पूरी होने के बाद खाली रह गई सीटों पर एडमिशन लेने वाले ओबीसी छात्रों की तरह मराठा समाज के छात्रों को भी रियायत मिलेंगी। जो शिक्षा रियायतें और सुविधाएं ओबीसी को वर्तमान में लागू हैं मिल रही हैं, भविष्य में वो लागू रहेंगी, वो सभी रियायतें और सुविधाएं अगले आदेश तक मराठा समाज पर भी लागू होंगी। ये निर्णय मराठा समाज के लिए सिर्फ 1 या 2 योजनाओं का नहीं है, सरकार ने और देवेंद्र फडणवीस ने यह साफ कर दिया है कि ओबीसी को पढ़ाई में जो भी मिलेगा वो सब मराठा समाज को भी मिलेगा, चाहे अभी हो या भविष्य में, मतलब दोनों समाज को पढ़ाई में बराबर का दर्जा देने का देवेंद्र फडणवीस का ये महत्वपूर्ण कदम। एमएलसी चुनाव में महायुति की 6 सीटों पर निर्विरोध जीत के बाद शिवसेना यूबीटी समेत पूरा

0: महाराष्ट्र में विधान परिषद चुनाव में जब से महायुति ने 6 सीटों पर निर्विरोध जीत दर्ज की है, तब से विपक्ष फडणवीस सरकार पर हमलावर है। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र एमएलसी चुनाव में 150 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया है। राउत दावा कर रहे हैं कि विपक्षी उम्मीदवारों को अपना नामांकन वापस लेने के लिए मजबूर करने में बीजेपी ने 150 करोड़ रुपए खर्च किए। इतना ही नहीं, संजय राउत ने कोंकण सीट से नाम वापस लेने के लिए शिवसेना यूबीटी के प्रत्याशी रहे पाल माने पर आरोप लगाया कि 25 करोड़ के लेन देन में 15 करोड़ रुपए मुंबई के एक लग्जरी होटल में दिए गए।
1: एक लक्षात घ्या, विधान परिषदेच्या निवडणुका या काही सरळ मार्गाने होत नाही, या काही फार मोठं महाराष्ट्राची सेवा करायची आहे, राष्ट्राची सेवा करायची आहे, समाजाची सेवा करायची आहे, म्हणून कोणी 50-50, 100-100 कोटी रुपये खर्च करत नाही, हे मी स्पष्ट बोल। आणि तेवढे प्रचंड प्रमाणात पैसे खर्च करून जे सेवा करायला जात आहेत, त्या सेवेमागचं इंगित सगळ्यांना माहीत असतं काय सेवा आहे ती। ज्याच्याकडे पैसे आहेत मतदार विकत घेण्यासाठी, तोच ही निवडणूक चांगल्या प्रकारे लढू शकतो। कार्यकर्त्यांची ही निवडणूक राहिलेली नाही।
0: हालांकि बीजेपी विपक्ष के आरोपों को बेबुनियाद बता रही।
2: आता शिवसेनेची अवस्था उभाटाची किती वाईट झालेली आपण बघतात। एक सुद्धा माणूस त्यांचा निवडून येणार नाही। त्यांना असं वाटतं विधानसभा विधान परिषद म्हणजे काय, काही कामाचे नाही आहे। महापालिका ठरले, एक तिकडे त्यांना यश आलं नाही, जिंकता आलं नाही, महापौर करता आलं नाही, ते तेच म्हणतायत काय करायचं इथे, ते तेच म्हणतायत हे काय कामाची आहे। आत्ता निवडणुका झाल्यात नगरपरिषदांच्या नगरपालिकांच्या, तिथे काय राहिलं त्यांचं, म्हणजे जे तिथे हारतायत त्या ठिकाणी त्यांना असं वाटतं हे काही कामाचंच नाही आहे, अशा पद्धतीने ते बोलतायत। पण आता लोक स्वीकारायला तयार नाही, मतदार त्यांना स्वीकारायला तयार नाही।
0: इधर गंभीर आरोपों पर शिवसेना यूबीटी के बागी नेता पाल माने ने संजय राउत पर जोरदार पलटवार किया।
3: महाराष्ट्र में होने वाले विधान परिषद चुनाव से पहले ही 6 सीटों पर निर्विरोध चुनाव पूरा हो चुका है और ये कारण बताया जा रहा है कि महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवारों पर दबाव या तो फिर पैसे की लेन देन बड़े पैमाने पर होते नजर आ रही है। अब विपक्ष तो आरोप लगा रहा है, लेकिन कोंकण से यूबीटी सेना के उम्मीदवार बाल माने, उन्होंने अपनी उम्मीदवारी पीछे क्यों ली, हम उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। बाल माने आज तक से सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं और आप पहले उम्मीदवार थे जिन्होंने अपना नामांकन पीछे ले लिया। अब आरोप ये हो रहे हैं, संजय राउत हो या विनायक राउत हो, उनका कहना है कि करोड़ों रुपए आपको मिले हैं इसके लिए और किस तरह का दबाव था, आपको गद्दार भी कहा जा रहा है।
4: वैसे तो संजय राव जी और विनायक राव जी क्या बोल रहे हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन उनका जो ये आरोप है ये सरासर गलत है। उन्होंने उसका प्रूफ देना चाहिए और यदि वो प्रूफ सही है तो मैं राजनीति से निवृत्त हो जाऊंगा।
0: संजय राउत महाविकास आघाड़ी के सभी 6 उम्मीदवारों के ऐन वक्त पर नाम वापस लेने के लिए उन्हें गद्दार करार दे रहे हैं, तो शिवसेना यूबीटी के बागी भी पलटवार करने में लिहाज नहीं कर रहे।
4: मैं बीजेपी से विधायक था और बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक से मेरा 40 साल पुराना रिश्ता है। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक का संघ का स्वयंसेवक हूँ। कुछ बातें ऐसी थी, वो सीट मिली नहीं, इसीलिए मैंने पार्टी छोड़ी थी। लेकिन आज जो आरोप कर रहे विनायक राउत साहब, वो उनका जो चरित्र है राजनीति का, वो ही ऐसा है कि उनके ऊपर बगावत के आरोप है। वो ये पैसे का लेन देन करते हैं, मुझे ऐसा लगता है उनको कुछ इसमें मिला नहीं है, इसलिए उनके दुख की बात ये हो सकती है। तो मुझे रियलाइज हो गया कि कुछ गड़बड़ है, तो इसलिए मैंने ये सक्सेसफुल रिटर्न मैंने किया है, उसमें कोई गद्दारी का संबंध नहीं है। और विनायक राउत एक नंबर एक का गद्दार है, वो उद्धव ठाकरे साहब को गलत सब बात बोलता है और उसी हिसाब से झूठे सब गलत निर्णय होते, ये दुख की बात है। आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब, रश्मि तई ठाकरे साहब, आदित्य साहब बहुत बढ़िया लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं।
0: दरअसल 4 जून एमएलसी चुनाव में नामांकन वापसी की आखिरी तारीख थी और 6 सीटों पर विपक्ष के अलग अलग पार्टियों के उम्मीदवारों ने अपना नाम वापस लेकर एमवीए को बैकफुट पर धकेल दिया और महायुति को बोनस के तौर

0: पर 6 सीटें निर्विरोध जिता दी। अब देखिए महायुति किन किन सीटों पर निर्विरोध जीती है। ठाणे जीत रविंद्र पाठक, शिवसेना। नाम वापस लिया अभिजीत पवार, एनसीपी एसपी। रायगढ़ रत्नागिरी सिंधुदुर्ग जीत अनिकेत तटकरे, एनसीपी। नाम वापस लिया बाल माने, शिवसेना यूबीटी। पुणे जीत विक्रम काकड़े, एनसीपी। नाम वापस लिया श्रीकांत पाटिल, एनसीपी एसपी और बागी सुनील टिंगरे। चंद्रपुर वर्धा गढ़चिरौली जीत अरुण लखानी, बीजेपी। नाम वापस लिया शैलेश अग्रवाल, कांग्रेस। यवतमाल जीत दुष्यंत चतुर्वेदी, शिवसेना। नाम वापस लिया साहेबराव कांबले, कांग्रेस। अहिल्यानगर जीत प्राजक्त तनपुरे, बीजेपी। नाम वापस लिया करण सासानी, कांग्रेस। अब बाकी 11 सीटों के लिए 18 जून को वोटिंग होगी, लेकिन महायुति के 6 सीटें निर्विरोध जीतने से विपक्ष काफी हताश नजर आ रहा है, जबकि महायुति का जोश पहले से भी ज्यादा हाई है। ऋत्विक भालेकर, मुंबई, आज तक।
1: 8 जून को इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई गई। खबर है कि 15 विपक्षी दलों को राहुल खड़गे की ओर से न्योता दिया गया। नीट पेपर लीक से लेकर सीबीएसई पेपर जांच, धांधली और तेल गैस की महंगाई से लेकर आर्थिक मंदी और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर विपक्ष को एकजुट करके आगामी मानसून सत्र में सरकार को घेरने का प्लान है। हमारे सहयोगी साहिल जोशी ने कुछ देर पहले शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत से इन्हीं सारे मुद्दों पर बातचीत की।
2: इंडिया अलायंस टूट रहा है, राउत साहब, क्या आपकी पार्टी इस बैठक में शामिल हो रही है? क्योंकि खबरें आ रही थी कि आप सोच रहे हैं शामिल होना है नहीं होना है, क्या करना है, फाइनली आप शामिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं?
3: बात ऐसी है कि विधानसभा चुनाव हो गए 4 या 5 स्टेट में लगता है, पश्चिम बंगाल, केरलम, असम, पांडिचेरी, और जो नतीजे आए हैं केरल छोड़कर सब जगह पर बीजेपी जीत गई। कैसी जीती भगवान को मालूम, श्री राम को मालूम। पश्चिम बंगाल में जो हम देख रहे हैं चुनाव के नतीजे आने के बाद जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश हो रही है या टूट गई है, देखो आप चुनाव जीतने के बाद भी पार्टियां तोड़ रहे हो, ये आपकी हवस है, ये नशा है, और ये नशा देश के लिए खतरा बन चुकी है। असम में भी ऐसा ही हो गया। इस सभी मुद्दे पर चर्चा होना जरूर है कि आगे की रणनीति क्या होगी इंडिया ब्लॉक की।
2: लेकिन आप भी तो टूट रहे हैं ना, आप डीएमके अभी आपके साथ में नहीं है। कई लोग कह रहे हैं डीएमके बाहर हो चुकी है, कई लोग कह रहे हैं टीवीके को लेके आइए, तो अभी क्या टीवीके को साथ में ले लेना चाहिए?
3: बात ऐसे है कि देखिए जो मेरी जानकारी है, तमिलनाडु की जनता ने सत्ता परिवर्तन के पक्ष में मैंडेट दिया है। टीवीके को पूरा बहुमत नहीं मिला है, बॉर्डर पे है, कांग्रेस ने सपोर्ट किया और सरकार बन गई। उससे पहले राहुल गांधी जी ने डीएमके के जो सुप्रीमो है मिस्टर स्टालिन से बात की कि इस बार हमको अगर बीजेपी और एआईडीएमके को रोकना है तो हमको ये सरकार बनाने देने की हमारी जरूरत है। तो टीवी के को जो मैंडेट मिला था वो मैंडेट के हिसाब से कांग्रेस ने सपोर्ट किया और डीएमके ने थोड़ा संयम बरतना चाहिए था, ये मेरा कहना है। और तुरंत डीएमके ने लोकसभा स्पीकर को लेटर दिया कि हमें अलग से सीट का अरेंजमेंट दीजिए। लगता है कि धीरे धीरे डीएमके का गुस्सा भी शांत हो जाएगा, लेकिन अब हमें एक नया मित्र मिला है टीवी के, और कांग्रेस के साथ उनका अलायंस तमिलनाडु में चल रहा है, उसका स्वागत करना चाहिए।
2: नहीं, वो तो ठीक है कि नया मित्र आप में ज्वाइन कर रहा है, लेकिन क्या इंडिया गठबंधन बचा है? क्या एकजुट होकर सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए जो बना था क्या वो बचा है? क्योंकि पहले 25-26 पार्टियां उसमें आती थी, आज 15 पार्टियों को न्योता दिया गया है।
3: हम चुनाव नहीं हार रहे, भारतीय जनता पार्टी के पास एक ऐसी सिस्टम बनी है वो पूरा इलेक्शन हाईजैक कर लेते हैं, पूरा सिस्टम हाईजैक कर लेते हैं और चुनाव जीतते हैं। ये कोई साधारण विजय नहीं है पश्चिम बंगाल का। अगर आप अभी बैलेट पेपर पर चुनाव लीजिए पश्चिम बंगाल का, आपको पता चलेगा क्या हो रहा है।
2: नहीं, लेकिन चुनाव आप नहीं हार रहे हैं, लेकिन क्षेत्रीय दल तो टूट रहे हैं ना। बंगाल में हम देख रहे हैं, महाराष्ट्र में क्षेत्रीय दल टूट रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? इसीलिए तो इंडिया गठबंधन कमजोर हो रहा है।
3: पार्टियां टूट नहीं रही है, पार्टियां तोड़ी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी उस दिशा में देश को ले जा रही है कि वन पार्टी वन नेशन वन इलेक्शन, वन पार्टी रहेगी इस देश में बीजेपी, बाकी कोई नहीं रहेगा, ना कोई रीजनल पार्टी रहेगी, ना कोई और अपोजिशन पार्टी रहेगी, बस हम ही हम रहेंगे।
2: नहीं, लेकिन चर्चा इस बात की भी है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी खास करके ये सोचने लगी है कि अच्छा क्षेत्रीय दल कम हो रहे हैं, इन्हीं क्षेत्रीय दलों ने कांग्रेस को हरा कर ही तो अपना पांव जमाए थे उस राज्य में, अब अगर क्षेत्रीय दल टूट रहे हैं तो कांग्रेस भी खुश हो रही है, कांग्रेस को भी लग रहा है कि अच्छी बात है अगर क्षेत्रीय दल टूटेंगे तो हमको मौका मिलेगा। आज की स्थिति में यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है। अब आगे क्या करना चाहिए?
3: कांग्रेस के इंदिरा जी के जमाने से रीजनल पार्टी है, पंडित नेहरू जी के जमाने से रीजनल पार्टी है, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये सभी पार्टियां जो है, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे महाराष्ट्र में एनसीपी हो, या और कुछ जगह पर अपने हमारे तेलंगाना में क्या बीआरएस हो, यह ओरिजिनल कांग्रेस पार्टी से पेट से निकली हुई पार्टी है। यह अगर सभी एक साथ कांग्रेस के साथ जुड़ जाती है और एक महान कांग्रेस बन जाती है तो जरूर एक बड़ा अपोजिशन इस देश में खड़ा हो जाएगा।
1: नासिक टीसीएस धर्मांतरण केस में लगातार खुलासे हो रहे हैं। इस केस में चार्जशीट से बड़ा खुलासा हुआ कि पीड़ित महिला को इस्लाम कबूल करने के लिए पाकिस्तानी मौलाना तारिक जमील और जाकिर नाइक के वीडियोस दिखाए जाते थे। साथ ही इससे कहा जाता था कि वो भगवान के भजन न सुने और न ही मंदिर जाया करे। चार्जशीट में यह भी दावा किया गया कि विवाहित आरोपी दानिश शेख ने शादी का वादा कर पीड़िता का यौन शोषण भी किया।
4: नासिक टीसीएस यौन उत्पीड़न और धर्मांतरण की कोशिश के मामले में जो पहली चार्जशीट फाइल हुई, देवलाली कैंप पुलिस स्टेशन का जो केस था उसमें चार आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पुलिस की एसआईटी ने फाइल की थी। ये चार्जशीट निदा खान, दानिश शेख, तौसिफ अत्तर और एआईएमआईएम के छत्रपति संभाजी नगर के कॉरपोरेटर मतीन पटेल के खिलाफ फाइल हुई। आपको बता दें कि चार्जशीट के मुताबिक पीड़िता को इस्लामिक धर्म के रीति रिवाज पालन करने के लिए डराया धमकाया जाता था। उससे पाकिस्तानी उपदेशक तारिक जमील, इसरार अहमद और जाकिर नाइक के वीडियो भेजे जाते थे। ये वीडियो उसे बार बार भेजे गए। उसे ये कहा गया कि जो भी इस्लामिक रीति रिवाज है अगर वो उनका पालन नहीं करती है तो उसके परिवार को नुकसान हो सकता है, उसका तनाव बढ़ेगा और उसका परिवार मुश्किल में आ जाएगा। इसके अलावा उसे ये भी कहा गया कि उसे तस्बीह पढ़नी होगी, उसे कलमा पढ़ना सिखाया गया। निदा खान अपने घर ले जाकर पीड़िता को नकाब पहनना सिखाती थी, हिजाब पहनना सिखाती थी, बुर्का कैसे पहनना है वो सिखाती थी, नमाज कैसे अदा करनी है वो उसे सिखाती थी। और बार बार पीड़िता से यही कहा जाता था कि अगर वो इस्लामिक रीति रिवाज का पालन नहीं करेगी तो उसका परिवार मुश्किल में आ जाएगा, उसे जन्नत जहन्नुम कुर्बानी और जमजम पानी के बारे में, अन्य धारणाओं के बारे में बताया जाता था। 106 गवाहों के बयानात लिए गए हैं। और आपको बता दें कि मतीन पटेल जो हैं, जो एआईएमआईएम के कॉर्पोरेटर हैं, जिन्होंने निदा खान को शह दिया था जब वो फरार थी, उनके खिलाफ भी इस चार्जशीट में ये कहा गया है कि जब पुलिस ने उन्हें कॉन्टेक्ट किया कि आप निदा खान को शह दे रहे थे, उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने अपने वरिष्ठ नेता इम्तियाज जलील का नाम लिया और कहा कि मुझे इम्तियाज जलील जी से पूछकर बताना पड़ेगा। कैमरा पर्सन अजय के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई आज तक।
1: नागपुर में भी जबरन धर्मांतरण और मारपीट का मामला सामने आया। आरोपी की नागपुर के ग्रामीण इलाके पारा शिवनी में अम्मा के दरगाह में पश्चिम बंगाल से आई एक महिला के साथ बंधक बनाकर मारपीट, जबरन धर्मांतरण के लिए दबाव और फिर हत्या का प्रयास किया गया। इस मामले में पुलिस ने दरगाह के मुख्य संचालक तनवीरुद्दीन और उसके बेटे समेत 6 लोगों के खिलाफ कई धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। मुख्य आरोपी समेत 3 की गिरफ्तारी हो चुकी है, 3 फरार हैं।
5: ये महिला के स्टेटमेंट के मुताबिक वो ट्रेन से नागपुर आई थी और फिर उसके बाद 15 से लेकर के 19 अप्रैल के बीच में वो यहाँ पे थी। उनका जो तकरार था वो एक दिन के बारे में था, मतलब 18 और 19 के बीच का। इसमें उनका कहना था कि कि उन्हें दरगाह पे बंधक रखा गया था और फिर उसके बाद उन पर मारहाण की गई और उन पे प्रेशर किया गया कि वो धर्म परिवर्तन करें। इसमें 6 आरोपी हैं टोटल, 3 जो मुख्य आरोपी हैं उन्हें ऑलरेडी अरेस्ट कर लिया गया है, 2 महिला आरोपी हैं और 1 74 वर्ष का आरोपी है जिनका असिस्टेंस का रोल बयान के मुताबिक है, उन्होंने एंटिसिपेटरी बेल डाला है और एंटिसिपेटरी बेल की हियरिंग जो है वो चालू है। मुख्य आरोपी दरगाह के जो केयरटेकर, उनके बेटे और उनका जो असिस्टेंट है, उन्हें ऑलरेडी अरेस्ट कर लिया गया है और वो अभी जेल में है, वो उसी दिन अरेस्ट कर लिया गया था जिस दिन एफआईआर दर्ज की।
6: पश्चिम बंगाल अपने गांव वापस लौटने के बाद महिला ने सबसे पहले पुलिस से गुहार लगाई, चूंकि मामला नागपुर में घटा था, घटना वही की थी, तो पश्चिम बंगाल पुलिस ने उसे वापस भेज दिया और फिर ये नागपुर में इस पूरे मामले में पुलिस आगे बढ़ी। सबसे अहम यह है कि अभी तक 3 आरोपी तो हिरासत में आ गए हैं, उसमें इसमें जो मौलाना थे वो उनका बेटा और एक खोबरागड़े नाम का आरोपी है, लेकिन अभी भी 3 आरोपी ऐसे हैं जो फरार है, पुलिस उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रही है। अब पश्चिम बंगाल की महिला जो यहाँ धार्मिक कार्यक्रम के आयोजन यानी कि उर्स के लिए आती थी, उसके साथ इस जैसी घटना घटने के बाद सभी यंत्रणा और पूरा प्रशासन अब अलर्ट मोड पे है। कैमरा पर्सन गोपाल हरदे के साथ ओमकार बाबले, आज तक नागपुर।
1: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 54वां जन्मदिन मनाया। पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत एक दिन में 5 करोड़ से अधिक पौधारोपण का संकल्प पूरा किया। इस अवसर को सफल बनाने के लिए योगी ने सभी का धन्यवाद दिया और साफ किया कि उत्तर प्रदेश को हरित उत्तर प्रदेश बनाने की दिशा में ये पहला बड़ा कदम है। लखनऊ के कुकरैल में योगी ने इस अभियान की शुरुआत की, जहां खुद मुख्यमंत्री ने पेड़ लगाए, वहीं योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर समर्थकों ने अपने अपने हिसाब से जन्मदिन का जश्न मनाया।
7: ये तस्वीरें हैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के 54वें जन्मदिन के जश्न की, जिसकी शुरुआत योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के साथ की। यूपी से लेकर दिल्ली तक योगी के जन्मदिन के जश्न की तमाम तस्वीरें आई, जहां लोग अपने अपने अंदाज में सीएम योगी को बधाइयां दे रहे हैं। दिल्ली के कालकाजी मंदिर में योगी दीर्घायु की कामना की गई। विंध्याचल के मां पीताम्बरा देवी मंदिर में यूपी के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन मनाया। अलीगढ़ में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मुख्यमंत्री योगी के जन्मदिन के मौके पर मिठाइयां बांटी। वाराणसी में 54 किलो का लड्डू केक के तौर पर काटा गया। अयोध्या में भी इस मौके पर जन्मदिन मनाने की तस्वीरें सामने आईं। तो वहीं झांसी में बुलडोजर का केक काटकर महिलाओं ने जश्न मनाया।
8: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन के मौके पर लखनऊ की सड़कों पर जहां पोस्टर लगाए गए हैं, वहीं तमाम मंदिरों में सुंदरकांड पूजन का पाठ किया जा रहा है। लखनऊ के दारुल सफा, जिसे विधायक निवास कहते हैं, वहां पर भी इसी तरीके से आयोजन किया गया है। सुंदरकांड का पाठ किया जा रहा है, हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है। मौका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 54वें जन्मदिन के मौके का है।
7: इस मौके पर केंद्र से लेकर यूपी के मंत्रियों और विपक्ष के नेताओं ने भी योगी आदित्यनाथ को जन्मदिन की बधाई दी। आज तक ब्यूरो।
1: छोटा सा ब्रेक और खबरों के साथ होते हैं हाजिर, आप देखते रहिए मुंबई मेट्रो।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
10: Better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan, price lock guarantee, plus equipment included. Oh yeah! So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
11: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
12: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
9: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: स्वागत एक बार फिर से आपका मुंबई मेट्रो में। और अब खबर खेल जगत की, जहां कल टीम इंडिया अफगानिस्तान के विरुद्ध टेस्ट खेलने उतरेगी। शुभमन गिल की अगुवाई में यंग इंडिया का असली टेस्ट होगा।

0: आईपीएल के बाद अब टेस्ट की बारी। गिल की सेना रेड बॉल क्रिकेट में पड़ेगी भारी। इंडियन प्रीमियर लीग खत्म होने के बाद अब टीम इंडिया की इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी होने जा रही है। शुभमन गिल की सेना तैयार है और सामने होगी अफगानिस्तान की टीम। दोनों टीमों के बीच सीरीज का इकलौता टेस्ट मैच 6 जून से न्यू चंडीगढ़ के मुल्लापुर स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके बाद 3 मैचों की एक दिवसीय सीरीज खेली जाएगी। भारत को जल्द ही श्रीलंका और फिर न्यूजीलैंड के दौरे पर भी जाना है। जाहिर है अफगानिस्तान के खिलाफ ये पूरे सीजन के लिए टेस्ट तैयारियों को परखने का शानदार मौका होगा।
1: वेरी ऑप्टिमिस्टिक एंड वी आर ऑलवेज ऑप्टिमिस्टिक टिल यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू क्वालिफाई फॉर द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल यू आर ऑलवेज ऑप्टिमिस्टिक बिकॉज वी नो द काइंड ऑफ क्वालिटी वी हैव एंड द काइंड ऑफ टैलेंट वी हैव।
0: इस मुकाबले में यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ओपनिंग करते दिखेंगे तो कप्तान शुभमन गिल नंबर 4 पर। 3 नंबर पर ये टीम काफी वक्त से संघर्ष कर रही है। उम्मीद है कि इस सीजन टीम इंडिया की ये तलाश भी खत्म हो जाएगी। देवदत्त पड्डीकल और साई सुदर्शन इस बैटिंग ऑर्डर की रेस में सबसे मजबूत दावेदार हैं। आज तक ब्यूरो।
2: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है। इस वीडियो में अक्षय कुमार फिल्म की शूटिंग के दौरान राजपाल यादव से मस्ती करते दिख रहे हैं। यह वीडियो अक्षय की अपकमिंग फिल्म वेलकम टू द जंगल के सेट का है, जहां वो राजपाल यादव के साथ मस्ती कर रहे हैं। उन्होंने कोस्टार राजपाल के साथ एक मजेदार प्रैंक किया। अक्षय अपने घोड़े से राजपाल के बालों को खाने के लिए इशारा कर रहे हैं। अचानक घोड़े को देखकर राजपाल डर जाते हैं, जिसके बाद सभी पूरी तरह से हंसने लगते हैं। मुंबई मेट्रो में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
4: TuneIn is bringing together your music, news, sports, and more all in one place. Whether you love music, want to stay in the know with top news,
5: continue to face political pressure to reach a peace deal,
4: or hear your favorite teams with live sports. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices, at home, in the car, or on the go. So you'll never miss a beat. Just sit back and listen.
3: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: के साथ मंच पर पुतिन समेत दुनिया के बड़े दिग्गज। पुतिन ने भारत की तारीफ की, बताया प्रमुख साझेदार, आईटी सेक्टर के अग्रणी देशों में शामिल है इंडिया। सूरत में पीएम का विपक्ष पर हमला, कहा अराजकता फैलाकर अवसर तलाश रही है कांग्रेस, देश को नीचा दिखाने में जुटे हैं निराशावादी नेता। समुद्र मंथन मिशन में भारत को बड़ी सफलता, गहरे समुद्र में ऑयल इंडिया को मिली प्राकृतिक गैस, हरदीप सिंह पुरी का ऐलान। अग्निकांड के बाद दिल्ली सरकार का एक्शन, अवैध निर्माण पर बुलडोजर, कुछ इलाके सील, सीएम रेखा गुप्ता की बैठक में दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई के आदेश। और बागी नेता ऋतुव्रत को नेता विपक्ष बनाए जाने के खिलाफ, सोमवार को हाईकोर्ट जाएंगी ममता, ममता की बैठक में पहुंचे सिर्फ 3 लोकसभा सांसद।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

विपक्ष पर पीएम का ताबड़तोड़ प्रहार, सूरत में बोले आत्मनिर्भर अभियान का मजाक उड़ाते हैं देश के कुछ निराशावादी लोग। पीएम ने वैश्विक संकट का उल्लेख किया, ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भरता जरूरी, पिछले 12 वर्षों में देश ने क्षमता बढ़ाई वो महत्वपूर्ण। कांग्रेस पर भड़के मोदी का बयान, कहा देश में अराजकता फैलाई रही कांग्रेस, ये वही लोग हैं जिन्होंने भारत को दूसरे देशों पर निर्भर रखा। पीएम मोदी बोले जहां जहां कांग्रेस का शासन वहां जनता त्रस्त, कांग्रेस की पर्ची अब नहीं चलाएगी जनता। यूपी के बलरामपुर में सीएम योगी का बयान, कहा मिट्टी में मिल गए माफिया, बेटी से छेड़छाड़ करने वालों को बख्शेंगे नहीं। बागी नेता ऋतुव्रत बनर्जी को बंगाल विधानसभा का नेता विपक्ष बनाए जाने के खिलाफ सोमवार को हाईकोर्ट जाएंगे ममता, स्पीकर के निर्णय को देंगी चुनौती। कोलकाता में ममता बनर्जी की बुलाई बैठक में पहुंचे सिर्फ लोकसभा के सांसद, 2 राज्यसभा के सांसद, 8 विधायक भी मौजूद, मदन मित्रा ने कहा दीदी ही टीएमसी की अध्यक्ष। बैठक में ममता ने डीएमसी की सभी कमेटियों का पुनर्गठन किया, अभिषेक बनर्जी बने रहेंगे महासचिव, डेरेक ओब्रायन और डोला सेन संयुक्त सचिव। बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए बीजेपी ने 4 उम्मीदवारों का ऐलान किया, पवन सिंह, संजय बयूख, अनिल ठाकुर और शीला पंडित के नाम। एमएलसी चुनाव के लिए जेडीयू ने निशांत कुमार को बनाया प्रत्याशी, ललन प्रसाद, शिवरानी देवी और भारती मेहता समेत 3 उम्मीदवार। तमिलनाडु में बीजेपी को झटके पे झटका, अन्नामलाई के बाद प्रदेश पार्टी के उपाध्यक्ष के नागराज ने भी दिया इस्तीफा, बीजेपी राज्य सचिव सुमति वेंकटेश ने भी छोड़ी पार्टी। 8 जून को इंडिया गठबंधन की बैठक में हिस्सा लेगी टीएमसी, ममता और अभिषेक होंगे शामिल। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत की विपक्षी दलों से अपील, एकजुट हों सभी पार्टियां, कांग्रेस से अलग हुए दल फिर आए साथ। मालवीय नगर अग्निकांड के बाद दिल्ली सरकार का एक्शन, हौजरानी गिटोरनी में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, दिल्ली के कई इलाकों में सीलिंग, वरिष्ठ अफसरों के साथ रेखा गुप्ता की बैठक, आदेश जारी। दिल्ली में फ्लोरिश एंड गेस्ट हाउस को एमसीडी ने सील किया, 3 जून को इसी होटल में 21 लोगों की हुई थी मौत। सीबीएसई ने दिल्ली पुलिस में दर्ज कराई शिकायत, 12वीं के रिजल्ट के बाद हमारे पोर्टल पर हमले हुए लेकिन कोई डेटा लीक नहीं हुआ। जेईई परीक्षा को लेकर शिक्षा मंत्रालय का बयान, परीक्षा परिणाम और अंक पूरी तरह सुरक्षित, डेटा में सेंध की खबर गलत। आज तक निराचा इतिहास, रूस के सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक फोरम कार्यक्रम में इंडिया टुडे ग्रुप की फॉरेन अफेयर्स एडिटर गीता मोहन ने निभाई एंकर की भूमिका, राष्ट्रपति पुतिन भी मंच पर। कार्यक्रम में पुतिन ने भारत को बताया रूस का प्रमुख साझेदार, कहा सॉफ्टवेयर में भारत की बड़ी हिस्सेदारी, ब्रिक्स ने G7 को छोड़ा पीछे। दुनिया में उथल पुथल के बीच भारत की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर, वित्त वर्ष 2026

जीडीपी विकास दर अनुमान से अधिक 7.7% की वृद्धि। देश की जीडीपी विकास दर में बढ़ोतरी पर पीएम का पोस्ट लिखा, भारत की विकास रफ्तार मजबूत, युवाओं के लिए अवसर ही अवसर। जीडीपी विकास दर में बढ़ोतरी के बाद बीजेपी ने राहुल को घेरा, कहा ताजा आंकड़े बता रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की शक्ति, राहुल ने कहा था आ रही है आर्थिक सुनामी। अमेरिका से वाणिज्य समझौते पर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा अगले महीने तक लागू हो सकता है पहला चरण, भारत आ सकता है अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल। अंडमान में INS बाज को लेकर राहुल का केंद्र पर हमला, कहा मोदी सरकार ने नौसेना की अनसुनी की बात, नहीं किया INS का विस्तार। महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार का मराठा समाज के लिए बड़ा निर्णय, ओबीसी की तरह शिक्षण संस्थाओं में मिलेगी सुविधाएं और छूट। फडणवीस ने मराठा समाज के लिए कुछ 8 योजनाएं शुरू करने का निर्णय लिया, छात्रवृत्ति योजना भी शामिल। दिल्ली के दौरे पर पंजाब बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन से मिले। लखनऊ में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी, कहा आज का दिन विशेष, जल है तो कल है, वन है तो जीवन है। मध्य प्रदेश में शिव वृक्ष अभियान को लेकर मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आह्वान, पर्यावरण संरक्षण के जन अभियान का बने हिस्सा, मैं वर्षों से हर दिन कर रहा हूं पौधारोपण। पटना में गिरफ्तार हो सकते हैं खान सर, पटना में BNS की धारा 109 के साथ साथ आर्म्स एक्ट में हुई है FIR दर्ज। खान सर के दो गिरफ्तार गार्ड्स का पुलिस की पूछताछ में खुलासा, खान सर के कहने पर ही चलाई थी गोली, खान सर ने कहा था गोली चलाओ मैं देख लूंगा। दिल्ली में गुरुवार की भीषण आंधी के बाद से तापमान में गिरावट, शुक्रवार को अधिकतम तापमान 35.8, एक दो दिन और रहेगी राहत। उत्तराखंड के बद्रीनाथ में बारिश, ऊंचे पहाड़ों पर बर्फबारी से गिरा तापमान, कड़ाके की ठंड, मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़। केरलम के एर्नाकुलम में भारी बारिश, जगह जगह पानी भरा, लोग परेशान। प्रयागराज में ऑपरेशन दहन के तहत कार्रवाई, 13 क्विंटल अवैध गांजा नष्ट किया गया। वाराणसी में बेकाबू थार ने 3 लोगों को मारी टक्कर, इस थार के मालिक के खिलाफ पुलिस ने FIR दर्ज की, उसकी जांच शुरू। शाहजहांपुर में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर प्रेमी की हत्या कर दी, पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया। बाराबंकी में दो गुटों में बहस के बाद गोलीबारी, पत्थरबाजी, इलाके में तनाव। भोजपुर के संदेश में आकाशीय बिजली गिरने से 7 लोग झुलसे, 4 की स्थिति गंभीर। दिल्ली के मालवीय नगर में संगठित कोबरा गैंग के ठिकाने पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 2 गिरफ्तार। देहरादून SSP प्रमेंद्र डोभाल के नेतृत्व में नशा तस्करों के विरुद्ध पुलिस का विशेष अभियान, ऑपरेशन प्रहार, शहर की बड़ी पार्टियां, शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले छात्र कोबरा गैंग के लक्ष्य। गाजियाबाद में होटल से युवती का शव बरामद, कमरे में लटका मिला, 1 युवक गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा में रेपिडो चालक निकला चोर गिरोह का मुखबिर, रेकी कर बंद मकानों को बनाता था निशाना, पुलिस ने 4 को गिरफ्तार किया। पुणे में मेड इन पाकिस्तान लगी चादर की बिक्री से हड़कंप, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 3 को गिरफ्तार किया। गोरखपुर में सोते हुए मजदूर पर डंपर से डाली गई मिट्टी, नीचे दबने से मजदूर की मौत। गोरखपुर में पिता ने 3 बच्चों को दही में दिया जहर, 2 की मौत, 1 घायल। फिरोजाबाद में सड़क पर कार का दरवाजा खुलना पड़ा महंगा, बाइक सवार ससुर की मौत, दामाद गंभीर रूप से घायल। मनाली में विदेशी महिला पर्यटक से अभद्रता का वीडियो वायरल, जांच के आदेश। बक्सर की गुमटी रेलवे क्रॉसिंग पर 26,40,00,000 रुपए की लागत से बना ओवरब्रिज का पिलर क्षतिग्रस्त हुआ, 96 घंटे भी नहीं टिक सका पुल। दुनिया में उथल पुथल के बीच भारत की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर, वित्त वर्ष 2026 में GDP विकास दर अनुमान से कहीं अधिक 7.7% की वृद्धि। RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के सभी 6 सदस्यों ने रेपो रेट को 5.25% पर बरकरार रखने पर मोहर लगाई, MPC ने पॉलिसी स्टांस को भी न्यूट्रल रखने का निर्णय किया। इंडिगो ने हांगकांग, शंघाई समेत 6 इंटरनेशनल रूट्स पर फ्लाइट्स को अस्थायी तौर पर बंद किया, बढ़ती लागत, कम मांग के चलते निर्णय से यात्रियों को खरीदने पड़ रहे हैं महंगे टिकट। हर घरेलू LPG सिलेंडर की बिक्री पर कंपनियों की अंडर रिकवरी बढ़कर करीब 700 रुपए पहुंची, पिछले महीने कंपनियों को 1 सिलेंडर की बिक्री पर 650 रुपए का घाटा हो रहा था। हमारे देश के कई राज्यों में ATM में नकदी कम होने पर बैंकर्स एसोसिएशन का अलर्ट, DBT पाने वाले ग्रामीण छोटे शहरों के लोगों को परेशानी हो सकती है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन का बयान, ट्रंप के शांति प्रस्ताव पर यूक्रेन से समझौते को तैयार, लेकिन यूक्रेन को माननी होंगी शर्तें। फ्रांस राष्ट्रपति मैक्रों ने रूस यूक्रेन के बीच सीधी बातचीत पर समर्थन की बात कही, कहा शांति योजना बना सकते हैं हम।

IAEA की मदद से रूस यूक्रेन में स्थानीय युद्ध विराम, सीज फायर से ज़ापोरिज़्या परमाणु प्लांट में सुधरेगी बिजली सप्लाई, मुख्य लाइन की होगी मरम्मत। ज़ापोरिज़्या में रूस का बड़ा हमला, एक की मौत, 16 घायल, ड्रोन हमले में कई वाहन, नागरिक, बुनियादी ढांचे क्षतिग्रस्त। रोमानिया की काला सागर बंदरगाह शहर कॉन्स्टांटा में समुद्री ड्रोन में विस्फोट, पूरे इलाके को किया गया सील। सीजफायर के बावजूद दक्षिण लेबनान में इसराइल के ताबड़तोड़ हमले, गांव में काले धुएं का गुबार। ईरानी विदेश मंत्री अगाची ने ओमान के साथ हॉर्मुज के प्रबंधन की बात कही, कहा ओमान और हम मिलकर चलाएंगे, अन्य देशों की लेंगे सलाह। मोंटेनेग्रो के टेवेट में ईयू पश्चिमी बाल्कन शिखर सम्मेलन में शीर्ष नेताओं ने मुलाकात की, जर्मन चांसलर मर्ज ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो के साथ मिलकर यूरोपीय संघ के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखा। अमेरिकी सीनेट में ट्रंप की बड़ी जीत, सीमा सुरक्षा इमिग्रेशन के लिए $70 बिलियन का भारी भरकम बजट पास हुआ, कड़े विरोध के बावजूद जीते ट्रंप। स्पेन के टेनरिफ में विमान हादसा टला, रनवे की बजाय पब्लिक रोड पर करानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग, बाल बाल बचे दोनों पायलट।

नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले आपको बताएंगे कि क्या भारत में हर्षद मेहता से भी बड़ा स्कैम हो चुका है, क्या कोई कॉरपोरेट घपला 15 लाख करोड़ रुपए का हो सकता है। ये वो रकम है जो पाकिस्तान की आधी जीडीपी भारत के 2 साल के रक्षा बजट के बराबर है। आरोप लगे हैं कि राजेश एक्सपोर्ट्स नाम की कंपनी पर। सेबी के मुताबिक इस कंपनी ने पिछले 4 सालों में अपना रेवेन्यू फर्जी तरीके से बढ़ा चढ़ा कर दिखाया। सेबी ने सख्त एक्शन लिया है, लेकिन सबसे गंभीर बात यह है कि इसमें सरकारी बीमा कंपनी LIC की करीब 11% हिस्सेदारी है। सोचिए, आम लोगों का पैसा LIC के जरिए यहां लगा और क्या हाल हुआ। इसके बाद आपको अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत को लेकर दिए गए बयान के बारे में बताएंगे। उन्होंने दावा किया कि पहले व्यापार में भारत अमेरिका का खूब फायदा उठाता था, लेकिन अब अमेरिका भारत से खूब पैसा कमा रहा है। जो लोग इस बयान को सत्य मान रहे हैं, उनसे सवाल है कि क्या किसी ने एक पल रुक कर पूछा कि इस दावे का आधार क्या है, या किसी ने व्यापार के असली आंकड़े निकाले, क्या किसी ने यह जांचने की कोशिश की कि वास्तविक स्थिति क्या है। लेकिन जांचने की जरूरत ही क्या है, क्योंकि ऐसे बयान ही तो सरकार पर सियासी हमले के काम आते हैं। इसमें तथ्य सबसे पहले बलि चढ़ जाते हैं। और इसके बाद आपको बताएंगे कि क्या देश में ज्यादा पढ़ लिख जाना अब एक गुनाह है। अच्छी डिग्री हो तो बड़ी नौकरी मिलेगी या नहीं, ये तो तय नहीं, लेकिन अब छोटी नौकरी मिलना भी मुश्किल है। सुप्रीम कोर्ट के एक ताजा फैसले में कहा गया है कि छोटी नौकरियों पर बड़ी डिग्री वाले कब्जा नहीं कर सकते और कम पढ़े लिखे लोगों का हक नहीं छीन सकते। लेकिन इसमें एक दूसरी बड़ी बात यह भी है कि दरअसल जिस शख्स के मामले में इस पूरे केस की सुनवाई हुई है, उसने अपनी पढ़ाई के बारे में अपने ऑफिस में गलत जानकारी दी थी। और किसी भी नौकरी के लिए अगर आप गलत जानकारी देंगे तो वो गैर कानूनी ही माना जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बड़ा मुद्दा यह है कि ज्यादा पढ़े लिखे हैं तो छोटी नौकरी के काबिल नहीं, बड़ी नौकरियों का पता नहीं। इस देश में डिग्री बांटने वाली यूनिवर्सिटीज तो हैं, लेकिन उन डिग्रियों को सम्मान देने वाले दफ्तर कहां हैं। और आखिर में आपको बताएंगे कि भारत इस नई अग्नि परीक्षा से कैसे बाहर निकलेगा। देश के अलग अलग हिस्सों में बार बार आग लग रही है और हमारा सिस्टम इसके सामने नाकाम साबित हो रहा है। लेकिन आज सबसे पहले हम एक बड़ा सवाल ये पूछेंगे कि आखिर भारतीय राजनीति में सब कुछ जायज क्यों माना जाता है, और ऐसा क्यों है कि जैसे ही कोई मुद्दा सरकार को घेरने का अवसर देता है, वैसे ही तथ्य पीछे हो जाते हैं, राष्ट्रहित पीछे चले जाते हैं या धकेल दिए जाते हैं। और सबसे हैरानी की बात यह है कि इस पर किसी को कोई असहजता भी नहीं होती।

0: किसी को यह चिंता नहीं होती कि राजनीतिक लाभ के लिए देश की छवि, देश की प्रतिष्ठा, देश के तथ्य दांव पर लगाए जा रहे हैं। आज राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत को लेकर एक बयान दिया और यह कहा कि पहले व्यापार के मामले में भारत अमेरिका का खूब फायदा उठाता था, लेकिन अब अमेरिका भारत से खूब पैसा कमा रहा है। इस बयान को भारत की राजनीति में ब्रह्म वाक्य मान लिया गया और इसे ऐसे पेश किया गया जैसे राष्ट्रपति ट्रंप जो कह रहे हैं वही अंतिम सत्य है और भारत ने अमेरिका के सामने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है। लेकिन आज हम ये सवाल पूछते हैं कि क्या किसी ने रुककर पूछा कि इस दावे का आधार क्या है? क्या किसी ने व्यापार के असली आंकड़े निकाले? क्या किसी ने यह जांचने की कोशिश की कि वास्तविक स्थिति क्या है? और क्या किसी ने यह देखा कि अमेरिका और भारत के बीच व्यापार संतुलन आखिर कहता क्या है? या किसी ने यह समझने की कोशिश की कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी निजी राजनीति को साधने के लिए भारत के खिलाफ बोल रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं हुआ और इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि इस बयान की सच्चाई से ज्यादा महत्वपूर्ण यह था कि इससे रणनीतिक और राजनीतिक हमला किया जा सके। हमारे देश में जब राजनीति का मौका दिखाई देता है तो अक्सर तथ्य सबसे पहले बलि चढ़ जाते हैं। विडंबना देखिए, आज के दौर में हर तरफ फैक्ट चेक की बातें होती है, कई तथाकथित फैक्ट चेकर इसकी सोशल मीडिया पर दुकान सजाते हैं, लेकिन हकीकत में कई बार यही लोग राजनीतिक रूप से सुविधाजनक बयानों को बिना किसी सवाल के स्वीकार कर लेते हैं और इसीलिए कर लेते हैं क्योंकि यहां ऐसे बयान उनके एजेंडे को सूट करते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप का यह बयान आज उनको बड़ा मजेदार लग रहा है, आज यही हुआ है। आप पहले इस बयान को सुनिए, फिर इसके बाद हम आपको बताएंगे कि इसमें कितनी हकीकत है और कितना फसाना। सुनिए।
1: लुक, इंडिया फॉर इयर्स हैज, एंड आई डोंट ब्लेम देम, आई ब्लेम अस बिकॉज़ वी हैड स्टूपिड पीपल हियर। इंडिया फॉर इयर्स रियली टुक एडवांटेज ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, यू नो, दे चार्ज अस ट्रेमेंडस टैरिफ्स. And they paid nothing. They wouldn't let Harley, as an example in the past, they wouldn't let Harley Davidson sell its motor. They would charge 200% tariff. So Harley Davidson was precluded. They ended up going to India and building their own plants, which is unfortunate that that happened, but it happens. It was before me. But they charged tremendous amounts of tariffs to our company, and we didn't charge them anything. You know, they sold motorbikes here too. You know, we charged them nothing. And now it's the exact reverse. And we're making a lot of money with India. But we'll get to a deal. Because I like, you know, I like your prime minister a lot. He's a good friend of mine. Get along great. And we're going to make a deal. We have a very good relationship.
0: इस बयान को सुनने के बाद कोई भी व्यक्ति यही सोचेगा कि क्या वाकई में अमेरिका भारत का फायदा उठा रहा है और इसमें आखिर कितनी सच्चाई है? तो आज आंकड़ों से इसे समझने की कोशिश करते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने यही कहते हुए भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था ना कि हम अमेरिका के साथ बराबरी का व्यापार नहीं करते, अमेरिका तो हम पर काफी कम टैरिफ लगाता है लेकिन हम अमेरिका के सामानों पर बहुत ज्यादा टैरिफ लगाते हैं जिससे भारत को फायदा होता है। अब आंकड़े बताते हैं कि यह फायदा होता भी था। साल 2024-25 में भारत ने अमेरिका को 7,33,000 करोड़ रुपए का निर्यात किया, जबकि इसी दौरान अमेरिका ने हमें 3,86,000 करोड़ रुपए का ही निर्यात किया और इससे अमेरिका के साथ भारत का जो व्यापार मुनाफा है वो 3,47,000 करोड़ रुपए का था। तो इतना हम फायदे में रहते थे और इन्हीं आंकड़ों के आधार पर राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि पहले कम टैरिफ के कारण भारत अमेरिका का बहुत फायदा उठाता था लेकिन इसके बाद वो कहते हैं कि अब यह स्थिति बदल गई है और अब अमेरिका भारत से खूब पैसा कमा रहा है। इस बयान से ऐसा लगता है कि टैरिफ लगने के बाद भारत का ट्रेड सरप्लस खत्म हो गया। यह नंबर याद रखिएगा, 3,47,00,000 रुपए, यही है ना हमारा मुनाफा जो 24-25 में था। और ऐसा लग रहा है जैसे अब हम अमेरिका हमसे व्यापार मुनाफा कमा रहा है, हम नहीं कमा रहे, जबकि यह बात सरासर गलत है। टैरिफ लगने के बाद साल 2025-26 में भारत और अमेरिका के बीच 12,43,000 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ। यह व्यापार पिछले साल से 1,24,000 करोड़ रुपए ज्यादा है और इसमें भी भारत ने अमेरिका को 7,70,000 करोड़ रुपए का निर्यात किया है, जबकि अमेरिका ने हमें 4,73,000 करोड़ रुपए का निर्यात किया है। यानी मतलब यह हुआ कि टैरिफ लगने के बाद भी भारत का अमेरिका के साथ व्यापार मुनाफे में है, 2,97,000 करोड़ रुपए का है और अब अभी अगर हम देखें तो हम ट्रेड सरप्लस में है, पिछली बार से कमी जरूर आई है, पहले से लगभग 1.25 करोड़ की। लेकिन आज भी भारत फायदा उठाने की बात, भारत फायदा उठा रहा है। और जो ये डोनाल्ड ट्रंप अपनी निजी राजनीति के लिए, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए स्वीपिंग स्टेटमेंट दे रहे हैं कि अब हमें फायदा हो रहा है, ये बात किसी भी फैक्ट की सच्चाई पर, कसौटी पर खरी नहीं उतरती है। आज भी भारत का व्यापार मुनाफा 3 लाख करोड़ के आसपास है। ये बात सही है कि अमेरिका का निर्यात पिछले साल से 87,000 करोड़ रुपए बढ़ा है और हमारा व्यापार मुनाफा 50,000 करोड़ रुपए कम हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अमेरिका फायदे में है। भारत आज भी फायदे में है और नंबर आपके सामने है लगभग 3 लाख करोड़ का। आगे बढ़िए। हकीकत तो यह है कि हम अब भी लगभग 3 लाख करोड़ रुपए के ट्रेड सरप्लस में चल रहे हैं, लगभग 3 लाख। अगर कुछ लोगों को परेशानी है तो एग्जैक्ट नंबर बता देते हैं, 2,97,000 करोड़। ठीक है, तो हम आज भी ट्रेड सरप्लस में ही हैं। अगर मार्च 2026 के भी आंकड़े देखें तो इस एक महीने में अमेरिका और भारत के बीच 1,21,000 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ, जिसमें भारत कुल 38,146 करोड़ रुपए के फायदे में रहा। लेकिन फिर भी जब राष्ट्रपति ट्रंप इन आंकड़ों से इतर गलत दावा करते हैं तो हमारे देश में विपक्षी नेता इसे सच मान लेते हैं और इस पर पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है। हम कहते हैं कि आप करिए राजनीति, सरकार पर सवाल उठाइए, लेकिन सवाल है कि राष्ट्रपति ट्रंप जब जब भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं अपनी राजनीति को, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को साधने के लिए, तो हम सबको एक आवाज में उनके खिलाफ बोलना चाहिए। राष्ट्रपति ट्रंप गलत दावा करके हमारे देश की छवि ऐसे पेश कर रहे हैं जैसे अमेरिका हमारा फायदा उठा रहा हो, लेकिन आज भी हम 3 लाख करोड़ के सरप्लस में चल रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि टैरिफ लगने से अमेरिका भारत से खूब पैसा कमा रहा है, लेकिन यहां भी उनका दावा गलत है। न्यूयॉर्क का फेडरल रिजर्व बैंक कहता है कि राष्ट्रपति ट्रंप के फैसलों से अमेरिका का औसत टैरिफ 2.6% से 13% हुआ, लेकिन इस टैरिफ का बोझ दुनिया के दूसरे देशों पर नहीं पड़ा। टैरिफ का 90% भुगतान अमेरिका के लोगों ने ही किया, जबकि 10% भुगतान कंपनियों ने किया। यानी अगर भारत पर सबसे ज्यादा टैरिफ लागू भी हुआ तब भी इस टैरिफ को हमने और हमारी कंपनियों ने भरा ही नहीं, इसे तो अमेरिका के लोगों ने भरा। लेकिन फिर भी राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि वो भारत से खूब पैसा कमा रहे हैं, हमारे देश के विपक्षी नेता इसे सच मान लेते हैं। अगर अमेरिका की इस रिपोर्ट पर यकीन ना हो तो जर्मनी के केल इंस्टीट्यूट के आंकड़े देखिए, जो ये कहता है कि टैरिफ का 96% बोझ अमेरिका के लोगों ने उठाया, सिर्फ 4% बोझ कंपनीज ने उठाया। हमारा सोर्स है केल। इसके अलावा भारत और अमेरिका के बीच ऐसा कोई बहुत बड़ा समझौता नहीं हुआ जिसके आधार पर यह कहा जाए कि अमेरिका भारत का फायदा उठा रहा है। 31 अक्टूबर 2025 को भारत और अमेरिका के बीच जो रक्षा समझौता हुआ वो इंफॉर्मेशन शेयरिंग, टेक्नोलॉजी के साझा इस्तेमाल को लेकर था। उसी का वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। 19 मई 2026 को भी एक करार हुआ जिसमें यह तय हुआ कि अमेरिका भारत को अपाचे हेलीकॉप्टर्स के लिए जरूरी सेवा, जरूरी उपकरण देगा, लेकिन यह भी कोई ऐसा समझौता नहीं था जिससे अमेरिका ने हमारा फायदा उठा लिया। अगर हमने अमेरिका से अपाचे हेलीकॉप्टर्स खरीदे हैं तो उनकी मेंटेनेंस के लिए ऐसे समझौते हमें करने ही होंगे। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप हर बार की तरह ऐसे दावे बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं, हमारे देश में इस पर राजनीति होती है। राष्ट्रपति ट्रंप ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को लेकर यह दावा किया था कि वो अमेरिका से टैरिफ से डरे हुए हैं, अमेरिका के टैरिफ से, और ऐसा दावा था कि जिस पर फ्रांस के विपक्षी दल राजनीति कर सकते थे और यह भी कह सकते थे कि उनके राष्ट्रपति अमेरिका के टैरिफ से डर गए हैं, उनके दबाव में हैं। लेकिन फ्रांस में ऐसा कुछ हुआ नहीं और वहां के विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति ट्रंप पर ही सवाल उठाया और उनके देश के लिए ऐसी टिप्पणी आखिर वो कैसे कर सकते हैं, ये जमकर उन्होंने बात रखी। कैनेडा को लेकर भी राष्ट्रपति ट्रंप ने यह दावा किया था कि वहां के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी उनके टैरिफ से आशंकित हैं। और अब तक कनाडा अमेरिका का फायदा उठाता था, लेकिन अब अमेरिका कनाडा का फायदा उठाएगा। लेकिन सोचिए, कनाडा में भी इस पर पॉलिटिक्स नहीं हुई, सारा देश एक साथ मिलकर कनाडा के विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति ट्रंप के बयानों पर खूब सवाल किए। यही चीज जर्मनी के मामले में हुई, स्पेन के मामले में, नेटो के मामले में, यूरोपियन यूनियन के मामले, यहां तक कि चाइना के मामले में राष्ट्रपति ट्रंप ने जो दावे किए उन्हें गंभीरता से नहीं लिया गया। और अमेरिका के मीडिया ने खुद कई बार इन बयानों का फैक्ट चेक किया, लेकिन हमारे देश में इसको लेकर खूब पॉलिटिक्स हो रही है और डोनाल्ड ट्रंप के दावे को आज खूब महिमामंडन किया जा रहा है।

0: इसी के साथ ये आंकड़ा हमारा नहीं है, ये आंकड़ा जो वहां पर छापे गए वॉशिंगटन पोस्ट में है वो हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि अभी तक के आंकड़े को अगर आप देखिए तो वॉशिंगटन पोस्ट ये दावा करता है, वॉशिंगटन पोस्ट ये दावा करता है, एक बार फिर से वो नंबर दिखा दीजिए, वॉशिंगटन पोस्ट ये दावा कर रहा है कि खुद ट्रंप ने अपने कार्यकाल में 30,573 झूठ बोले हैं। ये किसी और का दावा नहीं है, ये हमारे आंकड़े भी नहीं है, अमेरिका के मीडिया का है। और आप ईरान को ही याद कर लीजिए, ईरान को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप ने क्या क्या दावे नहीं किए, लेकिन सोचिए क्या वहां इन दावों पर आंख मूंद कर कोई विश्वास कर रहा है। याद कीजिए जब राष्ट्रपति ट्रंप ने पिछले साल भारत को डेड इकोनॉमी बताया था तब भी कई विपक्षी नेताओं ने इस पर आपत्ति नहीं जताई, बल्कि हां में हां मिलाया। लेकिन आज राष्ट्रपति ट्रंप के इस दावे की भी पोल खुल गई। चलिए आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाते हैं कि आज साल 2025-26 की जीडीपी के आंकड़े क्या हैं। तो डेड इकोनॉमी जिसे बता रहे थे डोनाल्ड ट्रंप और हमारे देश में हां में हां मिलाया जा रहा था, तो एक बार ये नजर मार लीजिए, ये 2025-26 के आज नंबर्स आए हैं, 7.7%। पिछले साल का अगर आप नंबर देखिएगा तो ये देखिए 7.1%। इसी के नजरिए से अगर आप अमेरिका का देखें तो मौजूदा नंबर है 2.1% का की वृद्धि, और वहीं जब आप पिछले साल का देखेंगे तो 2.8% का, इसी के आसपास ये झूल रहे हैं। वहीं पर चाइना में भी देखेंगे तो चाहे वो इस साल का हो या फिर पिछले साल का हो, दोनों में ही 5% है जीडीपी। फिर आप आ जाइए जर्मनी पर, जर्मनी में हालत इन दिनों दुरुस्त नहीं है और ये गिरावट है -0.5% की उनकी जीडीपी में, जो कि पूरी तरह से आप कह सकते हैं एक रेड सिग्नल यहां पर ब्लिंक कर रहा है। वहीं अगर आप देखें तो अभी जो नंबर ये पिछली बार का है, पिछले साल का है, इस बार वो 0.2% आगे बढ़े हैं, इससे उभरे हैं। अब जापान पर आ जाइए, जापान 0.1% है, 0.1% पिछले साल था और इस बार कितना है वो 1.1%, और वैसे ही ब्रिटेन में 1.3%। मतलब आप समझ लीजिए कि ये दोनों देश लगभग आसपास ही हैं, इनसे 1% ऊपर ये अमेरिका है, और यहां पर आप देखिए तो पिछले साल में इनके नंबर्स 1.1% थे। तो इससे अंदाजा आपको लग जाएगा कि चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे चाइना, जर्मनी, जापान, जीडीपी के मामले में जो नंबर्स आए हैं वो साफ तौर पर हमारी अर्थव्यवस्था को लेकर एक बात कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। बड़ी बात यही है कि आज इन सब के इर्द गिर्द हो रही पॉलिटिक्स के बीच सच कहीं छिप ना जाए। बात सिर्फ भारत की डेड इकोनॉमी बताने की नहीं है। राष्ट्रपति ट्रंप ने 5 बार ये दावा किया कि भारत ने रशिया से कच्चा तेल खरीदना बंद कर दिया है, खूब हमारे देश में इसमें पॉलिटिक्स हुई। लेकिन सच यही है कि आज तक एक बार ऐसा नहीं हुआ जब हमने रशिया से अपने कच्चे तेल के आयात को बंद किया। अगर आपको विश्वास ना हो तो ये आंकड़े देखिए। राष्ट्रपति ट्रंप ने 6 अगस्त 2025 को भारत पर रशिया से तेल खरीदने के लिए 50% टैरिफ लगाया था। रशिया से तेल क्यों खरीद रहे हो, लेकिन तब भी हम नहीं झुके। और मुझे आज भी व्लादिमीर पुतिन का मेरा वो इंटरव्यू याद आता है जिसमें ये सवाल पूछने पर उन्होंने कहा कि वो तो हमसे यूरेनियम खरीदते हैं तो खुद पर टैरिफ क्यों नहीं लगा देते। तो अमेरिका अगर यूरेनियम खरीद सकता है तो भारत तेल क्यों नहीं। और अगस्त 2025 में हमने रशिया से प्रतिदिन 16,90,000 बैरल कच्चा तेल आयात किया था। अगस्त के बाद सितंबर में भी ये प्रतिदिन 16,10,000 बैरल रहा। और जब हमारे देश के बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि भारत अमेरिका से डर गया है और हमने रशिया से कच्चे तेल की खरीद कम कर दी है, तब यही खरीद अपने सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंची और नवंबर महीने में हमने रशिया से प्रतिदिन 18,40,000 बैरल तेल खरीदा। और ये पूरा ग्राफ आप देख सकते हैं कि इसके बाद भी हमने रशिया से कच्चे तेल की खरीद बंद नहीं की और रशिया हमारा सबसे बड़ा ऑयल पार्टनर बना रहा। दुख की बात यह है कि जब राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि वो भारत से खूब पैसा कमा रहे हैं तो हमारा विपक्ष इस बयान को उठाकर मुद्दा बनाता है। जब रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ये कहते हैं कि अमेरिका ने भारत पर जो दबाव बनाया वो सारा दबाव बेकार गया, भारत अमेरिका से डरा नहीं, तो ये बयान कोई कोट नहीं करता। लेकिन आज हम आपको राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का ये बयान भी दिखाना चाहते हैं जो उन्होंने उसी वक्त दिया जब राष्ट्रपति ट्रंप भारत को लेकर ये भ्रामक दावा कर रहे थे। सुनिए।
1: हमें खुशी है कि भारत दुनिया के सभी देशों के साथ अपने संबंध विकसित कर रहा है। भारत एक महान देश है, ये लगभग 1.5 अरब लोगों का देश है, इसकी बड़ी अर्थव्यवस्था है और इसे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है। भारत अपने हितों के अनुसार उन देशों के साथ आर्थिक और अन्य संबंध विकसित करेगा जिन्हें भारत आवश्यक समझता है। अमेरिका कुछ मुद्दों पर भारत पर दबाव डालने की कोशिश करता है, खासकर रूस के साथ भारत के सहयोग को लेकर, लेकिन हर कोई समझ चुका है कि नरेंद्र मोदी और दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश भारत पर दबाव डालना अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और द्विपक्षीय रिश्तों के लिए नुकसानदायक है। ये मायने नहीं रखता कि ये दबाव कहां से आ रहा है, ऐसा दबाव वैश्विक संबंधों के लिए अच्छा नहीं है।
0: आज जब हमारे देश में ये सारी राजनीति हो रही है, तब हम आपको 6 जनवरी 2021 की ये तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। ये वही तस्वीरें हैं जब अमेरिकी संसद कैपिटल हिल में राष्ट्रपति ट्रंप के समर्थकों ने चुनावी नतीजों के खिलाफ दंगे किए थे और अमेरिका की संसद का मजाक बनाकर रखा था। इन दंगों में जो लड़का कैपिटल हिल की खिड़कियों को तोड़कर अंदर घुसा था और जिसे अमेरिका की अदालत ने इसके लिए दोषी माना था, जानते हैं इस दंगाई के साथ राष्ट्रपति ट्रंप ने क्या किया है। एलियस इरिजारी नाम के इस लड़के को राष्ट्रपति ट्रंप ने पेंटागन में यानी अमेरिका के रक्षा विभाग में नौकरी दे दी है और जब इस पर सवाल खड़े हुए तो पेंटागन के प्रेस सचिव जोएल वाल्डेज ने कहा कि यह लड़का देशभक्त है, इसके जैसे लड़कों की अमेरिका के रक्षा विभाग को सख्त जरूरत है। सोचिए, अब तक हम नहीं सोचते थे कि भारत में बाहुबलियों, अपराधियों, दंगाइयों को चुनाव में टिकट कैसे ये पार्टियां दे देती हैं। सांसद विधायक वो बन जाते हैं, जेल से चुनाव लड़कर जीत जाते हैं, लेकिन अमेरिका तो इससे भी एक कदम आगे निकल गया। उसने अमेरिकी संसद में हिंसा करने वाले लड़के को रक्षा विभाग में नौकरी ही दे दी। वह क्या गजब हो रहा है राष्ट्रपति ट्रंप के राज में। आगे बढ़ते हैं, आपको ये बताते हैं कि भारत को दूसरे देशों से सर्टिफिकेट लेने की आखिर क्या जरूरत है। अगर कोई विदेशी अखबार, कोई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी, कोई ग्लोबल थिंक टैंक भारत के बारे में कोई दावा कर दे तो हमारे यहां उसे लगभग अंतिम सत्य की तरह स्वीकार कर लिया जाता है। आज बात सोने की होगी, उसे शेयर किया जाता है, उसके आधार पर बहसें होती हैं, राजनीतिक निष्कर्ष निकाले जाते हैं, सरकारों को घेरा जाता है, लेकिन जब उसी दावे को देश का केंद्रीय बैंक, आधिकारिक आंकड़े, जिम्मेदार संस्थाएं तथ्यों के साथ खारिज करती हैं, तो अचानक लोगों को सबूत कम और संदेह ज्यादा दिखाई देने लगता है। आखिर ऐसा क्यों, और क्यों विदेशी होने भर से कोई दावा विश्वसनीय नहीं हो जाता। इस हफ्ते 2 जून 2026 को ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट आई जिसमें ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स के अर्थशास्त्री अभिषेक गुप्ता ने अनुमान लगाया कि 22 मई तक के 2 हफ्तों में आरबीआई ने $12 बिलियन यानी लगभग 1,16,000 करोड़ रुपए का सोना बेचा है और इसी दौरान $7.5 बिलियन की विदेशी मुद्रा खरीदी है। इस रिपोर्ट का सबसे बड़ा तर्क यह था कि ईरान युद्ध के कारण भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर काफी दबाव है और शायद इसीलिए आरबीआई ने अपने सोने का कुछ हिस्सा बेच दिया और बेचकर डॉलर रिजर्व को मजबूत किया है। बड़ी बात यह है कि इस अनुमान का कोई विश्वसनीय आधार था ही नहीं। भारत को लेकर इतनी बड़ी बात सिर्फ ये सोचकर लिख दी गई कि अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत बढ़ रही है और फिर भी आरबीआई के गोल्ड रिजर्व की वैल्यू में इजाफा नहीं हो रहा है तो शायद आरबीआई ने कुछ सोना बेच दिया होगा। अब ब्लूमबर्ग की यह रिपोर्ट प्रकाशित हुई, हमारे देश में खूब हंगामा हुआ, विपक्षी नेताओं ने कहा कि यह भारत के इतिहास में पहली बार है जब देश का सोना बेचा गया, इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। इस रिपोर्ट के आधार पर राहुल गांधी ने यह कहा कि भारत में आर्थिक सुनामी आने वाली है और प्रधानमंत्री मोदी की सरकार अगले 1 साल में गिर जाएगी। इतना हंगामा हुआ, आरबीआई ने इस खबर का फैक्ट चेक किया, ये बताया कि 3 जून को भारत की फिजिकल होल्डिंग, जो गोल्ड होल्डिंग है, वो 880.52 टन थी और इसमें कोई बदलाव नहीं आया है। आरबीआई के बाद पीआईबी ने भी यही बताया कि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में सोने का महत्व बढ़ रहा है ना कि घट रहा है। दिसंबर 2025 में यह हिस्सेदारी 13.92% थी, जो 31 मार्च 2026

जो 31 मार्च 2026 को 16.70% हुई और 22 मई को 2026 को 16.85%। जानते हैं इस फैक्ट चेक के बाद ब्लूमबर्ग ने अपनी गलती मानी, अपनी रिपोर्ट को हर प्लेटफॉर्म से डिलीट किया। जब तक ब्लूमबर्ग ने खुद माफी नहीं मांगी थी और खुद रिट्रैक्ट नहीं किया आपने इस खबर को, तब तक कोई भी इसे मानने को तैयार नहीं था। अब ब्लूमबर्ग ने यह भी कहा कि उसकी पुरानी रिपोर्ट गलत थी, इनएक्यूरेट शब्द उन्होंने लिखा है, और वो इसके लिए खेद प्रकट करता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ब्लूमबर्ग ने तो इस रिपोर्ट को डिलीट कर दिया, लेकिन हमारे देश के जिन लोगों ने, जिन नेताओं ने, जिन यूट्यूबर्स ने इस रिपोर्ट पर आधारित बड़े बड़े एक्सप्लेनर्स बना दिए, इस पर पोस्ट लिखे, उन्होंने अब तक इसे डिलीट नहीं किया है। उनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर अब भी यह खबर एक लेबल की तरह चिपकी हुई है, जबकि ब्लूमबर्ग इस रिपोर्ट को डिलीट कर चुका है। और इसीलिए सवाल यह है कि अगर फेक न्यूज फैलाकर ब्लूमबर्ग उस खबर को हटा सकता है, उस पर खेद प्रकट कर सकता है, तो इस रिपोर्ट पर लंबे चौड़े पोस्ट लिखने वाले जो अलग अलग लोग हैं, वो ऐसा क्यों नहीं कर सकते? वो एक फर्जी खबर पर अपने पोस्ट और एक्सप्लेनर को क्यों नहीं हटा रहे हैं? और क्या इससे ये नहीं पता चलता है कि हमारे देश में सिर्फ राजनीति के लिए कितनी गंदी राजनीति की जाती है? अगली खबर का रुख करते हैं। आपको ये बताते हैं कि क्या अमेरिका को उत्तर कोरिया में ईरान नजर आता है? जिस वक्त राष्ट्रपति ट्रंप ईरान पर दबाव बना रहे हैं कि वो अपने यूरेनियम को सरेंडर करे, तब जानते हैं किम जोंग उन क्या कर रहे हैं। किम जोंग उन ने एक गजब का खेल किया है। उत्तर कोरिया की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, उन्होंने एक ऐसी फैक्ट्री का दौरा किया जहां यूरेनियम को परमाणु हथियारों के लिए एनरिच किया जाता है, और तस्वीरें जारी कर दी। उत्तर कोरिया के सरकारी मीडिया ने खुद इन तस्वीरों को जारी किया है, जो अमेरिका के लिए बड़ा संदेश मानी जा रही है। और इन तस्वीरों को देखकर पूरी दुनिया ये पूछ रही है कि क्या इसी वजह से राष्ट्रपति ट्रंप ईरान पर उसका यूरेनियम सरेंडर करने के लिए दबाव बना रहे हैं। असल में परमाणु हथियारों को लेकर जो दबाव आज ईरान पर है, वही दबाव आज से 40 साल पहले उत्तर कोरिया पर भी था। उस वक्त अमेरिका ने उत्तर कोरिया पर कई प्रतिबंध लगाए ताकि वो परमाणु हथियार बनाने की अपनी जो कोशिशें हैं उसको बंद कर दे। कई बार उत्तर कोरिया ने यह वादा भी किया कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। उस वक्त अमेरिका ने उत्तर कोरिया पर निगरानी रखी, लेकिन ईरान की तरह उसे अपना यूरेनियम सरेंडर करने के लिए मजबूर नहीं किया। और इसी बात का फायदा उठाकर गोपनीय तरीके से उत्तर कोरिया ने साल 2006 में अपना पहला परमाणु हथियार बना लिया। और यह वो क्षण है जिसके कारण आज अमेरिका ईरान के मामले में कोई लापरवाही नहीं करना चाहता है। अमेरिका को लगता है कि अगर उसने ईरान का यूरेनियम उससे हासिल नहीं किया तो कुछ सालों के बाद ईरान भी परमाणु हथियार बना लेगा, और वहां के सुप्रीम लीडर भी इसी तरह से परमाणु हथियार बनाने वाले कारखानों का दौरा करेंगे, जैसे किम जोंग उन उत्तर कोरिया में कर रहे हैं। देखिए,

तो उत्तर कोरिया की तस्वीर आपने देख ली, किम जोंग उन का अपना एक स्टाइल है और उस स्टाइल में आप देख रहे हैं उनका एक मॉडल है और उसी मॉडल पर उत्तर कोरिया काम कर रहा है, जिसके कारण वो अपने यूरेनियम को अमेरिका के हवाले नहीं करना चाहता। ये तस्वीरें करीब साल भर पहले की हैं, जब इसराइल और अमेरिका के हमलों में ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया गया था। यह अमेरिका का दावा था। उस वक्त अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों ने यही कहा था कि ईरान का यूरेनियम अमेरिकी हमलों के कारण जमीन के नीचे दब गया है और यह अब भी सुरक्षित है। लेकिन आज संयुक्त राष्ट्र की एक नई रिपोर्ट आई है जो ये बताती है कि ईरान का यही यूरेनियम अब गायब हो चुका है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने एक खुफिया रिपोर्ट में यह खुलासा किया है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम उसकी निगरानी से बाहर निकल गया है।

0: वो अब इतना तक बता सक पाने की हालत में नहीं है कि ईरान के पास इस वक्त कुल कितना यूरेनियम है, उसका क्या फॉर्म में वो यूरेनियम है, किस स्वरूप में है, उसे किस खुफिया जगह पर छिपा कर रखा गया है। आईएईए ये तक नहीं बता पा रही कि ईरान ने यूरेनियम को और ज्यादा ताकतवर बनाने की अपनी जितनी भी उसकी गतिविधियां थी उसको पूरी तरह से रोका है या नहीं। ये समझ से परे है कि दुनिया भर के न्यूक्लियर साइट्स और कार्यक्रमों की देखरेख नियंत्रण करने वाली संस्था इतनी बेबस और असहाय नजर आ रही है। और ऐसा क्या ऐसा हो भी सकता है कि ईरान पिछले साल अपनी न्यूक्लियर साइट्स को बचाने में कामयाब हो गया था और यूरेनियम को उसने किसी और जगह सुरक्षित छिपा दिया है। खैर आगे बढ़ते हैं और आपको यह बताते हैं कि क्या भारत में हर्षद मेहता से भी एक बड़ा स्कैम हुआ है और क्या यह स्कैम 15 लाख करोड़ रुपए का हो सकता है। 15 लाख करोड़ रुपए कोई छोटी रकम नहीं होती, यह पैसा हमारे 2 साल के रक्षा बजट के बराबर है, पाकिस्तान जैसे देश की आधी GDP। और यहां तो ये मामला सीधे भारत के शेयर मार्केट और LIC से जुड़ा हुआ है। राजेश एक्सपोर्ट्स नाम की जिस कंपनी पर इस घोटाले के आरोप लग रहे हैं उसमें सरकारी बीमा कंपनी LIC की 10.8% की हिस्सेदारी है और इसी वजह से ये मामला बहुत गंभीर हो जाता है। हम आपको एक एक करके वो सारी बातें बताएंगे जिससे आप इस पूरे मामले को समझ सकें। ये पूरा विवाद शुरू होता है सेबी के एक अंतरिम आदेश ने, वही सेबी जो भारत के शेयर बाजार का चौकीदार है, उसकी निगरानी करने वाला एक रेगुलेटर है। अब सेबी ने क्या किया, सेबी ने कड़ा एक्शन लिया और सेबी ने राजेश एक्सपोर्ट्स के खिलाफ 109 पन्नों का एक अंतरिम आदेश जारी किया है। राजेश एक्सपोर्ट्स भारत की एक बड़ी कंपनी है, करती क्या है ये कंपनी, सोने की रिफाइनिंग और गोल्ड ज्वेलरी के एक्सपोर्ट्स का ये काम करती है। सेबी ने आरोप लगाया कि इस कंपनी ने अपने रेवेन्यू और सेल्स के आंकड़ों में बहुत बड़ी गड़बड़ी की है। अब ये गड़बड़ी इसलिए चिंताजनक थी क्योंकि रेवेन्यू में हेरफेर कुछ पैसों का नहीं हुआ। आरोप है कि इस कंपनी ने वित्त वर्ष 2021 से 2025 के बीच पूरे 15 लाख करोड़ रुपए का कारोबार दिखाया जो वास्तविकता से कहीं ज्यादा था। आसान भाषा में कहें तो ये कंपनी कह रही थी कि उसने इन 4 सालों में 15 लाख करोड़ रुपए का कारोबार किया, जबकि सेबी का कहना है कि इतना कारोबार इस कंपनी ने कभी किया ही नहीं है। मतलब 15 लाख करोड़ का जो उसने नंबर दिया वो पूरी तरह से गलत है। इसका मतलब ये हुआ कि इस कंपनी ने अपने रेवेन्यू को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया और कैसे किया अब वो भी समझिए। दरअसल ये कंपनी कहती थी कि उसका सबसे बड़ा रेवेन्यू स्विट्जरलैंड की एक गोल्ड रिफाइनरी से आता है, सबसे ज्यादा रेवेन्यू, नाम है वालकैम्बी। अब इस दावे के आधार पर सेबी ने इस विदेशी कंपनी के भी बैंक खातों की जांच की और जब जांच हुई तो ये पता चला कि जितना कारोबार राजेश एक्सपोर्ट्स ने इसके साथ होने का दावा किया है वो इस कंपनी के रिकॉर्ड से मेल ही नहीं खाता। सेबी का यह भी आरोप है कि इस कंपनी ने अपने रेवेन्यू के सही और जरूरी दस्तावेज उपलब्ध ही नहीं कराए, जैसे उन ग्राहकों की पूरी सूची नहीं दी जिन्हें सोना बेचने का दावा था। जो सप्लायर्स सोना इससे खरीद और बेच रहे थे उनकी भी जानकारी नहीं दी। इस कंपनी की जो सहायक कंपनियां हैं और जो विदेशों में काम कर रही हैं उनका भी वित्तीय रिकॉर्ड सेबी को सौंपा नहीं गया और इसी वजह से ऑडिटर इस कंपनी की पूरी तरह से जांच नहीं कर पाए। अब मान लीजिए कोई दुकानदार आपसे यह कहे कि उसने पूरे साल काम करके 1 करोड़ रुपए कमाए लेकिन उसका मुनाफा सिर्फ 1 लाख रुपए रहा, तो आप क्या कहेंगे? आप यही सोचेंगे कि इतनी बड़ी बिक्री के बावजूद मुनाफा इतना कम। और आरोप है कि इस मामले में भी यही खेल चल रहा था। राजेश एक्सपोर्ट्स का रेवेन्यू तो करोड़ों में था लेकिन इसका कुल बाजार मूल्य सिर्फ 3,000 करोड़ रुपए। ये आंकड़े भी इस साल के हैं जब ये कंपनी 7,80,000 करोड़ रुपए का कारोबार करने का दावा कर रही है। सेबी का यह भी कहना है कि इस कंपनी ने अफ्रीका में सोने की खदानों में 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा निवेश करने का दावा किया लेकिन जब जांच हुई तो सेबी को इसके पास से वैल्यूएशन रिपोर्ट, निवेश के प्रमाण और पर्याप्त दस्तावेज मिले ही नहीं। इससे यह सवाल उठता है कि यह निवेश हुआ भी था, ये सिर्फ कंपनी की आमदनी को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने के लिए किया गया था। अब आप पूछेंगे कि अगर इस कंपनी ने 15 लाख करोड़ रुपए के रेवेन्यू को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया तो ये भारत का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट घोटाला कैसे हो गया? तो इसके पीछे है शेयर बाजार की कहानी। शेयर बाजार में जब निवेशक किसी कंपनी में पैसे लगाते हैं तो वहां उसकी आर्थिक सेहत देखी जाती है, यानी उस कंपनी का कारोबार कितना बड़ा है, उसकी सेल कितनी है, उसका रेवेन्यू कितना है, उसमें निवेश करना ठीक रहेगा नहीं रहेगा। आप भी अगर शेयर में इन्वेस्ट करते होंगे तो यही सब देखते होंगे, तमाम जो हेल्थ पैरामीटर्स एक कंपनी के कहलाते हैं। अब क्योंकि इस कंपनी पर आरोप लग रहा है कि उसने अपने रेवेन्यू को वास्तविकता से ज्यादा बताया था, इसीलिए शेयर बाजार में उसका माहौल बना, उसने दिखाया बढ़ा चढ़ा कर नंबर, उसके हक में पूरा शेयर बाजार में एक माहौल बना और सबको लगा कि यहां पर अगर हमने इन्वेस्ट किया तो हमको अच्छा रिटर्न मिलेगा। निवेशकों ने सोचा कि इस कंपनी में पैसा लगाने से उनको फायदा होगा, और इन निवेशकों में सिर्फ आम लोग नहीं थे। ये खबर इसीलिए बहुत बड़ी है, इनमें सरकारी बीमा कंपनी LIC भी थी। इन आंकड़ों को देखिए, मार्च 2016 में इस कंपनी में LIC की हिस्सेदारी सिर्फ 1.99% थी, साल 2022 में बढ़कर हो गई 11.22%, मार्च 26 में 10.8%। इसका मतलब यह है कि LIC ने पिछले 10 सालों में अपनी हिस्सेदारी इस कंपनी में 5 गुना बढ़ाई, और यह भी तब हुआ जब म्यूचुअल फंड्स को पहले दिन से इस कंपनी पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। 2016 में म्यूचुअल फंड्स की इस कंपनी में 0.5% की हिस्सेदारी थी, जो आज 0 है। पिछले 10 सालों में म्यूचुअल फंड्स इस कंपनी के रेवेन्यू को संदिग्ध मानकर इससे दूर रहा, लेकिन इसी जगह LIC ने इसमें अपना निवेश 5 गुना बढ़ा दिया। LIC एक सरकारी बीमा कंपनी है। जो लोग LIC में पॉलिसी खरीदते हैं उन्हें पैसे को ये कंपनी आगे निवेश करती है, जिससे ये मामला बड़ा हो जाता है। अच्छी नौकरी चाहिए तो अच्छी डिग्री होनी चाहिए, लेकिन अच्छी नौकरी ना मिले तो क्या बड़ी डिग्री से छोटी नौकरी नहीं कर सकते? आज हम आपको यही बताएंगे कि आपकी बड़ी डिग्री से बड़ी नौकरी मिले या ना मिले, लेकिन छोटी नौकरी तो अब मिलने से रही, क्योंकि नौकरियों के लिए आप जरूरत से ज्यादा पढ़े लिखे हैं। देश के सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जिसने देश के करोड़ों नौजवान के कान खड़े कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि अगर नौकरी छोटे पद की है तो बड़े बड़े डिग्रीधारी उस पर कब्जा नहीं कर सकते। ज्यादा पढ़े लिखे होने का मतलब यह नहीं कि आप कम पढ़े लिखे व्यक्ति का हक मार लें। यह पूरा मामला एक बैंक में अटेंडेंट यानी सेवादार के पद से शुरू हुआ। बैंक ने साफ कहा था कि उन्हें इस काम के लिए सिर्फ 10th पास व्यक्ति की जरूरत है। अब नौकरी की किल्लत ऐसी कि एक अच्छे खासे ग्रेजुएट ने सोचा कि बड़ा अच्छा मौका है, भाई एक स्थायी नौकरी लग जाएगी। उन्होंने अपनी बड़ी डिग्री को बक्से में छिपा दिया, खुद को सिर्फ 10th पास बताया और नौकरी हासिल कर ली। एक दिन इस बात की जानकारी बैंक को हुई तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा। हाईकोर्ट ने कहा कि वो नौकरी कर चुका है और सिर्फ ज्यादा योग्य होने के आधार पर उसे नौकरी से बाहर करना ठीक नहीं होगा। लेकिन जब बात सुप्रीम कोर्ट पहुंची तो पासा पलट गया। जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्ला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने साफ शब्दों में कहा कि ये हेराफेरी नहीं चलेगी। कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को पलटा और कहा कि अपनी ऊंची योग्यता को छिपाकर झूठ बोलकर नौकरी पाना सरासर धोखा है। ग्रेजुएट था और नौकरी के लिए बताया कि मैं सिर्फ 10th पास हूं। सुप्रीम कोर्ट ने बेहद अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकार का काम हर वर्ग का ख्याल रखना है। अगर सरकार कुछ नौकरियां कम पढ़े लिखे लोगों के लिए बचाकर रखती है तो वो बिल्कुल सही है। जरा सोचिए, एक 8वीं या 10वीं पास युवा नौकरी की रेस में किसी MA, MTech, MBA, PhD वाले का मुकाबला कैसे करेगा? बड़ी डिग्रियां जो है उनके पास तो अपना फर्राटेदार अंग्रेजी किताबी ज्ञान से उसे चंद मिनटों में रेस से बाहर कर देंगे। फिर वो गरीब और कम पढ़ा लिखा आदमी कहां जाएगा? क्या उसे जीने और कमाने का हक नहीं है? ये समस्या सिर्फ इस बैंक कर्मचारी की नहीं है। आज देश में हालात ये हैं कि जब चपरासी जैसे पदों पर कुछ 100 भर्तियां निकलती हैं, लाखों की संख्या में BA, MA, BTech, LLB भी युवा लाइन में खड़े हो जाते हैं। इसे एक उदाहरण से समझिए। साल 2015 में लखनऊ सचिवालय में 368 चपरासियों की जगह निकली। इसकी योग्यता रखी गई थी आवेदन में कि 5वीं पास हो और साइकिल चलाना जरूर आता हो। इसमें लिखित परीक्षा की जगह इंटरव्यू होना था। आप कल्पना नहीं कर सकते कि इसमें कितने आवेदन आए। चपरासी के 368 पदों के लिए 23 लाख 24,887 लोगों ने आवेदन किया, जिसमें 10वीं 12वीं पास छोड़िए पीएचडी एमबीए बीटेक बीएससी एमएससी होल्डर्स शामिल थे। इसे देखकर तत्कालीन सरकार के हाथ पांव फूल गए। अगर हर दिन 2200 लोगों के इंटरव्यू भी किए जाते तो इंटरव्यू में ही 3 साल लग जाते। आखिरकार ये भर्ती रद्द करनी पड़ी। और ये ऐसा अकेला मामला नहीं है, मजबूरी और बेरोजगारी का आलम ऐसा है कि लोग कम योग्यता वाले पदों के लिए अपनी डिग्रियां तक छुपाने को तैयार हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने एक लक्ष्मण रेखा खींच दी है। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट सिर्फ और सिर्फ तय नियमों के तहत ही मिलेगा। ज्यादा योग्यता का मतलब यह कतई नहीं कि आप कम योग्यता वाले का हक छीन लें। लेकिन इस सिक्के का एक दूसरा पहलू यह भी है जो हमें सोचने के लिए मजबूर करता है। देश में डिग्री तो ऊंची से ऊंची मिल रही है, लेकिन इस उस लायक काम नहीं मिल रहा है। और तभी शायद ऐसी बड़ी डिग्री वाला शख्स भी छोटी नौकरी करने के लिए आज तैयार है। हमारे देश में हर साल 1 करोड़ से ज्यादा नए ग्रेजुएट्स कॉलेज की दहलीज पर पार करके बाहर निकलते हैं। 20 से 29 साल के बेरोजगारों में 2/3 संख्या इन्हीं पढ़े लिखे नौजवानों की है। लेकिन जब बात नौकरी देने की आती है तो बेरोजगारों की नई खेप तैयार हो जाती है, क्योंकि नौकरियों की मांग समंदर जैसी है और वैकेंसी चम्मच से नाप कर निकाली जा रही है। जब ये डिग्रियों का पहाड़ चढ़ने के बाद युवाओं को ढंग का काम नहीं मिलता तो फिर डिग्रियों से भरोसा टूट जाता है और वो अपने से कम क्षमता की नौकरी करते हैं। आज आपको कुछ चौंकाने वाले आंकड़े बताते हैं। देश में हर साल करीब 15 लाख इंजीनियर्स पास आउट होते हैं। जानते हैं कितनों को नौकरी मिलती है या फिर मिलने की उम्मीद होती है? 10%। इससे आप कल्पना कर सकते हैं बाकी की 90% के लिए क्या चुनौती है। मजबूरी में आज देश का इंजीनियर कैब चलाने, कॉल सेंटर्स, अलग अलग जगहों पर काम करने को मजबूर है। बड़ी यूनिवर्सिटी से लिटरेचर की पढ़ाई करने वाले होनहार छात्र सिर्फ अगर आप देखें पेट पालने के लिए 10,500 शब्दों का जो एसईओ कंटेंट है वो लिख रहे हैं। जिन उंगलियों को देश का भविष्य लिखना था वो कीबोर्ड पर चंद रुपयों के लिए कीवर्ड सेट कर रही है। और हद तो तब हो जाती है जब 5वीं की चपरासी की नौकरी के लिए एक पद पर हजारों ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स, पीएचडी लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं। सबसे बड़ा क्रूर मजाक तो यही है कि एक युवा पूरी तरह वाकिफ है कि उसे चपरासी अटेंडेंट की नौकरी में कितनी सैलरी मिलेगी, उसे क्या काम करना होगा। सब कुछ जानते हुए वो अपनी मर्जी से काम करने को तैयार है। व्यवस्था उसे सिर्फ इसलिए नो कह देती है क्योंकि उसके पास डिग्री बड़ी है। अदालत का ये फैसला अपनी जगह कानूनी रूप से सही है, क्योंकि हक किसी का नहीं मारा जा सकता और ना ही कोई नौकरी लेने समय सही बात को छिपा सकता है। सही जानकारी देना अनिवार्य है और ये इलीगल है अगर उसने गलत जानकारी दी। लेकिन इससे हमारी पूरी जो शिक्षा व्यवस्था है रोजगार के खोखलेपन की पोल जरूर खुल रही है। बड़ा सवाल यह है कि हमारे देश में डिग्रियां बांटने वाली यूनिवर्सिटीज तो खुल गई, लेकिन उन डिग्रियों को सम्मान देने वाले दफ्तर कहां हैं? खैर, आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि जम्मू कश्मीर में हमारा देश सिर्फ आतंकवाद से नहीं लड़ रहा है बल्कि हम नार्को टेररिज्म से भी लड़ रहे हैं, जिस पर अब तक का सबसे बड़ा प्रहार हुआ है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा खुद कमान संभालकर घाटी को नशा मुक्त बनाने के मिशन पर निकले हैं और सिर्फ 55 दिनों के भीतर घाटी में ड्रग माफिया की कमर टूट चुकी है। जम्मू कश्मीर में बदलाव की बयार अब एक नए और निर्णायक रूप में बह रही है और ड्रग माफिया के खिलाफ इतिहास का सबसे बड़ा ऑपरेशन क्लीन चल रहा है और इस मिशन की फ्रंटलाइन पर खुद खड़े हैं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। उन्होंने खुद घाटी के सबसे संवेदनशील इलाकों बांदीपुरा, अनंतनाग, बडगांव और कुलगांव समेत जम्मू कश्मीर के 20 से 17 जिलों में खुद ड्रग्स मुक्त जम्मू कश्मीर पदयात्रा का नेतृत्व किया और कश्मीर का कोना कोना मथने के बाद अब इस मुहिम का रुख जम्मू डिवीजन की तरफ हो गया है। लेकिन उससे पहले गांदरबल की सड़कों पर उतरे हजारों लोगों के सैलाब ने साफ कर दिया कि जनता इस जंग में उपराज्यपाल के साथ खड़ी है। आंकड़ों की गवाही देखिए कि नशे के खिलाफ यह एक्शन कितना बेरहम है। महज 55 दिनों के भीतर पुलिस ने 1036 FIR दर्ज की, 1128 कुख्यात ड्रग तस्करों को सलाखों के पीछे धकेल दिया, 344 किलो ड्रग्स बरामद की गई जिसमें 120 करोड़ रुपए की कीमत की 13 किलो अफीम शामिल है। इसके अलावा 24,000 से ज्यादा नशे के टैबलेट और कैप्सूल्स जब्त किए गए। प्रहार सिर्फ गिरफ्तारी के रूप में नहीं हो रहा बल्कि ड्रग माफिया की फाइनेंशियल ऑक्सीजन यानी उनकी काली कमाई पर भी हो रहा है। 63 बड़े तस्करों पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया गया, 700 से ज्यादा के ड्राइविंग लाइसेंस रद्द हो चुके हैं। सबसे बड़ा हंटर चला है उनकी अचल संपत्तियों पर नशे की कमाई से। जानते हैं यहां पर 100 से भी ज्यादा आलिशान मकान और ठिकाने हैं जिन पर ये या तो बुलडोजर गरजा है या उन पर सरकारी ताला आज लटक चुका है। एक तरफ जहां गुनहगारों के लिए कोई रहम नहीं, वहीं दूसरी तरफ भटक चुके युवाओं के लिए प्रशासन ने हमदर्दी का हाथ बढ़ाया है। हर जिले में एडवांस रिहैब सेंटर्स खोले गए हैं जहां मुफ्त इलाज के साथ साथ युवाओं को स्किल ट्रेनिंग, उनको रोजगार देकर मुख्य धारा में आज लौटाया जा रहा है। कश्मीर की वादियों में यह सिर्फ एक प्रशासनिक हंटर नहीं है बल्कि नार्को टेररिज्म के खिलाफ एक जन आंदोलन है। गांदरबल का यह सैलाब गवाह है कि कश्मीर का युवा अब पाकिस्तान के पाले में हुए ड्रग माफिया, जो उसका पाकिस्तान का पाला हुआ ड्रग माफिया है, उसके आगे झुकने को तैयार नहीं है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने साफ कर दिया है कि यह लड़ाई अब रुकने वाली नहीं है। जम्मू कश्मीर के युवाओं को नशे की लत में धकेलने वाले आकाओं को सीधा संदेश है, या तो सुधर जाओ या मिट जाओ। अब नशे का यह काला साम्राज्य आखिरी दिन गिन रहा है।
1: परिवार गांदरबल में कश्मीर का जो चैप्टर है नशा मुक्त भारत, उसकी आज आखिरी पदयात्रा, लेफ्टिनेंट गवर्नर खुद इसको आज फिर से लीड कर रहे हैं। मैसिव जन अभियान, सब लोग इससे जुड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं इसकी कमी थी, कैसा फील आज आप कर रहे हैं कि इतने सारे लोग आपके साथ हैं जिस डिस्ट्रिक्ट आप जा रहे हैं और एक वेव सी जो है फैल चुकी है।
2: जम्मू कश्मीर पुलिस और फोर्सेस ने नशे पर लगाम लगाई है, पूरी तरह से सप्लाई चेन को डिसरप्ट कर दिया है और तस्करों के खिलाफ जिस सख्ती से कार्रवाई की है, वहीं आवाम भी जागरूक होकर सड़कों पर आकर के ये आवाम का कार्यक्रम बन गया।
1: तो सर कितने होपफुल हैं ये आप ऐसी नींव डाल के जो है रख रहे हैं, जो कि आगे इंस्टीट्यूशनलाइज होगी, इस 100 दिन के बाद भी चलेगी, क्योंकि मिशन बहुत बड़ा है, इतनी खराबी हो चुकी थी।
2: मैं जानता हूं कि 100 दिन में नशा पूरी तरह समाप्त नहीं होने वाला है, लेकिन एक मजबूत आधार हमने बनाया है और तीन फ्रंट पर, जैसा मैंने कहा
1: जी जी,
2: कि एक पब्लिक अवेयरनेस, सप्लाई चेन डिसरप्शन और तीसरा रिहेबिलिटेशन, उस पर शिद्दत से काम करेंगे।
3: मैं सब जो भी मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं उनसे ये कहना चाहूंगी कि आपसे जितना हो सके उतना आप ड्रग से दूर रहिए।
4: ड्रग से हमें कुछ देर तक टेंशन से राहत मिलती है, मगर ये बहुत बड़ी बीमारी है, इससे इंसान की जान जा सकती है।
5: हमें नशे से दूर रहना चाहिए, हमें यूथ को भी नशे से दूर रखना है।
6: जब से ये नशा मुक्त अभियान शुरू हुआ है तब से मुझे एक चीज मैंने नोटिस की है कि जितना भी यूथ है, यूथ बहुत खुश है कि ड्रग्स से हम नजात पाए, क्योंकि ड्रग्स एक ये नहीं है कि हम कहेंगे कि नशा जहर है, वो है, नशा एक बहुत बड़ा जुल्म है, एक बहुत बड़ा कत्ल है। नशे से दूर रहो क्योंकि आप अपनी जिंदगी खो रहे हो।
0: तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। और लोग कड़वे सच से नहीं बल्कि भ्रम के मायाजाल के टूटने से डरते हैं जिसके दम पर उनका वजूद टिका है। नमस्कार।
7: पश्चिम बंगाल में बड़ा राजनीतिक बदलाव नजर आ रहा है, जहां ममता बनर्जी की पार्टी हर दिन के साथ कमजोर होती जा रही है। विधायकों की बगावत के बाद अब ममता बनर्जी के सांसदों को लेकर भी खबरें आईं कि वो भी विद्रोह कर सकते हैं, और दावा तो यहां तक हो रहा है कि अगले सप्ताह की शुरुआत में तृणमूल कांग्रेस के सांसद बड़ा खेला कर सकते हैं।
8: जब विधायकों के बाद अब सांसद भी तृणमूल कांग्रेस से अलग हो जाएंगे, क्या अगले हफ्ते की शुरुआत में ममता बनर्जी के सांसद भी अलग गुट बना लेंगे? ममता बनर्जी की पार्टी पर संकट गहराता जा रहा है। इसका साफ साफ संकेत ममता बनर्जी के कालीघाट वाले घर पर बैठक के दौरान मिलता है। पार्टी के 60 विधायकों के अलग गुट बनाने के दावे के बाद बुलाई गई इस बैठक में अभिषेक बनर्जी, कल्याण बनर्जी, माला रॉय शामिल हुई। इसके अलावा डेरेक ओब्रायन और डोला सेन भी ममता के घर पहुंचे। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं, 80 विधायकों वाली टीएमसी के सिर्फ 8 मौजूदा विधायकों और 2 पूर्व विधायकों ने बैठक में हिस्सा लिया। ममता बनर्जी के घर पर बुलाई गई इस बैठक में विधायकों की तरह सांसद भी गायब दिखे। 28 लोकसभा सांसदों वाली टीएमसी के चीफ के घर पर लोकसभा के 3 और 2 राज्यसभा सांसद पहुंचे, जिसके बाद खबरदार करता सवाल है कि क्या विधायकों के बाद अब सांसद भी ममता बनर्जी को टाटा बाय बाय करने वाले हैं। इस सवाल पर ममता बनर्जी के करीबी विधायक मदन मित्रा का जवाब सुनने लायक है।
9: ये विधायक बोल रहे हैं 23 सांसद उनके साथ हैं, 23 सांसद उनके साथ हैं, बाकी विधायक बोल रहे हैं।
10: वो पूरा बात कर सकता है, पूरा कह सकता है, जब पूरा पार्टी उनका साथ है।
8: तो मदन मित्रा ने पार्टी के सांसदों के विद्रोह के सवाल को खारिज नहीं किया, बल्कि बागियों को चुनौती देकर ये बता दिया कि दाल में कहीं कुछ काला जरूर है।
10: 2,30,00,000 जनता ममता बनर्जी का नाम से वोट दिया, जो लोग जा रहे हैं उसमें से कोई मां का लाल है, रेजिग्नेशन देके अपना क्षेत्रों में जाके बोलेंगे ममता को फोटो नहीं लेके मैं फिर से एक बार चुनाव लड़ने चाहता हूं, अगर उसका पास कोई चुनाव जीत के आए मैं उसको सलाम करवाऊंगा।
8: ममता के करीबियों के इस बयान को टीएमसी के सूत्रों के हवाले से आ रही खबर से समझा जा सकता है, जिसके मुताबिक टीएमसी में विधायक दल के बाद अब संसदीय दल में जल्दी टूट हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी के कई सांसद अभिषेक बनर्जी से नाराज बताए जा रहे हैं। नाराज सांसद एक अलग गुट बना सकते हैं। टीएमसी के लोकसभा में 28 सांसद अभी हैं। दल बदल कानून के तहत अलग समूह को मान्यता मिलने के लिए कम से कम 22 सांसदों का समर्थन जरूरी होगा। सूत्रों के अनुसार एक दर्जन से अधिक सांसद अलग ग्रुप बनाने के पक्ष में हैं। सूत्र कहते हैं कि पार्टी के एक बड़े वरिष्ठ सांसद इस संभावित बगावत की अगुवाई कर रहे हैं। राज्यसभा में टीएमसी के 13 सांसद हैं और वहां अलग समूह को मान्यता के लिए कम से कम 9 सांसदों का समर्थन चाहिए। ममता बनर्जी के विधायकों की टूट के बाद उनके घर बैठक में 41 सांसदों में से सिर्फ 5 सांसदों का पहुंचना अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या विधायकों के बाद सांसदों के टूटने की चर्चा है?
11: मानसिक तौर पे आप पार्टी के साथ नहीं है?
12: मानसिक तौर पे मैं पार्टी के साथ नहीं हूँ।
11: और ऐसे ही मानसिक तौर पे और कितने सांसद हैं तृणमूल में जो पार्टी के साथ नहीं है, आपको क्या पता है?
12: देखिए, मैं तो किसी का मानसिक स्थिति को रीड नहीं कर पाता।
11: नहीं, बातचीत तो होती होगी।
12: बातचीत होती है, मेरे सुनने में जो है मैंने आपको बता दिया ना कि लोकसभा में ज्यादा मेंबर मैंने मेजोरिटी मेंबर नहीं।
8: सूत्रों के मुताबिक टीएमसी के 23 लोकसभा सांसद बागी गुट के संपर्क में कहे जा रहे हैं। माना जा रहा है कि अगले हफ्ते की शुरुआत में टीएमसी के लोकसभा सांसदों में टूट हो सकती है, मतलब कुछ ही दिनों में क्या खेला हो जाएगा?
10: दुनिया में सब कुछ हो सकता है ना, ऐसा कोई चीज नहीं है जो दुनिया में नहीं हो सकता है। लड़ाई जारी आज।
8: विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की हार के बाद जिस तेजी से और बड़े पैमाने पर पार्टी के विधायकों का संतोष सामने आया वो अभूतपूर्व है, जिसका असर संसद में भी दिख सकता है।
11: कितने सांसद होंगे ऐसे? लोकसभा में आपके 29 सांसद है, आपको क्या सुनाई दे रहा है? कितने सांसद होंगे फिर?
12: 29 नहीं, 28 है।
11: 28
12: बसीरहाट आपका पेंडिंग है कलकत्ता हाईकोर्ट में,
11: क्या होने वाला है? आपको क्या सुनाई दे रहा है? आपको पार्टी के अंदर अभी भी है
12: मेजोरिटी चला जाए?
11: ये एक बड़ा बयान है आप दे रहे हैं कि मेजॉरिटी ही चला जाएगा?
12: मेजॉरिटी चला जाएगा।
8: टीएमसी में मची इस बगावत के लिए भले ही बागी अभिषेक बनर्जी को दोषी देते हों, लेकिन ममता बनर्जी को नेता मानने पर सब एकमत। इसीलिए जब ऋतुव्रत बनर्जी ने ममता को सलाहकार के रूप में सीमित करने की कोशिश की तो पाला बदलने वाले कई विधायकों ने विरोध जताया। हालांकि ऋतुव्रत इसे कोई चुनौती नहीं मानते और उन्हें भरोसा है कि बगावत करने वाले विधायकों की संख्या बढ़ेगी।
13: जहां तक हमारे आंकड़ा का सवाल है वो आंकड़ा बढ़ता जाएगा। जो आंकड़ा हम लोग प्रेजेंट किए थे 2/3 से ज्यादा, काफी सारे ज्यादा, वो जो आंकड़ा है जब आप लोग से मिलेंगे विधानसभा का अधिवेशन जो होगा वो आंकड़ा ऊपर जाएगा और आगे जाएगा।
8: विधानसभा चुनाव में हार के महीने भर के अंदर जिस तरह से ममता की पार्टी में टूट हुई, उसे देखते हुए राजनीतिक हलकों में ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या आने वाले समय में टीएमसी के सांसद भी पार्टी का साथ छोड़ देंगे।
7: और अब खबर उत्तर प्रदेश की राजनीति की, जहां 2027 चुनाव का असर नेताओं के बयानों पर साफ दिखाई दे रहा है। योगी आदित्यनाथ लगातार अखिलेश यादव पर हमलावर हैं, तो अखिलेश यादव भी योगी की खामियों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं।
14: हम देखते हैं, हमने हर घर नल की योजना को आगे बढ़ाया, पता लगा कोई टोंटी चोरी कर रहा है।
15: योगी ने भले ही अपने इस बयान में किसी का नाम न लिया हो, लेकिन टोंटी चोरी शब्द के बाद योगी की मुस्कुराहट ने यूपी की सियासत के 10 साल पुराने चैप्टर को फिर से खोल दिया। जब अखिलेश के सीएम बंगला खाली होने के बाद इन आरोपों पर जमकर घमासान मचा था।
16: हमारे पे ये इल्जाम नहीं, हम टोंटी ले गए, हमारे घर को गंगा जल से धुला हो गया। आप भूल सकते हो, मैं नहीं भूल सकता।
15: उधर योगी के बयान के जवाब में अखिलेश यादव ने भी बिना किसी का नाम लिए एक तंज भरा ट्वीट किया। वनस्पति विवेक छीन लेती है और निर्दोष लोगों की हत्याओं का खौफ रातों की नींद, नहीं तो पूरे होश में इतने ऊंचे पद पर बैठकर इतना निकृष्ट बयान कोई भी नहीं देता है। कुछ लोग अपनी असफलता के लिए दूसरों को दोषी ठहराते हैं, ये हार की हताशा बोल रही है, क्योंकि कुदरत का बुलडोजर अब घूम गया है। इसके बाद योगी के हमलों की दूसरी किश्त जारी हुई, जहां निशाने पर एक बार फिर विपक्ष था।
17: अच्छे लोगों को चुनोगे, अच्छा परिणाम आएगा। माफिया को चुन करके भेजोगे तो खून भी चूस डालेगा। विकास का पैसा तो हजम करेगा ही करेगा, संपत्तियों पर भी माफिया कब्जा करता है।
15: यूपी में अब चुनाव की तैयारियों ने पूरा जोर पकड़ लिया है, जिसका अंदाजा नेताओं के बयानों से लगाया जा सकता है। आज तक ब्यूरो।
7: खबर कोचिंग वाले खान सर की, जहां कोचिंग वॉर में खान सर बुरी तरह से फंस गए हैं। पहले तो फैसल खान और खान सर ने अपने पड़ोसी वाली ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद को गिरफ्तार करवाया, और अब कोचिंग गोलीकांड में खुद खान सर पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है।
18: इंसान घमंड अपने अच्छे समय में दिखाता है और उसका खामियाजा उसको अपने बुरे समय में भुगतना पड़ता है।
19: एयरबस A380 ये सबसे ऊंची जहाज,
20: ये एरिया कौन सा है? मंचूरिया।
19: हिटलर ने ग्रेनेड बनाना चालू किया, वो टैंक पनडुब्बी पानी वाली जहाज सब बनाया।
21: कोचिंग की दुनिया में खान सर इतना बड़ा नाम बन चुके हैं कि अब छात्रों के बीच लेक्चर देने के लिए वो भारी सुरक्षा बलों और हथियारबंद बॉडीगार्ड्स के साथ रेड कार्पेट पर चलते हुए ग्रैंड एंट्री लेते हैं।
18: याद रखिएगा, 1.5 साल की लगन के साथ पढ़ाई आपको पूरी दुनिया से 5 साल आगे रख देती है। अब कोई पोत पात के आएगा, तुम कहते कितना बढ़िया लग रहे, तो वो पतेगा एकदम सियार लग रही हो, इसलिए एकदम अखंड सिंगल।
21: लेकिन अब खान सर का यही जलवा उनके लिए मुसीबत का सबब बन रहा है। 2 जून को खान सर के कोचिंग सेंटर पर हुए गोलीकांड में वो बुरी तरह से फंस चुके हैं।
18: आप सबके जीवन में कुछ न कुछ तकलीफ है, तो इससे घबराना क्या है? अगर रात अंधेरी है तभी तारों के चमकने का अहमियत भी है।
21: खान सर पर पटना के कदम कुआं थाने में हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ है। जी हां, खान सर के गार्ड्स ने पुलिस को बयान दिया है कि उन्होंने हमें कहा तुम गोली चलाओ, बाकी हम देख लेंगे। इसी आधार पर पुलिस ने खान सर के खिलाफ FIR दर्ज की है। BNS की धारा 109 के तहत ये केस दर्ज किया गया है। इसमें 10 साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है। इसमें अग्रिम जमानत भी नहीं मिल सकती है। पुलिस की FIR में 3 लोगों का नाम दर्ज है, फैजल खान उर्फ खान सर और उनके साथ उनके 2 गार्ड्स। फायरिंग करने वाले दोनों गार्ड्स के नाम प्रदीप कुमार और तलविंदर सिंह हैं। खान सर के ये दोनों निजी गार्ड्स उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। नोएडा की सिक्योरिटी एजेंसी से खान सर ने 17 गार्ड्स हायर किए हैं।
22: तो व्यक्ति जो वीडियो में दिख रहे हैं फायरिंग करते हुए, तो पहचान करके गिरफ्तार किया गया है और उनको भी भेजा जा रहा है।
1: उनके हथियार जब्त करके फसल जांच कराया जा रहा है। आगे जो जांच में आएगा और उसके सबूत जो मिलेंगे हम लोग को सत्य करेंगे।
2: खान सर का क्या आरोप सिद्ध हुआ है? गार्ड ने जो बताया आपके लोग के द्वारा जो FIR भेजा गया उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि उन्होंने आदेश दिया था, क्या खान सर की गिरफ्तारी होगी सर?
1: इसमें मैंने आप लोगों को बताया कि जिस तरह का लोग एविडेंस आएगा उस सबसे कार्रवाई होगी और इसमें जिसके ऊपर भी एविडेंस आएगा विधि व्यवस्था या अपराध इसके ऊपर भी होगी उनसे सख्त कार्रवाई की जाएगी सबूतों के आधार पर।
3: ये क्या है इसका? ये एग्जैक्ट इसी साइज का होता है।
21: और अब जिसमें खान सर को महारत हासिल है उसी रास्ते से खान सर बचकर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से कठिन और जटिल विषयों को खान सर बहुत ही सरल देसी और मजाकिया अंदाज में छात्रों को समझाते हैं, आज खान सर कोचिंग सेंटर में छात्रों के बीच अपना केस समझा रहे हैं। इस लेक्चर में खान सर गिरफ्तारी से बचने की सफाई पेश करते हैं, तो आइए आपको भी खान सर की सेल्फ डिफेंस वाली क्लास में लिए चलते हैं।
3: ये लोग कहा कि खान सर के ऊपर माला चढ़ जाए, फोटो पे क्या चढ़ जाए माला, यही तो चाहते हैं लोग। अरे पागलो मेरे भाई लोग, एक बात बता यार, वो हमला किसके ऊपर करने आया है? हमारे ऊपर। दिन में आएगी रात में? रात अकेले आए ग्रुप में? पथराव किया कि नहीं? गोली चलाए कि नहीं चलाए? गार्ड को अधमरा किया कि नहीं किया? क्या FIR भी नहीं करें? ले अब पूछिए जरा ये बात। सबसे जरूरी चीज जो आप लोग को गुमराह किया जा रहा है, सेल्फ डिफेंस की फायरिंग चूंकि पुलिस लेट से पहुंची थी, पुलिस को आने में टाइम लगता है, हमें भी पता है कि 5 मिनट में पुलिस उड़ के नहीं आ जाएगी, तो सेल्फ डिफेंस में वो नहीं भाग रहे थे, उसको मार डालते तो कोई क्या करता? एक गार्ड का कर्तव्य क्या होता है? सुरक्षा करना।
21: और तो और खान सर अपनी कोचिंग के स्मार्ट क्लासरूम में 2 जून की घटना की CCTV फुटेज का पूरा विश्लेषण कर रहे हैं।
23: इसकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं की है, जबकि सबके सामने ये लेके जा रहा है, मुद्दे से भटकाया जा रहा है, आप इसकी गिरफ्तारी करिए, ये आदमी कौन है और कैसे आता है 20-25 लोगों को उठा के लेके चला जा रहा है, 20-25 लोगों को एक साथ कैसे?
21: खान सर मार्कर से स्क्रीन पर आरोपियों को घेर घेर कर दिखा रहे हैं और छात्रों को बता रहे हैं कि देखिए इनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। खान सर उसका नाम विकास बताते हैं और उसकी पूरी पहचान भी बताते हैं।
23: इसका नाम विकास या विवेक करके विकास, इसने बयान दिया है, देखो हम लोग तो पढ़ाने वाले आपके, हम लोग इतना नहीं बता रहा था कि कौन कहा क्या काम कर रहा है, पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया है।
21: फिर खान सर हाथ में किताब लेकर विद्या की कसम खाते हैं और कहते हैं कि कोचिंग पर लगातार गोलियां चली थी और पूरी सच्चाई सामने नहीं लाई जा रही है।
23: हमने दिखाया गोली चलते हुए, आप लोग देख रहे हैं, अब आप बताइए आप अपनी आवाज उठा सकते हो कि नहीं उठा।
21: स्मार्ट क्लासरूम में लेक्चर देने वाले खान सर वेरी स्मार्ट हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कोचिंग में हुए गोलीकांड पर वो कैसे गच्चा खा गए और अपने ही बयानों से कैसे फंस गए वो आपको दिखाते हैं। खान सर ने पहले कहा उनके कोचिंग सेंटर पर रोशन आनंद के लोगों ने गोलियां चलाई, 10 राउंड फायरिंग हुई, फिर खान सर पलट गए और गोलियों की बात से मुकर गए, लेकिन जब गोलियां चलाते हुए खान सर के अपने ही गार्ड्स का वीडियो वायरल हो गया, फायरिंग करने वाले 2 गार्ड्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और खान सर पर भी आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज हो गया, तो अब खान सर फिर से कोचिंग में गोलियां चलाने की थ्योरी ले आए हैं।
24: अभी इन लोग का बस यही है कि इतने कम फीस में नहीं पढ़ाया जाए और इतने हजारों संख्या में जो रिजल्ट आता है, पूरी तरह से इतनी गोली चलाने लगे 10 मिनट में, ऐसा लगा कि जैसे अफरा तफरी होके रख गया यहाँ पर। 8-10 राउंड तो हम देखे हैं यहाँ पे, 8-10 राउंड हम देखे हैं, हमें क्या पता है। अभी PMCH में एडमिट है, उसका पूरा सर फाड़ दिया गया है यहाँ पर।
25: क्या लगता है कौन क्या होगा?
24: बगल की कोचिंग वाले
26: सर, आप खुद मौजूद थे यहाँ जब फायरिंग हो रही थी?
24: बिल्कुल, ये देखिए मेरा गार्ड है ये।
26: अच्छा,
24: इसका ये पूरी तरह से खून से इसको लहूलुहान कर दिया गया यहाँ पे।
26: तो गार्ड से क्या दुश्मनी थी?
24: बस कि तुम ही खान सर को सब गार्ड है हमारा मार के रखा है। देखिए उस समय इतना घटना हुआ, अभी जो घायल है जो मेन, हम लोग तो अंदर से भी अपने चेंबर में थे, टीचर लोग क्लास ले रहे थे, जो गार्ड है उससे पूछा गया तो उसका कहना है कि सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, इतना मार के फोड़ दिया गया उसे।
23: तो यही विद्या है आप लोग की, यही हम लोग का ये है। अब अगर कोई विद्या के मंदिरों में गए, अस्पष्ट गोलियां चल रही थी और अफरा तफरी इतना था कि किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि बाहर निकल के देख सके। यहाँ क्यों नहीं कोई आए लोग तक वगैरह, बहुत यही था कि तो उस समय आए रहे थे, बताए रहे थे क्या गोलियां चली है कि नहीं चली।
7: खान सर के बयानों ने ही खान सर को फंसा दिया और अब खान सर अपनी कोचिंग के द्वारा छात्रों से बचने का रास्ता खोज रहे हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार किसी भी समय खान सर को गिरफ्तार किया जा सकता है। ऐसा कहा जा रहा है कि खान सर कहां है इसका अभी फिलहाल किसी को पता नहीं।
21: लेकिन खान सर अब बुरी तरह से फंस चुके हैं कि अब पुलिस उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेगी। ऐसे में सवाल ये है कि क्या खान सर स्टूडेंट्स के जरिए पुलिस और प्रशासन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ये कहकर छात्रों को उकसा रहे हैं कि अगर उनका कोचिंग सेंटर बंद हो गया तो 6 महीने में कई कोचिंग संस्थानों की फीस 1 से 1.5 लाख रुपए तक हो जाएगी।
23: जिस दिन खान सर को आवाज बताया गया उसके 6 महीने के अंदर आकर फिर से फीस 1.5 लाख नहीं चली गई। तो
3: जो आप लोग को गुमराह किया जा रहा है, सेल्फ डिफेंस की फायरिंग, चूंकि पुलिस लेट से पहुंची थी, पुलिस को आने में टाइम लगता है, हमें भी पता है कि 5 मिनट में पुलिस उड़ के नहीं आ जाएगी।
21: और खान सर किसी हद तक अपने स्मार्ट क्लास से छात्रों को अपने पक्ष में इकट्ठा करने में कामयाब भी हो जाते हैं। जी हाँ, खान सर की गिरफ्तारी को देखते हुए उनकी कोचिंग खान ग्लोबल स्टडीज के छात्र मुसल्लापुर कोचिंग सेंटर में पहुंचने लगते हैं। बिहार पुलिस भर्ती के रिजल्ट को लेकर शुरू हुई लड़ाई में खान सर ने ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर को तो गिरफ्तार करवा दिया, लेकिन अब गोलीकांड का सच बाहर आने के बाद गिरफ्तारी की तलवार खुद खान सर पर भी लटक गई है।
0: बिहार पुलिस में जो शानदार रिजल्ट हुआ है उसी का साजिश है, हमको फंसाया जा रहा है। किसान कोल्ड स्टोर के मालिक और खान सर जो है दोनों मिल करके जो है ज्ञान बिंदु को बर्बाद करने का पूरा प्रयास कर रहा है, लेकिन सत्यमेव जयते, हमेशा सत्य की जीत है।
21: लेकिन सवाल ये है कि कैसे पटना के 2 कोचिंग संचालकों के बीच वर्चस्व की लड़ाई में एक तरह से कोचिंग वॉर छिड़ गई है और इस कोचिंग वॉर में अब गोलियां भी चल रही हैं। ऐसे में पुलिस सख्त एक्शन ले रही है। इस कोचिंग वॉर में खान सर बुरी तरह से फंस चुके हैं। पटना से शशि भूषण के साथ आज तक ब्यूरो।
7: खबर मोहाली से आई बेहद खौफनाक तस्वीर की, जहां एक सरफिरे आशिक ने ब्रेकअप के बाद अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के ऑफिस के अंदर चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी।

0: मोहाली के ऑफिस से आई ये तस्वीरें विचलित करने वाली हैं, जहां एक सिरफिरा आशिक हरजिंदर महिला सहकर्मी डिंपल पर अचानक से चाकू से हमला कर देता है। हमलावर ने एक के बाद एक करीब 30 बार लड़की पर चाकू चलाया। लड़की जान बचाकर चारों तरफ भागने की कोशिश करती है, लेकिन हमले जारी रहते हैं। बाकी सहकर्मी उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नाकाम साबित होते हैं। लड़की दम तोड़ देती है, लेकिन इसके बाद की तस्वीर और भयानक है, जहां वो लड़का सबके सामने खुद की गर्दन पर चाकू से ताबड़तोड़ वार करने लगता है और सबके सामने आत्महत्या की कोशिश करता है, जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है।
1: बेसिकली 25 से 30 बार चाकू का उसने वार किया, गर्दन पे भी है और पीछे हार्ट पे भी है। सो यू कैन से सीरियस, उसने मतलब 25 से 30 बार किए थे उसने, और अपने भी उसने ऐसे ही अपने आप को भी स्टैब किया है। अपने गले में भी उसके हैं, हार्ट में भी उसने अपने स्टैब किया अपने आप को भी। और ये सारी जो हैं, जो आप इनके वूंड्स बारे दैट डॉक्टर कैन टेल यू बेटर।
2: अभी पेरेंट्स के, दोनों साइड के पेरेंट्स का क्या?
1: हाँ, मतलब जो लड़के के पेरेंट्स हैं, दे आर इन US, दे विल बी कमिंग। पर अभी जो लड़की के पेरेंट्स हैं, उनका हमने बयान लिखकर अभी पोस्टमार्टम करवाएंगे आज।
0: डिंपल पटियाला की रहने वाली थी, हरजिंदर भी पटियाला का है। दोनों में दोस्ती थी, प्यार था, अच्छे संबंध थे। करीब 3 साल से दोनों एक दूसरे को जानते थे, लेकिन कुछ दिनों से दोनों के रिश्तों में खटास आ गई थी। डिंपल ने ब्रेकअप कर लिया, हरजिंदर से मिलना जुलना छोड़ दिया, लेकिन हरजिंदर डिंपल को नहीं छोड़ना चाहता था। पुलिस की शुरुआती जाँच में पता चला है कि हरजिंदर दोबारा से डिंपल के साथ रिश्ते ठीक करना चाहता था। गुरुवार को जब वो दफ्तर आया तो डिंपल से बात करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी और झगड़ा हो गया। इसके बाद जो तस्वीरें आई वो हैरान करने वाली थी। मोहाली से कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो।
3: दिल्ली के मालवीय नगर होटल अग्निकांड में नए नए खुलासे हो रहे हैं। होटल मालिक ने एक ऐसी बात मान ली जो कि सिस्टम पर सवाल खड़े करती है। दावा है कि होटल मालिक लवकेश बजाज ने बताया कि होटल उनका अकाउंटेंट ऑपरेट कर रहा था। वहीं दिल्ली सरकार ने बड़ी ड्राइव चलाकर नियम तोड़ने वाले होटल्स रेस्टोरेंट्स पर एक्शन लिया। नोएडा में लगी आग ने फिर से सवाल खड़े कर दिए।
4: ये तस्वीरें देखिए कि एक और होटल की तरफ जाती हुई एनसीबी की टीम, क्योंकि यहाँ पर पहले बिजली जो है वो काटी जाती है। आगे की तरफ दिखाऊंगा कि यहाँ पर जो टीम है वो आगे की तरफ जाती हुई दूसरा होटल, क्योंकि अब तक 2 से 3 होटल्स को जो है वो यहाँ पर अब सील कर दिया गया।
5: दिल्ली के मालवीय नगर में होटल अग्निकांड के बाद दिल्ली सरकार एक्शन मोड में दिख रही है। दक्षिणी दिल्ली के कई इलाकों में अवैध इमारतों की पहचान करके उन पर बुलडोजर चलाया गया। मालवीय नगर इलाके में हुए अग्निकांड ने देश को झकझोर दिया। इस इलाके में सुबह ही बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया। अवैध निर्माण के खिलाफ दिल्ली के अलग अलग इलाकों में रेखा गुप्ता सरकार फुल एक्शन में है, जिसके तहत साकेत, MG रोड, मालवीय नगर में सीलिंग और बुलडोजर कार्रवाई होती है।
4: देखिए, मैं आपको बता दूं कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से जो ज्वाइंट कमेटी का गठन किया गया था, जिसमें DM, SDM और MCD दिल्ली पुलिस के साथ, अब इस वक्त दिल्ली के अलग अलग इलाके, चाहे वो मालवीय नगर हो, हौजरानी हो, साकेत हो, MG रोड हो, वहां पर बुलडोजर एक्शन के साथ साथ सीलिंग एक्शन भी जो है वो देखने को मिल रहा है। ये देखिए, ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट के नाम पर जो इनलीगल तरीके से होटल चल रहे थे, उस पर अब MCD की तरफ से सीलिंग जो है वो यहाँ पर की जा रही है। सीलिंग की टीम, MCD की टीम जो है वो यहाँ पर पहुंची है, और तमाम यहाँ पर हौजरानी इलाके में जब ये मालवीय नगर में हादसा हुआ था जिसमें 21 लोगों की जान गई थी, और आप देखिए किस तरीके से ये तमाम होटल जो है वो बने हुए हैं, इन सब पर इस वक्त जो है वो ज्वाइंट कमेटी की जो टीम जो दिल्ली सरकार की तरफ से गठित की गई थी, उसका एक्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। एक के बाद एक 18 ऐसी यूनिट्स हैं जहां पर इस वक्त एक्शन जो है वो देखने को मिल रहा है।
5: दक्षिणी दिल्ली के हौज खास में बेड एंड ब्रेकफास्ट होटल को MCD की टीम ने सील किया। यहां भी नियमों की अनदेखी हो रही थी। दक्षिणी दिल्ली के गिटौरनी में भी अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया। यहाँ पर देखिए कितनी बड़ी इमारत नियमों की अनदेखी करके बना दी गई। यहाँ पर कई दुकानों को सील किया गया। इसके साथ पूर्वी दिल्ली के करावल नगर, हौज खास गांव में भी अतिक्रमण और सीलिंग की कार्रवाई हुई। दिल्ली सरकार ने अवैध निर्माण रोकने और बेड एंड ब्रेकफास्ट होटल को लेकर बड़ा फैसला लिया। भविष्य में मालवीय नगर अग्निकांड जैसा हादसा न हो, इसके लिए अब अफसरों की जिम्मेदारी भी तय की गई।
6: सरकारी निर्देशों का उल्लंघन करने पर 2 साल की सजा और मिलीभगत पाए जाने पर अधिकारियों पर भी कठोर कार्रवाई, जिसमें जेल तक और जुर्माने तक की कार्रवाई की जा सकती है उसको इन्वोक करने का फैसला सरकार ने लिया है।
5: दिल्ली के होटल अग्निकांड में 21 लोगों की मौत के सदमे से लोग उबरे भी नहीं थे कि सुबह सुबह नोएडा में दो जगह आग लगने से हड़कंप मच गया। आग लगने की पहली घटना नोएडा सेक्टर 74 में हुई, जहां 12वें फ्लोर के एक फ्लैट में आग लगती है। तेज हवा के चलते आग तेजी से फैलती है और फ्लैट की खिड़कियों से ऊंची लपटें निकलने लगी। आसमान में काले धुएं का गुबार फैल गया। इस हादसे ने दमकल विभाग की तैयारियों पर एक बार फिर सवाल उठा दिए। हालांकि बाद में इस आग पर काबू पाया गया। नोएडा के अपार्टमेंट में लगी आग की इस घटना का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया और अधिकारियों को तुरंत मौके पर पहुंचकर राहत बचाव और निगरानी करने के निर्देश दिए। नोएडा में आग लगने की एक और घटना सेक्टर 52 के एक पीजी में हुई। जिस पीजी में आग लगी उस बिल्डिंग में नीचे रेस्टोरेंट था। काफी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने यहां पर आग पर काबू पाया है।
3: दिल्ली की ही तरह मध्य प्रदेश के इंदौर में भी बड़ा हादसा हो सकता था। इंदौर में ग्राउंड फ्लोर पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों का शोरूम था, जिसमें आग लग गई। आग लगने से ऊपर की मंजिल पर रहने वाले कई परिवारों की जान खतरे में पड़ गई। लोगों का आरोप है कि दमकल विभाग की टीम काफी देर से पहुंची।
5: खिड़की के छज्जे पर लटका ये उस आम आदमी का परिवार जिसे जिम्मेदार सरकारी विभाग अक्सर मुसीबत के आगे अकेला छोड़ देता है। तस्वीरें मध्य प्रदेश के इंदौर की हैं, जहां पति पत्नी और एक मासूम बेटी की चुनौती मौत के चंगुल से खुद को बचाने की है। जिंदा रहने के लिए खुद को बचाने की कोशिश कर रहा दमकल विभाग की टीम नदारद, इसीलिए पड़ोसी रस्सी फेंक रहे तो कोई सीढ़ी लगाने की कोशिश कर रहा। वजह बिल्डिंग में आग लगी है, घर के अंदर धुआं भरा है। मध्य प्रदेश के इंदौर में इलेक्ट्रिक शोरूम में लगी आग एक बार फिर सुरक्षा के सिस्टम पर सवाल उठाती। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड की तस्वीरें अभी धुंधली भी नहीं हुई। इंदौर के इस अग्निकांड ने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। हालांकि बस गनीमत की बात यह है कि यहां किसी जान माल का नुकसान नहीं हुआ।
7: पहली बार उठे जैसे हमने धुआं देखा और इसके अलावा हमने कुछ नहीं देखा, मतलब बच्ची और हमको सबको साथ में लेके बाउंड्री के बाहर इधर बालकनी के यहां पर पहुंच गए, खड़े रहे दीवार के साइड से जो पाइपलाइन इसको पकड़ के, मतलब फिर लोगों ने हमको देखा कि ये लोग भी ऊपर हैं, मतलब फंसे हुए हैं।
8: बहुत दूर धुआं हो रहा था, घबराहट हो रही थी, सांस लेने में भी दिक्कत आ रही थी, तो हम इधर से कूद के और दूसरी बिल्डिंग पे गए तो उधर से लोगों ने हमको निकाला, बच्ची को भी निकाला, हमको रस्सी बांध के कमर में सीढ़ी से निकाला।
5: ग्राउंड फ्लोर पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों के शोरूम में जब आग लगी तब उसकी ऊपर की मंजिल पर रहने वाले लोग सो रहे। बताया जा रहा है कि शोरूम के बाहर कुछ एक फोर व्हीलर गाड़ी को चार्जिंग पर लगाया गया। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट को आग लगने की संभावित वजह माना जा रहा है।
9: इस शोरूम के ऊपर जो फ्लैट है, तकरीबन यहाँ पर 20 से 25 परिवार यहाँ रहते हैं इस बिल्डिंग के ऊपर, तो जब इसका धुआं ऊपर गया तो उन लोगों को निकलने में बड़ी परेशानी आ रही थी, तो जो पड़ोसी है इस पास की बिल्डिंग के जो लोग है उन्होंने सीढ़ियां लगा के रेस्टोरेंट वहां से निकाला। लेकिन बहुत देर बाद जो है फायर ब्रिगेड आई यहाँ पर, क्योंकि जो रहवासी है क्षेत्रीय उन्होंने काफी मदद की और उन्होंने रेस्क्यू करके बाकी लोगों को निकाला।
5: गर्मियों में आग लगने की घटनाएं बढ़ती। दिल्ली में मंगलवार को एक होटल में आग लगने की घटना ने पूरे देश को दहला दी। दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर होटल टूरिस्ट स्टे में लगी आग में कुल 21 लोगों की जान गई, जिसमें 11 विदेशी थे। ऐसा नहीं कि दिल्ली या देश में इस तरह की पहली घटना। दिल्ली हो या फिर इंदौर, हर घटना सरकारी विभागों को बार बार खबरदार करती, लेकिन हर हादसे के बाद जैसे ही मामला शांत होता है संबंधित विभाग ढीले पड़ जाते हैं और आम आदमी सरकारी अफसरों की लापरवाही का शिकार होने लगता है।
3: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।

0: और वो शेर हमारी तरफ आ रहा है, थोड़ा सा पीछे की तरफ हट रहे हैं इस समय। वाकई आप ये समझ लीजिए कि आपके ऊपर बंदूकें तली हो और आपके सामने शेर आ जाए, दोनों में फर्क।
1: Music for every mood lives on TuneIn. Whether you want to relax, focus, or turn things up, you'll find the right station. Hear from the top stations like today's hits, classic rock, coffee house, and more. Stream non-stop music from stations you know and new favorites waiting to be discovered. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
2: आज तक ला रहा है वीडियो वाला पेपर, हर सुबह आपके मोबाइल में, वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर टाइप करें epaper.aajtak.in या स्क्रीन पे दिए गए QR कोड को अभी स्कैन करें।
3: साथियों, आज देश में कुछ निराशावादी लोग हैं जो आत्मनिर्भर भारत अभियान का मजाक उड़ाते रहते हैं। देश के इस संकल्प को वो लगातार नीचा ही दिखाते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा भारत को दूसरे देशों पर निर्भर रखा। वो लोग ये भूल जाते हैं कि दूसरों पर निर्भर देश विकास की वो ऊंचाई कभी प्राप्त नहीं कर सकता जिसका वो हकदार है।
4: बहुत चुल मच रहा है, कसम से आज घर जाकर दहिया पूरा कपड़ा उतार के खुजाएंगे।
5: क्योंकि मैं आपकी खुजली को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा, आपका जो दर्द है वो सही है, तकलीफ सही है जो आप इतने दिनों से अपने छोटे से दिल में लेके इतना बड़ा पहाड़ घूम रहे हो।
4: अधूरा प्यार ही
5: तुम्हें दुनिया के सिम यार ठीक है मत दोहराओ।
6: बिजुरी आई गए।
5: हाँ हाँ, थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा राइट, ओ थोड़ा राइट। हाँ हाँ हाँ,
6: यह अब ही नसिया पाया भैया।
7: अरे थोड़ा सा और ऊपर।
6: अरे लेफ्ट बोल रहा हूँ।
7: हाँ यही यही यही खुजा जोर से।

0: के साथ मंच पर पुतिन समेत दुनिया के बड़े दिग्गज। पुतिन ने भारत की तारीफ की, बताया प्रमुख साझेदार आईटी सेक्टर के अग्रणी देशों में शामिल है इंडिया। सूरत में पीएम का विपक्ष पर हमला, कहा अराजकता फैलाकर अवसर तलाश रही है कांग्रेस, देश को नीचा दिखाने में जुटे हैं निराशावादी नेता। समुद्र मंथन मिशन में भारत को बड़ी सफलता, गहरे समुद्र में ऑयल इंडिया को मिली प्राकृतिक गैस, हरदीप सिंह पुरी का ऐलान। अग्निकांड के बाद दिल्ली सरकार का एक्शन, अवैध निर्माण पर बुलडोजर, कुछ इलाके सील, सीएम रेखा गुप्ता की बैठक में दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई के आदेश। और बागी नेता ऋतुव्रत को नेता विपक्ष बनाए जाने के खिलाफ सोमवार को हाईकोर्ट जाएंगी ममता, ममता की बैठक में पहुंचे सिर्फ 3 लोकसभा सांसद। पश्चिम बंगाल में बड़ा राजनीतिक बदलाव नजर आ रहा है, जहां ममता बनर्जी की पार्टी हर दिन के साथ कमजोर होती जा रही है। विधायकों की बगावत के बाद अब ममता बनर्जी के सांसदों को लेकर भी खबरें आईं कि वो भी विद्रोह कर सकते हैं, और दावा तो यहां तक हो रहा है कि अगले सप्ताह की शुरुआत में तृणमूल कांग्रेस के सांसद बड़ा खेला कर सकते हैं।
1: क्या विधायकों के बाद अब सांसद भी तृणमूल कांग्रेस से अलग हो जाएंगे? क्या अगले हफ्ते की शुरुआत में ममता बनर्जी के सांसद भी अलग गुट बना लेंगे? ममता बनर्जी की पार्टी पर संकट गहराता जा रहा है। इसका साफ साफ संकेत ममता बनर्जी के कालीघाट वाले घर पर बैठक के दौरान मिलता है। पार्टी के 60 विधायकों के अलग गुट बनाने के दावे के बाद बुलाई गई इस बैठक में अभिषेक बनर्जी, कल्याण बनर्जी, माला रॉय शामिल हुई। इसके अलावा डेरेक ओब्रायन और डोला सेन भी ममता के घर पहुंचे। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं, 80 विधायकों वाली टीएमसी के सिर्फ 8 मौजूदा विधायकों और 2 पूर्व विधायकों ने बैठक में हिस्सा लिया। ममता बनर्जी के घर पर बुलाई गई इस बैठक में विधायकों की तरह सांसद भी गायब दिखे। 28 लोकसभा सांसदों वाली टीएमसी के चीफ के घर पर लोकसभा के 3 और 2 राज्यसभा सांसद पहुंचे, जिसके बाद खबरदार करता सवाल है कि क्या विधायकों के बाद अब सांसद भी ममता बनर्जी को टाटा बाय बाय करने वाले। इस सवाल पर ममता बनर्जी के करीबी विधायक मदन मित्रा का जवाब सुनने लायक है।
2: ये विधायक बोल रहे हैं 23 सांसद उनके साथ हैं, 23 सांसद उनके साथ हैं, बाकी विधायक बोल रहे हैं।
3: वो पूरा बात कर सकता है, पूरा कह सकता है जब पूरा पार्टी उनका साथ है।
1: तो मदन मित्रा ने पार्टी के सांसदों के विद्रोह के सवाल को खारिज नहीं किया, बल्कि बागियों को चुनौती देकर ये बता दिया कि दाल में कहीं कुछ काला जरूर है।
3: 2,30,00,000 जनता ममता बनर्जी का नाम से वोट दिया, जो लोग जा रहे हैं उसमें से कोई मां का लाल है, रेजिग्नेशन देके अपना क्षेत्रों में जाके बोलेंगे ममता को फोटो नहीं लेके मैं फिर से एक बार चुनाव लड़ने चाहता हूं, अगर उसका पास कोई चुनाव जीत के आए मैं उसको सलाम करवाऊंगा।
1: ममता के करीबियों के इस बयान को टीएमसी के सूत्रों के हवाले से आ रही खबर से समझा जा सकता है, जिसके मुताबिक टीएमसी में विधायक दल के बाद अब संसदीय दल में जल्दी टूट हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी के कई सांसद अभिषेक बनर्जी से नाराज बताए जा रहे हैं। नाराज सांसद एक अलग गुट बना सकते हैं। टीएमसी के लोकसभा में 28 सांसद अभी हैं। दल बदल कानून के तहत अलग समूह को मान्यता मिलने के लिए कम से कम 22 सांसदों का समर्थन जरूरी होगा। सूत्रों के अनुसार एक दर्जन से अधिक सांसद अलग ग्रुप बनाने के पक्ष में हैं। सूत्र कहते हैं कि पार्टी के एक बड़े वरिष्ठ सांसद इस संभावित बगावत की अगुवाई कर रहे हैं। राज्यसभा में टीएमसी के 13 सांसद हैं और वहां अलग समूह को मान्यता के लिए कम से कम 9 सांसदों का समर्थन चाहिए। ममता बनर्जी के विधायकों की टूट के बाद उनके घर बैठक में 41 सांसदों में से सिर्फ 5 सांसद

0: में कहे जा रहे हैं। माना जा रहा है कि अगले हफ्ते की शुरुआत में टीएमसी के लोकसभा सांसदों में टूट हो सकती है, मतलब कुछ ही दिनों में क्या खेला हो जाएगा?
1: दुनिया में सब कुछ हो सकता है ना, ऐसा कोई चीज नहीं है जो दुनिया में नहीं हो सकता है। लड़ाई जारी आज।
0: विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की हार के बाद जिस तेजी से और बड़े पैमाने पर पार्टी के विधायकों का संतोष सामने आया वो अभूतपूर्व है, जिसका असर संसद में भी दिख सकता है।
2: कितने सांसद होंगे ऐसे? लोकसभा में आपके 29 सांसद है, आपको क्या सुनाई दे रहा है? कितने सांसद होंगे फिर?
3: 29 नहीं, 28।
2: बसीरहाट
3: आपका पेंडिंग है कलकत्ता हाईकोर्ट में,
2: क्या होने वाला है? आपको क्या सुनाई दे रहा है? आपको पार्टी के अंदर अभी भी है
3: मेजोरिटी चला जाए?
2: ये एक बड़ा बयान है आप दे रहे हैं कि मेजॉरिटी ही चला जाएगा?
0: टीएमसी में मची इस बगावत के लिए भले ही बागी अभिषेक बनर्जी को दोषी देते हों, लेकिन ममता बनर्जी को नेता मानने पर सब एकमत। इसीलिए जब ऋतुव्रत बनर्जी ने ममता को सलाहकार के रूप में सीमित करने की कोशिश की तो पाला बदलने वाले कई विधायकों ने विरोध जताया। हालांकि ऋतुव्रत इसे कोई चुनौती नहीं मानते और उन्हें भरोसा है कि बगावत करने वाले विधायकों की संख्या बढ़ेगी।
4: जहाँ तक हमारे आंकड़ा का सवाल है, वो आंकड़ा बढ़ता जाएगा। जो आंकड़ा हम लोग प्रेजेंट किए थे 2/3 से ज्यादा, काफी सारे ज्यादा, वो जो आंकड़ा है जब आप लोग से मिलेंगे विधानसभा का अधिवेशन जब होगा वो आंकड़ा ऊपर जाएगा और आगे जाएगा।
0: विधानसभा चुनाव में हार के महीने भर के अंदर जिस तरह से ममता की पार्टी में टूट हुई उसे देखते हुए राजनीतिक हलकों में ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या आने वाले समय में टीएमसी के सांसद भी पार्टी का साथ छोड़ देंगे।
5: और अब खबर उत्तर प्रदेश की राजनीति की, जहां 2027 चुनाव का असर नेताओं के बयानों पर साफ दिखाई दे रहा है। योगी आदित्यनाथ लगातार अखिलेश यादव पर हमलावर हैं, तो अखिलेश यादव भी योगी की खामियों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं।
6: हम देखते हैं, हमने हर घर नल की योजना को आगे बढ़ाया, पता लगा कोई टोंटी चोरी कर रहा है।
7: योगी ने भले ही अपने इस बयान में किसी का नाम न लिया हो, लेकिन टोंटी चोरी शब्द के बाद योगी की मुस्कुराहट ने यूपी की सियासत के 10 साल पुराने चैप्टर को फिर से खोल दिया, जब अखिलेश के सीएम बंगला खाली होने के बाद इन आरोपों पर जमकर घमासान मचा था।
8: अगर हमारे पे ये इल्जाम लगे हम टोंटी ले गए, हमारे घर को गंगा जल से धुला हो गया, आप भूल सकते हो, मैं नहीं भूल सकता।
7: उधर योगी के बयान के जवाब में अखिलेश यादव ने भी बिना किसी का नाम लिए एक तंज भरा ट्वीट किया। वनस्पति विवेक छीन लेती है और निर्दोष लोगों की हत्याओं का खौफ रातों की नींद, नहीं तो पूरे होश में इतने ऊंचे पद पर बैठकर इतना निकृष्ट बयान कोई भी नहीं देता है। कुछ लोग अपनी असफलता के लिए दूसरों को दोषी ठहराते हैं, ये हार की हताशा बोल रही है, क्योंकि कुदरत का बुलडोजर अब घूम गया है। इसके बाद योगी के हमलों की दूसरी किश्त जारी हुई, जहां निशाने पर एक बार फिर विपक्ष था।
9: अच्छे लोगों को चुनोगे अच्छा परिणाम आएगा, माफिया को चुन करके भेजोगे तो खून भी चूस डालेगा, विकास का पैसा तो हजम करेगा ही करेगा, संपत्तियों पर भी माफिया कब्जा करता है।
7: यूपी में अब चुनाव की तैयारियों ने पूरा जोर पकड़ लिया है, जिसका अंदाजा नेताओं के बयानों से लगाया जा सकता है। आज तक ब्यूरो।
5: खबर कोचिंग वाले खान सर की, जहां कोचिंग वॉर में खान सर बुरी तरह से फंस गए हैं। पहले तो फैसल खान और खान सर ने अपने पड़ोसी वाली ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद को गिरफ्तार करवाया और अब कोचिंग गोलीकांड में खुद खान सर पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है।
10: इंसान घमंड अपने अच्छे समय में दिखाता है और उसका खामियाजा उसको अपने बुरे समय में भुगतना पड़ता है। एयरबस A380 ये सबसे ऊंची जहाज,
11: ये एरिया कौन सा है? मंचूरिया। हिटलर ने ग्रेनेड बनाना चालू किया, ओ टैंक पनडुब्बी पानी वाली जहाज सब बनाया।
12: कोचिंग की दुनिया में खान सर इतना बड़ा नाम बन चुके हैं कि अब छात्रों के बीच लेक्चर देने के लिए वो भारी सुरक्षा बलों और हथियार बंद बॉडीगार्ड्स के साथ रेड कार्पेट पर चलते हुए ग्रैंड एंट्री लेते हैं।

0: याद रखिएगा, 1.5 साल की लगन के साथ पढ़ाई आपको पूरी दुनिया से 5 साल आगे रख देती है। अब कोई पोत पात के आएगा, तुमको तो कितना बढ़िया लग रहा है, तो वो पोतेगा एकदम सियार लग रही हो, इसलिए एकदम अखंड सिंगल।
1: लेकिन अब खान सर का यही जलवा उनके लिए मुसीबत का सबब बन रहा है। 2 जून को खान सर के कोचिंग सेंटर पर हुए गोलीकांड में वो बुरी तरह से फंस चुके हैं।
0: आप सबके जीवन में कुछ न कुछ तकलीफ है, तो इससे घबराना क्या है? अगर रात अंधेरी है तभी तारों के चमकने का अहमियत भी है।
1: खान सर पर पटना के कदमकुआं थाने में हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ है। जी हाँ, खान सर के गार्ड्स ने पुलिस को बयान दिया है कि उन्होंने हमें कहा तुम गोली चलाओ, बाकी हम देख लेंगे। इसी आधार पर पुलिस ने खान सर के खिलाफ FIR दर्ज की है। BNS की धारा 109 के तहत ये केस दर्ज किया गया है। इसमें 10 साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है। इसमें अग्रिम जमानत भी नहीं मिल सकती है। पुलिस की FIR में 3 लोगों का नाम दर्ज है, फैजल खान उर्फ खान सर और उनके साथ उनके 2 गार्ड्स। फायरिंग करने वाले दोनों गार्ड्स के नाम प्रदीप कुमार और तलविंदर सिंह हैं। खान सर के ये दोनों निजी गार्ड्स उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। नोएडा की सिक्योरिटी एजेंसी से खान सर ने 17 गार्ड्स हायर किए हैं।
2: तो व्यक्ति जो वीडियो में दिख रहे हैं फायरिंग करते हुए, तो पहचान करके तो गिरफ्तार किया गया है और उनको भी भेजा जा रहा है। उनके हथियार जब्त करके फसल जांच कराया जा रहा है। आगे जो जांच में आएगा और उसके सबूत जो मिलेंगे हम लोग को,
3: खान सर क्या आरोप सिद्ध हुआ है? गार्ड ने जो बताया आपके लोग के द्वारा जो FIR भेजा गया, उसमें साफ तौर से कहा गया है कि उन्हीं ने आदेश दिया था, क्या खान सर की गिरफ्तारी होगी?
2: मैंने आपको बताया कि जिस तरह का लोग एविडेंस आएगा उस सबसे कार्रवाई होगी और इसमें जिसके ऊपर भी एविडेंस आएगा, विधि व्यवस्था या अपराध इसके ऊपर भी होगी, उन सबसे सख्त कार्रवाई की जाएगी सबूतों के आधार पर।
0: ये क्या इसका? ये एग्जैक्ट इसी साइज का होता है।
1: और अब जिसमें खान सर को महारत हासिल है उसी रास्ते से खान सर बचकर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से कठिन और जटिल विषयों को खान सर बहुत ही सरल देसी और मजाकिया अंदाज में छात्रों को समझाते हैं, आज खान सर कोचिंग सेंटर में छात्रों के बीच अपना केस समझा रहे हैं। इस लेक्चर में खान सर गिरफ्तारी से बचने की सफाई पेश करते हैं। तो आइए आपको भी खान सर की सेल्फ डिफेंस वाली क्लास में लिए चलते हैं।
0: ये लोग कहा कि खान सर के ऊपर माला चढ़ जाए, फोटो पे क्या चढ़ जाए माला, यही तो चाहते हैं लोग। अरे पागलो मेरे भाई लोग, एक बात बताए यार, वो हमला किसके ऊपर करने आया है? हमारे ऊपर। दिन में आया कि रात में? रात। अकेले आए ग्रुप में? पथराव किया कि नहीं? गोली चलाया कि नहीं चलाया? गार्ड को अधमरा किया कि नहीं किया? क्या FIR भी नहीं करें? ले अब पूछिए जरा ये बात। सबसे जरूरी चीज जो आप लोग को गुमराह किया जा रहा है, सेल्फ डिफेंस की फायरिंग चूंकि पुलिस लेट से पहुंची थी, पुलिस को आने में टाइम लगता है, हमें भी पता है कि 5 मिनट में पुलिस उड़ के नहीं आ जाएगी, तो सेल्फ डिफेंस में वो नहीं भाग रहे थे, उसको मार डालते तो कोई क्या करता? एक गार्ड का कर्तव्य क्या होता है? सुरक्षा करना।
1: और तो और खान सर अपनी कोचिंग के स्मार्ट क्लासरूम में 2 जून की घटना की CCTV फुटेज का पूरा विश्लेषण कर रहे हैं।
4: इसकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं की, जबकि सबके सामने ये लेके जा रहा है, मुद्दे से भटकाया जा रहा है, आप इसकी गिरफ्तारी करिए, ये आदमी कौन है और कैसे आता है 20-25 लोगों को उठा के लेके चला जाता है, 20-25 लोगों को एक साथ कैसे?
1: खान सर मार्कर से स्क्रीन पर आरोपियों को घेर घेर कर दिखा रहे हैं और छात्रों को बता रहे हैं कि देखिए इनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। खान सर उसका नाम विकास बताते हैं और उसकी पूरी पहचान भी बताते हैं।
4: इसका नाम विकास या विवेक करते हैं, विकास इसने बयान दिया है। देखो हम लोग तो पढ़ाने वाला, हम लोग इतना नहीं बता रहा था कौन कहा क्या काम कर रहा है, क्या हमने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया है?
1: फिर खान सर हाथ में किताब लेकर विद्या की कसम खाते हैं और कहते हैं कि कोचिंग पर लगातार गोलियां चली थी और पूरी सच्चाई सामने नहीं लाई जा रही है।
4: हमने दिखाया गोली चलते हुए आपको देख रहे हैं, अब आप बताइए आप अपनी आवाज उठा सकते हैं कि नहीं उठा सकते?
1: स्मार्ट क्लासरूम में लेक्चर देने वाले खान सर वेरी स्मार्ट हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कोचिंग में हुए गोलीकांड पर वो कैसे गच्चा खा गए और अपने ही बयानों से कैसे फंस गए वो आपको दिखाते हैं। खान सर ने पहले कहा उनके कोचिंग सेंटर पर रोशन आनंद के लोगों ने गोलियां चलाई, 10 राउंड फायरिंग हुई, फिर खान सर पलट गए और गोलियों की बात से मुकर गए। लेकिन जब गोलियां चलाते हुए खान सर के अपने ही गार्ड्स का वीडियो वायरल हो गया, फायरिंग करने वाले दो गार्ड्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और खान सर पर भी आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज हो गया, तो अब खान सर फिर से कोचिंग में गोलियां चलाने की थ्योरी ले आए हैं।
5: अभी इन लोग का बस यही है कि इतने कम फीस में नहीं पढ़ाया जाए और इतने हजारों संख्या में जो रिजल्ट आता है पूरी तरह से इतनी गोली चलाने लगे, 10 मिनट में ऐसा लगा कि जैसे अफरा तफरी होके रख गया। यहाँ पर 8-10 राउंड तो हम देखे हैं, यहाँ पे 8-10 राउंड हम देखे हैं, हमें क्या पता है। अभी PMCH में एडमिट है, उसका पूरा सर फाड़ दिया गया है यहाँ पर।
6: क्या लगता है कौन क्या हो गई है?
5: बगल की कोचिंग वाले
7: सर, आप खुद मौजूद थे यहाँ जब फायरिंग हो रही थी?
5: बिल्कुल, ये देखिए मेरा गार्ड है ये।
7: अच्छा,
5: इसका ये पूरी तरह से खून से इसको लहूलुहान कर दिया गया यहाँ पे।
7: तो गार्ड से क्या दुश्मनी थी?
5: बस की तुम ही खान सर को सब गार्ड है हमारा मार के रखते हैं। देखिए उस समय इतना घटना हुआ, अभी जो घायल है जो मेन, हम लोग तो अंदर से भी अपने चेंबर में थे, टीचर लोग क्लास ले रहे थे, जो गार्ड है उससे पूछा गया तो उसका कहना है कि सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, इतना मार के फोड़ दिया गया उसको।
4: अस्पष्ट गोलियां चल रही थी और अफरा तफरी इतना था कि किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि बाहर निकल के दे सके। यहाँ क्यों नहीं कोई आए लोग वगैरह, बहुत यही था कि तो वो उस समय आए रहते तो क्या रहते, क्या गोलियां चल रही है कि नहीं चल रही।
8: खान सर के बयानों ने ही खान सर को फंसा दिया और अब खान सर अपनी कोचिंग के द्वारा छात्रों से बचने का रास्ता खोज रहे हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार किसी भी समय खान सर को गिरफ्तार किया जा सकता है। ऐसा कहा जा रहा है कि खान सर कहाँ है इसका अभी फिलहाल किसी को पता नहीं।
1: लेकिन खान सर अब बुरी तरह से फंस चुके हैं कि अब पुलिस उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेगी। ऐसे में सवाल ये है कि क्या खान सर स्टूडेंट्स के जरिए पुलिस और प्रशासन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ये कहकर छात्रों को उकसा रहे हैं कि अगर उनका कोचिंग सेंटर बंद हो गया तो 6 महीने में कई कोचिंग संस्थानों की फीस 1-1.5 लाख रुपए तक हो जाएगी।
4: जिस दिन खान सर का आवाज दबाया गया उसके 6 महीने के अंदर आता फिर से फीस 1-1.5 लाख नहीं चली गई। तो आपको
0: जो आप लोगों को गुमराह किया जा रहा है, सेल्फ डिफेंस की फायरिंग, चूंकि पुलिस लेट से पहुंची थी, पुलिस को आने में टाइम लगता है, हमें भी पता है कि 5 मिनट में पुलिस उड़ के नहीं आ जाएगी।
1: और खान सर किसी हद तक अपने स्मार्ट क्लास से छात्रों को अपने पक्ष में इकट्ठा करने में कामयाब भी हो जाते हैं। जी हाँ, खान सर की गिरफ्तारी को देखते हुए उनकी कोचिंग खान ग्लोबल स्टडीज के छात्र मुसल्लापुर कोचिंग सेंटर में पहुंचने लगते हैं। बिहार पुलिस भर्ती के रिजल्ट को लेकर शुरू हुई लड़ाई में खान सर ने ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर को तो गिरफ्तार करवा दिया, लेकिन अब गोलीकांड का सच बाहर आने के बाद गिरफ्तारी की तलवार खुद खान सर पर भी लटक गई है।
9: बिहार पुलिस में जो शानदार रिजल्ट हुआ है उसी का साजिश से हमको फंसाया जा रहा है। किसान कोल्ड स्टोर के मालिक और खान सर जो है दोनों मिल करके जो है ज्ञान बिंदु को बर्बाद करने का पूरा प्रयास कर रहा है, लेकिन सत्यमेव जयते, हमेशा सत्य की जीत है।
1: लेकिन सवाल ये है कि कैसे पटना के दो कोचिंग संचालकों के बीच वर्चस्व की लड़ाई में एक तरह से कोचिंग वॉर छिड़ गई है और इस कोचिंग वॉर में अब गोलियां भी चल रही हैं। ऐसे में पुलिस सख्त एक्शन ले रही है। इस कोचिंग वॉर में खान सर बुरी तरह से फंस चुके हैं। पटना से शशि भूषण के साथ आज तक ब्यूरो।
8: खबर मोहाली से आई बेहद खौफनाक तस्वीर की, जहां एक सरफिरे आशिक ने ब्रेकअप के बाद अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के ऑफिस के अंदर चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी।

0: मोहाली के ऑफिस से आई ये तस्वीरें विचलित करने वाली हैं, जहां एक सिरफिरा आशिक हरजिंदर महिला सहकर्मी डिंपल पर अचानक से चाकुओं से हमला कर देता है। हमलावर ने एक के बाद एक करीब 30 बार लड़की पर चाकू चलाया। लड़की जान बचाकर चारों तरफ भागने की कोशिश करती है, लेकिन हमले जारी रहते हैं। बाकी सहकर्मी उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नाकाम साबित होते हैं। लड़की दम तोड़ देती है, लेकिन इसके बाद की तस्वीर और भयानक है, जहां वो लड़का सबके सामने खुद की गर्दन पर चाकू से ताबड़तोड़ वार करने लगता है और सबके सामने आत्महत्या की कोशिश करता है, जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है।
1: बेसिकली 25 से 30 बार चाकू का उसने वार किया, गर्दन पे भी है और पीछे हार्ट पे भी है। सो यू कैन से सीरियस, उसने मतलब 25 से 30 बार किए थे उसने, और अपने भी उसने ऐसे ही अपने आप को भी स्टैब किया है। अपने गले में भी उसके हैं, हार्ट में भी उसने अपने स्टैब किया अपने आप को भी, और ये सारी जो हैं, जो आप इनके वूंड्स बारे दैट डॉक्टर कैन टेल यू बेटर।
2: अभी पेरेंट्स के, दोनों साइड के पेरेंट्स का क्या
1: कहना है? मतलब जो लड़के के पेरेंट्स हैं, दे आर इन यूएस, दे विल बी कमिंग, पर अभी जो लड़की के पेरेंट्स हैं उनका हमने बयान लिखकर अभी पोस्टमार्टम करवाएंगे आज।
0: डिंपल पटियाला की रहने वाली थी, हरजिंदर भी पटियाला का है। दोनों में दोस्ती थी, प्यार था, अच्छे संबंध थे। करीब 3 साल से दोनों एक दूसरे को जानते थे, लेकिन कुछ दिनों से दोनों के रिश्तों में खटास आ गई थी। डिंपल ने ब्रेकअप कर लिया, हरजिंदर से मिलना जुलना छोड़ दिया, लेकिन हरजिंदर डिंपल को नहीं छोड़ना चाहता था। पुलिस की शुरुआती जाँच में पता चला है की हरजिंदर दोबारा से डिंपल के साथ रिश्ते ठीक करना चाहता था। गुरुवार को जब वो दफ्तर आया तो डिंपल से बात करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी और झगड़ा हो गया। इसके बाद जो तस्वीरें आई वो हैरान करने वाली थी। मोहाली से कमलजीत संधु के साथ आज तक ब्यूरो।
3: दिल्ली के मालवीय नगर होटल अग्निकांड में नए नए खुलासे हो रहे हैं। होटल मालिक ने एक ऐसी बात मान ली जो कि सिस्टम पर सवाल खड़े करती है। दावा है कि होटल मालिक लवकेश बजाज ने बताया कि होटल उनका अकाउंटेंट ऑपरेट कर रहा था। वहीं दिल्ली सरकार ने बड़ी ड्राइव चलाकर नियम तोड़ने वाले होटल्स रेस्टोरेंट्स पर एक्शन लिया। नोएडा में लगी आग ने फिर से सवाल खड़े कर दिए।
4: ये तस्वीर देखिए कि एक और होटल की तरफ जाती हुई एनसीबी की टीम, क्योंकि यहाँ पर पहले बिजली जो है वो काटी जाती है। आगे की तरफ मैं कहूँगा कि यहाँ पर जो टीम है वो आगे की तरफ जाती हुई दूसरा होटल, क्योंकि अब तक 2 से 3 होटल्स को जो है वो यहाँ पर अब सील कर दिया गया।
5: दिल्ली के मालवीय नगर में होटल अग्निकांड के बाद दिल्ली सरकार एक्शन मोड में दिख रही है। दक्षिणी दिल्ली के कई इलाकों में अवैध इमारतों की पहचान करके उन पर बुलडोजर चलाया गया। मालवीय नगर इलाके में हुए अग्निकांड ने देश को झकझोर दिया। इस इलाके में सुबह ही बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया। अवैध निर्माण के खिलाफ दिल्ली के अलग अलग इलाकों में रेखा गुप्ता सरकार फुल एक्शन में है, जिसके तहत साकेत, एमजी रोड, मालवीय नगर में सीलिंग और बुलडोजर कार्रवाई होती है।
4: देखिए मैं आपको बता दूं कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से जो ज्वाइंट कमेटी का गठन किया गया था, जिसमें डीएम, एसडीएम और एमसीडी दिल्ली पुलिस के साथ, अब इस वक्त दिल्ली के अलग अलग इलाके, चाहे वो मालवीय नगर हो, हौजरानी हो, साकेत हो, एमजी रोड हो, वहां पर बुलडोजर एक्शन के साथ साथ सीलिंग एक्शन भी जो है वो देखने को मिल रहा है। ये देखिए ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट के नाम पर जो इनलीगल तरीके से होटल चल रहे थे उस पर अब एमसीडी की तरफ से सीलिंग जो है वो यहाँ पर की जा रही है। सीलिंग की टीम, एमसीडी की टीम जो है वो यहाँ पर पहुंची है और तमाम यहाँ पर हौजरानी इलाके में जब ये मालवीय नगर में हादसा हुआ था जिसमें 21 लोगों की जान गई थी, और आप देखिए किस तरीके से यह तमाम होटल जो है वो बने हुए हैं, इन सब पर इस वक्त जो है वो ज्वाइंट कमेटी की जो टीम जो दिल्ली सरकार की तरफ से गठित की गई थी उसका एक्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। एक के बाद एक 18 ऐसी यूनिट्स हैं जहां पर इस वक्त एक्शन जो है वो देखने को मिल रहा है।
5: दक्षिणी दिल्ली के हौज खास में बेड एंड ब्रेकफास्ट होटल को एमसीडी की टीम ने सील किया। यहां भी नियमों की अनदेखी हो रही थी। दक्षिणी दिल्ली के गिटौरनी में भी अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया। यहाँ पर देखिए कितनी बड़ी इमारत नियमों की अनदेखी करके बना दी गई। यहाँ पर कई दुकानों को सील किया गया। इसके साथ पूर्वी दिल्ली के करावल नगर, हौज खास गांव में भी अतिक्रमण और सीलिंग की कार्रवाई हुई। दिल्ली सरकार ने अवैध निर्माण रोकने और बेड एंड ब्रेकफास्ट होटल को लेकर बड़ा फैसला लिया। भविष्य में मालवीय नगर अग्निकांड जैसा हादसा न हो, इसके लिए अब अफसरों की जिम्मेदारी भी तय की गई।
6: सरकारी निर्देशों का उल्लंघन करने पर 2 साल की सजा और मिलीभगत पाए जाने पर अधिकारियों पर भी कठोर कार्रवाई, जिसमें जेल तक और जुर्माने तक की कार्रवाई की जा सकती है उसको इन्वोक करने का फैसला सरकार ने लिया है।
5: दिल्ली के होटल अग्निकांड में 21 लोगों की मौत के सदमे से लोग उभरे भी नहीं थे कि सुबह सुबह नोएडा में दो जगह आग लगने से हड़कंप मच गया। आग लगने की पहली घटना नोएडा सेक्टर 74 में हुई, जहां 12वें फ्लोर के एक फ्लैट में आग लगती है। तेज हवा के चलते आग तेजी से फैलती है और फ्लैट की खिड़कियों से ऊंची लपटें निकलने लगी। आसमान में काले धुएं का गुबार फैल गया। इस हादसे ने दमकल विभाग की तैयारियों पर एक बार फिर सवाल उठा दिए। हालांकि बाद में इस आग पर काबू पाया गया। नोएडा के अपार्टमेंट में लगी आग की इस घटना का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया और अधिकारियों को तुरंत मौके पर पहुंचकर राहत बचाव और निगरानी करने के निर्देश दिए। नोएडा में आग लगने की एक और घटना सेक्टर 52 के एक पीजी में हुई। जिस पीजी में आग लगी उस बिल्डिंग में नीचे रेस्टोरेंट था। काफी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने यहां पर आग पर काबू पाया है।
3: दिल्ली की ही तरह मध्य प्रदेश के इंदौर में भी बड़ा हादसा हो सकता था। इंदौर में ग्राउंड फ्लोर पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों का शोरूम था, जिसमें आग लग गई। आग लगने से ऊपर की मंजिल पर रहने वाले कई परिवारों की जान खतरे में पड़ गई। लोगों का आरोप है कि दमकल विभाग की टीम काफी देर से पहुंची।
5: खिड़की के छज्जे पर लटका ये उस आम आदमी का परिवार है, जिसे जिम्मेदार सरकारी विभाग अक्सर मुसीबत के आगे अकेला छोड़ देता है। तस्वीरें मध्य प्रदेश के इंदौर की हैं, जहां पति पत्नी और एक मासूम बेटी की चुनौती मौत के चंगुल से खुद को बचाने की है। जिंदा रहने के लिए खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है। दमकल विभाग की टीम नदारद, इसीलिए पड़ोसी रस्सी फेंक रहे तो कोई सीढ़ी लगाने की कोशिश कर रहा है। वजह, बिल्डिंग में आग लगी है, घर के अंदर धुआं भरा है। मध्य प्रदेश के इंदौर में इलेक्ट्रिक शोरूम में लगी आग एक बार फिर सुरक्षा के सिस्टम पर सवाल उठाती। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड की तस्वीरें अभी धुंधली भी नहीं हुई। इंदौर के इस अग्निकांड ने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। हालांकि बस गनीमत की बात यह है कि यहां किसी जान माल का नुकसान नहीं हुआ।
7: पहली बार उठे जैसे हमने धुआं देखा और इसके अलावा हमने कुछ नहीं देखा, मतलब बच्ची और हमको सबको साथ में लेके बाउंड्री के बाहर इधर बालकनी के यहां पर पहुंच गए, खड़े रहे दीवार के साइड से जो पाइपलाइन इसको पकड़ के, मतलब फिर लोगों ने हमको देखा कि ये लोग भी ऊपर हैं, मतलब कब से हुए हैं।
8: बहुत दूर धुआं हो रहा था, घबराहट हो रही थी, सांस लेने में भी दिक्कत आ रही थी, तो हम इधर से कूद के और दूसरी बिल्डिंग पे गए तो उधर से लोगों ने हमको निकाला, बच्ची को भी निकाला, हमको रस्सी बांध के कमर में सीढ़ी से निकाला।
5: ग्राउंड फ्लोर पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों के शोरूम में जब आग लगी तब उसकी ऊपर की मंजिल पर रहने वाले लोग सो रहे। बताया जा रहा है कि शोरूम के बाहर कुछ एक फोर व्हीलर गाड़ी को चार्जिंग पर लगाया गया। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट को आग लगने की संभावित वजह माना जा रहा है।
9: इस शोरूम के ऊपर जो फ्लैट है, तकरीबन यहाँ पर 20 से 25 परिवार यहाँ रहते हैं इस बिल्डिंग के ऊपर, तो जब इसका धुआं ऊपर गया तो उन लोगों को निकलने में बड़ी परेशानी आ रही थी, तो जो पड़ोसी है इस पास की बिल्डिंग के जो लोग है उन्होंने सीढ़ियां लगा के रेस्टोरेंट को वहां से निकाला। लेकिन बहुत देर बाद जो है फायर ब्रिगेड आई यहाँ पर, क्योंकि जो रहवासी है क्षेत्रीय उन्होंने काफी मदद की और उन्होंने रेस्क्यू करके बाकी लोगों को निकाला।
5: गर्मियों में आग लगने की घटनाएं बढ़ती। दिल्ली में मंगलवार को एक होटल में आग लगने की घटना पूरे देश को दहला दी। दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर होटल टूरिस्ट स्टे में लगी आग में कुल 21 लोगों की जान गई, जिसमें 11 विदेशी थे। ऐसा नहीं कि दिल्ली या देश में इस तरह की पहली घटना। दिल्ली हो या फिर इंदौर, हर घटना सरकारी विभागों को बार बार खबरदार करती, लेकिन हर हादसे के बाद जैसे ही मामला शांत होता है संबंधित विभाग ढीले पड़ जाते हैं और आम आदमी सरकारी अफसरों की लापरवाही का शिकार होने लगता है।
3: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।

0: के साथ मंच पर पुतिन समेत दुनिया के बड़े दिग्गज। पुतिन ने भारत की तारीफ की, बताया प्रमुख साझेदार, आईटी सेक्टर के अग्रणी देशों में शामिल है इंडिया। सूरत में पीएम का विपक्ष पर हमला, कहा अराजकता फैलाकर अवसर तलाश रही है कांग्रेस, देश को नीचा दिखाने में जुटे हैं निराशावादी नेता। समुद्र मंथन मिशन में भारत को बड़ी सफलता, गहरे समुद्र में ऑयल इंडिया को मिली प्राकृतिक गैस, हरदीप सिंह पुरी का ऐलान। अग्निकांड के बाद दिल्ली सरकार का एक्शन, अवैध निर्माण पर बुलडोजर, कुछ इलाके सील, सीएम रेखा गुप्ता की बैठक में दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई के आदेश। और बागी नेता ऋतुव्रत को नेता विपक्ष बनाए जाने के खिलाफ, सोमवार को हाईकोर्ट जाएंगी ममता, ममता की बैठक में पहुंचे सिर्फ 3 लोकसभा सांसद। पश्चिम बंगाल में बड़ा राजनीतिक बदलाव नजर आ रहा है, जहां ममता बनर्जी की पार्टी हर दिन के साथ कमजोर होती जा रही है। विधायकों की बगावत के बाद अब ममता बनर्जी के सांसदों को लेकर भी खबरें आईं कि वो भी विद्रोह कर सकते हैं, और दावा तो यहां तक हो रहा है कि अगले सप्ताह की शुरुआत में तृणमूल कांग्रेस के सांसद बड़ा खेला कर सकते हैं।
1: क्या विधायकों के बाद अब सांसद भी तृणमूल कांग्रेस से अलग हो जाएंगे? क्या अगले हफ्ते की शुरुआत में ममता बनर्जी के सांसद भी अलग गुट बना लेंगे? ममता बनर्जी की पार्टी पर संकट गहराता जा रहा है। इसका साफ साफ संकेत ममता बनर्जी के कालीघाट वाले घर पर बैठक के दौरान मिलता है। पार्टी के 60 विधायकों के अलग गुट बनाने के दावे के बाद बुलाई गई इस बैठक में अभिषेक बनर्जी, कल्याण बनर्जी, माला रॉय शामिल हुई। इसके अलावा डेरेक ओब्रायन और डोला सेन भी ममता के घर पहुंचे। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं, 80 विधायकों वाली टीएमसी के सिर्फ 8 मौजूदा विधायकों और 2 पूर्व विधायकों ने बैठक में हिस्सा लिया। ममता बनर्जी के घर पर बुलाई गई इस बैठक में विधायकों की तरह सांसद भी गायब दिखे। 28 लोकसभा सांसदों वाली टीएमसी के चीफ के घर पर लोकसभा के 3 और 2 राज्यसभा सांसद पहुंचे, जिसके बाद खबरदार करता सवाल है कि क्या विधायकों के बाद अब सांसद भी ममता बनर्जी को टाटा बाय बाय करने वाले हैं? इस सवाल पर ममता बनर्जी के करीबी विधायक मदन मित्रा का जवाब सुनने लायक है।
2: ये विधायक बोल रहे हैं 23 सांसद उनके साथ हैं, बाकी विधायक बोल रहे हैं
3: वो पूरा बात कर सकता है, पूरा कह सकता है जब पूरा पार्टी उनका साथ है।
1: तो मदन मित्रा ने पार्टी के सांसदों के विद्रोह के सवाल को खारिज नहीं किया, बल्कि बागियों को चुनौती देकर ये बता दिया कि दाल में कहीं कुछ काला जरूर है।
3: 2,30,00,000 जनता ममता बनर्जी का नाम से वोट दिया, जो लोग जा रहे हैं उसमें से कोई मां का लाल है रेजिग्नेशन देके अपना क्षेत्रों में जाके बोलेंगे ममता को फोटो नहीं लेके मैं फिर से एक बार चुनाव लड़ने चाहता हूं, अगर उसका पास कोई चुनाव जीत के आए मैं उसको सलाम करवाऊंगा।
1: ममता के करीबियों के इस बयान को टीएमसी के सूत्रों के हवाले से आ रही खबर से समझा जा सकता है, जिसके मुताबिक टीएमसी में विधायक दल के बाद अब संसदीय दल में जल्दी टूट हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी के कई सांसद अभिषेक बनर्जी से नाराज बताए जा रहे हैं। नाराज सांसद एक अलग गुट बना सकते हैं। टीएमसी के लोकसभा में 28 सांसद अभी हैं। दल बदल कानून के तहत अलग समूह को मान्यता मिलने के लिए कम से कम 22 सांसदों का समर्थन जरूरी होगा। सूत्रों के अनुसार एक दर्जन से अधिक सांसद अलग ग्रुप बनाने के पक्ष में हैं। सूत्र कहते हैं कि पार्टी के एक बड़े वरिष्ठ सांसद इस संभावित बगावत की अगुवाई कर रहे हैं। राज्यसभा में टीएमसी के 13 सांसद हैं और वहां अलग समूह को मान्यता के लिए कम से कम 9 सांसदों का समर्थन चाहिए। ममता बनर्जी के विधायकों की टूट के बाद उनके घर बैठक में 41 सांसदों में से सिर्फ 5 सांसदों का पहुंचना अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या विधायकों के बाद सांसदों के टूटने की चर्चा है?
4: मानसिक तौर पे आप पार्टी के साथ नहीं है?
5: मानसिक तौर पे मैं पार्टी के साथ नहीं हूँ।
4: और ऐसे ही मानसिक तौर पे और कितने सांसद हैं तृणमूल में जो पार्टी के साथ नहीं है, आपको क्या पता है?
5: देखिए मैं तो किसी का मानसिक स्थिति को रीड नहीं कर पाता।
4: नहीं, बातचीत तो होती होगी।
5: बातचीत होती है, मेरे सुनने में जो है मैंने आपको बता दिया ना कि लोकसभा में ज्यादा मेंबर मैंने मेजोरिटी मेंबर नहीं।
1: सूत्रों के मुताबिक टीएमसी के 23 लोकसभा सांसद बागी गुट के संपर्क में कहे जा रहे हैं। माना जा रहा है कि अगले हफ्ते की शुरुआत में टीएमसी के लोकसभा सांसदों में टूट हो सकती है, मतलब कुछ ही दिनों में क्या खेला हो जाएगा।
3: दुनिया में सब कुछ हो सकता है ना, ऐसा कोई चीज नहीं है जो दुनिया में नहीं हो सकता है। लड़ाई जारी है।
1: विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की हार के बाद जिस तेजी से और बड़े पैमाने पर पार्टी के विधायकों का संतोष सामने आया वो अभूतपूर्व है, जिसका असर संसद में भी दिख सकता है।
4: कितने सांसद होंगे ऐसे? लोकसभा में आपके 29 सांसद है, आपको क्या सुनाई दे रहा है? कितने सांसद होंगे फिर?
5: 29 नहीं, 28 है।
4: 28
5: बसीरहाट आपका पेंडिंग है कलकत्ता हाई कोर्ट में,
4: क्या होने वाला है? आपको क्या सुनाई दे रहा है? आपको पार्टी के अंदर अभी भी है
5: मेजोरिटी चला जाए?
4: ये एक बड़ा बयान है आप दे रहे हैं कि मेजॉरिटी ही चला जाएगा?
5: मेजॉरिटी चला जाएगा।
1: टीएमसी में मची इस बगावत के लिए भले ही बागी अभिषेक बनर्जी को दोषी देते हों, लेकिन ममता बनर्जी को नेता मानने पर सब एकमत। इसीलिए जब ऋतुव्रत बनर्जी ने ममता को सलाहकार के रूप में सीमित करने की कोशिश की तो पाला बदलने वाले कई विधायकों ने विरोध जताया। हालांकि ऋतुव्रत इसे कोई चुनौती नहीं मानते और उन्हें भरोसा है कि बगावत करने वाले विधायकों की संख्या बढ़ेगी।
6: जहाँ तक हमारे आंकड़ा का सवाल है वो आंकड़ा बढ़ता जाएगा। जो आंकड़ा हम लोग प्रेजेंट किए थे 2/3 से ज्यादा, काफी सारे ज्यादा, वो जो आंकड़ा है जब आप लोग से मिलेंगे विधानसभा का अधिवेशन जो होगा वो आंकड़ा ऊपर जाएगा और आगे जाएगा।
1: विधानसभा चुनाव में हार के महीने भर के अंदर जिस तरह से ममता की पार्टी में टूट हुई उसे देखते हुए राजनीतिक हलकों में ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या आने वाले समय में टीएमसी के सांसद भी पार्टी का साथ छोड़ देंगे।
0: खबर कोचिंग वाले खान सर की, जी हाँ, कोचिंग वॉर में खान सर बुरी तरह से फंस गए हैं। पहले तो फैसल खान और खान सर ने अपने पड़ोसी वाली ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद को गिरफ्तार करवाया और अब कोचिंग गोलीकांड में खुद खान सर पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है।
7: इंसान घमंड अपने अच्छे समय में दिखाता है और उसका खामियाजा उसको अपने बुरे समय में भुगतना पड़ता है।
8: एयरबस A380 ये सबसे ऊंची जहाज है।
9: ये एरिया कौन सा है? मंचूरिया।
10: हिटलर ने ग्रेनेड बनाना चालू किया, ओ टैंक पनडुब्बी पानी वाली जहाज सब बनाया।
11: कोचिंग की दुनिया में खान सर इतना बड़ा नाम बन चुके हैं कि अब छात्रों के बीच लेक्चर देने के लिए वो भारी सुरक्षा बलों और हथियारबंद बॉडीगार्ड्स के साथ रेड कार्पेट पर चलते हुए ग्रैंड एंट्री लेते हैं।
7: याद रखिएगा, 1.5 साल की लगन के साथ पढ़ाई आपको पूरी दुनिया से 5 साल आगे रख देती है। अब कोई पोत पात के आएगा तुम कहते कितना बढ़िया लग रहे हो, तो वो पतेगा एकदम सियार लग रही हूँ, इसलिए एकदम अखंड सिंगल।
11: लेकिन अब खान सर का यही जलवा उनके लिए मुसीबत का सबब बन रहा है। 2 जून को खान सर के कोचिंग सेंटर पर हुए गोलीकांड में वो बुरी तरह से फंस चुके हैं।
7: आप सबके जीवन में कुछ न कुछ तकलीफ है तो इससे घबराना क्या है? अगर रात अंधेरी है तभी तारों के चमकने का अहमियत भी है।
11: खान सर पर पटना के कदम कुआं थाने में हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ है। जी हां, खान सर के गार्ड्स ने पुलिस को बयान दिया है कि उन्होंने हमें कहा तुम गोली चलाओ बाकी हम देख लेंगे। इसी आधार पर पुलिस ने खान सर के खिलाफ FIR दर्ज की है। BNS की धारा 109 के तहत ये केस दर्ज किया गया है। इसमें 10 साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है। इसमें अग्रिम जमानत भी नहीं मिल सकती है। पुलिस की FIR में 3 लोगों का नाम दर्ज है, फैजल खान उर्फ खान सर और उनके साथ उनके 2 गार्ड्स। फायरिंग करने वाले दोनों गार्ड्स के नाम प्रदीप कुमार और तलविंदर सिंह हैं। खान सर के ये दोनों निजी गार्ड्स उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। नोएडा की सिक्योरिटी एजेंसी से खान सर ने 17 गार्ड्स हायर किए हैं।
12: जो व्यक्ति जो वीडियो में दिख रहे हैं फायरिंग करते हुए, तो पहचान करके गिरफ्तार किया गया है और उनको भी भेजा जा रहा है। उनके हथियार जब्त करके फसल जांच कराया जा रहा है। आगे जो जांच में आएगा और उसके सबूत जो मिलेंगे हम लोग को सत्य
13: करेंगे। खान सर का क्या आरोप सिद्ध हुआ है? गार्ड ने जो बताया आखिर लोग के द्वारा जो एफआईआर भेजा गया उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि उन्होंने आदेश दिया था, क्या खान सर की गिरफ्तारी होगी सर?
12: उसमें आप लोगों को बताया कि जिस तरह का एविडेंस आएगा उस सबसे कार्रवाई होगी और इसमें जिसके ऊपर भी एविडेंस आएगा विधि व्यवस्था या अपराध इसके ऊपर भी होगी उनसे सख्त कार्रवाई की जाएगी। सबूतों के आधार पर
7: ये क्या है इसका? ये एग्जैक्ट इसी साइज का होता है।
11: और अब जिसमें खान सर को महारत हासिल है उसी रास्ते से खान सर बचकर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से कठिन और जटिल विषयों को खान सर बहुत ही सरल देसी और मजाकिया अंदाज में छात्रों को समझाते हैं, आज खान सर कोचिंग सेंटर में छात्रों के बीच अपना केस समझा रहे हैं। इस लेक्चर में खान सर गिरफ्तारी से बचने की सफाई पेश करते हैं। तो आइए आपको भी खान सर की सेल्फ डिफेंस वाली क्लास में लिए चलते हैं।
7: ये लोग कहा कि खान सर के ऊपर माला चढ़ जाए, फोटो पे क्या चढ़ जाए माला, यही तो चाहते हैं लोग। अरे पागलो मेरे भाई लोग, एक बात बता यार, वो हमला किसके ऊपर करने आया है? हमारे ऊपर। दिन में आया कि रात में? रात। अकेले आए ग्रुप में? पथराव किया कि नहीं? गोली चलाए कि नहीं चलाए? गार्ड को अधमरा किया कि नहीं किया? क्या एफआईआर भी नहीं करें? ले अब पूछिए जरा ये बात। सबसे जरूरी चीज जो आप लोगों को गुमराह किया जा रहा है, सेल्फ डिफेंस की फायरिंग, चूंकि पुलिस लेट से पहुंची थी, पुलिस को आने में टाइम लगता है, हमें भी पता है कि 5 मिनट में पुलिस उड़ के नहीं आ जाएगी, तो सेल्फ डिफेंस में वो नहीं भाग रहे थे, उसको मार डालते तो कोई क्या करता? एक गार्ड का कर्तव्य क्या होता है? सुरक्षा करना।
11: और तो और खान सर अपनी कोचिंग के स्मार्ट क्लासरूम में 2 जून की घटना की सीसीटीवी फुटेज का पूरा विश्लेषण कर रहे हैं।
14: इसकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं की जबकि सबके सामने ये लेके जा रहा है, मुद्दे से भटकाया जा रहा है, आप इसकी गिरफ्तारी करिए, ये आदमी कौन है और कैसे आता है 20-25 लोगों को उठा के लेके चला जाता है, 20-25 लोगों को एक साथ कैसे?
11: खान सर मार्कर से स्क्रीन पर आरोपियों को घेर घेर कर दिखा रहे हैं और छात्रों को बता रहे हैं कि देखिए इनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। खान सर उसका नाम विकास बताते हैं और उसकी पूरी पहचान भी बताते हैं।
14: इसका नाम विकास या विवेक करके है, विकास इसने बयान दिया है। देखो हम लोग तो पढ़ाने वाले आपके, हम लोग इतना नहीं बता रहा था कि कौन कहां क्या काम कर रहा है, क्या हमने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया है?
11: फिर खान सर हाथ में किताब लेकर विद्या की कसम खाते हैं और कहते हैं कि कोचिंग पर लगातार गोलियां चली थी और पूरी सच्चाई सामने नहीं लाई जा रही है।
14: हमने दिखाया गोली चलते हुए आपने देख रहे हैं, अब आप बताइए आप अपनी आवाज उठा सकते हैं कि नहीं उठा?
11: स्मार्ट क्लासरूम में लेक्चर देने वाले खान सर वेरी स्मार्ट हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कोचिंग में हुए गोलीकांड पर वो कैसे गच्चा खा गए और अपने ही बयानों से कैसे फंस गए वो आपको दिखाते हैं। खान सर ने पहले कहा उनके कोचिंग सेंटर पर रोशन आनंद के लोगों ने गोलियां चलाई, 10 राउंड फायरिंग हुई, फिर खान सर पलट गए और गोलियों की बात से मुकर गए, लेकिन जब गोलियां चलाते हुए खान सर के अपने ही गार्ड्स का वीडियो वायरल हो गया, फायरिंग करने वाले 2 गार्ड्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और खान सर पर भी आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज हो गया, तो अब खान सर फिर से कोचिंग में गोलियां चलाने की थ्योरी ले आए हैं।
15: अभी इन लोग का बस यही है कि इतने कम फीस में नहीं पढ़ाया जाए और इतने हजारों संख्या में जो रिजल्ट आता है पूरी तरह से इतनी गोली चलाने लगे, 10 मिनट में ऐसा लगा कि जैसे अफरा तफरी होके रख गया यहाँ पर। 8-10 राउंड तो हम देखे हैं यहाँ पे, 8-10 राउंड हम देखे हैं, हमें क्या पता है? अभी PMCH में एडमिट है, उसका पूरा सर फाड़ दिया गया है यहाँ पर।
16: क्या लगता है कौन क्या होगा?
15: बगल की कोचिंग वाले
17: सर आप खुद मौजूद थे यहाँ जब फायरिंग हो रही थी?
15: बिल्कुल, ये देखिए मेरा गार्ड है ये।
17: अच्छा,
15: इसका ये पूरी तरह से खून से इसको लहूलुहान कर दिया गया यहाँ पे।
17: तो गार्ड से क्या दुश्मनी थी?
15: बस कि तुम ही खान सर को सब गार्ड है हमारा मार के रखा है। देखिए उस समय इतना घटना हुआ, अभी जो घायल है जो मेन, हम लोग तो अंदर से भी अपने चेंबर में थे, टीचर लोग क्लास ले रहे थे, जो गार्ड है उससे पूछा गया तो उसका कहना है कि सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, इतना मार के फोड़ दिया गया उसको।
14: हम लोगों ने तो यही भी दिया है कि यही हम लोग का ये है। अब अगर कोई विद्या के मंदिरों में जाए, अस्पष्ट गोलियां चल रही थी और अफरा तफरी इतना था कि किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि बाहर निकल के देख सके। यहाँ क्यों नहीं कोई आए लोग वगैरह, बहुत यही था कि तो उस समय आए रहे थे, बताए रहे थे क्या गोलियां चल रही है कि नहीं चल रही।
0: खान सर के बयानों ने ही खान सर को फंसा दिया और अब खान सर अपनी कोचिंग के द्वारा छात्रों से बचने का रास्ता खोज रहे हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार किसी भी समय खान सर को गिरफ्तार किया जा सकता है। ऐसा कहा जा रहा है कि खान सर कहां है इसका अभी फिलहाल किसी को पता नहीं।
11: लेकिन खान सर अब बुरी तरह से फंस चुके हैं कि अब पुलिस उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेगी। ऐसे में सवाल ये है कि क्या खान सर स्टूडेंट्स के जरिए पुलिस और प्रशासन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ये कहकर छात्रों को उकसा रहे हैं कि अगर उनका कोचिंग सेंटर बंद हो गया तो 6 महीने में कई कोचिंग संस्थानों की फीस 1 से 1.5 लाख रुपए तक हो जाएगी।
14: जिस दिन खान सर को आवाज दबाया गया उसके 6 महीने के अंदर आकर फिर से फीस 1.5 लाख नहीं चली गई। तो आपको
18: आप लोगों को गुमराह किया जा रहा है। सेल्फ डिफेंस की फायरिंग, चूंकि पुलिस लेट से पहुंची थी, पुलिस को आने में टाइम लगता है, हमें भी पता है कि 5 मिनट में पुलिस उड़ के नहीं आ जाएगी।
11: और खान सर किसी हद तक अपने स्मार्ट क्लास से छात्रों को अपने पक्ष में इकट्ठा करने में कामयाब भी हो जाते हैं। जी हाँ, खान सर की गिरफ्तारी को देखते हुए उनकी कोचिंग खान ग्लोबल स्टडीज के छात्र मुसल्लापुर कोचिंग सेंटर में पहुंचने लगते हैं। बिहार पुलिस भर्ती के रिजल्ट को लेकर शुरू हुई लड़ाई में खान सर ने ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर को तो गिरफ्तार करवा दिया, लेकिन अब गोलीकांड का सच बाहर आने के बाद गिरफ्तारी की तलवार खुद खान सर पर भी लटक गई है।
19: बिहार पुलिस में जो शानदार रिजल्ट हुआ है उसी का साजिश है, हमको फंसाया जा रहा है। किसान कोल्ड स्टोर के मालिक और खान सर जो है दोनों मिल करके जो है ज्ञान बिंदु को बर्बाद करने का पूरा प्रयास कर रहा है, लेकिन सत्यमेव जयते, हमेशा सत्य की जीत है।
11: लेकिन सवाल ये है कि कैसे पटना के 2 कोचिंग संचालकों के बीच वर्चस्व की लड़ाई में एक तरह से कोचिंग वॉर छिड़ गई है और इस कोचिंग वॉर में अब गोलियां भी चल रही हैं। ऐसे में पुलिस सख्त एक्शन ले रही है। इस कोचिंग वॉर में खान सर बुरी तरह से फंस चुके हैं। पटना से शशि भूषण के साथ आज तक ब्यूरो।
0: खबर मोहाली से आई बेहद खौफनाक तस्वीर की, जहां एक सरफिरे आशिक ने ब्रेकअप के बाद अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के ऑफिस के अंदर चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी।

0: मोहाली के ऑफिस से आई ये तस्वीरें विचलित करने वाली हैं, जहां एक सिरफिरा आशिक हरजिंदर महिला सहकर्मी डिंपल पर अचानक से चाकुओं से हमला कर देता है। हमलावर ने एक के बाद एक करीब 30 बार लड़की पर चाकू चलाया। लड़की जान बचाकर चारों तरफ भागने की कोशिश करती है, लेकिन हमले जारी रहते हैं। बाकी सहकर्मी उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नाकाम साबित होते हैं। लड़की दम तोड़ देती है, लेकिन इसके बाद की तस्वीर और भयानक है, जहां वो लड़का सबके सामने खुद की गर्दन पर चाकू से ताबड़तोड़ वार करने लगता है और सबके सामने आत्महत्या की कोशिश करता है, जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है।
1: बेसिकली 25 से 30 बार चाकू का उसने वार किया, गर्दन पे भी है और पीछे हार्ट पे भी है। सो यू कैन से सीरियस, उसने मतलब 25 से 30 बार किए थे उसने, और अपने भी उसने ऐसे ही अपने आप को भी स्टैब किया है। अपने गले में भी उसके हैं, हार्ट में भी उसने अपने स्टैब किया अपने आप को भी। और ये सारी जो हैं, जो आप इनके वूंड्स बारे दैट डॉक्टर कैन टेल यू बेटर।
2: अभी पेरेंट्स के, दोनों साइड के पेरेंट्स का क्या
1: कहना है? मतलब जो लड़के के पेरेंट्स हैं, दे आर इन यूएस, दे विल बी कमिंग, पर अभी जो लड़की के पेरेंट्स हैं उनका हमने बयान लिखकर अभी पोस्टमार्टम करवाएंगे आज।
0: डिंपल पटियाला की रहने वाली थी, हरजिंदर भी पटियाला का है। दोनों में दोस्ती थी, प्यार था, अच्छे संबंध थे। करीब 3 साल से दोनों एक दूसरे को जानते थे, लेकिन कुछ दिनों से दोनों के रिश्तों में खटास आ गई थी। डिंपल ने ब्रेकअप कर लिया, हरजिंदर से मिलना जुलना छोड़ दिया, लेकिन हरजिंदर डिंपल को नहीं छोड़ना चाहता था। पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि हरजिंदर दोबारा से डिंपल के साथ रिश्ते ठीक करना चाहता था। गुरुवार को जब वो दफ्तर आया तो डिंपल से बात करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी और झगड़ा हो गया। इसके बाद जो तस्वीरें आई वो हैरान करने वाली थी। मोहाली से कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो।
3: दिल्ली के मालवीय नगर होटल अग्निकांड में नए नए खुलासे हो रहे हैं। होटल मालिक ने एक ऐसी बात मान ली जो कि सिस्टम पर सवाल खड़े करती है। दावा है कि होटल मालिक लवकेश बजाज ने बताया कि होटल उनका अकाउंटेंट ऑपरेट कर रहा था। वहीं दिल्ली सरकार ने बड़ी ड्राइव चलाकर नियम तोड़ने वाले होटल्स रेस्टोरेंट्स पर एक्शन लिया। नोएडा में लगी आग ने फिर से सवाल खड़े कर दिए।
4: ये तस्वीरें देखिए कि एक और होटल की तरफ जाती हुई एनसीबी की टीम, क्योंकि यहाँ पर पहले बिजली जो है वो काटी जाती है। आगे की तरफ मैं कहूँगा कि यहाँ पर जो टीम है वो आगे की तरफ जाती हुई दूसरा होटल, क्योंकि अब तक 2 से 3 होटल्स को जो है वो यहाँ पर अब सील कर दिया गया।
5: दिल्ली के मालवीय नगर में होटल अग्निकांड के बाद दिल्ली सरकार एक्शन मोड में दिख रही है। दक्षिणी दिल्ली के कई इलाकों में अवैध इमारतों की पहचान करके उन पर बुलडोजर चलाया गया। मालवीय नगर इलाके में हुए अग्निकांड ने देश को झकझोर दिया। इस इलाके में सुबह ही बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया। अवैध निर्माण के खिलाफ दिल्ली के अलग अलग इलाकों में रेखा गुप्ता सरकार फुल एक्शन में है, जिसके तहत साकेत, एमजी रोड, मालवीय नगर में सीलिंग और बुलडोजर कार्रवाई होती है।
4: देखिए मैं आपको बता दूं कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से जो ज्वाइंट कमेटी का गठन किया गया था, जिसमें डीएम, एसडीएम और एमसीडी दिल्ली पुलिस के साथ, अब इस वक्त दिल्ली के अलग अलग इलाके, चाहे वो मालवीय नगर हो, हौजरानी हो, साकेत हो, एमजी रोड हो, वहां पर बुलडोजर एक्शन के साथ साथ सीलिंग एक्शन भी जो है वो देखने को मिल रहा है। देखिए ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट के नाम पर जो इनलीगल तरीके से होटल चल रहे थे, उस पर अब एमसीडी की तरफ से सीलिंग जो है वो यहां पर की जा रही है। सीलिंग की टीम, एमसीडी की टीम जो है वो यहां पर पहुंची है और तमाम यहां पर हौजरानी इलाके में, जब ये मालवीय नगर में हादसा हुआ था जिसमें 21 लोगों की जान गई थी, और आप देखिए किस तरीके से यह तमाम होटल जो है वो बने हुए हैं, इन सब पर इस वक्त जो है वो ज्वाइंट कमेटी की जो टीम जो दिल्ली सरकार की तरफ से गठित की गई थी, उसका एक्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। एक के बाद एक 18 ऐसी यूनिट्स हैं जहां पर इस वक्त एक्शन जो है वो देखने को मिल रहा है।
5: दक्षिणी दिल्ली के हौज खास में बेड एंड ब्रेकफास्ट होटल को एमसीडी की टीम ने सील किया। यहां भी नियमों की अनदेखी हो रही थी। दक्षिणी दिल्ली के गिटौरनी में भी अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया। यहाँ पर देखिए कितनी बड़ी इमारत नियमों की अनदेखी करके बना दी गई। यहाँ पर कई दुकानों को सील किया गया। इसके साथ पूर्वी दिल्ली के करावल नगर, हौज खास गांव में भी अतिक्रमण और सीलिंग की कार्रवाई हुई। दिल्ली सरकार ने अवैध निर्माण रोकने और बेड एंड ब्रेकफास्ट होटल को लेकर बड़ा फैसला लिया। भविष्य में मालवीय नगर अग्निकांड जैसा हादसा न हो, इसके लिए अब अफसरों की जिम्मेदारी भी तय की गई।
6: सरकारी निर्देशों का उल्लंघन करने पर 2 साल की सजा और मिलीभगत पाए जाने पर अधिकारियों पर भी कठोर कार्रवाई, जिसमें जेल तक और जुर्माने तक की कार्रवाई की जा सकती है उसको इन्वोक करने का फैसला सरकार ने लिया है।
5: दिल्ली के होटल अग्निकांड में 21 लोगों की मौत के सदमे से लोग उभरे भी नहीं थे कि सुबह सुबह नोएडा में दो जगह आग लगने से हड़कंप मच गया। आग लगने की पहली घटना नोएडा सेक्टर 74 में हुई, जहां 12वें फ्लोर के एक फ्लैट में आग लगती है। तेज हवा के चलते आग तेजी से फैलती है और फ्लैट की खिड़कियों से ऊंची लपटें निकलने लगी। आसमान में काले धुएं का गुबार फैल गया। इस हादसे ने दमकल विभाग की तैयारियों पर एक बार फिर सवाल उठा दिए। हालांकि बाद में इस आग पर काबू पाया गया। नोएडा के अपार्टमेंट में लगी आग की इस घटना का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया और अधिकारियों को तुरंत मौके पर पहुंचकर राहत बचाव और निगरानी करने के निर्देश दिए। नोएडा में आग लगने की एक और घटना सेक्टर 52 के एक पीजी में हुई। जिस पीजी में आग लगी उस बिल्डिंग में नीचे रेस्टोरेंट था। काफी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने यहां पर आग पर काबू पाया है।
3: दिल्ली की ही तरह मध्य प्रदेश के इंदौर में भी बड़ा हादसा हो सकता था। इंदौर में ग्राउंड फ्लोर पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों का शोरूम था, जिसमें आग लग गई। आग लगने से ऊपर की मंजिल पर रहने वाले कई परिवारों की जान खतरे में पड़ गई। लोगों का आरोप है कि दमकल विभाग की टीम काफी देर से पहुंची।
5: खिड़की के छज्जे पर लटका ये उस आम आदमी का परिवार है, जिसे जिम्मेदार सरकारी विभाग अक्सर मुसीबत के आगे अकेला छोड़ देता है। तस्वीरें मध्य प्रदेश के इंदौर की हैं, जहां पति पत्नी और एक मासूम बेटी की चुनौती मौत के चंगुल से खुद को बचाने की है। जिंदा रहने के लिए खुद को बचाने की कोशिश कर रहा दमकल विभाग की टीम नदारद, इसीलिए पड़ोसी रस्सी फेंक रहे तो कोई सीढ़ी लगाने की कोशिश कर रहा। वजह बिल्डिंग में आग लगी है, घर के अंदर धुआं भरा है। मध्य प्रदेश के इंदौर में इलेक्ट्रिक शोरूम में लगी आग एक बार फिर सुरक्षा के सिस्टम पर सवाल उठाती। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड की तस्वीरें अभी धुंधली भी नहीं हुई। इंदौर के इस अग्निकांड ने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। हालांकि बस गनीमत की बात यह है कि यहां किसी जान माल का नुकसान नहीं हुआ।
7: पहली बार उठे जैसे हमने धुआं देखा और इसके अलावा हमने कुछ नहीं देखा, मतलब बच्ची और हमको सबको साथ में लेके बाउंड्री के बाहर इधर बालकनी के यहां पर पहुंच गए, खड़े रहे दीवार के साइड से जो पाइपलाइन इसको पकड़ के, मतलब फिर लोगों ने हमको देखा कि ये लोग भी ऊपर हैं, मतलब कब से हुए हैं।
8: बहुत दूर धुआं हो रहा था, घबराहट हो रही थी, सांस लेने में भी दिक्कत आ रही थी, तो हम इधर से कूद के और दूसरी बिल्डिंग पे गए तो उधर से लोगों ने हमको निकाला, बच्ची को भी निकाला, हमको रस्सी बांध के कमर में सीढ़ी से निकाला।
5: ग्राउंड फ्लोर पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों के शोरूम में जब आग लगी तब उसकी ऊपर की मंजिल पर रहने वाले लोग सो रहे। बताया जा रहा है कि शोरूम के बाहर कुछ एक फोर व्हीलर गाड़ी को चार्जिंग पर लगाया गया। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट को आग लगने की संभावित वजह माना जा रहा है।
9: इस शोरूम के ऊपर जो फ्लैट है, तकरीबन यहाँ पर 20 से 25 परिवार यहाँ रहते हैं इस बिल्डिंग के ऊपर, तो जब इसका धुआं ऊपर गया तो उन लोगों को निकलने में बड़ी परेशानी आ रही थी, तो जो पड़ोसी है इस पास की बिल्डिंग के जो लोग है उन्होंने सीढ़ियां लगा के रेस्टोरेंट वहां से निकाला, लेकिन बहुत देर बाद जो है फायर ब्रिगेड आई यहाँ पर, क्योंकि जो रहवासी है क्षेत्रीय उन्होंने काफी मदद की और उन्होंने रेस्क्यू करके बाकी लोगों को निकाला।
5: गर्मियों में आग लगने की घटनाएं बढ़ती। दिल्ली में मंगलवार को एक होटल में आग लगने की घटना पूरे देश को दहला दी। दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर होटल टूरिस्ट स्टे में लगी आग में कुल 21 लोगों की जान गई, जिसमें 11 विदेशी थे। ऐसा नहीं कि दिल्ली या देश में इस तरह की पहली घटना। दिल्ली हो या फिर इंदौर, हर घटना सरकारी विभागों को बार बार खबरदार करती, लेकिन हर हादसे के बाद जैसे ही मामला शांत होता है संबंधित विभाग ढीले पड़ जाते हैं और आम आदमी सरकारी अफसरों की लापरवाही का शिकार होने लगता है।
3: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।

0: और वो शेर हमारी तरफ आ रहा है, थोड़ा सा पीछे की तरफ हट रहे हैं इस समय।
1: वाकई आप ये समझ लीजिए कि आपके ऊपर बंदूकें तली हो और आपके सामने शेर आ जाए, दोनों में फर्क है।

0: के साथ मंच पर पुतिन समेत दुनिया के बड़े दिग्गज। पुतिन ने भारत की तारीफ की, बताया प्रमुख साझेदार, आईटी सेक्टर के अग्रणी देशों में शामिल है इंडिया। सूरत में पीएम का विपक्ष पर हमला, कहा अराजकता फैलाकर अवसर तलाश रही है कांग्रेस, देश को नीचा दिखाने में जुटे हैं निराशावादी नेता। समुद्र मंथन मिशन में भारत को बड़ी सफलता, गहरे समुद्र में ऑयल इंडिया को मिली प्राकृतिक गैस, हरदीप सिंह पुरी का ऐलान। अग्निकांड के बाद दिल्ली सरकार का एक्शन, अवैध निर्माण पर बुलडोजर, कुछ इलाके सील, सीएम रेखा गुप्ता की बैठक में दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई के आदेश। और बागी नेता ऋतुव्रत को नेता विपक्ष बनाए जाने के खिलाफ, सोमवार को हाईकोर्ट जाएंगी ममता, ममता की बैठक में पहुंचे सिर्फ 3 लोकसभा सांसद। पश्चिम बंगाल में बड़ा राजनीतिक बदलाव नजर आ रहा है, जहां ममता बनर्जी की पार्टी हर दिन के साथ कमजोर होती जा रही है। विधायकों की बगावत के बाद अब ममता बनर्जी के सांसदों को लेकर भी खबरें आईं कि वो भी विद्रोह कर सकते हैं, और दावा तो यहां तक हो रहा है कि अगले सप्ताह की शुरुआत में तृणमूल कांग्रेस के सांसद बड़ा खेला कर सकते हैं।
1: जब विधायकों के बाद अब सांसद भी तृणमूल कांग्रेस से अलग हो जाएंगे, क्या अगले हफ्ते की शुरुआत में ममता बनर्जी के सांसद भी अलग गुट बना लेंगे? ममता बनर्जी की पार्टी पर संकट गहराता जा रहा है। इसका साफ साफ संकेत ममता बनर्जी के कालीघाट वाले घर पर बैठक के दौरान मिलता है। पार्टी के 60 विधायकों के अलग गुट बनाने के दावे के बाद बुलाई गई इस बैठक में अभिषेक बनर्जी, कल्याण बनर्जी, माला रॉय शामिल हुई। इसके अलावा डेरेक ओब्रायन और डोला सेन भी ममता के घर पहुंचे। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं, 80 विधायकों वाली टीएमसी के सिर्फ 8 मौजूदा विधायकों और 2 पूर्व विधायकों ने बैठक में हिस्सा लिया। ममता बनर्जी के घर पर बुलाई गई इस बैठक में विधायकों की तरह सांसद भी गायब दिखे। 28 लोकसभा सांसदों वाली टीएमसी के चीफ के घर पर लोकसभा के 3 और 2 राज्यसभा सांसद पहुंचे, जिसके बाद खबरदार करता सवाल है कि क्या विधायकों के बाद अब सांसद भी ममता बनर्जी को टाटा बाय बाय करने वाले हैं? इस सवाल पर ममता बनर्जी के करीबी विधायक मदन मित्रा का जवाब सुनने लायक है।
2: ये विधायक बोल रहे हैं 23 सांसद उनके साथ हैं, बाकी विधायक बोल रहे हैं
3: वो पूरा बात कर सकता है, पूरा कह सकता है जब पूरा पार्टी उनका साथ है।
1: तो मदन मित्रा ने पार्टी के सांसदों के विद्रोह के सवाल को खारिज नहीं किया, बल्कि बागियों को चुनौती देकर ये बता दिया कि दाल में कहीं कुछ काला जरूर है।
3: 2,30,00,000 जनता ममता बनर्जी का नाम से वोट दिया, जो लोग जा रहे हैं उसमें से कोई मां का लाल है रेजिग्नेशन देके अपना क्षेत्रों में जाके बोलेंगे ममता को फोटो नहीं लेके मैं फिर से एक बार चुनाव लड़ने चाहता हूं, अगर उसका पास कोई चुनाव जीत के आए मैं उसको सलाम करवाऊंगा।
1: ममता के करीबियों के इस बयान को टीएमसी के सूत्रों के हवाले से आ रही खबर से समझा जा सकता है, जिसके मुताबिक टीएमसी में विधायक दल के बाद अब संसदीय दल में जल्दी टूट हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी के कई सांसद अभिषेक बनर्जी से नाराज बताए जा रहे हैं। नाराज सांसद एक अलग गुट बना सकते हैं। टीएमसी के लोकसभा में 28 सांसद अभी हैं। दल बदल कानून के तहत अलग समूह को मान्यता मिलने के लिए कम से कम 22 सांसदों का समर्थन जरूरी होगा। सूत्रों के अनुसार एक दर्जन से अधिक सांसद अलग ग्रुप बनाने के पक्ष में हैं। सूत्र कहते हैं कि पार्टी के एक बड़े वरिष्ठ सांसद इस संभावित बगावत की अगुवाई कर रहे हैं। राज्यसभा में टीएमसी के 13 सांसद हैं और वहां अलग समूह को मान्यता के लिए कम से कम 9 सांसदों का समर्थन चाहिए। ममता बनर्जी के विधायकों की टूट के बाद उनके घर बैठक में 41 सांसदों में से सिर्फ 5 सांसदों का पहुंचना अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या विधायकों के बाद सांसदों के टूटने की चर्चा है?
4: मानसिक तौर पे आप पार्टी के साथ नहीं है?
5: मानसिक तौर पे मैं पार्टी के साथ नहीं हूँ।
4: और ऐसे ही मानसिक तौर पे और कितने सांसद हैं तृणमूल में जो पार्टी के साथ नहीं है, आपको क्या पता है?
5: देखिए मैं तो किसी का मानसिक स्थिति को रीड नहीं कर पाता।
4: नहीं, बातचीत तो होती होगी।
5: बातचीत होती है, मेरे सुनने में जो है मैंने आपको बता दिया ना कि लोकसभा में ज्यादा मेंबर मैंने मेजोरिटी मेंबर नहीं।
1: सूत्रों के मुताबिक टीएमसी के 23 लोकसभा सांसद बागी गुट के संपर्क में कहे जा रहे हैं। माना जा रहा है कि अगले हफ्ते की शुरुआत में टीएमसी के लोकसभा सांसदों में टूट हो सकती है, मतलब कुछ ही दिनों में क्या खेला हो जाएगा।
3: दुनिया में सब कुछ हो सकता है ना, ऐसा कोई चीज नहीं है जो दुनिया में नहीं हो सकता है। लड़ाई जारी आज।
1: विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की हार के बाद जिस तेजी से और बड़े पैमाने पर पार्टी के विधायकों का संतोष सामने आया वो अभूतपूर्व है, जिसका असर संसद में भी दिख सकता है।
4: कितने सांसद होंगे ऐसे लोकसभा में? आपके 29 सांसद है, आपको क्या सुनाई दे रहा है? कितने सांसद होंगे फिर?
5: 29 नहीं, 28 है।
4: 28
5: बसीरहाट आपका पेंडिंग है कलकत्ता हाईकोर्ट में,
4: क्या होने वाला है? आपको क्या सुनाई दे रहा है? आपको पार्टी के अंदर अभी भी है
5: मेजोरिटी चला जाए?
4: ये एक बड़ा बयान है आप दे रहे हैं कि मेजॉरिटी ही चला जाएगा?
5: मेजॉरिटी चला जाएगा।
1: टीएमसी में मची इस बगावत के लिए भले ही बागी अभिषेक बनर्जी को दोषी देते हों, लेकिन ममता बनर्जी को नेता मानने पर सब एकमत। इसीलिए जब ऋतुव्रत बनर्जी ने ममता को सलाहकार के रूप में सीमित करने की कोशिश की तो पाला बदलने वाले कई विधायकों ने विरोध जताया। हालांकि ऋतुव्रत इसे कोई चुनौती नहीं मानते और उन्हें भरोसा है कि बगावत करने वाले विधायकों की संख्या बढ़ेगी।
6: जहां तक हमारे आंकड़ा का सवाल है वो आंकड़ा बढ़ता जाएगा। जो आंकड़ा हम लोग प्रेजेंट किए थे 2/3 से ज्यादा, काफी सारे ज्यादा, वो जो आंकड़ा है जब आप लोग से मिलेंगे विधानसभा का अधिवेशन जो होगा वो आंकड़ा ऊपर जाएगा और आगे जाएगा।
1: विधानसभा चुनाव में हार के महीने भर के अंदर जिस तरह से ममता की पार्टी में टूट हुई उसे देखते हुए राजनीतिक हलकों में ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या आने वाले समय में टीएमसी के सांसद भी पार्टी का साथ छोड़ देंगे।
0: और अब खबर उत्तर प्रदेश

0: यादव भी योगी की खामियों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं।
1: हम देखते हैं, हमने हर घर नल की योजना को आगे बढ़ाया, पता लगा कोई टोंटी चोरी कर रहा है।
2: योगी ने भले ही अपने इस बयान में किसी का नाम न लिया हो, लेकिन टोंटी चोरी शब्द के बाद योगी की मुस्कुराहट ने यूपी की सियासत के 10 साल पुराने चैप्टर को फिर से खोल दिया, जब अखिलेश के सीएम बंगला खाली होने के बाद इन आरोपों पर जमकर घमासान मचा था।
3: अगर हमारे पे ये इल्जाम नहीं, हम टोंटी ले गए हैं, हमारे घर को गंगा जल से धुला हो गया। आप भूल सकते हो, मैं भूल नहीं सकता, मैं नहीं भूल सकता।
2: उधर योगी के बयान के जवाब में अखिलेश यादव ने भी बिना किसी का नाम लिए एक तंज भरा ट्वीट किया। वनस्पति विवेक छीन लेती है और निर्दोष लोगों की हत्याओं का खौफ रातों की नींद, नहीं तो पूरे होश में इतने ऊंचे पद पर बैठकर इतना निकृष्ट बयान कोई भी नहीं देता है। कुछ लोग अपनी असफलता के लिए दूसरों को दोषी ठहराते हैं, ये हार की हताशा बोल रही है, क्योंकि कुदरत का बुलडोजर अब घूम गया है। इसके बाद योगी के हमलों की दूसरी किश्त जारी हुई, जहां निशाने पर एक बार फिर विपक्ष था।
4: अच्छे लोगों को चुनोगे, अच्छा परिणाम आएगा। माफिया को चुन करके भेजोगे तो खून भी चूस डालेगा। विकास का पैसा तो हजम करेगा ही करेगा, संपत्तियों पर भी माफिया कब्जा करता है।
2: यूपी में अब चुनाव की तैयारियों ने पूरा जोर पकड़ लिया है, जिसका अंदाजा नेताओं के बयानों से लगाया जा सकता है। आज तक ब्यूरो।
0: खबर कोचिंग वाले खान सर की, जहां कोचिंग वॉर में खान सर बुरी तरह से फंस गए हैं। पहले तो फैसल खान और खान सर ने अपने पड़ोसी वाली ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद को गिरफ्तार करवाया और अब कोचिंग गोलीकांड में खुद खान सर पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है।
5: इंसान घमंड अपने अच्छे समय में दिखाता है और उसका खामियाजा उसको अपने बुरे समय में भुगतना पड़ता है। एयरबस A380 ये सबसे ऊंची जहाज,
6: ये एरिया कौन सा है? मंचूरिया।
5: हिटलर ने ग्रेनेड बनाना चालू किया, वो टैंक पनडुब्बी पानी वाली जहाज सब बनाया।
7: कोचिंग की दुनिया में खान सर इतना बड़ा नाम बन चुके हैं कि अब छात्रों के बीच लेक्चर देने के लिए वो भारी सुरक्षा बलों और हथियारबंद बॉडीगार्ड्स के साथ रेड कार्पेट पर चलते हुए ग्रैंड एंट्री लेते हैं।
5: याद रखिएगा, 1.5 साल की लगन के साथ पढ़ाई आपको पूरी दुनिया से 5 साल आगे रख देती है। अब कोई पोत पात क्या आएगा, तुम कहते कितना बढ़िया लग रहे हो, तो वो पतेगा एकदम सीआर लग रही हूँ, इसलिए एकदम अखंड सिंगल।
7: लेकिन अब खान सर का यही जलवा उनके लिए मुसीबत का सबब बन रहा है। 2 जून को खान सर के कोचिंग सेंटर पर हुए गोलीकांड में वो बुरी तरह से फंस चुके हैं।
5: आप सबके जीवन में कुछ न कुछ तकलीफ है, तो इससे घबराना क्या है? अगर रात अंधेरी है तभी तारों के चमकने का अहमियत भी है।
7: खान सर पर पटना के कदम कुआं थाने में हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ है। जी हां, खान सर के गार्ड्स ने पुलिस को बयान दिया है कि उन्होंने हमें कहा तुम गोली चलाओ, बाकी हम देख लेंगे। इसी आधार पर पुलिस ने खान सर के खिलाफ FIR दर्ज की है। BNS की धारा 109 के तहत ये केस दर्ज किया गया है। इसमें 10 साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है। इसमें अग्रिम जमानत भी नहीं मिल सकती है। पुलिस की FIR में 3 लोगों का नाम दर्ज है, फैजल खान उर्फ खान सर और उनके साथ उनके 2 गार्ड्स। फायरिंग करने वाले दोनों गार्ड्स के नाम प्रदीप कुमार और तलविंदर सिंह हैं। खान सर के ये दोनों निजी गार्ड्स उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। नोएडा की सिक्योरिटी एजेंसी से खान सर ने 17 गार्ड्स हायर किए हैं।
8: दो व्यक्ति जो वीडियो में दिख रहे हैं फायरिंग करते हुए, तो पहचान करके तो गिरफ्तार किया गया है और उनको भी भेजा जा रहा है, उनके हथियार जब्त करके फसल जांच कराया जा रहा है। आगे जो जांच में आएगा और उसके सबूत जो मिलेंगे हम लोग को सफाई करेंगे।
9: खान सर का क्या आरोप सिद्ध हुआ है? गार्ड ने जो बताया अखिल लोग के द्वारा जो FIR भेजा गया उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि उन्हीं ने आदेश दिया था, क्या खान सर की गिरफ्तारी होगी सर?
8: मैंने आप लोगों को बताया कि जिस तरह का लोग एविडेंस आएगा उस सबसे कार्रवाई होगी और इसमें जिसके ऊपर भी एविडेंस आएगा विधि व्यवस्था या अपराध इसके ऊपर भी होगी, उनसे सख्त कार्रवाई की जाएगी। सबूतों के आधार पर।

0: ये एग्जैक्ट इसी साइज का होता है।
1: और अब जिसमें खान सर को महारत हासिल है, उसी रास्ते से खान सर बचकर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से कठिन और जटिल विषयों को खान सर बहुत ही सरल, देसी और मजाकिया अंदाज में छात्रों को समझाते हैं, आज खान सर कोचिंग सेंटर में छात्रों के बीच अपना केस समझा रहे हैं। इस लेक्चर में खान सर गिरफ्तारी से बचने की सफाई पेश करते हैं। तो आइए आपको भी खान सर की सेल्फ डिफेंस वाली क्लास में लिए चलते हैं।
0: ये लोग कहा कि खान सर के ऊपर माला चढ़ जाए, फोटो पे क्या चढ़ जाए माला, यही तो चाहते हैं लोग। अरे पागलो मेरे भाई लोग, एक बात बताए यार, वो हमला किसके ऊपर करने आया है? हमारे ऊपर। दिन में आया कि रात में?
2: रात।
0: अकेले आए ग्रुप में? पथराव किया कि नहीं? गोली चलाया कि नहीं चलाया? गार्ड को अधमरा किया कि नहीं किया? क्या FIR भी नहीं करें? ले अब पूछिए जरा ये बात। सबसे जरूरी चीज जो आप लोग को गुमराह किया जा रहा है, सेल्फ डिफेंस की फायरिंग, चूंकि पुलिस लेट से पहुंची थी, पुलिस को आने में टाइम लगता है, हमें भी पता है कि 5 मिनट में पुलिस उड़ के नहीं आ जाएगी, तो सेल्फ डिफेंस में वो नहीं भाग रहे थे, उसको मार डालते तो कोई क्या करता? एक गार्ड का कर्तव्य क्या होता है? सुरक्षा करना।
1: और तो और खान सर अपनी कोचिंग के स्मार्ट क्लासरूम में 2 जून की घटना की CCTV फुटेज का पूरा विश्लेषण कर रहे हैं।
3: इसकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं की, जबकि सबके सामने ये लेके जा रहा है, मुद्दे से भटकाया जा रहा है। आप इसकी गिरफ्तारी करिए, ये आदमी कौन है और कैसे आता है 20-25 लोगों को उठा के लेके चला जाता है, 20-25 लोगों को एक साथ कैसे?
1: खान सर मार्कर से स्क्रीन पर आरोपियों को घेर घेर कर दिखा रहे हैं और छात्रों को बता रहे हैं कि देखिए इनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। खान सर उसका नाम विकास बताते हैं और उसकी पूरी पहचान भी बताते हैं।
3: इसका नाम विकास या विवेक करते हैं, विकास। इसने बयान दिया है, देखो हम लोग तो पढ़ाने वाले आपके, हम लोग को इतना नहीं पता रहता कि कौन कहां क्या काम कर रहा है, क्या हमने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया है?
1: फिर खान सर हाथ में किताब लेकर विद्या की कसम खाते हैं और कहते हैं कि कोचिंग पर लगातार गोलियां चली थी और पूरी सच्चाई सामने नहीं लाई जा रही है।
3: हमने दिखाया गोली चलते हुए, आप देख रहे हैं। अब आप बताइए, आप अपनी आवाज उठा सकते हैं कि नहीं उठा?
1: स्मार्ट क्लासरूम में लेक्चर देने वाले खान सर वेरी स्मार्ट हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कोचिंग में हुए गोलीकांड पर वो कैसे गच्चा खा गए और अपने ही बयानों से कैसे फंस गए वो आपको दिखाते हैं। खान सर ने पहले कहा उनके कोचिंग सेंटर पर रोशन आनंद के लोगों ने गोलियां चलाई, 10 राउंड फायरिंग हुई, फिर खान सर पलट गए और गोलियों की बात से मुकर गए। लेकिन जब गोलियां चलाते हुए खान सर के अपने ही गार्ड्स का वीडियो वायरल हो गया, फायरिंग करने वाले 2 गार्ड्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और खान सर पर भी आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज हो गया, तो अब खान सर फिर से कोचिंग में गोलियां चलाने की थ्योरी ले आए हैं।
4: अभी इन लोग का बस यही है कि इतने कम फीस में नहीं पढ़ाया जाए और इतने हजारों संख्या में जो रिजल्ट आता है, पूरी तरह से इतनी गोली चलाने लगे 10 मिनट में, ऐसा लगा कि जैसे अफरा तफरी होके रख गया। यहाँ पर 8-10 राउंड तो हम देखे हैं, यहाँ पे 8-10 राउंड हम देखे हैं, हमें क्या पता है। अभी PMCH में एडमिट है, उसका पूरा सर फाड़ दिया गया है यहाँ पर।
5: सर क्या लगता है कौन क्या होगा?
4: बगल की कोचिंग वाले।
6: सर आप खुद मौजूद थे यहाँ जब फायरिंग हो रही थी?
4: बिल्कुल, ये देखिए मेरा गार्ड है ये।
6: अच्छा,
4: इसका ये पूरी तरह से खून से इसको लहूलुहान कर दिया गया यहाँ पे।
6: तो गार्ड से क्या दुश्मनी थी?
4: बस की तुम ही खान सर को सब गार्ड है हमारा, मार के रखा है। देखिए उस समय इतना घटना हुआ, अभी जो घायल है, जो मेन, हम लोग तो अंदर से भी अपने चेंबर में थे, टीचर लोग क्लास ले रहे थे, जो गार्ड है उससे पूछा गया तो उसका कहना है कि सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, इतना मार के फोड़ दिया गया।
3: यही विद्या के मंदिर अस्पष्ट गोलियां चल रही थी और अफरा तफरी इतना था कि किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि बाहर निकल के देख सके। यहाँ क्यों नहीं कोई आए लोग वगैरह, बहुत यही था कि तो उस समय आए रहते, बताए रहते क्या गोलियां चल रही है कि नहीं चल रही।
2: خان سر کے بیانوں نے ہی خان سر کو پھنسا دیا اور اب خان سر اپنی کوچنگ کے دوارا چھاتروں سے بچنے کا راستہ کھوج رہے ہیں. پولیس سوتروں کے انوسار کسی بھی سمے خان سر کو گرفتار کیا جا سکتا ہے. ایسا کہا جا رہا ہے کہ خان سر کہاں ہے اس کا ابھی فی الحال کسی کو پتا نہیں.
1: لیکن خان سر اب بری طرح سے پھنس چکے ہیں کہ اب پولیس ان کے خلاف سخت ایکشن لے گی. ایسے میں سوال یہ ہے کہ کیا خان سر اسٹوڈینٹس کے ذریعے پولیس اور پرشاسن پر دباؤ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ کہہ کر چھاتروں کو اکسا رہے ہیں کہ اگر ان کا کوچنگ سینٹر بند ہو گیا تو 6 مہینے میں کئی کوچنگ سنستھانوں کی فیس 1 سے 1.5 لاکھ روپے تک ہو جائے گی.
3: جس دن خان سر کا آواز دبایا گیا اس کے 6 مہینے کے اندر آتا ہے پھر سے فیس 1.5 لاکھ نہیں چلی گئی. تو آپ
0: جو آپ لوگ کو گمراہ کیا جا رہا ہے سیلف ڈیفنس کی فائرنگ چونکہ پولیس لیٹ سے پہنچی تھی پولیس کو آنے میں ٹائم لگتا ہے ہمیں بھی بتائے گی 5 منٹ میں پولیس اڑ کے نہیں آ جائے گی.
1: اور خان سر کسی حد تک اپنے اسمارٹ کلاس سے چھاتروں کو اپنے پکش میں اکٹھا کرنے میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں. جی ہاں خان سر کی گرفتاری کو دیکھتے ہوئے ان کی کوچنگ خان گلوبل اسٹڈیز کے چھاتر مسلح پور کوچنگ سینٹر میں پہنچنے لگتے ہیں. بہار پولیس بھرتی کے ریزلٹ کو لے کر شروع ہوئی لڑائی میں خان سر نے گیان بندو کوچنگ کے ڈائریکٹر کو تو گرفتار کروا دیا لیکن اب گولی کانڈ کا سچ باہر آنے کے بعد گرفتاری کی تلوار خود خان سر پر بھی لٹک گئی ہے.
7: بہار پولیس میں جو شاندار ریزلٹ ہوا ہے اسی کا سازش سے ہم کو پھنسایا جا رہا ہے. کسان کولڈ اسٹور کے مالک اور خان سر جو ہے دونوں مل کر کے جو ہے گیان بندو کو برباد کرنے کا پورا پریاس کر رہا ہے لیکن ستیمیو جیتے ہمیشہ ستیہ کی جیت.
1: لیکن سوال یہ ہے کہ کیسے پٹنہ کے 2 کوچنگ سنچالکوں کے بیچ ورچسو کی لڑائی میں ایک طرح سے کوچنگ وار چھڑ گئی ہے اور اس کوچنگ وار میں اب گولیاں بھی چل رہی ہیں. ایسے میں پولیس سخت ایکشن لے رہی ہے. اس کوچنگ وار میں خان سر بری طرح سے پھنس چکے ہیں. پٹنہ سے ششی بھوشن کے ساتھ آج تک بیورو.
2: خبر موہالی سے آئی بے حد خوفناک تصویر کی جہاں ایک سرفرے عاشق نے بریک اپ کے بعد اپنی ایکس گرل فرینڈ کے آفس کے اندر چاقوؤں سے گوت کر ہتیا کر دی.

0: मोहाली के ऑफिस से आई ये तस्वीरें विचलित करने वाली हैं, जहां एक सिरफिरा आशिक हरजिंदर महिला सहकर्मी डिंपल पर अचानक से चाकू से हमला कर देता है। हमलावर ने एक के बाद एक करीब 30 बार लड़की पर चाकू चलाया। लड़की जान बचाकर चारों तरफ भागने की कोशिश करती है, लेकिन हमले जारी रहते हैं। बाकी सहकर्मी उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नाकाम साबित होते हैं। लड़की दम तोड़ देती है, लेकिन इसके बाद की तस्वीर और भयानक है, जहां वो लड़का सबके सामने खुद की गर्दन पर चाकू से ताबड़तोड़ वार करने लगता है और सबके सामने आत्महत्या की कोशिश करता है, जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है।
1: बेसिकली 25 से 30 बार चाकू का उसने वार किया, गर्दन पे भी है और पीछे हार्ट पे भी है। सो यू कैन से सीरियस उसने मतलब 25 से 30 बार किए थे उसने, और अपने भी उसने ऐसे ही अपने आप को भी स्टैब किया है। अपने गले में भी उसके हैं, हार्ट में भी उसने अपने स्टैब किया अपने आप को भी, और ये सारी जो हैं जो आप इनके वुंड्स बारे दैट डॉक्टर कैन टेल यू बेटर।
2: अभी पेरेंट्स के दोनों साइड के पेरेंट्स का क्या
1: कहना है? मतलब जो लड़के के पेरेंट्स हैं दे आर इन यूएस, दे विल बी कमिंग, पर अभी जो लड़की के पेरेंट्स हैं उनका हमने बयान लिखकर अभी पोस्टमार्टम करवाएंगे आज।
0: डिंपल पटियाला की रहने वाली थी, हरजिंदर भी पटियाला का है। दोनों में दोस्ती थी, प्यार था, अच्छे संबंध थे। करीब 3 साल से दोनों एक दूसरे को जानते थे, लेकिन कुछ दिनों से दोनों के रिश्तों में खटास आ गई थी। डिंपल ने ब्रेकअप कर लिया, हरजिंदर से मिलना जुलना छोड़ दिया, लेकिन हरजिंदर डिंपल को नहीं छोड़ना चाहता था। पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि हरजिंदर दोबारा से डिंपल के साथ रिश्ते ठीक करना चाहता था। गुरुवार को जब वो दफ्तर आया तो डिंपल से बात करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी और झगड़ा हो गया। इसके बाद जो तस्वीरें आई वो हैरान करने वाली थी। मोहाली से कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो।
3: दिल्ली के मालवीय नगर होटल अग्निकांड में नए नए खुलासे हो रहे हैं। होटल मालिक ने एक ऐसी बात मान ली जो कि सिस्टम पर सवाल खड़े करती है। दावा है कि होटल मालिक लवकेश बजाज ने बताया कि होटल उनका अकाउंटेंट ऑपरेट कर रहा था। वहीं दिल्ली सरकार ने बड़ी ड्राइव चलाकर नियम तोड़ने वाले होटल्स रेस्टोरेंट्स पर एक्शन लिया। नोएडा में लगी आग ने फिर से सवाल खड़े कर दिए।
4: ये तस्वीरें देखिए कि एक और होटल की तरफ जाती हुई एमसीडी की टीम, क्योंकि यहाँ पर पहले बिजली जो है वो काटी जाती है। आगे की तरफ मैं कहूँगा कि यहाँ पर जो टीम है वो आगे की तरफ जाती हुई दूसरा होटल, क्योंकि अब तक 2 से 3 होटल्स को जो है वो यहाँ पर अब सील कर दिया गया।
5: दिल्ली के मालवीय नगर में होटल अग्निकांड के बाद दिल्ली सरकार एक्शन मोड में दिख रही है। दक्षिणी दिल्ली के कई इलाकों में अवैध इमारतों की पहचान करके उन पर बुलडोजर चलाया गया। मालवीय नगर इलाके में हुए अग्निकांड ने देश को झकझोर दिया। इस इलाके में सुबह ही बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया। अवैध निर्माण के खिलाफ दिल्ली के अलग अलग इलाकों में रेखा गुप्ता सरकार फुल एक्शन में है, जिसके तहत साकेत, एमजी रोड, मालवीय नगर में सीलिंग और बुलडोजर कार्रवाई होती है।
4: देखिए मैं आपको बता दूं कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से जो ज्वाइंट कमेटी का गठन किया गया था, जिसमें डीएम, एसडीएम और एमसीडी दिल्ली पुलिस के साथ, अब इस वक्त दिल्ली के अलग अलग इलाके, चाहे वो मालवीय नगर हो, हौजरानी हो, साकेत हो, एमजी रोड हो, वहां पर बुलडोजर एक्शन के साथ साथ सीलिंग एक्शन भी जो है वो देखने को मिल रहा है। ये देखिए ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट के नाम पर जो इनलीगल तरीके से होटल चल रहे थे उस पर अब एमसीडी की तरफ से सीलिंग जो है वो यहाँ पर की जा रही है। सीलिंग की टीम, एमसीडी की टीम जो है वो यहाँ पर पहुंची है और तमाम यहाँ पर हौजरानी इलाके में जब ये मालवीय नगर में हादसा हुआ था जिसमें 21 लोगों की जान गई थी, और आप देखिए किस तरीके से यह तमाम होटल जो है वो बने हुए हैं, इन सब पर इस वक्त जो है वो ज्वाइंट कमेटी की जो टीम जो दिल्ली सरकार की तरफ से गठित की गई थी उसका एक्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। एक के बाद एक 18 ऐसी यूनिट्स हैं जहां पर इस वक्त एक्शन जो है वो देखने को मिल रहा है।
5: दक्षिणी दिल्ली के हौज खास में बेड एंड ब्रेकफास्ट होटल को एमसीडी की टीम ने सील किया। यहां भी नियमों की अनदेखी हो रही थी। दक्षिणी दिल्ली के गिटौरनी में भी अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया। यहाँ पर देखिए कितनी बड़ी इमारत नियमों की अनदेखी करके बना दी गई। यहाँ पर कई दुकानों को सील किया गया। इसके साथ पूर्वी दिल्ली के करावल नगर, हौज खास गांव में भी अतिक्रमण और सीलिंग की कार्रवाई हुई। दिल्ली सरकार ने अवैध निर्माण रोकने और बेड एंड ब्रेकफास्ट होटल को लेकर बड़ा फैसला लिया। भविष्य में मालवीय नगर अग्निकांड जैसा हादसा न हो, इसके लिए अब अफसरों की जिम्मेदारी भी तय की गई।
6: सरकारी निर्देशों का उल्लंघन करने पर 2 साल की सजा और मिलीभगत पाए जाने पर अधिकारियों पर भी कठोर कार्रवाई, जिसमें जेल तक और जुर्माने तक की कार्रवाई की जा सकती है उसको इन्वोक करने का फैसला सरकार ने लिया है।
5: दिल्ली के होटल अग्निकांड में 21 लोगों की मौत के सदमे से लोग उभरे भी नहीं थे कि सुबह सुबह नोएडा में दो जगह आग लगने से हड़कंप मच गया। आग लगने की पहली घटना नोएडा सेक्टर 74 में हुई, जहां 12वें फ्लोर के एक फ्लैट में आग लगती है। तेज हवा के चलते आग तेजी से फैलती है और फ्लैट की खिड़कियों से ऊंची लपटें निकलने लगी। आसमान में काले धुएं का गुबार फैल गया। इस हादसे ने दमकल विभाग की तैयारियों पर एक बार फिर सवाल उठा दिए। हालांकि बाद में इस आग पर काबू पाया गया। नोएडा के अपार्टमेंट में लगी आग की इस घटना का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया और अधिकारियों को तुरंत मौके पर पहुंचकर राहत बचाव और निगरानी करने के निर्देश दिए। नोएडा में आग लगने की एक और घटना सेक्टर 52 के एक पीजी में हुई। जिस पीजी में आग लगी उस बिल्डिंग में नीचे रेस्टोरेंट था। काफी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने यहां पर आग पर काबू पाया है।
3: दिल्ली की ही तरह मध्य प्रदेश के इंदौर में भी बड़ा हादसा हो सकता था। इंदौर में ग्राउंड फ्लोर पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों का शोरूम था, जिसमें आग लग गई। आग लगने से ऊपर की मंजिल पर रहने वाले कई परिवारों की जान खतरे में पड़ गई। लोगों का आरोप है कि दमकल विभाग की टीम काफी देर से पहुंची।
5: खिड़की के छज्जे पर लटका ये उस आम आदमी का परिवार है, जिसे जिम्मेदार सरकारी विभाग अक्सर मुसीबत के आगे अकेला छोड़ देता है। तस्वीरें मध्य प्रदेश के इंदौर की हैं, जहां पति पत्नी और एक मासूम बेटी की चुनौती मौत के चंगुल से खुद को बचाने की है। जिंदा रहने के लिए खुद को बचाने की कोशिश कर रहा दमकल विभाग की टीम नदारद, इसीलिए पड़ोसी रस्सी फेंक रहे तो कोई सीढ़ी लगाने की कोशिश कर रहा। वजह बिल्डिंग में आग लगी है, घर के अंदर धुआं भरा है। मध्य प्रदेश के इंदौर में इलेक्ट्रिक शोरूम में लगी आग एक बार फिर सुरक्षा के सिस्टम पर सवाल उठाती। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड की तस्वीरें अभी धुंधली भी नहीं हुई। इंदौर के इस अग्निकांड ने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। हालांकि बस गनीमत की बात यह है कि यहां किसी जान माल का नुकसान नहीं हुआ।
7: पहली बार उठे जैसे हमने धुआं देखा और इसके अलावा हमने कुछ नहीं देखा, मतलब बच्ची और हमको सबको साथ में लेके बाउंड्री के बाहर इधर बालकनी के यहां पर पहुंच गए, खड़े रहे दीवार के साइड से जो पाइपलाइन इसको पकड़ के, मतलब फिर लोगों ने हमको देखा कि ये लोग भी ऊपर हैं, मतलब फंसे हुए हैं।
8: बहुत दूर धुआं हो रहा था, घबराहट हो रही थी, सांस लेने में भी दिक्कत आ रही थी, तो हम इधर से कूद के और दूसरी बिल्डिंग पे गए तो उधर से लोगों ने हमको निकाला, बच्ची को भी निकाला, हमको रस्सी बांध के कमर में सीढ़ी से निकाला।
5: ग्राउंड फ्लोर पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों के शोरूम में जब आग लगी तब उसकी ऊपर की मंजिल पर रहने वाले लोग सो रहे। बताया जा रहा है कि शोरूम के बाहर कुछ एक फोर व्हीलर गाड़ी को चार्जिंग पर लगाया गया। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट को आग लगने की संभावित वजह माना जा रहा है।
9: इस शोरूम के ऊपर जो फ्लैट है, तकरीबन यहाँ पर 20 से 25 परिवार यहाँ रहते हैं इस बिल्डिंग के ऊपर, तो जब इसका धुआं ऊपर गया तो उन लोगों को निकलने में बड़ी परेशानी आ रही थी, तो जो पड़ोसी है इस पास की बिल्डिंग के जो लोग है उन्होंने सीढ़ियां लगा के रेस्क्यू कर उनको वहां से निकाला। लेकिन बहुत देर बाद जो है फायर ब्रिगेड आई यहाँ पर, क्योंकि जो रहवासी है क्षेत्रीय उन्होंने काफी मदद की और उन्होंने रेस्क्यू करके बाकी लोगों को निकाला।
5: गर्मियों में आग लगने की घटनाएं बढ़ती। दिल्ली में मंगलवार को एक होटल में आग लगने की घटना पूरे देश को दहला दी। दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर होटल टूरिस्ट स्टे में लगी आग में कुल 21 लोगों की जान गई, जिसमें 11 विदेशी थे। ऐसा नहीं कि दिल्ली या देश में इस तरह की पहली घटना। दिल्ली हो या फिर इंदौर, हर घटना सरकारी विभागों को बार बार खबरदार करती, लेकिन हर हादसे के बाद जैसे ही मामला शांत होता है संबंधित विभाग ढीले पड़ जाते हैं और आम आदमी सरकारी अफसरों की लापरवाही का शिकार होने लगता है।
3: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।

0: साथ मंच पर पुतिन समेत दुनिया के बड़े दिग्गज। पुतिन ने भारत की तारीफ की, बताया प्रमुख साझेदार, आईटी सेक्टर के अग्रणी देशों में शामिल है इंडिया। सूरत में पीएम का विपक्ष पर हमला, कहा अराजकता फैलाकर अवसर तलाश रही है कांग्रेस, देश को नीचा दिखाने में जुटे हैं निराशावादी नेता। समुद्र मंथन मिशन में भारत को बड़ी सफलता, गहरे समुद्र में ऑयल इंडिया को मिली प्राकृतिक गैस, हरदीप सिंह पुरी का ऐलान। अग्निकांड के बाद दिल्ली सरकार का एक्शन, अवैध निर्माण पर बुलडोजर, कुछ इलाके सील, सीएम रेखा गुप्ता की बैठक में दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई के आदेश। और बागी नेता ऋतुव्रत को नेता विपक्ष बनाए जाने के खिलाफ, सोमवार को हाईकोर्ट जाएंगी ममता, ममता की बैठक में पहुंचे सिर्फ 3 लोकसभा सांसद। पश्चिम बंगाल में बड़ा राजनीतिक बदलाव नजर आ रहा है, जहां ममता बनर्जी की पार्टी हर दिन के साथ कमजोर होती जा रही है। विधायकों की बगावत के बाद अब ममता बनर्जी के सांसदों को लेकर भी खबरें आईं कि वो भी विद्रोह कर सकते हैं, और दावा तो यहां तक हो रहा है कि अगले सप्ताह की शुरुआत में तृणमूल कांग्रेस के सांसद बड़ा खेला कर सकते हैं।
1: जब विधायकों के बाद अब सांसद भी तृणमूल कांग्रेस से अलग हो जाएंगे, क्या अगले हफ्ते की शुरुआत में ममता बनर्जी के सांसद भी अलग गुट बना लेंगे? ममता बनर्जी की पार्टी पर संकट गहराता जा रहा है। इसका साफ साफ संकेत ममता बनर्जी के कालीघाट वाले घर पर बैठक के दौरान मिलता है। पार्टी के 60 विधायकों के अलग गुट बनाने के दावे के बाद बुलाई गई इस बैठक में अभिषेक बनर्जी, कल्याण बनर्जी, माला रॉय शामिल हुई। इसके अलावा डेरेक ओब्रायन और डोला सेन भी ममता के घर पहुंचे। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं, 80 विधायकों वाली टीएमसी के सिर्फ 8 मौजूदा विधायकों और 2 पूर्व विधायकों ने बैठक में हिस्सा लिया। ममता बनर्जी के घर पर बुलाई गई इस बैठक में विधायकों की तरह सांसद भी गायब दिखे। 28 लोकसभा सांसदों वाली टीएमसी के चीफ के घर पर लोकसभा के 3 और 2 राज्यसभा सांसद पहुंचे, जिसके बाद खबरदार करता सवाल है कि क्या विधायकों के बाद अब सांसद भी ममता बनर्जी को टाटा बाय बाय करने वाले। इस सवाल पर ममता बनर्जी के करीबी विधायक मदन मित्रा का जवाब सुनने लायक है।
2: बागी विधायक बोल रहे हैं 23 सांसद उनके साथ हैं, बागी विधायक बोल रहे हैं
3: वो पूरा बात कर सकता है, पूरा कह सकता है जब पूरा पार्टी उनका साथ है।
1: तो मदन मित्रा ने पार्टी के सांसदों के विद्रोह के सवाल को खारिज नहीं किया, बल्कि बागियों को चुनौती देकर ये बता दिया कि दाल में कहीं कुछ काला जरूर है।
3: 2,30,00,000 जनता ममता बनर्जी का नाम से वोट दिया, जो लोग जा रहे हैं उसमें से कोई मां का लाल है रेजिग्नेशन देके अपना क्षेत्रों में जाके बोलेंगे ममता को फोटो नहीं लेके मैं फिर से एक बार चुनाव लड़ने चाहता हूं, अगर उसका पास कोई चुनाव जीत के आए मैं उसको सलाम करूंगा।
1: ममता के करीबियों के इस बयान को टीएमसी के सूत्रों के हवाले से आ रही खबर से समझा जा सकता है, जिसके मुताबिक टीएमसी में विधायक दल के बाद अब संसदीय दल में जल्दी टूट हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी के कई सांसद अभिषेक बनर्जी से नाराज बताए जा रहे हैं। नाराज सांसद एक अलग गुट बना सकते हैं। टीएमसी के लोकसभा में 28 सांसद अभी हैं। दल बदल कानून के तहत अलग समूह को मान्यता मिलने के लिए कम से कम 22 सांसदों का समर्थन जरूरी होगा। सूत्रों के अनुसार एक दर्जन से अधिक सांसद अलग ग्रुप बनाने के पक्ष में हैं। सूत्र कहते हैं कि पार्टी के एक बड़े वरिष्ठ सांसद इस संभावित बगावत की अगुवाई कर रहे हैं। राज्यसभा में टीएमसी के 13 सांसद हैं और वहां अलग समूह को मान्यता के लिए कम से कम 9 सांसदों का समर्थन चाहिए। ममता बनर्जी के विधायकों की टूट के बाद उनके घर बैठक में 41 सांसदों में से सिर्फ 5 सांसदों का पहुंचना अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या विधायकों के बाद सांसदों के टूटने की चर्चा है?
4: मानसिक तौर पे आप पार्टी के साथ नहीं है?
5: मानसिक तौर पे मैं पार्टी के साथ नहीं हूँ।
4: और ऐसे ही मानसिक तौर पे और कितने सांसद हैं तृणमूल में जो पार्टी के साथ नहीं है, आपको क्या पता है?
5: देखिए, मैं तो किसी का मानसिक स्थिति को रीड नहीं कर पाता।
4: नहीं, बातचीत तो होती होगी।
5: बातचीत होती है, मेरे सुनने में जो है मैंने आपको बता दिया ना कि लोकसभा में ज्यादा मेंबर मैंने मेजोरिटी मेंबर नहीं।
1: सूत्रों के मुताबिक टीएमसी के 23 लोकसभा सांसद बागी गुट के संपर्क में कहे जा रहे हैं। माना जा रहा है कि अगले हफ्ते की शुरुआत में टीएमसी के लोकसभा सांसदों में टूट हो सकती है, मतलब कुछ ही दिनों में क्या खेला हो जाएगा।
3: दुनिया में सब कुछ हो सकता है ना, ऐसा कोई चीज नहीं है जो दुनिया में नहीं हो सकता है। लड़ाई जारी है।
1: विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की हार के बाद जिस तेजी से और बड़े पैमाने पर पार्टी के विधायकों का संतोष सामने आया वह अभूतपूर्व है, जिसका असर संसद में भी दिख सकता है।
4: कितने सांसद होंगे ऐसे लोकसभा में? आपके 29 सांसद है, आपको क्या सुनाई दे रहा है? कितने सांसद होंगे फिर?
5: 29 नहीं, 28 है।
4: 28
5: बसीरहाट आपका पेंडिंग है कलकत्ता हाई कोर्ट में,
4: क्या होने वाला है? आपको क्या सुनाई दे रहा है? आपको पार्टी के अंदर अभी भी है
5: मेजोरिटी चल रही है?
4: ये एक बड़ा बयान है आप दे रहे हैं कि मेजॉरिटी ही चला जाएगा?
5: मेजॉरिटी चला जाएगा।
1: टीएमसी में मची इस बगावत के लिए भले ही बागी अभिषेक बनर्जी को दोषी देते हों, लेकिन ममता बनर्जी को नेता मानने पर सब एकमत। इसीलिए जब ऋतुव्रत बनर्जी ने ममता को सलाहकार के रूप में सीमित करने की कोशिश की तो पाला बदलने वाले कई विधायकों ने विरोध जताया। हालांकि ऋतुव्रत इसे कोई चुनौती नहीं मानते और उन्हें भरोसा है कि बगावत करने वाले विधायकों की संख्या बढ़ेगी।
6: जहाँ तक हमारे आंकड़ा का सवाल है, वो आंकड़ा बढ़ता जाएगा। जो आंकड़ा हम लोग प्रेजेंट किए थे 2/3 से ज्यादा, काफी सारे ज्यादा, वो जो आंकड़ा है जब आप लोग से मिलेंगे विधानसभा का अधिवेशन जो होगा वो आंकड़ा ऊपर जाएगा और आगे जाएगा।
1: विधानसभा चुनाव में हार के महीने भर के अंदर जिस तरह से ममता की पार्टी में टूट हुई, उसे देखते हुए राजनीतिक हलकों में ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या आने वाले समय में टीएमसी के सांसद भी पार्टी का साथ छोड़ देंगे।
0: और अब खबर उत्तर प्रदेश की राजनीति की, जहां 2027 चुनाव का असर नेताओं के बयानों पर साफ दिखाई दे रहा है। योगी आदित्यनाथ लगातार अखिलेश यादव पर हमलावर हैं, तो अखिलेश यादव भी योगी की खामियों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं।
7: हम देखते हैं, हमने हर घर नल की योजना को आगे बढ़ाया, पता लगा कोई टोंटी चोरी कर रहा है।
8: योगी ने भले ही अपने इस बयान में किसी का नाम न लिया हो, लेकिन टोंटी चोरी शब्द के बाद योगी की मुस्कुराहट ने यूपी की सियासत के 10 साल पुराने चैप्टर को फिर से खोल दिया, जब अखिलेश के सीएम बंगला खाली होने के बाद इन आरोपों पर जमकर घमासान मचा था।
9: अगर हमारे पे ये इल्जाम लगे हम टोंटी ले गए, हमारे घर को गंगा जल से धुला हो गया, आप भूल सकते हो, मैं भूल नहीं सकता, मैं नहीं भूल सकता।
8: उधर योगी के बयान के जवाब में अखिलेश यादव ने भी बिना किसी का नाम लिए एक तंज भरा ट्वीट किया। वनस्पति विवेक छीन लेती है और निर्दोष लोगों की हत्याओं का खौफ रातों की नींद, नहीं तो पूरे होश में इतने ऊंचे पद पर बैठकर इतना निकृष्ट बयान कोई भी नहीं देता है। कुछ लोग अपनी असफलता के लिए दूसरों को दोषी ठहराते हैं, ये हार की हताशा बोल रही है, क्योंकि कुदरत का बुलडोजर अब घूम गया है। इसके बाद योगी के हमलों की दूसरी किश्त जारी हुई, जहां निशाने पर एक बार फिर विपक्ष था।
10: अच्छे लोगों को चुनोगे अच्छा परिणाम आएगा, माफिया को चुन करके भेजोगे तो खून भी चूस डालेगा, विकास का पैसा तो हजम करेगा ही करेगा, संपत्तियों पर भी माफिया कब्जा करता है।
8: यूपी में अब चुनाव की तैयारियों ने पूरा जोर पकड़ लिया है, जिसका अंदाजा नेताओं के बयानों से लगाया जा सकता है। आज तक ब्यूरो।
0: खबर कोचिंग वाले खान सर की, जहां कोचिंग वॉर में खान सर बुरी तरह से फंस गए हैं। पहले तो फैसल खान उर्फ खान सर ने अपने पड़ोसी वाली ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद को गिरफ्तार करवाया और अब कोचिंग गोलीकांड में खुद खान सर पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है।
11: इंसान घमंड अपने अच्छे समय में दिखाता है और उसका खामियाजा उसको अपने बुरे समय में भुगतना पड़ता है। एयरबस A3 ये सबसे ऊंची जहाज,
12: ये एरिया कौन सा है? मंचूरिया।
11: हिटलर ने ग्रेनेड बनाना चालू किया, वो टैंक पनडुब्बी पानी वाली जहाज सब बनाया।
13: कोचिंग की दुनिया में खान सर इतना बड़ा नाम बन चुके हैं कि अब छात्रों के बीच लेक्चर देने के लिए वो भारी सुरक्षा बलों और हथियारबंद बॉडीगार्ड्स के साथ रेड कार्पेट पर चलते हुए ग्रैंड एंट्री लेते हैं।
1: याद रखिएगा, 1.5 साल की लगन के साथ पढ़ाई आपको पूरी दुनिया से 5 साल आगे रख देती है। अब कोई पोत पात क्या आएगा, तुम कहते कितना बढ़िया लग रहे हो, तो वो पतेगा एकदम सीआर लग रही हूँ, इसलिए एकदम अखंड सिंगल।
13: लेकिन अब खान सर का यही जलवा उनके लिए मुसीबत का सबब बन रहा है। 2 जून को खान सर के कोचिंग सेंटर पर हुए गोलीकांड में वो बुरी तरह से फंस चुके हैं।
1: आप सबके जीवन में कुछ न कुछ तकलीफ है, तो इससे घबराना क्या है? अगर रात अंधेरी है तभी तारों के चमकने का अहमियत भी है।
13: खान सर पर पटना के कदमकुआं थाने में हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ है। जी हां, खान सर के गार्ड्स ने पुलिस को बयान दिया है कि उन्होंने हमें कहा तुम गोली चलाओ, बाकी हम देख लेंगे। इसी आधार पर पुलिस ने खान सर के खिलाफ FIR दर्ज की है। BNS की धारा 109 के तहत ये केस दर्ज किया गया है। इसमें 10 साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है। इसमें अग्रिम जमानत भी नहीं मिल सकती है। पुलिस की FIR में 3 लोगों का नाम दर्ज है, फैजल खान उर्फ खान सर और उनके साथ उनके 2 गार्ड्स। फायरिंग करने वाले दोनों गार्ड्स के नाम प्रदीप कुमार और तलविंदर सिंह हैं। खान सर के ये दोनों निजी गार्ड्स उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। नोएडा की सिक्योरिटी एजेंसी से खान सर ने 17 गार्ड्स हायर किए हैं।
14: दो व्यक्ति जो वीडियो में दिख रहे हैं फायरिंग करते हुए, तो पहचान करके तो गिरफ्तार किया गया है और उनको भी भेजा जा रहा है। उनके हथियार जब्त करके फसल जांच कराया जा रहा है। आगे जो जांच में आएगा और उसके सबूत जो मिलेंगे हम लोग को सताएगा।
15: खान सर का क्या आरोप सिद्ध हुआ है? गार्ड ने जो बताया आपके लोग के द्वारा जो FIR भेजा गया उसमें साफ तौर से कहा गया है कि उन्हें आदेश किया था, क्या खान सर की गिरफ्तारी होगी? सर,
14: उसमें आप लोग को बताया कि जिस तरह का लोग एविडेंस आएगा उस सबसे कार्रवाई होगी और इसमें जिसके ऊपर भी एविडेंस आएगा विधि व्यवस्था या अपराध इसके ऊपर भी होगी उन सबसे सख्त कार्रवाई की जाएगी। सबूतों के आधार पर
1: ये क्या है इसका, ये एग्जैक्ट इसी साइज का होता है।
13: और अब जिसमें खान सर को महारत हासिल है उसी रास्ते से खान सर बचकर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से कठिन और जटिल विषयों को खान सर बहुत ही सरल देसी और मजाकिया अंदाज में छात्रों को समझाते हैं, आज खान सर कोचिंग सेंटर में छात्रों के बीच अपना केस समझा रहे हैं। इस लेक्चर में खान सर गिरफ्तारी से बचने की सफाई पेश करते हैं। तो आइए आपको भी खान सर की सेल्फ डिफेंस वाली क्लास में लिए चलते हैं।
1: ये लोग कहा कि खान सर के ऊपर माला चढ़ जाए, फोटो पे क्या चढ़ जाए माला, यही तो चाहते हैं लोग। अरे पागलो मेरे भाई लोग, एक बात बता यार, वो हमला किसके ऊपर करने आया है? हमारे ऊपर। दिन में आएगी रात में? रात। अकेले आए ग्रुप में? पथराव किया कि नहीं? गोली चलाए कि नहीं चलाए? गार्ड को अधमरा किया कि नहीं किया? क्या FIR भी नहीं करें? ले अब पूछिए जरा ये बात। सबसे जरूरी चीज जो आप लोग को गुमराह किया जा रहा है, सेल्फ डिफेंस की फायरिंग, चूंकि पुलिस लेट से पहुंची थी, पुलिस को आने में टाइम लगता है, हमें भी पता है कि 5 मिनट में पुलिस उड़ के नहीं आ जाएगी, तो सेल्फ डिफेंस में वो नहीं भाग रहे थे, उसको मार डालते तो कोई क्या करता? एक गार्ड का कर्तव्य क्या होता है? सुरक्षा करना।
13: और तो और खान सर अपनी कोचिंग के स्मार्ट क्लासरूम में 2 जून की घटना की CCTV फुटेज का पूरा विश्लेषण कर रहे हैं।
16: इसकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं की, जबकि सबके सामने ये लेके जा रहा है, मुद्दे से भटकाया जा रहा है, आप इसकी गिरफ्तारी करिए, ये आदमी कौन है और कैसे आता है 20-25 लोगों को उठा के लेके चला जा रहा है, 20-25 लोगों को एक साथ कैसे?
13: खान सर मार्कर से स्क्रीन पर आरोपियों को घेर घेर कर दिखा रहे हैं और छात्रों को बता रहे हैं कि देखिए इनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। खान सर उसका नाम विकास बताते हैं और उसकी पूरी पहचान भी बताते हैं।
16: इसका नाम विकास या विवेक करते हैं, विकास इसने बयान दिया है, देखो हम लोग तो पढ़ाने वाले आपके, हम लोग को इतना नहीं पता रहता कि कौन कहां क्या काम कर रहा है, क्या हमने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया है? इसकी गिरफ्तारी पटना पुलिस से मांग करते हैं कि ये अभी तक बाहर घूम रहा है।
13: फिर खान सर हाथ में किताब लेकर विद्या की कसम खाते हैं और कहते हैं कि कोचिंग पर लगातार गोलियां चली थी और पूरी सच्चाई सामने नहीं लाई जा रही है।
16: हमने दिखाया गोली चलते हुए आपको देख रहे हैं। अब आप बताइए आप अपनी आवाज उठा सकते हैं कि नहीं उठा सकते।
13: स्मार्ट क्लासरूम में लेक्चर देने वाले खान सर वेरी स्मार्ट हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कोचिंग में हुए गोलीकांड पर वो कैसे गच्चा खा गए और अपने ही बयानों से कैसे फंस गए वो आपको दिखाते हैं। खान सर ने पहले कहा उनके कोचिंग सेंटर पर रोशन आनंद के लोगों ने गोलियां चलाई, 10 राउंड फायरिंग हुई, फिर खान सर पलट गए और गोलियों की बात से मुकर गए, लेकिन जब गोलियां चलाते हुए खान सर के अपने ही गार्ड्स का वीडियो वायरल हो गया, फायरिंग करने वाले दो गार्ड्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और खान सर पर भी आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज हो गया, तो अब खान सर फिर से कोचिंग में गोलियां चलाने की थ्योरी ले आए हैं।
17: अभी इन लोग का बस यही है कि इतने कम फीस में नहीं पढ़ाया जाए और इतने हजारों संख्या में जो रिजल्ट आता है पूरी तरह से इतनी गोली चलाने लगे 10 मिनट में ऐसा लगा कि जैसे अफरा तफरी होके रख गया। यहाँ पर 8-10 राउंड तो हम देखे हैं, यहाँ पे 8-10 राउंड हम देखे हैं, हमें क्या पता है। अभी PMCH में एडमिट है, उसका पूरा सर फाड़ दिया गया है। यहाँ पर बगल की कोचिंग वाले
18: सर आप खुद मौजूद थे यहाँ जब फायरिंग हो रही थी?
17: बिल्कुल, ये देखिए मेरा गार्ड है ये।
18: अच्छा,
17: इसका ये पूरी तरह से खून से इसको लहूलुहान कर दिया गया। यहाँ पे
18: तो गार्ड से क्या दुश्मनी थी?
17: बस कि तुम ही खान सर को सब गार्ड है हमारा मार के रखते हैं। देखिए उस समय इतना घटना हुआ, अभी जो घायल है जो मेन, हम लोग तो अंदर से भी अपने चेंबर में थे, टीचर लोग क्लास ले रहे थे, जो गार्ड है उससे पूछा गया तो उसका कहना है कि सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, इतना मार के फोड़ दिया गया उसको।
16: अस्पष्ट गोलियां चल रही थी और अफरा तफरी इतना था कि किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि बाहर निकल के देख सके। यहाँ क्यों नहीं कोई आए लोग तक वगैरह, बहुत यही था कि तो उस समय आए रहते बताए रहते क्या गोलियां चल रही है कि नहीं चल रही।
0: खान सर के बयानों ने ही खान सर को फंसा दिया और अब खान सर अपनी कोचिंग के द्वारा छात्रों से बचने का रास्ता खोज रहे हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार किसी भी समय खान सर को गिरफ्तार किया जा सकता है। ऐसा कहा जा रहा है कि खान सर कहाँ है इसका अभी फिलहाल किसी को पता नहीं।
13: लेकिन खान सर अब बुरी तरह से फंस चुके हैं कि अब पुलिस उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेगी। ऐसे में सवाल ये है कि क्या खान सर स्टूडेंट्स के जरिए पुलिस और प्रशासन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ये कहकर छात्रों को उकसा रहे हैं कि अगर उनका कोचिंग सेंटर बंद हो गया तो 6 महीने में कई कोचिंग संस्थानों की फीस 1-1.5 लाख रुपए तक हो जाएगी।
16: जिस दिन खान सर को आवाज दबाया गया उसके 6 महीने के अंदर आकर फिर से फीस 1-1.5 लाख नहीं चली गई। तो
17: जो आप लोग को गुमराह किया जा रहा है, सेल्फ डिफेंस की फायरिंग, चूंकि पुलिस लेट से पहुंची थी, पुलिस को आने में टाइम लगता है, हमें भी पता है कि 5 मिनट में पुलिस उड़ के नहीं आ जाएगी।
13: और खान सर किसी हद तक अपने स्मार्ट क्लास से छात्रों को अपने पक्ष में इकट्ठा करने में कामयाब भी हो जाते हैं। जी हाँ, खान सर की गिरफ्तारी को देखते हुए उनकी कोचिंग खान ग्लोबल स्टडीज के छात्र मुसल्लापुर कोचिंग सेंटर में पहुंचने लगते हैं। बिहार पुलिस भर्ती के रिजल्ट को लेकर शुरू हुई लड़ाई में खान सर ने ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर को तो गिरफ्तार करवा दिया, लेकिन अब गोलीकांड का सच बाहर आने के बाद गिरफ्तारी की तलवार खुद खान सर पर भी लटक गई है।
19: बिहार पुलिस में जो शानदार रिजल्ट हुआ है उसी का साजिश है, हमको फंसाया जा रहा है। किसान कोल्ड स्टोर के मालिक और खान सर जो है दोनों मिल करके जो है ज्ञान बिंदु को बर्बाद करने का पूरा प्रयास कर रहा है, लेकिन सत्यमेव जयते, हमेशा सत्य की जीत है।
13: लेकिन सवाल ये है कि कैसे पटना के दो कोचिंग संचालकों के बीच वर्चस्व की लड़ाई में एक तरह से कोचिंग वॉर छिड़ गई है और इस कोचिंग वॉर में अब गोलियां भी चल रही हैं। ऐसे में पुलिस सख्त एक्शन ले रही है। इस कोचिंग वॉर में खान सर बुरी तरह से फंस चुके हैं। पटना से शशि भूषण के साथ आज तक ब्यूरो।
0: खबर मोहाली से आई बेहद खौफनाक तस्वीर की, जहां एक सरफिरे आशिक ने ब्रेकअप के बाद अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के ऑफिस के अंदर चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी।

0: मोहाली के ऑफिस से आई ये तस्वीरें विचलित करने वाली हैं, जहां एक सिरफिरा आशिक हरजिंदर महिला सहकर्मी डिंपल पर अचानक से चाकुओं से हमला कर देता है। हमलावर ने एक के बाद एक करीब 30 बार लड़की पर चाकू चलाया। लड़की जान बचाकर चारों तरफ भागने की कोशिश करती है, लेकिन हमले जारी रहते हैं। बाकी सहकर्मी उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नाकाम साबित होते हैं। लड़की दम तोड़ देती है, लेकिन इसके बाद की तस्वीर और भयानक है, जहां वो लड़का सबके सामने खुद की गर्दन पर चाकू से ताबड़तोड़ वार करने लगता है और सबके सामने आत्महत्या की कोशिश करता है, जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है।
1: बेसिकली 25 से 30 बार चाकू का उसने वार किया, गर्दन पे भी है और पीछे हार्ट पे भी है। सो यू कैन से सीरियस, उसने मतलब 25 से 30 बार किए थे उसने, और अपने भी उसने ऐसे ही अपने आप को भी स्टैब किया है। अपने गले में भी उसके हैं, हार्ट में भी उसने अपने स्टैब किया अपने आप को भी, और ये सारी जो हैं जो आप इनके वूंड्स बारे दैट डॉक्टर कैन टेल यू बेटर।
2: अभी पेरेंट्स के दोनों साइड के पेरेंट्स का क्या कहना
1: है? हाँ, मतलब जो लड़के के पेरेंट्स हैं दे आर इन यूएस, दे विल बी कमिंग, पर अभी जो लड़की के पेरेंट्स हैं उनका हमने बयान लिखकर अभी पोस्टमार्टम करवाएंगे आज।
0: डिंपल पटियाला की रहने वाली थी, हरजिंदर भी पटियाला का है। दोनों में दोस्ती थी, प्यार था, अच्छे संबंध थे। करीब 3 साल से दोनों एक दूसरे को जानते थे, लेकिन कुछ दिनों से दोनों के रिश्तों में खटास आ गई थी। डिंपल ने ब्रेकअप कर लिया, हरजिंदर से मिलना जुलना छोड़ दिया, लेकिन हरजिंदर डिंपल को नहीं छोड़ना चाहता था। पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि हरजिंदर दोबारा से डिंपल के साथ रिश्ते ठीक करना चाहता था। गुरुवार को जब वो दफ्तर आया तो डिंपल से बात करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी और झगड़ा हो गया। इसके बाद जो तस्वीरें आई वो हैरान करने वाली थी। मोहाली से कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो।
3: दिल्ली के मालवीय नगर होटल अग्निकांड में नए नए खुलासे हो रहे हैं। होटल मालिक ने एक ऐसी बात मान ली जो कि सिस्टम पर सवाल खड़े करती है। दावा है कि होटल मालिक लवकेश बजाज ने बताया कि होटल उनका अकाउंटेंट ऑपरेट कर रहा था। वहीं दिल्ली सरकार ने बड़ी ड्राइव चलाकर नियम तोड़ने वाले होटल्स रेस्टोरेंट्स पर एक्शन लिया। नोएडा में लगी आग ने फिर से सवाल खड़े कर दिए।
4: तस्वीरें देखिए कि एक और होटल की तरफ जाती हुई एनसीबी की टीम, क्योंकि यहाँ पर पहले बिजली जो है वो काटी जाती है। आगे की तरफ मैं कहूँगा कि यहाँ पर जो टीम है वो आगे की तरफ जाती हुई दूसरा होटल, क्योंकि अब तक 2 से 3 होटल्स को जो है वो यहाँ पर अब सील कर दिया गया।
5: दिल्ली के मालवीय नगर में होटल अग्निकांड के बाद दिल्ली सरकार एक्शन मोड में दिख रही है। दक्षिणी दिल्ली के कई इलाकों में अवैध इमारतों की पहचान करके उन पर बुलडोजर चलाया गया। मालवीय नगर इलाके में हुए अग्निकांड ने देश को झकझोर दिया। इस इलाके में सुबह ही बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया। अवैध निर्माण के खिलाफ दिल्ली के अलग अलग इलाकों में रेखा गुप्ता सरकार फुल एक्शन में है, जिसके तहत साकेत, एमजी रोड, मालवीय नगर में सीलिंग और बुलडोजर कार्रवाई होती है।
4: देखिए, मैं आपको बता दूं कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से जो ज्वाइंट कमेटी का गठन किया गया था, जिसमें डीएम, एसडीएम और एमसीडी दिल्ली पुलिस के साथ, अब इस वक्त दिल्ली के अलग अलग इलाके, चाहे वो मालवीय नगर हो, हौजरानी हो, साकेत हो, एमजी रोड हो, वहां पर बुलडोजर एक्शन के साथ साथ सीलिंग एक्शन भी जो है वो देखने को मिल रहा है। देखिए, ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट के नाम पर जो इनलीगल तरीके से होटल चल रहे थे, उस पर अब एमसीडी की तरफ से सीलिंग जो है वो यहाँ पर की जा रही है। सीलिंग की टीम, एमसीडी की टीम जो है वो यहाँ पर पहुंची है, और तमाम यहाँ पर हौजरानी इलाके में जब ये मालवीय नगर में हादसा हुआ था जिसमें 21 लोगों की जान गई थी, और आप देखिए किस तरीके से यह तमाम होटल जो है वो बने हुए हैं, इन सब पर इस वक्त जो है वो ज्वाइंट कमेटी की जो टीम जो दिल्ली सरकार की तरफ से गठित की गई थी, उसका एक्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। एक के बाद एक 18 ऐसी यूनिट्स हैं जहां पर इस वक्त एक्शन जो है वो देखने को मिल रहा है।
5: दक्षिणी दिल्ली के हौज खास में बेड एंड ब्रेकफास्ट होटल को एमसीडी की टीम ने सील किया। यहां भी नियमों की अनदेखी हो रही थी। दक्षिणी दिल्ली के गिटौरनी में भी अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया। यहाँ पर देखिए कितनी बड़ी इमारत नियमों की अनदेखी करके बना दी गई। यहाँ पर कई दुकानों को सील किया गया। इसके साथ पूर्वी दिल्ली के करावल नगर, हौज खास गांव में भी अतिक्रमण और सीलिंग की कार्रवाई हुई। दिल्ली सरकार ने अवैध निर्माण रोकने और बेड एंड ब्रेकफास्ट होटल को लेकर बड़ा फैसला लिया। भविष्य में मालवीय नगर अग्निकांड जैसा हादसा न हो, इसके लिए अब अफसरों की जिम्मेदारी भी तय की गई।
6: सरकारी निर्देशों का उल्लंघन करने पर 2 साल की सजा और मिलीभगत पाए जाने पर अधिकारियों पर भी कठोर कार्रवाई, जिसमें जेल तक और जुर्माने तक की कार्रवाई की जा सकती है उसको इन्वोक करने का फैसला सरकार ने लिया है।
5: दिल्ली के होटल अग्निकांड में 21 लोगों की मौत के सदमे से लोग उभरे भी नहीं थे कि सुबह सुबह नोएडा में दो जगह आग लगने से हड़कंप मच गया। आग लगने की पहली घटना नोएडा सेक्टर 74 में हुई, जहां 12वें फ्लोर के एक फ्लैट में आग लगती है। तेज हवा के चलते आग तेजी से फैलती है और फ्लैट की खिड़कियों से ऊंची लपटें निकलने लगी। आसमान में काले धुएं का गुबार फैल गया। इस हादसे ने दमकल विभाग की तैयारियों पर एक बार फिर सवाल उठा दिए। हालांकि बाद में इस आग पर काबू पाया गया। नोएडा के अपार्टमेंट में लगी आग की इस घटना का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया और अधिकारियों को तुरंत मौके पर पहुंचकर राहत बचाव और निगरानी करने के निर्देश दिए। नोएडा में आग लगने की एक और घटना सेक्टर 52 के एक पीजी में हुई। जिस पीजी में आग लगी उस बिल्डिंग में नीचे रेस्टोरेंट था। काफी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने यहां पर आग पर काबू पाया है।
3: दिल्ली की ही तरह मध्य प्रदेश के इंदौर में भी बड़ा हादसा हो सकता था। इंदौर में ग्राउंड फ्लोर पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों का शोरूम था, जिसमें आग लग गई। आग लगने से ऊपर की मंजिल पर रहने वाले कई परिवारों की जान खतरे में पड़ गई। लोगों का आरोप है कि दमकल विभाग की टीम काफी देर से पहुंची।
5: खिड़की के छज्जे पर लटका ये उस आम आदमी का परिवार है, जिसे जिम्मेदार सरकारी विभाग अक्सर मुसीबत के आगे अकेला छोड़ देता है। तस्वीरें मध्य प्रदेश के इंदौर की हैं, जहां पति पत्नी और एक मासूम बेटी की चुनौती मौत के चंगुल से खुद को बचाने की है। जिंदा रहने के लिए खुद को बचाने की कोशिश कर रहा दमकल विभाग की टीम नदारद, इसीलिए पड़ोसी रस्सी फेंक रहे तो कोई सीढ़ी लगाने की कोशिश कर रहा। वजह बिल्डिंग में आग लगी है, घर के अंदर धुआं भरा है। मध्य प्रदेश के इंदौर में इलेक्ट्रिक शोरूम में लगी आग एक बार फिर सुरक्षा के सिस्टम पर सवाल उठाती। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड की तस्वीरें अभी धुंधली भी नहीं हुई कि इंदौर के इस अग्निकांड ने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। हालांकि बस गनीमत की बात यह है कि यहां किसी जान माल का नुकसान नहीं हुआ।
7: पहली बार उठे जैसे हमने धुआं देखा और इसके अलावा हमने कुछ नहीं देखा, मतलब बच्ची और हमको सबको साथ में लेके बाउंड्री के बाहर इधर बालकनी के यहाँ पर पहुंच गए, खड़े रहे दीवार के साइड से जो पाइपलाइन इसको पकड़ के, मतलब फिर लोगों ने हमको देखा कि ये लोग भी ऊपर हैं, मतलब फंसे हुए हैं।
8: बहुत दूर धुआं हो रहा था, घबराहट हो रही थी, सांस लेने में भी दिक्कत आ रही थी, तो हम इधर से कूद के और दूसरी बिल्डिंग पे गए तो उधर से लोगों ने हमको निकाला, बच्ची को भी निकाला, हमको रस्सी बांध के कमर में सीढ़ी से निकाला।
5: ग्राउंड फ्लोर पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों के शोरूम में जब आग लगी तब उसकी ऊपर की मंजिल पर रहने वाले लोग सो रहे। बताया जा रहा है कि शोरूम के बाहर कुछ एक फोर व्हीलर गाड़ी को चार्जिंग पर लगाया गया। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट को आग लगने की संभावित वजह माना जा रहा है।
9: इस शोरूम के ऊपर जो फ्लैट है, तकरीबन यहाँ पर 20 से 25 परिवार यहाँ रहते हैं इस बिल्डिंग के ऊपर, तो जब इसका धुआं ऊपर गया तो उन लोगों को निकलने में बड़ी परेशानी आ रही थी, तो जो पड़ोसी है इस पास की बिल्डिंग के जो लोग है उन्होंने सीढ़ियां लगा के रेस्टोरेंट को वहां से निकाला। लेकिन बहुत देर बाद जो है फायर ब्रिगेड आई यहाँ पर, क्योंकि जो रहवासी है क्षेत्रीय उन्होंने काफी मदद की और उन्होंने रेस्क्यू करके बाकी लोगों को निकाला।
5: गर्मियों में आग लगने की घटनाएं बढ़ती। दिल्ली में मंगलवार को एक होटल में आग लगने की घटना पूरे देश को दहला दी। दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर होटल टूरिस्ट स्टे में लगी आग में कुल 21 लोगों की जान गई, जिसमें 11 विदेशी थे। ऐसा नहीं कि दिल्ली या देश में इस तरह की पहली घटना, दिल्ली हो या फिर इंदौर, हर घटना सरकारी विभागों को बार बार खबरदार करती, लेकिन हर हादसे के बाद जैसे ही मामला शांत होता है संबंधित विभाग ढीले पड़ जाते हैं और आम आदमी सरकारी अफसरों की लापरवाही का शिकार होने लगता है।
3: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।

0: दस्तक के साथ मंच पर पुतिन समेत दुनिया के बड़े दिग्गज। पुतिन ने भारत की तारीफ की, बताया प्रमुख साझेदार, आईटी सेक्टर के अग्रणी देशों में शामिल है इंडिया। सूरत में पीएम का विपक्ष पर हमला, कहा अराजकता फैलाकर अवसर तलाश रही है कांग्रेस, देश को नीचा दिखाने में जुटे हैं निराशावादी नेता। समुद्र मंथन मिशन में भारत को बड़ी सफलता, गहरे समुद्र में ऑयल इंडिया को मिली प्राकृतिक गैस, हरदीप सिंह पुरी का ऐलान। अग्निकांड के बाद दिल्ली सरकार का एक्शन, अवैध निर्माण पर बुलडोजर, कुछ इलाके सील, सीएम रेखा गुप्ता की बैठक में दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई के आदेश। और बागी नेता ऋतुव्रत को नेता विपक्ष बनाए जाने के खिलाफ, सोमवार को हाईकोर्ट जाएंगी ममता, ममता की बैठक में पहुंचे सिर्फ 3 लोकसभा सांसद। पश्चिम बंगाल में बड़ा राजनीतिक बदलाव नजर आ रहा है, जहां ममता बनर्जी की पार्टी हर दिन के साथ कमजोर होती जा रही है। विधायकों की बगावत के बाद अब ममता बनर्जी के सांसदों को लेकर भी खबरें आईं कि वो भी विद्रोह कर सकते हैं, और दावा तो यहां तक हो रहा है कि अगले सप्ताह की शुरुआत में तृणमूल कांग्रेस के सांसद बड़ा खेला कर सकते हैं।
1: जब विधायकों के बाद अब सांसद भी तृणमूल कांग्रेस से अलग हो जाएंगे, क्या अगले हफ्ते की शुरुआत में ममता बनर्जी के सांसद भी अलग गुट बना लेंगे? ममता बनर्जी की पार्टी पर संकट गहराता जा रहा है। इसका साफ साफ संकेत ममता बनर्जी के कालीघाट वाले घर पर बैठक के दौरान मिलता है। पार्टी के 60 विधायकों के अलग गुट बनाने के दावे के बाद बुलाई गई इस बैठक में अभिषेक बनर्जी, कल्याण बनर्जी, माला रॉय शामिल हुई। इसके अलावा डेरेक ओब्रायन और डोला सेन भी ममता के घर पहुंचे। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं, 80 विधायकों वाली टीएमसी के सिर्फ 8 मौजूदा विधायकों और 2 पूर्व विधायकों ने बैठक में हिस्सा लिया। ममता बनर्जी के घर पर बुलाई गई इस बैठक में विधायकों की तरह सांसद भी गायब दिखे। 28 लोकसभा सांसदों वाली टीएमसी के चीफ के घर पर लोकसभा के 3 और 2 राज्यसभा सांसद पहुंचे, जिसके बाद खबरदार करता सवाल है कि क्या विधायकों के बाद अब सांसद भी ममता बनर्जी को टाटा बाय बाय करने वाले। इस सवाल पर ममता बनर्जी के करीबी विधायक मदन मित्रा का जवाब सुनने लायक है।
2: बाकी विधायक बोल रहे हैं 23 सांसद उनके साथ हैं, 23 सांसद उनके साथ हैं, बाकी विधायक बोल रहे हैं।
3: वो पूरा बात कर सकता है, पूरा कह सकता है जब पूरा पार्टी उनका साथ है।
1: तो मदन मित्रा ने पार्टी के सांसदों के विद्रोह के सवाल को खारिज नहीं किया, बल्कि बागियों को चुनौती देकर ये बता दिया कि दाल में कहीं कुछ काला जरूर है।
3: 2,30,00,000 जनता ममता बनर्जी का नाम से वोट दिया, जो लोग जा रहे हैं उसमें से कोई मां का लाल है, रेजिग्नेशन देके अपना क्षेत्रों में जाके बोलेंगे ममता को फोटो नहीं लेके मैं फिर से एक बार चुनाव लड़ने चाहता हूं, अगर उसका पास कोई चुनाव जीत के आए मैं उसको सलाम करवाऊंगा।
1: ममता के करीबियों के इस बयान को टीएमसी के सूत्रों के हवाले से आ रही खबर से समझा जा सकता है, जिसके मुताबिक टीएमसी में विधायक दल के बाद अब संसदीय दल में जल्दी टूट हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी के कई सांसद अभिषेक बनर्जी से नाराज बताए जा रहे हैं। नाराज सांसद एक अलग गुट बना सकते हैं। टीएमसी के लोकसभा में 28 सांसद अभी हैं। दल बदल कानून के तहत अलग समूह को मान्यता मिलने के लिए कम से कम 22 सांसदों का समर्थन जरूरी होगा। सूत्रों के अनुसार एक दर्जन से अधिक सांसद अलग ग्रुप बनाने के पक्ष में हैं। सूत्र कहते हैं कि पार्टी के एक बड़े वरिष्ठ सांसद इस संभावित बगावत की अगुवाई कर रहे हैं। राज्यसभा में टीएमसी के 13 सांसद हैं और वहां अलग समूह को मान्यता के लिए कम से कम 9 सांसदों का समर्थन चाहिए। ममता बनर्जी के विधायकों की टूट के बाद उनके घर बैठक में 41 सांसदों में से सिर्फ 5 सांसदों का पहुंचना अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या विधायकों के बाद सांसदों के टूटने की चर्चा है?
4: मानसिक तौर पे आप पार्टी के साथ नहीं है?
5: मानसिक तौर पे मैं पार्टी के साथ नहीं हूँ।
4: और ऐसे ही मानसिक तौर पे और कितने सांसद है तृणमूल में जो पार्टी के साथ नहीं है, आपको क्या पता है?
5: देखिए, मैं तो किसी का मानसिक स्थिति को रीड नहीं कर पाता।
4: नहीं, बातचीत तो होती होगी।
5: बातचीत होती है, मेरे सुनने में जो है मैंने आपको बता दिया ना कि लोकसभा में ज्यादा मेंबर मैंने मेजोरिटी मेंबर नहीं।
1: सूत्रों के मुताबिक टीएमसी के 23 लोकसभा सांसद बागी गुट के संपर्क में कहे जा रहे हैं। माना जा रहा है कि अगले हफ्ते की शुरुआत में टीएमसी के लोकसभा सांसदों में टूट हो सकती है, मतलब कुछ ही दिनों में क्या खेला हो जाएगा?
3: दुनिया में सब कुछ हो सकता है ना, ऐसा कोई चीज नहीं है जो दुनिया में नहीं हो सकता है। लड़ाई जारी है।
1: विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की हार के बाद जिस तेजी से और बड़े पैमाने पर पार्टी के विधायकों का संतोष सामने आया वो अभूतपूर्व है, जिसका असर संसद में भी दिख सकता है।
4: कितने सांसद होंगे ऐसे? लोकसभा में आपके 29 सांसद है, आपको क्या सुनाई दे रहा है? कितने सांसद होंगे फिर?
5: 29 नहीं, 28।
4: बसीरहाट
5: आपका पेंडिंग है कलकत्ता हाई कोर्ट में,
4: क्या होने वाला है? आपको क्या सुनाई दे रहा है? आपको पार्टी के अंदर अभी भी है
5: मेजोरिटी चला जाए?
4: ये एक बड़ा बयान है आप दे रहे हैं कि मेजॉरिटी ही चला जाएगा?
1: टीएमसी में मची इस बगावत के लिए भले ही बागी अभिषेक बनर्जी को दोषी देते हों, लेकिन ममता बनर्जी को नेता मानने पर सब एकमत। इसीलिए जब ऋतुव्रत बनर्जी ने ममता को सलाहकार के रूप में सीमित करने की कोशिश की तो पाला बदलने वाले कई विधायकों ने विरोध जताया। हालांकि ऋतुव्रत इसे कोई चुनौती नहीं मानते और उन्हें भरोसा है कि बगावत करने वाले विधायकों की संख्या बढ़ेगी।
6: जहाँ तक हमारे आंकड़ा का सवाल है, वो आंकड़ा बढ़ता जाएगा। जो आंकड़ा हम लोग प्रेजेंट किए थे 2/3 से ज्यादा, काफी सारे ज्यादा, वो जो आंकड़ा है जब आप लोग से मिलेंगे विधानसभा का अधिवेशन जब होगा वो आंकड़ा ऊपर जाएगा और आगे जाएगा।
1: विधानसभा चुनाव में हार के महीने भर के अंदर जिस तरह से ममता की पार्टी में टूट हुई उसे देखते हुए राजनीतिक हलकों में ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या आने वाले समय में टीएमसी के सांसद भी पार्टी का साथ छोड़ देंगे।
0: और अब खबर उत्तर प्रदेश की राजनीति की, जहां 2027 चुनाव का असर नेताओं के बयानों पर साफ दिखाई दे रहा है। योगी आदित्यनाथ लगातार अखिलेश यादव पर हमलावर हैं, तो अखिलेश यादव भी योगी की खामियों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं।
7: हम देखते हैं, हमने हर घर नल की योजना को आगे बढ़ाया, पता लगा कोई टोंटी चोरी कर रहा है।
8: योगी ने भले ही अपने इस बयान में किसी का नाम न लिया हो, लेकिन टोंटी चोरी शब्द के बाद योगी की मुस्कुराहट ने यूपी की सियासत के 10 साल पुराने चैप्टर को फिर से खोल दिया, जब अखिलेश के सीएम बंगला खाली होने के बाद इन आरोपों पर जमकर घमासान मचा था।
9: अगर हमारे पे ये इल्जाम लगे हम टोंटी ले गए हैं,

0: वनस्पति विवेक छीन लेती है और निर्दोष लोगों की हत्याओं का खौफ रातों की नींद, नहीं तो पूरे होश में इतने ऊंचे पद पर बैठकर इतना निकृष्ट बयान कोई भी नहीं देता है। कुछ लोग अपनी असफलता के लिए दूसरों को दोषी ठहराते हैं। ये हार की हताशा बोल रही है क्योंकि कुदरत का बुलडोजर अब घूम गया है। इसके बाद योगी के हमलों की दूसरी किश्त जारी हुई, जहां निशाने पर एक बार फिर विपक्ष था।
1: अच्छे लोगों को चुनोगे, अच्छा परिणाम आएगा। माफिया को चुन करके भेजोगे तो खून भी चूस डालेगा। विकास का पैसा तो हजम करेगा ही करेगा, संपत्तियों पर भी माफिया कब्जा करता है।
0: यूपी में अब चुनाव की तैयारियों ने पूरा जोर पकड़ लिया है, जिसका अंदाजा नेताओं के बयानों से लगाया जा सकता है। आज तक ब्यूरो।
2: खबर कोचिंग वाले खान सर की। जी हाँ, कोचिंग वॉर में खान सर बुरी तरह से फंस गए हैं। पहले तो फैसल खान उर्फ खान सर ने अपने पड़ोसी वाली ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद को गिरफ्तार करवाया और अब कोचिंग गोलीकांड में खुद खान सर पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है।
3: इंसान घमंड अपने अच्छे समय में दिखाता है और उसका खामियाजा उसको अपने बुरे समय में भुगतना पड़ता है। एयरबस A380 ये सबसे ऊंची जहाज।
4: ये एरिया कौन सा है? मंचूरिया।
5: हिटलर ने ग्रेनेड बनाना चालू किया, वो टैंक पनडुब्बी पानी वाली जहाज सब बनाया।
6: कोचिंग की दुनिया में खान सर इतना बड़ा नाम बन चुके हैं कि अब छात्रों के बीच लेक्चर देने के लिए वो भारी सुरक्षा बलों और हथियारबंद बॉडीगार्ड के साथ रेड कार्पेट पर चलते हुए ग्रैंड एंट्री लेते हैं।
3: याद रखिएगा, 1.5 साल की लगन के साथ पढ़ाई आपको पूरी दुनिया से 5 साल आगे रख देती है। अब कोई पोत पात के आएगा, तुम कहते कितना बढ़िया लग रहे हो, तो वो पतेगा एकदम सियार लग रही हो, इसलिए एकदम अखंड सिंगल।
6: लेकिन अब खान सर का यही जलवा उनके लिए मुसीबत का सबब बन रहा है। 2 जून को खान सर के कोचिंग सेंटर पर हुए गोलीकांड में वो बुरी तरह से फंस चुके हैं।
3: आप सबके जीवन में कुछ ना कुछ तकलीफ है, तो इससे घबराना क्या है? अगर रात अंधेरी है तभी तारों के चमकने का अहमियत भी है।
6: खान सर पर पटना के कदमकुआं थाने में हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ है। जी हाँ, खान सर के गार्ड्स ने पुलिस को बयान दिया है कि उन्होंने हमें कहा तुम गोली चलाओ, बाकी हम देख लेंगे। इसी आधार पर पुलिस ने खान सर के खिलाफ FIR दर्ज की है। BNS की धारा 109 के तहत ये केस दर्ज किया गया है। इसमें 10 साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है। इसमें अग्रिम जमानत भी नहीं मिल सकती है। पुलिस की FIR में 3 लोगों का नाम दर्ज है, फैजल खान उर्फ खान सर और उनके साथ उनके 2 गार्ड्स। फायरिंग करने वाले दोनों गार्ड्स के नाम प्रदीप कुमार और तलविंदर सिंह हैं। खान सर के ये दोनों निजी गार्ड्स उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। नोएडा की सिक्योरिटी एजेंसी से खान सर ने 17 गार्ड्स हायर किए हैं।
7: जो व्यक्ति जो वीडियो में दिख रहे हैं फायरिंग करते हुए, उसको पहचान करके गिरफ्तार किया गया है और उनको भी भेजा जा रहा है। उनके हथियार जब्त करके फसल जांच कराया जा रहा है। आगे जो जांच में आएगा और उसके सबूत जो मिलेंगे हम लोग, उस
8: हत्या का खान सर पे क्या आरोप सिद्ध हुआ है? गार्ड ने जो बताया आखिर लोग के द्वारा जो FIR भेजा गया, उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि उन्होंने आदेश दिया था, क्या खान सर की गिरफ्तारी होगी सर?
7: इसमें आप लोग बताया कि जिस तरह का लोग एविडेंस आएगा उस हत्या कार्रवाई होगी और इसमें जिसके ऊपर भी एविडेंस आएगा, विधि व्यवस्था या अपराध इसके ऊपर भी होगी, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सबूतों के आधार पर आएगा।
3: ये क्या है इसका? ये एग्जैक्ट इसी साइज का होता है।
6: और अब जिसमें खान सर को महारत हासिल है, उसी रास्ते से खान सर बचकर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से कठिन और जटिल विषयों को खान सर बहुत ही सरल, देसी और मजाकिया अंदाज में छात्रों को समझाते हैं, आज खान सर कोचिंग सेंटर में छात्रों के बीच अपना केस समझा रहे हैं। इस लेक्चर में खान सर गिरफ्तारी से बचने की सफाई पेश करते हैं। तो आइए आपको भी खान सर की सेल्फ डिफेंस वाली क्लास में लिए चलते हैं।
3: ये लोग कहा कि खान सर के ऊपर माला चढ़ जाए, फोटो पे क्या चढ़ जाए माला, यही तो चाहते हैं लोग। अरे पागलो मेरे भाई लोग, एक बात बता यार, वो हमला किसके ऊपर करने आया है? हमारे ऊपर।

0: दिन में आएगी रात में, रात अकेले आए ग्रुप में, पथराव किया कि नहीं, गोली चलाए कि नहीं चलाए, गार्ड को अधमरा किया कि नहीं किया, क्या एफआईआर भी नहीं करें? ले अब पूछिए जरा ये बात। सबसे जरूरी चीज जो आप लोग को गुमराह किया जा रहा है, सेल्फ डिफेंस की फायरिंग, चूंकि पुलिस लेट से पहुंची थी, पुलिस को आने में टाइम लगता है, हमें भी पता है कि 5 मिनट में पुलिस उड़ के नहीं आ जाएगी, तो सेल्फ डिफेंस में वो नहीं भाग रहे थे, उसको मार डालते तो कोई क्या करता? एक गार्ड का कर्तव्य क्या होता है? सुरक्षा करना।
1: और तो और, खान सर अपनी कोचिंग के स्मार्ट क्लासरूम में 2 जून की घटना की सीसीटीवी फुटेज का पूरा विश्लेषण कर रहे हैं।
2: इसकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं की, जबकि सबके सामने ये लेके जा रहा है, मुद्दे से भटकाया जा रहा है, आप इसकी गिरफ्तारी करिए, ये आदमी कौन है और कैसे आता है 20-25 लोगों को उठा के लेके चला जा रहा है, 20-25 लोगों को एक साथ कैसे?
1: खान सर मार्कर से स्क्रीन पर आरोपियों को घेर घेर कर दिखा रहे हैं और छात्रों को बता रहे हैं कि देखिए इनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। खान सर उसका नाम विकास बताते हैं और उसकी पूरी पहचान भी बताते हैं।
2: इसका नाम विकास या विवेक करते हैं, विकास इसने बयान दिया है, देखो हम लोग तो पढ़ाने वाले आपके, हम लोग को इतना नहीं पता रहता कि कौन कहां क्या काम कर रहा है, क्या हमने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया है?
1: फिर खान सर हाथ में किताब लेकर विद्या की कसम खाते हैं और कहते हैं कि कोचिंग पर लगातार गोलियां चली थी और पूरी सच्चाई सामने नहीं लाई जा रही है।
2: हमने दिखाया गोली चलते हुए, आप लोग देख रहे हैं, अब आप बताइए आप अपनी आवाज उठा सकते हो कि नहीं उठा?
1: स्मार्ट क्लासरूम में लेक्चर देने वाले खान सर वेरी स्मार्ट हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कोचिंग में हुए गोलीकांड पर वो कैसे गच्चा खा गए और अपने ही बयानों से कैसे फंस गए वो आपको दिखाते हैं। खान सर ने पहले कहा उनके कोचिंग सेंटर पर रोशन आनंद के लोगों ने गोलियां चलाई, 10 राउंड फायरिंग हुई, फिर खान सर पलट गए और गोलियों की बात से मुकर गए, लेकिन जब गोलियां चलाते हुए खान सर के अपने ही गार्ड्स का वीडियो वायरल हो गया, फायरिंग करने वाले 2 गार्ड्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और खान सर पर भी आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज हो गया, तो अब खान सर फिर से कोचिंग में गोलियां चलाने की थ्योरी ले आए हैं।
3: अभी इन लोग का बस यही है कि इतने कम फीस में नहीं पढ़ाया जाए और इतने हजारों संख्या में जो रिजल्ट आता है, पूरी तरह से इतनी गोली चलाने लगे 10 मिनट में, ऐसा लगा कि जैसे अफरा तफरी होके रख गया यहाँ पर। 8-10 राउंड तो हम देखे हैं यहाँ पे, 8-10 राउंड हम देखे हैं, हमें क्या पता है? अभी पीएमसीएच में एडमिट है, उसका पूरा सर फाड़ दिया गया है यहाँ पर।
4: क्या लगता है कौन क्या हो गई?
3: बगल की कोचिंग वाले
5: सर, आप खुद मौजूद थे यहाँ जब फायरिंग हो रही थी?
3: बिल्कुल, ये देखिए मेरा गार्ड है ये।
5: अच्छा,
3: इसका ये पूरी तरह से खून से इसको लहूलुहान कर दिया गया यहाँ पे।
5: तो गार्ड से क्या दुश्मनी थी?
3: बस की तुम ही खान सर को सब गार्ड है हमारा मार के रखा है। देखिए उस समय इतना घटना हुआ, अभी जो घायल है जो मेन, हम लोग तो अंदर से भी अपने चेंबर में थे, टीचर लोग क्लास ले रहे थे, जो गार्ड है उससे पूछा गया तो उसका कहना है कि सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, इतना मार के फोड़ दिया गया उसे।
2: तो अस्पष्ट गोलियां चल रही थी और अफरा तफरी इतना था कि किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि बाहर निकल के देख सके, यहाँ क्यों नहीं कोई आए लोग तक वगैरह, बहुत यही था कि तो उस समय आए रहते तो खाए रहते, क्या गोलियां चली है कि नहीं चली।
6: खान सर के बयानों ने ही खान सर को फंसा दिया और अब खान सर अपनी कोचिंग के द्वारा छात्रों से बचने का रास्ता खोज रहे हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार किसी भी समय खान सर को गिरफ्तार किया जा सकता है, ऐसा कहा जा रहा है कि खान सर कहां है इसका अभी फिलहाल किसी को पता नहीं।
1: लेकिन खान सर अब बुरी तरह से फंस चुके हैं कि अब पुलिस उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेगी। ऐसे में सवाल ये है कि क्या खान सर स्टूडेंट्स के जरिए पुलिस और प्रशासन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ये कहकर छात्रों को उकसा रहे हैं कि अगर उनका कोचिंग सेंटर बंद हो गया तो 6 महीने में कई कोचिंग संस्थानों की फीस 1 से 1.5 लाख रुपए तक हो जाएगी।
2: यकीन मानिए एनएसएस बंद हुआ, जिस दिन खान सर का आवाज दबाया गया उसके 6 महीने के अंदर आकर फिर से फीस 1.5 लाख नहीं चली गई। तो
0: जो आप लोग को गुमराह किया जा रहा है, सेल्फ डिफेंस की फायरिंग, चूंकि पुलिस लेट से पहुंची थी, पुलिस को आने में टाइम लगता है, हमें भी पता है कि 5 मिनट में पुलिस उड़ के नहीं आ जाएगी।
1: और खान सर किसी हद तक अपने स्मार्ट क्लास से छात्रों को अपने पक्ष में इकट्ठा करने में कामयाब भी हो जाते हैं। जी हां, खान सर की गिरफ्तारी को देखते हुए उनकी कोचिंग खान ग्लोबल स्टडीज के छात्र मुसल्लापुर कोचिंग सेंटर में पहुँचने लगते हैं। बिहार पुलिस भर्ती के रिजल्ट को लेकर शुरू हुई लड़ाई में खान सर ने ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर को तो गिरफ्तार करवा दिया, लेकिन अब गोलीकांड का सच बाहर आने के बाद गिरफ्तारी की तलवार खुद खान सर पर भी लटक गई है।
7: बिहार पुलिस में जो शानदार रिजल्ट हुआ है उसी का साजिश है, हमको फंसाया जा रहा है। किसान कोल्ड स्टोर के मालिक और खान सर जो है दोनों मिल करके जो है ज्ञान बिंदु को बर्बाद करने का पूरा प्रयास कर रहा है, लेकिन सत्यमेव जयते, हमेशा सत्य की जीत।
1: लेकिन सवाल ये है कि कैसे पटना के दो कोचिंग संचालकों के बीच वर्चस्व की लड़ाई में एक तरह से कोचिंग वॉर छिड़ गई है और इस कोचिंग वॉर में अब गोलियां भी चल रही हैं। ऐसे में पुलिस सख्त एक्शन ले रही है। इस कोचिंग वॉर में खान सर बुरी तरह से फंस चुके हैं। पटना से शशि भूषण के साथ आज तक ब्यूरो।
6: खबर मोहाली से आई बेहद खौफनाक तस्वीर की, जहां एक सरफरे आशिक ने ब्रेकअप के बाद अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के ऑफिस के अंदर चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी।

0: मोहाली के ऑफिस से आई ये तस्वीरें विचलित करने वाली हैं, जहां एक सिरफिरा आशिक हरजिंदर महिला सहकर्मी डिंपल पर अचानक से चाकुओं से हमला कर देता है। हमलावर ने एक के बाद एक करीब 30 बार लड़की पर चाकू चलाया। लड़की जान बचाकर चारों तरफ भागने की कोशिश करती है, लेकिन हमले जारी रहते हैं। बाकी सहकर्मी उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नाकाम साबित होते हैं। लड़की दम तोड़ देती है, लेकिन इसके बाद की तस्वीर और भयानक है, जहां वो लड़का सबके सामने खुद की गर्दन पर चाकू से ताबड़तोड़ वार करने लगता है और सबके सामने आत्महत्या की कोशिश करता है, जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है।
1: बेसिकली 25 से 30 बार चाकू का उसने वार किया, गर्दन पे भी है और पीछे हार्ट पे भी है। सो यू कैन से सीरियस, उसने मतलब 25 से 30 बार किए थे उसने, और अपने भी उसने ऐसे ही अपने आप को भी स्टैब किया है। अपने गले में भी उसके हैं, हार्ट में भी उसने अपने स्टैब किया अपने आप को भी। और ये सारी जो हैं, जो आप इनके वूंड्स बारे दैट डॉक्टर कैन टेल यू बेटर।
2: अभी पेरेंट्स के, दोनों साइड के पेरेंट्स का क्या
1: कहना है? मतलब जो लड़के के पेरेंट्स हैं, दे आर इन यूएस, दे विल बी कमिंग, पर अभी जो लड़की के पेरेंट्स हैं उनका हमने बयान लिखकर अभी पोस्टमार्टम करवाएंगे आज।
0: डिंपल पटियाला की रहने वाली थी, हरजिंदर भी पटियाला का है। दोनों में दोस्ती थी, प्यार था, अच्छे संबंध थे। करीब 3 साल से दोनों एक दूसरे को जानते थे, लेकिन कुछ दिनों से दोनों के रिश्तों में खटास आ गई थी। डिंपल ने ब्रेकअप कर लिया, हरजिंदर से मिलना जुलना छोड़ दिया, लेकिन हरजिंदर डिंपल को नहीं छोड़ना चाहता था। पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि हरजिंदर दोबारा से डिंपल के साथ रिश्ते ठीक करना चाहता था। गुरुवार को जब वो दफ्तर आया तो डिंपल से बात करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी और झगड़ा हो गया। इसके बाद जो तस्वीरें आई वो हैरान करने वाली थी। मोहाली से कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो।
3: दिल्ली के मालवीय नगर होटल अग्निकांड में नए खुलासे हो रहे हैं। होटल मालिक ने एक ऐसी बात मान ली जो कि सिस्टम पर सवाल खड़े करती है। दावा है कि होटल मालिक लवकेश बजाज ने बताया कि होटल उनका अकाउंटेंट ऑपरेट कर रहा था। वहीं दिल्ली सरकार ने बड़ी ड्राइव चलाकर नियम तोड़ने वाले होटल्स रेस्टोरेंट्स पर एक्शन लिया। नोएडा में लगी आग ने फिर से सवाल खड़े कर दिए।
4: होटल की तरफ जाती हुई एनसीबी की टीम, क्योंकि यहाँ पर पहले बिजली जो है वो काटी जाती है। आगे की तरफ कहूँगा कि यहाँ पर जो टीम है वो आगे की तरफ जाती हुई दूसरा होटल, क्योंकि अब तक 2 से 3 होटल्स को जो है वो यहाँ पर अब सील कर दिया गया।
5: दिल्ली के मालवीय नगर में होटल अग्निकांड के बाद दिल्ली सरकार एक्शन मोड में दिख रही है। दक्षिणी दिल्ली के कई इलाकों में अवैध इमारतों की पहचान करके उन पर बुलडोजर चलाया गया। मालवीय नगर इलाके में हुए अग्निकांड ने देश को झकझोर दिया। इस इलाके में सुबह ही बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया। अवैध निर्माण के खिलाफ दिल्ली के अलग अलग इलाकों में रेखा गुप्ता सरकार फुल एक्शन में है, जिसके तहत साकेत, एमजी रोड, मालवीय नगर में सीलिंग और बुलडोजर कार्रवाई होती है।
4: देखिए, मैं आपको बता दूं कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से जो ज्वाइंट कमेटी का गठन किया गया था, जिसमें डीएम, एसडीएम और एमसीडी दिल्ली पुलिस के साथ, अब इस वक्त दिल्ली के अलग अलग इलाके, चाहे वो मालवीय नगर हो, हौजरानी हो, साकेत हो, एमजी रोड हो, वहां पर बुलडोजर एक्शन के साथ साथ सीलिंग एक्शन भी जो है वो देखने को मिल रहा है। ये देखिए, ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट के नाम पर जो इनलीगल तरीके से होटल चल रहे थे, उस पर अब एमसीडी की तरफ से सीलिंग जो है वो यहाँ पर की जा रही है। सीलिंग की टीम, एमसीडी की टीम जो है वो यहाँ पर पहुंची है, और तमाम यहाँ पर हौजरानी इलाके में जब ये मालवीय नगर में हादसा हुआ था जिसमें 21 लोगों की जान गई थी, और आप देखिए किस तरीके से यह तमाम होटल जो है वो बने हुए हैं, इन सब पर इस वक्त जो है वो ज्वाइंट कमेटी की जो टीम जो दिल्ली सरकार की तरफ से गठित की गई थी, उसका एक्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। एक के बाद एक 18 ऐसी यूनिट्स हैं जहां पर इस वक्त एक्शन जो है वो देखने को मिल रहा है।
5: दक्षिणी दिल्ली के हौज खास में बेड एंड ब्रेकफास्ट होटल को एमसीडी की टीम ने सील किया। यहां भी नियमों की अनदेखी हो रही थी। दक्षिणी दिल्ली के गिटौरनी में भी अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया। यहाँ पर देखिए कितनी बड़ी इमारत नियमों की अनदेखी करके बना दी गई। यहाँ पर कई दुकानों को सील किया गया। इसके साथ पूर्वी दिल्ली के करावल नगर, हौज खास गांव में भी अतिक्रमण और सीलिंग की कार्रवाई हुई। दिल्ली सरकार ने अवैध निर्माण रोकने और बेड एंड ब्रेकफास्ट होटल को लेकर बड़ा फैसला लिया। भविष्य में मालवीय नगर अग्निकांड जैसा हादसा न हो, इसके लिए अब अफसरों की जिम्मेदारी भी तय की गई।
6: सरकारी निर्देशों का उल्लंघन करने पर 2 साल की सजा और मिलीभगत पाए जाने पर अधिकारियों पर भी कठोर कार्रवाई, जिसमें जेल तक और जुर्माने तक की कार्रवाई की जा सकती है उसको इन्वोक करने का फैसला सरकार ने लिया है।
5: दिल्ली के होटल अग्निकांड में 21 लोगों की मौत के सदमे से लोग उबरे भी नहीं थे कि सुबह सुबह नोएडा में दो जगह आग लगने से हड़कंप मच गया। आग लगने की पहली घटना नोएडा सेक्टर 74 में हुई, जहां 12वें फ्लोर के एक फ्लैट में आग लगती है। तेज हवा के चलते आग तेजी से फैलती है और फ्लैट की खिड़कियों से ऊंची लपटें निकलने लगी। आसमान में काले धुएं का गुबार फैल गया। इस हादसे ने दमकल विभाग की तैयारियों पर एक बार फिर सवाल उठा दिए। हालांकि बाद में इस आग पर काबू पाया गया। नोएडा के अपार्टमेंट में लगी आग की इस घटना का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया और अधिकारियों को तुरंत मौके पर पहुंचकर राहत बचाव और निगरानी करने के निर्देश दिए। नोएडा में आग लगने की एक और घटना सेक्टर 52 के एक पीजी में हुई। जिस पीजी में आग लगी उस बिल्डिंग में नीचे रेस्टोरेंट था। काफी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने यहां पर आग पर काबू पाया।
3: दिल्ली की ही तरह मध्य प्रदेश के इंदौर में भी बड़ा हादसा हो सकता था। इंदौर में ग्राउंड फ्लोर पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों का शोरूम था, जिसमें आग लग गई। आग लगने से ऊपर की मंजिल पर रहने वाले कई परिवारों की जान खतरे में पड़ गई। लोगों का आरोप है कि दमकल विभाग की टीम काफी देर से पहुंची।
5: खिड़की के छज्जे पर लटका ये उस आम आदमी का परिवार जिसे जिम्मेदार सरकारी विभाग अक्सर मुसीबत के आगे अकेला छोड़ देता है। तस्वीरें मध्य प्रदेश के इंदौर की हैं, जहां पति पत्नी और एक मासूम बेटी की चुनौती मौत के चंगुल से खुद को बचाने की है। जिंदा रहने के लिए खुद को बचाने की कोशिश कर रहा दमकल विभाग की टीम नदारद, इसीलिए पड़ोसी रस्सी फेंक रहे तो कोई सीढ़ी लगाने की कोशिश कर रहा। वजह बिल्डिंग में आग लगी है, घर के अंदर धुआं भरा है। मध्य प्रदेश के इंदौर में इलेक्ट्रिक शोरूम में लगी आग एक बार फिर सुरक्षा के सिस्टम पर सवाल उठाती। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड की तस्वीरें अभी धुंधली भी नहीं हुई। इंदौर के इस अग्निकांड ने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। हालांकि बस गनीमत की बात यह है कि यहां किसी जान माल का नुकसान नहीं हुआ।
7: पहली बार उठे जैसे हमने धुआं देखा और इसके अलावा हमने कुछ नहीं देखा, मतलब बच्ची और हमको सबको साथ में लेके बाउंड्री के बाहर इधर बालकनी के यहां पर पहुंच गए, खड़े रहे दीवार के साइड से जो पाइपलाइन इसको पकड़ के, मतलब फिर लोगों ने हमको देखा कि ये लोग भी ऊपर हैं, मतलब कब से हुए हैं।
8: बहुत दूर धुआं हो रहा था, घबराहट हो रही थी, सांस लेने में भी दिक्कत आ रही थी, तो हम इधर से कूद के और दूसरी बिल्डिंग पे गए तो उधर से लोगों ने हमको निकाला, बच्ची को भी निकाला, हमको रस्सी बांध के कमर में सीढ़ी से निकाला।
5: ग्राउंड फ्लोर पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों के शोरूम में जब आग लगी तब उसकी ऊपर की मंजिल पर रहने वाले लोग सो रहे। बताया जा रहा है कि शोरूम के बाहर कुछ एक फोर व्हीलर गाड़ी को चार्जिंग पर लगाया गया। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट को आग लगने की संभावित वजह माना जा रहा है।
9: इस शोरूम के ऊपर जो फ्लैट है, तकरीबन यहाँ पर 20 से 25 परिवार यहाँ रहते हैं इस बिल्डिंग के ऊपर, तो जब इसका धुआं ऊपर गया तो उन लोगों को निकलने में बड़ी परेशानी आ रही थी, तो जो पड़ोसी है इस पास की बिल्डिंग के जो लोग है उन्होंने सीढ़ियां लगा के रेस्टोरेंट वहां से निकाला। लेकिन बहुत देर बाद जो है फायर ब्रिगेड आई यहाँ पर, क्योंकि जो रहवासी है क्षेत्रीय उन्होंने काफी मदद की और उन्होंने रेस्क्यू करके बाकी लोगों को निकाला।
5: गर्मियों में आग लगने की घटनाएं बढ़ती। दिल्ली में मंगलवार को एक होटल में आग लगने की घटना पूरे देश को दहला दी। दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर होटल टूरिस्ट स्टे में लगी आग में कुल 21 लोगों की जान गई, जिसमें 11 विदेशी थे। ऐसा नहीं कि दिल्ली या देश में इस तरह की पहली घटना। दिल्ली हो या फिर इंदौर, हर घटना सरकारी विभागों को बार बार खबरदार करती, लेकिन हर हादसे के बाद जैसे ही मामला शांत होता है संबंधित विभाग ढीले पड़ जाते हैं और आम आदमी सरकारी अफसरों की लापरवाही का शिकार होने लगता है।
3: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।

0: दस्तक के साथ मंच पर पुतिन समेत दुनिया के बड़े दिग्गज। पुतिन ने भारत की तारीफ की, बताया प्रमुख साझेदार, आईटी सेक्टर के अग्रणी देशों में शामिल है इंडिया। सूरत में पीएम का विपक्ष पर हमला, कहा अराजकता फैलाकर अवसर तलाश रही है कांग्रेस, देश को नीचा दिखाने में जुटे हैं निराशावादी नेता। समुद्र मंथन मिशन में भारत को बड़ी सफलता, गहरे समुद्र में ऑयल इंडिया को मिली प्राकृतिक गैस, हरदीप सिंह पुरी का ऐलान। अग्निकांड के बाद दिल्ली सरकार का एक्शन, अवैध निर्माण पर बुलडोजर, कुछ इलाके सील, सीएम रेखा गुप्ता की बैठक में दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई के आदेश। और बागी नेता ऋतुव्रत को नेता विपक्ष बनाए जाने के खिलाफ, सोमवार को हाईकोर्ट जाएंगी ममता, ममता की बैठक में पहुंचे सिर्फ 3 लोकसभा सांसद। पश्चिम बंगाल में बड़ा राजनीतिक बदलाव नजर आ रहा है, जहां ममता बनर्जी की पार्टी हर दिन के साथ कमजोर होती जा रही है। विधायकों की बगावत के बाद अब ममता बनर्जी के सांसदों को लेकर भी खबरें आई कि वो भी विद्रोह कर सकते हैं, और दावा तो यहां तक हो रहा है कि अगले सप्ताह की शुरुआत में तृणमूल कांग्रेस के सांसद बड़ा खेला कर सकते हैं।
1: जब विधायकों के बाद अब सांसद भी तृणमूल कांग्रेस से अलग हो जाएंगे, क्या अगले हफ्ते की शुरुआत में ममता बनर्जी के सांसद भी अलग गुट बना लेंगे? ममता बनर्जी की पार्टी पर संकट गहराता जा रहा है। इसका साफ साफ संकेत ममता बनर्जी के कालीघाट वाले घर पर बैठक के दौरान मिलता है। पार्टी के 60 विधायकों के अलग गुट बनाने के दावे के बाद बुलाई गई इस बैठक में अभिषेक बनर्जी, कल्याण बनर्जी, माला रॉय शामिल हुई। इसके अलावा डेरेक ओब्रायन और डोला सेन भी ममता के घर पहुंचे। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं, 80 विधायकों वाली टीएमसी के सिर्फ 8 मौजूदा विधायकों और 2 पूर्व विधायकों ने बैठक में हिस्सा लिया। ममता बनर्जी के घर पर बुलाई गई इस बैठक में विधायकों की तरह सांसद भी गायब दिखे। 28 लोकसभा सांसदों वाली टीएमसी के चीफ के घर पर लोकसभा के 3 और 2 राज्यसभा सांसद पहुंचे, जिसके बाद खबरदार करता सवाल है कि क्या विधायकों के बाद अब सांसद भी ममता बनर्जी को टाटा बाय बाय करने वाले हैं? इस सवाल पर ममता बनर्जी के करीबी विधायक मदन मित्रा का जवाब सुनने लायक है।
2: ये विधायक बोल रहे हैं 23 सांसद उनके साथ हैं, 23 सांसद उनके साथ हैं, बाकी विधायक बोल रहे हैं।
3: वो पूरा बात कर सकता है, पूरा कह सकता है जब पूरा पार्टी उनका साथ है।
1: तो मदन मित्रा ने पार्टी के सांसदों के विद्रोह के सवाल को खारिज नहीं किया, बल्कि बागियों को चुनौती देकर ये बता दिया कि दाल में कहीं कुछ काला जरूर है।
3: 2,30,00,000 जनता ममता बनर्जी का नाम से वोट दिया, जो लोग जा रहे हैं उसमें से कोई मां का लाल है, रेजिग्नेशन देके अपना क्षेत्रों में जाके बोलेंगे ममता को फोटो नहीं लेके मैं फिर से एक बार चुनाव लड़ने चाहता हूं, अगर उसका पास कोई चुनाव जीत के आए मैं उसको सलाम करवाऊंगा।
1: ममता के करीबियों के इस बयान को टीएमसी के सूत्रों के हवाले से आ रही खबर से समझा जा सकता है, जिसके मुताबिक टीएमसी में विधायक दल के बाद अब संसदीय दल में जल्दी टूट हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी के कई सांसद अभिषेक बनर्जी से नाराज बताए जा रहे हैं। नाराज सांसद एक अलग गुट बना सकते हैं। टीएमसी के लोकसभा में 28 सांसद अभी हैं। दल बदल कानून के तहत अलग समूह को मान्यता मिलने के लिए कम से कम 22 सांसदों का समर्थन जरूरी होगा। सूत्रों के अनुसार एक दर्जन से अधिक सांसद अलग ग्रुप बनाने के पक्ष में हैं। सूत्र कहते हैं कि पार्टी के एक बड़े वरिष्ठ सांसद इस संभावित बगावत की अगुवाई कर रहे हैं। राज्यसभा में टीएमसी के 13 सांसद हैं और वहां अलग समूह को मान्यता के लिए कम से कम 9 सांसदों का समर्थन चाहिए। ममता बनर्जी के विधायकों की टूट के बाद उनके घर बैठक में 41 सांसदों में से सिर्फ 5 सांसदों का पहुंचना अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या विधायकों के बाद सांसदों के टूटने की चर्चा है?
4: मानसिक तौर पे आप पार्टी के साथ नहीं है?
5: मानसिक तौर पे मैं पार्टी के साथ नहीं हूँ।
4: और ऐसे ही मानसिक तौर पे और कितने सांसद है तृणमूल में जो पार्टी के साथ नहीं है, आपको क्या पता है?
5: देखिए, मैं तो किसी का मानसिक स्थिति को रीड नहीं कर पाता।
4: नहीं, बातचीत तो होती होगी।
5: बातचीत होती है, मेरे सुनने में जो है मैंने आपको बता दिया ना कि लोकसभा में ज्यादा मेंबर, मैंने मेजोरिटी मेंबर नहीं।
1: सूत्रों के मुताबिक टीएमसी के 23 लोकसभा सांसद बागी गुट के संपर्क में कहे जा रहे हैं। माना जा रहा है कि अगले हफ्ते की शुरुआत में टीएमसी के लोकसभा सांसदों में टूट हो सकती है, मतलब कुछ ही दिनों में क्या खेला हो जाएगा।
3: दुनिया में सब कुछ हो सकता है ना, ऐसा कोई चीज नहीं है जो दुनिया में नहीं हो सकता है। लड़ाई जारी है।
1: विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की हार के बाद जिस तेजी से और बड़े पैमाने पर पार्टी के विधायकों का संतोष सामने आया वो अभूतपूर्व है, जिसका असर संसद में भी दिख सकता है।
4: कितने सांसद होंगे ऐसे लोकसभा में? आपके 29 सांसद है, आपको क्या सुनाई दे रहा है? कितने सांसद होंगे फिर?
5: 29 नहीं, 28 है।
4: 28
5: बसीरहाट आपका पेंडिंग है कलकत्ता हाई कोर्ट में,
4: क्या होने वाला है? आपको क्या सुनाई दे रहा है? आपको पार्टी के अंदर अभी भी है
5: मेजोरिटी चल रही है?
4: ये एक बड़ा बयान है आप दे रहे हैं कि मेजॉरिटी ही चला जाएगा?
1: टीएमसी में मची इस बगावत के लिए भले ही बागी अभिषेक बनर्जी को दोषी देते हों, लेकिन ममता बनर्जी को नेता मानने पर सब एकमत। इसीलिए जब ऋतुव्रत बनर्जी ने ममता को सलाहकार के रूप में सीमित करने की कोशिश की तो पाला बदलने वाले कई विधायकों ने विरोध जताया। हालांकि ऋतुव्रत इसे कोई चुनौती नहीं मानते और उन्हें भरोसा है कि बगावत करने वाले विधायकों की संख्या बढ़ेगी।
6: जहाँ तक हमारे आंकड़ा का सवाल है, वो आंकड़ा बढ़ता जाएगा। जो आंकड़ा हम लोग प्रेजेंट किए थे 2/3 से ज्यादा, काफी सारे ज्यादा, वो जो आंकड़ा है जब आप लोग से मिलेंगे विधानसभा का अधिवेशन जो होगा वो आंकड़ा ऊपर जाएगा और आगे जाएगा।
1: विधानसभा चुनाव में हार के महीने भर के अंदर जिस तरह से ममता की पार्टी में टूट हुई, उसे देखते हुए राजनीतिक हलकों में ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या आने वाले समय में टीएमसी के सांसद भी पार्टी का साथ छोड़ देंगे।
0: और अब खबर उत्तर प्रदेश की राजनीति की, जहां 2027 चुनाव का असर नेताओं के बयानों पर साफ दिखाई दे रहा है। योगी आदित्यनाथ लगातार अखिलेश यादव पर हमलावर हैं, तो अखिलेश यादव भी योगी की खामियों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं।
7: हम देखते हैं, हमने हर घर नल की योजना को आगे बढ़ाया, पता लगा कोई टोंटी चोरी कर रहा है।
8: योगी ने भले ही अपने इस बयान में किसी का नाम न लिया हो, लेकिन टोंटी चोरी शब्द के बाद योगी की मुस्कुराहट ने यूपी की सियासत के 10 साल पुराने चैप्टर को फिर से खोल दिया, जब अखिलेश के सीएम बंगला खाली होने के बाद इन आरोपों पर जमकर घमासान मचा था।
9: अगर हमारे पे ये इल्जाम लगे हम टोंटी ले गए, हमारे घर को गंगा जल से धुला हो गया, आप भूल सकते हो, मैं नहीं भूल सकता।
8: उधर योगी के बयान के जवाब में अखिलेश यादव ने भी बिना किसी का नाम लिए एक तंज भरा ट्वीट किया। वनस्पति विवेक छीन लेती है और निर्दोष लोगों की हत्याओं का खौफ रातों की नींद, नहीं तो पूरे होश में इतने ऊंचे पद पर बैठकर इतना निकृष्ट बयान कोई भी नहीं देता है। कुछ लोग अपनी असफलता के लिए दूसरों को दोषी ठहराते हैं, ये हार की हताशा बोल रही है, क्योंकि कुदरत का बुलडोजर अब घूम गया है। इसके बाद योगी के हमलों की दूसरी किश्त जारी हुई, जहां निशाने पर एक बार फिर विपक्ष था।
10: अच्छे लोगों को चुनोगे अच्छा परिणाम आएगा, माफिया को चुन करके भेजोगे तो खून भी चूस डालेगा, विकास का पैसा तो हजम करेगा ही करेगा, संपत्तियों पर भी माफिया कब्जा करता है।
8: यूपी में अब चुनाव की तैयारियों ने पूरा जोर पकड़ लिया है, जिसका अंदाजा नेताओं के बयानों से लगाया जा सकता है। आज तक ब्यूरो।
0: खबर कोचिंग वाले खान सर की, जहां कोचिंग वॉर में खान सर बुरी तरह से फंस गए हैं। पहले तो फैसल खान उर्फ खान सर ने अपने पड़ोसी वाली ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद को गिरफ्तार करवाया और अब कोचिंग गोलीकांड में खुद खान सर पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है।
11: इंसान घमंड अपने अच्छे समय में दिखाता है और उसका खामियाजा उसको अपने बुरे समय में भुगतना पड़ता है। एयरबस A380 ये सबसे ऊंची जहाज,
12: ये एरिया कौन सा है? मंचूरिया।
13: हिटलर ने ग्रेनेड बनाना चालू किया, ओ टैंक पनडुब्बी पानी वाली जहाज सब बनाया।
14: कोचिंग की दुनिया में खान सर इतना बड़ा नाम बन चुके हैं कि अब छात्रों के बीच लेक्चर देने के लिए वो भारी सुरक्षा बलों और हथियारबंद बॉडीगार्ड्स के साथ रेड कार्पेट पर चलते हुए ग्रैंड एंट्री लेते हैं।
15: याद रखिएगा, 1.5 साल की लगन के साथ पढ़ाई आपको पूरी दुनिया से 5 साल आगे रख देती है। अब कोई पोत पात क्या आएगा, तुम कहते कितना बढ़िया लग रहे हो, तो वो पतेगा एकदम सीआर लग रही हूँ, इसलिए एकदम अखंड सिंगल।
14: लेकिन अब खान सर का यही जलवा उनके लिए मुसीबत का सबब बन रहा है। 2 जून को खान सर के कोचिंग सेंटर पर हुए गोलीकांड में वो बुरी तरह से फंस चुके हैं।
15: आप सबके जीवन में कुछ न कुछ तकलीफ है, तो इससे घबराना क्या है? अगर रात अंधेरी है तभी तारों के चमकने का अहमियत भी है।
14: खान सर पर पटना के कदम कुआं थाने में हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ है। जी हां, खान सर के गार्ड्स ने पुलिस को बयान दिया है कि उन्होंने हमें कहा तुम गोली चलाओ, बाकी हम देख लेंगे। इसी आधार पर पुलिस ने खान सर के खिलाफ FIR दर्ज की है। BNS की धारा 109 के तहत ये केस दर्ज किया गया है। इसमें 10 साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है। इसमें अग्रिम जमानत भी नहीं मिल सकती है। पुलिस की FIR में 3 लोगों का नाम दर्ज है, फैजल खान उर्फ खान सर और उनके साथ उनके 2 गार्ड्स। फायरिंग करने वाले दोनों गार्ड्स के नाम प्रदीप कुमार और तलविंदर सिंह हैं। खान सर के ये दोनों निजी गार्ड्स उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। नोएडा की सिक्योरिटी एजेंसी से खान सर ने 17 गार्ड्स हायर किए हैं।
16: जो व्यक्ति जो वीडियो में दिख रहे हैं फायरिंग करते हुए, तो पहचान करके तो गिरफ्तार किया गया है और उनको भी भेजा जा रहा है। उनके हथियार जब्त करके फसल जांच कराया जा रहा है। आगे जो जांच में आएगा और उसके सबूत जो मिलेंगे हम लोग को सतर्क करेंगे।
17: खान सर पे क्या आरोप सिद्ध हुआ है? गार्ड ने जो बताया आपके लोग के द्वारा जो FIR भेजा गया उसमें साफ तौर से कहा गया है कि उन्होंने आदेश दिया था, क्या खान सर की गिरफ्तारी होगी? सर,
16: इसमें आपको बताया कि जिस तरह का लोग एविडेंस आएगा उस सबसे कार्रवाई होगी और इसमें जिसके ऊपर भी एविडेंस आएगा, विधि व्यवस्था या अपराध इसके ऊपर भी होगी, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सबूतों के आधार पर
15: ये क्या है, इसका ये एग्जैक्ट इसी साइज का होता है।
14: और अब जिसमें खान सर को महारत हासिल है उसी रास्ते से खान सर बचकर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से कठिन और जटिल विषयों को खान सर बहुत ही सरल, देसी और मजाकिया अंदाज में छात्रों को समझाते हैं, आज खान सर कोचिंग सेंटर में छात्रों के बीच अपना केस समझा रहे हैं। इस लेक्चर में खान सर गिरफ्तारी से बचने की सफाई पेश करते हैं। तो आइए आपको भी खान सर की सेल्फ डिफेंस वाली क्लास में लिए चलते हैं।
15: ये लोग कहा कि खान सर के ऊपर माला चढ़ जाए, फोटो पे क्या चढ़ जाए माला, यही तो चाहते हैं लोग। अरे पागलो मेरे भाई लोग, एक बात बता यार, वो हमला किसके ऊपर करने आया है? हमारे ऊपर। दिन में आएगी रात में? रात। अकेले आए ग्रुप में? पथराव किया कि नहीं? गोली चलाए कि नहीं चलाए? गार्ड को अधमरा किया कि नहीं किया? क्या FIR भी नहीं करें? ले अब पूछिए जरा ये बात। सबसे जरूरी चीज जो आप लोग को गुमराह किया जा रहा है, सेल्फ डिफेंस की फायरिंग, चूंकि पुलिस लेट से पहुंची थी, पुलिस को आने में टाइम लगता है, हमें भी पता है कि 5 मिनट में पुलिस उड़ के नहीं आ जाएगी, तो सेल्फ डिफेंस में वो नहीं भाग रहे थे, उसको मार डालते तो कोई क्या करता? एक गार्ड का कर्तव्य क्या होता है? सुरक्षा करना।
14: और तो और, खान सर अपनी कोचिंग के स्मार्ट क्लासरूम में 2 जून की घटना की CCTV फुटेज का पूरा विश्लेषण कर रहे हैं।
18: इसकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं की, जबकि सबके सामने ये लेके जा रहा है, मुद्दे से भटकाया जा रहा है। आप इसकी गिरफ्तारी करिए, ये आदमी कौन है और कैसे आता है 20-25 लोगों को उठा के लेके चला जाता है, 20-25 लोगों को एक साथ कैसे?
14: खान सर मार्कर से स्क्रीन पर आरोपियों को घेर घेर कर दिखा रहे हैं और छात्रों को बता रहे हैं कि देखिए इनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। खान सर उसका नाम विकास बताते हैं और उसकी पूरी पहचान भी बताते हैं।
18: इसका नाम विकास या विवेक करते हैं, विकास। इसने बयान दिया है, देखो हम लोग तो पढ़ाने वाले आपके, हम लोग को इतना नहीं पता रहता कि कौन कहां क्या काम कर रहा है। क्या हमने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया है? इसकी गिरफ्तारी पटना पुलिस से मांग करते हैं, अभी तक बाहर घूम रहा।
14: फिर खान सर हाथ में किताब लेकर विद्या की कसम खाते हैं और कहते हैं कि कोचिंग पर लगातार गोलियां चली थी और पूरी सच्चाई सामने नहीं लाई जा रही है।
18: हमने दिखाया गोली चलते हुए आपको देख रहे हैं। अब आप बताइए आप अपनी आवाज उठा सकते हैं कि नहीं
14: उठा। स्मार्ट क्लासरूम में लेक्चर देने वाले खान सर वेरी स्मार्ट हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कोचिंग में हुए गोलीकांड पर वो कैसे गच्चा खा गए और अपने ही बयानों से कैसे फंस गए वो आपको दिखाते हैं। खान सर ने पहले कहा उनके कोचिंग सेंटर पर रोशन आनंद के लोगों ने गोलियां चलाई, 10 राउंड फायरिंग हुई, फिर खान सर पलट गए और गोलियों की बात से मुकर गए। लेकिन जब गोलियां चलाते हुए खान सर के अपने ही गार्ड्स का वीडियो वायरल हो गया, फायरिंग करने वाले दो गार्ड्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और खान सर पर भी आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज हो गया, तो अब खान सर फिर से कोचिंग में गोलियां चलाने की थ्योरी ले आए हैं।
19: अभी इन लोग का बस यही है कि इतने कम फीस में नहीं पढ़ाया जाए और इतने हजारों संख्या में जो रिजल्ट आता है पूरी तरह से इतनी गोली चलाने लगे 10 मिनट में ऐसा लगा कि जैसे अफरा तफरी होके रख गया। यहाँ पर 8-10 राउंड तो हम देखे हैं, यहाँ पे 8-10 राउंड हम देखे हैं। हमें क्या पता है, अभी पीएमसीएच में एडमिट है, उसका पूरा सर फाड़ दिया गया है। यहाँ पर बगल की कोचिंग वाले
20: सर आप खुद मौजूद थे यहाँ जब फायरिंग हो रही थी?
19: बिल्कुल, ये देखिए मेरा गार्ड है ये।
20: अच्छा,
19: इसका ये पूरी तरह से खून से इसको लहूलुहान कर दिया गया। यहाँ पे
20: तो गार्ड से क्या दुश्मनी थी?
19: बस की तुम ही खान सर को सब गार्ड है हमारा मार के रखा है। देखिए उस समय इतना घटना हुआ, अभी जो घायल है जो मेन, हम लोग तो अंदर से भी अपने चेंबर में थे, टीचर लोग क्लास ले रहे थे, जो गार्ड है उससे पूछा गया तो उसका कहना है कि सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, इतना मार के फोड़ दिया गया उसको।
18: हम लोग के लिए तो यही विद्या है, यही हम लोग का ये है। अब अगर कोई विद्या के मंदिर में जाए, अस्पष्ट गोलियां चल रही थी और अफरा तफरी इतना था कि किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि बाहर निकल के देख सके। यहाँ क्यों नहीं कोई आए लोग वगैरह, बहुत यही था कि तो उस समय आए रहते तो कह रहे थे क्या गोलियां चल रही है कि नहीं चल रही।
0: खान सर के बयानों ने ही खान सर को फंसा दिया और अब खान सर अपनी कोचिंग के द्वारा छात्रों से बचने का रास्ता खोज रहे हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार किसी भी समय खान सर को गिरफ्तार किया जा सकता है। ऐसा कहा जा रहा है कि खान सर कहाँ है इसका अभी फिलहाल किसी को पता नहीं।
14: लेकिन खान सर अब बुरी तरह से फंस चुके हैं कि अब पुलिस उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेगी। ऐसे में सवाल ये है कि क्या खान सर स्टूडेंट्स के जरिए पुलिस और प्रशासन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ये कहकर छात्रों को उकसा रहे हैं कि अगर उनका कोचिंग सेंटर बंद हो गया तो 6 महीने में कई कोचिंग संस्थानों की फीस 1-1.5 लाख रुपए तक हो जाएगी।
18: जिस दिन खान सर को आवाज दबाया गया उसके 6 महीने के अंदर आता फिर से फीस 1-1.5 लाख नहीं चली गई। तो
15: जो आप लोग को गुमराह किया जा रहा है, सेल्फ डिफेंस की फायरिंग, चूंकि पुलिस लेट से पहुंची थी, पुलिस को आने में टाइम लगता है, हमें भी पता है कि 5 मिनट में पुलिस उड़ के नहीं आ जाएगी।
14: और खान सर किसी हद तक अपने स्मार्ट क्लास से छात्रों को अपने पक्ष में इकट्ठा करने में कामयाब भी हो जाते हैं। जी हाँ, खान सर की गिरफ्तारी को देखते हुए उनकी कोचिंग खान ग्लोबल स्टडीज के छात्र मुसल्लापुर कोचिंग सेंटर में पहुंचने लगते हैं। बिहार पुलिस भर्ती के रिजल्ट को लेकर शुरू हुई लड़ाई में खान सर ने ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर को तो गिरफ्तार करवा दिया, लेकिन अब गोलीकांड का सच बाहर आने के बाद गिरफ्तारी की तलवार खुद खान सर पर भी लटक गई है।
21: बिहार पुलिस में जो शानदार रिजल्ट हुआ है उसी का साजिश से हमको फंसाया जा रहा है। किसान कोल्ड स्टोर के मालिक और खान सर जो है दोनों मिल करके जो है ज्ञान बिंदु को बर्बाद करने का पूरा प्रयास कर रहा है, लेकिन सत्यमेव जयते, हमेशा सत्य की जीत।
14: लेकिन सवाल ये है कि कैसे पटना के दो कोचिंग संचालकों के बीच वर्चस्व की लड़ाई में एक तरह से कोचिंग वॉर छिड़ गई है और इस कोचिंग वॉर में अब गोलियां भी चल रही हैं। ऐसे में पुलिस सख्त एक्शन ले रही है। इस कोचिंग वॉर में खान सर बुरी तरह से फंस चुके हैं। पटना से शशि भूषण के साथ आज तक ब्यूरो।
0: खबर मोहाली से आई बेहद खौफनाक तस्वीर की, जहां एक सरफिरे आशिक ने ब्रेकअप के बाद अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के ऑफिस के अंदर चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी।

0: मोहाली के ऑफिस से आई ये तस्वीरें विचलित करने वाली हैं, जहां एक सिरफिरा आशिक हरजिंदर महिला सहकर्मी डिंपल पर अचानक से चाकुओं से हमला कर देता है। हमलावर ने एक के बाद एक करीब 30 बार लड़की पर चाकू चलाया। लड़की जान बचाकर चारों तरफ भागने की कोशिश करती है, लेकिन हमले जारी रहते हैं। बाकी सहकर्मी उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नाकाम साबित होते हैं। लड़की दम तोड़ देती है, लेकिन इसके बाद की तस्वीर और भयानक है, जहां वो लड़का सबके सामने खुद की गर्दन पर चाकू से ताबड़तोड़ वार करने लगता है और सबके सामने आत्महत्या की कोशिश करता है, जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है।
1: बेसिकली 25 से 30 बार चाकू का उसने वार किया, गर्दन पे भी है और पीछे हार्ट पे भी है। सो यू कैन से भी सीरियस उसने, मतलब 25 से 30 बार किए थे उसने, और अपने भी उसने ऐसे ही अपने आप को भी स्टैब किया है। अपने गले में भी उसके हैं, हार्ट में भी उसने अपने स्टैब किया अपने आप को भी, और ये सारी जो हैं जो आप इनके वुंड्स बारे दैट डॉक्टर कैन टेल यू बेटर।
2: पेरेंट्स के, दोनों साइड के पेरेंट्स का क्या?
1: मतलब जो लड़के के पेरेंट्स हैं दे आर इन यूएस, दे विल बी कमिंग, पर अभी जो लड़की के पेरेंट्स हैं उनका हमने बयान लिखकर अभी पोस्टमार्टम करवाएंगे आज।
0: डिंपल पटियाला की रहने वाली थी, हरजिंदर भी पटियाला का है। दोनों में दोस्ती थी, प्यार था, अच्छे संबंध थे। करीब 3 साल से दोनों एक दूसरे को जानते थे, लेकिन कुछ दिनों से दोनों के रिश्तों में खटास आ गई थी। डिंपल ने ब्रेकअप कर लिया, हरजिंदर से मिलना जुलना छोड़ दिया, लेकिन हरजिंदर डिंपल को नहीं छोड़ना चाहता था। पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि हरजिंदर दोबारा से डिंपल के साथ रिश्ते ठीक करना चाहता था। गुरुवार को जब वो दफ्तर आया तो डिंपल से बात करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी और झगड़ा हो गया। इसके बाद जो तस्वीरें आई वो हैरान करने वाली थी। मोहाली से कमलजीत संधु के साथ आज तक ब्यूरो।
3: दिल्ली के मालवीय नगर होटल अग्निकांड में नए नए खुलासे हो रहे हैं। होटल मालिक ने एक ऐसी बात मान ली जो कि सिस्टम पर सवाल खड़े करती है। दावा है कि होटल मालिक लवकेश बजाज ने बताया कि होटल उनका अकाउंटेंट ऑपरेट कर रहा था। वहीं दिल्ली सरकार ने बड़ी ड्राइव चलाकर नियम तोड़ने वाले होटल्स रेस्टोरेंट्स पर एक्शन लिया। नोएडा में लगी आग ने फिर से सवाल खड़े कर दिए।
4: तस्वीरें देखिए कि एक और होटल की तरफ जाती हुई एनसीबी की टीम, क्योंकि यहाँ पर पहले बिजली जो है वो काटी जाती है। आगे की तरफ मैं कहूँगा कि यहाँ पर जो टीम है वो आगे की तरफ जाती हुई दूसरा होटल, क्योंकि अब तक 2 से 3 होटल्स को जो है वो यहाँ पर अब सील कर दिया गया।
5: दिल्ली के मालवीय नगर में होटल अग्निकांड के बाद दिल्ली सरकार एक्शन मोड में दिख रही है। दक्षिणी दिल्ली के कई इलाकों में अवैध इमारतों की पहचान करके उन पर बुलडोजर चलाया गया। मालवीय नगर इलाके में हुए अग्निकांड ने देश को झकझोर दिया। इस इलाके में सुबह ही बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया। अवैध निर्माण के खिलाफ दिल्ली के अलग अलग इलाकों में रेखा गुप्ता सरकार फुल एक्शन में है, जिसके तहत साकेत, एमजी रोड, मालवीय नगर में सीलिंग और बुलडोजर कार्रवाई होती है।
4: देखिए मैं आपको बता दूं कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से जो ज्वाइंट कमेटी का गठन किया गया था, जिसमें डीएम, एसडीएम और एमसीडी दिल्ली पुलिस के साथ, अब इस वक्त दिल्ली के अलग अलग इलाके, चाहे वो मालवीय नगर हो, हौजरानी हो, साकेत हो, एमजी रोड हो, वहां पर बुलडोजर एक्शन के साथ साथ सीलिंग एक्शन भी जो है वो देखने को मिल रहा है। ये देखिए ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट के नाम पर जो इनलीगल तरीके से होटल चल रहे थे उस पर अब एमसीडी की तरफ से सीलिंग जो है वो यहाँ पर की जा रही है। सीलिंग की टीम, एमसीडी की टीम जो है वो यहाँ पर पहुंची है और तमाम यहाँ पर हौजरानी इलाके में जब ये मालवीय नगर में हादसा हुआ था जिसमें 21 लोगों की जान गई थी, और आप देखिए किस तरीके से यह तमाम होटल जो है वो बने हुए हैं, इन सब पर इस वक्त जो है वो ज्वाइंट कमेटी की जो टीम जो दिल्ली सरकार की तरफ से गठित की गई थी उसका एक्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। एक के बाद एक 18 ऐसी यूनिट्स हैं जहां पर इस वक्त एक्शन जो है वो देखने को मिल रहा है।
5: दक्षिणी दिल्ली के हौज खास में बेड एंड ब्रेकफास्ट होटल को एमसीडी की टीम ने सील किया। यहां भी नियमों की अनदेखी हो रही थी। दक्षिणी दिल्ली के गिटौरनी में भी अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया। यहाँ पर देखिए कितनी बड़ी इमारत नियमों की अनदेखी करके बना दी गई। यहाँ पर कई दुकानों को सील किया गया। इसके साथ पूर्वी दिल्ली के करावल नगर, हौज खास गांव में भी अतिक्रमण और सीलिंग की कार्रवाई हुई। दिल्ली सरकार ने अवैध निर्माण रोकने और बेड एंड ब्रेकफास्ट होटल को लेकर बड़ा फैसला लिया। भविष्य में मालवीय नगर अग्निकांड जैसा हादसा न हो, इसके लिए अब अफसरों की जिम्मेदारी भी तय की गई।
6: सरकारी निर्देशों का उल्लंघन करने पर 2 साल की सजा और मिली भगत पाए जाने पर अधिकारियों पर भी कठोर कार्रवाई, जिसमें जेल तक और जुर्माने तक की कार्रवाई की जा सकती है उसको इन्वोक करने का फैसला सरकार ने लिया है।
5: दिल्ली के होटल अग्निकांड में 21 लोगों की मौत के सदमे से लोग उबरे भी नहीं थे कि सुबह सुबह नोएडा में दो जगह आग लगने से हड़कंप मच गया। आग लगने की पहली घटना नोएडा सेक्टर 74 में हुई, जहां 12वें फ्लोर के एक फ्लैट में आग लगती है। तेज हवा के चलते आग तेजी से फैलती है और फ्लैट की खिड़कियों से ऊंची लपटें निकलने लगी। आसमान में काले धुएं का गुबार फैल गया। इस हादसे ने दमकल विभाग की तैयारियों पर एक बार फिर सवाल उठा दिए। हालांकि बाद में इस आग पर काबू पाया गया। नोएडा के अपार्टमेंट में लगी आग की इस घटना का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया और अधिकारियों को तुरंत मौके पर पहुंचकर राहत बचाव और निगरानी करने के निर्देश दिए। नोएडा में आग लगने की एक और घटना सेक्टर 52 के एक पीजी में हुई। जिस पीजी में आग लगी उस बिल्डिंग में नीचे रेस्टोरेंट था। काफी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने यहां पर आग पर काबू पाया है।
3: दिल्ली की ही तरह मध्य प्रदेश के इंदौर में भी बड़ा हादसा हो सकता था। इंदौर में ग्राउंड फ्लोर पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों का शोरूम था जिसमें आग लग गई। आग लगने से ऊपर की मंजिल पर रहने वाले कई परिवारों की जान खतरे में पड़ गई। लोगों का आरोप है कि दमकल विभाग की टीम काफी देर से पहुंची।
5: खिड़की के छज्जे पर लटका ये उस आम आदमी का परिवार जिसे जिम्मेदार सरकारी विभाग अक्सर मुसीबत के आगे अकेला छोड़ देता है। तस्वीरें मध्य प्रदेश के इंदौर की हैं, जहां पति पत्नी और एक मासूम बेटी की चुनौती मौत के चंगुल से खुद को बचाने की है। जिंदा रहने के लिए खुद को बचाने की कोशिश कर रहा दमकल विभाग की टीम नदारद, इसीलिए पड़ोसी रस्सी फेंक रहे तो कोई सीढ़ी लगाने की कोशिश कर रहा। वजह बिल्डिंग में आग लगी है, घर के अंदर धुआं भरा है। मध्य प्रदेश के इंदौर में इलेक्ट्रिक शोरूम में लगी आग एक बार फिर सुरक्षा के सिस्टम पर सवाल उठाती। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड की तस्वीरें अभी धुंधली भी नहीं हुई कि इंदौर के इस अग्निकांड ने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। हालांकि बस गनीमत की बात यह है कि यहां किसी जानमाल का नुकसान नहीं हुआ।
7: पहली बार उठे जैसे हमने धुआं देखा और इसके अलावा हमने कुछ नहीं देखा, मतलब बच्ची और हमको सबको साथ में लेके बाउंड्री के बाहर इधर बालकनी के यहां पर पहुंच गए, खड़े रहे दीवार के साइड से जो पाइपलाइन इसको पकड़ के, मतलब फिर लोगों ने हमको देखा कि ये लोग भी ऊपर हैं, मतलब कब से हुए हैं।
8: बहुत दूर धुआं हो रहा था, घबराहट हो रही थी, सांस लेने में भी दिक्कत आ रही थी, तो हम इधर से कूद के और दूसरी बिल्डिंग पे गए तो उधर से लोगों ने हमको निकाला, बच्ची को भी निकाला, हमको रस्सी बांध के कमर में सीढ़ी से निकाला।
5: ग्राउंड फ्लोर पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों के शोरूम में जब आग लगी तब उसकी ऊपर की मंजिल पर रहने वाले लोग सो रहे। बताया जा रहा है कि शोरूम के बाहर कुछ एक फोर व्हीलर गाड़ी को चार्जिंग पर लगाया गया था। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट को आग लगने की संभावित वजह माना जा रहा है।
9: इस शोरूम के ऊपर तो फ्लैट है, तकरीबन यहाँ पर 20 से 25 परिवार यहाँ रहते हैं इस बिल्डिंग के ऊपर, तो जब इसका धुआं ऊपर गया तो उन लोगों को निकलने में बड़ी परेशानी आ रही थी, तो जो पड़ोसी है इस पास की बिल्डिंग के जो लोग है उन्होंने सीढ़ी लगा के रेस्टोरेंट को वहां से निकाला, लेकिन बहुत देर बाद जो है फायर ब्रिगेड आई यहाँ पर, क्योंकि जो रहवासी है क्षेत्रीय उन्होंने काफी मदद की और उन्होंने रेस्क्यू करके बाकी लोगों को निकाला।
5: गर्मियों में आग लगने की घटनाएं बढ़ती। दिल्ली में मंगलवार को एक होटल में आग लगने की घटना पूरे देश को दहला दी। दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर होटल टूरिस्ट स्टे में लगी आग में कुल 21 लोगों की जान गई, जिसमें 11 विदेशी थे। ऐसा नहीं कि दिल्ली या देश में इस तरह की पहली घटना। दिल्ली हो या फिर इंदौर, हर घटना सरकारी विभागों को बार बार खबरदार करती, लेकिन हर हादसे के बाद जैसे ही मामला शांत होता है संबंधित विभाग ढीले पड़ जाते हैं और आम आदमी सरकारी अफसरों की लापरवाही का शिकार होने लगता है।
3: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।

0: के साथ मंच पर पुतिन समेत दुनिया के बड़े दिग्गज। पुतिन ने भारत की तारीफ की, बताया प्रमुख साझेदार, आईटी सेक्टर के अग्रणी देशों में शामिल है इंडिया। सूरत में पीएम का विपक्ष पर हमला, कहा अराजकता फैलाकर अवसर तलाश रही है कांग्रेस, देश को नीचा दिखाने में जुटे हैं निराशावादी नेता। समुद्र मंथन मिशन में भारत को बड़ी सफलता, गहरे समुद्र में ऑयल इंडिया को मिली प्राकृतिक गैस, हरदीप सिंह पुरी का ऐलान। अग्निकांड के बाद दिल्ली सरकार का एक्शन, अवैध निर्माण पर बुलडोजर, कुछ इलाके सील, सीएम रेखा गुप्ता की बैठक में दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई के आदेश। और बागी नेता ऋतुव्रत को नेता विपक्ष बनाए जाने के खिलाफ, सोमवार को हाईकोर्ट जाएंगी ममता, ममता की बैठक में पहुंचे सिर्फ 3 लोकसभा सांसद। पश्चिम बंगाल में बड़ा राजनीतिक बदलाव नजर आ रहा है, जहां ममता बनर्जी की पार्टी हर दिन के साथ कमजोर होती जा रही है। विधायकों की बगावत के बाद अब ममता बनर्जी के सांसदों को लेकर भी खबरें आईं कि वो भी विद्रोह कर सकते हैं, और दावा तो यहां तक हो रहा है कि अगले सप्ताह की शुरुआत में तृणमूल कांग्रेस के सांसद बड़ा खेला कर सकते हैं।
1: क्या विधायकों के बाद अब सांसद भी तृणमूल कांग्रेस से अलग हो जाएंगे? क्या अगले हफ्ते की शुरुआत में ममता बनर्जी के सांसद भी अलग गुट बना लेंगे? ममता बनर्जी की पार्टी पर संकट गहराता जा रहा है। इसका साफ साफ संकेत ममता बनर्जी के कालीघाट वाले घर पर बैठक के दौरान मिलता है। पार्टी के 60 विधायकों के अलग गुट बनाने के दावे के बाद बुलाई गई इस बैठक में अभिषेक बनर्जी, कल्याण बनर्जी, माला रॉय शामिल हुई। इसके अलावा डेरेक ओब्रायन और डोला सेन भी ममता के घर पहुंचे। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं, 80 विधायकों वाली टीएमसी के सिर्फ 8 मौजूदा विधायकों और 2 पूर्व विधायकों ने बैठक में हिस्सा लिया। ममता बनर्जी के घर पर बुलाई गई इस बैठक में विधायकों की तरह सांसद भी गायब दिखे। 28 लोकसभा सांसदों वाली टीएमसी के चीफ के घर पर लोकसभा के 3 और 2 राज्यसभा सांसद पहुंचे, जिसके बाद खबरदार करता सवाल है कि क्या विधायकों के बाद अब सांसद भी ममता बनर्जी को टाटा बाय बाय करने वाले। इस सवाल पर ममता बनर्जी के करीबी विधायक मदन मित्रा का जवाब सुनने लायक है।
2: ये विधायक बोल रहे हैं 23 सांसद उनके साथ हैं, बाकी विधायक बोल रहे हैं।
3: वो पूरा बात कर सकता है, पूरा कह सकता है जब पूरा पार्टी उनका साथ है।
1: तो मदन मित्रा ने पार्टी के सांसदों के विद्रोह के सवाल को खारिज नहीं किया, बल्कि बागियों को चुनौती देकर ये बता दिया कि दाल में कहीं कुछ काला जरूर है।
3: 2,30,00,000 जनता ममता बनर्जी का नाम से वोट दिया, जो लोग जा रहे हैं उसमें से कोई मां का लाल है, रेजिग्नेशन देके अपना क्षेत्रों में जाके बोलेंगे ममता को फोटो नहीं लेके मैं फिर से एक बार चुनाव लड़ने चाहता हूं, अगर उसका पास कोई चुनाव जीत के आए मैं उसको सलाम करूंगा।
1: ममता के करीबियों के इस बयान को टीएमसी के सूत्रों के हवाले से आ रही खबर से समझा जा सकता है, जिसके मुताबिक टीएमसी में विधायक दल के बाद अब संसदीय दल में जल्दी टूट हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी के कई सांसद अभिषेक बनर्जी से नाराज बताए जा रहे हैं। नाराज सांसद एक अलग गुट बना सकते हैं। टीएमसी के लोकसभा में 28 सांसद अभी हैं। दल बदल कानून के तहत अलग समूह को मान्यता मिलने के लिए कम से कम 22 सांसदों का समर्थन जरूरी होगा। सूत्रों के अनुसार एक दर्जन से अधिक सांसद अलग ग्रुप बनाने के पक्ष में हैं। सूत्र कहते हैं कि पार्टी के एक बड़े वरिष्ठ सांसद इस संभावित बगावत की अगुवाई कर रहे हैं। राज्यसभा में टीएमसी के 13 सांसद हैं और वहां अलग समूह को मान्यता के लिए कम से कम 9 सांसदों का समर्थन चाहिए। ममता बनर्जी के विधायकों की टूट के बाद उनके घर बैठक में 41 सांसदों में से सिर्फ 5 सांसदों का पहुंचना अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या विधायकों के बाद सांसदों के टूटने की चर्चा है?
4: मानसिक तौर पे आप पार्टी के साथ नहीं है?
5: मानसिक तौर पे मैं पार्टी के साथ नहीं हूँ।
4: और ऐसे ही मानसिक तौर पे और कितने सांसद है तृणमूल में जो पार्टी के साथ नहीं है, आपको क्या पता है?
5: देखिए, मैं तो किसी का मानसिक स्थिति को रीड नहीं कर पाता।
4: नहीं, बातचीत तो होती होगी।
5: बातचीत होती है, मेरे सुनने में जो है, मैंने आपको बता दिया ना कि लोकसभा में ज्यादा मेंबर, मैंने मेजोरिटी मेंबर नहीं।
1: सूत्रों के मुताबिक टीएमसी के 23 लोकसभा सांसद बागी गुट के संपर्क में कहे जा रहे हैं। माना जा रहा है कि अगले हफ्ते की शुरुआत में टीएमसी के लोकसभा सांसदों में टूट हो सकती है, मतलब कुछ ही दिनों में क्या खेला हो जाएगा?
3: दुनिया में सब कुछ हो सकता है ना, ऐसा कोई चीज नहीं है जो दुनिया में नहीं हो सकता है। लड़ाई जारी है।
1: विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की हार के बाद जिस तेजी से और बड़े पैमाने पर पार्टी के विधायकों का संतोष सामने आया वो अभूतपूर्व है, जिसका असर संसद में भी दिख सकता है।
4: कितने सांसद होंगे ऐसे? लोकसभा में आपके 29 सांसद है, आपको क्या सुनाई दे रहा है? कितने सांसद होंगे फिर?
5: 29 नहीं है, 28 है।
4: 28
5: बसीरहाट आपका पेंडिंग है कलकत्ता हाईकोर्ट में,
4: क्या होने वाला है? आपको क्या सुनाई दे रहा है? आपको पार्टी के अंदर अभी भी है
5: मेजोरिटी चला जाए?
4: ये एक बड़ा बयान है आप दे रहे हैं कि मेजॉरिटी ही चला जाएगा?
5: मेजॉरिटी चला जाएगा।
1: टीएमसी में मची इस बगावत के लिए भले ही बागी अभिषेक बनर्जी को दोषी देते हो, लेकिन ममता बनर्जी को नेता मानने पर सब एकमत। इसीलिए जब ऋतुव्रत बनर्जी ने ममता को सलाहकार के रूप में सीमित करने की कोशिश की तो पाला बदलने वाले कई विधायकों ने विरोध जताया। हालांकि ऋतुव्रत इसे कोई चुनौती नहीं मानते और उन्हें भरोसा है कि बगावत करने वाले विधायकों की संख्या बढ़ेगी।
6: जहां तक हमारे आंकड़ा का सवाल है वो आंकड़ा बढ़ता जाएगा। जो आंकड़ा हम लोग प्रेजेंट किए थे 2/3 से ज्यादा, काफी सारे ज्यादा, वो जो आंकड़ा है जब आप लोग से मिलेंगे विधानसभा का अधिवेशन जब होगा वो आंकड़ा ऊपर जाएगा और आगे जाएगा।
1: विधानसभा चुनाव में हार के महीने भर के अंदर जिस तरह से ममता की पार्टी में टूट हुई उसे देखते हुए राजनीतिक हलकों में ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या आने वाले समय में टीएमसी के सांसद भी पार्टी का साथ छोड़ देंगे।
0: और अब खबर उत्तर प्रदेश की राजनीति की, जहां 2027 चुनाव का असर नेताओं के बयानों पर साफ दिखाई दे रहा है। योगी आदित्यनाथ लगातार अखिलेश यादव पर हमलावर हैं, तो अखिलेश यादव भी योगी की खामियों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं।
7: हम देखते हैं, हमने हर घर नल की योजना को आगे बढ़ाया, पता लगा कोई टोंटी चोरी कर रहा है।
8: योगी ने भले ही अपने इस बयान में किसी का नाम न लिया हो, लेकिन टोंटी चोरी शब्द के बाद योगी की मुस्कुराहट ने यूपी की सियासत के 10 साल पुराने चैप्टर को फिर से खोल दिया। जब अखिलेश के सीएम बंगला खाली होने के बाद इन आरोपों पर जमकर घमासान मचा था।
9: अगर हमारे पे ये इल्जाम लगे हम टोंटी ले गए, हमारे घर को गंगा जल से धुला हो गया, आप भूल सकते हो, मैं नहीं भूल सकता।
8: उधर योगी के बयान के जवाब में अखिलेश यादव ने भी बिना किसी का नाम लिए एक तंज भरा ट्वीट किया। वनस्पति विवेक छीन लेती है और निर्दोष लोगों की हत्याओं का खौफ रातों की नींद, नहीं तो पूरे होश में इतने ऊंचे पद पर बैठकर इतना निकृष्ट बयान कोई भी नहीं देता है। कुछ लोग अपनी असफलता के लिए दूसरों को दोषी ठहराते हैं, ये हार की हताशा बोल रही है क्योंकि कुदरत का बुलडोजर अब घूम गया है। इसके बाद योगी के हमलों की दूसरी किश्त जारी हुई, जहां निशाने पर एक बार फिर विपक्ष था।
10: अच्छे लोगों को चुनोगे अच्छा परिणाम आएगा, माफिया को चुन करके भेजोगे

0: यूपी में अब चुनाव की तैयारियों ने पूरा जोर पकड़ लिया है, जिसका अंदाजा नेताओं के बयानों से लगाया जा सकता है। आज तक ब्यूरो।
1: खबर कोचिंग वाले खान सर की। जी हाँ, कोचिंग वॉर में खान सर बुरी तरह से फंस गए हैं। पहले तो फैसल खान उर्फ खान सर ने अपने पड़ोसी वाली ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद को गिरफ्तार करवाया और अब कोचिंग गोलीकांड में खुद खान सर पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है।
2: इंसान घमंड अपने अच्छे समय में दिखाता है और उसका खामियाजा उसको अपने बुरे समय में भुगतना पड़ता है। एयरबस A380 ये सबसे ऊंची जहाज।
3: ये एरिया कौन सा है? मंचूरिया।
2: हिटलर ने ग्रेनेड बनाना चालू किया, वो टैंक पनडुब्बी पानी वाली जहाज सब बनाया।
4: कोचिंग की दुनिया में खान सर इतना बड़ा नाम बन चुके हैं कि अब छात्रों के बीच लेक्चर देने के लिए वो भारी सुरक्षा बलों और हथियार बंद बॉडीगार्ड के साथ रेड कार्पेट पर चलते हुए ग्रैंड एंट्री लेते हैं।
2: याद रखिएगा, 1.5 साल की लगन के साथ पढ़ाई आपको पूरी दुनिया से 5 साल आगे रख देती है। अब कोई पोत पात के आएगा, तुम कहते कितना बढ़िया लग रहे हो, तो वो पतेगा एकदम सियार लग रही हूँ, इसलिए एकदम अखंड सिंगल।
4: लेकिन अब खान सर का यही जलवा उनके लिए मुसीबत का सबब बन रहा है। 2 जून को खान सर के कोचिंग सेंटर पर हुए गोलीकांड में वो बुरी तरह से फंस चुके हैं।
2: आप सबके जीवन में कुछ न कुछ तकलीफ है, तो इससे घबराना क्या है? अगर रात अंधेरी है तभी तारों के चमकने का अहमियत भी है।
4: खान सर पर पटना के कदमकुआं थाने में हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ है। जी हाँ, खान सर के गार्ड्स ने पुलिस को बयान दिया है कि उन्होंने हमें कहा तुम गोली चलाओ, बाकी हम देख लेंगे। इसी आधार पर पुलिस ने खान सर के खिलाफ FIR दर्ज की है। BNS की धारा 109 के तहत ये केस दर्ज किया गया है। इसमें 10 साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है। इसमें अग्रिम जमानत भी नहीं मिल सकती है। पुलिस की FIR में 3 लोगों का नाम दर्ज है, फैजल खान उर्फ खान सर और उनके साथ उनके 2 गार्ड्स। फायरिंग करने वाले दोनों गार्ड्स के नाम प्रदीप कुमार और तलविंदर सिंह हैं। खान सर के ये दोनों निजी गार्ड्स उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। नोएडा की सिक्योरिटी एजेंसी से खान सर ने 17 गार्ड्स हायर किए हैं।
5: तो व्यक्ति जो वीडियो में दिख रहे हैं फायरिंग करते हुए, तो पहचान करके तो गिरफ्तार किया गया है और उनको भी भेजा जा रहा है। उनके हथियार जब्त करके फसल जांच कराया जा रहा है।
6: इनके घर पे
5: आगे जो जांच में आएगा और उसके सबूत जो मिलेंगे हम लोग को, वो सत्यापित करेंगे।
6: खान सर पे क्या आरोप सिद्ध हुआ है? गार्ड ने जो बताया आखिर लोग के द्वारा जो FIR भेजा गया उसमें साफ तौर से कहा गया है कि उन्हीं ने आदेश दिया था, क्या खान सर की गिरफ्तारी होगी?
5: मैंने आप लोगों को बताया कि जिस तरह का लोग एविडेंस आएगा उस सबसे कार्रवाई होगी और इसमें जिसके ऊपर भी एविडेंस आएगा विधि व्यवस्था या अपराध इसके ऊपर भी होगी उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी सबूतों के आधार पर।
2: ये क्या है इसका? ये एग्जैक्ट इसी साइज का होता है।
4: और अब जिसमें खान सर को महारत हासिल है उसी रास्ते से खान सर बचकर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से कठिन और जटिल विषयों को खान सर बहुत ही सरल देसी और मजाकिया अंदाज में छात्रों को समझाते हैं, आज खान सर कोचिंग सेंटर में छात्रों के बीच अपना केस समझा रहे हैं। इस लेक्चर में खान सर गिरफ्तारी से बचने की सफाई पेश करते हैं। तो आइए आपको भी खान सर की सेल्फ डिफेंस वाली क्लास में लिए चलते हैं।
2: ये लोग कहा कि खान सर के ऊपर माला चढ़ जाए, फोटो पे क्या चढ़ जाए माला, यही तो चाहते हैं लोग। अरे पागलो मेरे भाई लोग, एक बात बताए यार, वो हमला किसके ऊपर करने आया है? हमारे ऊपर। दिन में आया कि रात में? रात। अकेले आए ग्रुप में? पथराव किया कि नहीं? गोली चलाया कि नहीं चलाए? गार्ड को अधमरा किया कि नहीं किया? क्या FIR भी नहीं करें? ले अब पूछिए जरा ये बात। सबसे जरूरी चीज जो आप लोग को गुमराह किया जा रहा है, सेल्फ डिफेंस की फायरिंग चूंकि पुलिस लेट से पहुंची थी, पुलिस को आने में टाइम लगता है, हमें भी पता है कि 5 मिनट में पुलिस उड़ के नहीं आ जाएगी, तो सेल्फ डिफेंस में वो नहीं भाग रहे थे, उसको मार डालते तो कोई क्या करता? एक गार्ड का कर्तव्य क्या होता है? सुरक्षा करना।
4: और तो और खान सर अपनी

0: कोचिंग के स्मार्ट क्लासरूम में 2 जून की घटना की सीसीटीवी फुटेज का पूरा विश्लेषण कर रहे हैं।
1: इसकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं की है, जबकि सबके सामने ये लेके जा रहा है, मुद्दे से भटकाया जा रहा है। आप इसकी गिरफ्तारी करिए, ये आदमी कौन है और कैसे आता है 20-25 लोगों को उठा के लेके चला जाता है, 20-25 लोगों को एक साथ कैसे।
0: खान सर मार्कर से स्क्रीन पर आरोपियों को घेर घेर कर दिखा रहे हैं और छात्रों को बता रहे हैं कि देखिए इनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। खान सर उसका नाम विकास बताते हैं और उसकी पूरी पहचान भी बताते हैं।
1: इसका नाम विकास या विवेक करके, विकास इसने बयान दिया है, देखो हम लोग तो पढ़ाने वाला थे, हम लोग इतना नहीं बता रहा था कि कौन कहा क्या काम कर रहा है, क्या हमने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया है।
0: फिर खान सर हाथ में किताब लेकर विद्या की कसम खाते हैं और कहते हैं कि कोचिंग पर लगातार गोलियां चली थी और पूरी सच्चाई सामने नहीं लाई जा रही है।
1: हमने दिखाया गोली चलते हुए, आपने देख रहे हैं, आप बताइए आप अपनी आवाज उठा सकते हैं कि नहीं उठा।
0: स्मार्ट क्लासरूम में लेक्चर देने वाले खान सर वेरी स्मार्ट हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कोचिंग में हुए गोलीकांड पर वो कैसे गच्चा खा गए और अपने ही बयानों से कैसे फंस गए वो आपको दिखाते हैं। खान सर ने पहले कहा उनके कोचिंग सेंटर पर रोशन आनंद के लोगों ने गोलियां चलाई, 10 राउंड फायरिंग हुई, फिर खान सर पलट गए और गोलियों की बात से मुकर गए, लेकिन जब गोलियां चलाते हुए खान सर के अपने ही गार्ड्स का वीडियो वायरल हो गया, फायरिंग करने वाले 2 गार्ड्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और खान सर पर भी आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज हो गया, तो अब खान सर फिर से कोचिंग में गोलियां चलाने की थ्योरी ले आए हैं।
2: अभी इन लोग का बस यही है कि इतने कम फीस में नहीं पढ़ाया जाए और इतने हजारों संख्या में जो रिजल्ट आता है पूरी तरह से, इतनी गोली चलाने लगे 10 मिनट में, ऐसा लगा कि जैसे अफरा तफरी होके रख गया यहाँ पर। 8-10 राउंड तो हम देखे हैं यहाँ पे, 8-10 राउंड हम देखे हैं, हमें क्या पता है। अभी PMCH में एडमिट है, उसका पूरा सर फाड़ दिया गया है यहाँ पर।
3: क्या लगता है कौन क्या होगा?
2: बगल की कोचिंग वाले
4: सर, आप खुद मौजूद थे यहाँ जब फायरिंग हो रही थी?
2: बिल्कुल, ये देखिए मेरा गार्ड है ये।
4: अच्छा,
2: इसका ये पूरी तरह से खून से इसको लहूलुहान कर दिया गया यहाँ पे।
4: तो गार्ड से क्या दुश्मनी थी?
2: बस कि तुम ही खान सर को सब गार्ड है हमारा, मार के रखा है। देखिए उस समय इतना घटना हुआ, अभी जो घायल है जो मेन, हम लोग तो अंदर से भी अपने चैम्बर में थे, टीचर लोग क्लास ले रहे थे, जो गार्ड है उससे पूछा गया तो उसका कहना है कि सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, इतना मार के फोड़ दिया गया उसको।
1: अस्पष्ट गोलियां चल रही थी और अफरा तफरी इतना था कि किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि बाहर निकल के देख सके। यहाँ क्यों नहीं कोई आए लोग तक वगैरह, बहुत यही था कि तो उस समय आए रहे थे तो कह रहे थे क्या गोलियां चल रही है कि नहीं चल रही।
5: खान सर के बयानों ने ही खान सर को फंसा दिया और अब खान सर अपनी कोचिंग के द्वारा छात्रों से बचने का रास्ता खोज रहे हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार किसी भी समय खान सर को गिरफ्तार किया जा सकता है, ऐसा कहा जा रहा है कि खान सर कहाँ है इसका अभी फिलहाल किसी को पता नहीं।
0: लेकिन खान सर अब पूरी तरह से फंस चुके हैं कि अब पुलिस उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेगी। ऐसे में सवाल ये है कि क्या खान सर स्टूडेंट्स के जरिए पुलिस और प्रशासन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ये कहकर छात्रों को उकसा रहे हैं कि अगर उनका कोचिंग सेंटर बंद हो गया तो 6 महीने में कई कोचिंग संस्थानों की फीस 1-1.5 लाख रुपए तक हो जाएगी।
1: जिस दिन खान सर को आवाज दबाया गया उसके 6 महीने के अंदर आकर फिर से फीस 1.5 लाख नहीं चली गई, तो आप कहिए
2: जो आप लोगों को गुमराह किया जा रहा है। सेल्फ डिफेंस की फायरिंग, चूंकि पुलिस लेट से पहुंची थी, पुलिस को आने में टाइम लगता है, हमें भी बताएगी 5 मिनट में पुलिस उड़ के नहीं आ जाएगी।
0: और खान सर किसी हद तक अपने स्मार्ट क्लास से छात्रों को अपने पक्ष में इकट्ठा करने में कामयाब भी हो जाते हैं। जी हाँ, खान सर की गिरफ्तारी को देखते हुए उनकी कोचिंग खान ग्लोबल स्टडीज के छात्र मुसल्लापुर कोचिंग सेंटर में पहुंचने लगते हैं। बिहार पुलिस भर्ती के रिजल्ट को लेकर शुरू हुई लड़ाई में खान सर ने ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर को तो गिरफ्तार करवा दिया, लेकिन अब गोलीकांड का सच बाहर आने के बाद गिरफ्तारी की तलवार खुद खान सर पर भी लटक गई है।
6: बिहार पुलिस में जो शानदार रिजल्ट हुआ है उसी का साजिश से हमको फंसाया जा रहा है। किसान कोल्ड स्टोर के मालिक और खान सर जो है दोनों मिल करके जो है ज्ञान बिंदु को बर्बाद करने का पूरा प्रयास कर रहा है, लेकिन सत्यमेव जयते, हमेशा सत्य की जीत है।
0: लेकिन सवाल ये है कि कैसे पटना के दो कोचिंग संचालकों के बीच वर्चस्व की लड़ाई में एक तरह से कोचिंग वॉर छिड़ गई है और इस कोचिंग वॉर में अब गोलियां भी चल रही हैं। ऐसे में पुलिस सख्त एक्शन ले रही है। इस कोचिंग वॉर में खान सर बुरी तरह से फंस चुके हैं। पटना से शशि भूषण के साथ आज तक ब्यूरो।
5: खबर मोहाली से आई बेहद खौफनाक तस्वीर की, जहां एक सरफरे आशिक ने ब्रेकअप के बाद अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के ऑफिस के अंदर चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी।

0: मोहाली के ऑफिस से आई ये तस्वीरें विचलित करने वाली हैं, जहां एक सिरफिरा आशिक हरजिंदर महिला सहकर्मी डिंपल पर अचानक से चाकुओं से हमला कर देता है। हमलावर ने एक के बाद एक करीब 30 बार लड़की पर चाकू चलाया। लड़की जान बचाकर चारों तरफ भागने की कोशिश करती है, लेकिन हमले जारी रहते हैं। बाकी सहकर्मी उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नाकाम साबित होते हैं। लड़की दम तोड़ देती है, लेकिन इसके बाद की तस्वीर और भयानक है, जहां वो लड़का सबके सामने खुद की गर्दन पर चाकू से ताबड़तोड़ वार करने लगता है और सबके सामने आत्महत्या की कोशिश करता है, जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है।
1: बेसिकली 25 से 30 बार चाकू का उसने वार किया, गर्दन पे भी है और पीछे हार्ट पे भी है। सो यू कैन से भी सीरियस उसने, मतलब 25 से 30 वार किए थे उसने, और अपने भी उसने ऐसे ही अपने आप को भी स्टैब किया है। अपने गले में भी उसके हैं, हार्ट में भी उसने अपने स्टैब किया अपने आप को भी। और ये सारी जो हैं, जो आप इनके वूंड्स बारे दैट डॉक्टर कैन टेल यू बेटर।
2: अभी पेरेंट्स के, दोनों साइड के पेरेंट्स का क्या
1: कहना है? मतलब जो लड़के के पेरेंट्स हैं, दे आर इन यूएस, दे विल बी कमिंग, पर अभी जो लड़की के पेरेंट्स हैं उनका हमने बयान लिखकर अभी पोस्टमार्टम करवाएंगे आज।
0: डिंपल पटियाला की रहने वाली थी, हरजिंदर भी पटियाला का है। दोनों में दोस्ती थी, प्यार था, अच्छे संबंध थे। करीब 3 साल से दोनों एक दूसरे को जानते थे, लेकिन कुछ दिनों से दोनों के रिश्तों में खटास आ गई थी। डिंपल ने ब्रेकअप कर लिया, हरजिंदर से मिलना जुलना छोड़ दिया, लेकिन हरजिंदर डिंपल को नहीं छोड़ना चाहता था। पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि हरजिंदर दोबारा से डिंपल के साथ रिश्ते ठीक करना चाहता था। गुरुवार को जब वो दफ्तर आया तो डिंपल से बात करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी और झगड़ा हो गया। इसके बाद जो तस्वीरें आई वो हैरान करने वाली थी। मोहाली से कमलजीत संधु के साथ आज तक ब्यूरो।
3: दिल्ली के मालवीय नगर होटल अग्निकांड में नए नए खुलासे हो रहे हैं। होटल मालिक ने एक ऐसी बात मान ली जो कि सिस्टम पर सवाल खड़े करती है। दावा है कि होटल मालिक लवकेश बजाज ने बताया कि होटल उनका अकाउंटेंट ऑपरेट कर रहा था। वहीं दिल्ली सरकार ने बड़ी ड्राइव चलाकर नियम तोड़ने वाले होटल्स रेस्टोरेंट्स पर एक्शन लिया। नोएडा में लगी आग ने फिर से सवाल खड़े कर दिए।
4: ये तस्वीरें देखिए कि एक और होटल की तरफ जाती हुई एनसीबी की टीम, क्योंकि यहाँ पर पहले बिजली जो है वो काटी जाती है। आगे की तरफ मैं कहूँगा कि यहाँ पर जो टीम है वो आगे की तरफ जाती हुई दूसरा होटल, क्योंकि अब तक 2 से 3 होटल्स को जो है वो यहाँ पर अब सील कर दिया गया।
5: दिल्ली के मालवीय नगर में होटल अग्निकांड के बाद दिल्ली सरकार एक्शन मोड में दिख रही है। दक्षिणी दिल्ली के कई इलाकों में अवैध इमारतों की पहचान करके उन पर बुलडोजर चलाया गया। मालवीय नगर इलाके में हुए अग्निकांड ने देश को झकझोर दिया। इस इलाके में सुबह ही बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया। अवैध निर्माण के खिलाफ दिल्ली के अलग अलग इलाकों में रेखा गुप्ता सरकार फुल एक्शन में है, जिसके तहत साकेत, एमजी रोड, मालवीय नगर में सीलिंग और बुलडोजर कार्रवाई होती है।
4: देखिए मैं आपको बता दूं कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से जो ज्वाइंट कमेटी का गठन किया गया था, जिसमें डीएम, एसडीएम और एमसीडी दिल्ली पुलिस के साथ, अब इस वक्त दिल्ली के अलग अलग इलाके, चाहे वो मालवीय नगर हो, हौजरानी हो, साकेत हो, एमजी रोड हो, वहां पर बुलडोजर एक्शन के साथ साथ सीलिंग एक्शन भी जो है वो देखने को मिल रहा है। ये देखिए ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट के नाम पर जो इनलीगल तरीके से होटल चल रहे थे उस पर अब एमसीडी की तरफ से सीलिंग जो है वो यहाँ पर की जा रही है। सीलिंग की टीम, एमसीडी की टीम जो है वो यहाँ पर पहुंची है और तमाम यहाँ पर हौजरानी इलाके में जब ये मालवीय नगर में हादसा हुआ था जिसमें 21 लोगों की जान गई थी, और आप देखिए किस तरीके से यह तमाम होटल जो है वो बने हुए हैं, इन सब पर इस वक्त जो है वो ज्वाइंट कमेटी की जो टीम जो दिल्ली सरकार की तरफ से गठित की गई थी उसका एक्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। एक के बाद एक 18 ऐसी यूनिट्स हैं जहां पर इस वक्त एक्शन जो है वो देखने को मिल रहा है।
5: दक्षिणी दिल्ली के हौज खास में बेड एंड ब्रेकफास्ट होटल को एमसीडी की टीम ने सील किया। यहां भी नियमों की अनदेखी हो रही थी। दक्षिणी दिल्ली के गिटौरनी में भी अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया। यहाँ पर देखिए कितनी बड़ी इमारत नियमों की अनदेखी करके बना दी गई। यहाँ पर कई दुकानों को सील किया गया। इसके साथ पूर्वी दिल्ली के करावल नगर, हौज खास गांव में भी अतिक्रमण और सीलिंग की कार्रवाई हुई। दिल्ली सरकार ने अवैध निर्माण रोकने और बेड एंड ब्रेकफास्ट होटल को लेकर बड़ा फैसला लिया। भविष्य में मालवीय नगर अग्निकांड जैसा हादसा न हो, इसके लिए अब अफसरों की जिम्मेदारी भी तय की गई।
6: सरकारी निर्देशों का उल्लंघन करने पर 2 साल की सजा और मिलीभगत पाए जाने पर अधिकारियों पर भी कठोर कार्रवाई, जिसमें जेल तक और जुर्माने तक की कार्रवाई की जा सकती है उसको इन्वोक करने का फैसला सरकार ने लिया है।
5: दिल्ली के होटल अग्निकांड में 21 लोगों की मौत के सदमे से लोग उभरे भी नहीं थे कि सुबह सुबह नोएडा में दो जगह आग लगने से हड़कंप मच गया। आग लगने की पहली घटना नोएडा सेक्टर 74 में हुई, जहां 12वें फ्लोर के एक फ्लैट में आग लगती है। तेज हवा के चलते आग तेजी से फैलती है और फ्लैट की खिड़कियों से ऊंची लपटें निकलने लगी। आसमान में काले धुएं का गुबार फैल गया। इस हादसे ने दमकल विभाग की तैयारियों पर एक बार फिर सवाल उठा दिए। हालांकि बाद में इस आग पर काबू पाया गया। नोएडा के अपार्टमेंट में लगी आग की इस घटना का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया और अधिकारियों को तुरंत मौके पर पहुंचकर राहत बचाव और निगरानी करने के निर्देश दिए। नोएडा में आग लगने की एक और घटना सेक्टर 52 के एक पीजी में हुई। जिस पीजी में आग लगी उस बिल्डिंग में नीचे रेस्टोरेंट था। काफी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने यहां पर आग पर काबू पाया है।
3: दिल्ली की ही तरह मध्य प्रदेश के इंदौर में भी बड़ा हादसा हो सकता था। इंदौर में ग्राउंड फ्लोर पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों का शोरूम था, जिसमें आग लग गई। आग लगने से ऊपर की मंजिल पर रहने वाले कई परिवारों की जान खतरे में पड़ गई। लोगों का आरोप है कि दमकल विभाग की टीम काफी देर से पहुंची।
5: खिड़की के छज्जे पर लटका ये उस आम आदमी का परिवार है, जिसे जिम्मेदार सरकारी विभाग अक्सर मुसीबत के आगे अकेला छोड़ देता है। तस्वीरें मध्य प्रदेश के इंदौर की हैं, जहां पति पत्नी और एक मासूम बेटी की चुनौती मौत के चंगुल से खुद को बचाने की है। जिंदा रहने के लिए खुद को बचाने की कोशिश कर रहा दमकल विभाग की टीम नदारद, इसीलिए पड़ोसी रस्सी फेंक रहे तो कोई सीढ़ी लगाने की कोशिश कर रहा। वजह बिल्डिंग में आग लगी है, घर के अंदर धुआं भरा है। मध्य प्रदेश के इंदौर में इलेक्ट्रिक शोरूम में लगी आग एक बार फिर सुरक्षा के सिस्टम पर सवाल उठाती। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड की तस्वीरें अभी धुंधली भी नहीं हुई। इंदौर के इस अग्निकांड ने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। हालांकि बस गनीमत की बात यह है कि यहां किसी जानमाल का नुकसान नहीं हुआ।
7: पहली बार उठे जैसे हमने धुआं देखा और इसके अलावा हमने कुछ नहीं देखा, मतलब बच्ची और हमको सबको साथ में लेके बाउंड्री के बाहर इधर बालकनी के यहां पर पहुंच गए, खड़े रहे दीवार के साइड से जो पाइपलाइन इसको पकड़ के, मतलब फिर लोगों ने हमको देखा कि ये लोग भी ऊपर हैं, मतलब फंसे हुए हैं।
8: बहुत दूर धुआं हो रहा था, घबराहट हो रही थी, सांस लेने में भी दिक्कत आ रही थी, तो हम इधर से कूद के और दूसरी बिल्डिंग पे गए तो उधर से लोगों ने हमको निकाला, बच्ची को भी निकाला, हमको रस्सी बांध के कमर में सीढ़ी से निकाला।
5: ग्राउंड फ्लोर पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों के शोरूम में जब आग लगी तब उसकी ऊपर की मंजिल पर रहने वाले लोग सो रहे। बताया जा रहा है कि शोरूम के बाहर कुछ एक फोर व्हीलर गाड़ी को चार्जिंग पर लगाया गया था। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट को आग लगने की संभावित वजह माना जा रहा है।
9: इस शोरूम के ऊपर जो फ्लैट है तकरीबन यहाँ पर 20 से 25 परिवार यहाँ रहते हैं इस बिल्डिंग के ऊपर, तो जब इसका धुआं ऊपर गया तो उन लोगों को निकलने में बड़ी परेशानी आ रही थी, तो जो पड़ोसी है इस पास की बिल्डिंग के जो लोग है उन्होंने सीढ़ी रेस्टोरेंट को वहां से निकाला, लेकिन बहुत देर बाद जो है फायर ब्रिगेड आई यहाँ पर, क्योंकि जो रहवासी है क्षेत्रीय उन्होंने काफी मदद की और उन्होंने रेस्क्यू करके बाकी लोगों को निकाला।
5: गर्मियों में आग लगने की घटनाएं बढ़ती। दिल्ली में मंगलवार को एक होटल में आग लगने की घटना पूरे देश को दहला दी। दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर होटल टूरिस्ट स्टे में लगी आग में कुल 21 लोगों की जान गई, जिसमें 11 विदेशी थे। ऐसा नहीं कि दिल्ली या देश में इस तरह की पहली घटना। दिल्ली हो या फिर इंदौर, हर घटना सरकारी विभागों को बार बार खबरदार करती, लेकिन हर हादसे के बाद जैसे ही मामला शांत होता है संबंधित विभाग ढीले पड़ जाते हैं और आम आदमी सरकारी अफसरों की लापरवाही का शिकार होने लगता है।
3: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।

0: के साथ मंच पर पुतिन समेत दुनिया के बड़े दिग्गज। पुतिन ने भारत की तारीफ की, बताया प्रमुख साझेदार आईटी सेक्टर के अग्रणी देशों में शामिल है इंडिया। सूरत में पीएम का विपक्ष पर हमला, कहा अराजकता फैलाकर अवसर तलाश रही है कांग्रेस, देश को नीचा दिखाने में जुटे हैं निराशावादी नेता। समुद्र मंथन मिशन में भारत को बड़ी सफलता, गहरे समुद्र में ऑयल इंडिया को मिली प्राकृतिक गैस, हरदीप सिंह पुरी का ऐलान। अग्निकांड के बाद दिल्ली सरकार का एक्शन, अवैध निर्माण पर बुलडोजर, कुछ इलाके सील, सीएम रेखा गुप्ता की बैठक में दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई के आदेश। और बागी नेता ऋतुव्रत को नेता विपक्ष बनाए जाने के खिलाफ, सोमवार को हाईकोर्ट जाएंगी ममता, ममता की बैठक में पहुंचे सिर्फ 3 लोकसभा सांसद। पश्चिम बंगाल में बड़ा राजनीतिक बदलाव नजर आ रहा है, जहां ममता बनर्जी की पार्टी हर दिन के साथ कमजोर होती जा रही है। विधायकों की बगावत के बाद अब ममता बनर्जी के सांसदों को लेकर भी खबरें आईं कि वो भी विद्रोह कर सकते हैं, और दावा तो यहां तक हो रहा है कि अगले सप्ताह की शुरुआत में तृणमूल कांग्रेस के सांसद बड़ा खेला कर सकते हैं।
1: जब विधायकों के बाद अब सांसद भी तृणमूल कांग्रेस से अलग हो जाएंगे, क्या अगले हफ्ते की शुरुआत में ममता बनर्जी के सांसद भी अलग गुट बना लेंगे? ममता बनर्जी की पार्टी पर संकट गहराता जा रहा है। इसका साफ साफ संकेत ममता बनर्जी के कालीघाट वाले घर पर बैठक के दौरान मिलता है। पार्टी के 60 विधायकों के अलग गुट बनाने के दावे के बाद बुलाई गई इस बैठक में अभिषेक बनर्जी, कल्याण बनर्जी, माला रॉय शामिल हुई। इसके अलावा डेरेक ओब्रायन और डोला सेन भी ममता के घर पहुंचे। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं, 80 विधायकों वाली टीएमसी के सिर्फ 8 मौजूदा विधायकों और 2 पूर्व विधायकों ने बैठक में हिस्सा लिया। ममता बनर्जी के घर पर बुलाई गई इस बैठक में विधायकों की तरह सांसद भी गायब दिखे। 28 लोकसभा सांसदों वाली टीएमसी के चीफ के घर पर लोकसभा के 3 और 2 राज्यसभा सांसद पहुंचे, जिसके बाद खबरदार करता सवाल है कि क्या विधायकों के बाद अब सांसद भी ममता बनर्जी को टाटा बाय बाय करने वाले। इस सवाल पर ममता बनर्जी के करीबी विधायक मदन मित्रा का जवाब सुनने लायक है।
2: ये विधायक बोल रहे हैं 23 सांसद उनके साथ हैं, बाकी विधायक बोल रहे हैं।
3: वो पूरा बात कर सकता है, पूरा कह सकता है जब पूरा पार्टी उनका साथ है।
1: तो मदन मित्रा ने पार्टी के सांसदों के विद्रोह के सवाल को खारिज नहीं किया, बल्कि बागियों को चुनौती देकर ये बता दिया कि दाल में कहीं कुछ काला जरूर है।
3: 2,30,00,000 जनता ममता बनर्जी का नाम से वोट दिया, जो लोग जा रहे हैं उसमें से कोई मां का लाल है, रेजिग्नेशन देके अपना क्षेत्रों में जाके बोलेंगे ममता को फोटो नहीं लेके मैं फिर से एक बार चुनाव लड़ने चाहता हूं, अगर उसका पास कोई चुनाव जीत के आए मैं उसको सलाम करवाऊंगा।
1: ममता के करीबियों के इस बयान को टीएमसी के सूत्रों के हवाले से आ रही खबर से समझा जा सकता है, जिसके मुताबिक टीएमसी में विधायक दल के बाद अब संसदीय दल में जल्दी टूट हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी के कई सांसद अभिषेक बनर्जी से नाराज बताए जा रहे हैं। नाराज सांसद एक अलग गुट बना सकते हैं। टीएमसी के लोकसभा में 28 सांसद अभी हैं। दल बदल कानून के तहत अलग समूह को मान्यता मिलने के लिए कम से कम 22 सांसदों का समर्थन जरूरी होगा। सूत्रों के अनुसार एक दर्जन से अधिक सांसद अलग ग्रुप बनाने के पक्ष में हैं। सूत्र कहते हैं कि पार्टी के एक बड़े वरिष्ठ सांसद इस संभावित बगावत की अगुवाई कर रहे हैं। राज्यसभा में टीएमसी के 13 सांसद हैं और वहां अलग समूह को मान्यता के लिए कम से कम 9 सांसदों का समर्थन चाहिए। ममता बनर्जी के विधायकों की टूट के बाद उनके घर बैठक में 41 सांसदों में से सिर्फ 5 सांसदों का पहुंचना अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या विधायकों के बाद सांसदों के टूटने की चर्चा है?
4: मानसिक तौर पे आप पार्टी के साथ नहीं हैं?
5: मानसिक तौर पे मैं पार्टी के साथ नहीं हूं।
4: और ऐसे ही मानसिक तौर पे और कितने सांसद हैं तृणमूल में जो पार्टी के साथ नहीं है, आपको क्या पता है?
5: देखिए, मैं तो किसी का मानसिक स्थिति को रीड नहीं कर पाता।
4: नहीं, बातचीत तो होती होगी।
5: बातचीत होती है, मेरे सुनने में जो है, मैंने आपको बता दिया ना कि लोकसभा में ज्यादा मेंबर, मैंने मेजोरिटी मेंबर नहीं।
1: सूत्रों के मुताबिक टीएमसी के 23 लोकसभा सांसद बागी गुट के संपर्क में कहे जा रहे हैं। माना जा रहा है कि अगले हफ्ते की शुरुआत में टीएमसी के लोकसभा सांसदों में टूट हो सकती है, मतलब कुछ ही दिनों में क्या खेला हो जाएगा।
3: दुनिया में सब कुछ हो सकता है ना, ऐसा कोई चीज नहीं है जो दुनिया में नहीं हो सकता है। लड़ाई जारी है।
1: विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की हार के बाद जिस तेजी से और बड़े पैमाने पर पार्टी के विधायकों का संतोष सामने आया वो अभूतपूर्व है, जिसका असर संसद में भी दिख सकता है।
4: कितने सांसद होंगे ऐसे? लोकसभा में आपके 29 सांसद है, आपको क्या सुनाई दे रहा है? कितने सांसद होंगे फिर?
5: 29 नहीं है, 28 है।
4: 28
5: बसीरहाट आपका पेंडिंग है कलकत्ता हाई कोर्ट में,
4: क्या होने वाला है? आपको क्या सुनाई दे रहा है? आपको पार्टी के अंदर अभी भी है
5: मेजोरिटी चला जाए?
4: ये एक बड़ा बयान है आप दे रहे हैं कि मेजॉरिटी ही चला जाएगा?
5: मेजॉरिटी चला जाएगा।
1: टीएमसी में मची इस बगावत के लिए भले ही बागी अभिषेक बनर्जी को दोषी देते हों, लेकिन ममता बनर्जी को नेता मानने पर सब एकमत। इसीलिए जब ऋतुव्रत बनर्जी ने ममता को सलाहकार के रूप में सीमित करने की कोशिश की तो पाला बदलने वाले कई विधायकों ने विरोध जताया। हालांकि ऋतुव्रत इससे कोई चुनौती नहीं मानते और उन्हें भरोसा है कि बगावत करने वाले विधायकों की संख्या बढ़ेगी।
6: जहां तक हमारे आंकड़ा का सवाल है वो आंकड़ा बढ़ता जाएगा। जो आंकड़ा हम लोग प्रेजेंट किए थे 2/3 से ज्यादा, काफी सारे ज्यादा, वो जो आंकड़ा है जब आप लोग से मिलेंगे विधानसभा का अधिवेशन जो होगा वो आंकड़ा ऊपर जाएगा और आगे जाएगा।
1: विधानसभा चुनाव में हार के महीने भर के अंदर जिस तरह से ममता की पार्टी में टूट हुई उसे देखते हुए राजनीतिक हलकों में ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या आने वाले समय में टीएमसी के सांसद भी पार्टी का साथ छोड़ देंगे।
0: और अब खबर उत्तर प्रदेश की राजनीति की, जहां 2027 चुनाव का असर नेताओं के बयानों पर साफ दिखाई दे रहा है। योगी आदित्यनाथ लगातार अखिलेश यादव पर हमलावर हैं, तो अखिलेश यादव भी योगी की खामियों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं।
7: हम देखते हैं, हमने हर घर नल की योजना को आगे बढ़ाया, पता लगा कोई टोंटी चोरी कर रहा है।
8: योगी ने भले ही अपने इस बयान में किसी का नाम न लिया हो, लेकिन टोंटी चोरी शब्द के बाद योगी की मुस्कुराहट ने यूपी की सियासत के 10 साल पुराने चैप्टर को फिर से खोल दिया। जब अखिलेश के सीएम बंगला खाली होने के बाद इन आरोपों पर जमकर घमासान मचा था।
9: अगर हमारे पे ये इल्जाम लगे हम टोंटी ले गए, हमारे घर को गंगा जल से धुला हो गया, आप भूल सकते हो, मैं नहीं भूल सकता।
8: उधर योगी के बयान के जवाब में अखिलेश यादव ने भी बिना किसी का नाम लिए एक तंज भरा ट्वीट किया। वनस्पति विवेक छीन लेती है और निर्दोष लोगों की हत्याओं का खौफ रातों की नींद, नहीं तो पूरे होश में इतने ऊंचे पद पर बैठकर इतना निकृष्ट बयान कोई भी नहीं देता है। कुछ लोग अपनी असफलता के लिए दूसरों को दोषी ठहराते हैं, ये हार की हताशा बोल रही है क्योंकि कुदरत का बुलडोजर अब घूम गया है। इसके बाद योगी के हमलों की दूसरी किश्त जारी हुई, जहां निशाने पर एक बार फिर विपक्ष था।
10: अच्छे लोगों को चुनोगे अच्छा परिणाम आएगा, माफिया को चुन करके भेजोगे तो खून भी चूस डालेगा, विकास का पैसा तो हजम करेगा ही करेगा, संपत्तियों पर भी माफिया कब्जा करता है।
8: यूपी में अब चुनाव की तैयारियों ने पूरा जोर पकड़ लिया है, जिसका अंदाजा नेताओं के बयानों से लगाया जा सकता है। आज तक ब्यूरो।
0: खबर कोचिंग वाले खान सर की, जी हां, कोचिंग वॉर में खान सर बुरी तरह से फंस गए हैं। पहले तो फैसल खान उर्फ खान सर ने अपने पड़ोसी वाली ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद को गिरफ्तार करवाया और अब कोचिंग गोलीकांड में खुद खान सर पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है।
11: इंसान घमंड अपने अच्छे समय में दिखाता है और उसका खामियाजा उसको अपने बुरे समय में भुगतना पड़ता है। एयरबस A380 ये सबसे ऊंची जहाज,
12: ये एरिया कौन सा है? मंचूरिया।
11: हिटलर ने ग्रेनेड बनाना चालू किया, वो टैंक पनडुब्बी पानी वाली जहाज सब बनाया।
13: कोचिंग की दुनिया में खान सर इतना बड़ा नाम बन चुके हैं कि अब छात्रों के बीच लेक्चर देने के लिए वो भारी सुरक्षा बलों और हथियारबंद बॉडीगार्ड्स के साथ रेड कार्पेट पर चलते हुए ग्रैंड एंट्री लेते हैं।
1: याद रखिएगा, 1.5 साल की लगन के साथ पढ़ाई आपको पूरी दुनिया से 5 साल आगे रख देती है। अब कोई पोत पात क्या आएगा, तुम कहते कितना बढ़िया लग रहे हो, तो वो पतेगा एकदम सियार लग रही हो, इसलिए एकदम अखंड सिंगल।
13: लेकिन अब खान सर का यही जलवा उनके लिए मुसीबत का सबब बन रहा है। 2 जून को खान सर के कोचिंग सेंटर पर हुए गोलीकांड में वो बुरी तरह से फंस चुके हैं।
11: आप सबके जीवन में कुछ न कुछ तकलीफ है, तो इससे घबराना क्या है? अगर रात अंधेरी है तभी तारों के चमकने का अहमियत भी है।
13: खान सर पर पटना के कदमकुआं थाने में हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ है। जी हां, खान सर के गार्ड्स ने पुलिस को बयान दिया है कि उन्होंने हमें कहा तुम गोली चलाओ, बाकी हम देख लेंगे। इसी आधार पर पुलिस ने खान सर के खिलाफ FIR दर्ज की है। BNS की धारा 109 के तहत ये केस दर्ज किया गया है। इसमें 10 साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है। इसमें अग्रिम जमानत भी नहीं मिल सकती है। पुलिस की FIR में 3 लोगों का नाम दर्ज है, फैजल खान उर्फ खान सर और उनके साथ उनके 2 गार्ड्स। फायरिंग करने वाले दोनों गार्ड्स के नाम प्रदीप कुमार और तलविंदर सिंह हैं। खान सर के ये दोनों निजी गार्ड्स उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। नोएडा की सिक्योरिटी एजेंसी से खान सर ने 17 गार्ड्स हायर किए हैं।
14: तो व्यक्ति जो वीडियो में दिख रहे हैं फायरिंग करते हुए, तो पहचान करके तो गिरफ्तार किया गया है और उनको भी भेजा जा रहा है। उनके हथियार जब्त करके फसल जांच कराया जा रहा है।
15: इनके घर पे
14: आगे जो जांच में आएगा और उसके सबूत जो मिलेंगे हम लोग को, वो सफाई करेंगे।
15: खान सर पे क्या आरोप सिद्ध हुआ है? गार्ड ने जो बताया आपके लोग के द्वारा जो FIR भेजा गया, उसमें साफ तौर से कहा गया है कि उन्हीं ने आदेश दिया था, क्या खान सर की गिरफ्तारी होगी?
14: मैंने आप लोगों को बताया कि जिस तरह का लोग एविडेंस आएगा उस सबसे कार्रवाई होगी और इसमें जिसके ऊपर भी एविडेंस आएगा, विधि व्यवस्था या अपराध इसके ऊपर भी होगी, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी सबूतों के आधार पर।
11: ये क्या है इसका? ये एग्जैक्ट इसी साइज का होता है।
13: और अब जिसमें खान सर को महारत हासिल है, उसी रास्ते से खान सर बचकर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से कठिन और जटिल विषयों को खान सर बहुत ही सरल, देसी और मजाकिया अंदाज में छात्रों को समझाते हैं, आज खान सर कोचिंग सेंटर में छात्रों के बीच अपना केस समझा रहे हैं। इस लेक्चर में खान सर गिरफ्तारी से बचने की सफाई पेश करते हैं। तो आइए आपको भी खान सर की सेल्फ डिफेंस वाली क्लास में लिए चलते हैं।
11: ये लोग कहा कि खान सर के ऊपर माला चढ़ जाए, फोटो पे क्या चढ़ जाए माला, यही तो चाहते हैं लोग। अरे पागलो मेरे भाई लोग, एक बात बताए यार, वो हमला किसके ऊपर करने आया है? हमारे ऊपर। दिन में आया कि रात में?
16: रात।
11: अकेले आए ग्रुप में? पथराव किया कि नहीं? गोली चलाया कि नहीं चलाए? गार्ड को अधमरा किया कि नहीं किया? क्या FIR भी नहीं करें? ले अब पूछिए जरा ये बात। सबसे जरूरी चीज जो आप लोगों को गुमराह किया जा रहा है, सेल्फ डिफेंस की फायरिंग चूंकि पुलिस लेट से पहुंची थी, पुलिस को आने में टाइम लगता है, हमें भी पता है कि 5 मिनट में पुलिस उड़ के नहीं आ जाएगी, तो सेल्फ डिफेंस में वो नहीं भाग रहे थे, उसको मार डालते तो कोई क्या करता? एक गार्ड का कर्तव्य क्या होता है? सुरक्षा करना।
13: और तो और खान सर अपनी कोचिंग के स्मार्ट क्लासरूम में 2 जून की घटना की CCTV फुटेज का पूरा विश्लेषण कर रहे हैं।
17: इसकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं की है, जबकि सबके सामने ये लेके जा रहा है, मुद्दे से भटकाया जा रहा है। आप इसकी गिरफ्तारी करिए, ये आदमी कौन है और कैसे आता है 20-25 लोगों को उठा के लेके चला जा रहा है, 20-25 लोगों को एक साथ कैसे?
13: खान सर मार्कर से स्क्रीन पर आरोपियों को घेर घेर कर दिखा रहे हैं और छात्रों को बता रहे हैं कि देखिए इनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। खान सर उसका नाम विकास बताते हैं और उसकी पूरी पहचान भी बताते हैं।
17: इसका नाम विकास या विवेक करके विकास, इसने बयान दिया है। देखो हम लोग तो पढ़ाने वाला, हम लोग इतना नहीं बता रहा था कौन कहा क्या काम कर रहा है। क्या हमने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया है? इसकी गिरफ्तारी पटना पुलिस से मांग करते हैं कि अभी तक बाहर घूम रहा है।
13: फिर खान सर हाथ में किताब लेकर विद्या की कसम खाते हैं और कहते हैं कि कोचिंग पर लगातार गोलियां चली थी और पूरी सच्चाई सामने नहीं लाई जा रही है।
17: हमने दिखाया गोली चलते हुए आपने देख रहे हैं। अब आप बताइए, आप अपनी आवाज उठा सकते हैं कि नहीं?
13: स्मार्ट क्लासरूम में लेक्चर देने वाले खान सर वेरी स्मार्ट हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कोचिंग में हुए गोलीकांड पर वो कैसे गच्चा खा गए और अपने ही बयानों से कैसे फंस गए वो आपको दिखाते हैं। खान सर ने पहले कहा उनके कोचिंग सेंटर पर रोशन आनंद के लोगों ने गोलियां चलाई, 10 राउंड फायरिंग हुई, फिर खान सर पलट गए और गोलियों की बात से मुकर गए। लेकिन जब गोलियां चलाते हुए खान सर के अपने ही गार्ड्स का वीडियो वायरल हो गया, फायरिंग करने वाले दो गार्ड्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और खान सर पर भी आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज हो गया, तो अब खान सर फिर से कोचिंग में गोलियां चलाने की थ्योरी ले आए हैं।
16: अभी इन लोग का बस यही है कि इतने कम फीस में नहीं पढ़ाया जाए और इतने हजारों संख्या में जो रिजल्ट आता है पूरी तरह से, इतनी गोली चलाने लगे 10 मिनट में, ऐसा लगा कि जैसे अफरा तफरी होके रख गया। यहाँ पर 8-10 राउंड तो हम देखे हैं, यहाँ पे 8-10 राउंड हम देखे हैं, हमें क्या पता है। अभी पीएमसीएच में एडमिट है, उसका पूरा सर फाड़ दिया गया है यहाँ पर। बगल की कोचिंग वाले
18: सर, आप खुद मौजूद थे यहाँ जब फायरिंग हो रही थी?
16: बिल्कुल, ये देखिए मेरा गार्ड है ये।
18: अच्छा,
16: इसका ये पूरी तरह से खून से इसको लहूलुहान कर दिया गया यहाँ पे।
18: तो गार्ड से क्या दुश्मनी थी?
16: बस कि तुम ही खान सर को सब गार्ड है हमारा, मार के रखा है। देखिए उस समय इतना घटना हुआ, अभी जो घायल है जो मेन, हम लोग तो अंदर से भी अपने चेंबर में थे, टीचर लोग क्लास ले रहे थे, जो गार्ड है उससे पूछा गया तो उसका कहना है कि सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, इतना मार के फोड़ दिया गया उसको।
17: अस्पष्ट गोलियां चल रही थी और अफरा तफरी इतना था कि किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि बाहर निकल के देख सके। यहाँ क्यों नहीं कोई आए लोग वगैरह, बहुत यही था कि तो उस समय आए रहते तो कह रहे क्या गोलियां चल रही है कि नहीं चल रही।
0: खान सर के बयानों ने ही खान सर को फंसा दिया और अब खान सर अपनी कोचिंग के द्वारा छात्रों से बचने का रास्ता खोज रहे हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार किसी भी समय खान सर को गिरफ्तार किया जा सकता है। ऐसा कहा जा रहा है कि खान सर कहाँ है इसका अभी फिलहाल किसी को पता नहीं।
13: लेकिन खान सर अब बुरी तरह से फंस चुके हैं कि अब पुलिस उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेगी। ऐसे में सवाल ये है कि क्या खान सर स्टूडेंट्स के जरिए पुलिस और प्रशासन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ये कहकर छात्रों को उकसा रहे हैं कि अगर उनका कोचिंग सेंटर बंद हो गया तो 6 महीने में कई कोचिंग संस्थानों की फीस 1-1.5 लाख रुपए तक हो जाएगी।
17: जिस दिन खान सर का आवाज दबाया गया उसके 6 महीने के अंदर आकर फिर से फीस 1-1.5 लाख नहीं चली गई। तो आप कहिए,
16: जो आप लोगों को गुमराह किया जा रहा है, सेल्फ डिफेंस की फायरिंग, चूंकि पुलिस लेट से पहुंची थी, पुलिस को आने में टाइम लगता है, हमें भी पता है कि 5 मिनट में पुलिस उड़ के नहीं आ जाएगी।
13: और खान सर किसी हद तक अपने स्मार्ट क्लास से छात्रों को अपने पक्ष में इकट्ठा करने में कामयाब भी हो जाते हैं। जी हाँ, खान सर की गिरफ्तारी को देखते हुए उनकी कोचिंग खान ग्लोबल स्टडीज के छात्र मुसल्लापुर कोचिंग सेंटर में पहुंचने लगते हैं। बिहार पुलिस भर्ती के रिजल्ट को लेकर शुरू हुई लड़ाई में खान सर ने ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर को तो गिरफ्तार करवा दिया, लेकिन अब गोलीकांड का सच बाहर आने के बाद गिरफ्तारी की तलवार खुद खान सर पर भी लटक गई है।
19: बिहार पुलिस में जो शानदार रिजल्ट हुआ है उसी का साजिश से हमको फंसाया जा रहा है। किसान कोल्ड स्टोर के मालिक और खान सर जो है दोनों मिल करके जो है ज्ञान बिंदु को बर्बाद करने का पूरा प्रयास कर रहा है, लेकिन सत्यमेव जयते, हमेशा सत्य की जीत है।
13: लेकिन सवाल ये है कि कैसे पटना के दो कोचिंग संचालकों के बीच वर्चस्व की लड़ाई में एक तरह से कोचिंग वॉर छिड़ गई है और इस कोचिंग वॉर में अब गोलियां भी चल रही हैं। ऐसे में पुलिस सख्त एक्शन ले रही है। इस कोचिंग वॉर में खान सर बुरी तरह से फंस चुके हैं। पटना से शशि भूषण के साथ आज तक ब्यूरो।
0: खबर मोहाली से आई बेहद खौफनाक तस्वीर की, जहां एक सरफिरे आशिक ने ब्रेकअप के बाद अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के ऑफिस के अंदर चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी।

0: मोहाली के ऑफिस से आई ये तस्वीरें विचलित करने वाली हैं, जहां एक सिरफिरा आशिक हरजिंदर महिला सहकर्मी डिंपल पर अचानक से चाकुओं से हमला कर देता है। हमलावर ने एक के बाद एक करीब 30 बार लड़की पर चाकू चलाया। लड़की जान बचाकर चारों तरफ भागने की कोशिश करती है, लेकिन हमले जारी रहते हैं। बाकी सहकर्मी उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नाकाम साबित होते हैं। लड़की दम तोड़ देती है, लेकिन इसके बाद की तस्वीर और भयानक है, जहां वो लड़का सबके सामने खुद की गर्दन पर चाकू से ताबड़तोड़ वार करने लगता है और सबके सामने आत्महत्या की कोशिश करता है, जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है।
1: बेसिकली 25 से 30 बार चाकू का उसने वार किया, गर्दन पे भी है और पीछे हार्ट पे भी है। सो यू कैन से सीरियस, उसने मतलब 25 से 30 वार किए थे उसने, और अपने भी उसने ऐसे ही अपने आप को भी स्टैब किया है। अपने गले में भी उसके हैं, हार्ट में भी उसने अपने स्टैब किया अपने आप को भी। और ये सारी जो हैं, जो आप इनके वुंड्स बारे दैट डॉक्टर कैन टेल यू बेटर।
2: अभी पेरेंट्स के, दोनों साइड के पेरेंट्स का क्या कहना
1: है? हाँ, मतलब जो लड़के के पेरेंट्स हैं, दे आर इन यूएस, दे विल बी कमिंग। पर अभी जो लड़की के पेरेंट्स हैं, उनका हमने बयान लिखकर अभी पोस्टमार्टम करवाएंगे आज।
0: डिंपल पटियाला की रहने वाली थी, हरजिंदर भी पटियाला का है। दोनों में दोस्ती थी, प्यार था, अच्छे संबंध थे। करीब 3 साल से दोनों एक दूसरे को जानते थे, लेकिन कुछ दिनों से दोनों के रिश्तों में खटास आ गई थी। डिंपल ने ब्रेकअप कर लिया, हरजिंदर से मिलना जुलना छोड़ दिया, लेकिन हरजिंदर डिंपल को नहीं छोड़ना चाहता था। पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि हरजिंदर दोबारा से डिंपल के साथ रिश्ते ठीक करना चाहता था। गुरुवार को जब वो दफ्तर आया तो डिंपल से बात करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी और झगड़ा हो गया। इसके बाद जो तस्वीरें आई वो हैरान करने वाली थी। मोहाली से कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो।
3: दिल्ली के मालवीय नगर होटल अग्निकांड में नए नए खुलासे हो रहे हैं। होटल मालिक ने एक ऐसी बात मान ली जो कि सिस्टम पर सवाल खड़े करती है। दावा है कि होटल मालिक लवकेश बजाज ने बताया कि होटल उनका अकाउंटेंट ऑपरेट कर रहा था। वहीं दिल्ली सरकार ने बड़ी ड्राइव चलाकर नियम तोड़ने वाले होटल्स रेस्टोरेंट्स पर एक्शन लिया। नोएडा में लगी आग ने फिर से सवाल खड़े कर दिए।
4: ये तस्वीरें देखिए कि एक और होटल की तरफ जाती हुई एनसीबी की टीम, क्योंकि यहाँ पर पहले बिजली जो है वो काटी जाती है। आगे की तरफ मैं कहूँगा कि यहाँ पर जो टीम है वो आगे की तरफ जाती हुई दूसरा होटल, क्योंकि अब तक 2 से 3 होटल्स को जो है वो यहाँ पर अब सील कर दिया गया।
5: दिल्ली के मालवीय नगर में होटल अग्निकांड के बाद दिल्ली सरकार एक्शन मोड में दिख रही है। दक्षिणी दिल्ली के कई इलाकों में अवैध इमारतों की पहचान करके उन पर बुलडोजर चलाया गया। मालवीय नगर इलाके में हुए अग्निकांड ने देश को झकझोर दिया। इस इलाके में सुबह ही बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया। अवैध निर्माण के खिलाफ दिल्ली के अलग अलग इलाकों में रेखा गुप्ता सरकार फुल एक्शन में है, जिसके तहत साकेत, एमजी रोड, मालवीय नगर में सीलिंग और बुलडोजर कार्रवाई होती है।
4: देखिए, मैं आपको बता दूं कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से जो ज्वाइंट कमेटी का गठन किया गया था, जिसमें डीएम, एसडीएम और एमसीडी दिल्ली पुलिस के साथ, अब इस वक्त दिल्ली के अलग अलग इलाके, चाहे वो मालवीय नगर हो, हौजरानी हो, साकेत हो, एमजी रोड हो, वहां पर बुलडोजर एक्शन के साथ साथ सीलिंग एक्शन भी जो है वो देखने को मिल रहा है। देखिए, ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट के नाम पर जो इनलीगल तरीके से होटल चल रहे थे, उस पर अब एमसीडी की तरफ से सीलिंग जो है वो यहां पर की जा रही है। सीलिंग की टीम, एमसीडी की टीम जो है वो यहां पर पहुंची है, और तमाम यहां पर हौजरानी इलाके में जब ये मालवीय नगर में हादसा हुआ था जिसमें 21 लोगों की जान गई थी, और आप देखिए किस तरीके से यह तमाम होटल जो है वो बने हुए हैं, इन सब पर इस वक्त जो है वो ज्वाइंट कमेटी की जो टीम जो दिल्ली सरकार की तरफ से गठित की गई थी, उसका एक्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। एक के बाद एक 18 ऐसी यूनिट्स हैं जहां पर इस वक्त एक्शन जो है वो देखने को मिल रहा है।
5: दक्षिणी दिल्ली के हौज खास में बेड एंड ब्रेकफास्ट होटल को एमसीडी की टीम ने सील किया। यहां भी नियमों की अनदेखी हो रही थी। दक्षिणी दिल्ली के गिटौरनी में भी अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया। यहाँ पर देखिए कितनी बड़ी इमारत नियमों की अनदेखी करके बना दी गई। यहाँ पर कई दुकानों को सील किया गया। इसके साथ पूर्वी दिल्ली के करावल नगर, हौज खास गांव में भी अतिक्रमण और सीलिंग की कार्रवाई हुई। दिल्ली सरकार ने अवैध निर्माण रोकने और बेड एंड ब्रेकफास्ट होटल को लेकर बड़ा फैसला लिया। भविष्य में मालवीय नगर अग्निकांड जैसा हादसा न हो, इसके लिए अब अफसरों की जिम्मेदारी भी तय की गई।
6: सरकारी निर्देशों का उल्लंघन करने पर 2 साल की सजा और मिलीभगत पाए जाने पर अधिकारियों पर भी कठोर कार्रवाई, जिसमें जेल तक और जुर्माने तक की कार्रवाई की जा सकती है, उसको इन्वोक करने का फैसला सरकार ने लिया है।
5: दिल्ली के होटल अग्निकांड में 21 लोगों की मौत के सदमे से लोग उभरे भी नहीं थे कि सुबह सुबह नोएडा में दो जगह आग लगने से हड़कंप मच गया। आग लगने की पहली घटना नोएडा सेक्टर 74 में हुई, जहां 12वें फ्लोर के एक फ्लैट में आग लगती है। तेज हवा के चलते आग तेजी से फैलती है और फ्लैट की खिड़कियों से ऊंची लपटें निकलने लगी। आसमान में काले धुएं का गुबार फैल गया। इस हादसे ने दमकल विभाग की तैयारियों पर एक बार फिर सवाल उठा दिए। हालांकि बाद में इस आग पर काबू पाया गया। नोएडा के अपार्टमेंट में लगी आग की इस घटना का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया और अधिकारियों को तुरंत मौके पर पहुंचकर राहत बचाव और निगरानी करने के निर्देश दिए। नोएडा में आग लगने की एक और घटना सेक्टर 52 के एक पीजी में हुई। जिस पीजी में आग लगी उस बिल्डिंग में नीचे रेस्टोरेंट था। काफी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने यहां पर आग पर काबू पाया है।
3: दिल्ली की ही तरह मध्य प्रदेश के इंदौर में भी बड़ा हादसा हो सकता था। इंदौर में ग्राउंड फ्लोर पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों का शोरूम था, जिसमें आग लग गई। आग लगने से ऊपर की मंजिल पर रहने वाले कई परिवारों की जान खतरे में पड़ गई। लोगों का आरोप है कि दमकल विभाग की टीम काफी देर से पहुंची।
5: खिड़की के छज्जे पर लटका ये उस आम आदमी का परिवार है, जिसे जिम्मेदार सरकारी विभाग अक्सर मुसीबत के आगे अकेला छोड़ देता है। तस्वीरें मध्य प्रदेश के इंदौर की हैं, जहां पति पत्नी और एक मासूम बेटी की चुनौती मौत के चंगुल से खुद को बचाने की है। जिंदा रहने के लिए खुद को बचाने की कोशिश कर रहा दमकल विभाग की टीम नदारद, इसीलिए पड़ोसी रस्सी फेंक रहे तो कोई सीढ़ी लगाने की कोशिश कर रहा। वजह बिल्डिंग में आग लगी है, घर के अंदर धुआं भरा है। मध्य प्रदेश के इंदौर में इलेक्ट्रिक शोरूम में लगी आग एक बार फिर सुरक्षा के सिस्टम पर सवाल उठाती। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड की तस्वीरें अभी धुंधली भी नहीं हुई कि इंदौर के इस अग्निकांड ने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। हालांकि बस गनीमत की बात यह है कि यहां किसी जानमाल का नुकसान नहीं हुआ।
7: पहली बार उठे जैसे हमने धुआं देखा और इसके अलावा हमने कुछ नहीं देखा, मतलब बच्ची और हमको सबको साथ में लेके बाउंड्री के बाहर इधर बालकनी के यहां पर पहुंच गए, खड़े रहे दीवार के साइड से जो पाइपलाइन इसको पकड़ के, मतलब फिर लोगों ने हमको देखा कि ये लोग भी ऊपर हैं, मतलब फंसे हुए हैं।
8: बहुत दूर धुआं हो रहा था, घबराहट हो रही थी, सांस लेने में भी दिक्कत आ रही थी, तो हम इधर से कूद के और दूसरी बिल्डिंग पे गए तो उधर से लोगों ने हमको निकाला, बच्ची को भी निकाला, हमको रस्सी बांध के कमर में सीढ़ी से निकाला।
5: ग्राउंड फ्लोर पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों के शोरूम में जब आग लगी तब उसकी ऊपर की मंजिल पर रहने वाले लोग सो रहे। बताया जा रहा है कि शोरूम के बाहर कुछ एक फोर व्हीलर गाड़ी को चार्जिंग पर लगाया गया। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट को आग लगने की संभावित वजह माना जा रहा है।
9: इस शोरूम के ऊपर जो फ्लैट है, तकरीबन यहाँ पर 20 से 25 परिवार यहाँ रहते हैं इस बिल्डिंग के ऊपर, तो जब इसका धुआं ऊपर गया तो उन लोगों को निकलने में बड़ी परेशानी आ रही थी, तो जो पड़ोसी है इस पास की बिल्डिंग के जो लोग है उन्होंने सीढ़ियां लगा के रेस्टोरेंट वहां से निकाला। लेकिन बहुत देर बाद जो है फायर ब्रिगेड आई यहाँ पर, क्योंकि जो रहवासी क्षेत्रीय उन्होंने काफी मदद की और उन्होंने रेस्क्यू करके बाकी लोगों को निकाला।
5: गर्मियों में आग लगने की घटनाएं बढ़ती। दिल्ली में मंगलवार को एक होटल में आग लगने की घटना पूरे देश को दहला दी। दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर होटल टूरिस्ट स्टे में लगी आग में कुल 21 लोगों की जान गई, जिसमें 11 विदेशी थे। ऐसा नहीं कि दिल्ली या देश में इस तरह की पहली घटना। दिल्ली हो या फिर इंदौर, हर घटना सरकारी विभागों को बार बार खबरदार करती, लेकिन हर हादसे के बाद जैसे ही मामला शांत होता है संबंधित विभाग ढीले पड़ जाते हैं और आम आदमी सरकारी अफसरों की लापरवाही का शिकार होने लगता है।
3: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।

0: के साथ मंच पर पुतिन समेत दुनिया के बड़े दिग्गज। पुतिन ने भारत की तारीफ की, बताया प्रमुख साझेदार, आईटी सेक्टर के अग्रणी देशों में शामिल है इंडिया। सूरत में पीएम का विपक्ष पर हमला, कहा अराजकता फैलाकर अवसर तलाश रही है कांग्रेस, देश को नीचा दिखाने में जुटे हैं निराशावादी नेता। समुद्र मंथन मिशन में भारत को बड़ी सफलता, गहरे समुद्र में ऑयल इंडिया को मिली प्राकृतिक गैस, हरदीप सिंह पुरी का ऐलान। अग्निकांड के बाद दिल्ली सरकार का एक्शन, अवैध निर्माण पर बुलडोजर, कुछ इलाके सील, सीएम रेखा गुप्ता की बैठक में दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई के आदेश। और बागी नेता ऋतुव्रत को नेता विपक्ष बनाए जाने के खिलाफ, सोमवार को हाईकोर्ट जाएंगी ममता, ममता की बैठक में पहुंचे सिर्फ 3 लोकसभा सांसद। पश्चिम बंगाल में बड़ा राजनीतिक बदलाव नजर आ रहा है, जहां ममता बनर्जी की पार्टी हर दिन के साथ कमजोर होती जा रही है। विधायकों की बगावत के बाद अब ममता बनर्जी के सांसदों को लेकर भी खबरें आईं कि वो भी विद्रोह कर सकते हैं, और दावा तो यहां तक हो रहा है कि अगले सप्ताह की शुरुआत में तृणमूल कांग्रेस के सांसद बड़ा खेला कर सकते हैं।
1: जब विधायकों के बाद अब सांसद भी तृणमूल कांग्रेस से अलग हो जाएंगे, क्या अगले हफ्ते की शुरुआत में ममता बनर्जी के सांसद भी अलग गुट बना लेंगे? ममता बनर्जी की पार्टी पर संकट गहराता जा रहा है। इसका साफ साफ संकेत ममता बनर्जी के कालीघाट वाले घर पर बैठक के दौरान मिलता है। पार्टी के 60 विधायकों के अलग गुट बनाने के दावे के बाद बुलाई गई इस बैठक में अभिषेक बनर्जी, कल्याण बनर्जी, माला रॉय शामिल हुई। इसके अलावा डेरेक ओब्रायन और डोला सेन भी ममता के घर पहुंचे। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं, 80 विधायकों वाली टीएमसी के सिर्फ 8 मौजूदा विधायकों और 2 पूर्व विधायकों ने बैठक में हिस्सा लिया। ममता बनर्जी के घर पर बुलाई गई इस बैठक में विधायकों की तरह सांसद भी गायब दिखे। 28 लोकसभा सांसदों वाली टीएमसी के चीफ के घर पर लोकसभा के 3 और 2 राज्यसभा सांसद पहुंचे, जिसके बाद खबरदार करता सवाल है कि क्या विधायकों के बाद अब सांसद भी ममता बनर्जी को टाटा बाय बाय करने वाले। इस सवाल पर ममता बनर्जी के करीबी विधायक मदन मित्रा का जवाब सुनने लायक है।
2: बाकी विधायक बोल रहे हैं 23 सांसद उनके साथ हैं, 23 सांसद उनके साथ हैं, बाकी विधायक बोल रहे हैं।
3: वो पूरा बात कर सकता है, पूरा कह सकता है जब पूरा पार्टी उनका साथ है।
1: तो मदन मित्रा ने पार्टी के सांसदों के विद्रोह के सवाल को खारिज नहीं किया, बल्कि बागियों को चुनौती देकर ये बता दिया कि दाल में कहीं कुछ काला जरूर है।
3: 2,30,00,000 जनता ममता बनर्जी का नाम से वोट दिया, जो लोग जा रहे हैं उसमें से कोई मां का लाल है, रेजिग्नेशन देके अपना क्षेत्रों में जाके बोलेंगे ममता को फोटो नहीं लेके मैं फिर से एक बार चुनाव लड़ने चाहता हूं, अगर उसका पास कोई चुनाव जीत के आए मैं उसको सलाम करूंगा।
1: ममता के करीबियों के इस बयान को टीएमसी के सूत्रों के हवाले से आ रही खबर से समझा जा सकता है, जिसके मुताबिक टीएमसी में विधायक दल के बाद अब संसदीय दल में जल्दी टूट हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी के कई सांसद अभिषेक बनर्जी से नाराज बताए जा रहे हैं। नाराज सांसद एक अलग गुट बना सकते हैं। टीएमसी के लोकसभा में 28 सांसद अभी हैं। दल बदल कानून के तहत अलग समूह को मान्यता मिलने के लिए कम से कम 22